0: पीएम मोदी के नाम एक और सर्वोच्च सम्मान, रोम में कृषि संगठन ने किया सम्मानित, संयुक्त राष्ट्र की एफएओ ने एग्रीकोला मेडल से नवाजा। अयोध्या राम मंदिर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू, एआई कैमरों से हो रही निगरानी, नई सुरक्षा दीवार और वॉच टावर का भी निर्माण। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ को भक्त की अनोखी भेंट, भगवान को अर्पित किया 197 ग्राम चांदी से बना हार्ट, सफल बाईपास ऑपरेशन के लिए मांगी थी मन्नत। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ में 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 7.25 लाख श्रद्धालु।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रत्न की जिसका संबंध सीधे तौर पर आपकी जिंदगी की खुशियों से है, मन की शांति से है और वो जुड़ा है आपकी माँ की खुशियों से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशक्तिशाली रत्न मोती की। मोती को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, मोती कैसे आपकी जिंदगी खुशहाल बना सकता है, हमारी आज की खास पेशकश में जानेंगे क्यों ज्योतिष का महत्वपूर्ण रत्न है मोती। तो चलिए करते हैं शुरुआत।

0: मोती करें धारण तो होगा चंद्रमा की बाधाओं का निवारण। मोती पहनने से बढ़ते सावधानी, नहीं तो हो सकती है हानि। मोती का शुभ प्रभाव आपको बना सकता है धनवान। तनाव डिप्रेशन होगा दूर, चेहरे पर आएगी मुस्कान। ज्योतिष शास्त्र में मोती को चंद्रमा का प्रमुख रत्न माना गया है। माना जाता है कि मोती मन की शांति, स्थिरता और भावनाओं को संतुलित करने के लिए धारण किया जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत ना हो तो कोई भी ग्रह अपना पूरा शुभ फल नहीं दे पाता। इसीलिए जीवन में किसी भी तरह के सुख के लिए कुंडली के चंद्रमा का शुभ फलदायी होना जरूरी है। इसलिए आज हम आपको मोती रत्न के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे धारण करके आप जीवन की तमाम समस्याओं से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मोती धारण करने से किस तरह से मजबूत कर सकते हैं कुंडली का चंद्रमा। खास है मोती रत्न। मोती एक जैविक संरचना है जो मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है। चंद्रमा की तरह उसका रत्न भी शांत, सुंदर और शीतल है। मोती का प्रभाव सीधा मन और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता, वह धीरे धीरे और हल्का सा डालता है। इसलिए लोगों को लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकता। कभी कभी विशेष औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग होता है।
1: मोती जो है चंद्रमा का रत्न है। अगर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो आप मोती धारण कर सकते हैं। मोती धारण करने के जो फायदे हैं, आपको माता से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, माता का प्रेम मिलेगा, और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है तो आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी, और आपका डिसीजन लेने में, जो हम मन से चीज़ें अपने लाइफ में करते हैं, आपका डिसीजन सही होगा, डिसीजन अच्छे लेंगे आप, और भूमि भवन वाहन का भी आपको लाभ होगा।
0: ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिन लोगों को जल्दी गुस्सा आता है उन्हें मोती पहनने से विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि मोती का प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर असर डालता है। तो आइए जानते हैं कि मोती पहनने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। मोती धारण करने के लाभ। मोती मन को शांत करता है और तनाव को कम कर देता है। डर और वहम दूर करके अच्छी नींद देता है मोती। मोती पहनने से शरीर के हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। कभी कभी आर्थिक पक्ष को भी बहुत अच्छा कर देता है मोती। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मोती एक ऐसा रत्न है, इसे सही तरीके से पहनने पर इंसान की बुद्धि स्थिर होती है। ऐसा इंसान अपनी मेहनत और लगन से मान सम्मान और धन कमाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं मोती धारण करने का सबसे सटीक तरीका क्या है।
1: मोती धारण करने का जो नियम है, अगर आपको मोती पहनना है तो कम सोमवार का दिन होना चाहिए, और मोती को दूध से स्नान कराने के बाद, गंगा जल से स्नान कराने के बाद अपने दाएं हाथ में ले लीजिए उसको, और ओम सोम सोमाय नमः 27 बार बोल के ओम नमः शिवाय का नाम लेके आप मोती को धारण कर लीजिए, और मोती आपके लिटिल फिंगर में, जो कनिष्ठा उंगली होती है, उसमें धारण करना होता है।
0: मोती धारण करने के नियम। मोती को चांदी की अंगूठी में पहनना चाहिए। मोती को कनिष्ठा अंगुली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को पहने। मोती को पूर्णिमा को भी धारण कर सकते हैं। मोती धारण करने से पहले इसे गंगा जल से धोए, फिर मोती को शिवजी को अर्पित करें। मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा ही पहन सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मोती हमेशा आपको फायदा ही पहुंचाए, इसलिए मोती पहनने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो चलिए, अगर मोती आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव ना डाल रहा हो तब आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं।
1: अगर हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इसके बारे में बताना चाहें तो बहुत से ज्योतिषी क्या करते हैं कि चंद्रमा का निगेटिव होता है कुंडली में, चंद्रमा पाप ग्रह से दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत से युति होता है, या फिर 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा होता है, तो ज्योतिषी लोग क्या करते हैं उसको चंद्रमा का रत्न पहना देते हैं। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, निगेटिव है, अगर उसको हम पहनाएंगे तो उसकी निगेटिविटी बढ़ जाएगी, जिससे इसकी वजह से चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, व्यक्ति मेंटली बहुत परेशान होने लगेगा, उसको बहुत सारी मेंटली समस्याएं आने लगेंगी। और जिसका कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ युति हुआ है, केंद्र में धर्म त्रिकोण में है, कर्क लग्न का कुंडली जिसका है, और चंद्रमा की शुभ स्थिति हो, चंद्रमा को मोती धारण करवाएंगे तो उसको उसका बेनिफिट प्रॉपर तरीके से मिलेगा।
0: मोती पहनने के नुकसान। मोती अनुकूल ना हो तो मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि मोती मानसिक स्थिति को धीरे धीरे प्रभावित करता है। अगर अनुकूल ना हो तो मोती गंभीर अवसाद और तनाव की समस्या दे सकता है। घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन भी बढ़ा सकता है मोती। इसके कारण हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है। कहते हैं मोती और चांदी दोनों ही चंद्रमा से संबंध रखते हैं, इसलिए मोती को चांदी में ही धारण करना शुभ होता है। तो आप भी अपनी कुंडली की स्थिति के अनुसार ही मोती पहनिए, ताकि आप भीतर से शांत, शालीन और सहज महसूस कर पाए, जिससे आपका जीवन चंद्रमा के समान शांत, शीतल और सुंदर हो जाए। आगे हम आपको बताएंगे कि किस राशि वालों को मोती धारण करना चाहिए और किन राशि वालों को मोती पहनने से बचना चाहिए। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। ज्योतिष में रत्नों के प्रभाव को बहुत शक्तिशाली माना जाता है, तभी ज्यादातर ज्योतिषी रत्नों के प्रयोग पर जोर देते हैं। ऐसे में कभी कभी गलत रत्न आपकी जिंदगी को तबाह भी कर सकते हैं। मोती पहनने के लाभ क्या है ये भी आपको जानना चाहिए, पर मोती किन्हें पहनना चाहिए और किन्हें नहीं ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आपके लिए कितना खास है और जरूरी है मोती रत्न।

0: मोदी पहुंचा सकता है आपको नुकसान। मोती ना हो अनुकूल तो करता है परेशान। ज्योतिष शास्त्र में दैनिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के कई प्रयोग किए जाते हैं और उन्हीं में से खास है रत्नों का प्रयोग। और ज्योतिषी मानते हैं कि रत्नों का प्रयोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है क्योंकि ये सीधे सीधे आपके शरीर और जीवन को प्रभावित करते हैं।
1: चंद्रमा को दशा का भी कारक ग्रह कहा गया है। अगर किसी की खराब ग्रह की दशा चल रही कुंडली में, अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, अगर वो मोती धारण करता है तो उसके बुरे ग्रह की दशा का भी फल पॉजिटिव होने लगता है। चंद्रमा का बहुत बड़ा रहस्य है। और अगर माता जी की स्वास्थ्य में दिक्कत आ रहा है, चंद्रमा अगर आपका मजबूत होगा तो आपके माता जी के स्वास्थ्य में भी अच्छा लाभ पाया जाएगा, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। और अगर चंद्रमा को अच्छा होने पे ही पहनना है तो आपके जो डिसीजन होंगे वो अच्छे होने लगेंगे।
0: ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर लग्न के लोगों के लिए शुभ नहीं होता मोती। ये जान लीजिए कि मोती रत्न अलग अलग लग्नों और तत्वों के मुताबिक पहनना शुभ होता है, इसीलिए बिना कुंडली दिखाए या बिना सलाह लिए मोती नहीं पहनना चाहिए। तो देखिए किन लोगों के लिए मोती पहनना शुभ फलदायी होगा और किन्हें मोती से दूर रहना चाहिए। मोती कौन धारण कर सकता है, लग्न और तत्व के अनुसार ही मोती पहनना शुभ होता है। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के लिए मोती धारण करना उत्तम है। सिंह, तुला और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती धारण कर सकते हैं। वृष, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करने से बचना चाहिए। यदि कुंडली में चंद्रमा, राहु या केतु के साथ हो, विशेषज्ञ की सलाह के बिना इसे धारण नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा भावुक लोगों को मोती नहीं पहनना चाहिए। ज्योतिष के जानकार ये दावा करते हैं कि मोती को पहनने से पहले अपनी कुंडली में ये जरूर पता कर लें कि आप किस लग्न से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मोती धारण कर लें और वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे। एक बात और ध्यान देने वाली है कि आप मोती ज्योतिषों के बताए अनुसार ही धारण करें। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव की जटाओं में चंद्रमा का वास होता है, इसलिए माना जाता है कि मोतियों की माला को धारण करते समय चंद्रदेव के मंत्रों को 108 बार उसका जप कर लें। ऐसा माना जाता है कि मंत्रों का जप करके माला पहनने से मोती का प्रभाव हमेशा सकारात्मक फल देने वाला होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन मंत्रों के जाप के साथ आपको मोतियों की माला धारण करनी चाहिए। चंद्रदेव का शक्तिशाली बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम स्रो सह चंद्रमस्य नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय। इसके अलावा भी मोती धारण करने वाले साधक को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जानकार बताते हैं कि मोती का रखें खास ध्यान। मोती टूट गया हो या उसकी चमक खत्म हो गई हो तो ऐसे में मोती को बदल लें। माना जाता है कि खंडित मोती पहनने से नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मोती को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा या गर्म पानी का प्रयोग ना करें। मोती बहुत नर्म होता है, इसलिए इसे किसी अन्य रत्न के साथ ना पहने, इससे मोती पर खरोच आ सकती है। तो आप भी चंद्रमा का ये रत्न पहनने से पहले किसी जानकार की सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि ये भूल आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। और लाभकारी रत्न मोती कर सकता है नुकसान, तो चाहते हैं अगर मोती से आप लाभ तो कीजिए थोड़े प्रयास और नियम अनुसार पहनिए अपना लकी स्टोन, जिससे होगा आपका कल्याण। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह के लिए खास रत्न का जिक्र किया गया है जो कि व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। उन्हीं रत्नों में से एक है रत्न पन्ना। ज्योतिष का विज्ञान कहता है कि कोई भी रत्न उसके ग्रह नक्षत्र और राशि के अनुसार ही पहनने चाहिए, नहीं तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि बुध के रत्न की महिमा क्या है।

0: एक हरा रत्न जिसे धारण करने से मीठी होगी जुबान। व्यक्तित्व में आएगा निखार, समाज में बढ़ेगा सम्मान। जी हाँ, पन्ना वो बेमिसाल रत्न है जो कुंडली के बुध की शुद्धि कर सकता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि बुध अगर मजबूत हो तो इंसान को वाणी, बुद्धि और व्यक्तित्व से प्रभावशाली बनाता है। मजबूत बुध आपकी कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। मजबूत बुध आपको तीव्र बुद्धि, अच्छी त्वचा, सौंदर्य और एकाग्रता का वरदान दे सकता है। लेकिन अगर कुंडली में बुध कमजोर हो तो क्या मुश्किलें आती हैं? आइए जानते हैं। कमजोर बुध के नुकसान। व्यक्ति को त्वचा की समस्या होती है, चेहरे पर जल्दी झुर्रियां पड़ने लगती हैं। व्यक्ति तुरंत सर्दी, जुकाम, एलर्जी की चपेट में आ जाता है। चीजों को समझने में काफी समय लगता है। व्यक्ति बार बार चीजें भूलने लगता है। धन को लेकर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। धोखा, छल या फरेब व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुंडली के बुध को मजबूत करने का सबसे उत्तम उपाय है बुध का रत्न पन्ना धारण करना। रत्न शास्त्र में पन्ना को एक बेशकीमती और बहुमूल्य रत्न माना गया है। बुध का रत्न पन्ना बुद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है और इस रत्न को धारण करने वाला सौभाग्यशाली होता है। तो चलिए जानते हैं कि बुध के ग्रह पन्ना में कौन कौन से गुण छिपे हुए हैं। पन्ना की विशेषताएं। पन्ना नवरत्नों में एक असरदार और कोमल प्रभाव का रत्न है। वह बैरूज वर्ग का रत्न है और एल्यूमिनियम और बेरिलियम का सिलिकेट है। कुछ मात्रा में इसमें ऑक्सीजन और जल पाया जाता है। पन्ना कभी भी मिले यह षटकोणीय ही होता है। सामान्यतः पन्ना बिना जाल के नहीं हो सकता। बिना दोष के पन्ना मिल पाना काफी कठिन होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो रत्नों में ग्रहों की ऊर्जा आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर आपकी कुंडली का कमजोर बुध आपकी समस्याएं बढ़ा रहा है तो बुध का यह दिव्य प्रभाव वाला रत्न आपकी तमाम परेशानियां दूर कर सकता है। पन्ना को हीलिंग स्टोन भी माना जाता है। कहते हैं कि पन्ना को धारण करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर पाता है। पन्ना पहनने से नौकरी और व्यापार में भी उन्नति होती है। साथ ही पन्ना आर्थिक संकट भी दूर करने में कारगर है। लाभकारी भी है पन्ना। पन्ना बुद्धि को प्रखर और एकाग्र कर देता है। यह मन की चिंताओं को दूर करता है। इसको धारण करने से वाणी की शक्ति बढ़ जाती है। आमतौर पर कारोबार और आर्थिक स्थिति में लाभ पहुंचाता है। इससे व्यक्तित्व चमकदार और प्रभावशाली हो जाता है। यह त्वचा के रोगों में भी खूब लाभ देता है। माना जाता है कि पन्ना धारण करने से पहले ज्योतिष के जानकारों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार बुध का रत्न पन्ना तभी धारण करना चाहिए जब कुंडली में बुध शुभ भाव का स्वामी हो, क्योंकि बुध की अशुभ स्थिति में पन्ना धारण करना जीवन में अशुभ प्रभाव बढ़ाने लगता है। तो आइए जानते हैं कि पन्ना रत्न कब और कैसे नुकसान पहुंचाता है। पन्ना धारण करने के नुकसान। ये बुद्धि को भ्रमित और मन को परेशान कर सकता है। इसके कारण आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। पन्ना त्वचा में समस्याएं दे सकता है और पन्ना आत्मविश्वास को गड़बड़ भी कर सकता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक हर राशि और लग्न के लोगों के लिए शुभ नहीं है बुध का ये रत्न। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किन राशि वालों को पन्ना धारण करना चाहिए और किन्हें पन्ना से दूर रहना चाहिए। लाभकारी भी है और कष्टकारी भी है। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ लग्न वालों के लिए पन्ना लाभकारी होता है। सिंह, धनु और मीन लग्न में विशेष दशाओं में पन्ना पहन सकते हैं। मेष, कर्क, वृश्चिक लग्न में पन्ना भूलकर भी धारण ना करें। जो लोग वाणी संबंधी कार्य में हैं उन्हें पन्ना धारण करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी पन्ना धारण करना अनुकूल होगा। पन्ना शुभ परिणाम देने पर न सिर्फ दौलत और शोहरत दिलवाता है बल्कि आपको समाज में सम्मान भी हासिल होता है। तो आप भी पन्ना को सही तरीके से धारण करें जिससे न सिर्फ आपका बुध मजबूत होगा बल्कि आपकी सारी बाधाओं का भी अंत होगा। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और
0: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
3: नमस्कारम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
4: कृष्णा जी की पेंटिंग थी यहाँ पे, गणेशा,
5: ये प्यारी सी घंटी,
6: चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, हाड़ कपा देने वाली ठंड और तापमान -40 डिग्री। लेकिन इस कड़ाके की सर्दी के बीच अगर आपको हरे कृष्णा और शिव आरती की गूंज सुनाई दे तो शायद आपको अपने कानों पर यकीन ना हो, लेकिन यह हकीकत है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। यह नजारा भारत के किसी बर्फीले पहाड़ी इलाके का नहीं बल्कि रूस के सुदूर और बेहद ठंडे क्षेत्र साइबेरिया का है। इंटरनेट पर इस जगह को रूस का हिंदू गांव और मिनी इंडिया कहा जा रहा है। इस अनोखे गांव का नाम ओकुनेवो है जो रूस के ओमस्क क्षेत्र में स्थित है। यह इलाका पश्चिमी साइबेरिया के अंतर्गत आता है और अपनी भीषण ठंड के लिए जाना जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन गड़गड़ाती ठंड में भी स्थानीय और सैलानी पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति में लीन है। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद हर भारतीय यूजर गर्व महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि साइबेरिया के इस छोटे से गांव में एक कृष्ण मंदिर है जो इस्कॉन से जुड़ा है। इसके साथ ही यहां भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। -40 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद लोग यहां सुबह शाम इकट्ठा होते हैं और पूजा करते हैं।
7: ग्राम पुजारी इस सेवा, ओम नमः शिवाय।
6: एक छोटे बच्चे का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने टीचर से शिकायत करते हुए नजर आ रहा है।
8: सर, एक बात बताओ, जब हम बाल कटवा के नहाएंगे तो मम्मा मारता हूँ, अब जब लड़की इनके बाल इतने बड़े होता है तब तुम ना मारता हूँ।
6: वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी टीचर से शिकायत करता है। वो बोलता है, सर एक बात बताओ, जब हम बाल कटवा कर नहीं आते हैं तो आप हमें मारते हो, और जब लड़कियों के बाल इतने बड़े हो गए हैं तो नहीं मारते हो। अब यह शिकायत सुनकर टीचर कहता है, वो तो लड़कियां हैं, मगर तुरंत बाद बच्चा बोलता है कि लड़की से हम क्या कम हैं? अब यह सुनते ही टीचर भी हंसने लगता है।
8: सर, एक बात बताओ, जब हम बाल कटवा के नहाएंगे तो मम्मा मारता हूँ, अब जब लड़की इनके बाल इतने बड़े होते हैं तो तुम ना मारता
9: हूँ। ये तो लड़की है,
8: लड़की से तो हम कम आए।
6: यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं, बच्चे के सवाल जवाब पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।
8: अब जब लड़की इनके बाल इतने बड़े होते हैं तुम ना मारता
9: हूँ। ये तो लड़की है,
8: लड़की से तो हम कम आए।
6: सोशल मीडिया पर यह दिल छूने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक माँ की अथक मेहनत और ममता को देखकर हर कोई हैरान और भावुक हो रहा है। वीडियो में एक महिला अपने छोटे बच्चे को पीठ पर लपेटे हुए, सिर पर सब्जियों की भारी भारी टोकरियां संतुलित करते हुए ट्रक पर सामान लाती दिख रही है। बिना थके बिना रुके वह लगातार काम करती जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला रोजाना बाजार आती है, सुबह से शाम तक वह न सिर्फ अपना काम संभालती है बल्कि अपने छोटे बच्चे की देखभाल भी करती है। बच्चा पीठ पर बंधा रहता है और माँ का काम चलता रहता है। वीडियो में दिख रहा है कि भारी टोकरियां सिर पर रखकर वह ट्रक की ऊंचाई तक चढ़ रही है। उसके चेहरे पर थकान तो है लेकिन आत्मविश्वास और ममता भी साफ दिख रही है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी वीडियो सामने आते हैं जो दिल को छू जाते हैं। हाल ही में देश के जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने अपने एक्स हैंडल से एक ऐसा ही बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है जिसने इंटरनेट की पब्लिक का दिल जीत लिया है। वायरल क्लिप में एक दादा पोते की जोड़ी पारंपरिक लोक नृत्य पर धड़कती नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पारंपरिक सफेद केडीयू और धोती पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति पूरे जोश के साथ थिरक रहे हैं। उनके साथ उनका छोटा पोता भी खड़ा है, जो कदम से कदम मिलाकर अपने दादाजी को कड़ी टक्कर दे रहा है। दोनों की जुगलबंदी और एनर्जी देखने लायक है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की एक पारंपरिक और सांस्कृतिक लोक कला डायरा का है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों इस बच्ची के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आलम यह है कि वीडियो को महज कुछ ही दिनों में लाखों व्यूज मिल चुके हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीले कलर के सूट और सलवार में बच्ची दिल खोलकर डांस कर रही है। बच्ची के शानदार परफॉर्मेंस पर टीचर के एक्सप्रेशन भी देखने लायक रहे। वो खुद भी बच्ची के धांसू स्टेप और एक्सप्रेशन देख दंग नजर आए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। आमतौर पर जिम में भारी वजन उठाते हुए युवा ही नजर आते हैं, लेकिन इस बार एक दादी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि लोगों के होश उड़ गए। करीब 60 किलो वजन की इस बुजुर्ग महिला ने जिम में 110 किलो वजन उठाकर सभी को चौंका दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी पूरी तैयारी के साथ जिम में मौजूद हैं और बिना किसी झिझक के भारी वजन उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आसपास खड़े लोग भी पहले तो उन्हें देखकर थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन जैसे ही वे आत्मविश्वास के साथ 110 किलो वजन उठाती है, वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। उनकी ताकत, संतुलन और फोकस देखकर यह साफ समझ आता है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी संभव है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक डिलीवरी बॉय कुछ सामान देने के लिए एक घर के सामने खड़ा है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और वो सामान उन्हें पकड़ा देता है। इसके बाद वो वापस जा रहा होता है, तभी उसे एक जगह पर बैट रखा हुआ नजर आता है। अब उस बैट को देखते ही उसके अंदर का क्रिकेटर जाग जाता है और वो बैट पकड़कर कुछ शॉट प्रैक्टिस करता दिखता है। अब उसके इसी काम के कारण वीडियो वायरल हो रहा है। बेल्जियम की एक युवती का भारतीय पान चखने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारत आने के बाद उसने पहली बार पान का स्वाद लिया और उसके चेहरे के भाव देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। किसी के लिए पान सिर्फ खाने की चीज होती है तो कुछ लोग इसे शौक और परंपरा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन विदेश से आई इस लड़की के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया और हैरान कर देने वाला था। यही वजह है कि इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो में पान बनाने की पूरी प्रोसेस भी दिखाई गई है। एलिस हर चीज को बड़ी दिलचस्पी से देखती हैं और बार बार सवाल पूछती रहती हैं। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सारी चीजों को मिलाकर कोई कैसे खा सकता है। एक पल पर तो वह मजाकिया अंदाज में कहती है कि यह किसी खाने की चीज से ज्यादा किसी अजीब प्रयोग जैसा लग रहा है। हालांकि थोड़ी देर झिझक के बाद आखिरकार एलिस पान चखने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वह पहला निवाला खाती है, उसके चेहरे के बदलते भाव लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। उसकी बड़ी होती आंखें साफ बता रही थी कि स्वाद उसके अनुमान से बिल्कुल अलग निकला। असम के मानस नेशनल पार्क का ये वीडियो है। बताया जा रहा है कि जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटकों पर अचानक एक गैंडे ने हमला कर दिया। दरअसल पर्यटकों से भरी एक सफारी जीप जंगल की सैर पर निकली थी। लोग कैमरे में जंगली जानवरों को कैद करने में बिजी थे, तभी अचानक एक विशालकाय गैंडा भड़क गया और उसने सीधे पर्यटकों से भरी जीप पर हमला कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि गैंडे ने अपनी पूरी ताकत से जीप के किनारे पर सींग मारना शुरू कर दिया। वो गाड़ी को पलटने की जिद पर अड़ा हुआ था। आप देखेंगे कि सफारी जीप खिलौने के माफिक हिल रही थी। एक बार तो गैंडे ने अपनी सींग से गाड़ी उठा ही ली थी, लगा जैसे कि कोई बड़ी अनहोनी होकर रहेगी, लेकिन तभी ड्राइवर ने गजब का हौसला दिखाया। बिना घबराए उसने गाड़ी को रिवर्स लेना शुरू किया। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर गैंडे का ध्यान भटकाने की कोशिश की। आखिरकार गैंडा पीछे हटा और किसी तरह पर्यटकों की जान में जान आई।

हनुमान जी के लिए इस दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। हनुमान जी के लिए सब कुछ संभव है। पर मेरे प्रियजनों और मेरे सज्जनों और मेरी आत्माओं सुनो, माया के गुलाम मत बनो। तुम्हें बनना ही है तो माधव के गुलाम बनो। माया के गुलाम बनोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, माधव के गुलाम बनोगे तो भगवान तुम्हारे साथ नाचेंगे। भगवान के पास व्यक्ति गया, भगवान कुछ दो, भगवान बोले हमारे पास देने के लिए दो चीजें, एक भक्ति एक माया, बताओ क्या चाहते हो। तो व्यक्ति ने कहा महाराज हमें दोनों का अर्थ समझाओ, भक्ति का अर्थ क्या, माया का अर्थ क्या, माया को पाने से क्या होगा, भक्ति को पाने से क्या होगा। मुस्कुराते हुए गोविंद ने कहा भैया अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले लो और मुझे नचाना है तो भक्ति ले लो। अगर मुझे नचाना तो भक्ति ले लो और मेरे पागलो, बात बिल्कुल सही है। माया के पुजारी बनोगे तो तुम्हें चिंता करनी पड़ेगी और भगवान के पुजारी बनोगे तो भगवान को चिंता करनी पड़ेगी।

चिंता सबको खाती है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हमारी प्रार्थना है तुम्हें महान बनना है तो याद रखना, आज की हमारी कथा को तुम अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना। मेरे पागलों, कोई भी इंसान भवनों से महान नहीं बनता है, भावनाओं से महान बनता है। साधन से महान नहीं बनता, साधना से महान बनता है। उच्चारण से महान नहीं बनता, उच्च आचरण से महान बनता है। तो अगर तुमको महान बनना है, एक ही उपाय है, क्या? प्रभु के चरणों को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? अरे जरा जोर से तो बोलो, किसको पकड़ लो? अच्छा महाराज, आप कोई उपाय बताइए कि भगवान को पाया जा सके। अरे उपाय क्या बताना, बहुत सरल उपाय है। कौन सा उपाय? एक है हमारी नजर में पोस्टमैन, जो तुम्हें राम जी से मिलवा सकते, तुम्हारी खबर को आदान प्रदान कर सकते। कौन?

0: राम जी की चर्चा हनुमान जी से। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो तुम्हारी खबर राम जी तक, राम जी की खबर तुम तक ला सकते हैं। इसलिए हमने आज की कथा में हनुमान जी को पोस्टमैन कहा। क्या कहा? बोलो बोलो बोलो। पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम क्या? खबर लाना और ले जाना। हनुमान जी का यही काम है, खबर लाना ले जाना। कोई भी भक्त रोता हुआ दिखाई देता राम जी के लिए, राम राम राम राम राम राम कहता हूं, हनुमान जी राम जी के पास जाकर कह देते सरकार अपना है। और हनुमान जी का सपोर्ट लगाने के बाद भगवान फिर गुण अवगुण नहीं देखते, उसको अपने गले लगा लेते हैं। है? महात्मा जिसका सपोर्ट कर दे, परमात्मा उसी को अपना बना लेते हैं। यही स्वभाव है श्री हनुमान जी महाराज का। इसलिए हमने कथा में, आज की कथा में सूत्र दिया, तुमरे भजन राम को पावे। हनुमान जी महाराज राम जी से मिलाने का सबसे बढ़िया सेतु है। सेतु मतलब पुल। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बुरा ना मानना। सच बात यह है, हम लोग भगवान को तो पाना चाहते हैं, भगवान के लिए तो घूम रहे हैं, पर भगवान को पाने के साथ साथ भगवान से कुछ और भी पाना चाह रहे हैं। हम लोग भक्ति भी करते हैं तो भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। हमें मकान मिल जाए, लुगाई मिल जाए, पड़ोसी सुधर जाए, दुश्मन मर जाए, गाड़ी बन जाए, यह हम भगवान से पाना चाहते हैं। हमारे प्रियजनों, हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर हम प्रभु को पा लेंगे तो हम सब कुछ पा लेंगे। भाई ऐसे समझो, जैसे किसी को समुद्र में घूमने का मौका मिले तो वो फिर छोटी मोटी नदियों में उतना आनंद नहीं ले पाएगा जितना समुद्र का आनंद है। और भगवान तो आनंद के सागर हैं। जब परमानंद पूर्ण राजा प्रभु श्री रघुनाथ जी राम जी मिल जाएंगे तो भैया संसार का सुख दुख हम लोगों का बाल बांका नहीं कर पाएगा, हम लोग तो सदा आनंद में ही जिएंगे। तो राम जी से मिलाने वाले कौन हैं? हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी राम जी से मिलाने वाले हैं। अच्छा, राम जी से मिलवाएंगे? परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपनी पुस्तक भक्त राज हनुमान में कहते हैं कि हनुमान जी पोस्टमैन हैं। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। अच्छा, हनुमान जी की एक और आदत है, जो भी राम राम राम राम राम राम जपता है हनुमान जी उसके पीछे पड़ जाते। कहां पड़ जाते भाई? आप जो भी सीताराम सीताराम जपता है उसके पीछे क्यों पड़ जाते हो? हनुमान जी बोले कहीं ये वापस लौट ना आए, इसलिए हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक वो राम जी से मिल ना ले तब तक हम पीछे पड़े ही रहते हैं। अच्छा, तो पीछे पड़ने वाले हनुमान जी ने किसी को मिलवाया राम जी से। पांच चर्चाएं आई पोस्टमैन। पहला, विभीषण जी को मिलवाया। रघुनाथ जी तक पहुंचाने का काम पहली बार विभीषण, पहली बार सुग्रीव जी को किया। विभीषण जी को मिलवाया, सुग्रीव जी को मिलवाया, लेकिन प्रारंभ सुग्रीव जी से किया। सुग्रीव जी से कहा हम आपको राम जी से मिलवाएंगे। आहा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं सुग्रीव भयभीत है, कह रहा हमें तो डर लग रहा महाराज, जीना मुश्किल है, आयु के दिन कम बचे, हो सकता हम ना जिएंगे, मर जाएंगे, कैसे राम जी से मिल पाएंगे। हनुमान जी बोले भैया तुम डरो मत, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही तुम्हारे पास राम जी को लेकर के आ जाएंगे। ये पहले पोस्टमैन हनुमान जी। दूसरी पोस्ट का काम कहां किया पोस्टमैन का? दूसरी बार विभीषण जी के पास में। और विभीषण जी के पास में तो ऐसा पोस्टमैन का काम किया, और धन्य है विभीषण जी, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जहां इन्होंने खबर दी, भैया हमारी जिंदगी तो राम जी ने बनाई है, वो बड़े दयालु हैं, तुम उनके चरण पकड़ लो। विभीषण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए और राम जी ने कृपा करके गले से लगा लिया। यह दूसरी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने किया। तीसरी बार कब किया पोस्टमैन का काम? जानकी जी की खबर को राम जी को दिया और रघुनाथ जी की खबर को जानकी माता को दिया। यह तीसरी बार पोस्टमैन का काम किया। चौथी बार पोस्टमैन का काम श्री हनुमान जी ने कब किया? सुकंत नाम के राजा के समय, जब सुकंत नाम के राजा को मारने के लिए भगवान राम ने प्रण ले लिया संत गुरु अपराध के लिए, तब फिर माता की आज्ञा से हनुमान जी ने पोस्टमैन का काम किया। अपनी पूंछ में सुकंत राजा को छिपा लिया और जब बाण लगा तो जब राम जी सिर के ऊपर हाथ हनुमान जी के घुमाने लगे, सोई सुकंत राजा को अपनी गोद में बैठाकर राम जी के हाथ को सुकंत राजा के माथ पर रखवा दिया। और पांचवी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने कब किया? आहाहा, पांचवी बार राम सेतु के समय पर किया। आहा, राम सेतु का पुल बन रहा, बड़ी बड़ी शिलाएं, बानर भालू अंगद दधीमुख केहरी नल नील सभी ला रहे हैं। हनुमान जी से कहा तुम बड़े बड़े पर्वत लेकर के आओ। हनुमान जी बड़ी बड़ी शिलाओं को, बड़े बड़े पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बनाया जा रहा, गिनती नहीं की जा रही, इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने पर्वत अनगिनत श्री हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे। पुल का काम अनवरत चल रहा। एक पर्वत को लाते समय रास्ते में सूचना मिली हनुमान जी को कि राम जी ने, रघुनाथ जी ने कहा राम सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो गया, अब पर्वत जो जहां है वहीं पर रख दो, यहां लाने की आवश्यकता नहीं है। एक पर्वत को लेकर उड़कर चले आ रहे थे हनुमान जी, उसी पर्वत को वहीं पर रख दिया, बीच रास्ते में रख दिया। वो जगह कौन सी थी? श्री धाम वृंदावन के नजदीक में गोवर्धन, वहां पर पर्वत को रखा तो वह पर्वत प्रकट होकर रोने लगा। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हाथ जोड़ते हुए गोवर्धन जी कहने लगे महाराज आज तक का रिकॉर्ड हमने देखा, आपको जिसने भी अपना बनाया या आपने जिसका भी हाथ पकड़ा वो भगवान से जरूर मिला, पर मेरा ऐसा कौन सा पाप है कि आपने मुझे हाथ पर भी रखा फिर भी मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा हूं। मेरे अपराध को बताया जाए, मेरी कौन सी भूल है जो मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा हूं? क्या मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे? क्या मैं भगवान से नहीं मिल पाऊंगा? आपने तो अपने हाथ पर रखा, आप तो महात्मा हैं, संतों के भी संत हैं, क्या राम जी के दर्शन नहीं होंगे? श्री हनुमान जी महाराज उसकी रोती हुई वाणी को सुनकर के बोले भैया तुम रो मत, भगवान की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, पर तुम चिंता मत करो, हम कुछ संदेशा राम जी से लाकर तुमको देते। राम जी के पास गए, सरकार सब पर्वतों को स्वीकार किया पर एक गोवर्धन नाम का पर्वत हम ला रहे थे सेतु बंधन के लिए, आपने मना कर दिया, हमने उसे बीच रास्ते में रख दिया। रख दिया सो तो कोई बुराई नहीं है, पर वो रो रहा है बेचारा, आंखों में आंसू भर के कह रहा क्या हमें भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे? राम जी बोले भैया हनुमान सेतु बंधन का काम तो पूरा हो गया, लेकिन अगर वह पर्वत रो रहा और तुमने उसे अपने हाथ पर रखा तो तुमने तो अपने हाथ पर रखकर अपने सम में रखा होगा, जाकर के तुम वचन दे आओ, हम द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे उस पर्वत को दर्शन भी देंगे और अपनी उंगली पर उठाकर अपने सिर पर रखेंगे। हम सम में नहीं, तुम महात्मा हो, महात्मा जिसे स्वीकार कर ले उसे हम सिर पर रखेंगे। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए, आहा हा। गोवर्धन पर्वत के पास आए, भैया तुम्हारे भाग्य खुल गए। क्या भाग्य खुल गए महाराज? क्या राम जी ने हमें बुलाया है? नहीं नहीं नहीं, जाना तो कैंसिल हो गया, टिकट तो कैंसिल हो गई, फ्लाइट बुक हो गई, जाना कैंसिल है, तो क्या हमें दर्शन नहीं मिलेंगे? अरे नहीं भैया, वचन दे दिया रघुनाथ जी ने। क्या? बोले द्वापर युग में जब वह कृष्ण अवतार लेंगे तब एक दिन नहीं, एक घड़ी नहीं, 7 दिन तक तुम्हें सरकार के दर्शन होंगे और अपनी अंगुली पर तुमको धारण करेंगे। वह पर्वत भी बड़े गदगद हो गए। इस कथा से सिद्ध होता है मेरे प्रिय जनों, मेरी आत्माओं, महात्मा जिसको गले लगा ले उसे परमात्मा भी गले लगा लेते हैं, और हनुमान जी जिसकी बाह पकड़ ले उसे राम जी प्राप्त हो जाते हैं। बोलो जय बजरंग बली, जोर से बोला। तो हनुमान जी महाराज की कथा क्यों आवश्यक है? क्योंकि हनुमान जी हैं पोस्टमैन। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। हनुमान जी का काम क्या? भक्त की कथा, भक्त की खबर भगवान को देना, भगवान का संदेशा भक्त को देना। इसीलिए कलयुग में तुम्हें राम जी के, शंकर जी के मंदिर मिले या ना मिले, पर हमारे बजरंग बली के मंदिर जरूर मिल जाएंगे। इसलिए कलियों में इनकी बड़ी महिमा है। इसलिए भैया, अगर भारत के लोग और भारत के युवान और भारत में रहने वाले प्रियजन अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं और हनुमान जी का चरित्र जीवन में उतारेंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो। हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं।
1: कौन सा अहंकार करने से धन का बड़ा नुकसान होता है? कौन सा अहंकार करने से सद्गुण वापस चले जाते हैं? और कौन सा अहंकार करने से जीवन में अपयश मिलता है? क्या है अहंकार का जीवन पर प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn is your MVP for everything sports audio, with live sports and a full lineup.

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोग

0: bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: आज खुलेंगे द्वितीय केदार भगवान मधमहेश्वर के कपाट। बाबा के स्वागत और दर्शन के लिए जुटे बड़ी संख्या में श्रद्धालु, चारों ओर शिवजी के जयकारों की गूंज। पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना, भक्तों में भारी उत्साह, 23 मई को खुल रहे हैं कपाट। चारधाम यात्रा पर पहुंचे अभिनेता आशुतोष राणा, केदारनाथ बद्रीनाथ में दर्शन कर खुद को बताया सौभाग्यशाली। यात्रा के दौरान धाम में व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पुलिस के मुरीद हुए। प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत दिल्ली के रिज इलाके में 45.8 डिग्री तक पहुंच गया तापमान, ऑरेंज अलर्ट जारी। 48 डिग्री के साथ उत्तर प्रदेश का बांधा देश में सबसे गर्म। मई महीने में कश्मीर के बांदीपुरा में जबरदस्त बर्फबारी, मैदानों की गर्मी से छुटकारा पाने के लिए बड़ी संख्या में कश्मीर का रुख कर रहे हैं सैलानी। तमिलनाडु के कोडाई कनाल में 63वें सालाना फ्लावर शो का कल से हुआ आगाज, करीब 2.5 लाख से ज्यादा फूलों का हो रहा है दीदार, फूलों से बनी कलाकृतियां आकर्षण का मुख्य केंद्र।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: उत्तराखंड के द्वितीय केदार धाम पर आस्था का सैलाब, आज पूरे धूमधाम से खोले गए बाबा मधमहेश्वर बाबा के कपाट। फूलों से की गई मंदिर की भव्य सजावट, हर तरफ जारी वैदिक मंत्रोच्चार, महादेव के दर्शन करने के लिए लंबी कतार। मुख्यमंत्री के ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना होकर रासी और गोंडार गांव से होते हुए धाम पहुंची बाबा मधमहेश्वर, उत्सव की डोली महादेव के जयघोष से गुंजायमान हुआ आसमान। अगले 6 महीने तक यहीं होंगे बाबा मधमहेश्वर के नियमित दर्शन पूजन। सर्दियों में बर्फबारी के कारण मुख्य मंदिर के कपाट बंद होने पर मुख्यमंत्र लाई जाती है भगवान की उत्सव डोली। पंच केदार में दूसरे केदार के रूप में पूजा जाते हैं मधमहेश्वर मंदिर में भगवान शिव के नाभि के आकार के स्वयंभू शिवलिंग की भी पूजा। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा में इस बार भी आस्था उत्साह और श्रद्धा का अद्भुत संगम। बद्रीनाथ धाम में आस्था का महासैलाब, 1 महीने से भी कम समय में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। केदारनाथ में भी टूटा भक्तों की संख्या का रिकॉर्ड, 1 दिन में 29,500 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 10,000 से ज्यादा यात्रियों का हुआ सफल रेस्क्यू, SDRF और NDRF की संयुक्त टीमों ने चुनौतीपूर्ण हालातों में रेस्क्यू किया। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर अचानक हुए भूस्खलन से बाधित हो गया था केदारनाथ यात्रा मार्ग, जिसके बीच रास्ते में फंसे हुए थे हजारों श्रद्धालु। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है प्रशासन, राम मंदिर परिसर में लागू की गई है त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए खासकर वीकेंड पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। मंदिर परिसर में सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों की हो गई तैनाती, संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत नजर। श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन कराने के लिए मंदिर में बढ़ाया गया दर्शन का समय, सुरक्षा के लिए सर्विलांस टीम तैनात। अत्याधुनिक सीसीटीवी और AI आधारित कैमरों से निगरानी की पूरी व्यवस्था, राम मंदिर की 3.5 किलोमीटर लंबी नई सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य तेज। हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा से रवाना हुआ पहला जत्था भव्य रूप से रवाना किया गया जत्था। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू ने जत्थे को दिखाई हरी झंडी। भिवाड़ की आस्था के प्रमुख केंद्र श्री सांवलिया सेठ मंदिर में एक बार फिर से भक्त ने चढ़ाई अनोखे भेंट, चांदी से बना दिल किया था। ठाकुर जी को चढ़ाए गए इस खास चांदी से निर्मित हार्ट का वजन है 197 ग्राम। बैंड बाजों के साथ घर से चांदी का हार्ट लेकर मंदिर पहुंचे श्रद्धा और उत्साह के साथ भक्त, चर्चा का विषय बना भगवान को अर्पित किया गया यह अनोखा चांदी का हार्ट। आध्यात्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, बेटी के साथ भगवान के दर्शन। प्रसिद्ध माधा कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में लगाई हाजिरी, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। कोडाई कलान के ब्रायंट पार्क में 63वें पुष्प प्रदर्शनी और ग्रीष्मकालीन उत्सव का उद्घाटन। कई किस्मों के प्रदर्शन का अलावा अगर हम देखें तो सब्जियों और फलों से बनी अलग अलग तरह की आकृतियां भी नजर आई। पूरे देश से पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर लगातार आकर्षित कर रहा है यह फ्लावर शो। भारत और विदेशों से मंगाई गई हैं फूलों की कई किस्म। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में निकाली गई मेगा पदयात्रा और बाइक रैली, प्रदेश में चल रहे नशा विरोधी अभियान के प्रति नेक पहल। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, युवाओं और आम जनता को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कराया गया। कार्यक्रम के दौरान चलाया गया विशेष सिग्नेचर कैंपेन, स्कूली बच्चे भी बने इस नशा विरोधी अभियान के हिस्सा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जमकर तरबूज और खरबूजे की खेती कर रहे हैं किसान। तरबूज की खेती के लिए बहुत अनुकूल है यहाँ वातावरण। बाजार में छतरपुर के तरबूज की भारी डिमांड, किसानों की हो रही है बंपर कमाई। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में कश्मीर के रुख कर रहे हैं सैलानी, बांदीपुरा में बड़े पर्यटक। ऊंचाई के इलाके में हुई ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, इस मौसम में अचानक हुई बर्फबारी। सैलानियों में एक प्रमुख आकर्षण के तौर पर उभरा है लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बांदीपुरा का रजदान पास। चारों ओर बिछी हुई बर्फ नजर आ रही है, सफेद चादर प्रकृति के नजारे का दीदार कर रहे हैं सैलानी। स्नो गेम्स का भी मजा लेते हुए नजर आए पर्यटक। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय कारोबारी खुश। महोत्सव से पहले अयोध्या में तैयारियां तेज, श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाई जा रही है पानी की व्यवस्था, धूप से बचाव के लिए भी छांव का इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी, पारा 44 डिग्री के पार, कई इलाकों में 45 डिग्री से ज्यादा तापमान। दिल्ली में चिलचिलाती धूप में जारी है निर्माण कार्य, तुगलकाबाद में मजदूर कर रहे हैं दिन भर काम। दिल्ली सरकार की मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट सड़कों पर सक्रिय। दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम शुरू, रेखा सरकार और एमसीडी के कर्मचारी घर से कर रहे हैं काम, हर हफ्ते बुधवार शनिवार को होगा वर्क फ्रॉम होम। आईपीएल के 65वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत, मुंबई इंडियंस को 4 विकेटों से हराया। जीत के साथ केकेआर की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बरकरार है, जबकि मुंबई की टीम की 13 मैचों में ये 9वीं हार। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रखा 148 रनों का लक्ष्य, जिसे कोलकाता की टीम ने 19वें ओवर में हासिल किया। जीत के साथ अंक तालिका में भी मजबूत हो गई कोलकाता की टीम की स्थिति, टैली में छठे पायदान पर पहुंची केकेआर। कोलकाता की इस जीत के साथ अब पंजाब और राजस्थान की टीमों पर दबाव, 13-13 अंकों पर है केकेआर और पंजाब की टीम। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। पहले ही प्लेऑफ में एंट्री पा चुकी है गुजरात की टीम, चेन्नई के खिलाफ जीत हासिल करके टॉप टू में जगह बनाने की कोशिश। अंक तालिका के साथ अंक तालिका में भी आरसीबी के बाद दूसरे पायदान पर है गुजरात टाइटंस। चेन्नई के लिए मैच खास लड़ाई है, हर का मतलब होगा लगातार तीसरा ऐसा सीजन जिसमें टीम प्लेऑफ में नहीं बना पाएगी जगह। दोनों टीमों ने अभी तक आईपीएल में 9 मैच खेले हैं, जिसमें से 5 मैच जीती नहीं जीते, और जबकि सीएसके ने 4 मैच जीते। बुलबुलैया 2 के पूरे हुए 4 साल, निर्देशक अनीस बज्मी ने जताया आभार, शेयर किया पोस्ट। और फिल्म खेती की फर्स्ट लुक आई, निकलकर सामने जैकी श्रॉफ और शरद किलकर नजर आए। मशहूर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की वेब सीरीज पीटर एंड पेट्रो का टीजर हुआ रिलीज, 3 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर होगी स्ट्रीम। आपने बताया कि वेब सीरीज से एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं वीर हिरानी, वेब सीरीज में अरशद वारसी भी नजर आए। ओटीटी पर फिर से देखेगा मिश्रा परिवार का मजेदार ड्रामा, 5 जून को सोनी लिप पर रिलीज होगी गुल्लक सीजन 5। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में प्रेहिस्टोरिक ओशन प्रेडेटर्स की थीम पर प्रदर्शनी खींच रही है लोगों का ध्यान। जुरासिक ओशंस मॉन्स्टर्स ऑफ द डीप रखा गया है प्रदर्शनी के नाम। प्रदर्शनी में दिखाए जा रहे हैं डायनासोर समेत जुरासिक काल की मछलियों, शार्क और एमोनाइट के साथ साथ कई उस जमाने के कई दुर्लभ जानवर के अवशेष। स्पेशल फैक्ट्स और इंटरएक्टिव सेशन के जरिए दी जा रही है जुरासिक काल की जानकारी। जनवरी 2027 तक चलेगी जुरासिक ओशंस मॉन्स्टर्स ऑफ द डीप प्रदर्शनी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
4: Thank God I get to wake
3: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
2: Thank God I get to wake up.
1: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: The Tailgate Top 20.
4: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
3: The Tailgate Top 20.
5: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
4: Try to keep up.
6: न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुणों की वजह से, योग्यता की वजह से व्यक्ति के अंदर अहंकार आ सकता है और आ जाता है, लेकिन अगर आप किसी चीज का अहंकार करते हैं तो वो आपके जीवन पर क्या असर डालता है, आज इस विषय में बात करेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अहंकार के बारे में, घमंड के बारे में। कौन से ग्रह अहंकार पैदा करते हैं, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है। देखिए, अहंकार जो है ये मन से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे पहले व्यक्ति के मन में, उसकी सोच में अहंकार पैदा होता है और मन से आगे बढ़कर ये व्यवहार तक पहुंच जाता है। हर ग्रह मजबूत होने पर, ताकतवर होने पर अपनी तरह का अहंकार पैदा करता है, लेकिन अहंकार में सबसे बड़ी भूमिका जो देखी गई है वो बृहस्पति और चंद्रमा की होती है। बृहस्पति कुंडली में ज्यादा लीड करे तो व्यक्ति को परम अहंकारी बना देता है और अन्य ग्रहों के साथ मिल करके ये विभिन्न प्रकार के अहंकार पैदा करता है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि अहंकार तो नुकसान करता है, इसीलिए किसी भी तरह का अहंकार हो वो जीवन में समस्या पैदा करेगा। हर तरह का अहंकार विशेष तरह की समस्या पैदा कर देता है। अब ये जानते हैं कि सूर्य किस तरह का अहंकार देता है और ये अहंकार आपको कहां नुकसान पहुंचाता है। सूर्य वैभवशाली परंपरा का और खानदान का अहंकार पैदा करता है। मेरे पिताजी ये थे, मेरे दादा वो थे, मेरा खानदान ऐसा है, ये अहंकार सूर्य देता है। कुंडली में सूर्य ज्यादा मजबूत हो जाए तो खानदान और परंपरा का अहंकार पैदा होता है। आम तौर पर मेष, सिंह और धनु राशि वालों को ये अहंकार ज्यादा होता है और अगर आप इस तरह का अहंकार करते हैं तो संतान को लेकर, संतान पक्ष को लेकर जीवन में समस्या पैदा हो जाती है। देखिए, वैसे तो हर तरह के अहंकार के पीछे चंद्रमा होता ही है, लेकिन चंद्रमा एक अलग तरह का अहंकार भी देता है। क्या करता है चंद्रमा? गुणों का अहंकार पैदा करता है। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा पेंटिंग करता हूँ, मैं बहुत सुंदर तरीके से काम करती हूँ, मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है, ये जो गुण हैं आपके, इसको लेकर के चंद्रमा वालों को अहंकार होता है। इसके अलावा कभी कभी क्लास का अहंकार भी हो जाता है कि मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरे बात करने का तरीका, मेरे खाना खाने का तरीका बड़ा क्लासी है। क्लास का अहंकार भी चंद्रमा वालों को होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को इस तरह का अहंकार ज्यादा होता है और ये अहंकार बड़ा खतरनाक है, क्योंकि गुण आता है ईश्वर की कृपा से और गुण होने के बावजूद अगर आप ये अहंकार पालते हैं तो आपकी किस्मत बिल्कुल उल्टी हो जाती है। आपके गुण धीरे धीरे आपसे वापस ले लिए जाते हैं। अब मंगल किस तरह का अहंकार देता है, किस तरह का दंभ देता है? मंगल जो है वो शक्ति और ताकत का अहंकार पैदा करता है। आप आर्मी में बड़े अफसर हो गए, आप पुलिस में चले गए, आप कोई ऐसा पद पा गए जीवन में जो बड़ा ताकतवर पद है, तो शक्ति और ताकत का अहंकार मंगल आपके अंदर पैदा कर देता है। और मंगल वाले अहंकार में लोग अहंकार में आके अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में ताकत का अहंकार जल्दी आ जाता है। अगर आप अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का, अपने पावर का अहंकार करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो जीवन में आपके रिश्ते टूटेंगे, आपके परिवार के लोग आपसे लगातार दूर होते चले जाएंगे। बुध किस तरह का अहंकार देता है और उसका नुकसान क्या है? देखिए, बुध अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता का अहंकार देता है। बुध वाले जो होते हैं ना, वो बड़े इंटेलिजेंट, बड़े शार्प ब्रेन के, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत होता है, मुश्किल से मुश्किल समस्या को हल कर लेते हैं। ये जो गुण है बुध का, इसका अहंकार इनको बहुत होता है कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। ये किसी और को अपनी बुद्धि के आगे, अपनी चालाकी के आगे कुछ नहीं समझते। मिथुन, कन्या और मकर वालों के अंदर अपनी बुद्धि का, अपने ब्रेन का अहंकार बहुत होता है। अब इनकी मुश्किल क्या है? अगर आपके अंदर अपनी बुद्धि का, अपनी योग्यता का ज्यादा अहंकार है ना, तो जीवन में कई कई बार आपको धन का बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कृपा करके इस तरह का अहंकार मत पालिए। सबसे ज्यादा जो ग्रह आदमी को दंभी और अहंकारी बनाता है वो है बृहस्पति। क्या कनेक्शन है अहंकार से? बृहस्पति वाले अपने ज्ञान को लेकर, मैं बड़ी पूजा पाठ करता हूं, मुझे बड़े मंत्र याद हैं, मुझे बड़े श्लोक याद हैं, अपने ज्ञान को लेकर अहंकारी होते हैं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे दादाजी बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत बड़े महंत थे, ज्ञान का, पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत अहंकार होता है। इस अहंकार के कारण होता क्या है कि ये बड़बोले हो जाते हैं, इनका वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता, किसी को कुछ भी कभी भी बोल देते हैं। अक्सर लोगों को अपने ज्ञान से परेशान करते हैं, लोगों को उलझा देते हैं। कोई आदमी सही काम कर रहा है, उसको कहेंगे अरे फला जगह तो ऐसा लिखा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अब वो परेशान हो गया, तो अपने ज्ञान से दूसरों को परेशान भी करते रहते हैं। वृषभ, कन्या, धनु, मकर और मीन वालों में अपने ज्ञान, अपनी विद्वता का अहंकार बहुत होता है। और होता क्या है कि ये जो जितने ये अपने ज्ञान से अहंकारी होते हैं ना, उतना ही इनको जीवन में बदनामी का, अपयश का सामना करना पड़ता है। शुक्र भी आदमी के अंदर अहंकार पैदा करता है। कैसा अहंकार? शुक्र वाले बड़े ग्लैमरस होते हैं, आमतौर पे दिखते भी अच्छे हैं, रूप सौंदर्य अच्छा होता है, बड़े ग्लैमरस, बड़ा लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। तो शुक्र वालों को अपने रूप सौंदर्य का, अपने शानो शौकत का, अपने झाम ताम का बड़ा अहंकार होता है। मैंने ये घड़ी 10 लाख की खरीदी, तुरंत फोटो सोशल मीडिया पे डाल देंगे, ठीक है ना? मतलब मेरे पास क्या है, वो दिखावे की टेंडेंसी, वो अहंकार शुक्र से आता है। और ये लोग इस अहंकार के कारण अक्सर मूर्ख बनते हैं, लोग उनको मूर्ख बनाते हैं और धन की बर्बादी होती है इनकी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों में ये अहंकार जल्दी आ जाता है अगर उनका शुक्र डोमिनेटिंग हो तो। इस अहंकार के कारण इनको जीवन में आकस्मिक धन की हानि होती है और लोग इनकी प्रशंसा करके इनसे खूब पैसे खर्च करवाते हैं और ये दिखावे के मामले में बड़ी मुश्किल में हमेशा पड़े रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं मानते। दिखावा करना, अहंकार करना, चीजों को शो ऑफ करना, ये इनके अंदर बहुत होता है। शनि वैसे तो देखिए अहंकारी नहीं है लेकिन शनि भी कभी कभी आदमी को अहंकार देता है। कैसा अहंकार? शनि वालों को काम करने की योग्यता का अहंकार होता है। जितना मैं काम कर सकता हूं उतना तुम नहीं कर पाओगे। मैं सुबह से रात तक काम करता हूं, मैं दिन रात काम करता हूं, मैं एक ही दिन में ये भी कर दिया वो भी कर दिया, मैं सब संभाल लेता हूं या सब संभाल लेती हूं। ये योग्यता, काम करने की योग्यता का अहंकार इनके अंदर आता है और ये लोग किसी और के काम को अपनी मेहनत के आगे, अपने काम के आगे कुछ नहीं समझते। अगला कितनी भी मेहनत करे इनको लगता है मेरे से ज्यादा मेहनत थोड़ा ना कर रहा है इसलिए मैं ज्यादा बेहतर हूं। तो इनको अपने काम करने का, मेहनत का अहंकार होता है। वृषभ सिंह कन्या और मकर वालों के अंदर ये अहंकार आ जाता है अगर शनि प्रबल हो जाए। और होता क्या है, अपनी मेहनत और काम का अहंकार अगर आप करेंगे ना तो करियर में उतार चढ़ाव का सामना आपको जीवन में करना पड़ेगा। अगर आपको अपने रिश्तों की समस्या दूर करनी है तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को लाल फूल और तुलसी दल ये आप अर्पित करके प्रार्थना करिए। जिस रिश्ते में समस्या है उस रिश्ते की मुश्किल दूर हो जाएगी। कि अगर आपका मन पूजा उपासना में नहीं लगता हो तो क्या उपाय करेंगे, पूजा का स्थान और पूजा करने का समय एक रखिएगा। रोज शाम को पूजा करते हैं 7 बजे तो 7 बजे ही करिए और जहां बैठ के करते हैं वहीं बैठ के करिए। पूजा करने के पहले हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में मन लगाने की प्रार्थना करिएगा और पूजा समाप्त करने के बाद अपने कर्मों को और अपनी चिंताओं को भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: आज खुलेंगे द्वितीय केदार, भगवान मदमहेश्वर के कपाट, बाबा के स्वागत और दर्शन के लिए जुटे बड़ी संख्या में श्रद्धालु, चारों ओर शिवजी के जयकारे की गूंज। पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना, भक्तों में भारी उत्साह, 23 मई को खुल रहे हैं कपाट। चारधाम यात्रा पर पहुंचे अभिनेता आशुतोष राणा केदारनाथ बद्रीनाथ में दर्शन कर खुद बताया सौभाग्यशाली, यात्रा के दौरान और धाम में व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पुलिस के मुरीद हुए एक्टर। प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत दिल्ली की रिज इलाके में 45.8 डिग्री तक चढ़ गया तापमान, ऑरेंज अलर्ट जारी, 48 डिग्री के साथ उत्तर प्रदेश का बांदा देश में सबसे गर्म। मई महीने में कश्मीर के बांदीपुरा में जबरदस्त बर्फबारी, मैदानों में गर्मी से छुटकारा पाने के लिए बड़ी संख्या में कश्मीर का रुख कर रहे हैं सैलानी। तमिलनाडु के कोडाई कनाइल में 63वें सालाना फ्लावर शो का कल हुआ आयोजन, करीब 2.5 लाख से ज्यादा फूलों का हो रहा है दीदार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
6: नमस्कार।
5: देखिए, कहते हैं अहंकार यानी कि जो ईगो होते हैं ना, वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। किस तरीके से अहंकार के कारण आपकी किस्मत, आपके भाग्य जो है वो बदल सकता है, खराब हो सकती है आपकी किस्मत, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
0: अगर आपको अपने रिश्तों की समस्या दूर करनी है तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को लाल फूल और तुलसी दल ये आप अर्पित करके प्रार्थना करिए। जिस रिश्ते में समस्या है उस रिश्ते की मुश्किल दूर हो जाएगी।
5: तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 21 मई 2026 यानी बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 21 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 8:26 तक, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
5: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार वो कौन से ग्रह हैं जो आपको अहंकारी बनाते हैं, और ज्योतिष और अहंकार का क्या संबंध है, आइए पंडित जी से ही जान लेते हैं।
0: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अहंकार के बारे में, घमंड के बारे में। कौन से ग्रह अहंकार पैदा करते हैं, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है? देखिए, अहंकार जो है ये मन से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे पहले व्यक्ति के मन में, उसकी सोच में अहंकार पैदा होता है, और मन से आगे बढ़कर ये व्यवहार तक पहुंच जाता है। हर ग्रह मजबूत होने पर, ताकतवर होने पर अपनी तरह का अहंकार पैदा करता है, लेकिन अहंकार में सबसे बड़ी भूमिका जो देखी गई है वो बृहस्पति और चंद्रमा की होती है। बृहस्पति कुंडली में ज्यादा लीड करे तो व्यक्ति को परम अहंकारी बना देता है और अन्य ग्रहों के साथ मिल करके ये विभिन्न प्रकार के अहंकार पैदा करता है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि अहंकार तो नुकसान करता है, इसीलिए किसी भी तरह का अहंकार हो वो जीवन में समस्या पैदा करेगा। हर तरह का अहंकार विशेष तरह की समस्या पैदा कर देता है।
5: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, परिवार में शांति रखें, करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, संतान की चिंता हो सकती है। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य और अहंकार का आखिर क्या कनेक्शन है।
0: अब ये जानते हैं कि सूर्य किस तरह का अहंकार देता है और ये अहंकार आपको कहां नुकसान पहुंचाता है। सूर्य वैभवशाली परंपरा का और खानदान का अहंकार पैदा करता है। मेरे पिताजी ये थे, मेरे दादा वो थे, मेरा खानदान ऐसा है, ये अहंकार सूर्य देता है। कुंडली में सूर्य ज्यादा मजबूत हो जाए तो खानदान और परंपरा का अहंकार पैदा होता है। आम तौर पर मेष, सिंह और धनु राशि वालों को ये अहंकार ज्यादा होता है और अगर आप इस तरह का अहंकार करते हैं तो संतान को लेकर, संतान पक्ष को लेकर जीवन में समस्या पैदा हो जाती है।
5: तो चलिए इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा और अहंकार का क्या कनेक्शन है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं।
0: देखिए, वैसे तो हर तरह के अहंकार के पीछे चंद्रमा होता ही है, लेकिन चंद्रमा एक अलग तरह का अहंकार भी देता है। क्या करता है चंद्रमा? गुणों का अहंकार पैदा करता है, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा पेंटिंग करता हूँ, मैं बहुत सुंदर तरीके से काम करती हूँ, मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है, ये जो गुण हैं आपके, इसको लेकर के चंद्रमा वालों को अहंकार होता है। इसके अलावा कभी कभी क्लास का अहंकार भी हो जाता है कि मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरे बात करने का तरीका, मेरे खाना खाने का तरीका बड़ा क्लासी है। क्लास का अहंकार भी चंद्रमा वालों को होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को इस तरह का अहंकार ज्यादा होता है और ये अहंकार बड़ा खतरनाक है क्योंकि गुण आता है ईश्वर की कृपा से और गुण होने के बावजूद अगर आप ये अहंकार पालते हैं तो आपकी किस्मत बिल्कुल उल्टी हो जाती है। आपके गुण धीरे धीरे आपसे वापस ले लिए जाते हैं।
5: तो बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता दिखाई दे रहा है, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रही हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न रीता जी ने हमें लिखा है और रीता जी हमें मेल लिखती हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 19 अक्टूबर 1989, जन्म का समय शाम के 6 बजे, जन्म का स्थान है गाजीपुर उत्तर प्रदेश। रीता जी कह रही हैं कि मैं अभी एक जगह नौकरी कर रही हूं, लेकिन मेरे नौकरी में उतार चढ़ाव बहुत है और मैं नौकरी बदलना चाहती हूं और चाहती हूं कि वाराणसी के आसपास ही कोई नौकरी मिल जाए मुझे, तो मुझे बेहतर नौकरी कब तक मिल सकती है या मुझे कोई व्यापार करना चाहिए। रीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, आपके लिए अच्छा होगा कि आप शिक्षा क्षेत्र का, स्टेशनरी का, मेडिकल का, दवाइयों का कोई व्यापार करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और इसी समय जून से अक्टूबर के बीच में अगर आप व्यापार शुरू कर दें, छोटे लेवल पर ही शुरू कर दें, तो भी आगे आपको तरक्की बहुत मिलेगी। आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा है, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप व्यापार में जाइएगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा।
5: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि पंडित जी से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल जिसका आप इंतजार करते हैं वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न सुरेंद्र वर्मा जी ने हमें लिखा है और सुरेंद्र वर्मा जी हमें आगरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 मार्च 1973, जन्म का समय रात में 9 बजे, जन्म का स्थान है शिकोहाबाद। मेल लिखते हैं आगरा से। ये लिख रहे हैं कि मेरे स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, 2 बार मेरी सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी है, तो आगे मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, आपकी जो कुंडली बनती है उसमें आगे कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव बहुत है, चिंताएं बहुत हैं, स्ट्रेस बहुत है, जिसकी वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो आप ऐसा करिए, एक तो रोज सुबह शाम 1-1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, 1 बार सुबह 1 बार शाम को। नहीं पढ़ पाते हैं तो मोबाइल पर लगा करके सुन लीजिएगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनिए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, चीजें बेहतर हो जाएंगी।
5: अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में, तो आखिरकार मंगल और अहंकार इन दोनों का क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं।
0: अब मंगल किस तरह का अहंकार देता है, किस तरह का दंभ देता है? मंगल जो है वो शक्ति और ताकत का अहंकार पैदा करता है। आप आर्मी में बड़े अफसर हो गए, आप पुलिस में चले गए, आप कोई ऐसा पद पा गए जीवन में जो बड़ा ताकतवर पद है, तो शक्ति और ताकत का अहंकार मंगल आपके अंदर पैदा कर देता है। और मंगल वाले अहंकार में लोग अहंकार में आके अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में ताकत का अहंकार जल्दी आ जाता है। अगर आप अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का, अपने पावर का अहंकार करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो जीवन में आपके रिश्ते टूटेंगे, आपके परिवार के लोग

0: कर वालों के अंदर अपनी बुद्धि का, अपने ब्रेन का अहंकार बहुत होता है। अब इनकी मुश्किल क्या है, अगर आपके अंदर अपनी बुद्धि का, अपनी योग्यता का ज्यादा अहंकार है ना, तो जीवन में कई कई बार आपको धन का बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कृपा करके इस तरह का अहंकार मत पालिए।
1: तो चलिए आप बात कर लेते हैं बृहस्पति और अहंकार के कनेक्शन के बारे में, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: सबसे ज्यादा जो ग्रह आदमी को दंभी और अहंकारी बनाता है वो है बृहस्पति। क्या कनेक्शन है अहंकार से, बृहस्पति वाले अपने ज्ञान को लेकर, मैं बड़ी पूजा पाठ करता हूं, मुझे बड़े मंत्र याद हैं, मुझे बड़े श्लोक याद हैं, अपने ज्ञान को लेकर अहंकारी होते हैं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे दादाजी बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत बड़े महंत थे, ज्ञान का, पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत अहंकार होता है। इस अहंकार के कारण होता क्या है कि ये बड़बोले हो जाते हैं, इनका वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता, किसी को कुछ भी कभी भी बोल देते हैं, अक्सर लोगों को अपने ज्ञान से परेशान करते हैं, लोगों को उलझा देते हैं। कोई आदमी सही काम कर रहा है, उसको कहेंगे अरे फला जगह तो ऐसा लिखा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अब वो परेशान हो गया, तो अपने ज्ञान से दूसरों को परेशान भी करते रहते हैं। वृषभ, कन्या, धनु, मकर और मीन वालों में अपने ज्ञान, अपनी विद्वता का अहंकार बहुत होता है। और होता क्या है कि ये जो जितने ये अपने ज्ञान से अहंकारी होते हैं ना, उतना ही इनको जीवन में बदनामी का, अपयश का सामना करना पड़ता है।
1: बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनुराशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर और आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: तो चलिए बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। तो क्या आखिर शुक्र और अहंकार का भी कोई कनेक्शन है, आइए जानते हैं।
0: शुक्र भी आदमी

0: अंदर अहंकार पैदा करता है। कैसा अहंकार? शुक्र वाले बड़े ग्लैमरस होते हैं, आमतौर पे दिखते भी अच्छे हैं, रूप सौंदर्य अच्छा होता है, बड़े ग्लैमरस, बड़ा लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। तो शुक्र वालों को अपने रूप सौंदर्य का, अपने शानो शौकत का, अपने झाम ताम का बड़ा अहंकार होता है। मैंने ये घड़ी 10 लाख की खरीदी, तुरंत फोटो सोशल मीडिया पे डाल देंगे, ठीक है ना। मतलब मेरे पास क्या है, वो दिखावे की टेंडेंसी, वो अहंकार शुक्र से आता है। और ये लोग इस अहंकार के कारण अक्सर मूर्ख बनते हैं, लोग उनको मूर्ख बनाते हैं और धन की बर्बादी होती है इनकी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों में ये अहंकार जल्दी आ जाता है अगर उनका शुक्र डोमिनेटिंग हो तो। इस अहंकार के कारण इनको जीवन में आकस्मिक धन की हानि होती है और लोग इनकी प्रशंसा करके इनसे खूब पैसे खर्च करवाते हैं और ये दिखावे के मामले में बड़ी मुश्किल में हमेशा पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। दिखावा करना, अहंकार करना, चीजों को शो ऑफ करना, ये इनके अंदर बहुत होता है।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि शनि और अहंकार का आखिर एक दूसरे से क्या कनेक्शन है।
0: शनि वैसे तो देखिए अहंकारी नहीं है, लेकिन शनि भी कभी कभी आदमी को अहंकार देता है। कैसा अहंकार? शनि वालों को काम करने की योग्यता का अहंकार होता है। जितना मैं काम कर सकता हूं उतना तुम नहीं कर पाओगे, मैं सुबह से रात तक काम करता हूं, मैं दिन रात काम करता हूं, मैं एक ही दिन में ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, मैं सब संभाल लेता हूं या सब संभाल लेती हूं, ये योग्यता, काम करने की योग्यता का अहंकार इनके अंदर आता है। और ये लोग किसी और के काम को अपनी मेहनत के आगे, अपने काम के आगे कुछ नहीं समझते। अगला कितनी भी मेहनत करे इनको लगता है मेरे से ज्यादा मेहनत थोड़ा ना कर रहा है, इसलिए मैं ज्यादा बेहतर हूं। तो इनको अपने काम करने का, मेहनत का अहंकार होता है। वृषभ, सिंह, कन्या और मकर वालों के अंदर ये अहंकार आ जाता है अगर शनि प्रबल हो जाए। और होता क्या है, अपनी मेहनत और काम का अहंकार अगर आप करेंगे ना, तो करियर में उतार चढ़ाव का सामना आपको जीवन में करना पड़ेगा।
1: तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि अगर कोई बहुत अहंकारी है, बहुत ईगो है, उसे लगता है कि मेरे करके इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है, तो आखिरकार उसके अहंकार को वो किस तरीके से समाप्त कर सकता है।
0: देखिए वैसे तो अहंकारी व्यक्ति ये मानता ही नहीं है कि उसको अहंकार है, लेकिन अगर आपको लग रहा है, आपके आपको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर घमंड है, दंभ है, तो इसको कैसे समाप्त करें आप? रोज सुबह उठने के बाद अपने बड़ों के चरण स्पर्श करिए, उनके पैरों को छू करके आशीर्वाद लीजिए। झुकना सीखिए जीवन में, जब आप झुकना सीखेंगे तो ईश्वर आपको वैसे ही उठा देंगे, इसलिए झुकना सीखिए। रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्य देव के सामने खड़े होके या बैठ के कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। जिन लोगों के अंदर अहंकार की टेंडेंसी है, ऐसे लोगों को पन्ना और पुखराज पहनने से बचना चाहिए। पन्ना तो एक बार फिर भी चल जाएगा, पुखराज पहनने से बचना चाहिए। और सप्ताह में एक बार अन्न वस्त्र का दान जरूर करें, अपनी कमाई से जितना हो सके, जो सामर्थ्य है आपकी उस सामर्थ्य के अनुसार अन्न और वस्त्र का दान करें तो बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ कार्य आपके होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव के मामले में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ।

0: करियर में नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव समाप्त होगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपका सवाल ले लेते हैं। तो पंडित जी, बिना देर के हमारे दर्शकों को बताएं कि आज का तीसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न सीमा गुप्ता ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 अप्रैल 1982। जन्म का समय दोपहर में 3:45। जन्म स्थान है कानपुर। ये कह रही हैं कि मैं अभी अपने पिताजी के साथ रहती हूँ, माता पिता के साथ। मेरा विवाह नहीं हो पाया है, तो क्या कभी मेरा विवाह हो सकता है, या मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, विवाह के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। सीमा जी, आपकी कुंडली में विवाह की संभावनाएं अभी भी बनती हैं और ऐसा लगता है कि साल 2027 में किसी डिवोर्सी व्यक्ति से या किसी विडोवर से आपकी शादी हो सकती है। ये संभावना 2027 के आरंभिक समय में बन रही है और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने व्यक्ति के साथ होगा। रहेंगी तो आप कानपुर या कानपुर के आसपास ही, माता पिता की देखभाल कर पाएंगी, उसकी चिंता करने की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए हर रविवार को पार्वती मंगल का पाठ करिए, रविवार को दिन के समय में, और एक पीला पुखराज लगभग 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की सवेरे अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल ले लेते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि वो अगला सवाल किसका लेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम हर रोज देखते हैं, पसंद करते हैं और पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो पंडित जी, अगला सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
0: जी, अगला प्रश्न दीपिका जी ने हमें लिखा है और दीपिका जी हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 21 जून 1980। जन्म का समय दोपहर में 2:50। जन्म स्थान है गुवाहाटी, आसाम। ये कह रही हैं कि मैं अभी टीचिंग की नौकरी करती हूं और मेरी नौकरी ठीक चल रही है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट टीचिंग का काम करूं, अपना स्कूल खोल लूं या अपनी कोचिंग खोल लूं। क्या ऐसा रिस्क लेना मेरे लिए ठीक रहेगा? दीपिका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको स्वतंत्र काम करना ही चाहिए। आप अपना विद्यालय खोलें, अपना कोचिंग सेंटर खोलें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलें, ऐसा आप बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन ऐसा करने का जो सही समय है वो 2027 के अगस्त के बाद है। उसके बाद नौकरी छोड़ करके आप अपने शिक्षा के काम में जाइएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक मोती बनवा के पहने, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के आप पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अहंकार के बारे में बात हो रही है और अक्सर हम कहते हैं जो ईगो होती है, इंसान का अहंकार होता है, वो उसे ले डूबता है, वो गलत होता है, लेकिन क्या अहंकार अच्छा भी होता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
0: जी देखिए, वैसे तो अहंकार अच्छी चीज नहीं है और आप किसी भी चीज का अहंकार करेंगे वो चीज आपसे वापस ले ली जाएगी। लेकिन एक अहंकार सात्विक अहंकार माना जाता है और उसको अच्छा अहंकार मानते हैं, वो है भगवान की भक्ति का अहंकार। ये अहंकार नहीं कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, ये अहंकार कि मेरे पिता स्वयं भगवान हैं, भगवान मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मुझे जीवन में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, भगवान मुझे हमेशा देखते हैं, भगवान की दृष्टि में मैं हमेशा रहता हूं। ये अहंकार सात्विक अहंकार है और जब साधक के अंदर ये अहंकार आता है, भगवान की अहेतुकी कृपा उसको जीवन में प्राप्त हो जाती है।
1: तो जिनका जन्मदिन 21 मई को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से, हैप्पी बर्थडे। आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है, आइए इसके बारे में जानते हैं।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 21 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी, करियर और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा, इस साल स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी और की पूजा से या किसी और के मंत्र जप करने से आपको या किसी और को लाभ हो सकता है? किसी अन्य की पूजा से या जप से दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति के लिए अगर किया जा रहा है तो लाभ हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति पूजा या जप कर रहा है, जिसके लिए कर रहा है, उस दूसरे व्यक्ति से भावनात्मक रूप से जुड़ा होना चाहिए। बिना भावना के पूजा करें या मंत्र जप किसी के लिए भी करें, उसको कोई विशेष लाभ नहीं होगा।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो पंडित जी से जान लेते हैं कि 21 मई 2026 यानी कि दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर आखिर कौन सा है?
0: दिनांक 21 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा, ऐसा करने से शिक्षा और संतान के मामलों में उन्नति होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 21 मई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: चलिए अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं तो जल्दी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि, भाग्यशाली राशि कौन सी है।
0: आज की जो गुड लक राशि है वो है मीन राशि। इस समय हड्डियों और आंखों की समस्या का ध्यान दें, जीवनचर्या को, रूटीन को सुधारने का प्रयास करते रहिएगा।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर अब हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपका मन पूजा उपासना में नहीं लगता हो तो क्या उपाय करेंगे। पूजा का स्थान और पूजा करने का समय एक रखिएगा। रोज शाम को पूजा करते हैं 7 बजे, तो 7 बजे ही करिए और जहां बैठ के करते हैं वहीं बैठ के करिए। पूजा करने के पहले हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में मन लगाने की प्रार्थना करिएगा और पूजा समाप्त करने के बाद अपने कर्मों को और अपनी चिंताओं को भगवान को समर्पित कर दीजिएगा।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: you use AI every day. But what if you built what it runs on? WGU's online software engineering degree helps you turn your coding skills into a future-shaping career. Learn more at wgu.edu.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
7: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake up. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
0: इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: ये बात करेंगे सलमान खान की। पिछले कुछ दिनों से सलमान खान लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पहले सलमान की एक शर्टलेस तस्वीर के साथ उनकी तन्हाई की खबरें सुर्खियां बटोरती रहीं, जिसके लिए सलमान को खुद सफाई देनी पड़ी, और अब आधी रात को सलमान के एंग्री यंग मैन बनने की वजह चर्चा में बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए।
2: I told him, was not not practice or anyway.
3: इस वीडियो को गौर से देखिए। सलमान खान का चेहरा और एक्सप्रेशन साफ बता रहा है कि वो गुस्से में है। वीडियो में कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। एक तो सलमान खान की, जो गुस्से से भरी है। दूसरी जो उनके सामने खड़े हैं, लेकिन वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे, ये पेपराजी है, जो भाई भाई सॉरी भाई कहकर सलमान से माफी मांग रहे हैं। वीडियो से साफ पता चल रहा है कि पेपराजी की किसी बात ने सलमान खान को गुस्सा कर दिया है, जिससे सलमान को उन्हें डांटने फटकारने पर मजबूर होना पड़ा। इन तस्वीरों से यहाँ तक की बात तो समझ में आती है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि सलमान को उन्हें डांटने फटकारने की नौबत आई। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर माजरा है क्या। बीती रात सलमान खान अपने किसी करीबी को देखने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेपराजी ने सलमान को तब देखा जब उनकी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी और बाद में अस्पताल तक उनका पीछा किया। जैसे ही सलमान अस्पताल से बाहर निकले, कुछ फोटोग्राफर्स ने उनका ध्यान खींचने के लिए भाई भाई चिल्लाना शुरू कर दिया। सलमान खान ने तब उन्हें अस्पताल के पास चुप रहने को कहा और उनसे पूछा कि अगर उनके परिवार का कोई अस्पताल में भर्ती होता तो क्या वो ऐसे ही रिएक्ट करते। सलमान खान की नाराजगी यही खत्म नहीं हुई। पेपराजी के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ने उन्हें जहनी तौर पर इतना व्यथित किया कि अस्पताल से घर पहुंचने के बाद रात के करीब 3 बजे उनका गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। सलमान ने इंस्टाग्राम पर कई सेल्फी पोस्ट की, साथ ही पेपराजी को एक बार फिर नसीहत दे डाली। जिस प्रेस के लिए मैं खड़ा हूँ, जिनसे बातचीत की है, जिनकी देखभाल की है, ये सुनिश्चित किया कि वे भी अपनी रोजी रोटी कमा सके, लेकिन अगर वो मेरे नुकसान से पैसा कमाना चाहते हैं तो चुप रहें, मजा ना लें। सलमान ने इशारों इशारों में ये भी कहा कि अगर कोई उनकी निजी जिंदगी या मुश्किल वक्त का मजाक बनाने की कोशिश करेगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। सलमान ने आगे लिखा, 60 साल का हो गया हूँ लेकिन लड़ना नहीं भूला, ये याद रख लेना, जेल में डालोगे, हा हा हा। बेशक सलमान ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कुछ बातें मजाक में कही होंगी, लेकिन पेपराजी के व्यवहार से आहत सलमान के शब्दों में तलखी साफ झलक रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
4: इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए हैं और लोग इसे बार बार देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहे। इस वीडियो में एक शख्स अपनी गर्दन से करीब 9000 किलो वजन की बस को खींचता नजर आता है, जिसे देखकर लोग उसे ह्यूमन क्रेन कह रहे हैं। ये कारनामा अरूबा के रहने वाले एडमंड मोलिना ने किया है, जिन्होंने करीब 20 मीटर तक इस भारी बस को अपनी गर्दन के सहारे खींचकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उनके इस हैरान कर देने वाले स्टंट ने पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है और अब उनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में गिना जा रहा है। नन्ही बच्ची का ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसने अपनी मासूमियत से नेटिजन्स को लोटपोट कर दिया है।
5: मोदी जी आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर जाते हैं।
4: देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ खास अपीलें की थी, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस गंभीर मुद्दे पर जहां बड़े बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे हैं, वहीं एक मासूम बच्ची ने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया है कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं।
5: हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा है, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ।
4: इसके बाद वो हंसते हुए जो वजह बताती है, उसने इंटरनेट की पब्लिक को लोटपोट कर दिया है।
5: मोदी जी आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर ही जाते। हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा है, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं।
4: अमेरिका से एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। यहाँ एक महिला ने अपने पालतू एक्सोलोटल के साथ टिक टैक टो खेला और नतीजे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे महिला ने अपने एक्वेरियम के शीशे को ही गेमिंग बोर्ड बना दिया। महिला ने मार्कर से शीशे पर ग्रिड बनाई और खेल शुरू किया। महिला ने सबसे पहले एक्स बनाया, लेकिन असली मजा तब आया जब एक्वेरियम के अंदर बैठा नन्हा एक्सोलोटल भी एक्शन मोड में आ गया। जैसे ही महिला अपनी चाल चलती, एक्सोलोटल तैर कर ग्रिड के किसी खास खाने के पास जाकर अपना चेहरा टिका देता।

0: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटे बच्चे का मजेदार वीडियो देखकर लोग मुस्कुरा भी रहे हैं और उसकी बात से सहमत भी हो रहे हैं। वीडियो में बच्चा भीषण गर्मी में स्कूल जाने को लेकर अपनी नाराजगी मजाकिया अंदाज में जाहिर करता नजर आता है।
1: 40 डिग्री गर्मी में, कड़कती धूप में, पसीने से लथपथ हम बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। अरे यार, हम बच्चों में दया करो।
0: वो मासूमियत से कहता है कि अगर वो कभी प्रधानमंत्री बना तो पूरी गर्मी के दौरान स्कूल बंद कर देगा और बच्चों पर थोड़ी दया करेगा।
1: हम बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना, गर्मियों में स्कूल जाना बैन कर दूंगा। यू आर बेटर अंडरस्टैंड।
0: उसकी ये बेबाक बात और कॉन्फिडेंस लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चा जिस ईमानदारी और सादगी से अपनी बात रखता है वो इंटरनेट यूजर्स को काफी क्यूट लग रही है।
1: बच्चों में दया करो, हम बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना, गर्मियों में स्कूल जाना बैन कर दूंगा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
5: How they looked after game one.
6: I mean, they were frustrated.
4: The Daily.
7: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
4: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: आज खुलेंगे द्वितीय केदार भगवान मधमहेश्वर के कपाट। बाबा के स्वागत और दर्शन के लिए जुटे बड़ी संख्या में श्रद्धालु, चारों ओर शिवजी के जयकारों की गूंज।
3: पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था हुआ रवाना, भक्तों में भारी उत्साह, 23 मई को खुल रहे हैं कपाट।
2: चारधाम यात्रा पर पहुंचे अभिनेता आशुतोष राणा, केदारनाथ बद्रीनाथ में दर्शन करके खुद को बताया सौभाग्यशाली, धाम में व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पुलिस हुए मुस्तैद।
3: प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत, दिल्ली के रिज इलाके में 45 डिग्री तक चढ़ा पारा, आज भी गर्मी ऑरेंज का अलर्ट दिया जा रहा है। 48 डिग्री के साथ यूपी का बांदा देश सबसे गर्म।
2: मई महीने में कश्मीर के बांदीपुरा में जबरदस्त बर्फबारी, मैदानों की गर्मी से छुटकारा पाने के लिए बड़ी संख्या में कश्मीर का रुख कर रहे हैं सैलानी।
3: तमिलनाडु के कोडाईकनाल में 63वें सालाना फ्लावर शो का कल से हुआ आगाज, करीब 2.5 लाख से ज्यादा फूलों का हो रहा है दीदार, फूलों से बनी कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
2: उम्मीदों भर पैर की खुशियों भरी शुरुआत, नमस्कार सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ वैभव राज शुक्ला, नहीं सुबह नहीं आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज।
3: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की पांच उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबर।
2: देखिए शुभ समाचार की शुरुआत देवभूमि में चल रहे यात्रा महाकुंभ के साथ करेंगे। उत्तराखंड के पंच केदार में से द्वितीय केदार मधमहेश्वर के कपाट आज खुल जाएंगे। आज सुबह 11 बजे मधमहेश्वर की डोली अपने धाम पहुंचेगी और उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। महाभारत का लीन इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं, क्या है आगे आपको बताएंगे।
3: तो वहीं पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना हो गया, इस दौरान भक्तों ने भारी उत्साह दिखाई दिया। हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई से खुल रहे हैं, तो इससे जुड़ी और जानकारी भी आगे हम आपको देंगे।
2: गीतिका देखिए मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच लोग राहत के लिए पहाड़ों का रुख लगातार कर रहे हैं। कश्मीर के ऊपरी इलाकों बांदीपुरा में बर्फ लगातार देखने को मिल रही है, जहां पर दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से पहुंचे सैलानी सुकून महसूस कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड और हिमाचल से भी निकलकर सामने आई, कैसी तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे।
3: तो तमिलनाडु के कोडाईकनाल में 63वें सालाना फ्लावर शो का आगाज हो गया, यहाँ करीब 2.5 लाख से ज्यादा फूलों का दीदार हो रहा है, फूलों से बनी कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
2: या देखिए इसके अलावा आईपीएल में आज गुजरात और चेन्नई का मुकाबला होने जा रहा है, ये मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कैसी है दोनों टीमों की तैयारियां, लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में 9 बजे की नौबड़ी गुड न्यूज।
3: उत्तराखंड के द्वितीय केदारधाम पर आस्था का सैलाब आया है, आज पूरे धूमधाम से बाबा मधमहेश्वर के कपाट खोले जाएंगे। कपाट खोलने से पहले मंदिर की भव्य सजावट की गई, वहीं कपाट खोलने से पहले भक्तों की भारी भीड़ भी वहां उमड़ी हुई थी।
2: विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के बाद हेमकुंड साहिब धाम के कपाट भी 23 मई को खुलने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज ऋषिकेश लक्ष्मण झूला रोड स्थित हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा से यात्रा का विधि विधान के साथ शुभारंभ किया गया।
3: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का 33वां दिन, अभी तक चारधाम के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की संख्या 17,30,000 तक पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ में 7 लाख से अधिक भक्तों ने हाजिरी लगाई।
2: चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। वहीं पर चारधाम यात्रा में अभिनेता आशुतोष राणा भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने केदारनाथ बद्रीनाथ में दर्शन किए, उन्होंने खुद को सौभाग्यशाली बताया।
3: मेवाड़ की आस्था के प्रमुख केंद्र श्री सावलिया सेठ मंदिर में एक बार फिर भक्तों ने अनोखी भेंट चढ़ाई। भक्तों ने सावलिया सेठ को चांदी से बना दिल दान दिया जिसका वजन 197 ग्राम है। भक्त ने हार्ट सर्जरी की और मन्नत पूरी होने पर हार्ट भेंट किया।
2: आध्यात्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, बेटी के साथ भगवान के दर्शन पूजन किए, साथ ही साथ प्रसिद्ध माता कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में हाजिरी भी लगाई जहां पर सिद्धू ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की।
3: जम्मू कश्मीर में चल रहे नशा विरोधी अभियान के तहत नेक पहल की गई, जहां बनिहाल में मेगा पदयात्रा और बाइक रैली निकाली गई जिसमें लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया।
2: देश के मैदानी इलाकों में जारी भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए पर्यटक अब कश्मीर के अनछुए और ठंडे पहाड़ी इलाकों का लगातार रुख कर रहे हैं। इस बीच पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बांदीपुरा बन चुका है, जहां पर मई के महीने में भी बर्फ देखने को मिल गई जिसका आनंद सैलानी जमकर ले रहे हैं।
3: शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टार फिल्म कॉकटेल 2 का नया गाना माशूका रिलीज हो चुका है, जिसमें दोनों की मजेदार रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। मस्ती भरी केमिस्ट्री के अलावा डांस मूव भी इस गाने को खास बना रहे हैं। फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

0: देखिए शुभ समाचार की शुभ शुरुआत आस्था भक्ति और विश्वास की सबसे पवित्र नगरी देवभूमि उत्तराखंड से करेंगे, जहां पर इन दिनों देश विदेश से श्रद्धालु यात्रा करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। चार धाम यात्रा में अगर हम देखें आंकड़ा, एक महीने के भीतर ही 17 लाख को पार कर चुका है, जिसमें केदारनाथ ये 7 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए, यानी पूरी देवभूमि शिव भक्ति के रंग में पूरी तरीके से सराबोर है। और अब पंच केदार में शामिल केदारनाथ और रुद्रनाथ के बाद द्वितीय केदार मदमहेश्वर मंदिर के कपाट भी खुलने जा रहे हैं। आज से दर्शन के लिए मदमहेश्वर के कपाट खोले जाएंगे। उखी मठ से निकाली भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह डोली जल्द ही मदमहेश्वर धाम पहुंचने वाली है, और अब से कुछ घंटे में ही पवित्र और पावन धाम मदमहेश्वर के कपाट खुलने जा रहे हैं। मदमहेश्वर की यात्रा को लेकर भी भक्तों में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि मदमहेश्वर धाम की यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभूति का भी अनूठा संगम है। मदमहेश्वर में भगवान शिव की नाभि स्वरूप की पूजा हो जाती है, और ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच इसकी दिव्यता श्रद्धालुओं को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव कराती है। ऐसे में किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही, कितना जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं में, ये तस्वीरें देखिए।
1: उत्तराखंड के पंच केदार में से द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट आज खुल जाएंगे। आज सुबह 11 बजे मदमहेश्वर की डोली अपने धाम पहुंचेगी, उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान से मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। महाभारत कालीन इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां आने वाले भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।

0: द्वितीय केदार मध्य महेश्वर मंदिर में रौनक लौट आई है। 6 महीने के प्रवास के बाद आज भगवान अपने धाम लौट रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आज पूरे विधि विधान से मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद धाम में पहली बार भगवान दर्शन देंगे। भक्तों का उत्साह चरम पर है। मंदिर को फूलों से सजाया गया है। पहली झलक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ढोल दमाऊं की गूंज है। हर तरफ महादेव का जय घोष है। मध्य महेश्वर भगवान शिव को समर्पित पंच केदार मंदिरों में से दूसरा केदार माना जाता है। मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के गोंडार गांव में है, जो समुद्र तल से करीब 3,497 मीटर की ऊंचाई पर है। मंदिर के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की अलौकिक शांति यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सुकून से भर देती है। मंदिर के पीछे बर्फ से ढके चौखंबा और मंदानी चोटियों के शानदार नजारे दिखाई देते हैं, तो वहीं हरे भरे बुग्याल और जंगल इसकी प्राकृतिक सौंदर्य को और बढ़ा देते हैं। पंच केदार में मध्य महेश्वर को दूसरे केदार के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनवाया गया था। यहाँ भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज में हिमालय आए थे। तब शिव जी ने नंदी का रूप धारण किया और अंतर्धान हो गए। उनका नाभि का भाग इसी स्थान पर प्रकट हुआ था। तब पांडवों ने अपराध बोध और गोत्र हत्या के पापों से मुक्ति के लिए इस पवित्र स्थान पर शिव मंदिर का निर्माण किया था और यहाँ पूजा अर्चना की थी। मान्यता है कि पांडवों द्वारा स्थापित ये मंदिर मोक्ष और आध्यात्मिक ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। पंच केदार में भगवान शिव के 5 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। केदारनाथ में बैल रूपी शिव के कुबड़ की, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में मस्तक की, मध्य महेश्वर में नाभि की और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर पूरी श्रद्धा से महादेव के इस दिव्य रूप के दर्शन करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और बाबा की डोली को ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है और गर्मियों में मध्य महेश्वर की डोली वापस अपने धाम पहुंचती है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है। यहां पर 29 दिनों के भीतर 7 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं।

0: चार धाम यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, श्रद्धालुओं की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है। केदारनाथ धाम हो कि बद्री विशाल का दरबार, यमुनोत्री हो या गंगोत्री, श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में है। यहाँ महज 29 दिनों में ही 7 लाख से ज्यादा लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आस्था का आलम यह है कि यहाँ हर दिन करीब 25,000 श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। मौसम चाहे कैसा भी हो, भक्तों का उत्साह देखने लायक है। मंदिर परिसर हो कि यात्रा मार्ग, हर तरफ श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं।
1: द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी बाबा केदारनाथ के दरबार में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक 7 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि मौसम भी लगातार खराब हो रहा है और यात्री भी जगह जगह फंस रहे हैं, लेकिन प्रशासन की रेस्क्यू टीमें पैदल मार्च सहित धाम से यात्रियों को सुरक्षित कर रही हैं।
0: केदारनाथ धाम में भक्तों की बड़ी तादाद को देखते हुए व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद हैं। पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा कर्मी और आपदा प्रबंधन दल तैनात हैं, जो आपात स्थितियों में श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं। मंगलवार को सोन प्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर भूस्खलन से केदारनाथ यात्रा मार्ग बाधित हो गया, जिससे हजारों श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए थे। ऐसे में SDRF और NDRF की संयुक्त टीमों ने राहत और बचाव अभियान शुरू करके हजारों श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से रास्ता पार कराया। केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड बना रही है। एक महीने से भी कम समय में यहां अब तक 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा भी यहां भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने केदारनाथ धाम में भी हाजिरी लगाई।
2: पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका है और कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में हमारे चार धाम की यात्रा करना परम कल्याण का कारण होता है और ये मेरे परम सौभाग्य पर भगवान की कृपा कि केदारनाथ जी के दर्शन हो, श्री बद्रीनाथ जी दर्शन हुए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर व्यवस्था देखी और मैं ये देखकर बड़ा आनंदित हूँ कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन किसी को भी किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं।
0: चार धाम यात्रा के लिए पवित्र तीर्थ स्थल की ओर जाने वाली सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है। मंदिर परिसर, बाजारों और होटलों में देश भर से आए तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ है। आस्था का ये सैलाब 23 मई के बाद और उमड़ने वाला है, जब हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और वहां से आए श्रद्धालु बद्री विशाल के दरबार में भी हाजिरी लगाएंगे। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमलैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिंधु अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी के साथ कात्यायनी मंदिर में दर्शन पूजन किए, तस्वीरें देखी। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में सिद्धू पूरी तरीके से भक्तिभाव में लीन नजर आए। सिद्धू ने ये बताया कि वृंदावन की पावन भूमि पर आत्मिक शांति और मन की संतुष्टि की तलाश में वो आए। और तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। बेटी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू वृंदावन में पहुंचे और विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए, शांति की तलाश में हुए हैं वहां पर।
4: और चलिए अब बात रामनगरी की कर लेते हैं। रामनगरी एक और उत्सव की तैयारी में है और इस बार आस्था के ये धाम मातृशक्ति का नया परिचय

0: चिदंबरा जी के द्वारा ध्वजारोहण होगा और आप जानते हैं निरंजन ज्योति जी भी आ रही हैं और विशेषतः दुर्गा वाहिनी की मातृशक्ति के बहनें बाहर से भी आ रहे हैं। जो CRPF है, पुलिस है, मंदिर में कार्यरत लोग हैं, कुल मिलाकर महिलाओं का कार्यक्रम रहेगा। 3,500 महिलाओं को हम निमंत्रित कर रहे हैं।
1: और देखिए, इस बीच खबर ये भी निकल कर आ रही है कि राम मंदिर में लगा मकराना का मार्बल लोगों को खूब लुभा रहा है और इसी वजह से पिंक सैंड स्टोन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। डिमांड की वजह से इस दूधिया मार्बल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। राम मंदिर के फर्श पर यही मकराना का मार्बल इस्तेमाल किया गया है जो दूधिया चमक देता है। देखिए तस्वीरें, इस प्रकार से लगातार डिमांड बढ़ रही है।
2: पहले इतना नहीं था, तो जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और यहाँ की जनता को जब सुविधाएं मिली हैं, मकान बनाने लगे हैं, तो सब सफेद ही मार्बल मांगते हैं और ये डिमांड पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी है वहाँ है जो खुदाई से निकलता है, तो उसमें खुदाने में निकालने में तो ऑर्डर पूरा नहीं हो पाता है।
3: ये पहला मुख्य कारण जो है वो राम मंदिर की वजह से है। राम मंदिर के फर्श पे जैसे ही लोगों ने देखा है इसको, जैसे ही लोगों के अंदर इसको एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी एक अच्छी डिमांड बहुत तेजी से बूम की है मार्केट में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गर्मी के टाइम में बहुत ठंडा रहता है और सबसे पहली चीज़ तो हमारी विरासत है, ये कहीं बाहर से नहीं आया हुआ है, अपने राजस्थान राज्य से है और सबसे बड़ी चीज़ नेचुरल है।
4: मई की गर्मी इस बार लोगों की अग्नि परीक्षा ले रही है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक हालात ऐसे हैं कि दोपहर में सड़क पर निकलना खतरे से खाली नहीं। जिनको किसी वजह से बाहर निकलना पड़ रहा है वो नींबू पानी, जूस के भरोसे हैं। हालांकि दक्षिण भारत के कई राज्यों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है और रविवार तक केरल में मानसून एंट्री कर सकता है, मगर उत्तर भारत तो अभी कुछ दिन और गर्मी उसको झेलनी पड़ेगी। इसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
5: ये क्या

0: प्रचंड गर्मी झेल रहा है आधा भारत। सुबह सूरज निकलते से और शाम को सूरज डूबने के बाद देर रात तक सड़कों पर तपिश का ऐसा कहर है मानो आसमान अंगारे बरसा रहा हो। हवा चलती है मानो ऐसा लगता है कि आग की लपटे हो। हवा में उसका एहसास आग जैसा है। घर में रहना ही मुश्किल है, घर से बाहर निकलना तो सजा से कम नहीं। यूपी का शहर बांदा इन दिनों दुनिया के सबसे गर्म शहरों को मात दे रहा है। महज दो दिनों में बांदा के तापमान में तेजी से इजाफा हुआ है। महज दो दिन पहले बांदा में तापमान 47.4 डिग्री था, जो मंगलवार को 48.8 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। 10 जून 2019 को बांदा में पारा 49.2 डिग्री तक पहुंच गया था। जिस तरह बांदा का पारा तेजी से हाई हुआ जा रहा है, उससे आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही यहां गर्मी का रिकॉर्ड टूट सकता है। हालात दिल्ली एनसीआर में भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। दिल्ली में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुबह के वक्त ही तेज धूप लोगों को बेहाल कर रही है, जबकि दोपहर तक हालात और भी ज्यादा भयावह है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बीते बुधवार से 26 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में लू का असर लगातार बना रहेगा।
1: ओवरऑल आप बात करें अगर स्पीकर के हिसाब से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में जहां तो ऑरेंज अलर्ट है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें तो वहां भी जो टेम्परेचर हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा ही रहेंगे। हीट वेव, सीवियर हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर सकती है। कहीं ना कहीं हो सकता है एनसीआर दिल्ली में भी जो टेम्परेचर 47 के पास रहे।
0: तापमान इस तरह बढ़ने की वजह से दिल्ली एनसीआर के

0: अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, थकावट, चक्कर आना और गर्मी से जुड़ी दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है।
1: जब ये गर्मी ज्यादा होती है, सबसे पहले तो आपको किसी तरीके से गर्मी से बचना है। हल्का रंग का, हल्का कपड़ा, लूज कपड़े पहनिए, हल्के रंग के कपड़े पहनिए, जिससे क्योंकि जितना डार्क कलर क्लोथ पहनेंगे उतना ही ज्यादा हीट एब्जॉर्प्शन होता है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी राहत की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं है। दिल्ली, यूपी सहित तकरीबन सभी राज्यों में अगले 7 दिन मुश्किल भरे होने वाले हैं। कुल मिलाकर आशंका यही है कि उत्तर भारत में पारा अभी और चढ़ सकता है। हालांकि दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहे मानसून के मद्देनजर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में बारिश और तेज आंधी तूफान की भी चेतावनी दी गई है और राहत के लिए बेसब्र लोग यहां मानसून के इंतजार में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और इसी के साथ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कान में देसी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: कौन सा अहंकार करने पे जीवन में अपयश मिलने लगता है? कौन सा अहंकार करने से धन की बड़ी हानि हो जाती है? और कौन सा अहंकार करने से करियर में दिक्कतें आ जाती हैं? अहंकार का आपके जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: Tune in how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
10: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य
11: कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
12: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
2: आज खुलेंगे द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट। बाबा के स्वागत और दर्शन के लिए जुटे बड़ी संख्या में श्रद्धालु, चारों ओर शिवाजी के जयकारे की गूंज।
13: पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना, भक्तों में भारी उत्साह, 23 मई को खुल रहे हैं कपाट।
2: उन्तीस मई को राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मां जगदम्बा मंदिर के शिखर पर पहली बार महिला संत करेंगी ध्वजारोहण। राम मंदिर आंदोलन में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को किया जाएगा याद।
13: प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत, दिल्ली के रिज इलाके में 45 डिग्री तक चढ़ा पारा, आज भी गर्मी का ऑरेंज अलर्ट 48 डिग्री के साथ। यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म देश।

तमिलनाडु के कोडाईकनाल में 63वें सालाना फ्लावर शो का कल से हुआ आगाज। करीब 2.5 लाख से ज्यादा फूलों का हो रहा है दीदार। फूलों से बनी कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभ समाचार में। और अब बात भारतीय सेना की कर लेते हैं। भारतीय सेना के लिए खुशखबरी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी NIBE लिमिटेड ने सूर्यास्त्र रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर है। ओडिशा के ITR चांदीपुर में इसका टेस्ट किया गया। ये परीक्षण मंगलवार और बुधवार को किए गए। रॉकेट की ये टेस्टिंग भारत की लंबी दूरी की रॉकेट तोपखाना और सटीक हमला प्रणाली में कंपनी की बढ़ती भूमिका के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है।
2: यह हिंदुस्तान का अचूक रॉकेट सूर्यास्त्र है। रॉकेट सूर्यास्त्र का सफल परीक्षण करके भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस स्वदेशी रॉकेट सिस्टम का प्रदर्शन बुधवार को ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया। सूर्यास्त्र को एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी NIBE लिमिटेड ने विकसित किया है। इस रॉकेट की सबसे बड़ी खासियत इसकी अचूक मारक क्षमता है। ये रॉकेट दुश्मन के बंकरों, कमांड सेंटरों और सैन्य ठिकानों को पिन पॉइंट पर सटीकता के साथ पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। सूर्यास्त्र रॉकेट के दो खास अलग अलग टेस्ट किए गए। पहले टेस्ट में इसे 300 किलोमीटर दूर टारगेट पर ताका गया। यहाँ इसने महज 2 मीटर का सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी यानी CEP हासिल किया। ये इसकी अचूक सटीकता को बताता है। वहीं दूसरे टेस्ट में रॉकेट को 150 किलोमीटर की रेंज पर ताका गया तो इसने अपने लक्ष्य से मात्र 1.5 मीटर के दायरे में सटीक प्रहार किया। इस टेस्ट से साबित हुआ कि सूर्यास्त्र रॉकेट 300 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन के ठिकानों पर सटीक प्रहार कर सकता है। ये रॉकेट लंबी दूरी से दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक जाकर वहां मौजूद लक्ष्यों को भेद सकते हैं। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम एक यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्चर है, यानी इस एक ही प्लेटफॉर्म से 150 किलोमीटर 300 किलोमीटर के रॉकेट तागे जा सकते हैं और साथ ही 100 किलोमीटर तक मार करने वाले घातक रॉकेट और ड्रोन तागे जा सकते हैं। अमेरिका के पास भी इसी तरह का एक HIMARS रॉकेट सिस्टम है। अब भारत का अपना स्वदेशी सूर्यास्त्र रॉकेट भी वैसी ही सटीकता के साथ दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखता है। NIBE ने इस सफल टेस्ट परीक्षण को भारतीय रक्षा उद्योग के लिए मील का पत्थर बताया है। कंपनी ने कहा है कि ये रॉकेट्स पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं, भारतीय सेना की जरूरतों के मुताबिक विकसित किए गए हैं। ये उपलब्धि देश के लिए बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि भारतीय सेना को अब लंबी दूरी की सटीक हमला करने वाले रॉकेट्स मिलेंगे। दुश्मन के ठिकानों, आर्टिलरी पोजिशंस, कमांड सेंटर्स और अन्य महत्वपूर्ण टारगेट्स को सुरक्षित दूरी से नष्ट किया जा सकेगा। इससे रक्षा आयात पर निर्भरता कम होगी और भविष्य में निर्यात की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। इन रॉकेट्स के मिलने से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ब्रह्मोस और प्रलय जैसी दूसरी मिसाइल प्रणालियों के साथ मिलकर भारत की मौजूदा लंबी दूरी की मारक क्षमता और मजबूत होगी। ये रॉकेट्स भारतीय सेना की फायर पावर को काफी बढ़ाएंगे, खासकर सीमा पर तनाव की स्थिति में लंबी दूरी से सटीक हमला करने की क्षमता से सेना को बड़ी रणनीतिक बढ़त मिलेगी।
3: भारतीय सेना को ये लॉन्ग रेंज वेक्टर्स मिल सकेंगे, साथ ही भारत में बनने वाले इन हथियारों की क्षमता और ज्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि भारत की अपनी लड़ाई की जरूरत के मुताबिक इन्हें बनाया जा रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस, प्रलय मिसाइल और तमाम दूसरे मिसाइल सिस्टम्स, पिनाका मिसाइल्स भी भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं और लगातार नए और आधुनिक वेपन सिस्टम्स के प्रोक्योरमेंट की कड़ी में सूर्यास्त्र, जो इस रॉकेट को नाम दिया गया है, वो भी भारतीय सेना की इस क्षमता को बढ़ाएगा। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे के लिए दिल्ली से।
4: भारतीय नौसेना का मिशन IOS सागर सफलतापूर्वक पूरा करके युद्धपोत INS सुनैना स्वदेश लौट आया है। वन ओशन वन मिशन के संकल्प वाले इस अभियान में भारत समेत 17 देशों के नौसैनिकों ने हिस्सा लिया और कई हफ्तों तक चले इस मिशन में समुद्र को सीमाओं से परे सहयोग का मंच बनाया गया। संयुक्त अभ्यास के जरिए संचार, समुद्री निगरानी और आपदा राहत का अभ्यास करके भारत ने अपने कूटनीतिक कमान और सागर विजन को मजबूत किया।
2: इंडियन नेवी का ऐतिहासिक मिशन IOS सागर 2026 सफलतापूर्वक पूरा हो गया। मिशन को अंजाम पर पहुंचाकर युद्धपोत आईएनएस सुनैना स्वदेश वापसी कर चुकी है। स्वदेश वापसी पर आईएनएस सुनैना का एक भव्य फ्लैग इन समारोह में स्वागत किया गया। मिशन सागर को सफलतापूर्वक अंजाम देकर सुनैना क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनी है। समुद्री लहरों पर मित्रता, सहयोग और संयुक्त प्रशिक्षण का संदेश देने के बाद आईएनएस सुनैना घर लौटी है। इस मिशन के जरिए भारत ने वन ओशन वन मिशन के संकल्प को साकार किया, जिसने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती समुद्री भूमिका और कूटनीतिक कमान को ग्लोबल मंच पर साबित किया। इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत इसका मल्टीनेशनल स्वरूप रहा। समुद्र को सीमाओं में बांधने के बजाय से सहयोग का मंच बनाया गया, जिसमें भारत समेत कुल 17 देशों के नौसैनिक इस युद्धपोत पर एक साथ रहे। इस मिशन में भारत के अलावा बांग्लादेश, इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और यूएई के नौसैनिकों ने हिस्सा लिया। अलग अलग भाषा, संस्कृति और सैन्य परंपराओं के बावजूद सभी देशों का साझा उद्देश्य रहा। सभी का एकमात्र लक्ष्य सुरक्षित, स्थिर और सहयोगपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र का निर्माण करना था। आईएनएस सुनैना एक चलता फिरता समुद्री सहयोग मंच बना, जहां विदेशी नौसैनिकों ने भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता और आधुनिक तकनीकों को करीब से देखा।
5: It gives me immense pleasure to welcome Indian Ocean ship Sagar, INS Sunaina, as the ship returns to Kochi after 49 days at sea on successful completion of an extraordinary voyage across the Indian Ocean region.
2: IOS Sagar mission की शुरुआत हार्बर प्रशिक्षण से हुई, जिसके बाद समुद्री तैनाती, संयुक्त अभ्यासों और विभिन्न देशों के बंदरगाह दौरों तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इस मिशन के जरिए पहला काम इंटर ऑपरेबिलिटी यानी आपसी तालमेल का हुआ। समुद्र में संचार समन्वय, समुद्री निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान और आपदा राहत संचालन की प्रैक्टिस की गई, ताकि भविष्य की चुनौतियों से मिलकर निपटा जा सके। ये मिशन भारत के सागर विजन को व्यवहारिक रूप देता है। हिंद महासागर आज वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा का केंद्र है। ऐसे में 17 मित्र देशों के साथ ये तालमेल भारत की एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। कोच्चि से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सितारों का जलवा बरकरार है। बॉलीवुड के तमाम सितारे और दमदार सितारे अपने रंग कान के रेड कार्पेट पर बिखेर रहे हैं। अभिनेत्री मौनी रॉय भी अपनी फिल्म का पोस्टर और टीजर लॉन्च करने के लिए कान पहुंची, जहां उनके ग्लैमरस अंदाज ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहले दिन मौनी ब्लैक ड्रेस में कान में दिखी, तो दूसरे दिन उन्होंने एक स्पेशल ड्रेस पहनी जिसे तैयार करने में करीब 240 घंटे का समय लगा। वहीं मौनी के अलावा जैकलिन ने भी कान फेस्टिवल के गाला में रंग जमाया। जैकलिन फर्नांडिस ने अपने इंस्टा पेज पर कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी अपनी कई ग्लैमरस तस्वीरें साझा की हैं। दरअसल 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में जैकलिन ने एक ज्वेलरी ब्रांड के शो में शिरकत की थी। कान में चौपाट की मेहमान के तौर पर जैकलिन ने अपनी ड्रेस के साथ इस लग्जरी ब्रांड की शानदार डायमंड ज्वेलरी पहनी थी। उन्होंने स्टेटमेंट स्पाइरल इयररिंग्स, एक नेकलेस और एक चौड़ा डायमंड ब्रेसलेट पहना, जिसकी रौनक अलग ही नजर आ रही थी।
1: कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय कलाकारों की बढ़ती मौजूदगी एक बार फिर से साबित कर रही है कि भारतीय सिनेमा और फैशन का ग्लोबल मंच पर प्रभाव लगातार मजबूत हो रहा है। भारतीय कलाकार भारतीय संस्कृति को बखूबी पेश भी कर रहे हैं। हाल ही में मौनी रॉय जब कान के रेड कार्पेट पर उतरी, तो उन्होंने एक ऐसे गाउन के साथ एंट्री ली जिसकी खूबसूरती, उसका डिजाइन और कारीगरी जबरदस्त देखने को मिली। दरअसल मौनी की इस आउटफिट को डिजाइनर्स और कारीगरों की टीम ने महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है और इसे तैयार करने में करीब 300 घंटों का वक्त लगा। इसमें देखिए भारतीय पारंपरिक कला की झलक साफ तौर पर नजर आती है। मौनी की इस ड्रेस में 700 से 800 साल पुरानी पारंपरिक कारीगरी और हस्तशिल्प की खूबसूरती देखने को मिली। आउटफिट पर बारीक एम्ब्रॉयडरी, हाथ से किया गया पारंपरिक वर्क और क्लासिक टेक्सचर इस आउटफिट को बहुत रॉयल लुक दे रहा है। आपको ये भी बता दें कि मौनी रॉय फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म बॉम्बे स्टोरीज के पोस्टर और टीजर लॉन्च के लिए पहुंची।
0: मुंबई की नगर निकाय यानी बीएमसी का प्रमुख स्वच्छता स्लोगन स्वच्छ मुंबई स्वस्थ मुंबई, इस नारे का उद्देश्य नागरिकों को अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है, ताकि शहर को बीमारियों से मुक्त और हरा भरा रखा जा सके। इसी नारे के तहत बीएमसी ने अब समुद्री साफ सफाई की भी बीड़ा उठा लिया है, जिसके लिए अत्याधुनिक तरीकों का सहारा लिया जा रहा है।
2: समुद्र किनारे बसी है माया नगरी मुंबई, एक ऐसा शहर जिसमें समुद्र की लहरों की ही तरह देश भर से लोग सपने लिए आते हैं और बस जाते हैं। लेकिन अब इस शहर की शान ये समंदर गंदा होने लगा है और अब इसकी सफाई का बीड़ा उठाया है बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने, और इसके लिए तैनात की है आधुनिक मानव रहित बोट्स। बीएमसी का दावा है कि मुंबई के समुद्र में रोजाना लगभग 80 से 90 किलोग्राम तैरता हुआ कचरा इकट्ठा होता है, लेकिन अब इसे साफ करने का बेड़ा इन मानव रहित बोट्स पर है। ये बोट्स गेटवे ऑफ इंडिया और बधवार पार्क में तैनात की हैं, जो समुद्र में तैरते कचरे को हटाने का काम करेंगी।
3: एक फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी, सेकंड डिग्निटी है, और दूसरी बात में जीरो इमर्शन यानी ये इलेक्ट्रिकल बोट है। इसकी वजह से यहाँ पे आपको बोट को खाली चार्ज करना है, उसके बाद आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो सेकंड स्टेप है, जहाँ पे जो कन्वेयर है, वो कन्वेयर में आपको जो गार्बेज है साइड गार्बेज पूरा कलेक्ट होता है। और सेकंड थिंग क्या होता है कि कोई कॉर्नर पे जो जगह रहेगी वहाँ पे ये इजिली जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस कन्वेयर। जी,
2: इस नाव की रेंज लगभग 500 मीटर है। ये नाव बैटरी से चलती है और इसमें सोलर पैनल भी लगे हैं। इसे रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। इनमें कन्वेयर बेल्ट सिस्टम लगा है। इसी सिस्टम के जरिए ये बोट पानी से कचरा खींच कर इकट्ठा करती है। कचरे को इकट्ठा करने के बाद उसे बाकी समुद्री मलबे से अलग करने का काम होता है। इसके बाद कचरे को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। समुद्र में जा रहे कचरे को हटाकर ये नाव न सिर्फ पर्यटकों के लिए जगह की सुंदरता बढ़ाने का काम कर रही है, बल्कि समुद्र में प्लास्टिक की मौजूदगी में कमी लाने में भी मददगार है।
3: मैक्सिमम प्लास्टिक बोतल उसमें बहुत सारा मिनरल वाटर है, जूसे से, उसके बाद में कांच के बोतल से बहुत सारी बोतल जमा होती है। और ये क्या होता है सर, ये हम लोग कलेक्ट करते हैं, अदरवाइज ये ना डेड एंड में जाएगा समुद्र के, और वहाँ पे उसका बैड इफेक्ट जो एनिमल्स है उसकी वो चीजें पे हो सकता है। इसीलिए वो हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में हम ये बैग में जमा करके गाड़ी में डाल के इसको सेग्रीगेशन के लिए भेजते हैं।
2: बीएमसी देश की पहली ऐसी नागरिक संस्था है जो समुद्र तट और उसके आसपास के इलाकों की सफाई बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ये बोट्स मुंबई भर में सफाई बनाए रखने और ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए लागू किए जा रहे कई उपायों का एक अहम हिस्सा है।
4: एक तरह से इनोवेशन किया गया है समुद्र में साफ सफाई हो सके उसमें किसी तरह का ह्यूमन आप कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसीलिए ये अनमैन्ड बोट्स बैटरी ऑपरेटेड जो है वो चलाई जा रही है। जो भी वेस्ट जनरेट होता है, काफी वेस्ट जनरेट होता है क्योंकि टूरिस्ट एरिया टूरिस्ट मूवमेंट जो है वो हजारों की तादाद में रहती है गेटवे ऑफ इंडिया पर, और उसलिए ये पूरा सिस्टम जो है वो बीएमसी की तरफ से डिप्लॉय किया है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।
1: तमिलनाडु के कोडाई कनाल की झील के पूर्वी तट पर मौजूद खूबसूरत ब्रायंट पार्क सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है क्योंकि यहां 63वें फ्लावर शो का आगाज हो गया है। हर साल इस पार्क में यह फ्लावर शो का आयोजन होता है। यहां पर करीब 2.5 लाख से ज्यादा खिले हुए फूलों की किस्मों का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें देखिए लिली और तमाम किस्म के फूल आपको नजर आएंगे। गुलाब की शानदार किस्में इसमें शुमार हैं, साथ ही साथ साल की इस तरह की फूलों से बनी कलाकृतियां और आकर्षक सजावट बड़े बूढ़ों को और बच्चों को भी खूब लुभा रही है। अलग अलग कलाकृतियां हर साल यहाँ के बागवानी विशेषज्ञों की निगरानी में तैयार की जाती हैं और ये फ्लावर शो 31 मई तक यूं ही चलेगा। भाई आपको लेकर चलते हैं आईपीएल के मैदान में। कल आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेटों से मात दे दी। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होने जा रहा है। ये मैच जो है शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। टीम ने 13 में से 8 मुकाबले जीते हैं और 16 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर बनी हुई है। वहीं पर चेन्नई ने 13 मैच में 6 मुकाबले जीते हैं और 12 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल पे 7वें पायदान पर है।
0: और आईपीएल के सीजन में धमाकेदार एक्शन के साथ ही खिलाड़ियों के अतरंगी जश्न और जश्न भी देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने विकेट लेने के बाद अपनी जेब से एक पर्ची निकालकर जश्न मनाया। उनकी पर्ची पर अकी ऑन फायर मैसेज लिखा था और अब मुंबई इंडियंस के दीपक चाहर ने भी अनूठे अंदाज में इस सेलिब्रेशन को दोहराया। राजस्थान रॉयल्स के ब्लास्टर बैटर वैभव सूर्यवंशी ने भी तूफानी पारी के बाद अपनी दोनों तर्जनी उंगलियों से हवा में ए बनाकर जश्न मनाया। बाद में उन्होंने खुलासा किया कि ये खास ए उनकी मां को समर्पित था। ईशान किशन के जश्न का स्टाइल खासा चर्चा में रहा। उन्होंने चेन्नई के खिलाफ विसल फोड़ू अंदाज में जश्न मनाया।
1: पंजाब के जालंधर शहर की महज 8 साल की मासूम बेटी हरनाज कौर ने एक अनोखा कीर्तिमान बनाया है। हरनाज ने इतनी छोटी सी उम्र में हुला हूप में अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया।

0: जालंधर की रहने वाली हरनाज कौर कोहली ने एक नया कारनामा किया है। महज 8 साल की हरनाज ने अपनी मेहनत और हुनर से बड़ा मुकाम हासिल किया है। हरनाज ने रॉड के साथ हवा में लटक कर महज 25 सेकंड में 50 बार हुला हुप घुमाने का कीर्तिमान बनाया है। हरनाज ने रिकॉर्ड बनाकर अपने शहर और राज्य का नाम रोशन किया है। हरनाज की इस उपलब्धि पर उनका नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। हरनाज की उम्र में भारत या दुनिया में किसी अन्य बच्ची ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए।
2: तो कितनी देर प्रैक्टिस करते थे?
1: 2-3 घंटा।
2: तो ये जो आपका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है, तो कितना स्प्लिट किया आपने?
1: मतलब मैंने 25 सेकंड्स में 50 हुला हुप्स को मारे। ये फास्टेस्ट।
0: हरनाज ने अपनी इस अनूठी गेम को खुद ही विकसित किया है, जिसमें लटकने और हुला हुप करने दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। रोजाना घंटों की कड़ी मेहनत, सुबह सुबह हर रोज प्रैक्टिस और लगातार जुनून ने हरनाज को इस मुकाम तक पहुंचाया है। हरनाज की सफलता से पूरे परिवार में खुशी और गर्व का माहौल है। रिश्तेदार, पड़ोसी और शहर के कई लोग लगातार फोन और सोशल मीडिया के जरिए परिवार को बधाइयां दे रहे हैं।
3: बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बच्ची की मेहनत सफल हुई है। आज इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरी उनसे बात चल रही थी तो मुझे नहीं लग रहा कि पंजाब में किसी बच्चे का, आज तक इतने छोटे बच्चे का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया है। स्कूल वाले भी बहुत खुश हैं, बच्चे की मेहनत भी बहुत ज्यादा थी। अगर आप देखो तो इसके हाथ में हैंग कर करके चाले पड़ जाते हैं, बट फिर भी बच्चा करता रहता था, है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है।
0: हरनाज बचपन से प्रतिभाशाली रही है और उन्होंने ये उपलब्धि अपने कड़ी मेहनत और लगन से हासिल की है। हरनाज केवल हुला हुप नहीं बल्कि स्केटिंग में भी अपना कमाल दिखा चुकी है और अब तक 12 गोल्ड समेत 18 मेडल जीत चुकी है। हरनाज के परिवार का मानना है कि हरनाज की यह सफलता समाज के दूसरे बच्चों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा बनेगी,
4: क्योंकि इसमें खुद में ही एक जुनून है कि मैंने कुछ करना है। तो ये मतलब हमें पुश नहीं करना पड़ता किसी चीज के लिए, ये अपने आप अपना पाथ ढूंढ लेती है और चल पड़ती है। नहीं, ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। 80% ये अपना वर्क स्कूल में जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये अच्छे से वहाँ पे समझ के पढ़ के ही आती है कि मतलब ये शरारतें वगैरह कम करके जब मैम पढ़ा रहे हैं तो इसका फोकस पढ़ाई पे होता है। घर आके भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके फिर उसके बाद ये अपना कुछ ना कुछ करते।
0: इस उपलब्धि के बाद हरनाज का अगला सपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में देश का नाम रोशन करना है। हरनाज की सफलता ये बताती है कि अगर मन में आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत करने का जज्बा हो तो उम्र मायने नहीं रखती और किसी भी उम्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। देवेंद्र कुमार, जालंधर, गुड न्यूज टुडे।
5: और इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए मोनालिसा की फनी इंस्टा स्टोरी।
6: बिजली विभाग से बोल रहे हैं?
7: हाँ बोलो।
6: हाँ सर, लाइन काट दीजिए।
7: लाइट क्यों काट दें?
6: और कहा है कि हम कंबल में घुस गए हैं और बत्ती बुझाना भूल गए हैं।
7: खा के पटक दें।
8: पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी।
9: किस पे?
8: हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं।
9: तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो।
8: जी
9: क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मत। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते।
5: तो शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
10: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears, or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
14: लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: आज खुलेंगे द्वितीय केदार, भगवान मदमहेश्वर के कपाट। बाबा के स्वागत और दर्शन के लिए जुटे बड़ी संख्या में श्रद्धालु, चारों ओर शिवजी के जयकारों की गूंज। पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था हुआ रवाना, भक्तों में भारी उत्साह। 23 मई को खुल रहे हैं कपाट। उन्तीस मई को राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मां जगदम्बा मंदिर के शिखर पर पहली बार महिला संत करेंगे ध्वजारोहण। राम मंदिर आंदोलन में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को किया जाएगा याद। प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत, दिल्ली के रेज इलाके में 45.8 डिग्री तक का चढ़ा पारा। आज भी गर्मी का ऑरेंज अलर्ट, 48 डिग्री के साथ उत्तर प्रदेश का बांदा देश में सबसे गर्म। मई महीने में कश्मीर के बांदीपुरा में जबरदस्त बर्फबारी, मैदानों की गर्मी से छुटकारा पाने के लिए बड़ी संख्या में कश्मीर का रुख कर रहे हैं सैलानी। तमिलनाडु के कोडाई कनाल में 63वें सालाना फ्लावर शो का कल से हुआ आगाज, करीब 2.5 लाख से ज्यादा फूलों का हो रहा है दीदार। फूलों से बनी कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुणों की वजह से, योग्यता की वजह से व्यक्ति के अंदर अहंकार आ सकता है और आ जाता है, लेकिन अगर आप किसी चीज का अहंकार करते हैं तो वो आपके जीवन पर क्या असर डालता है, आज इस विषय में बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 8:26 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अहंकार के बारे में, घमंड के बारे में। कौन से ग्रह अहंकार पैदा करते हैं, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है? देखिए, अहंकार जो है ये मन से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे पहले व्यक्ति के मन में, उसकी सोच में अहंकार पैदा होता है और मन से आगे बढ़कर ये व्यवहार तक पहुंच जाता है। हर ग्रह मजबूत होने पर, ताकतवर होने पर अपनी तरह का अहंकार पैदा करता है, लेकिन अहंकार में सबसे बड़ी भूमिका जो देखी गई है वो बृहस्पति और चंद्रमा की होती है। बृहस्पति कुंडली में ज्यादा लीड करे तो व्यक्ति को परम अहंकारी बना देता है और अन्य ग्रहों के साथ मिल करके ये विभिन्न प्रकार के अहंकार पैदा करता है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि अहंकार तो नुकसान करता है, इसीलिए किसी भी तरह का अहंकार हो वो जीवन में समस्या पैदा करेगा। हर तरह का अहंकार विशेष तरह की समस्या पैदा कर देता है। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, परिवार में शांति रखें, करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है,
संतान की चिंता हो सकती है। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता दिखाई दे रहा है। करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सूर्य किस तरह का अहंकार देता है और ये अहंकार आपको कहां नुकसान पहुंचाता है। सूर्य वैभवशाली परंपरा का और खानदान का अहंकार पैदा करता है। मेरे पिताजी ये थे, मेरे दादा वो थे, मेरा खानदान ऐसा है, ये अहंकार सूर्य देता है। कुंडली में सूर्य ज्यादा मजबूत हो जाए तो खानदान और परंपरा का अहंकार पैदा होता है। आम तौर पर मेष, सिंह और धनु राशि वालों को ये अहंकार ज्यादा होता है और अगर आप इस तरह का अहंकार करते हैं तो संतान को लेकर, संतान पक्ष को लेकर जीवन में समस्या पैदा हो जाती है। देखिए, वैसे तो हर तरह के अहंकार के पीछे चंद्रमा होता ही है, लेकिन चंद्रमा एक अलग तरह का अहंकार भी देता है। क्या करता है? चंद्रमा गुणों का अहंकार पैदा करता है। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा पेंटिंग करता हूँ, मैं बहुत सुंदर तरीके से काम करती हूँ, मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है, ये जो गुण हैं आपके, इसको लेकर के चंद्रमा वालों को अहंकार होता है। इसके अलावा कभी कभी क्लास का अहंकार भी हो जाता है कि मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरे बात करने का तरीका, मेरे खाना खाने का तरीका बड़ा क्लासी है। क्लास का अहंकार भी चंद्रमा वालों को होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को इस तरह का अहंकार ज्यादा होता है और ये अहंकार बड़ा खतरनाक है, क्योंकि गुण आता है ईश्वर की कृपा से और गुण होने के बावजूद अगर आप ये अहंकार पालते हैं तो आपकी किस्मत बिल्कुल उल्टी हो जाती है। आपके गुण धीरे धीरे आपसे वापस ले लिए जाते हैं। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब मंगल किस तरह का अहंकार देता है, किस तरह का दंभ देता है? मंगल जो है वो शक्ति
शक्ति और ताकत का अहंकार पैदा करता है। आप आर्मी में बड़े अफसर हो गए, आप पुलिस में चले गए, आप कोई ऐसा पद पा गए जीवन में जो बड़ा ताकतवर पद है, तो शक्ति और ताकत का अहंकार मंगल आपके अंदर पैदा कर देता है। और मंगल वाले अहंकार में लोग अहंकार में आके अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में ताकत का अहंकार जल्दी आ जाता है। अगर आप अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का, अपने पावर का अहंकार करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो जीवन में आपके रिश्ते टूटेंगे, आपके परिवार के लोग आपसे लगातार दूर होते चले जाएंगे। बुध किस तरह का अहंकार देता है और उसका नुकसान क्या है? देखिए, बुध अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता का अहंकार देता है। बुध वाले जो होते हैं ना, वो बड़े इंटेलिजेंट, बड़े शार्प ब्रेन के, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत होता है, मुश्किल से मुश्किल समस्या को हल कर लेते हैं। ये जो गुण है बुध का, इसका अहंकार इनको बहुत होता है कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। ये किसी और को अपनी बुद्धि के आगे, अपनी चालाकी के आगे कुछ नहीं समझते। मिथुन, कन्या और मकर वालों के अंदर अपनी बुद्धि का, अपने ब्रेन का अहंकार बहुत होता है। अब इनकी मुश्किल क्या है? अगर आपके अंदर अपनी बुद्धि का, अपनी योग्यता का ज्यादा अहंकार है ना, तो जीवन में कई कई बार आपको धन का बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कृपा करके इस तरह का अहंकार मत पालिए। सबसे ज्यादा जो ग्रह आदमी को दंभी और अहंकारी बनाता है वो है बृहस्पति। क्या कनेक्शन है अहंकार से? बृहस्पति वाले अपने ज्ञान को लेकर, मैं बड़ी पूजा पाठ करता हूं, मुझे बड़े मंत्र याद हैं, मुझे बड़े श्लोक याद हैं, अपने ज्ञान को लेकर अहंकारी होते हैं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे दादाजी बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत बड़े महंत थे, ज्ञान का, पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत अहंकार होता है। इस अहंकार के कारण होता क्या है कि ये बड़बोले हो जाते हैं, इनका वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता, किसी को कुछ भी कभी भी बोल देते हैं। अक्सर लोगों को अपने ज्ञान से परेशान करते हैं, लोगों को उलझा देते हैं। कोई आदमी सही काम कर रहा है, उसको कहेंगे अरे फला जगह तो ऐसा लिखा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अब वो परेशान हो गया, तो अपने ज्ञान से दूसरों को परेशान भी करते रहते हैं। वृषभ, कन्या, धनु, मकर और मीन वालों में अपने ज्ञान, अपनी विद्वता का अहंकार बहुत होता है। और होता क्या है कि ये जो जितने ये अपने ज्ञान से अहंकारी होते हैं ना, उतना ही इनको जीवन में बदनामी का, अपयश का सामना करना पड़ता है। धनुराशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ कार्य आपके होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव के मामले में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी,
रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव समाप्त होगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुक्र भी आदमी के अंदर अहंकार पैदा करता है। कैसा अहंकार? शुक्र वाले बड़े ग्लैमरस होते हैं, आमतौर पे दिखते भी अच्छे हैं, रूप सौंदर्य अच्छा होता है, बड़े ग्लैमरस, बड़ा लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। तो शुक्र वालों को अपने रूप सौंदर्य का, अपने शानो शौकत का, अपने झाम ताम का बड़ा अहंकार होता है। मैंने ये घड़ी 10 लाख की खरीदी, तुरंत फोटो सोशल मीडिया पे डाल देंगे, ठीक है ना। मतलब मेरे पास क्या है, वो दिखावे की टेंडेंसी, वो अहंकार शुक्र से आता है। और ये लोग इस अहंकार के कारण अक्सर मूर्ख बनते हैं, लोग उनको मूर्ख बनाते हैं और धन की बर्बादी होती है इनकी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों में ये अहंकार जल्दी आ जाता है अगर उनका शुक्र डोमिनेटिंग हो तो। इस अहंकार के कारण इनको जीवन में आकस्मिक धन की हानि होती है और लोग इनकी प्रशंसा करके इनसे खूब पैसे खर्च करवाते हैं और ये दिखावे के मामले में बड़ी मुश्किल में हमेशा पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। दिखावा करना, अहंकार करना, चीजों को शो ऑफ करना, ये इनके अंदर बहुत होता है। शनि वैसे तो देखिए अहंकारी नहीं है, लेकिन शनि भी कभी कभी आदमी को अहंकार देता है। कैसा अहंकार? शनि वालों को काम करने की योग्यता का अहंकार होता है। जितना मैं काम कर सकता हूं उतना तुम नहीं कर पाओगे, मैं सुबह से रात तक काम करता हूं, मैं दिन रात काम करता हूं, मैं एक ही दिन में ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, मैं सब संभाल लेता हूं या सब संभाल लेती हूं, ये योग्यता, काम करने की योग्यता का अहंकार इनके अंदर आता है। और ये लोग किसी और के काम को अपनी मेहनत के आगे, अपने काम के आगे कुछ नहीं समझते। अगला कितनी भी मेहनत करे इनको लगता है मेरे से ज्यादा मेहनत थोड़ा ना कर रहा है, इसलिए मैं ज्यादा बेहतर हूं। तो इनको अपने काम करने का, मेहनत का अहंकार होता है। वृषभ, सिंह, कन्या और मकर वालों के अंदर ये अहंकार आ जाता है अगर शनि प्रबल हो जाए। और होता क्या है, अपनी मेहनत और काम का अहंकार अगर आप करेंगे ना, तो करियर में उतार चढ़ाव का सामना आपको जीवन में करना पड़ेगा। अगर आपको अपने रिश्तों की समस्या दूर करनी है तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को लाल फूल और तुलसी दल ये आप अर्पित करके प्रार्थना करिए। जिस रिश्ते में समस्या है उस रिश्ते की मुश्किल दूर हो जाएगी। कि अगर आपका मन पूजा उपासना में नहीं लगता हो तो क्या उपाय करेंगे? पूजा का स्थान और पूजा करने का समय एक रखिएगा। रोज शाम को पूजा करते हैं 7 बजे, तो 7 बजे ही करिए और जहां बैठ के करते हैं वहीं बैठ के करिए। पूजा करने के पहले हाथ जोड़कर

महाराज राम जी से मिलाने का सबसे बढ़िया सेतु है। सेतु मतलब पुल। बोलो जय सियाराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। बुरा ना मानना, सच बात यह है हम लोग भगवान को तो पाना चाहते हैं, भगवान के लिए तो घूम रहे हैं, पर भगवान को पाने के साथ साथ भगवान से कुछ और भी पाना चाहे रहे। हम लोग भक्ति भी करते हैं तो भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। हमें मकान मिल जाए, लुगाई मिल जाए, पड़ोसी सुधर जाए, दुश्मन मर जाए, गाड़ी बन जाए, यह हम भगवान से पाना चाहते हैं। हमारे प्रियजनों, हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर हम प्रभु को पा लेंगे तो हम सब कुछ पा लेंगे। भाई ऐसे समझो जैसे किसी को समुद्र में घूमने का मौका मिले तो वो फिर छोटी मोटी नदियों में उतना आनंद नहीं ले पाएगा जितना समुद्र का आनंद है। और भगवान तो आनंद के सागर हैं। जब परमानंद पूर्ण राजा प्रभु श्री रघुनाथ जी राम जी मिल जाएंगे तो भैया संसार का सुख दुख हम लोगों का बाल बांका नहीं कर पाएगा, हम लोग तो सदा आनंद में ही जिएंगे। तो राम जी से मिलाने वाले कौन है? हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी राम जी से मिलाने वाले हैं। अच्छा, राम जी से मिलवाएंगे? परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपनी पुस्तक भक्त राज हनुमान में कहते हैं कि हनुमान जी पोस्टमैन हैं। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। अच्छा, हनुमान जी की एक और आदत है, जो भी राम राम राम राम राम राम जपता है हनुमान जी उसके पीछे पड़ जाते। कहां पड़ जाते भाई? आप जो भी सीताराम सीताराम जपता है उसके पीछे क्यों पड़ जाते हो? हनुमान जी बोले कहीं ये वापस लौट ना आए, इसलिए हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक वो राम जी से मिल ना ले तब तक हम पीछे पड़े ही रहते हैं। अच्छा, तो पीछे पड़ने वाले हनुमान जी ने किसी को मिलवाया राम जी से। पांच चर्चाएं आई पोस्टमैन। पहला, विभीषण जी को मिलवाया। रघुनाथ जी तक पहुंचाने का काम पहली बार विभीषण, पहली बार सुग्रीव जी को किया। विभीषण जी को मिलवाया, सुग्रीव जी को मिलवाया, लेकिन प्रारंभ सुग्रीव जी से किया। सुग्रीव जी से कहा हम आपको राम जी से मिलवाएंगे। आहा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं सुग्रीव भयभीत है, कह रहा हमें तो डर लग रहा महाराज, जीना मुश्किल है, आयु के दिन कम बचे, हो सकता हम ना जिएंगे, मर जाएंगे, कैसे राम जी से मिल पाएंगे। हनुमान जी बोले भैया तुम डरो मत, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही तुम्हारे पास राम जी को लेकर के आ जाएंगे। ये पहले पोस्टमैन हनुमान जी। दूसरी पोस्ट का काम कहां किया पोस्टमैन का? दूसरी बार विभीषण जी के पास में। और विभीषण जी के पास में तो ऐसा पोस्टमैन का काम किया, और धन्य है विभीषण जी, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जहां इन्होंने खबर दी भैया हमारी जिंदगी तो राम जी ने बनाई है, वो बड़े दयालु हैं, तुम उनके चरण पकड़ लो। विभीषण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए और राम जी ने कृपा करके गले से लगा लिया। यह दूसरी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने किया। तीसरी बार कब किया पोस्टमैन का काम? जानकी जी की खबर को राम जी को दिया और रघुनाथ जी की खबर को जानकी माता को दिया। यह तीसरी बार पोस्टमैन का काम किया। चौथी बार पोस्टमैन का काम श्री हनुमान जी ने कब किया? सुकंत नाम के राजा के समय, जब सुकंत नाम के राजा को मारने के लिए भगवान राम ने प्रण ले लिया संत गुरु अपराध के लिए, तब फिर माता की आज्ञा से हनुमान जी ने पोस्टमैन का काम किया। अपनी पूंछ में सुकंत राजा को छिपा लिया

जब बाण लगा तो जब राम जी सिर के ऊपर हाथ हनुमान जी के घुमाने लगे, सोई सुकंत राजा को अपनी गोद में बैठाकर राम जी के हाथ को सुकंत राजा के माथ पर रखवा दिया। और पांचवी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने कब किया? आहाहा, पांचवी बार राम सेतु के समय पर किया। आहा, राम सेतु का पुल बन रहा, बड़ी बड़ी शिलाएं, बानर, भालू, अंगद, दधीमुख, केहरी, नल, नील सभी ला रहे हैं। हनुमान जी से कहा, तुम बड़े बड़े पर्वत लेकर के आओ। हनुमान जी बड़ी बड़ी शिलाओं को, बड़े बड़े पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बनाया जा रहा, गिनती नहीं की जा रही, इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने पर्वत अनगिनत श्री हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे। पुल का काम अनवरत चल रहा। एक पर्वत को लाते समय रास्ते में सूचना मिली हनुमान जी को कि राम जी ने, रघुनाथ जी ने कहा, राम सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो गया, अब पर्वत जो जहां है वहीं पर रख दो, यहां लाने की आवश्यकता नहीं है। एक पर्वत को लेकर उड़कर चले आ रहे थे हनुमान जी, उसी पर्वत को वहीं पर रख दिया, बीच रास्ते में रख दिया। वो जगह कौन सी थी? श्री धाम वृंदावन के नजदीक में गोवर्धन, वहां पर पर्वत को रखा तो वह पर्वत प्रकट होकर रोने लगा। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हाथ जोड़ते हुए गोवर्धन जी कहने लगे, महाराज आज तक का रिकॉर्ड हमने देखा, आपको जिसने भी अपना बनाया या आपने जिसका भी हाथ पकड़ा वो भगवान से जरूर मिला, पर मेरा ऐसा कौन सा पाप है कि आपने मुझे हाथ पर भी रखा फिर भी मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा हूं? मेरे अपराध को बताया जाए, मेरी कौन सी भूल है जो मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा हूं? क्या मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे? क्या मैं भगवान से नहीं मिल पाऊंगा? आपने तो अपने हाथ पर रखा, आप तो महात्मा हैं, संतों के भी संत हैं, क्या राम जी के दर्शन नहीं होंगे? श्री हनुमान जी महाराज उसकी रोती हुई वाणी को सुनकर के बोले, भैया तुम रो मत, भगवान की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, पर तुम चिंता मत करो, हम कुछ संदेशा राम जी से लाकर तुमको देते। राम जी के पास गए, सरकार सब पर्वतों को स्वीकार किया पर एक गोवर्धन नाम का पर्वत हम ला रहे थे सेतु बंधन के लिए, आपने मना कर दिया, हमने उसे बीच रास्ते में रख दिया। रख दिया सो तो कोई बुराई नहीं है, पर वो रो रहा है बेचारा, आंखों में आंसू भर के कह रहा, क्या हमें भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे? राम जी बोले, भैया हनुमान सेतु बंधन का काम तो पूरा हो गया, लेकिन अगर वह पर्वत रो रहा और तुमने उसे अपने हाथ पर रखा तो तुमने तो अपने हाथ पर रखकर अपने सम में रखा होगा, जाकर के तुम वचन दे आओ, हम द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे उस पर्वत को दर्शन भी देंगे और अपनी उंगली पर उठाकर अपने सिर पर रखेंगे। समय नहीं, तुम महात्मा हो, महात्मा जिसे स्वीकार कर ले उसे हम सिर पर रखेंगे। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए। आहा, गोवर्धन पर्वत के पास आए, भैया तुम्हारे भाग्य खुल गए। क्या भाग्य खुल गए महाराज? क्या राम जी ने हमें बुलाया है? नहीं नहीं नहीं, जाना तो कैंसिल हो गया, टिकट तो कैंसिल हो गई, फ्लाइट बुक हो गई, जाना कैंसल है, तो क्या हमें दर्शन नहीं मिलेंगे? अरे नहीं भैया, वचन दे दिया रघुनाथ जी ने। क्या बोले? द्वापर युग में जब वह कृष्ण अवतार लेंगे तब एक दिन नहीं, एक घड़ी नहीं, 7 दिन तक तुम्हें सरकार के दर्शन होंगे और अपनी अंगुली पर तुमको धारण करेंगे।
वह पर्वत भी बड़े गदगद हो गए। इस कथा से सिद्ध होता है मेरे प्रिय जनों, मेरी आत्माओं, महात्मा जिसको गले लगा ले उसे परमात्मा भी गले लगा लेते हैं।

0: order for Jennifer C.
1: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
0: Yeah. Can you handle that much caffeine?
1: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Oh, really? That's great.
1: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Yeah, you just said that.
1: Did you say I just said that?
0: Yeah, I'm cutting you off.
1: I can't have any more? Why not?
2: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
11: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
13: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
14: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
15: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
16: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
17: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
3: Thank God I get to wake
2: and everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
5: It's my music and it's my station.
4: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
6: साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत दिल्ली के रेंज इलाके में 45.8 डिग्री तक चढ़ा पारा। आज भी गर्मी का ऑरेंज अलर्ट, 48 डिग्री के साथ यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म बना। मई महीने में कश्मीर के बांदीपुरा में जबरदस्त बर्फबारी जारी, मैदानों की गर्मी से छुटकारा पाने के लिए बड़ी संख्या में कश्मीर का रुख कर रहे हैं सैलानी। आज खुलेंगे द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के कपाट, बाबा के स्वागत और दर्शन के लिए जुटे बड़ी संख्या में श्रद्धालु, चारों ओर शिवजी के जयकारों की गूंज। पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था हुआ रवाना, भक्तों में भारी उत्साह, 23 मई को खुल रहे हैं कपाट। उनतीस मई को राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मां जगदम्बा मंदिर के शिखर पर पहली बार महिला संत करेंगे ध्वजारोहण, राम मंदिर आंदोलन में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को किया जाएगा याद।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: उत्तराखंड के द्वितीय केदारधाम पर आस्था का सैलाब, आज पूरी धूमधाम से खोले जाएंगे बाबा मध्य महेश्वर के कपाट। फूलों से की गई है मंदिर की भव्य सजावट, हर तरह जारी वैदिक मंत्रोच्चार, महादेव के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना होकर रासी और गोंडार गांव से होते हुए धाम पहुंची बाबा मध्य महेश्वर के उत्सव डोली, महादेव के जयघोष से गूंजा धाम। अगले 6 महीने तक यही होंगे बाबा मध्य महेश्वर के नियमित दर्शन पूजन। सर्दियों में बर्फबारी के कारण मुख्य मंदिर के कपाट बंद होने पर उखी मठ लाई जाती है भगवान की उत्सव डोली। पंच केदार में दूसरे केदार के रूप में पूजे जाते हैं मध्य महेश्वर मंदिर में, भगवान शिव के नाभि के आकार के स्वयंभू शिवलिंग की होती है पूजा। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा में इस बार भी आस्था उत्साह और श्रद्धा का अद्भुत संगम, देश भर से भगवान केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लाखों श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में आस्था का महासैलाब, 1 महीने से भी कम समय में 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं भगवान बद्री विशाल के दिव्य दर्शन। केदारनाथ में भी टूटा भक्तों की संख्या का रिकॉर्ड, 1 दिन में 29,500 श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन, करीब 7.25 लाख पहुंचा कुल आंकड़ा। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 10,000 से अधिक यात्रियों का हुआ सफल रेस्क्यू, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने चुनौतीपूर्ण हालातों में किया सफल रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर अचानक हुए भूस्खलन से बाधित हो गया था केदारनाथ यात्रा मार्ग, जिससे बीच रास्ते में फंस गए थे हजारों श्रद्धालु। अयोध्या के दुर्गा मंदिर में 29 मई को ध्वजारोहण समारोह, 3500 से अधिक महिलाएं बनेंगी अतिथि। मां जगदम्बा मंदिर के शिखर पर पहली बार महिला संत करेंगी ध्वजारोहण, राम मंदिर आंदोलन में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को किया जाएगा याद। शाम 6 बजे से मां दुर्गा मंदिर का होगा ध्वजारोहण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति सहित अन्य महिला संगठनों की बड़ी पदाधिकारी होंगे इसमें शामिल। ध्वजारोहण के बाद सभी अतिथियों को रामलला और राम परिवार का कराया जाएगा दर्शन, 5 बजे से अतिथियों को मिलेगा प्रवेश। शेषावतार मंदिर पर भी 23 जून को होगा ध्वजारोहण, जोरों पर चल रही है इसकी तैयारियां। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है प्रशासन। राम मंदिर परिसर में लागू की गई है त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए खासकर वीकेंड पर सुरक्षा व्यवस्था को किया गया है और मजबूत हाईटेक तकनीक और सतर्क निगरानी के जरिए हर गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। मंदिर परिसर में सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों की तैनाती, संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के लिए कड़ी नजर। श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन कराने के लिए मंदिर में बढ़ाया गया है दर्शन का समय। सुरक्षा के लिए सर्विलियंस टीम, साइबर सेल और एंटी सबोटाज टीमें सक्रिय। समय समय पर मॉक ड्रिल आयोजित। अत्याधुनिक सीसीटीवी और एआई आधारित कैमरों की निगरानी में पूरी अयोध्या नगरी, राम मंदिर की 3.5 किलोमीटर लंबी नई सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य तेज। बनाए जा रहे हैं वॉच टावर। हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए ऋषिकेश सिद्ध गुरुद्वारा से रवाना हुआ पहला जत्था, भव्य रूप से रवाना किया गया इस जत्थे को। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह सिंधु ने जत्थे को दिखाई हरी झंडी। 23 मई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। मेवाड़ की आस्था के प्रमुख केंद्र श्री सावलिया सेठ मंदिर में एक बार फिर भक्त ने चढ़ाई अनोखी भेंट, चांदी से बना दिल किया दान। ठाकुर जी को चढ़ाए गए इस खास चांदी से निर्मित हार्ट का वजन है 147 ग्राम। सफल हार्ट सर्जरी की मन्नत पूरी करने पर किया यह अनोखा दान। बैंड बाजों के साथ घर से चांदी का हार्ट लेकर मंदिर पहुंचे श्रद्धा और उत्साह से भरे भक्त। चर्चा का विषय बना भगवान को अर्पित किया गया यह अनोखा चांदी का हार्ट। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती। पंडित पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा की। बाबा महाकाल का चंदन, रजन मुकुट और त्रिपुंड अर्पित कर राजा स्वरूप में किया गया दिव्य श्रृंगार। ड्राई फ्रूट, फल, मिठाई का लगाया गया विशेष भोग। भक्त ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकार। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा, विधि विधान से की पूजा अर्चना। एमपी के धार के भोजशाला में श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। आध्यात्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, बेटी के साथ किए भगवान के दर्शन पूजे। प्रसिद्ध माता कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में लगाए अपनी हाजिरी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना कर माता रानी का लिया आशीर्वाद। कोडाई केनाल के ब्रायंट पार्क में 63वें पुष्प प्रदर्शनी एवं ग्रीष्मकालीन उत्सव का हुआ उद्घाटन। रंग बिरंगे फूलों से सजा पूरा पार्क। फूलों की कई किस्मों के प्रदर्शन के अलावा सब्जी और फलों से बनी अलग अलग तरह की आकृतियां भी रही मुख्य आकर्षण का केंद्र। हजारों लोग इसमें शामिल। पूरे देश से पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींचता है ये फ्लावर शो। भारत और विदेशों से मंगवाई गई फूलों की कई किस्में इसमें शामिल। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ कोयम्बटूर। गर्मी से बचने के लिए हजारों पक्षी कोयम्बटूर झील पहुंचे। जालंधर के 8 साल के हरनाज ने बनाया इंडिया में बड़ा रिकॉर्ड। लटक कर 25 सेकेंड में 50 हुला हूप कर रच दिया इतिहास। 4 साल से कर रही अभ्यास, हुला हूप करने वाली पहली भारतीय बच्ची बनी हरनाज। राजस्थान के बांसवाड़ा के चुराड़ा गांव पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, स्थानीय लोगों से की मुलाकात। चुराड़ा गांव में सीएम भजन लाल का दिखा रूखा अंदाज, स्थानीय लोगों के साथ नीचे बैठकर खाया खाना। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में निकाली गई मेगा पदयात्रा और बाइक रैली। प्रदर्शन में चल रहे नशा विरोधी अभियान के तहत नेक पहल। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया इसमें हिस्सा। युवाओं और आम जनता को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। कार्यक्रम के दौरान चलाया गया विशेष सिग्नेचर कैंपेन, स्कूली बच्चे भी बने इस नशा विरोधी अभियान का हिस्सा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जमकर तरबूज और खरबूजे की खेती कर रहे किसान, तरबूज की खेती के लिए बेहद अनुकूल है यहाँ की जलवायु और मिट्टी। बाजार में छतरपुर के तरबूज की है भारी डिमांड, किसानों की हो रही है बंपर कमाई। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में कश्मीर का रुख कर रहे सैलानी, बांदीपुरा में बड़े पर्यटक। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों को किया मंत्रमुग्ध, इस मौसम में अचानक हुई बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे लोग। सैलानियों में एक प्रमुख आकर्षण के तौर पर उभरा है लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बांदीपुरा का राजस्थान पास, यहां मई के महीने में भी पहाड़ों पर जमी है बर्फ। चारों ओर बिछी हुई नजर आ रही है बर्फ की सफेद चादर, प्रकृति के नजारे से खिले सैलानियों के चेहरे। स्नो गेम्स का मजा लेते नजर आ रहे हैं लोग, पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय कारोबारियों की आय में भी बढ़ोतरी हुई। जम्मू कश्मीर के जो जिला में बेमौसम गर्मी में जमकर बर्फबारी, तापमान में आई भारी गिरावट। बर्फबारी से श्रीनगर लद्दाख सड़क अस्थायी रूप से यातायात के लिए किया गया बंद, लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील की गई।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरि का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरि है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरि आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, या मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद। यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायण, यह है इंद्रायण की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC,

0: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/27 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
1: Visit your nearby Lowe's on East 17th Avenue in Hutchinson.
2: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
3: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
4: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds
5: with artists like James Bay.
6: Come on, let it go.
4: Norah Jones.
7: My heart is drained.
4: Daniel Caesar. More as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
11: प्रचंड गर्मी में झुलसा हिंदुस्तान, अगले 3 दिन तक चलेंगे लू के थपेड़े। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार यूपी का बांदा, सावधानी बरतने की अपील। मैदानों के भीषण गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा कश्मीर का मौसम, बांदीपुरा में जबरदस्त बर्फबारी, जोजिला में भी जमकर हुई बर्फबारी, श्रीनगर में जमकर बरसे बादल। रुद्रनाथ के कपाट खुलने के बाद बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त, भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रही हैं फिजाएं। आज से खुल गए द्वितीय केदार, भगवान मध्य महेश्वर के कपाट, बाबा के स्वागत और दर्शन के लिए जुटे बड़ी संख्या में श्रद्धालु, चारों ओर शिवजी के जयकारों की गूंज। उनतीस मई को राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मां जगदम्बा मंदिर के शिखर पर पहली बार महिला संत करेंगी ध्वजारोहण। राम मंदिर आंदोलन में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को किया जाएगा याद।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस शो में विशेष रूप से बात करने जा रहे हैं आईएनएस सुनैना की भव्य स्वागत की। देखिए, भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुनैना भारत के आईओएस सागर मिशन का दूसरा चरण पूरा करके कोची लौटा तो नजारा जो था वो देखने लायक था। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं वो खास तस्वीरें जो कोची में आईएनएस सुनैना के भव्य स्वागत के अवसर की हैं। हिंद महासागर के इलाके में करीब 50 दिनों का ये मिशन पूरा करके जिस वक्त आईएनएस सुनैना की कोची तट पर वापसी हुई तो ना सिर्फ भारतीय नौसेना बल्कि इस जहाज पर सवार क्रू मेंबर्स के परिजनों के लिए भी ये शानदार पल था। तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं इन खास पलों की। देखिए, जहाज को वाटर कैनन से सलामी दी गई तो समुद्र के किनारे मौजूद

परिजनों और नौसेना के अधिकारियों ने भी क्रू मेंबर्स का जोरदार भव्य रूप से स्वागत किया। हम आपको इस शो में विस्तार से बताएंगे कि कोची तट पर किस तरह से आईएनएस सुनैना के क्रू मेंबर्स का वेलकम किया गया और उस सागर मिशन की क्या अहमियत है जिसके तहत इस जहाज को हिंद महासागर में भेजा गया था। कोची के समुद्र तट पर आईएनएस सुनैना के भव्य स्वागत का सबसे शानदार पल कैमरों में भी कैद हो गया। हम आपको वो खास तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं जब आईएनएस सुनैना ने कोची के समुद्री इलाके में एंट्री ली तो किस तरह से वाटर कैनन से सलामी देकर उसका भव्य रूप से स्वागत किया गया और साथ ही साथ भारतीय नौसेना के जहाजों ने आईएनएस सुनैना को एस्कॉर्ट भी किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस पल की और देखिए वाकई ये बेहद गौरवान्वित कर देने वाला पल था, गर्व से भर देने वाला पल था क्योंकि आईएनएस सुनैना ने हिंद महासागर के इलाके में समुद्री सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने के लिए बड़े शानदार मिशन को अंजाम दिया है। इस मिशन के बारे में भी हम आपको बताएंगे इस मिशन की क्या खासियत है, लेकिन उससे पहले कुछ खास तस्वीरें देखिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जब आईओएस मिशन बताया जा रहा है करीब 50 दिनों का ये मिशन था, ये पूरा करके जब ये कोची तट पर पहुंचा तो भव्य रूप से स्वागत किया गया और इस पल के साक्षी बने तमाम क्रू मेंबर्स के परिवारजन जो वहां पर अपने परिवार का इंतजार कर रहे थे। तो आईओएस सागर मिशन का दूसरा चरण संपन्न करके आईएनएस सुनैना की स्वदेश में वापसी हो गई है, यानी भारत ये वापस लौट आया है। लेकिन इसकी वापसी के वक्त कोची में जो नजारा देखने को मिला वो वाकई अनूठा था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह कोची के समुद्र तट पर आईएनएस सुनैना का इंतजार पूरा हुआ और फिर क्या क्या हुआ। साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर आईएनएस सुनैना की अहमियत क्या है, इसकी खासियत क्या है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।

0: इन बच्चों का उत्साह देखने लायक है। इन बच्चों के चेहरों पर जो उत्सुकता है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नौसेना के बैंड की धुनों के बीच हाथों में लिए तिरंगे लहराते ये बच्चे अपने अपने पिता का स्वागत करने के लिए तैयार है। इनमें कई काफी छोटे बच्चे हैं जो माहौल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई बच्चे जरूर कुछ आतुर दिख रहे हैं कि जब जहाज किनारे लगेगा और उनके डैडी उनसे नीचे आकर मिलेंगे। यहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं जिनके हाथों में वेलकम होम डैडी की तख्तियां हैं, जो वो इन नन्हे बच्चों की ओर से समंदर की ओर लहराते हुए दिखा रही है, ताकि जहाज पर सवार उनके अपने उन्हें देख ले और खुशी से भर जाएं कि उनका परिवार यहाँ उनके स्वागत के लिए उमड़ आया है। ये तस्वीरें केरल में कोची के समुद्र तट की है, जहाँ पर जहाज INS सुनैना भारतीय नौसेना का IOS सागर 26 मिशन सफलतापूर्वक पूरा करके लौटा है, तो उस पर सवार नेवी के जाबाजों का वेलकम करने के लिए उनके परिजन मौजूद थे। हिंद महासागर क्षेत्र में मिशन पूरा करके वापसी के बाद कोची में नेवल बेस के नॉर्थ जेटी पर हुए समारोह में INS सुनैना का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर जहाज पर सवार भारतीय नौसेना के क्रू मेंबर सहित तमाम नौ सैनिकों के परिजनों की खुशी देखते ही बनती थी। जहाज से नौ सैनिक एक एक कर उतरे तो अपने बच्चों और परिवार के साथ उनके मिलने के पल यादगार बन गए। कई क्रू मेंबर अपने बच्चों को गोद में लेकर दुलारते नजर आए, तो परिजन भी उनसे मिलकर भावुक दिखे। नौसेना के इन अधिकारियों और नौ सैनिकों की अपने परिजनों से मुलाकात हुई तो सभी के चेहरों पर खुशी लाजमी थी। आपको बता दें, INS सुनैना भारतीय नौसेना का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। इस जहाज पर भारत सहित मित्र देशों के नौ सैनिक सवार थे। इस जहाज को वन ओशन वन मिशन के तहत IOS सागर मिशन पर भेजा गया था, जिसका मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाना है।
1: It's been an absolute honor and a privilege to be in command of INS Sunaina, which has been designated as the Indian Ocean Ship Sagar. For the last 49 days, we had deployed in the southeastern Indian Ocean region with a multinational crew of Indian Navy personnel and personnel from 16 partner nations. Although initially we thought that it would be a challenge to have a multinational crew, but that challenge later turned out to be our strength, because each and every person on board carried their own set of experience and perspective, and we harnessed each other's strengths and completed the mission and spread the word of security and growth for all in the region.
0: नौसेना के इतिहास में पहली बार भारतीय नौसेना के जहाज INS सुनैना पर IOS सागर मिशन में भारत सहित कई मित्र देशों के क्रू मेंबर्स शामिल हुए। यात्रा के अलग अलग चरणों में इस जहाज ने अलग अलग देशों का सफर किया और सहयोगी देशों के साथ क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद को पूरा किया। नौसेना का युद्ध पोत INS सुनैना सरयू क्लास का गश्ती पोत है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे डिजाइन किया है और इसका निर्माण किया है। INS सुनैना को नवंबर 2009 में गोवा शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था। ये जहाज 2013 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। इसकी लंबाई 105 मीटर है। करीब 55 किलोमीटर की रफ्तार से ये फ्लीट को ऑपरेशन में सहयोग देता है। ये समुद्र में पेट्रोलिंग, निगरानी और संचार नेटवर्क मजबूत करने का काम भी करता है। ये जहाज आधुनिक रडार, नेविगेशन और संचार प्रणाली से लैस है। इस पर 76 mm की मुख्य तोप और हवाई खतरों से निपटने के लिए क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाए गए हैं। मिसाइल हमलों से बचाव के लिए ये CHAFF लॉन्चर से भी लैस है। ये जहाज समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए दो हेलीकॉप्टर ले जाने में सक्षम है। कोची के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करते हुए जहाज का जल तोपों की सलामी से औपचारिक स्वागत किया गया और नौसेना के दूसरे जहाजों ने इसे एस्कॉर्ट भी किया। INS सुनैना के जरिए IOS सागर का सफल समापन भारत की समुद्री कूटनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके जरिए हिंद महासागर के इलाकों में मित्र देशों के साथ भारत की सुरक्षा संबंधी साझेदारी और बढ़ेगी, साथ ही समुद्री इलाके को सुरक्षित बनाने की भारत की कोशिशें भी परवान चढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: तो भारतीय नौसेना का मिशन आईओएस सागर सफलतापूर्वक पूरा कर युद्धपोत आईएनएस सुनेना स्वदेश लौट आया है। वन ओशन वन मिशन के संकल्प वाले इस अभियान में भारत समेत 17 देशों के नौसैनिकों ने हिस्सा लिया। कई हफ्तों तक चले इस मिशन में समुद्र को सीमाओं से परे सहयोग का मंच बनाया गया। संयुक्त अभ्यास के जरिए संचार, समुद्री निगरानी और आपदा राहत का अभ्यास कर भारत ने अपने कूटनीतिक कमान और सागर विजन को मजबूत किया है। तो जानिए इसके बारे में विस्तार से हमारी इस खास रिपोर्ट में।
1: इंडियन नेवी का ऐतिहासिक मिशन आईओएस सागर 2026 सफलतापूर्वक पूरा हो गया। मिशन को अंजाम पर पहुंचाकर युद्धपोत आईएनएस सुनैना स्वदेश वापसी कर चुकी है। स्वदेश वापसी पर आईएनएस सुनैना का एक भव्य फ्लैग इन समारोह में स्वागत किया गया। मिशन सागर को सफलतापूर्वक अंजाम देकर सुनैना क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनी है। समुद्री लहरों पर मित्रता, सहयोग और संयुक्त प्रशिक्षण का संदेश देने के बाद आईएनएस सुनैना घर लौटी है। इस मिशन के जरिए भारत ने वन ओशन वन मिशन के संकल्प को साकार किया, जिसने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती समुद्री भूमिका और कूटनीतिक कमान को ग्लोबल मंच पर साबित किया। इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत इसका मल्टीनेशनल स्वरूप रहा। समुद्र को सीमाओं में बांधने के बजाय से सहयोग का मंच बनाया गया, जिसमें भारत समेत कुल 17 देशों के नौसैनिक इस युद्धपोत पर एक साथ रहे। इस मिशन में भारत के अलावा बांग्लादेश, इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और यूएई के नौसैनिकों ने हिस्सा लिया। अलग अलग भाषा, संस्कृति और सैन्य परंपराओं के बावजूद सभी देशों का साझा उद्देश्य रहा। सभी का एकमात्र लक्ष्य सुरक्षित, स्थिर और सहयोगपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र का निर्माण करना था। आईएनएस सुनैना एक चलता फिरता समुद्री सहयोग मंच बना, जहां विदेशी नौसैनिकों ने भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता और आधुनिक तकनीकों को करीब से देखा।
2: इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू वेलकम इंडियन ओशन शिप सागर आईएनएस सुनैना एज अ शिप रिटर्न्स टू कोची आफ्टर 49 डेज एट सी on successful completion of an extraordinary voyage across the Indian Ocean region.
1: IOS Sagar mission की शुरुआत हार्बर प्रशिक्षण से हुई, जिसके बाद समुद्री तैनाती, संयुक्त अभ्यासों और विभिन्न देशों के बंदरगाह दौरों तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इस मिशन के जरिए पहला काम इंटर ऑपरेबिलिटी यानी आपसी तालमेल का हुआ। समुद्र में संचार समन्वय, समुद्री निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान और आपदा राहत संचालन की प्रैक्टिस की गई, ताकि भविष्य की चुनौतियों से मिलकर निपटा जा सके। ये मिशन भारत के सागर विजन को व्यवहारिक रूप देता है। हिंद महासागर आज वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा का केंद्र है। ऐसे में 17 मित्र देशों के साथ ये तालमेल भारत की एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। कोच्चि से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत लगातार अपनी रणनीतिक और सामरिक मौजूदगी मजबूत करता रहा है और करना चाहता है। समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों की निगरानी और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के जरिए भारत इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। वहीं चीन की नेवी के बढ़ते दखल से निपटने के लिए देश के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट की भी जरूरत बहुत बढ़ गई है। लिहाजा भारत पहला न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल विकसित करेगा। 6 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कंपैटिबिलिटी रोडमैप के मुताबिक इंडियन नेवी के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा सकता है, जो कि 40 साल तक सर्विस में रहेगा।
3: आईएनएस विशाल भारत का स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत होगा, जो चीन के फुजियान और पाकिस्तान की पनडुब्बियों का मुकाबला करेगा। आईएनएस विशाल परमाणु ऊर्जा से चलेगा और ये लहरों पर करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा और इसकी अनुमानित रेंज होगी करीब 14,000 किलोमीटर। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल में 55 विमानों को ले जाने की ताकत होगी, जिसमें 40 फिक्स विंग्स के फाइटर जेट और 15 रोटरी विंग यानी कि हेलीकॉप्टर होंगे। INS विशाल के तैयार हो जाने के बाद भारत अमेरिका और फ्रांस के बाद तीसरा देश बन जाएगा जो परमाणु संचालित विमान वाहक पोत संचालित होगा।
4: फिलहाल इंडियन नेवी के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। यह दोनों जो हैं वो गैस टरबाइन इंजन से चलती हैं, लेकिन भविष्य में भारत सरकार अब विचार कर रही है कि इंडियन नेवी को INS विशाल नाम का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर दिया जाए। गौरतलब बात है कि न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसमें जो न्यूक्लियर संयंत्र होता है उसको एक बार ऑन करने पर INS विशाल समुद्र में 6-6 महीने तक गश्त दे पाएगा। यानी दुश्मन को चाहे वो हिंद महासागर में हो चाहे ईस्ट चाइना सी में हो, INS विशाल वहां जाके अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लॉन्च करके दुश्मन की सबमरीन, दुश्मन की शिप और दुश्मन की कोस्टल इंस्टॉलेशन पर हमला कर पाएगा।

हाल के वर्षों में भारत के आसपास के समुद्री इलाकों, खासतौर पर हिंद महासागर में चीन की पहुंच बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में भारत के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स बहुत अहम हो जाते हैं। फिलहाल भारत के पास अभी दो विमान वाहक पोत हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। INS विक्रमादित्य को रूस से खरीदा गया था, जो 2013 में सेवा में आया। इस पर करीब 35 विमानों की तैनाती की क्षमता है। और वहीं INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जो साल 2022 में सेवा में आया। ये 40,000 टन का है, जो अपने साथ 30 विमान ले जा सकता है। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पारंपरिक ईंधन से चलते हैं, जिससे उनकी सीमा और शक्ति सीमित है। वहीं INS विशाल परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जो कई मायनों में बहुत ज्यादा खास होगा। अब परमाणु ऊर्जा के फायदे क्या हैं, इसे भी जान लीजिए। परमाणु ऊर्जा की बदौलत एयरक्राफ्ट कैरियर बिना ईंधन भरे महीनों तक समंदर में रह सकता है। परमाणु रिएक्टर 500 और 550 मेगावाट बिजली बनाएंगे, जो इमल्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, लेजर हथियार और सेंसर जैसे आधुनिक उपकरणों को चलाएंगे। न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से INS विशाल भारी लड़ाकू विमान, ड्रोन और हवाई चेतावनी विमान को लॉन्च कर सकता है।

0: परमाणु ऊर्जा से ज्यादा उड़ाने और लंबे समय तक हवाई कवरेज संभव है। ये फायदे INS विशाल को हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ाने में मदद करेंगे, खासकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ।
1: दुनिया भर में जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अलग अलग देशों के पास, उनमें से ज्यादातर अभी भी डीजल इंजन से चलते हैं, लेकिन जो दुनिया के मॉडर्न देश हैं उनके एयरक्राफ्ट कैरियर में पावर करने के लिए गैस टरबाइन इंजन लगे हैं, जैसे कि भारत के INS विक्रांत में, INS विक्रमादित्य में। लेकिन अमेरिका, चीन, रूस और भविष्य में भारत के पास ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे INS विशाल, जो कि न्यूक्लियर पावर से आगे चलेंगे, यानी उनको ना डीजल चाहिए, ना कोयला चाहिए, ना गैस चाहिए। जो न्यूक्लियर पावर है उसका रिएक्टर ऑन होते ही वो अगले 6 महीने तक दुनिया भर के समुन्द्र में गश्त दे पाएंगे। इसका एक और बड़ा एडवांटेज है कि ना किसी पोर्ट पे जाना पड़ता है, ना कोई मेंटेनेंस की दरकार होती है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड इंजन में मूविंग पार्ट बहुत ही कम होते हैं।
0: TPCR 2025 के तहत अगर भारत अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना शुरू कर देता है तो इसे बनते बनते कम से कम 10 साल लग जाएंगे।
2: बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है खुशियाँ। तो कहीं ड्रामा, दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search sailing or tell your device to play sailing on TuneIn.
5: किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
9: वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: अमेरिका से एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। यहाँ एक महिला ने अपने पालतू एक्सोलोटल के साथ टिक टैक टो खेला और नतीजे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे महिला ने अपने एक्वेरियम के शीशे को ही गेमिंग बोर्ड बना दिया। महिला ने मार्कर से शीशे पर ग्रिड बनाई और खेल शुरू किया। महिला ने सबसे पहले एक्स बनाया, लेकिन असली मजा तब आया जब एक्वेरियम के अंदर बैठा नन्हा एक्सोलोटल भी एक्शन मोड में आ गया। जैसे ही महिला अपनी चाल चलती, एक्सोलोटल तैर कर ग्रिड के किसी खास खाने के पास जाकर अपना चेहरा टिका देता।

0: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटे बच्चे का मजेदार वीडियो देखकर लोग मुस्कुरा भी रहे हैं और उसकी बात से सहमत भी हो रहे हैं। वीडियो में बच्चा भीषण गर्मी में स्कूल जाने को लेकर अपनी नाराजगी मजाकिया अंदाज में जाहिर करता नजर आता है।
1: 40 डिग्री गर्मी में, कड़कती धूप में, पसीने से लथपथ हम बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। अरे यार, हम बच्चों में दया करो।
0: वो मासूमियत से कहता है कि अगर वो कभी प्रधानमंत्री बना तो पूरी गर्मी के दौरान स्कूल बंद कर देगा और बच्चों पर थोड़ी दया करेगा।
1: हम बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना, गर्मियों में स्कूल जाना बंद कर दूंगा। यू आर बेटर अंडरस्टैंड।
0: उसकी ये बेबाक बात और कॉन्फिडेंस लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चा जिस ईमानदारी और सादगी से अपनी बात रखता है, वो इंटरनेट यूजर्स को काफी क्यूट लग रही है।
1: बच्चों में दया करो, हम बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना, गर्मियों में स्कूल जाना बंद कर दूंगा।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है खुशियाँ। तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: Tailgate Top 20.
1: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
0: The Tailgate Top 20.
2: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
1: Try to keep up.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: राह सच्चाई की रात 9 बजे
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
8: गुड न्यूज टुडे
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
8: गुड न्यूज टुडे
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन
12: प्रचंड गर्मी में झुलसा हिंदुस्तान अगले 3 दिन तक चलेंगे लू के थपेड़े देश के सबसे गर्म शहरों में शुमार यूपी का बांदा सावधानी बरतने की अपील की गई मैदानों की भीषण गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा कश्मीर का मौसम बांदीपुरा में जबरदस्त बर्फबारी जो जिला में भी जमकर हुई बर्फबारी श्रीनगर में जमकर बरसे बादल भीषण गर्मी के बीच में भगवान को शीतलता प्रदान करने की कोशिश काशी के मंदिरों में लगाए गए कूलर और एसी 42 से 44 डिग्री सेल्सियस है काशी का तापमान ১৮ मई को रुद्रनाथ के कपाट बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त खुले कपाट भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रही है फिजाएं ২৯ मई को राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मां जगदम्बा मंदिर के शिखर पर पहली बार महिला संत करेंगी ध्वजारोहण राम मंदिर आंदोलन में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को किया जाएगा याद
11: एनईसीसी संडे हो या मंडे रोज खावंडे
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों
12: सज गई है, खबरों की प्लेट तैयार है, गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल।
13: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराश। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट 25 अच्छी खबरों के साथ।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
12: उत्तराखंड के द्वितीय केदार धाम पर आस्था का जन सैलाब, धूमधाम से खुले बाबा मध्य महेश्वर के कपाट। फूलों के साथ की गई मंदिर की भव्य सजावट, हर तरह जारी वैदिक मंत्रोच्चारण किया गया, महादेव के दर्शनों के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। मध्य महेश्वर धाम पहुंची बाबा मध्य महेश्वर की उत्सव डोली, महादेव के जय घोष के साथ गूंजा पूरा धाम। चारधाम यात्रा में देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु, 17 लाख के करीब पहुंचा श्रद्धालुओं का आंकड़ा। बद्रीनाथ में 4.5 लाख से ज्यादा तो केदारनाथ धाम में करीब 7.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन।
13: अयोध्या के दुर्गा मंदिर में 29 मई को ध्वजारोहण समारोह, 3500 से अधिक महिलाएं बनेंगी अतिथि। मां जगदम्बा मंदिर के शिखर पर पहली बार महिला संत करेंगी ध्वजारोहण, राम मंदिर आंदोलन में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को किया जाएगा याद। शेष अवतार मंदिर पर भी 23 जून को होगा ध्वजारोहण, जोरों पर चल रही हैं तैयारियां। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में प्रशासन, राम मंदिर परिसर में लागू की गई है त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए खासकर वीकेंड पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत, हाईटेक तकनीक और सतर्क निगरानी के जरिए हर गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर।
12: हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा से रवाना हुआ पहला जत्था, भव्य रूप से रवाना किया गया ये जत्था। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधु ने जत्थे को दिखाई हरी झंडी, 23 मई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। मेवाड़ की आस्था के प्रमुख केंद्र श्री सांवलिया सेठ मंदिर में एक बार फिर से भक्त चढ़ाई अनोखी भेंट, चांदी से बना दिल किया दान। ठाकुर जी को चढ़ाए गए इस खास चांदी से निर्मित हार्ट का वजन है 197 ग्राम, सफल हार्ट सर्जरी की मन्नत पूरी करने पर किया ये अनोखा दान। एमपी के धार के भोजशाला में श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए।
13: उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं को। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। आध्यात्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, बेटी के साथ किए भगवान के दर्शन। प्रसिद्ध माता कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में लगाई हाजिरी, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना कर माता रानी का लिया आशीर्वाद। कुडाइकनाल के ब्राइन पार्क में 63वें पुष्प प्रदर्शनी एवं ग्रीष्मकालीन उत्सव का हुआ उद्घाटन, रंग बिरंगे फूलों से सजा दिखा पार्क।
12: भूल भुलैया 2 के पूरे हुए 4 साल, निर्देशक अनीस बजमी ने जताया आभार, शेयर किया पोस्ट। हॉरर थ्रिलर फिल्म खेती की फर्स्ट लुक आया सामने, जैकी श्रॉफ और शरद कीलकर निभा रहे मुख्य किरदार। मशहूर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की वेब सीरीज पीटर एंड पेड्रो का टीजर हुआ जारी, 3 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। अपने पिता की वेब सीरीज से एक्टिंग डेब्यू कर रहे वीर हिरानी वेब सीरीज में अरशद वारसी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। ओटीटी पर फिर से दिखेगा मिश्रा परिवार का मजेदार ड्रामा, 5 जून को सोनी लिव पर रिलीज होगी गुल्लक सीजन 5।
14: मम्मी आपको क्या लग रहा है हम फॉर्मल कपड़ा पहन के
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम
13: अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की पेट तैयार है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। खुल गए हैं द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट भक्तों को मिला भगवान के दर्शन का सौभाग्य। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना 23 मई को खुलेंगे कपाट। पूरा उत्तर भारत तेज गर्मी की चपेट में दिल्ली के रिज एरिया में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। धुरंधर के दीवानों को एक सौगात कल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा धुरंधर अनकट वर्जन। पेपराजी की हरकतों से नाराज सलमान का दिलदार अंदाज राजू शिवाजी की सक्सेस पार्टी में किया पेपराजी को माफ। चलिए लंच टाइम की शुरुआत सबसे पहले सलमान खान से ही कर लेते हैं जो इन दिनों किसी ना किसी वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कल शाम एक और वाकया हुआ जिसने सलमान खान को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है लेकिन इस बार एंग्री यंग मैन के उलट उनका दिलदार अंदाज नजर आया है।
12: बिल्कुल शगुफ्ता रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी में सलमान खान पहुंचे और बड़ा दिल दिखाते हुए पेपराजी को उन्होंने माफ कर दिया। क्या है पूरा मामला ये रिपोर्ट देखिए।

बॉलीवुड में चर्चा ये आम है कि सलमान खान यारों के यार हैं, दिलदार हैं। ये दो तस्वीरें सलमान खान के बारे में चर्चित इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं। पहली तस्वीर में सलमान का दिलदार अंदाज नजर आ रहा है, तो दूसरी तस्वीर में उनका एंग्री यंगमैन अवतार नजर आ रहा है। ये दोनों ही तस्वीरें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे, ये हम आपको एक एक करके बताएंगे। पहले बात पहली तस्वीर की, जो बुधवार शाम को आई, जिसमें सलमान खान पेपराजी को माफी देते दिखाई दे रहे हैं। बुधवार शाम सलमान खान रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी में पहुंचे थे। सलमान खान ने जैसे ही गाड़ी से उतरकर वेन्यू पर एंट्री ली, वहां का नजारा ही बदल गया। मीडिया के कैमरों के फ्लैश चमक उठे, सभी कैमरामैन और फोटोग्राफर ने उन्हें अपने कैमरों में कैद करना शुरू कर दिया। सलमान खान को देखकर रितेश देशमुख उन्हें रिसीव करने जैसे ही पहुंचे, तभी पेपराजी ने भी उन्हें घेर लिया और सभी पेपराजी एक दिन पहले ही अपनी हरकत के लिए एक सुर में सलमान खान से सॉरी सॉरी बोलने लगे, उनसे माफी मांगने लगे। सलमान ने भी बड़ा दिल दिखाया और कैमरे के सामने पोज देते हुए शांत मन से उनकी माफी स्वीकार कर ली। साथ ही पेपराजी को नसीहत भी दे डाली कि ये सही जगह है, यहाँ फोटो क्लिक कर सकते हैं। सलमान ने फिर मजाक में कहा, जोर से सॉरी बोलो। ये तो हुई बुधवार शाम की बात, लेकिन इस सॉरी की नौबत आई क्यों, ये जानने के लिए आपको मंगलवार रात की तस्वीर दिखाते हैं, जो इस सारे विवाद की जड़ है। मंगलवार को सलमान खान अपने करीबी को देखने के लिए हिंदुजा अस्पताल पहुंचे थे। सलमान खान जैसे ही अस्पताल से बाहर आए, पेपराजी ने भाईजान भाईजान कहकर शोर मचाना शुरू कर दिया। अस्पताल के बाहर पेपराजी की शोर मचाते देख सलमान खान भड़क उठे और सबकी क्लास लगा डाली। सलमान खान का गुस्सा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचने के बाद आधी रात को उन्होंने पेपराजी को सलीके से व्यवहार करने की नसीहत देते हुए इंस्टा पर कई सारे पोस्ट कर डाले। सोशल मीडिया पर मचे इस घमासान के बाद हर किसी को लग रहा था कि पेपराजी और सलमान खान के बीच की जंग बहुत लंबी खिंचेगी। लेकिन राजा शिवाजी के इवेंट में जिस मैच्योरिटी के साथ पेपराजी ने अपनी गलती मानी और सलमान खान ने जिस तरह बड़ा भाई बनकर उन्हें माफ किया, उसने न सिर्फ पूरे विवाद को खत्म कर दिया बल्कि सलमान खान के इस दिलदार अंदाज ने हर किसी का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, कुनी सुरेश।

0: चलिए अब बात रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की कर लेते हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेर रही है। शुरुआती हफ्तों में फिल्म की कमाई की रफ्तार इसके हिट होने की तरफ इशारा कर रही है और इस कामयाबी पर रितेश देशमुख ने एक सक्सेस पार्टी भी रखी।
1: राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी में सजी सितारों की महफिल। फिल्म को मिल रही बम्पर कामयाबी के बाद सक्सेस पार्टी का आयोजन। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी को रिलीज हुए अभी 3 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं और ये फिल्म बड़े पर्दे पर कामयाबी की नई इबारत लिखती नजर आ रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर बनी इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। दर्शकों के इस रिस्पॉन्स का फिल्म के कलेक्शन पर भी असर दिखने लगा है। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड तो पहले ही 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, वहीं भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 90 करोड़ के करीब पहुँच चुका है। यानी बहुत जल्दी ये फिल्म भारत में भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने को तैयार है। करीब 75 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपनी लागत से कहीं ज्यादा कमाई कर हिट का तमगा हासिल कर लिया। यही नहीं, ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म का रिकॉर्ड बनाने की ओर तेजी से बढ़ रही है। फिल्म की इसी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए रितेश देशमुख ने एक सक्सेस पार्टी रखी। इस फिल्म में एक्टिंग के साथ रितेश ने राइटर और डायरेक्टर की भी भूमिका अदा की है, यानी रितेश के लिए ये फिल्म बेहद खास है। इस सक्सेस पार्टी में रितेश अपनी हम सफर जिनेलिया का हाथ थामे पहुंचे और येलो कलर की ड्रेस में जिनेलिया बेहद खूबसूरत भी लग रही थी। इस पार्टी में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी सलमान खान ने। सलमान के पहुंचते ही पार्टी में हलचल बढ़ गई। सलमान के आते ही रितेश देशमुख उनके स्वागत के लिए बाहर आ गए। सलमान ने रितेश को बधाई दी और दोनों ने इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर महेश मांजरेकर भी इस पार्टी में शामिल होने के लिए आए। मराठी एक्टर सिद्धार्थ जाधव ने पार्टी में पहुंचकर रितेश देशमुख को कामयाबी की बधाई दी। जेनिफर वेंगेट यहां आशीष चौधरी और उनकी पत्नी समिता के साथ पहुंची थी। पार्टी की खास बात ये भी रही कि इस पार्टी में नए जमाने के एक्टर्स के साथ साथ 90 के दशक के तमाम सुपरस्टार दिखे। बड़े पर्दे पर हिट रही भाग्यश्री के पहुँचने से पार्टी की रौनक मानो और बढ़ गई। फरदीन खान इस पार्टी में बेहद अनोखे लुक में नजर आए। राजा शिवाजी बहुत जल्द 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी, लेकिन फिल्म को दर्शकों के मिल रहे प्यार से उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म कमाई के नए रिकॉर्ड बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए अब बात करते हैं रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर की। धुरंधर 2 का ओटीटी पर बेसब्री से इंतजार कर रहे सिने प्रेमियों को इस फिल्म में फ्राइडे एक और सौगात मिलने जा रही है। धुरंधर 2 की ओटीटी पर रिलीज से पहले कल नेटफ्लिक्स पर धुरंधर का रॉ और अनकट वर्जन रिलीज होगा। मतलब वो सारे सीन्स और डायलॉग सुनने को मिलेंगे जो इससे पहले धुरंधर को ओटीटी पर रिलीज करने से पहले काट दिए गए थे।
1: धुरंधर 2 का ओटीटी पर बेसब्री से इंतजार कर रहे धुरंधर के दीवानों दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि धुरंधर 2 के पहले आपको मिलने जा रहा है एक और बोनांजा। ये बोनांजा है धुरंधर का अनकट वर्जन। यूं तो नेटफ्लिक्स पर धुरंधर पहले से मौजूद है, लेकिन वो सेंसर्ड वर्जन है जिसमें कुछ सीन्स काटकर और कुछ डायलॉग्स बीप कर रिलीज किया गया था। लेकिन 22 मई यानी कल आप धुरंधर का रॉ और अनकट वर्जन नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे। नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर धुरंधर के दोबारा से रिलीज होने का ऐलान किया है। इस बार ऑडियंस को नेटफ्लिक्स पर धुरंधर का अनकट वर्जन देखने को मिलने वाला है, यानी धुरंधर के वो सीन्स देखने को मिलेंगे जिन पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई और जिन सीन्स को पब्लिक थिएटर्स में नहीं देख सकी। नेटफ्लिक्स इंडिया ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, आंधी आ रही है और इस बार एक्स्ट्रा घातक। हिंदी, तमिल और तेलुगु में धुरंधर रॉ और अनदेखा। देखें 22 मई को नेटफ्लिक्स पर। रणवीर सिंह की धुरंधर सिनेमाघरों में तहलका मचाने के बाद ओटीटी पर भी तहलका मचा चुकी है। पिछले 4 महीनों से धुरंधर नेटफ्लिक्स की टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी हुई है और अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रहे धुरंधर के अनकट वर्जन में ऑडियंस को नया ट्विस्ट और सरप्राइज देखने को मिलेगा। धुरंधर के अनकट वर्जन रिलीज करने से उन तमाम फैंस की मुराद पूरे होने जा रही है जो धुरंधर के एडिटेड वर्जन से खफा थे और अनकट वर्जन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। धुरंधर का अनकट वर्जन रिलीज करना नेटफ्लिक्स का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि धुरंधर 2 के कॉपीराइट जियो हॉटस्टार ने खरीदे हैं। 4 जून को धुरंधर 2 जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है, लेकिन उससे पहले धुरंधर एक बार फिर नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बात कान फिल्म फेस्टिवल की कर लेते हैं जिसमें भारतीय सितारों का जलवा बरकरार है। बॉलीवुड के दमदार सितारे अपने रंग कान के रेड कार्पेट पर बिखेर रहे हैं। अभिनेत्री मौनी रॉय की बात की जाए तो अपनी फिल्म का पोस्टर और टीजर लॉन्च करने के लिए वो कान पहुंची जहां पर उनका ग्लैमरस अंदाज हर किसी का ध्यान खींच रहा था। पहले दिन ब्लैक ड्रेस में कान में दिखी मौनी तो दूसरे दिन उन्होंने एक स्पेशल ड्रेस पहनी जिसे तैयार करने में करीब 240 घंटे का समय लगा।
2: और देखिए इसके अलावा मौनी रॉय के अलावा जैकलिन ने भी कान फेस्टिवल के गाला में रंग जमाया। जैकलिन फर्नांडिस ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी हुई अपनी कई ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं। दरअसल इस कान फिल्म फेस्टिवल में जैकलिन ने एक ज्वेलरी ब्रांड के शो में शिरकत की थी। कान में चौपाट की मेहमान के तौर पर जैकलिन ने अपनी ड्रेस के साथ इस लग्जरी ब्रांड की शानदार डायमंड ज्वेलरी पहनी। उन्होंने स्टेटमेंट स्पायरल इयररिंग्स पहने, एक नेकलेस और एक चौड़ा डायमंड ब्रेसलेट पहना जिसकी रौनक अलग ही दिखाई दे रही थी।
0: और देखिए कान फिल्म फेस्टिवल में इंडियन स्टार्स की बढ़ती हुई मौजूदगी एक बार फिर से साबित कर रही है कि इंडियन सिनेमा और फैशन का ग्लोबल मंच पर प्रभाव लगातार मजबूत हो रहा है। भारतीय कलाकार भारतीय संस्कृति को बखूबी पेश कर रहे हैं। हाल ही में मौनी रॉय जब कान के रेड कार्पेट पर उतरी तो उन्होंने एक ऐसे गाउन के साथ एंट्री ली जिसकी खूबसूरती उसका डिजाइन और कारीगरी है। दरअसल मौनी के इस आउटफिट को डिजाइनर्स और कारीगरों की टीम ने महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया। इसे तैयार करने में करीब 300 घंटे का वक्त लगा जिसमें भारतीय पारंपरिक कला की झलक दिखाई गई है। मौनी की इस ड्रेस में 700 से 800 साल पुरानी पारंपरिक कारीगरी और हस्तशिल्प की खूबसूरती देखने को मिली। आउटफिट पर बारीक एम्ब्रॉयडरी, हाथ से किया गया पारंपरिक वर्क और क्लासिक टेक्सचर इस आउटफिट को बेहद रॉयल लुक दे रहा है।
2: और देखिए इसके साथ आपको ये बता दें कि मौनी रॉय फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म बॉम्बे स्टोरीज के पोस्टर और टीजर लॉन्च के लिए पहुंची हुई थी।
0: तो कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर हर साल फैशन के नए रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जयपुर की बेटी और एक्ट्रेस रुचि गुर्जर ने अपने अंदाज से सिर्फ फैशन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने रखा।
2: और देखिए 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में रुचि जब पारंपरिक राजस्थानी घूंघट ओढ़कर रेड कार्पेट पर पहुंची तो हर किसी की निगाहें उन्हीं पर जाकर टिक गईं। पारंपरिक गहने, शाही अंदाज, रुचि का पूरा लुक भारतीय संस्कृति और राजस्थान की विरासत को बयां कर रहा है।
1: कांस के रेड कार्पेट पर घूंघट में रुचि गुर्जर की एंट्री ने फैशन के इस मंच को महिलाओं की आजादी, पहचान और सामाजिक बदलाव की आवाज बना दिया। जिस बेबाकी और बेफिक्री से रुचि ने वहां मौजूद मीडिया के सामने पोज दिए और रेड कार्पेट पर वॉक किया उसकी धमक दूर दूर तक सुनाई दी। राजस्थान की समृद्ध विरासत और संस्कृति से प्रेरित रुचि का ये खूबसूरत गुलाबी घूंघट लुक किसी फैशन स्टेटमेंट के लिए पहना गया महज एक आउटफिट नहीं था बल्कि महिलाओं के हक और सम्मान में उठी एक आवाज थी। ये घूंघट उन सामाजिक बंधनों पर एक सवाल था जिसकी वजह से आज भी कई महिलाओं को अपनी पहचान छिपा कर जीना पड़ता है। कान के मंच पर रुचि गुर्जर ने सदियों पुरानी जबरन घूंघट प्रथा के खिलाफ एक साहसी और प्रतीकात्मक संदेश दिया। कान्स में रुचि गुर्जर ने कहा, मैंने घूंघट चुप रहने के लिए नहीं पहना, मैंने इसे विरोध के रूप में पहना है। महिला का सम्मान उसकी बराबरी, आत्मविश्वास और आजादी से होना चाहिए, उसकी पहचान छिपाने से नहीं। अगर मेरी ये वॉक किसी एक महिला के लिए भी बातचीत की शुरुआत बनती है तो ये फैशन से कहीं बड़ा उद्देश्य है। रुचि गुर्जर की इस पहल की तुलना उन अंतर्राष्ट्रीय सितारों से भी की जा रही है जिन्होंने बड़े मंचों का इस्तेमाल सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए किया। फिर चाहे वो केट ब्लैंकेट हो जिन्होंने शरणार्थियों और पर्यावरण के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई या फिर एमा वॉटसन जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी और एथिकल फैशन को समर्थन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात देवभूमि में यात्रा महाकुंभ की कर लेते हैं।

0: और चलिए अब बात आस्था, भक्ति और विश्वास की सबसे पवित्र नगरी देवभूमि उत्तराखंड की करते हैं, जहां इन दिनों देश विदेश से श्रद्धालु यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा में आंकड़ा एक महीने में 17 लाख को पार कर गया है, जिसमें केदारनाथ के 7 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। यानी पूरी देवभूमि शिव भक्ति के रंग में पूरी तरह से सराबोर है।
1: और अब तो पंच केदार में शामिल केदारनाथ और रुद्रनाथ के बाद द्वितीय केदार मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट भी खुल चुके हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले ऊखीमठ से निकली भगवान मध्य महेश्वर की चल रही विग्रह डोली धाम पहुंची और फिर दर्शन के लिए धाम के कपाट खोल दिए गए। मध्य महेश्वर धाम की यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभूति का भी अनूठा संगम है।
0: देखिये, मध्य महेश्वर में भगवान शिव की नाभि स्वरूप की पूजा होती है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और बर्फ से ढकी हुई चोटियों के बीच इसकी दिव्यता श्रद्धालुओं को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव भी करवाती है।
1: तो इन चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में देखी जा रही है, जहां पर 29 दिनों में 7 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं।

0: चार धाम यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, श्रद्धालुओं की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है। केदारनाथ धाम हो कि बद्री विशाल का दरबार, यमुनोत्री हो या गंगोत्री, श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में है। यहाँ महज 29 दिनों में ही 7 लाख से ज्यादा लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आस्था का आलम यह है कि यहाँ हर दिन करीब 25,000 श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। मौसम चाहे कैसा भी हो, भक्तों का उत्साह देखने लायक है। मंदिर परिसर हो कि यात्रा मार्ग, हर तरफ श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं।
1: द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी बाबा केदारनाथ के दरबार में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक 7 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि मौसम भी लगातार खराब हो रहा है और यात्री भी जगह जगह फंस रहे हैं, लेकिन प्रशासन की रेस्क्यू टीमें पैदल मार्च सहित धाम से यात्रियों को सुरक्षित कर रही हैं।
0: केदारनाथ धाम में भक्तों की बड़ी तादाद को देखते हुए व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद हैं। पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा कर्मी और आपदा प्रबंधन दल तैनात हैं, जो आपात स्थितियों में श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं। मंगलवार को सोन प्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर भूस्खलन से केदारनाथ यात्रा मार्ग बाधित हो गया, जिससे हजारों श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए थे। ऐसे में SDRF और NDRF की संयुक्त टीमों ने राहत और बचाव अभियान शुरू करके हजारों श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से रास्ता पार कराया। केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड बना रही है। एक महीने से भी कम समय में यहां अब तक 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा भी यहां भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने केदारनाथ धाम में भी

0: दरबार में भी हाजिरी लगाएंगे। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमलन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चतुर्थ केदार रुद्रनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलने के साथ ही उत्तराखंड की पवित्र भूमि में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ भोलेनाथ के भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केदारनाथ में तो भारी भीड़ है ही, पंच केदारों में से एक रुद्रनाथ में भी नित्य नियम के अनुसार पूजा पाठ और रात्रि आरतियां देखने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, रुद्रनाथ पहुंचने के लिए करीब 22 किलोमीटर का कठिन पैदल ट्रैक तय करना पड़ता है। घने जंगलों, ऊंची चोटियों, खूबसूरत बुग्यालों से गुजरते हुए ये ट्रैक बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन भगवान शिव के सच्चे भक्तों में आस्था का जोश ऐसा है कि कठिनाई उन्हें रोक नहीं पाती। अब बात हेमकुंड साहिब की कर लेते हैं। सिखों के पवित्र तीर्थ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में यात्रा की सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। भारतीय सेना के जवानों और सेवादारों ने बर्फ को काटकर रास्ता साफ किया और गुरुद्वारे के आसपास की सारी बर्फ हटाकर व्यवस्था को पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया है। दो दिन बाद यानी 23 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं। पहला जत्था ऋषिकेश से रवाना हो चुका है, जो कि आज शाम गोविंद घाट पहुंचेगा। कल सुबह गोविंद घाट गुरुद्वारे के पहले अरदास के बाद पंच प्यारों की अगुवाई में यह जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा।
2: और देखिए, ये जत्था आपको बता दें कल शाम घांगरिया पहुंचेगा, यानी परसों 23 मई को तड़के सुबह घांगरिया से ये निकल जाएगा।
1: पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी के साथ कात्यायनी मंदिर में दर्शन पूजन किए। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण और पूरे विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में सिद्धू पूरी तरह से भक्तिभाव में लीन नजर आए। सिद्धू ने बताया कि वो वृंदावन की पावन भूमि पर आत्मिक शांति और मन की संतुष्टि की तलाश में आए हैं। बात रामनगरी की कर लेते हैं। रामनगरी एक और उत्सव की तैयारी में है, क्योंकि इस बार आस्था के ये धाम मात्र शक्ति का नया परिचय देने जा रहा है। 29 मई की शाम 5 बजे पहली मां जगदम्बा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। खास बात यह है कि ध्वजारोहण का यह अनुष्ठान महिला संतों और मात्र शक्ति के हाथों संपन्न होगा। जाहिर है, यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि राम मंदिर आंदोलन में महिलाओं के योगदान को भी समर्पित है। इस कार्यक्रम में 3500 से अधिक मातृ शक्तियां शामिल होंगी। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी की महिला कमांडो, मंदिर परिसर में कार्यरत महिला कर्मचारी और दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद की मातृ शक्ति इकाई और विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों की महिलाएं इस दिव्य आयोजन की साक्षी बनेंगी।
2: तो देखिए, इस खास मौके पर साध्वी रितंबरा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। उनके साथ केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति समेत कई प्रमुख महिला संत पदाधिकारी भी ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है, इस आयोजन को नारी शक्ति, सनातन संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के अद्भुत संगम के रूप में देखा जा रहा है।
3: साध्वी रितंबरा जी के द्वारा ध्वजारोहण होगा और आप जानते हैं निरंजन ज्योति जी भी आ रही हैं और विशेषतः दुर्गा वाहिनी की मातृशक्ति के बहने बाहर से भी आ रहे हैं। जो CRPF है, पुलिस है, मंदिर में कार्यरत लोग हैं, कुल मिलाकर महिलाओं का कार्यक्रम रहेगा। 3,500 महिलाओं को हम निमंत्रित कर रहे हैं।
2: देखिए, इसी बीच खबर ये भी है कि राम मंदिर में लगा मकराना का मार्बल लोगों को खूब लुभा रहा है। इसी वजह से पिंक सैंडस्टोन की डिमांड काफी बढ़ गई है। डिमांड की वजह से इस दूधिया मार्बल के दाम बढ़ गए हैं। राम मंदिर के फर्श पर यही मकराना का मार्बल लगा है जो दूधिया चमक देता है।
4: पहले इतना नहीं था, तो जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और यहाँ की जनता को जब सुविधाएं मिली हैं, मकान बनाने लगे हैं, तो सब सफेद ही मार्बल मांगते हैं और ये डिमांड पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी है वहाँ है जो खुदाई से निकलता है, तो उसमें खुदाने में निकालने में तो ऑर्डर पूरा नहीं हो पाता है।
5: ये पहला मुख्य कारण जो है वो राम मंदिर की वजह से है। राम मंदिर के फर्श पे जैसे ही लोगों ने देखा है इसको, जैसे ही लोगों के अंदर इसको एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी एक अच्छी डिमांड बहुत तेजी से बूम की है मार्केट।

0: में सबसे बड़ी बात यह है कि ये गर्मी के टाइम में बहुत ठंडा रहता है, और सबसे पहली चीज़ तो हमारी विरासत है, ये कहीं बाहर से नहीं आया हुआ है, अपने राजस्थान राज्य से है, और सबसे बड़ी चीज़ नेचुरल है।
1: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पूरे उत्तर भारत में गर्मी कितनी बढ़ रही है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है खुशियाँ। तो कहीं ड्रामा, दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
6: Gone! Home run!
5: NHL. College basketball.
7: He shoots it immediately. And he makes it in!
5: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
8: One lap to go.
5: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: प्रचंड गर्मी में झुलसा हिंदुस्तान, अगले 3 दिन तक चलेंगे लू के थपेड़े। देश के सबसे गर्म शहरों में शुमार यूपी का बांदा, सावधानी बरतने की अपील।
4: मैदानों की भीषण गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा कश्मीर का मौसम। बांदीपुरा में जबरदस्त बर्फबारी, जोजिला में भी जमकर हुई बर्फबारी, श्रीनगर में जमकर बरसे बादल।
3: चिलचिलाती गर्मी में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के विशेष इंतजाम। दिल्ली के चिड़ियाघर में पशुओं के बाड़े में लगाए गए पंखे और कूलर, खान पान का भी रखा जा रहा पूरा ख्याल।

0: भीषण गर्मी के बीच भगवान को शीतलता प्रदान करने की कोशिश, काशी के मंदिरों में लगाए गए कूलर और एसी, 42 से 44 डिग्री सेल्सियस है काशी का तापमान।
1: नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर के जंगलों को आईईडी मुक्त करने का अभियान जारी, अबूझमाड़ के घने जंगलों में चलाया जा रहा ऑपरेशन क्लीन।
0: मई को रुद्रनाथ का पाठ खुलने के बाद बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त, भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रही है फिजाएं।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
1: देखिए, मई की गर्मी इस बार लोगों की अग्नि परीक्षा ले रही है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक हालात ऐसे हैं कि दोपहर में सड़कों पर निकलना खतरे से खाली नहीं रहा। जिनको किसी वजह से बाहर निकलना भी पड़ता है वो नींबू पानी और जूस के भरोसे हैं। हालांकि दक्षिण भारत के कई राज्यों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है और रविवार तक केरल में मानसून एंट्री कर सकता है, लेकिन उत्तर भारत तो अभी कुछ दिन और गर्मी से दो चार होता रहेगा। उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ी सी राहत मिलने की यहां पर भी उम्मीद है।

0: प्रचंड गर्मी झेल रहा है आधा भारत। सुबह सूरज निकलते से और शाम को सूरज डूबने के बाद देर रात तक सड़कों पर तपिश का ऐसा कहर है मानो आसमान अंगारे बरसा रहा हो। हवा चलती है मानो ऐसा लगता है कि आग की लपटे हो। हवा में उसका एहसास आग जैसा है। घर में रहना ही मुश्किल है, घर से बाहर निकलना तो सजा से कम नहीं। यूपी का शहर बांदा इन दिनों दुनिया के सबसे गर्म शहरों को मात दे रहा है। महज दो दिनों में बांदा के तापमान में तेजी से इजाफा हुआ है। महज दो दिन पहले बांदा में तापमान 47.4 डिग्री था, जो मंगलवार को 48.8 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। 10 जून 2019 को बांदा में पारा 49.2 डिग्री तक पहुंच गया था। जिस तरह बांदा का पारा तेजी से हाई हुआ जा रहा है, उससे आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही यहां गर्मी का रिकॉर्ड टूट सकता है। हालात दिल्ली एनसीआर में भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। दिल्ली में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुबह के वक्त ही तेज धूप लोगों को बेहाल कर रही है, जबकि दोपहर तक हालात और भी ज्यादा भयावह है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बीते बुधवार से 26 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में लू का असर लगातार बना रहेगा।
1: ओवरऑल आप बात करेंगे स्पीकर के हिसाब से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में जहाँ तो ऑरेंज अलर्ट है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें तो वहाँ भी जो टेम्परेचर हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा ही रहेंगे। हीट वेव, सीवियर हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर सकती हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है एनसीआर दिल्ली में भी जो टेम्परेचर जब 47 के पास रहे।
0: तापमान इस तरह बढ़ने की वजह से दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, थकावट, चक्कर आना और गर्मी से जुड़ी दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है।
2: जब ये गर्मी ज्यादा होती है, सबसे पहले तो आपको किसी तरीके से गर्मी से बचना है। हल्का रंग का, हल्का कपड़ा, लूज कपड़े पहनिए, हल्के रंग के कपड़े पहनिए, जिससे क्योंकि जितना डार्क कलर क्लोथ पहनेंगे उतना ही ज्यादा हीट एब्जॉर्प्शन होता है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी राहत की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं है। दिल्ली, यूपी सहित तकरीबन सभी राज्यों में अगले 7 दिन मुश्किल भरे होने वाले हैं। कुल मिलाकर आशंका यही है कि उत्तर भारत में पारा अभी और चढ़ सकता है। हालांकि दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहे मानसून के मद्देनजर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में बारिश और तेज आंधी तूफान की भी चेतावनी दी गई है, और राहत के लिए बेसब्र लोग यहां मानसून के इंतजार में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मानसून के तय वक्त से पहले आने की खबर सुनते ही एक ठंडक सी महसूस होने लगती है। अमूमन मानसून मई के आखिर तक केरल में दाखिल होता है, मगर इस बार ये कुछ दिन पहले यानी कि रविवार तक आ सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर मानसून जल्द ही क्यों आ रहा है? दक्षिण भारत में प्री मानसून की बारिश हो रही है, जो कि बता रहा है कि मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है।

0: हीट वेव और लू के थपेड़ों के बीच उत्तर भारत की अग्नि परीक्षा जारी है। कई शहरों का पारा 47 डिग्री को पार कर चुका है। जब पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में तप रहा है, ठीक उसी वक्त दक्षिण भारत के आकाश में एक अलग ही हलचल शुरू हो चुकी है। समुद्र से उठती नम हवाएं, गरजते बादल बता रहे हैं कि मॉनसून दस्तक देने वाला है। रविवार तक मॉनसून के केरल में एंट्री होने की उम्मीद है, वो भी तय वक्त से 5 दिन पहले। इससे पहले ही दक्षिण भारत में प्री मॉनसून की बारिश हो रही है। मॉनसून की आहट मिलते ही एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। तमिलनाडु में रानीपेट में एनडीआरएफ की टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। एनडीआरएफ के जवानों को मुश्किल हालात से निपटना और लोगों की जान बचाने का हुनर पता है। इस काम में इनकी मदद खोजी कुत्ते करते हैं जो कि पूरी तरह से ट्रेंड है। मॉनसून के बादल जब बरसते हैं तो कई कई दिनों तक थमते नहीं, ऐसे में कई बार हालात चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं। तब काम आती है इन जवानों की तैयारी। ये जवान अपने साथ कटर, लाइफ सेविंग जैकेट और बोट समेत हर वो जरूरी चीज लेकर गए हैं जिनकी इन्हें जरूरत पड़ सकती है। इस बीच मॉनसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और इस बार मॉनसून के जल्दी आने की कई बड़ी वजह भी बताई जा रही है। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार नमी बने रहना, समुद्र से उठ रही तेज नमी युक्त हवाएं मॉनसून को तेजी से उत्तर की ओर बढ़ा रही हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में लगातार हो रही भारी बारिश मॉनसून की बढ़ती सक्रियता का स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा अरब सागर और हिंद महासागर का तापमान सामान्य से अधिक रहने से मॉनसून प्रणाली को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। मॉनसून सामान्य समय से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंचना भी इसका एक बड़ा संकेत है। समय से पहले आ रहा मॉनसून उम्मीद की नई किरण भी लेके आ रहा है। सही तैयारी के साथ ये बारिश वरदान बनेगी, जल संकट कम होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच में लोग राहत के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। कश्मीर के ऊपरी इलाके बांदीपुरा में वहां पर बर्फ जमी है, जहां दिल्ली, राजस्थान और यूपी से पहुंचे सैलानी सुकून महसूस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के चमोली में बारिश और ओलावृष्टि से तापमान गिर गया है।
2: हालांकि हिमाचल प्रदेश में हालात थोड़े अलग है। शिमला, धर्मशाला और सोलन जैसे शहरों में असामान्य गर्मी दर्ज की जा रही है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: जब गर्मी सताती है तो पहाड़ याद आते हैं और सुकून के लिए सैलानी खींचे चले आते हैं। मैदान में तो मई आग बरसा रही है, पर वादी में बर्फ बिछी है। 40 डिग्री वाले टॉर्चर से जो निकलकर आए हैं, उनके लिए ये नजारा वाकई जन्नत से कम नहीं। बर्फ पर सो गए, बर्फ ओढ़ लिया। कभी खेला, कभी फुर्सत से बैठ गए। राजस्थान, दिल्ली, यूपी और दूसरे इलाकों से लोग कश्मीर के बांदीपुरा चले आए हैं, जहां बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और मनमोहक नजारे लोगों को राहत का एहसास करा रहे हैं। वैसे तो कश्मीर हमेशा से अपनी खूबसूरती, झीलों और बर्फीली चोटियों के लिए मशहूर रहा है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग है। बढ़ती गर्मी ने पर्यटन का रुख बदल दिया है। अब लोग सिर्फ मशहूर जगहों तक सीमित नहीं, बल्कि सीमावर्ती और कम चर्चित इलाकों की तरफ भी पहुंच रहे हैं। बांदीपुरा का रजदान पास इन दिनों खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस क्षेत्र में मई महीने में भी बर्फ जमी हुई है, और यही वजह है कि दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे शहरों से आने वाले पर्यटक यहां पहुंचकर राहत महसूस कर रहे हैं।
1: देश में बढ़ रही गर्मी से नजात पाने के लिए लोग अब कश्मीर का रुख कर रहे हैं। पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रभावित यहां का पर्यटन उद्योग हुआ था, लेकिन अब की बार पर्यटन उद्योग बूम पर है। कश्मीर के हर पर्यटन स्थल पर हजारों की तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक पहुंच रहे हैं और कश्मीर के सुहाने मौसम का मजा ले रहे हैं।
0: राजस्थान से आए हैं, करीब 45 डिग्री तापमान झेल कर आए हैं। हैरत की बात नहीं कि ये माहौल, ऐसा मौसम उन्हें सुकून दे रहा है। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फ है तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। ये तस्वीर चमोली की है, जहां इस वक्त चार धाम यात्रा चल रही है, और मौसम का मिजाज देखिए, झमाझम बरसात देखिए, जैसे पूरा इलाका पानी से सराबोर है। बारिश की बूंदों के साथ ओले भी गिरे और पारा लुढ़क गया। हालांकि सभी पहाड़ी राज्यों में एक जैसे हालात नहीं। कश्मीर में जहां मौसम ठंडा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने लोगों को हैरान कर दिया है। आमतौर पर ठंडे रहने वाले पहाड़ी शहरों में इस बार मई महीने में असामान्य तापमान दर्ज किया जा रहा है। शिमला, मनाली, धर्मशाला और सोलन जैसे इलाकों में दिन के साथ रातें भी गर्म महसूस हो रही है। शिमला में हालात सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। यहाँ न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो शिमला के हिसाब से बहुत ज्यादा है। धर्मशाला, कांगड़ा और सोलन में लू का 3 दिन का येलो अलर्ट है। एक तरफ कश्मीर की बर्फीली वादियां लोगों को राहत दे रही हैं, तो दूसरी ओर हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य भी गर्मी की मार झेल रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तमिलनाडु के कोडाईकनाल की झील के पूर्वी तट पर मौजूद खूबसूरत ब्रांड पार्क सबको अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि यहां पर 63वें फ्लावर शो का आगाज हो गया है। हर साल इस पार्क में ये फ्लावर शो का आयोजन होता है। यहां करीब 2.5 लाख से ज्यादा खिले हुए फूलों की किस्मों का प्रदर्शन किया गया, जिनमें लिली, डेलिया और गुलाब की शानदार किस्म शामिल है। साथ ही हर साल की तरह इस साल भी फूलों से बनी कलाकृतियां और आकर्षक सजावट बड़े बूढ़ों और बच्चों को लुभा रही है। अलग अलग कलाकृतियों को हर साल यहां के बागवानी विशेषज्ञों की निगरानी में तैयार किया जाता है। ये फ्लावर शो 31 मई तक चलेगा। और चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए जीएनटी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है खुशियां। तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
5: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
6: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
7: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: मुंबई की नगर निकाय यानी कि बीएमसी का प्रमुख स्वच्छता स्लोगन स्वच्छ मुंबई स्वस्थ मुंबई। इस नारे का उद्देश्य नागरिकों को अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है, ताकि शहर को बीमारियों से मुक्त और हरा भरा रखा जा सके।
10: देखिए, इसी नारे के तहत बीएमसी ने अब समुद्र साफ सफाई का बीड़ा भी उठाया है, जिसके लिए अत्याधुनिक तरीकों का सहारा लिया जा रहा है।
11: समुद्र किनारे बसी है माया नगरी मुंबई, एक ऐसा शहर जिसमें समुद्र की लहरों की ही तरह देश भर से लोग सपने लिए आते हैं और बस जाते हैं। लेकिन अब इस शहर की शान ये समंदर गंदा होने लगा है, और अब इसकी सफाई का बीड़ा उठाया है बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने, और इसके लिए तैनात की है आधुनिक मानव रहित बोट्स। बीएमसी का दावा है कि मुंबई के समुद्र में रोजाना लगभग 80 से 90 किलोग्राम तैरता हुआ कचरा इकट्ठा होता है, लेकिन अब इसे साफ करने का बेड़ा इन मानव रहित बोट्स पर है। ये बोट्स गेटवे ऑफ इंडिया और बधवार पार्क में तैनात की हैं, जो समुद्र में तैरते कचरे को हटाने का काम करेंगी।
12: एक फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी, सेकंड डिग्निटी है, और दूसरी बात में जीरो इमर्शन। जीरो इमर्शन यानी ये इलेक्ट्रिकल बोट है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको बोट को खाली चार्ज करना है, उसके बाद आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो सेकंड स्टेप है, जहाँ पे जो कन्वेयर है, वो कन्वेयर में आपको जो गार्बेज है साइड गार्बेज पूरा कलेक्ट होता है। और सेकंड थिंग क्या होता है कि कोई कॉर्नर पे जो जगह रहेगी वहाँ पे ये इजिली जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस कन्वेयर। जी,
11: इस नाव की रेंज लगभग 500 मीटर है। ये नाव बैटरी से चलती है और इसमें सोलर पैनल भी लगे हैं। इसे रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। इनमें कन्वेयर बेल्ट सिस्टम लगा है। इसी सिस्टम के जरिए ये बोट पानी से कचरा खींचकर इकट्ठा करती है। कचरे को इकट्ठा करने के बाद उसे बाकी समुद्री मलबे से अलग करने का काम होता है। इसके बाद कचरे को रिसाइकिलिंग के लिए भेज दिया जाता है। समुद्र में जा रहे कचरे को हटाकर ये नाव न सिर्फ पर्यटकों के लिए जगह की सुंदरता बढ़ाने का काम कर रही है, बल्कि समुद्र में प्लास्टिक की मौजूदगी में कमी लाने में भी मददगार है।
12: मैक्सिमम प्लास्टिक बोतल उसमें बहुत सारा मिनरल वाटर है, जूसे से, उसके बाद में कांच के बोतल से बहुत सारी बोतल जमा होती है। और ये क्या होता है सर, ये हम लोग कलेक्ट करते है, अदरवाइज ये ना डेड एंड में जाएगा समुद्र के, और वहाँ पे उसका बैड इफेक्ट जो एनिमल्स है उसको वो चीजें पे हो सकता है। इसीलिए वो हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में हम ये बैग में जमा करके गाड़ी में डाल के इसको सेग्रीगेशन के लिए बेचते हैं।
11: बीएमसी देश की पहली ऐसी नागरिक संस्था है जो समुद्र तट और उसके आसपास के इलाकों की सफाई बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ये बोट्स मुंबई भर में सफाई बनाए रखने और ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए लागू किए जा रहे कई उपायों का एक अहम हिस्सा है।
13: तरह से इनोवेशन किया गया है समुद्र में साफ सफाई हो सके उसमें किसी तरह का ह्यूमन आप कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसीलिए ये अनमैन्ड बोट्स बैटरी ऑपरेटेड जो है वो चलाई जा रही है। जो भी वेस्ट जनरेट होता है, काफी वेस्ट जनरेट होता है क्योंकि टूरिस्ट एरिया, टूरिस्ट मूवमेंट जो है वो हजारों की तादाद में रहती है गेटवे ऑफ इंडिया पर, और उसके ये पूरा सिस्टम जो है वो बीएमसी की तरफ से डिप्लॉय किया है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।
2: अब देखिए, हमारे देश का कोस्टल एरिया हो, रेतीली धरती या फिर पहाड़ हो, ये सारी जगहें प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई हैं, जिसे लाइफ में एक बार एक्सप्लोर करना तो बनता है। वहीं इसी बीच क्योंकि युद्ध की वजह से दुनिया संकट से गुजर रही है, ऐसे में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने लोगों से विदेश यात्रा से बचने और अपने देश घूमने की अपील की, जिसके बाद जीएनटी ने अपने सभी दर्शकों से अपील की है कि वो अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीर भेजे। एक ऐसा ही खूबसूरत वीडियो उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के पुजारी आशीष उनियाल ने भेजा है, तो चलिए सुनते हैं उनकी जुबानी क्या है यमुनोत्री धाम और आसपास।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी संपूर्ण भारत वर्ष से ये आह्वान कर रहे हैं कि आप आए हमारे इस उत्तराखंड की तपोभूमि में। जैसे हमारे पास यहाँ चारों धाम है, यमुनोत्री धाम है, और यमुनोत्री धाम से यहाँ पर जो ये सुंदर बृहगम कालिंदी पर्वत का दृश्य है, हमारे पास यहाँ पर हिरण्यबाहु और यमुना जी का संगम स्थल है।

0: हमारे पास यहाँ पर हरित भरित पहाड़ियां हैं, पर्वत है जो कि विभिन्न जड़ी बूटियां औषधीय वृक्षों से सुशोभित है। हमारे पास यहाँ पर उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में हरसिल जैसी घाटियां हैं। हरसिल के साथ साथ तीर्थाटन के रूप में माँ गंगा का पवित्र धाम गंगोत्री धाम है। और मैं पुनः आप सबसे आह्वान करूंगा, अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप आए और यहाँ पर पर्यटन के साथ साथ में तीर्थाटन का आनंद लें और यहाँ की तपोभूमि का तपोभूमि के इन सुंदर दृश्यों का भरपूर आनंद उठाएं।
1: वैश्विक संकट के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील कई बार कर दी है कि लोग विदेशी दौरों से जाने पर बचें, अपने ही देश में घूमें फिरें। आप भी संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है तो बनाइए अपने कैमरे को, निकालिए एक व्लॉग और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
4: It's my music and it's my station.
3: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
5: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
6: So they were disallowed from speaking their language.
5: In-depth conversations with A-list celebrities.
7: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
5: True crime podcasts you just can't stop listening to.
8: Others escape justice to live and die in infamy. These
5: plus the news and sports content you crave in podcast form.
9: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
5: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
13: जबरदस्त गर्मी की चपेट में लगभग पूरा भारत। नागपुर में गर्मी ने तोड़ा 10 वर्षों का रिकॉर्ड पारा, पहुंचा 40.6 डिग्री। चंडीगढ़ में 47 डिग्री तो बांदा 48 डिग्री के साथ बना देश का सबसे गर्म शहर। चिलचिलाती गर्मी में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के विशेष इंतजाम। दिल्ली के चिड़ियाघर में पशुओं के बाड़े में लगाए गए पंखे, कूलर, खान पान का भी रखा गया खास ख्याल। भीषण गर्मी के बीच भगवान को शीतलता प्रदान करने की कोशिश, काशी के मंदिरों में लगाए गए कूलर और एसी। 42 से 44 डिग्री सेल्सियस है काशी का तापमान। मैदानों में भीषण गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा है कश्मीर का मौसम। बांदीपुरा और जोजिला में हुई बर्फबारी, श्रीनगर में जमकर बरसे बतरा। नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब बस्तर के जंगलों को आईईडी मुक्त करने का अभियान हुआ तेज। अबूझमाड़ के घने जंगलों में चलाया जा रहा है ऑपरेशन तीन।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
13: उत्तराखंड के द्वितीय केदारधाम पर आस्था का सैलाब, धूमधाम से खुले बाबा मदमहेश्वर बाबा के कपाट। गुरुओं से की गई मंदिर की भव्य सजावट, हर तरफ जारी है वैदिक मंत्रोच्चार, महादेव के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारें। मदमहेश्वर धाम पहुंची बाबा मदमहेश्वर की उत्सव डोली, महादेव के जयघोष के साथ धाम में हुआ गुंजायमान। अगले 6 महीने तक यही होंगे बाबा मदमहेश्वर के नियमित दर्शन पूजन। सर्दियों में बर्फबारी के कारण मुख्य मंदिर के कपाट बंद होने के पर ऊखी मठ लाई जाती है भगवान की उत्सव डोली। पंच केदार में दूसरे केदार के रूप में पूजे जाते हैं मदमहेश्वर मंदिर में भगवान शिव के नाभि के आकार के स्वयंभू शिवलिंग की होती है पूजा अर्चना। उत्तराखंड में चारी चारधाम यात्रा में इस बार भी आस्था उत्साह और श्रद्धा परंपरा, देश भर से भगवान केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में आस्था का महासैलाब, अब 1 महीने से भी कम समय में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। केदारनाथ में भी टूटा भक्तों की संख्या के रिकॉर्ड, 1 दिन में 29,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, करीब 7 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 10,000 से ज्यादा यात्रियों का हुआ सफल रेस्क्यू, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने चुनौतीपूर्ण हालातों में किया रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर अचानक हुए भूस्खलन से बाधित हो गया था केदारनाथ यात्रा मार्ग, जिससे बीच रास्ते में फंस गए थे हजारों श्रद्धालु। चमोली में हेमकुंड साहिब में यात्रा की पूरी हो गई तैयारियां, 23 मई को खुल जाएंगे कपाट। भारतीय सेना के जवानों और सेवादारों ने बर्फ को काटकर रास्ता किया साफ, गुरुद्वारे के आसपास से हटाई गई बर्फ। हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा से रवाना हुआ पहला जत्था, भव्य रूप में रवाना किया जत्था। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू ने जत्थे को दिखाई हरी झंडी, 23 मई से शुरू हो जाएगी पवित्र यात्रा। कल शाम घांगरिया पहुंचेगा पहला जत्था, 23 मई को तड़के सुबह घांगरिया से निकलेगा जत्था, सुबह 10 बजे हेमकुंड साहिब के खुलेंगे कपाट। चमोली के रुद्रप्रयाग में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। 18 मई को रुद्रनाथ के कपाट खुलने के बाद बड़ी संख्या में पहुंच रहे लगातार भक्त, भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान हुई फिजा। रुद्रप्रयाग जी के उतारी गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। भगवान को गर्मी से बचाने के लिए उपाय, मंदिर के गर्भगृह में लगाए गए हैं एसी। भीषण गर्मी को लेकर श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था, मंदिर परिसर में लगाए गए हैं कूलर, पानी के भी इंतजाम। अयोध्या के दुर्गा मंदिर में 29 मई को ध्वजारोहण समारोह, 3500 से ज्यादा महिलाएं बनेंगी अतिथि। मां जगदम्बा मंदिर के शिखर पर पहली बार महिला संत करेंगे ध्वजारोहण, राम मंदिर आंदोलन में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को किया जाएगा याद। शाम 6 बजे से मां दुर्गा मंदिर में होगा ध्वजारोहण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति सहित अन्य महिला संगठनों की बड़ी पदाधिकारी शामिल होंगी। ध्वजारोहण के बाद सभी अतिथियों को रामलला राम परिवार का कराया जाएगा दर्शन, 5 बजे से अतिथियों को मिलेगा प्रवेश। शिशा तारा मंदिर पर भी 23 जून को होगा ध्वजारोहण। जोनों पर चल रही हैं तैयारियां। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड में प्रशासन। राम मंदिर परिसर में लागू की गई है त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए खासकर वीकेंड पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। हाईटेक तकनीक और सतर्क निगरानी के जरिए हर गतिविधि पर नजर। मंदिर परिसर में सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों की तैनाती। संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत नजर। श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन कराने के लिए मंदिर में बढ़ाया गया दर्शन का समय। सुरक्षा के लिए सर्विलांस टीम भी तैनात। अत्याधुनिक सीसीटीवी और एआई आधारित कैमरों की निगरानी से पूरी अयोध्या नगरी मुस्तैदा। राम मंदिर में 3.5 किलोमीटर लंबी नई सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य भी तेज। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती। पंडे पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं पूजा अर्चना की।

0: ड्राई फ्रूट फल मिठाई का लगाया गया भोग, भक्तों ने जमकर हर हर महादेव के जयकारे। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा, विधि विधान के साथ पूजा पाठ। मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला में श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ कोयम्बटूर, गर्मी से बचाने के लिए हजारों पक्षी कोयम्बटूर झील में पहुंचे। जालंधर की 8 साल की हरनाज ने बनाया इंडिया में रिकॉर्ड, लटक कर 25 सेकंड में 50 हुला हूप करके इतिहास अपने नाम कर लिया। 4 साल से कर रही अभ्यास, हुला हूप करने वाली पहली भारतीय बच्ची बनी हरनाज। राजस्थान के बांसवाड़ा के चुराड़ा गांव पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्थानीय लोगों से मुलाकात। चुराड़ा गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल का दिखा अनोखा अंदाज, स्थानीय लोगों के साथ नीचे बैठकर भोजन किया। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में कश्मीर का रुख कर रहे हैं सैलानी, बांदीपुरा में बढ़े पर्यटक। ऊंचाई के इलाकों में ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, इस मौसम में अचानक हुई बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं लोग। सैलानियों में एक का प्रमुख आकर्षण के तौर पर उभरा है लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बांदीपुरा का रजदान पास। चारों ओर बिछी हुई है बर्फ की मोटी चादर, प्रकृति के नजारे का अद्भुत लुत्फ। स्नो गेम्स का मजा लेते हुए नजर आए सैलानी, पर्यटकों की संख्या बढ़ते देख स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के जोजिला में बेमौसम गर्मी में जमकर बर्फबारी हुई, तापमान में गिरावट। बर्फबारी से श्रीनगर लद्दाख की सड़क पर अस्थायी रूप से यातायात बाधित। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जमकर बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में अगले 3 दिनों तक बारिश और तूफान की संभावना। मणिपुरा में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन, कई सड़कों पर यातायात ठप। दिल्ली में हीटवेव और लू की चेतावनी, कई इलाकों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली के कई इलाकों में 45 डिग्री के पार पहुंच गया तापमान, आने वाले दिनों में और तेज चलेगी लू। दिल्ली में गर्मी के चलते अस्पतालों में बड़ी मरीजों की संख्या, स्वास्थ्य विभाग ने एनर्जी ड्रिंक और ज्यादा पानी पीने की अपील की। ओडिशा में भी लगातार बढ़ रही है गर्मी, झारसुगुड़ा में तापमान 40 डिग्री के पार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश के आसार, 21 से 26 मई तक होगी हल्की बारिश। उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में हीटवेव का रेड अलर्ट, बांदा देश का सबसे गर्म शहर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान पहुंचा 40 डिग्री के पार, एमडी के अनुसार कई जिलों में रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा। बिहार के 6 जिलों में हीटवेव का रेड अलर्ट, सबसे गर्म जिला कैमूर। बिहार के 23 जिलों में बारिश का आसार, कई जिलों में छाए बादल। पंजाब हरियाणा में भी लगातार बढ़ रहा है तापमान, रोहतक और बठिंडा में 40 डिग्री के पार पहुंच गया तापमान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है खुशियाँ। तो कहीं ड्रामा, दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
3: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
5: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
4: Big 12 Radio.
6: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
4: and
6: down.
4: Talk sports.
7: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
4: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील कर चुके हैं वो कि लोग विदेश दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो बनाइए एक वीडियो, एक कैमरा उठाइए और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे GNT पर दिखाएंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
9: इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए हैं और लोग इसे बार बार देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहे। इस वीडियो में एक शख्स अपनी गर्दन से करीब 9000 किलो वजन की बस को खींचता नजर आता है, जिसे देखकर लोग उसे ह्यूमन क्रेन कह रहे हैं। ये कारनामा अरूबा के रहने वाले एडमंड मोलिना ने किया है, जिन्होंने करीब 20 मीटर तक इस भारी बस को अपनी गर्दन के सहारे खींचकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उनके इस हैरान कर देने वाले स्टंट ने पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है और अब उनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में गिना जा रहा है। नन्ही बच्ची का ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसने अपनी मासूमियत से नेटिजन्स को लोटपोट कर दिया है।
10: मोदी जी आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर जाते।
9: देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ खास अपीलें की थी, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस गंभीर मुद्दे पर जहां बड़े बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे हैं, वहीं एक मासूम बच्ची ने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया है कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं।
10: हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा यार, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं।
9: इसके बाद वो हंसते हुए जो वजह बताती है, उसने इंटरनेट की पब्लिक को लोटपोट कर दिया है।
10: मोदी जी आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर ही जाते। हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा यार, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
2: Jack, you're killing me.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: जबरदस्त गर्मी की चपेट में लगभग पूरा भारत, नागपुर में गर्मी ने तोड़े 10 वर्षों के रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 46.6 डिग्री, चंडीगढ़ में 47 डिग्री तो बांदा 48 डिग्री के साथ बना देश का सबसे गर्म शहर। चिलचिलाती गर्मी में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम, दिल्ली के चिड़ियाघर में पशुओं के बाड़े में लगाए गए पंखे कूलर, खान पान में भी चेंजेस। भीषण गर्मी के बीच भगवान को शीतलता प्रदान करने की कोशिश, काशी के मंदिरों में लगाए गए हैं कूलर और एसी, 42 से 44 डिग्री सेल्सियस है काशी का तापमान। मैदानों की भीषण गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा है कश्मीर का मौसम, बांदीपुरा और जोजिला में बर्फबारी, श्रीनगर में जमकर बरसे बदरा। नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब बस्तर के जंगलों को IED मुक्त करने का अभियान तेज, अबूझमाड़ के घने जंगलों में चलाया जा रहा है ऑपरेशन क्लीन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: चाय सिर्फ एक बेवरेज नहीं है, ये तो एक इमोशन है। चाहे सुबह की फ्रेशनेस हो, दोस्तों के साथ गॉसिप का सेशन, या फिर फैमिली के साथ बिताई गई सुकून भरी एक शाम, चाय तो हर मूड सेट करती है। आज तो हम अपने शो सास बहू और बेटिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल टी डे, और उसके साथ साथ सेलिब्रेट करेंगे चाय की मिठास को, चाय की हिस्ट्री को, उसके हेल्थ बेनिफिट्स को, और लेकर हाजिर हैं एज यूजुअल आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से सारे गर्मा गर्म अपडेट्स। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सफर हेडलाइंस के साथ।
1: सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए अनुपमा में लगेगा नच का तड़का। कभी पंजाबी तो कभी राजस्थानी अंदाज में नजर आएंगे अनुपमा और टीम। सीरियल इश्क जुनूनी में नशे में बवाल करेगी पुष्पी, होते होते रह जाएगा खुलासा। युवराज के साथ ताल से ताल मिलाएगी रूही, बाहर होगा नाहर।

सूरज बदलेगा भेस, कहानी में आएगा ट्विस्ट। राधिका के मंगलसूत्र पर घर में होगा नया तमाशा। रुबीना दिलेक से करेंगे खास मुलाकात। रुबीना शेयर करेंगी ढेर सारी बातें सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: पति ब्रह्मचारी की इस कहानी में तो है एंटरटेनमेंट और थ्रिल का परफेक्ट कॉम्बो। एक्चुअली ये शो भी बिल्कुल एक कड़क चाय की तरह है, क्योंकि देखिए ये लेकर आता है हमारे लिए एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ। और एक्चुअली कभी कभी कहानी हो जाती है इतनी एंटरटेनिंग कि एक्चुअली होती है हमारे लिए चाय की तरह स्ट्रेस बस्टर, लेकिन कभी कभी तो कर देती है ये सिर में दर्द। चलिए लेकर चलते हैं आपको पति ब्रह्मचारी के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है कहानी में आज।
1: सूरज बना बहरूपिया, सूरज ने तोड़ा ब्रह्मचार्य,
2: जब से टीवी पर देखा है पक्की वाली फैन हो गई हूँ। रातों की नींद, दिन का सुकून सब छीन लिया है मेरे सूरज ने।
1: आई सूरज की नई दुल्हनिया,
2: उसकी बाल, उसकी आंखें, कितना हैंडसम है ना सूरज। तो उससे एक बार मिलूं इसलिए बहाने बना रही।
1: दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर दाढ़ी मूछ लगाकर सूरज बन गया है गांव का छोरा। और ऐसे में वो अपने साथ लेकर आया है इस नई पत्नी को भी। तो आखिर क्या है इस पत्नी का राज, आइए हम आपको बताते हैं। असल में सूरज एक मिशन पर निकला है जहां वो बहरूपिया बन बच्चे उठाने वाले और काले कारनामे करने वालों का पर्दाफाश करने वाला है, जिसके लिए वो इसी अड्डे पर पहुँच गया है। लेकिन यहाँ पर इन गुंडों को हो जाता है सूरज पर शक। देखिए कैसे सूरज हाथ जोड़कर इन

0: ये लग रही है मियां बीवी की जोड़ी। चलो काम पे लग जाओ तुम लोग। आइए सूरज ने छापा मारकर सारा धंधा बर्बाद कर दिया है, इसीलिए मैंने सारा माल यहां मंगवा दिया, यहीं से अब डिलीवर होगा। होगा ना यहीं से?
1: लेकिन आप फिक्र मत करिए, क्योंकि सूरज का ब्रह्मचार्य टूटा नहीं है। इस घूंघटे के पीछे कोई महिला नहीं बल्कि पूरन ही है, जो भेष बदल कर यहाँ सूरज के साथ आया है गुंडों को पकड़ने के लिए।
2: जी बिल्कुल, दरअसल बात यह है कि जो ये गैंगस्टर है, मतलब कि बच्चों को जो चुराने वाली गैंग है, गिरोह है, वो मतलब कि एमपी शहर में कुछ ज़्यादा तादाद से बढ़ गई है, एंड बहुत सारे बच्चे यू नो किडनैप होते होते बचे भी हैं, सूरज ने बचाया भी है, लेकिन उनका जो मास्टरमाइंड है वो हाथ नहीं लग पाया है। तो मास्टरमाइंड को फाइंड आउट करते करते सूरज यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि पूरन भाई से थोड़ी सी हेल्प ली थी। पूरन भाई से यही बोला था कि आप लोग कैसे पहुँचे वहाँ पे, तो उन्होंने बताया था कि कपल की ज़रूरत पड़ती है, वो बगैर कपल किसी को काम नहीं देते। एंड एक है सीक्रेट जो कि सूरज ने छुप छुपा के किसी को लेकर आया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जैसे ही आता है तो कहीं ना कहीं यू नो वो बंदा जो है मास्टरमाइंड, जिसे MH कहा गया है, वो आता है और वो फाइनली दोनों को बोलता है फ़ोटो खिंचाओ, साथ में खिंचाओ, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के खिंचाओ। तो यहाँ पे आप सबको शॉकिंग मिलने वाला है बहुत जल्द, कि सूरज जो है अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दिया है एंड वो एक लड़की के कंधे पे हाथ रख दिया है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है ये सब तो आप सबको देखने में मज़ा आएगा कि सूरज ने ऐसा किया क्यों। एंड ऑफकोर्स लोगों को लग रहा था कि ईशा जी के साथ ब्रह्मचर्य टूटेगा, तो देखिए किसके साथ टूट रहा है ब्रह्मचर्य, बहुत मजा आएगा।
1: खैर, जहां एक तरफ सूरज अपने मिशन पर है तो वहीं दूसरी तरफ सूरज के ऑफिस में घुस आई है उसकी जबरा फैन, जिससे हो रही है ईशा को जलन, क्योंकि ये फैन सूरज की तारीफों के पुल जो बांधे जा रही है।
3: एक ही बात है, जब से टीवी को देखा है पक्की वाली फैन हो गई, रातों की नींद दिन का सुकून सब छीन लिया है मेरे सूरज ने। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बात, उसकी आंखें, इतना हैंडसम है सूरज, बस उससे एक बार मिलूं इसलिए बहाने बना रही थी, लेकिन इस पिया ने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया। सूरज पे मैं क्या शहर की सारी लड़कियां हूँ, आफ्टर ऑल ये बच्चे का बैचलर और ब्रह्मचारी है, बस किसी को अपना दिल ना दियो पता मेरा दिल टूट जाएगा। प्लीज आप मुझे सूरज से मिला दें, सूरज का नाम लो।
4: आती है बोलते बोलते आती है मुझे सूरज से मिलना है, सूरज से मिलना है। तो ईशा नॉर्मली पूछती है जाकर क्या हो गया कि इतना शोर क्यों हो रहा है, तो वो कहती है मुझे सूरज से मिलना है, ये छपरासी मिलने नहीं दे रहा। तो पीए सर भी कहते छपरासी नहीं, मैं पीए हूँ सूरज सर का। तो ईशा भी कहती है अब मुझे बताइए जो भी काम है, तो वो मुझे वो ऐसे समझती है कि मैं भी बस मिलने ही आई हूँ। तो मुझे कहती है कि नहीं मुझे पता है आप भी सूरज सर को मिलने आई होंगी ना, वो है ही इतने हैंडसम, ऐसी हाइट है, वैसी हाइट है, ऐसे बाल है। तो वो तारीफ़ करते जा रही है कि पूरे शहर की लड़कियां उन पे मरती है, बस किसी का दिल उनमें ना हो, किसी ने उनके दिल में कोई लड़की की जगह बस ना हो, वरना मेरा दिल टूट जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो ईशा को बहुत ही गुस्सा आता है, बहुत ही वो जेलेसी फील होती है, वरना ईशा को वैसे जेलेसी दिखाई नहीं है कभी, बट इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा होती है कि इसे बैचलर समझ रही है ये, बल्कि ये मेरा पति है, पति ब्रह्मचारी, और पूरी दुनिया में ऐसा है कि सब इसके फैंस होंगे, तो ये सारी चीज़ों में ईशा को जेलेसी हो रही होती है।
1: भाई वाकई अजब गजब है सूरज और ईशा का रिश्ता, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं लेकिन दूरियां भी है। अब देखना होगा कि इस मिशन में क्या क्या ट्विस्ट आते हैं। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: अब इस चुनौनी की इस कहानी में तो प्यार और ऑब्सेशन का फ्लेवर एक कड़क चाय की तरह है, इंटेंस एंड सुपर स्ट्रांग। तो चलिए लेकर चलते हैं आपका गुरु और रूहानी के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज। क्या कहानी में फिर से आया है कोई इंटरेस्टिंग ड्रामा, या फिर से आया है यहाँ पर कोई ऐसा ट्विस्ट जो लेकर आ रहा है हमारे लिए बाई चांस गुड न्यूज़? लेट्स चेक इट आउट।

0: एहसास ने शुरू किया ड्रामा।
1: क्या हो रहा है?
2: मैं गुरु नहीं गुरु। आज भाई पापा ने ना प्यार का इजहार किया। मुझे हम पसंद है। खुश
0: की। घर में मचा हंगामा।
3: शराब लेके। शराब लेके।
0: फिर लगे रूहानी पर इल्जाम।
4: जिस इंसान को ऐसे हार्ट अटैक आया हो उसको दवाई के शीशे में तारा पिलाया जाता बहुत गलत है।
3: आज इस लड़की ने तुम्हारे माता पिता को पूरे परिवार के सामने जलील किया है। यही लड़की पूरे परिवार को सारे शहर के सामने जलील करेगी। इसी तरह खामोश रहोगे? किसका साथ दोगे बताओ हमें?
0: दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में पुष्पी अपने असली रूप में आ गई है। फिर सबको तो पता ही है कि पुष्पी कुसुम बनकर इस घर में रह रही है, लेकिन आज वो नशे की हालत में है और ऐसे में देखिए कैसे वो नागेश्वर से कर रही है अपने प्यार का इजहार, कुसुम नहीं बल्कि पुष्पी बनकर। तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं गुरु और रूहानी, जो कुसुम को इस हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। ऐसे में गुरु को तो अपनी माँ की चिंता सता रही है। तभी वहाँ पर पहुँच जाती है दादी और बाकी के घर वाले और सभी शौक है कुसुम को इस हालत में देखकर। हालांकि मामा मामी समझ गए हैं कि पुष्पी अपने असली रूप में आ गई है और उन्हें डर है कि नशे में वो सब सच ना बड़बड़ा दे।
1: क्या हो रहा है?
2: मैं गुरु हमें गुरु। आज भाई पापा ने ना तो प्यार का इजहार किया।
4: मुझे हम पसंद है। खुश की।
3: शराब लेके। शराब लेके।
0: तभी तो दादी जब पुष्पी को डंडे से मार रही होती है तो उसका असली रूप सामने आ जाता है।
5: वही जो मंडप से भाग गई थी जिस कारण माँ ने अंदर से शादी की, वही खुशी मौसी। हाँ वही।
0: मिल जाता है मौका सच का खुलासा करने का। ऐसे में देखिए कैसे वो पुष्पी से उगलवा ही लेती है कि वो कुसुम नहीं बल्कि पुष्पी मासी है। लेकिन यहाँ पर मामा मामी खेल खेल जाते हैं। यानी कि फिर एक बार सच सामने आते आते रह गया, क्योंकि मामी कोशिश कर रही है पुष्पी का नशा उतारने की। ऐसे में गुरु आ जाता है नींबू पानी लेकर और उससे सवाल करता है, लेकिन तब तक पुष्पी होश में आ चुकी है और वो इस बात से इनकार कर देती है कि वो पुष्पी है, जिस बात को लेकर अब फिर रूहानी पर सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, रूहानी पर तो ये भी इल्जाम लगा है कि कुसुम को नशा देने वाली कोई और नहीं बल्कि रूहानी ही है। ऐसे में आज सभी घर वालों का और गुरु का गुस्सा सातवें आसमान पर है।
6: आपसे ये नहीं पूछेंगे, किया कौन, क्योंकि हमारे लिए आप किसी भी रूप में हमारी माँ है। बस हम इतना जानना चाहते हैं कि आप इसकी मौसी क्यों बने।
0: रूहानी अपने मिशन में फेल हो चुकी है। सच सामने आते आते रह गया। अब देखना होगा कि कैसे रूहानी खुद को सही साबित करेगी और करेगी पुष्पी का पर्दाफाश। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
7: वैसे तो यहाँ भी है चाय के अलग अलग फ्लेवर्स, कहीं है कड़क चाय तो कहीं है मीठी मीठी, कहीं है दूध वाली तो कहीं है ग्रीन टी की तरह फ्लेवरफुल येट वेरी जेंटल। मैं तो बात कर रही हूँ श्रुति झा और शब्बीर आलूवाले के इस नए शो की, जिसका नाम है ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको अपराजिता और रक्षित के पास, क्योंकि शो में है बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो लेकर आ रहे हैं दोनों को एक दूसरे के पास। वो बोलते हैं ना किस्मत कनेक्शन। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको इस शो का क्विक अपडेट।
0: रक्षित और अपराजिता की बढ़ती नजदीकियाँ, हुई दोस्ती की शुरुआत, अपराजिता के लिए रक्षित की फिक्र,

0: स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनफा तुम देना साथ मेरा में धीरे धीरे जुड़ रहा है रक्षित और अपराजिता का किस्मत कनेक्शन। भाई दोनों धीरे धीरे ही सही लेकिन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ऐसे में फिर एक बार रक्षित ने की अपराजिता की मदद और ये दोनों बैठ गए हैं कार में, जहाँ कभी हो रही है नोकझोंक तो कभी रक्षित अपराजिता को निहारते तो कभी चल रही है इनकी बातें।
1: वैसे रश्मि जी,
2: जी
1: आपकी जो फ्रेंड है ना अपू पप्पू, तो बचपन से उन्हें बीमारी है, अभी अभी हुई है।
2: कौन सी बीमारी? मुझे कोई बीमारी नहीं
1: है। है है है, पर तुम्हें पता नहीं है। And it's fine. क्या है ना, ऑफ लोगों के साथ ऐसा होता है, उन्हें होता है पर उन्हें पता नहीं होता।
2: मैं ऑफ नहीं हूँ।
1: ये क्लासिक क्लासिक सिम्टम है ये, बट इट्स फाइन। तो बताइए ना रश्मि जी कि अच्छा बनने की बीमारी जो है वो बचपन से है अभी अभी हुई है?
2: बचपन से है।
1: बचपन से
2: क्या? बचपन से है? अगर अच्छा होना बीमारी है ना तो आप भी आधे बीमार।
1: आधा ना, पूरा तो नहीं, पर तुम पूरी ऑफ हो कम्प्लीटली। I like a giggle, so cute. मतलब वादे के लिए जेल कौन जाता है? तोड़ सकती थी वादा।
2: अच्छी नियत से किए गए वादे ना अच्छी सीरत वाले निभाते हैं।
1: क्या लाइन मार रही हो तुम।
0: भाई दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय करते हैं और ये साफ देखने को जाहिर है, तभी तो कार में चल रही हैं इनकी ये बातें।
1: क्या लाइन बोली है तुमने, मतलब एक ही लाइन में मेरी नियत और अपनी सीरत दोनों को अच्छा बना दे। इट्स लवली।

0: ये कंपटीशन मुश्किल है क्या तुम्हारे लिए?
1: जरूरी है, ये कंपटीशन बहुत जरूरी है मेरे लिए, इसलिए मुश्किलें नजर आ रही।
0: यू नो ना, ये कंपटीशन जीतना जरूरी नहीं है, तुम हार भी सकती हो।
1: पहली बार अपनी जिंदगी में अपने लिए लड़ रही हूँ, अब तो मेरा इस बार हार नहीं मान सकती।
0: तुम हमेशा ऐसे बिना फिल्टर के बात करती हो, सिर्फ मेरे सामने?
1: आप हमेशा ऐसे बिना फिल्टर के सुनते हैं या सिर्फ मेरे?

0: अरे इतने जोर से मारना जरूरी था, उठा दिया ना अब।
1: नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं सो नहीं रही थी, वो बस झपकी झपकी लगी।
0: ये
2: बिन मांगे जो देता है ना, उसकी झोली में भगवान बिन पूछे सब कुछ दे देते हैं।
0: थैंक यू।
2: राजा रानी की जोड़ी सलामत रहे। खुश रहो राजा।
0: अरे नहीं नहीं जोड़ी नहीं है, मैं सिंगल हूँ, ये भी सिंगल, आई मीन दोस्त है।
1: क्या हो गया, क्यों घबरा रहे इतना?
0: अरे नहीं घबरा नहीं रहा, जोड़ी बोलकर चली थी, मतलब जरूरी थोड़ी है कि सिंगल सिंगल जोड़ी बन जाता है, कभी कभी सिंगल सिंगल सिंगल सिंगल रहता है ना, जैसे 1+1 इज नॉट नेसेसरी 2, 1+1 कभी कभी 1+1।
1: क्या बोल रहे हैं आप? बस यही रोकिए।
0: अरे नहीं मैं घर तक छोड़ूंगा, क्योंकि क्या है ना, लड़कियों को उनके दरवाजे तक छोड़ना चाहिए।
1: आप ये समझिए कि यही मेरे घर का दरवाजा है। देखिए बड़का छोटी सी गली है और आपकी गाड़ी बड़ी है, इनफैक्ट आप फंस जाएंगे, और रश्मि है ना मेरे साथ चली होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल चल
0: पक्का?
1: एकदम पक्का, मेरा ही मोहल्ला है।
0: ओके
1: थैंक यू,
0: गुड नाइट।
1: गुड नाइट, थैंक यू।

0: यार रक्षित पूरा ऑफ हो गया क्या? और ये रेडियो को क्या हो गया आज? कुछ भी गाने बज रहे हैं? नॉट ही रेडियो आज के लिए ऑफ।
1: अपराजिता तक अपने घर तो पहुंच गई है, लेकिन उसके मन में डर अब भी है अपने पति का।
2: जलाया तो दूसरे का इंतजाम कर लिया। तेरी ये साड़ी तो मैं बनने दूंगा नहीं, चाहे तो कितने ही डब्बे ले आ।
3: तुम इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो गई।
4: नहीं नहीं, ये बहुत गलत। मैम प्लीज, मैं आपसे भाग मत दो। मैम आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ।
1: खैर, बात करें रक्षित और अपराजिता की, तो फिर एक बार रक्षित अपराजिता के पिता के सम्मान के लिए ईरा पर बरसेंगे, जो है कहानी में आने वाला ट्विस्ट, जो देखना होगा काफी दिलचस्प।
3: मैं क्यों माफी मांगू?
0: तुम्हारे पापा के उम्र के आदमी के साथ तुम जो बदतमीजी की है, उसके लिए माफी मांगो।
1: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: जिस तरह एक अच्छी चाय हमें कंफर्ट देती है ना, कुछ ऐसा ही होता है इस कहानी में, जब नाहर और रूही आते हैं एक दूसरे के साथ। देखिए, यहाँ तो है प्यार वाली वॉर्म्थ। अब वो अलग बात है कि इन दोनों के बीच भी हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कभी हो जाते हैं एक दूसरे से अलग, फिर कन्फ्यूजन सही हो जाते हैं, आ जाते हैं एक दूसरे के पास। देखिए, अब की बार ना, जब आप आए एक दूसरे के पास, तो फॉरएवर रहें एक दूसरे के साथ। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको मन सुंदर के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
6: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
1: रूही और युवराज का नच बलिए।
6: बंदा ये बिंदास है।
1: हुई युवराज की जीत।
7: रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है। रस
1: झूम कर नाचे मियां बीवी।
7: ये बिंदास है,
6: बंदा ये बिंदास है।
1: दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर देखिए कैसे रूही युवराज संग डांस कर रही है सब कुछ भुलाकर। तो आखिर ये कैसे हुआ? क्योंकि रूही को तो सारा सच पता था, और अचानक वो युवराज के साथ ताल से ताल कैसे मिलाने लगी, तो हम आपको बताते हैं। असल में युवराज ने रूही को हिप्नोटाइज कर लिया है, जिस वजह से वो अब युवराज की हर बात मान रही है। और ऐसे में आज युवराज की खुशी सातवें आसमान पर है, तभी तो वो झूम रहा है और अपने साथ साथ नचा रहा है रूही को भी।

0: India! I love India. India is so cool. India is great. मुझे लगा था, मुझे मैंने सुना था इंडिया में बहुत सारे टैलेंट्स हैं, लेकिन आज देख लिया, मान लिया,
1: हाँ युवराज की जीत हुई है एक तरह से देखा जाए तो, नाहर की हार हो गई है। नाहर बेचारा समझ नहीं पा रहा है, वो एकदम ट्रॉमा में कि क्या हो गया ओवरनाइट, एंड युवराज इज सेलिब्रेटिंग हिज विक्ट्री।
2: तो भाई जीत क्या हुई है, आइए हम आपको बताते हैं। असल में युवराज हो गया है कामयाब नाहर को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने में, पर उसने ऐसा षड्यंत्र रचा जिसके बाद रूही ने भी ये मान लिया कि युवराज ही नाहर है, और ऐसे में देखिए कैसे वो असली नाहर को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रहा है, क्योंकि अब युवराज चला रहा है अपने हिप्नोटाइज का जादू।
0: कोई नहीं सुनने वाला। ओ फ्रॉड कहीं के, निकल।

0: एक्चुअली युवराज जो है वो एक बिजनेसमैन है, उसको इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक बाबा एक उसे मिलता है, कैसे भगवान मिलाते हैं उसे एक बाबा से, वो बाबा बहुत पावरफुल होते हैं। वो बाबा मतलब जो इसकी ख्वाहिश है युवराज की कि कैसे लेडी लक को अपने ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस कराए और तरक्की करे, क्योंकि इसकी इसका जो बिज़नेस है वो ठप हो गया, अचानक से सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो कैसे भी करके इसको संभालना है सब कुछ। तो वो जो चाह है उस बाबा तक पहुंचाया है उसको, एंड उस बाबा ने कुछ तो किया है, वो क्या किया है वो आगे के एपिसोड में पता चलेगा।
1: इसमें लिखा है कि मैं अग्नि राठौड़, मैंने ही नहार गोयनका को मारने की कोशिश की थी।
2: युवराज के इस जाल से कैसे बाहर निकलती है और असली नहार को वापस घर में लेकर आती है।
3: एक सच्चाई बताना चाहती हूं, जैसे आप अपना लाडला पोता समझ रही हैं, दरअसल ये
2: मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: सबके सामने लेके आए
5: चाय के साथ हम सबके कितनी सारी मेमोरीज है ना, और चाय एक ऐसी हैबिट है जिसका छूट पाना काफी मुश्किल है, स्पेशली हम इंडियंस के लिए। क्या आप अग्री करते हैं, यस और नो? वैसे यहाँ भी है चाय की मिठास, और एक्चुअली एंटरटेनमेंट भी है चाय की तरह एकदम कड़क। हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने की है आपके फेवरेट सितारे से ये प्यारी सी मुलाकात, जहां पर इमोशंस और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट बैलेंस है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देख लीजिए ऐसे।
6: हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरी खास मेहमान है एक ऐसी अभिनेत्री जिनको मैं उनके पहले शो से जानता हूं। आई हैव सीन द ग्राफ, एक छोटी बहू से होकर ये टेलीविजन की सबसे बड़ी रियलिटी क्वीन बनी, और अब आई थिंक 18-19 साल का एक सफर है हमारे चैनल के साथ। मैंने इनके साथ बहुत सारे इंटरव्यूज किए, अभी लाइफ का एक नई चीज को ट्राई करने जा रही है, तो मेरे साथ रुबीना दिलायक।
7: थैंक यू अमित।
6: तो रुबीना के जैसे मैं आपको पूरे 18 सालों से जानता हूं, फर्स्ट शो छोटी बहू, अस्त्रों के खिलाड़ी, एक नई चीज, लेकिन आप मैंने देख रहा हूँ कुछ नया अटेम्प्ट कर रही हैं। डिजिटल जमाना आ गया है, नैरेटिव बदल गए हैं, जमाना बदल रहा है, और बदलते जमाने के साथ जो बदले, आई थिंक वही आज का सर्वाइवल।
7: वेरी वेल सेड, यस।
6: सो व्हाट इज न्यू यू डूइंग, एंड मुझे पता चला कि पहली बार एक रियलिटी शो होस्ट करने जा रही
7: है। मेरी लाइफ में नयापन इज मी बिकमिंग अ मदर, एंड दैट हैज चेंज्ड सो मेनी थिंग्स इन माय लाइफ। It has changed my life 360 degrees, so much so that it has influenced the kind of work that I am choosing to do, and it is one of them. Mera the journey that followed after becoming a mother, it made me realize ke as a woman or as a society at large, we don't normalize speaking about pregnancy, a journey of motherhood, maa kaise bane, kya challenges the, kabhi kuch hua, kabhi kuch aapne aisa unusual apne saath experience kiya, we've never ever talked about it. And I had never ever even heard about it. So when I became a mother and when I went through the whole process, I realized, mujhe to ye bhi kisi ne nahi bataya tha, mujhe to ye bhi kisi ne nahi bataya tha, and how it difficult it is. And when you don't have anything to look up to, whom do you share it with? Okay. At that point in time, I strongly manifested ki bhagwan itni kshamata dena ki mere liye ye journey halanki upar niche rahi hai, but kam se kam mere haath mein wo samarthya tha that I could make everything around me work towards a healthy pregnancy, work towards a healthy motherhood journey. So please give me that power that I can share this feeling or this way of life with many other new mothers. So I can say I kind of manifested that I will build a community where women come talk about their experiences, because every motherhood experience is unique, every pregnancy is unique. And when you see with this show, when 10 different women came up, they are from all small towns in India. कुछ औरतें ऐसी हैं जो अपने घूंघट से पहली बार बाहर आई हैं, कुछ औरतें ऐसी हैं जिन्होंने पहली बार फ्लाइट्स ली हैं, कुछ औरतें ऐसी हैं जो घर से ही पहली बार निकली हैं। तो आप सोच सकते हैं, ऑल दैट मिक्स केम टुगेदर, स्टेड एंड हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड कि कैसे प्रेगनेंसी हर एक लाइफ को अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। नॉट जस्ट वन लाइफ, अ फैमिली सेटअप, अ रिलेशनशिप सेटअप, रिलेशनशिप विद योर you know, in-laws, relationship with your own maternal family, relationship with your husband, how it impacts. This is so powerful. Yet we always keep it aside ki yaar, aapne apni mother ko shayad apne life ke us padav par mahatva diya hoga, jab aapko feel hua hoga ki nahi yaar, done chasing the career part, done chasing everything. I really want my mother. I really appreciate her. So that comes at a very later stage. Because for us, we are always, hamare system mein ingrained hai. Maa banna kaun si badi baat hai yaar, bachche paida kiye na, aage karo na, apni life aage badhao. It is, I don't know, how did we sideline this thing, the most powerful part of creation in the universe, and we said, it is just so normal. So here with this show, we are trying to say, I am trying to say, माँ बनना बहुत बड़ी बात है।
6: मैं तो कहूँगा पुनर्जन्म होता है एक तरह से।
7: Absolutely, I have experienced it. मेरी बेटियों का जन्म ही नहीं, मेरा खुद का जन्म हुआ है। और मैं आपको बताऊँ, it's not physical, it's mental, psychological, spiritual, everything. I myself, I feel I'm a different human being. I don't know what the other people perceive it, but I myself, I feel. मुझे तो हर चीज़ नए सिरे से सीखनी पड़ती है। मुझे तो बात करना दोबारा से सीखना पड़ रहा है। क्योंकि मैं वो नहीं रही हूँ, मेरे विचार बदल गए हैं, मेरी सोचने की स्पीड बदल गई है, सोच से लेकर स्पीच तक कनेक्ट करने की उसकी स्पीड बदल गई है। When I can feel such a huge difference, because I am aware. Majority of women are not aware, because what they are fed is बच्चे पैदा करो, अपना परिवार संभालो, या अगर काम कर रहे हो वो संभालो, forget about yourself. It's only family, it's society, your child, everything. That's all. And it's a sad part that hum apni, I think, aadhi zindagi aise bita dete hain.
6: Hindustan hamara itna bada hai, itne sare pradesh hai, har pradesh ki apni manyataye hoti hai. To kuch aise kisse kahaniyan bahar ke pocket se show mein kuch ho, jo kuch alag insights aapko pata chale.
7: Bahut. बहुत आज भी लोग हैं जहां बोलते हैं कि यार तीन बेटियां होने के बाद बेटा चाहिए चाहिए भी। ऐसी भी माएं आई हैं जो बोल रहे हैं कि मैं काम करती थी, शादी होने के बाद पति ने बोला अब बस काम मत करना, घर पे रहो, घूंघट ओढ़ के रहो, क्योंकि हम नहीं चाहते
6: हमारी होता है, ये
7: है हमारे शो में आए, एंड वुमेन हैव बीन ब्रेव इनफ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. They want to go back, do a job. They want to step out. Mm-hmm. But the husband says, main kama raha hu na, ghar pe baithu. Today also the husband chooses what the dress the woman will wear. And he makes sure ke half sleeve now. Main jo bol raha hu, wahi kapda pehno. She wants to wear that dress. Nahi. Kyunki main kama ke de raha hu na, to aapko yehi pehna padega. Aaj bhi aise log hain, jo agar aap kisi aur caste mein shaadi karte hain, maa baap ne chhod diya hai. बेटी पराई है, अगर वो दूसरी कास्ट में शादी कर ली है, हमारे लिए मर गई है वो. ऐसे भी आज भी है वो लोग हमारे शो में. वैसे लोग आए हैं और उन्होंने खुलकर अपनी पीड़ा जो है पूरे देश को सुनाई है. दैट इज द पावर. व्हेन यू बिकम अ मदर, यू बिकम फियरलेस. तभी कहा जाता है जब एक औरत माँ बनती है, वो काली का रूप धारण करती है. इट्स द गॉडेस हरसेल्फ स्पीक्स थ्रू अ वुमन. So when she speaks the trauma of the generation and she becomes fearless. So wo jo ek chota sa period uski life mein aata hai na, where she is uninhibited. To wo period log na aksar daba dete hain. Wo kaise dab jata hai? Fir bacche ka palan poshan karo, tum to pagal hi hogi ho, tum to kya hi soch rahi ho, you know, kuch alag hi ho gayi hai, wapas apna क्या बोलते हैं, घर गृहस्थी संभालो, आवाज ऊंची करके क्यों बात कर रही हो, व्हाई आर यू पुटिंग योर ओपिनियंस अहेड, बिकॉज नेचर गिव्स यू दैट विंडो वेयर नेचर सेज दैट यू आर द सुप्रीम पावर, बिकॉज यू हैव द पावर टू रिक्रिएट, को क्रिएट. एंड व्हेन दैट पावर, व्हेन इट स्पीक्स थ्रू यू, पीपल विल ट्राई एंड शट यू डाउन, एंड द बेचारी औरत उस नॉइज में खो जाती है. But this phase, it shows you that how powerful you are. And that's what we are here to tell everyone. That's the power.
6: रुबीना, आपकी अपनी स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है. आपकी दो बेटियां हुई, उसके बावजूद आप काम कर रही हैं ऑलमोस्ट. आई मीन, तो इट्स क्वाइट इंस्पिरेशन यू योरसेल्फ. और मैं बोलता हूँ कि जो हमारे कलाकार होते हैं वो दे लाइक सोशल वर्कर्स, अपने किरदारों से लोगों के जहन में इतना पहुंच जाते हैं कि वो बात करते हैं, वो समाज बदलने की ताकत रखते हैं. तो आपको क्या लगता है, आपके जितने भी किरदार निभाए हैं, जिस तरह से लोग आपको एज देखते हैं, एज यू कैन इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ थॉट्स ऑफ द कंट्री, सो व्हाट स्पेशल पावर डू यू फील योर स्टेटस एज एन एक्ट्रेस over the years that you can actually influence the thinking of society? Do you think you can and how?
7: I'm very much aware that I can. And that's a huge responsibility.
6: It is responsible.
7: And if I don't choose that responsibility with awareness, I can mislead people who look up to me. And I've been fortunate to distinguish between what can give me instant success and what can remain in a long term for me and can change lives along with my own journey. For that matter, my choice of doing shows like Choti Bahu, Shakti, where I was a transgender
6: character, they have strong undertone messages.
7: Yes, running my own podcast show, Kisi Ne Bataya Nahi, doing a show like this, The Ward, or being a part of Big Boss, or being a part of Khatron Ke Khiladi. These are such platforms that I was fortunate enough to be aware ki yaar agar main ye karti hoon तो शायद कहीं ना कहीं अपनी जर्नी के थ्रू आई विल टेक फ्यू अदर लाइव्स एंड मे बी हेल्प देम ट्रांसफॉर्म. एंड इट वॉज एन इंटेंशनल डिसीजन वेयर इन फॉर शो लाइक शक्ति. द मेकर्स दे देमसेल्फ्स सेड, रुबीना, सो मेनी एक्टर्स टर्न्ड अस डाउन सेइंग कि यार हमें तो वो ग्लैमरस साड़ी पहननी है, वी वांट टू हैव अ लव स्टोरी, वी वांट टू हैव अ नाइस सॉन्ग इन द बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग. हमको मना कर दिया. आई सेड दिस इज सो एक्साइटिंग, दिस इज सो एक्साइटिंग.
6: आई थिंक यू वन ऑफ द फर्स्ट, आई मस्ट से दैट ऑन रिकॉर्ड, दैट रुबीना डिलैक वाज द फर्स्ट एक्ट्रेस हु एवर डेयर टू प्ले अ ट्रांसजेंडर ऑन स्क्रीन, बिकॉज़ इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर.
5: बोलो ना, बोलो ना मेरे को.
7: एंड देन इट, यू नो द स्टोरी, एवरीबॉडी फॉलोड सूट.
6: Everybody followed.
7: Yeah, even the movies. Even the movies,
6: yes,
7: yeah.
6: Yeah.
7: Nobody would acknowledge it.
6: Yeah.
7: But that's how we, yes. But that's how the whole revolution maybe began. But that's how it is. Jo cheeze unconventional thi, I found them so curious. I was like, why not? Same with this show. Why not? If I have the power, why not?
6: कहते हैं जो हमारा देश है अलग अलग अलग अलग हमारे खूबसूरत प्रदेशों से बना हुआ है, तो ऐसे ही खूबसूरत प्रदेश है हिमाचल प्रदेश. और वहां से मैं कहूंगा कि दो बहुत ही फेयरलेस वुमेन आई हैं, एक तो कंगना रनावत जो बिल्कुल खुल के बोलती हैं मैं नस्टिंग, और दूसरी रुबीना है. तो पहाड़ों की जो लड़कियां होती है बहुत स्ट्रांग होती है, यू नो, बिकॉज वहां का जो लाइफ इतनी ईजी नहीं होती. तो समवेयर देन बीइंग यू नो लाइक यू एंड कंगना, बिकॉज द फ्यू टू सक्सेसफुल नेम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. तो क्या होता है पहाड़ी लड़कियों में कि वो आज इतना हम देखते हैं, आप दोनों ही बेखौफ लेडी पावर हमें हिमाचल प्रदेश में दी है, तो क्या है इन पहाड़ों में हिमाचल के कि आप इतना बेखौफ?
7: आपने सुना होगा पहाड़ आपको झुकना सिखाते हैं. अ माउंटेन विल ओनली लेट यू समिट, विल नेवर लेट यू कॉन्कर इट.
6: क्वाइट अ थॉट.
7: यस. एंड सेकंड इज, जो आपके पहाड़ों में कुलदेवी और देवता हैं, दे आर सो इनग्रेन्ड इन एवरी लाइफ दैट इफ यू सबमिट टू देम, दैट पावर मेक्स यू फियरलेस. जब आपको पता है कि आपके कुलदेवी और कुलदेवता आपके साथ, उनका आशीर्वाद है, एंड यू टेक देम अलोंग विद यू, देयर इज नथिंग दैट यू कैन फियर. एंड दैट्स व्हाट माय दादी हैज ऑलवेज सेड, बेटा वापस आना, अपने कुलदेवता के आगे अपना सर झुकाना, एंड टेक योर डीटीज विद यू वेर एवर यू गो, नथिंग कैन टच यू. एंड आई थिंक इफ यू आस्क द सेम फ्रॉम कंगना, शी वुड से सेम. इट इज द माउंटेन एंड इट इज द गॉड्स रेजाइडिंग इन माउंटेन. इसलिए कहते हैं ना देव भूमि हिमाचल, देवों की भूमि है वो. और अगर वो देवी देवताओं को हम नहीं मान्यता देंगे तो कौन देगा.
6: जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुआ था आपकी दादी का एंड इट वाज अ क्यूट वीडियो, तो मुझे बताया वो कैसे अचानक बन गया, बिकॉज़ लॉट ऑफ आई सॉ द कमेंट्स, पीपल वर सो हैप्पी.
7: मेरी दादी
6: आपकी दिखाई
4: है. मैं फूल ये जो बनाया है ना, बनाया बहुत बढ़िया, बड़ा अपने हाथ से मेहनत की मेरी बहन ने, छोटी बहन ने.
7: मेरी दादी की छोटी बहन है.
6: अच्छा.
7: उनसे 10 साल छोटी है, हम उन्हें छोटी दादी बुलाते हैं. वो आज तक बुनती हैं, निटिंग करती हैं. तो मैंने वो जो ड्रेस पहना है ना, वो उन्होंने खुद बुना है अपने हाथों से.
4: इतना सुंदर बना रखा मेरी पोती,
7: और वो मुझे उन्होंने आज से 2 साल पहले दिया था. और मैंने एज अ टोकन ऑफ लव उसको अच्छे से रैप करके वैक्यूम सील करके घर पे रखा. तो इस बार जब मैं हिमाचल गई तो वो मुझसे मिलने आई, कहती है तूने वो कहाँ रखा, मैंने तेरे को बुन के दिया. मैंने कहा दादी मैंने संभाल के रखा है, वो आपका प्यार और आशीर्वाद है. तेरे को मैंने संभालने के लिए दिया था, तेरे को मैंने ये इसलिए दिया था ताकि तू दुनिया को बताए कि आज भी 87 इयर्स ओल्ड बुढ़ी 15 दिन में कपड़े बना सकती है. मैंने कहा वाह दादी आप ऐसा चाहते हो. कहती हाँ
8: दादी, पूरा स्टैंड अप फैशन वो बनाया मेरे लिए.
7: मेरे में टैलेंट है. और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंसान के पास जब वो पैदा हुआ और जब मरेगा कुछ नहीं लेकर जाएगा, लेकिन उसके पास जो टैलेंट और उसका जो स्किल है ना, वो उससे कोई नहीं छीन सकता मरते दम तक. वाओ, वो पढ़ी लिखी नहीं है पर उन्होंने दुनिया देखी है. और दैट वॉज द बिगेस्ट लेसन दैट आई गॉट, दैट आई वॉन्ट टेक एनीथिंग फ्रॉम माई लाइफ, नो फेम, नो रिलेशनशिप, नथिंग. व्हाट आई विल टेक इज माई ओन टैलेंट, जो क्योंकि विच इज वेरी यूनिक टू मी. And if I keep polishing it, which is like making into a skill, that's the only thing which, that will go with me. Because ये जो काम कर सकती थी वो सिर्फ रुबीना कर सकती थी और कोई नहीं कर सकता था. And if I'm not able to share it with the world, so that's what my dadi taught me that day. I was like, yes, dadi, you're absolutely right. I will make sure the world knows that you do this.
6: कहते हैं कि जो गृहस्थी होती है दो पहियों से चलती है, और अकेली लेडी हमेशा से बात होती है, एक हस्बैंड का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है.
7: Absolutely.
6: तो आप दोनों कैसे अपने इस पहिए को बना के रखते हैं, क्योंकि तभी गृहस्थी भी चलेगी बच्चों की. ये मतलब किताबी बात नहीं, क्योंकि असली
7: नहीं किताबी बात नहीं है, बट इसको मैं एक चीज यहाँ पर एड करूंगी. इट्स नेवर अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 50-50. समटाइम्स ही विल बी 60, आई विल बी 40, ही विल बी 80, आई विल बी 20, आई विल बी 90, ही विल बी 10. So we have to understand that in different phases of our life, sometimes he will be the supporter, I'll be the builder. Sometimes I'll be the supporter, he'll be the builder. So we have to recognize that very moment wherein who is playing what role. And we cannot undermine that. So jo gaadi ki, you know, ye analogy hai, do pahiyon ki, ye aisi hai ke kabhi gaadi thodi idhar jhuk ke chalti hai, kabhi gaadi idhar jhuk ke chalti hai. 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन कभी नहीं होगा, किसी का कभी ज्यादा किसी का कम रहेगा, लेकिन उसे एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है. क्योंकि जो अगर जो 80 पे चल रहा है, अगर वो नहीं ये समझेगा कि 20 वाला एग्जॉस्ट या एम्प्टी भी हो सकता है, या 20 वाला ये नहीं समझेगा कि 80 वाले ने बहुत कुछ दे दिया है, तो ये गाड़ी नहीं चल सकती है. सेम इज विद द अदर थिंग ऑल्सो, दैट आई कैन नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट ही विल ऑलवेज गिव हिज 80%. When he's down, when he's not well, when he's not feeling like it, I will have to take up that space and I will have to say, it's okay. You take your time. I will take the responsibility. That's how relationship works.
6: Yes. बस आखिर में जानना चाहूंगा कि एक और रियलिटी शो आप वापस करते हो कि खिलाड़ी पे भी आ रही है, ये भी चल रहा है, ये कैसे बैलेंस करेंगे? कहते हैं लाइफ बैलेंस का नाम है, तो वो भी ये भी अभी ये कैसे होगा पूरा मैनेज?
7: ये हो जाएगा. अगर मैं ये सोचूं कि ये कैसे होगा, हाउ विल आई मैनेज इट इफ आई गेट स्केयर्ड, आई विल नॉट बी एवर एबल टू टीच माई डॉटर्स व्हाट इज इट टू बी लाइक टेकिंग एवरीथिंग अलोंग टुगेदर एंड येट मेंटेनिंग योर सेल्फ. So that balance is very important. हमें अपने ड्रीम्स भी पूरी करनी है, हम सोसाइटी को जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वहां पे भी प्रेजेंट होना चाहते हैं, हम अपनी फैमिली में भी पूरे इन्वॉल्व होना चाहते हैं. सो द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज हाउ डू यू बैलेंस इट, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. आई मे नॉट बी परफेक्ट बट आई विल नेवर गिव अप.
6: That's a पहाड़ों की स्पिरिट.
7: Yes.
6: Thank you so much. Vina, always a pleasure to talk to you. And I hope the award के लिए, खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन के लिए, all the best. And क्या हम आपको डेली सोप में भी देखेंगे?
7: See, I said never say never.
6: Thank you so much. And that's the spirit of Rubina. And always a pleasure to talk to you. All the best and keep rocking.
7: Thank you.
6: That's all I can say.
7: Thank you. We'll keep meeting. Thank you.
5: लाफ्टर शेफ में तो आज बनेंगी स्पेशल टी रेसिपीज, कॉमेडी का तड़का और उसके साथ साथ चाय की मिठास, इक्वल्स एंटरटेनमेंट जोरदार. तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको आपके फेवरेट लाफ्टर शेफ्स के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इस मंच पर आज. पहले यहाँ है आपके लिए टोटल केओस इक्वल्स टू लाफ्टर थेरेपी.
9: मैं लड़की ब्यूटीफुल करके
10: शेफ में लगा बॉलीवुड तड़का.

सास बहू और बेटियां में आज देखिए ये नज़ारे, जहां पर लाफ्टर शेफ में होने वाला है स्पेशल एपिसोड, जहां पर सब पर चर्चाएगा बॉलीवुड का फीवर। तो आइए देखते हैं इस बॉलीवुड थीम स्पेशल में आज कौन क्या बना है। तो भाई शो की होस्ट भारती आज बन गई है माधुरी दीक्षित। हम आपके हैं कौन वाली, जहां पर उन्होंने वही रेड कलर का आउटफिट पहना है। तो वही हीरो नंबर वन बन गए हैं कृष्णा यानी कि गोविंदा, और कश्मीरा बन गई हैं करिश्मा कपूर। भाई इन्होंने तो लुक भी वही लिया है। तो आइए देखते हैं इनका ये वाला टशन। तो वही कुछ कुछ होता है कि राहुल बन गए हैं अर्जुन बिजलानी, वही टी शर्ट और वही एटीट्यूड के साथ। भाई हम दिल दे चुके सनम की जोड़ी भी यहाँ पर है, यानी कि ऐश्वर्या की तरह ड्रेसअप हुई है अंकिता लोखंडे। तो वही सलमान खान बन गए हैं विकी, और देखिए कैसे दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं खूब कॉम्प्लीमेंट। वही निया शर्मा ने अपनाया है प्रियंका चोपड़ा का अंदाज, जो उन्होंने फिल्म डॉन में पहना था। तो वही जन्नत जुबैर देखिए कैसे करीना कपूर के गीत वाले लुक से मिलता जुलता लुक पहना है, जहां पर उनका आउटफिट कुछ कुछ वैसा ही है जब भी मैट जैसा। तेजस्वी भी आज कयामत जा रही है इस शॉर्ट ड्रेस में, तो किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं लग रही।

0: खास मौके पर खास मेहमान बनकर आए हैं टीम बरेली के बच्चन, जो यहाँ अपने शो को प्रमोट करने पहुँचे हैं। तो भाई हो जाइए तैयार लाफ्टर शेफ में बॉलीवुड स्पेशल धमाकेदार एपिसोड देखने के लिए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: एक कप चाय सुबह सुबह जो होती है बहुत ही रॉकिंग, लेकिन कभी कभी हमारी सीरियल्स की कहानियों में एक कप चाय भी खोल देती है एक बड़ा राज और हो जाता है शॉकिंग। कुछ ऐसी ही शॉकिंग है हमारे पास, ये सारी खबरें जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ आपके लिए। तो चलिए फिर लेकर चलते हैं आपको इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर, जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में बात करते हैं जी टीवी के सीरियल सरू के इस प्रोमो की, जहां कहानी में लीप तो आ ही गया है, साथ ही साथ अलग हो गए हैं सरू और वेद के रास्ते।
2: दो साल बाद
3: मैं एमएलए के ऑफिस से आपके लिए इनविटेशन लेटर।
4: गुड मॉर्निंग सर।
5: समय की बदली चाल।
6: सर मैडम की वजह से कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज खुला है।
7: वाह, लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रखते हैं, ऐसा अद्भुत हुनर सब में कहा होता है। नाम क्या बताया आप?
4: सरस्वती बजाज पाटिल।
7: मेडल्स और रिश्ते बिल्कुल एक जैसे होते हैं सरस्वती, बहुत मेहनत और सब्र लगता है इन्हें पाने में, पर एक बार टूट गए तो टूट गए।
0: कलर्स टीवी के सीरियल शहर में कौसर का किरदार निभाने वाली माही विज ने इस शो को अलविदा कह दिया है। ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने दिल की बात कही।

बीती शाम हुई रितेश देशमुख की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी, जिसे सेलिब्रेट करने उनके करीबी दोस्त और फिल्म की कास्ट पहुंची। वही आपको बता दें कि यहाँ खास मेहमान बनकर आए सलमान खान, जो रितेश देशमुख के साथ नजर आए।

इसके अलावा भाग्यश्री, बलाब सवेरी, महेश मांजरेकर, फरदीन खान, जेनिफर विंगेट, सिद्धार्थ जाधव जैसे कई और कलाकार इस पार्टी के खास मेहमान बने। इसके अलावा शब्बीर आलूवालिया, जो कांची कॉल संग पहुंचे,

दिनों चल रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल, ऐसे में यहाँ पर सामने आए हैं इस रेड कार्पेट से जैकलिन फर्नांडिस और मोनी रॉय की कुछ नई तस्वीरें।

0: देख लीजिए लेफ्ट शेफ का ये प्रोमो, जहां ये सितारे आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे।
1: आजा मेरा गाजर आ गया।
2: मेरे गाजर से
1: आएंगे।
3: बेसन भी है ना?
1: बेसन इसमें जाएगा अचार में।
3: सारे जो मसाले हैं ना, सारे जो मसाले हैं ना।
4: अली मेरे को बचा रहे तू?
5: वो खुद बच रहा है अंकिता से।
6: उसे एक सुंदर सी लड़की मिली है, वो बहुत खुश है। बिट्टू?
5: ए बिट्टू नहीं, बिट्टू नहीं।
6: आज के दिन बिट्टू सिर्फ मेरा है।
5: लीजिए स्मॉल क्लास के साथ अपनी छोटी छोटी खुशियां।
6: बिट्टू अच्छे से बनाओ। बिट्टू मेरे स्कूल का है। बिट्टू
4: ये ऐसा नहीं लग रहा चेस की दो गोटियां लड़ रही है।
7: हमारी अनुपमा की जिंदगी में भी इमोशंस का फ्लेवर बिल्कुल मसाला चाय की तरह स्ट्रांग हो चुका है। तो क्या कुछ हो रहा है अनुपमा की कहानी में आज? क्या आया है यहाँ पर कोई नया ट्विस्ट, या फिर से आया है कहानी में कोई नया ड्रामा, या फिर हो सकता हो आ रही हो हमारे लिए यहाँ से कोई गुड न्यूज? चलिए फिर पता कर आते हैं इस कहानी का क्विक अपडेट। लेकर चलते हैं आपको अनुपमा के सेट पर।
0: कभी दिखा पंजाबी अंदाज,
8: पंजाबी, मस्त, मस्त।
0: तो कभी राजस्थानी लुक,

FM 쳐요. 그 시가 뭐홀. स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आज अनुपमा, देख विजय और बाकी सभी लोग अलग अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। कभी ये पंजाबी बनते हैं तो कभी राजस्थानी, और ये सब ये कर रहे हैं अपने कैफे के लिए। इन्होंने कई ऑफर्स भी रखे हैं और कैफे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इसीलिए अनुपमा कोई न कोई तिगड़म लगाती रहती है। और जहाँ हो खुशी का माहौल वहाँ सब कुछ अच्छा तो होगा ही, तभी तो इनकी ये ट्रिक लगता है काम आ गई है।

0: असल में अनुपमा को अपने रेस्टोरेंट को और भी ज्यादा पॉपुलर करना है, इसीलिए वो अलग अलग क्विजींस इंट्रोड्यूस कर रही है अपने इस कैफे में। और इसी के साथ वो इस अलग अलग क्विजीन ऑप्शंस के साथ साथ वो देखिए कैसे इस रंग में भी रंग रही है और सभी को रंगा रही है।
1: पधारो।
2: मैं राजस्थान से हूँ, घर के खाने की याद आ गई
3: तो आज खा लीजिए।

अनुपमा, क्या दिग्विजय, क्या बाबूजी और क्या बाकी के घर वाले, आज तो सभी रंग गए हैं एकदम ट्रेडिशनल अंदाज में। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इनके पंजाबी अंदाज पर।

पटियाला सूट, बरांदा और आंखों पर काला चश्मा पहनकर सभी का दिखा पंजाबी रंग। ऐसे में नच का तड़का लगाया अनुपमा, दिग्विजय और बाकी के सभी घर वालों ने। प्रयाज तो बापू जी भी पगड़ी पहनकर पंजाबी मुंडे बन चुके हैं, ऐसे में डांस तो बनता ही है।

0: तो भाई नाच गाने के साथ चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ ये सभी अपने कैफे में कर रहे हैं कस्टमर्स का स्वागत और ऐसे ही खुशी खुशी इन्हें खाना भी सर्व कर रहे हैं। भाई बिजनेस में खुशी आ जाए तो चार चांद लग ही जाते हैं। तो आइए माही और किंजल से जानते हैं उनके लुक के बारे में और साथ ही साथ अनुपमा के इस ट्रिक के बारे में भी।
1: स्परांदा तो उनका बेसिक कल्चर होता है कि सब लोगों को लंबे बाल होना बहुत पसंद है एंड टुवर्ड्स द एंड दे ऐड अ परांदा सो दैट इट ऐड सम ग्लिटर एंड ज्वेलरी जैसे कि पंजाबिया इन द मी आउटगोइंग होते हैं सो द ज्वेलरी इज अ लिटिल शाइनी सो दैट दूर से ही लगे कि हाँ पूरी डेक्ट अप है तैयार है चूड़ियाँ पहनी है चोटी बांधी है परांदा है हमने सलवार कमीज पूरा प्रॉपर सूट पहना हुआ है सो यस दिस इज ऑल अबाउट इट।

0: सो यस, दिस इज ऑल अबाउट इट. और जैसे पंजाबीज यूजुअली पहनते हैं, एक साइड से हम पिन करते हैं, दूसरी साइड से हम दुपट्टा खुला रखते हैं फॉर द शो. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट माई लुक. देखिए, अब जहाँ इतने क्रिएटिव आइडियाज मम्मी ला रही है, ऑफकोर्स लोग वहीं अट्रैक्ट होंगे, लोगों को यहीं आके खाने का मन करेगा. एंड मम्मी ने बहुत ही प्यारे डिस्काउंटेड प्राइस में ऑफर्स दिए हैं, लाइक 299 में पूरी थाली, एंड प्लस हम लोग इतने खुश के सर्व कर रहे हैं. सो यस, ऑफकोर्स देर आर सो मेनी पीपल हु वॉन्ट टू कम एंड ट्राई आउट देयर कल्चर फूड.
1: हमारी लव यू जिंदगी कैफे में पंजाबी फूड सर्व करने वाले हैं, तो हम सब ने अब पंजाबी अटायर ले लिया था. लास्ट टाइम हमने राजस्थानी फूड सर्व किया था विद राजस्थानी अटायर, सो दिस इज पंजाबी. एंड हम प्रॉपर पंजाबी फूड, पंजाबी थाली सर्व करने वाले हैं विद ऑल दिस अटायर, ऑल दिस ज्वेलरी, ऑल दिस पटियाला सूट. आंग टीका है जो इतना बड़ा है, मैंने क्रिएटिव को बोला ये तो मेरे सर जितना बड़ा है, बोले हाँ पंजाबी में ऐसे ही पहनते हैं. सो ये मांग टीका है, इयररिंग्स है, नेकलेस है, चूड़िया है, और बाकी तो ये एकदम प्रॉपर पंजाबी है जो मेरी चोटी है परांदा लगा के. सो दिस इज़ गिविंग पंजाबी वाइब द मोस्ट, और आउटफिट भी एकदम ही पंजाबी स्टाइल का है. तो या
2: आई राजस्थानी लुक की, तो सर पर चुनरी, राजस्थानी आउटफिट, मांग टीका और ढेर सारे गहने पहनकर अनुपमा, माही, किंजल, और बात करें मुंडों की तो यहाँ पर पगड़ी पहनकर ये सभी राजस्थानी अंदाज में पूरी तरह से ढल चुके हैं. प्याज तो दिग्विजय हारमोनियम लेकर गा रहे हैं और सभी लोग नाच रहे हैं और नाच नाच कर रहे हैं अपने ग्राहकों को खाना सर्व.
3: Yes,

0: आज हमने पहनी है राजस्थानी ड्रेस, जो मैं राजस्थान से हूँ, सो आई लव दिस ड्रेस, दिस अटायर. सो वी आर इन राजस्थानी अटायर बिकॉज अनोखी रसोई में हमने एक नया ट्विस्ट लाने की कोशिश की है कि हम राजस्थानी थाली इंट्रोड्यूस किए, तो इसलिए हम राजस्थानी कॉस्ट्यूम में ड्रेसअप हुए हैं, लाइक टू मेक इट ऑल लाइवली एंड अट्रैक्टिव. एंड this is my look, this is a very pretty color, this is also typical rajasthani jewelry, ye thoda gale mein lagti hai but anything for looking beautiful. So this is the earring and ye nath. dialogue aur ye sab kam hai aur isme montages zyada hai, like sab aa rahe hai, khana serve kar rahe hai, hum beech beech mein thoda dal baati kha bhi rahe hai, to bahut mazey aa rahe hai. it's like dance kam acting kam everything together and it looks so pretty on screen.
1: है एक राजस्थानी अटायर, नीचे हमने पहना है घाघरा, उसके ऊपर द ब्लाउज एंड द दुपट्टा विद सम ज्वेलरी, पूरी राजस्थानी लुक है विद द नथ्स एंड द मांग टीका. एंड ये हमने इसलिए सोचा क्योंकि हमें लगा कि हम गुजराती है, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम सबको गुजराती स्टाइल ही खाना खिलाए. यहाँ पे अहमदाबाद में बहुत सारे जगह से लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाई करने के लिए, कोई राजस्थान से होता है, कोई पंजाब से होता है, कोई कहीं से होता है, तो हमें लगा सबको वार्म एंड वेलकम फील होना चाहिए, तो सबको बुलाया आ जाओ प्लीज़. और उनको वार्म फील कराने के लिए, उनको घर जैसा फील करवाने के लिए हम ऐसे रेडी हुए हैं. लाइफ में ड्रामा ऑफकोर्स होता है, पर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ड्रामा होता है. तो आज एक खुशी का दिन है, हम सब ने सोचा है कि अलग अलग लोगों को जो राजस्थान से आए हैं उन लोगों को वेलकम फील करवाए, इसीलिए हम ऐसे तैयार हुए हैं और प्यार से मोहब्बत से पूरे दिल से उनको खाना खिला रहे हैं. हम सब मिलके उनको

0: सर्व कर रहे हैं दाल बाटी चूरमा।
1: वैसे आज तो दिग्विजय और अनुपमा देखिए कैसे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, ऐसे में पूरा परिवार भी भला कैसे पीछे रह जाता, इतनी सजधज है। तो ऐसे में तस्वीरें खिंचवाना तो बनता ही है, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या हो बिहाइंड द सीन। तो भाई अनुपमा ने ये काफी अच्छा प्लान बनाया है अपने कैफे को और भी ज्यादा पॉपुलर बनाने का। अब देखना होगा कि अनुपमा की ये ट्रिक काम आती है या फिर कहानी में आता है कोई एक और नया ट्विस्ट जिसे अनुपमा बखूबी हैंडल करेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: मन्नत में तो दुआओं और इमोशंस की मिठास हम सबका दिल जीत रही है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको फटाफट आपकी प्यारी सी मन्नत के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है आज उनकी जिंदगी में। वैसे देखिए इन्हें भी हार्डली मिलते हैं सुकून के पल। वैसे मन्नत अगर आज मिल जाए आपको बाय चांस एक ब्रेक, हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल टी डे और मैं बजाऊंगी आपके लिए एक सुपर स्ट्रॉन्ग कड़क चाय। क्यों
1: विक्रांत मन्नत और इजहार फिर लवशुदा हुए विक्रांत मन्नत, जल्द बजेंगी शहनाइयां। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में आ गया है मौसम प्यार का, जहां पर आज विक्रांत इतने सालों बाद नी डाउन होकर मन्नत को प्रपोज कर रहा है, उसे सगाई वाली अंगूठी पहना रहा है और देखिए कैसे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए हैं। भाई दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो चुकी है, ऐसे में एक दूसरे पर प्यार लुटाना तो बनता ही है और यहां कुछ ऐसा ही हो रहा है और विक्रांत और मन्नत अपने इस पुनर्विवाह से काफी खुश हैं।

0: जो लास्ट प्रपोजल था उससे डिफरेंट है. एंड जैसे हर जेस्चर की अपनी एक वैल्यू होती है. आई लाइक द फैक्ट दैट द राइटिंग ब्रिंग्स आउट दैट, क्योंकि कभी कभी जितने इम्पॉर्टेंट ग्रैंड जेस्चर्स होते हैं उतनी ही इम्पॉर्टेंट सिंप्लिसिटी होती है. लाइक सिंपल टेम्पल के आगे एंड अ वेरी सिंपल कॉन्वर्सेशन एंड टू द पॉइंट एंड वेरी वेरी नाइसली एंड ब्यूटिफुल प्रोमिसज फॉर फ्यूचर. तो आई थिंक बहुत खूबसूरत था इन इन द बेस्ट सिंपलेस्ट वे एंड इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम लास्ट टाइम. एंड एंड इक्वल इम्पॉर्टेंस होती है और इट्स इट वॉज ब्यूटिफुल.
1: यार मैं तो ये कहूँगा कि as she said वो अलग नेचर ऑल्सो वॉज बिकॉज आई थिंक राइटर्स ने इसलिए इस टाइप का लिखा है बिकॉज विक्रांत के लिए ये मोमेंट आ चुका है जो ग्रैंड जेस्चर हो चुका है. इस बार ये मोमेंट इज नॉट द फाइनल मोमेंट. वो समझ चुका है बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स नाउ दैट एक फैमिली इज नॉट जस्ट गेटिंग टू द पॉइंट कि आपने रिंग दे दिया. It's what comes after that. Ye, I feel, is not even remotely important in comparison to the fact that jo kuch Mannat ne safar kiya hai, Vikrant ki jo beti hai Dua, what she's had to go through, you know, to make sure that ye dobara kabhi na ho. That is the most important thing. So I think kudos to the writers ki unhone, as she said also, you know, that sometimes they went in for the simplicity because
0: the mature approach. Haan, I think because they have grown up in like 7 years mein mature hue hain, understanding of how he says ki relationships hui hai and that matters. Yeah. You're right.
2: दोनों की जोड़ी तो बन गई है लेकिन अभी दुआ के टेस्ट बाकी हैं जो पूरी तरह से दे रहे हैं विक्रांत. तभी तो जब दुआ उन्हें डांस करने के लिए कहती है तो वो झट से रेडी हो जाते हैं. लेकिन ये सारी बातें नीतू को पसंद नहीं आ रही क्योंकि उन्हें भड़काने का काम याशिका ने जो किया है. ऐसे में वो विक्रांत को ये सब करने से मना करती है लेकिन विक्रांत उन्हें शांत कर देता है.
3: विक्रांत तुम्हारा बाबा है, हमेशा से यही तुम्हारा बाबा है. ये कोई बात हुई क्या? ये मैनर्स नहीं है और इसे टेस्ट वेस्ट की भी जरूरत नहीं है. मुझे ये बात भी नहीं समझ में आती कि तू इसके बचपन में साथ दे रहा है.
4: मॉम क्योंकि ये दुआ के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? और हम सब पेरेंट्स से मिल के ये फैसला लिया, सो मैं रिक्वेस्ट करूँ अपनी स्वीट मदर से कि प्लीज प्लीज इस
5: दुआ कुछ बोलती है कि एक डांस परफॉर्मेंस होगा संगीत में तो उसमें मेरे बाबा और आपका मैं कंपटीशन करवाऊंगी. तो मेरे बाबा तो बहुत अच्छे डांसर हैं. तो विक्रांत कहता है कि मैं भी अच्छा डांसर हूँ और वो ऐसे करके दिखाता है, बोले मुझे तुम्हें इस मन्नत ने सिखाया है, मैंने उनके साथ डांस किया हुआ है. तो वो ये सब कर रहे हैं और मुझे ये भड़काती है वापस से कि ये सब क्या चल रहा है आंटी जी. ये तो मतलब बार बार विक्रांत मनाता रहेगा दुआ को और धैर्य दुआ और विक्रांत के बीच में आता रहेगा तो कैसे चलेगा ऐसे. ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा कि वो उसको अपना बाबा मानेगी. और मुझे गुस्सा आता है, मैं नीचे आती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये सब क्या है. तुम लोग भी बच्चे बन गए हो इसके साथ में, क्योंकि मैं दुआ को प्यार करती हूँ तो वो अपनी जगह पर है लेकिन मेरे बेटे को वो बार बार अप्रूवल दे रही है कि तुम हो या नहीं मेरे बाबा. तो मैं उसे कहती हूँ कि तो वो तुम्हारा बाबा है ऑलरेडी है तो ये टेस्ट की क्या ज़रूरत है. तो फिर विक्रांत मुझे कहता है कि मॉम शांत हो जाओ, कुछ ऐसा हम तीनों ने डिसाइड किया है ना कि हम और मुझे कोई टेंशन नहीं है वो ये सब मेरे टेस्ट कर रही है तो.
2: भाई फिलहाल तो ये एक हैप्पी फैमिली है लेकिन जल्द ही यहाँ पर शादी में ट्विस्ट का तड़का लगने वाला है. मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
6: लक्ष्मी निवास में तो फैमिली ड्रामा का कप, आज होने वाला है कड़क चाय की तरह, यानी आई एम श्योर आज तो चल रहा है यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा। वैसे देखिए जब ये परिवार आता है ना एक दूसरे के साथ, जब यहाँ पर होते हैं कन्फ्यूजन्स होते हैं नोक छोक, अब अल्टीमेटली तो एक परिवार को रहना ही है एक दूसरे के साथ, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो मन मुटाव है वो तो नेचुरल है। लेकर चलते हैं आपको लक्ष्मी निवास के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
2: राधिका के मंगलसूत्र पर शुरू हुआ बवाल। घर में हुआ नया तमाशा। फूट फूट कर रोई राधिका। जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में आज फिर एक बार घर में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर राधिका के भैया और भाभी पहुंच गए हैं उसका मंगलसूत्र छीनने के लिए, क्योंकि इस मंगलसूत्र को देकर पैसे मिलने वाले हैं। ऐसे में राधिका ये मंगलसूत्र देने को तैयार नहीं, तो वही भाभी मीनाक्षी देखिए कैसे मंगलसूत्र छीन रही है, और इसी बात को लेकर घर में बवाल भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर श्रीनिवास और लक्ष्मी भी आ जाते हैं जिन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा।
7: बढ़िया मौका मिला मंगलसूत्र से पैसा कमाने का।
3: बर्बाद हो चुकी है ना, तो सीधा इससे कुछ पैसा ही कमाने हैं। ऐसे कैसे नहीं दोगे तुम? हाँ, अरे हमें भी परेशानी होती है तुम्हारे मनहूस मंगलसूत्र से। हाँ, कुछ तो फायदा हो राधिका, सोचो ना। हाँ, निकालो, चलो उसे कर। नहीं निकालो, मैं मंगलसूत्र नहीं। अरे राधिका ऐसे कैसे निकालो,
2: राधिका पूरी तरह से टूट गई है और फूट फूट कर रो रही है। ऐसे में श्रीनिवास बनते हैं लक्ष्मी का सहारा और उसे आश्वासन देते हैं।
7: इसके साथ रहेगी तो तेरा मन जगह बदलेगी, विचार बदलेंगे।
3: हाँ दी पापा, तो सही कह रहे हैं। थोड़े दिन यहाँ से दूर रहोगे, शोर शराबे दानों से दूर रहोगे ना तो चेंज मिलेगा।
8: अब ये मतलब मैं ये आइडिया लगाता हूँ कि चलो किसी बहाने ये मंगलसूत्र तो निकालना है, तो कुछ तो आइडिया तिकड़मबाजी लगाता है ये विवेक कि यार मंदिर में माता रानी का जो मंगलसूत्र है वो खो गया है, तो चलो इसे निकालो, उन्होंने इनाम भी रखा हुआ है, तो इसी बहाने पैसे भी मिल जाएंगे, तो मतलब और इससे छुटकारा भी मिल जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि यार इसे निकालो और झंझट खत्म करो यार, मतलब क्या ही मतलब रोज उठ के वही सेम सीन करेंगे हम, कुछ अलग करते हैं सीन, तो ये हम लोग का चल रहा है फिलहाल।
3: मम्मी जी क्या हुआ ऐश्वर्या, क्या बात है?
2: वही दूसरी तरफ घर में एक और नया तमाशा शुरू हो गया है, जहां पर ऐश्वर्या चीखती चिल्लाती घर में आई है, क्योंकि उसके असली गहने नकली गहनों से रिप्लेस हो गए हैं और असली गहने हो गए हैं चोरी। ऐसे में वो घर वालों पर चोरी का इल्जाम लगा रही है, जिस बात से घर वाले भड़क गए हैं।
3: सारे के सारे जूरी नकली, मुझे मम्मा ने असली जूरी दी थी लेकिन एकदम नकली। कैसे मुझे 100% यकीन है चोरी पक्का इस घर में हुई है। किसी ने मेरे असली ज्वेलरी चुरा कर ये नकली गहने, ये चीप गहने रख दिए। कैसे हो सकता है बेटा? फिलहाल मुझे किसी एक पल सब पर शक है। सबको मेरे स्टेटस से इशू था, किसी ने
9: खुद से तो असली गहने पहन नहीं सकते, इसलिए मेरे असली गहने को ये नकली गहने से रिप्लेस कर दिया।
10: बस
9: ऐश्वर्या, बहुत ज्यादा हो गया हाँ तुम्हारा। मानती हूँ तुम्हारे गहने चोरी हुए, तुम्हें टेंशन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करोगी। हम सबको कुछ भी बोलोगे, मुझे कुछ भी बोलोगी तुम। तुम्हारे ये पैसे, गहने, शोहरत शौक नहीं है चोरी करके सजने से बचने का।
2: भाई तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर राज ने भी राजू को इस कुएं में फेंक दिया है, क्योंकि उसने भूमिका को उसकी पसंदीदा चीजें जो लाकर दी थी, इसी का गुस्सा राज ने राजू पर निकाला है।

0: जहां राधिका के घर में इतने तमाशे चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुधर रहे हैं वीर और उसकी माँ के रिश्ते। देखिए कैसे माँ बेटे हो गए हैं इमोशनल, जहां पर वीर अपनी माँ के लिए खुद काढ़ा बना कर लेकर आया है।
1: ठीक है तो वही बना के लाता हूँ।
2: अरे तुम पर आगे काढ़ा रसोई में जाकर तुम्हारी तबीयत ठीक है?
1: ये कोई मजाक की बात है, काहे नहीं बना सकते हम? नहीं बनाना है आप सीख नहीं, आप यहीं रहिए, आपको हमारी कसम है आप यहाँ से एक इंच नहीं लेंगे, बता रहे हैं आप, आते हैं।
2: वीर बेटा मैं बना लूंगी, तुम रहने दो।
3: अरे आप परेशान मत होइए, हम बना के ला रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है।
2: आज तो काढ़ा बना के मानेगा ये लड़का।

0: भाई ये तो मैम का कमाल है, हमारी मैम इतनी अच्छी परफॉर्मर है कि यहाँ तक घुसा सीन। हर एक्सप्रेशंस वर ऑन पॉइंट, ऑल वर बॉम्ब, और लिटरली फील हुआ क्योंकि नलिनी और वीर के इतने सीन्स आए नहीं है अभी तक। और ये एक ऐसा सीन था जहाँ पे वीर के लिए एक रिमाइंडर था कि उसकी माँ भी है जो अकेले सब झेल रही है, एंड आई नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर हर।
1: तो भाई फिलहाल तो मंगलसूत्र का राज ही है। आखिरकार राधिका को किसने मंगलसूत्र पहनाया, इसका खुलासा कब और कैसे होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो टी में होते हैं ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, इसलिए चाय पीने से हमारा स्ट्रेस कम होता है। वैसे हमारी ये जो अगली खबर है ना, ये भी टोटली है स्ट्रेस बस्टर, क्योंकि इसमें भी है एंटरटेनमेंट का हर रंग। यहाँ तो है आपके लिए एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल और ड्रामा, सब कुछ एक साथ। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देख लीजिए ऐसे।
1: पेश है टीआरपी की चार्ट, तो आइए देखते हैं इस हफ्ते कौन सा सीरियल रहा नंबर वन और कौन सा पहुँच गया नंबर 10 पर। शुरू करते हैं सीरियल का ये रिजल्ट। तो भाई कुछ हफ्तों से लगातार नंबर वन की पोजीशन बनाए हुए है सीरियल वसुधा। वसुधा में कई सारे ड्रामे, करिश्मा की चाले और परिवार में तमाशे लोगों को पसंद आ रहे हैं।
3: मीडिया को एड्रेस करना चाहते हैं, अगले हफ्ते इसी दिन हमारा सब कुछ हमारे पास होगा और करिश्मा का होगा दी एंड।
1: वसुधा
4: कहाँ लेकर संगीत में जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे और सबके सामने साथ में नाचेंगे।
5: मैं नहीं चाहती कि तुम्हें हर्ट हो
1: सके। दूसरे नंबर पर है गंगा माई की बेटियाँ। इस सीरियल में भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जो लोगों के दिल को भाते हैं।
5: आप यहाँ ठीक है ना, हमें ठकुराइन जी से बहुत जरूरी बात करनी है।
6: सहाना बेटा आपसे बात करना चाहते है।
1: तीसरे नंबर पर दो दो सीरियल्स हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और तुमसे तुम तक। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भी शादी का ट्रैक चल रहा है।
7: मेरे पोते की जगह क्या मेरे घर में नहीं,
8: आप डिसाइड कीजिए, मैं रहूंगी या वो।
9: थैंक यू माँ। किस लिए? लैपटॉप के लिए।
8: या राइट।
1: और तुमसे तुम तक में भी अनु और आर्या शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, जिसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड है।
10: मम्मी अब हमारा सामना होगा कंपटीशन।
1: चौथे नंबर पर है सीरियल अनुपमा। अनुपमा की स्ट्रगल्स, उनकी नई नई कहानियाँ लोगों के दिल को भा रही है।
11: अपनी मर्जी से अपने शर्तों पे जीना चाहती हूँ।
12: आप कर सकती हैं अनुपमा जी, मुझे आप पे भरोसा है।
1: पांचवे नंबर पर चार चार सीरियल्स हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, नागिन 7, लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट और क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, यानी कि इसमें है मिश्रण रियलिटी और फिक्शन का।
13: पुलिस को बुलाओ।
14: जिसने भी डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला है उसके फिंगरप्रिंट्स तो होंगे ना इस ताले पर, पुलिस उस चोर को पकड़ ले।
1: छठे नंबर पर दो दो सीरियल्स हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है और उड़ने की आशा।
15: लक्ष्मी निवास।
1: तो वहीं सातवें नंबर पर है लक्ष्मी निवास और जगधात्री। आठवें नंबर पर पहुंचे हैं दो सीरियल्स डॉक्टर आरंभी और मिस्टर एंड मिसेस परशुराम। नौवें नंबर पर है मन्नत, सहर और महादेव एंड सन्स। तो वहीं दसवें नंबर पर पहुंचा है मंगल लक्ष्मी और ओ हम नवा, तुम देना साथ मेरा। तो भाई ये तो रही इस हफ्ते की टीआरपी चार्ट, अब देखते हैं अगले हफ्ते इनमें क्या फेर बदल होती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: तो इसी चाय की मिठास और एंटरटेनमेंट के कड़क फ्लेवर के साथ अब लेते हैं आपसे इजाजत। आप भी अपनी फेवरेट चाय के साथ एंजॉय कीजिए इंटरनेशनल टी डे। मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है, फॉलो कीजिए हमें ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। टेक केयर, बाय बाय।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
4: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील कर चुके हैं वो कि लोग विदेश दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो बनाइए एक वीडियो, एक कैमरा उठाइए और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे GNT पर दिखाएंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
5: अमेरिका से एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। यहाँ एक महिला ने अपने पालतू एक्सोलोटल के साथ टिक टैक टो खेला और नतीजे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे महिला ने अपने एक्वेरियम के शीशे को ही गेमिंग बोर्ड बना दिया। महिला ने मार्कर से शीशे पर ग्रिड बनाई और खेल शुरू किया। महिला ने सबसे पहले एक्स बनाया, लेकिन असली मजा तब आया जब एक्वेरियम के अंदर बैठा नन्हा एक्सोलोटल भी एक्शन मोड में आ गया। जैसे ही महिला अपनी चाल चलती, एक्सोलोटल तैर कर ग्रिड के किसी खास खाने के पास जाकर अपना चेहरा टिका देता।

0: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटे बच्चे का मजेदार वीडियो देखकर लोग मुस्कुरा भी रहे हैं और उसकी बात से सहमत भी हो रहे हैं। वीडियो में बच्चा भीषण गर्मी में स्कूल जाने को लेकर अपनी नाराजगी मजाकिया अंदाज में जाहिर करता नजर आता है।
1: 40 डिग्री गर्मी में, कड़कती धूप में, पसीने से लथपथ हम बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। अरे यार, हम बच्चों में दया करो।
0: वो मासूमियत से कहता है कि अगर वो कभी प्रधानमंत्री बना तो पूरी गर्मी के दौरान स्कूल बंद कर देगा और बच्चों पर थोड़ी दया करेगा।
1: हम बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना, गर्मियों में स्कूल जाना बैन कर दूंगा। यू आर बेटर अंडरस्टैंड।
0: उसकी ये बेबाक बात और कॉन्फिडेंस लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चा जिस ईमानदारी और सादगी से अपनी बात रखता है वो इंटरनेट यूजर्स को काफी क्यूट लग रही है।
1: बच्चों में दया करो, हम बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना, गर्मियों में स्कूल जाना बैन कर दूंगा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: जबरदस्त गर्मी की चपेट में लगभग पूरा भारत। नागपुर में गर्मी ने तोड़ा 10 वर्षों का रिकॉर्ड। पारा पहुंचा 46.6 डिग्री। चंडीगढ़ में 47 डिग्री तो बांदा में 48 डिग्री के साथ बना देश का सबसे गर्म शहर। उत्तराखंड में गर्मी का येलो अलर्ट जारी। चिलचिलाती गर्मी में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के विशेष इंतजाम। दिल्ली के चिड़ियाघर में पशुओं के बाड़े में लगाए गए पंखे, कूलर, खान पान का भी रखा गया खास ख्याल। भीषण गर्मी के बीच भगवान को शीतलता प्रदान करने की कोशिश। काशी के मंदिरों में लगाए गए कूलर और एसी, 42 से 44 डिग्री सेल्सियस है काशी का तापमान। मैदानों के भीषण गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा है कश्मीर का मौसम। बांदीपुरा और रोजला में हुई बर्फबारी, श्रीनगर में जमकर बरसे बादल। नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब बस्तर के जंगलों को आईईडी मुक्त करने का अभियान जारी। अबूझमाड़ के घने जंगलों में चलाया जा रहा है ऑपरेशन क्लीन। विधि विधान से खुले द्वितीय केदार। भगवान मध्य महेश्वर के कपाट, बड़ी संख्या में मौजूद रहे भक्त। मध्य महेश्वर धाम में होती है भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
5: उत्तराखंड के द्वितीय केदार धाम पर आस्था का सैलाब। धूमधाम से खुले बाबा मध्य महेश्वर बाबा के कपाट। मध्य महेश्वर धाम पहुंची बाबा मध्य महेश्वर की उत्सव डोली। महादेव के जयघोष से गूंजा धाम। महादेव के दर्शनों के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। न्याय का देवता मानते हैं इन्हें लोग। अगले 6 महीने तक यही होंगे बाबा मध्य महेश्वर के नियमित दर्शन पूजन। सर्दियों में बर्फबारी के कारण मुख्य मंदिर के कपाट बंद होने पर उखीमठ लाई जाती है भगवान की उत्सव डोली। पंच केदार में दूसरे केदार के रूप में पूजे जाते हैं मध्य महेश्वर। मंदिर में भगवान शिव के नाभि के आकार के स्वयंभू शिवलिंग की होती है पूजा। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा में इस बार भी आस्था, उत्साह और श्रद्धा का अद्भुत संगम। देश भर से भगवान केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लाखों श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में आस्था का महासैलाब। 1 महीने से भी कम समय में 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं भगवान बद्री विशाल के दिव्य दर्शन। केदारनाथ में भी टूटा भक्तों की संख्या का रिकॉर्ड। एक दिन में 29,500 श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। करीब 7.25 लाख पहुंचा कुल आंकड़ा। केदारनाथ धाम मार्ग पर 10,000 से ज्यादा यात्रियों का हुआ सफल रेस्क्यू। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने चुनौतीपूर्ण हालातों में किया सफल रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर अचानक हुए भूस्खलन से बाधित हो गया था केदारनाथ यात्रा मार्ग, जिससे बीच रास्ते में फंस गए थे हजारों श्रद्धालु। चमोली में हेमकुंड साहिब में यात्रा की तैयारी पूरी, 23 मई को खुलेंगे बाबा के कपाट। भारतीय सेना के जवानों और सेवादारों ने बर्फ को काटकर रास्ता किया साफ, गुरुद्वारे के आसपास से भी हटाई गई बर्फ। हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा से रवाना हुआ पहला जत्था, भव्य रूप से रवाना किया गया जत्थे को। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह सिद्धू ने जत्थे को दिखाई हरी झंडी, 23 मई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। कल शाम घाघरिया पहुंचेगा पहला जत्था, 23 मई को तड़के सुबह घाघरिया से निकलेगा जत्था, सुबह 10 बजे हेमकुंड साहिब के खुलेंगे कपाट। चमोली के रुद्रप्रयाग में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। 18 मई को रुद्रनाथ के कपाट खुलने के बाद बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त, भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रही हैं फिजाएं। रुद्रप्रयाग जी की उतारी गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। भगवान को गर्मी से बचाने के लिए उपाय, मंदिरों के गर्भगृह में लगाए गए एसी। भीषण गर्मी को लेकर श्रद्धालुओं के लिए भी की गई विशेष व्यवस्था, मंदिर परिसर में लगाए गए कूलर, पानी की भी की गई व्यवस्था। अयोध्या के दुर्गा मंदिर में 29 मई को ध्वजारोहण समारोह, 3500 से अधिक महिलाएं बनेंगी अतिथि। माँ जगदम्बा मंदिर के शिखर पर पहली बार महिला संत करेंगे ध्वजारोहण, राम मंदिर आंदोलन में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को किया जाएगा याद। शाम 6 बजे से माँ दुर्गा मंदिर का होगा ध्वजारोहण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति सहित अन्य महिला संगठनों की बड़ी पदाधिकारी होंगे इसमें शाम। ध्वजारोहण के बाद सभी अतिथियों को रामलला व राम परिवार का कराया जाएगा दर्शन, 5 बजे से अतिथियों को मिलेगा प्रवेश। शेषावतार मंदिर पर भी 23 जून को होगा ध्वजारोहण, जोरों पर चल रही तैयारियां। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड में प्रशासन, राम मंदिर परिसर में लागू की गई है त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए खासकर वीकेंड पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत, हाईटेक तकनीक और सतर्क निगरानी के जरिए हर गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। मंदिर परिसर में सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों की तैनाती, संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के लिए कड़ी नजर। श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन कराने के लिए मंदिर में बढ़ाया गया दर्शन समय, सुरक्षा के लिए सर्विलांस टीम, साइबर सेल और एंटी सबोटाज टीमें सक्रिय, समय समय पर मॉक ड्रिल आयोजित। अत्याधुनिक सीसीटीवी और एआई आधारित कैमरों की निगरानी में पूरी अयोध्या नगरी, राम मंदिर की 3.5 किलोमीटर लंबी नई सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य तेज, बनाए जा रहे हैं वॉच टावर। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, पंडित पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी देवी देवताओं की प्रतिमा। बाबा महाकाल का चंदन, रजत मुकुट और त्रिपुंड अर्पण कर राजस्व रूप में किया गया भव्य श्रृंगार। ड्राई फ्रूट, फल, मिठाई का लगाया गया भोग, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव की जयकार। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा, विधि विधान से की पूजा अर्चना। एमपी के धार के भोजशाला में श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ कोयंबटूर, गर्मी से बचने के लिए हजारों पक्षी कोयंबटूर झील पहुंचे। जालंधर की 8 साल की हरनाज ने बनाया इंडिया रिकॉर्ड, लटक कर 25 सेकंड में 50 हुला हूप कर रच दिया इतिहास। 4 साल से कर रही है अभ्यास, हुला हूप करने वाली पहली भारतीय बच्ची बनी हरनाज। राजस्थान के बांसवाड़ा के चुराड़ा गांव पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा, स्थानीय लोगों से की मुलाकात। चुराड़ा गांव में सीएम भजन लाल का दिखा अनोखा अंदाज, स्थानीय लोगों के साथ नीचे बैठकर खाया खाना। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में कश्मीर का रुख कर रहे हैं सैलानी, बांदीपुरा में बड़े पर्यटक। ऊंचाई के इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों को किया मंत्रमुग्ध।

0: सैलानियों में एक प्रमुख आकर्षण के तौर पर उभर रहा है लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बांदीपुरा का राजदान पास। यहां मई के महीने में भी पहाड़ों पर जमी है बर्फ। चारों ओर बिछी हुई नजर आ रही है बर्फ की सफेद चादर, प्रकृति के नजारे से खिले सैलानियों के चेहरे। स्नो गेम्स का मजा लेते नजर आ रहे हैं लोग, पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय कारोबारियों के भी खिले चेहरे, उनके आय में हुई बढ़ोतरी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: East of the Pacific, making histories of Asian American art. On view now through August 16th at the Columbus Museum of Art. Featuring more than 60 works of artists of Asian descent, the exhibition explores how migration across the Pacific has shaped American art and culture. Experience the stories, perspectives, and artistic contributions that continue to influence our world. Don't miss East of the Pacific, making histories of Asian American art, now through August 16th. Plan your visit today at columbusmuseum.org.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है, वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है। बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर। एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी, आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो। नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है, जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है, तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है, तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है, तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, या मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूँ। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्यकंद, यह है सूर्यकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: जबरदस्त गर्मी की चपेट में लगभग पूरा भारत। नागपुर में गर्मी ने तोड़ा 10 सालों का रिकॉर्ड। पारा पहुंचा 46.6 डिग्री। चंडीगढ़ में 47 डिग्री तो बांदा 48 डिग्री के साथ बना देश का सबसे गर्म शहर। उत्तराखंड में गर्मी का येलो अलर्ट जारी। चिलचिलाती गर्मी में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के विशेष इंतजाम। दिल्ली के चिड़ियाघर में पशुओं के बाड़े में लगाए गए पंखे, कूलर, खान पान का भी रखा जा रहा है खास ख्याल। भीषण गर्मी के बीच भगवान को शीतलता प्रदान करने की कोशिश। काशी के मंदिरों में लगाए गए कूलर और एसी, 42 से 44 डिग्री सेल्सियस है काशी का तापमान। मैदानों के भीषण गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा है कश्मीर का मौसम। बांदीपुरा और जोर जिला में हुई बर्फबारी, श्रीनगर में जमकर बरसे बादल। नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब बस्तर के जंगलों को आईडी मुक्त कराने का अभियान जारी। अभूजमाड़ के घने जंगलों में चलाया जा रहा है ऑपरेशन क्लीन। विधि विधान से खुले द्वितीय केदार, भगवान मध्य महेश

0: है भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को सौभाग्य और समृद्धि का कारक माना गया है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि यदि इन दोनों की कृपा मिल जाए तो जीवन में खुशियां और संपन्नता एक साथ आ जाती है। लेकिन कैसे पाए श्री हरि और देव गुरु की संयुक्त कृपा? ज्योतिष कहते हैं कि इसके लिए अचूक उपाय है बृहस्पतिवार का व्रत। आज हम आपको बृहस्पतिवार के महाव्रत के बारे में बताएंगे और जानेंगे मनोकामनाओं की पूर्ति के कुछ दिव्य प्रयोग जो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं।

0: देवगुरु की कृपा से होगा शीघ्र विवाह, सुख समृद्धि और धन धान्य बढ़ेगा अथा। गुरु ग्रह के सारे दोष हो जाएंगे दूर, संतान की उन्नति होगी भरपूर। देवगुरु बृहस्पति की उपासना करने से न सिर्फ आपके ज्ञान बुद्धि में वृद्धि होती है, बल्कि आपको कर्ज मुक्ति के साथ ही आपके व्यापार रोजगार के संकट दूर हो सकते हैं। तो देखा आपने, देवगुरु की कृपा से ही जीवन में शुभता है, मंगल है, और जहाँ शुभता है वहाँ खुशियाँ और समृद्धि है। आज हम आपको देवगुरु बृहस्पति के जीवन में उपयोगिता और इस व्रत को करने से फलकारी प्रभाव आपको बताएंगे।
1: सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है और बृहस्पति को मंत्री कहा गया है, और बृहस्पति के बिना संपूर्ण ग्रह मंडल का संचालन नहीं किया जा सकता। तो जो ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान के अधिष्ठात्रा हैं, वो देव गुरु बृहस्पति हैं, और समस्त देवताओं के जो गुरु जी हैं वो बृहस्पति हैं। इसलिए बृहस्पति वार का व्रत रहने से ज्ञान वैभव अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें बृहस्पति वार का व्रत रहना चाहिए।
0: माना जाता है कि बृहस्पति के अधिपति हैं श्री हरि, और उनके व्रत का सबसे उत्तम दिन बृहस्पतिवार का व्रत माना गया है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत ही फलदायी है। माना जाता है कि बृहस्पतिवार व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही दंपति को संतान का सुख मिल जाता है। माना जाता है कि ये व्रत इतना कल्याणकारी है कि विवाह की सभी अड़चनों को दूर कर देता है, साथ ही दांपत्य जीवन में भी मधुरता लाता है।
1: बृहस्पतिवार का व्रत करने से कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, कुंडली में गुरु जो है तो मकर राशि नीच राशि पर हो, अथवा कुंडली में बृहस्पति मारक अथवा मारकेश हो, सप्तम अष्टम द्वितीय अथवा द्वितीय सप्तमेश अष्टमेश हो, तो इन समस्त ग्रह बाधाओं की निवृत्ति के लिए बृहस्पति भगवान का व्रत करें और साथ साथ में उनका लाभ प्राप्त करें। गुरु ग्रह की पीड़ा का शमन होता है।
0: बृहस्पतिवार के व्रत से श्री हरि और बृहस्पति ग्रह दोनों की कृपा मिल सकती है। श्री हरि की कृपा से संपत्ति और संपन्नता दोनों मिल सकती है। बृहस्पति देव की कृपा से संतान और विवाह की समस्याएं दूर हो सकती है। ये व्रत हर प्रकार से सुख शांति और समृद्धि देता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति की कृपा के बिना जीवन में खुशियों का संचार संभव नहीं है। ज्योतिषी मानते हैं कि देव गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। जिनकी कृपा अगर मिल जाए तो जीवन के सभी संकट छूमंतर हो जाएंगे। तो समझिए ज्योतिष में बृहस्पति का क्या स्थान है। नवग्रहों में

0: पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। पीला रंग स्वर्ण, वित्त और कोष, कानून, ज्ञान, मंत्र, ब्राह्मण और संस्कारों को नियंत्रित करता है। पाचन तंत्र, मैदा और आयु की अवधि को निर्धारित करता है। पांच तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। महिलाओं के विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति से ही तय होती है। माना जाता है कि बृहस्पति के दिन विष्णु भगवान और बृहस्पति देव दोनों की पूजा होती है। कहते हैं कि इस दिन किया गया व्रत आपकी झोली खुशियों से भर सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत रखना किनके लिए लाभकारी है। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति कमजोर हो, जिनका विवाह ना हो पा रहा हो या वैवाहिक जीवन खराब हो, जिनको संतान संबंधी कोई भी समस्या हो, जिनको पेट या मोटापे की कोई समस्या हो, जिनको अपने आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करना हो। जानकार बताते हैं कि हर व्रत और उपासना से किसी न किसी मनोकामना की पूर्ति अवश्य ही होती है। किसी के मन में संतान पाने की इच्छा होती है तो कोई शीघ्र विवाह की कामना लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति उत्तम कामना के साथ बृहस्पति का व्रत करता हो तो उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं।
1: सुबह उठ करके स्नान ध्यान करें, स्नान ध्यान करने के बाद संध्योपासन करके पीला वस्त्र धारण करें, पीले रंग का केसर अथवा पीले अक्षत का तिलक लगाएं, पीला टीका का प्रयोग करें, पीला वस्त्र पहने और साथ साथ में भगवान बृहस्पति के लिए चौकी बनाएं और उस चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछा करके देवगुरु बृहस्पति की प्रतिमा स्थापित करें और भगवान बृहस्पति की पूजा अर्चन करके और विधि विधान पूर्वक इनका व्रत का पालन करना चाहिए।
0: बृहस्पतिवार व्रत से जुड़े महालाभ तो आपने समझ लिए, लेकिन व्रत तभी सफल है जब उसमें सच्ची आस्था और सही नियमों का पालन किया जाए। तो कैसे करना चाहिए बृहस्पतिवार का व्रत, आइए जानते हैं सही विधि। प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। इसके बाद केले के पौधे में जल अर्पित करें। बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। चाहे तो बृहस्पति व्रत कथा भी सुन सकते हैं। दिन में केवल जल और फल का उपवास रखें। संध्या काल को पुनः मंत्र जाप करें।
1: इस तिथि के व्रत का नियम सर्वोत्तम नियम के सात्विकता का संचार करते हुए मांस मछली मदिरा लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन ना करें। किसी से झूठ अपवाद मत करें। किसी से लड़ाई झगड़ा क्रोध इत्यादि ना करें। ऐसा करने से हमें देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है, साथ साथ में हमारे जो कुंडली में ग्रह बाधा है, दोष बाधा है, वो शमन होता है।
0: देवगुरु बृहस्पति को मनाने और कुंडली के गुरु को मजबूत बनाने के लिए बृहस्पतिवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। ज्योतिषी मानते हैं कि कुंडली में अगर बृहस्पति मजबूत हो तो जीवन में इंसान तरक्की करता है। तो अगर आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं और देव गुरु से पाना चाहते हैं खुशहाल जीवन का वरदान, तो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वो महा उपाय जो देव गुरु बृहस्पति की महाकृपा आप पर बरसा सकते हैं।
2: हर पूजा उपासना में कुछ न कुछ विशेष सामग्री का प्रयोग होता है, तो आखिर बृहस्पतिवार व्रत में किन विशेष चीजों की आवश्यकता होती है और क्या है इस व्रत की उत्तम पूजन विधि? साथ ही अगर आप विवाह और संतान की बाधा से परेशान हैं, तो क्या करें इसके लिए उपाय, चलिए जान लेते हैं।

0: देवगुरु की कृपा से संतान होगी संस्कारी। बृहस्पतिवार व्रत से दूर होगी विवाह की दुश्वारी। बीमारियों से नहीं होगा आपका सामना। श्री हरि की कृपा से पूर्ण होगी कामना। माना जाता है कि बृहस्पतिवार का व्रत और खास पूजन करने से श्री हरि विष्णु की अपार कृपा हासिल की जा सकती है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जीवन में धन संपत्ति विवाह और भाग्य संबंधी बाधाएं दूर हो सकती हैं।
1: संपत्ति और संपन्नता को पाने के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि बृहस्पति की आराधना करें, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में और निर्णय सिंधु में भी प्रतिपादित किया गया है कि किम कुरवंती ग्रहा सर्वे यदि क्रेंदे बृहस्पति, यदि क्रेंद में बृहस्पति अनुकूल हो जाए कुंडली में तो सारे ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं और सारी सुख संपत्तियाँ अपने आप प्राप्त हो जाती हैं।
0: ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि जो लोग संतान सुख से वंचित है उनके लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत फलदायी साबित हो सकता है। तो क्या है संतान प्राप्ति के लिए विशेष उपाय, आइए जानते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत रखें। प्रातः काल जल में हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्पित करें। इसके बाद हल्दी की माला से बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः। इस दिन सूर्यास्त के पहले ही पीला भोजन कर लेना उत्तम होता है।
1: संतान के लिए यदि कहा जाए तो संतान के लिए गोपाल मंत्र का वर्णन किया गया है। क्लिम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। इस गोपाल संतान मंत्र का जप करें और पूर्वजों की कृपा को पाने के लिए त्रिपिंडी आदि का श्राद्ध करें, क्योंकि संतान में विलंब का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके घर में पितृदोष है और पितृदोष की निवृत्ति के लिए त्रिपिंडी करवाने के बाद ये गोपाल संतान का जप करें तो निश्चित ही घर में संतान की प्राप्ति होती है।
0: माना जाता है कि इंसानी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ता है ये ग्रह। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो परेशानियां बढ़ जाती है। ज्योतिष के जानकारों की मानी जाए तो आपकी जिंदगी में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना का कारक हो सकता है बृहस्पति। तो अब जानते हैं कि अगर आपका विवाह तय नहीं हो रहा तो कौन सा उपाय आपकी मनोकामना को पूरा कर सकता है।
1: विवाह के लिए तो कहा गया है, शास्त्रों में हमारे बताया गया है कि गुरु यदि आपका खराब है तो विवाह में देरी होती है। इसी के उपाय के लिए कहा गया कि यदि पुरुष वर्ग के विवाह में देरी हो रही है तो हमारे यहाँ एक श्लोक और एक मंत्र बताया गया है। पत्निम मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से पुरुष का विवाह बहुत जल्दी हो जाता है।
0: बृहस्पतिवार का व्रत रखें, पीले रंग के वस्त्र धारण करके श्री हरि की पूजा का संकल्प लें। इस दिन घर में प्रसाद बनाएं, पीला भोजन या भोग बनाना अच्छा होगा। अगर आप प्रसाद की व्यवस्था नहीं कर सकते तो केवल गुड़ और चने का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम विष्णुवे नमः का यथाशक्ति जप करें।
1: यदि लड़की के विवाह में दिक्कत हो रही है तो कात्यायनी मंत्र का जप करें, जो इस प्रकार से है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम मे कुरते नमः। और साधारण उपाय यह है कि जिसके विवाह में विलंब हो रहा हो तो वो हल्दी की एक छोटी सी गांठ को धारण करे अथवा केले की जड़ को, बृहस्पतिवार के दिन एक केले की जड़ को धारण करें। ऐसा करने से जल्दी से 40 से 45 दिन में विवाह के रिश्ते आते हैं और योग बनने लगता है।
0: चलिए, देव गुरु की कृपा से आपका विवाह तो हो गया, लेकिन तब क्या करें जब दांपत्य जीवन में समस्याओं का डेरा हो जाए, आए दिन जीवन साथी के संग कलेश की स्थिति बन जाए। तो चिंता ना करें, बृहस्पतिवार का ये उत्तम व्रत आपके सभी संकटों को दूर कर सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। बृहस्पतिवार का उपवास रखें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना करें। पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को पीला और मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें। ओम ब्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का जप करें। पूजा के बाद दोनों फूलों को अपने शयन कक्ष में सिरहाने रख लें। ये प्रयोग जितने लंबे समय तक किया जाए उतना ही उत्तम होगा।
1: बृहस्पति देव से जुड़े हुए महा उपाय यह है कि आप गुरुवार के दिन पीला कपड़ा पहने, गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाएं, गुरुवार के दिन यदि संभव हो तो आप गाय को केला खिलाएं, गुरुवार के दिन पीला फल, पीला मीठा, पीला वस्त्र का दान करें, गुरुवार के दिन सौभाग्य सामग्री माताओं को पीले रंग की साड़ी वगैरह का दान करें, और गुरुवार के दिन यदि संभव हो तो भगवान शिव को हल्दी से अभिषेक करें। ऐसा करने से सबसे बढ़िया गुरुदेव भगवान के उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में।
0: तो देव गुरु को प्रसन्न और श्री हरि की कृपा लाभ पाने वाला बृहस्पतिवार का व्रत आपके लिए अमोघट फलदायी हो सकता है। पूरी श्रद्धा भाव के साथ किया गया ये व्रत आपके जीवन की मुश्किलों का अंत कर सकता है। बृहस्पतिवार व्रत के साथ जुड़े हैं कुछ विशेष मंत्र भी, जिनका जप है आपके लिए विशेष लाभकारी।
2: माना जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करने से आपकी कुंडली का बृहस्पति बलवान होता है। हम आपको बृहस्पतिवार व्रत का महत्व और मनोकामना पूर्ति के दिव्य प्रयोग बता रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं बृहस्पतिवार के कुछ दिव्य और चमत्कारी मंत्र, जिनके जाप में छिपा है आपका कल्याण।
0: मंत्र है वैदिक परंपराओं और उपासना पद्धति की पहचान। मंत्रों के सही प्रयोग से किस्मत हो सकती है मेहरबान। तो आप भी मंत्रों की शक्ति को समझिए, मंत्रों के सही उच्चारण को जानिए, क्योंकि मंत्रों की शक्ति के आगे आपके जीवन की बाधाएं धाराशायी हो सकती है।
1: बृहस्पति भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सुगम मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप करने से बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं। साथ साथ में इन्हीं मंत्रों का अनुसंधान करके जप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए।
0: माना जाता है कि बृहस्पतिवार व्रत के दौरान कुछ खास मंत्रों का उच्चारण पूजा का संपूर्ण फल आपको दे सकता है। ज्योतिषी कहते हैं कि इन मंत्रों के उच्चारण से वातावरण शुद्ध होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। तो चलिए तो आपको बताते हैं बृहस्पति देव को प्रसन्न करने वाले कुछ दिव्य और अचूक मंत्रों के बारे में। ओम ग्रा ग्रीं ग्रो स्व कुर्वे नमः। ओम ऐं श्रीं बृहस्पताय नमः। ओम ब्रीं बृहस्पताय नमः। ओम क्लीं बृहस्पताये नमः। ओम ह्रीं क्लीं हूं बृहस्पताये नमः।
1: में बृहस्पतिवार के दिन केले का दान करें, लेकिन केला को खाना नहीं है, दान करें। पीला फल, पीला मीठा, पीला अनाज इत्यादि का दान कराकर ब्राह्मणों और गाय का पूजन करके ब्राह्मण और गाय के दान के लिए गौ अंश और ब्राह्मण अंश को निकालना नितांत आवश्यक है। ऐसा करने से हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी।
0: ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि विद्यार्थियों के लिए इन मंत्रों का जाप बुद्धि, एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाता है। साथ ही देव गुरु की कृपा से कारोबार में आ रही रुकावटें भी दूर होती है। माना जाता है कि यदि विवाह में देरी हो रही हो या दाम्पत्य जीवन में कलह हो तो इन मंत्रों का जाप अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास से बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, आपको भी श्री हरि की विशेष कृपा जरूर मिलेगी और इसके साथ ही कुंडली का बृहस्पति भी मजबूत हो जाएगा।
2: प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: हमारे देश का कोस्टल एरिया हो, रेतीली धरती या फिर पहाड़, ये सारी जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है, जिसे लाइफ में एक बार एक्सप्लोर करना तो बनता ही है। वहीं इस बीच क्योंकि युद्ध की वजह से दुनिया संकट के दौर से लगातार गुजर रही है, ऐसे में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विदेश यात्रा से बचने और अपने देश में ही घूमने की अपील की थी, जिसके बाद GNT ने भी अपने दर्शकों से अपील की है कि वो अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजें। एक ऐसा ही खूबसूरत वीडियो उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के पुजारी आशीष उनियाल ने हमें भेजा है, तो चलिए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी क्या है यमुनोत्री धाम और उसके आसपास के इलाके की खासियत।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी संपूर्ण भारत वर्ष से ये आह्वान कर रहे हैं कि आप आए हमारे इस उत्तराखंड की तपोभूमि में। जैसे हमारे पास यहाँ चारों धाम है, यमुनोत्री धाम है, और यमुनोत्री धाम से यहाँ पर जो ये सुंदर बृहगम कालिंदी पर्वत का दृश्य है, हमारे पास यहाँ पर हिरण्यबाहु और यमुना जी का संगम स्थल है।

0: हमारे पास यहाँ पर हरित भरित पहाड़ियां हैं, पर्वत है, जो कि विभिन्न जड़ी बूटियां औषधीय वृक्षों से सुशोभित है। हमारे पास यहाँ पर उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में हरसिल जैसी घाटियां हैं। हरसिल के साथ साथ तीर्थाटन के रूप में माँ गंगा का पवित्र धाम गंगोत्री धाम है। और मैं पुनः आप सबसे आह्वान करूंगा, अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप आए और यहाँ पर पर्यटन के साथ साथ में तीर्थाटन का आनंद लें और यहाँ की तपोभूमि का तपोभूमि के इन सुंदर दृश्यों का भरपूर आनंद उठाएं।
1: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेशी दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और बनाइए व्लॉग और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हम उसे जीएनटी पर जरूर दिखाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको इमोशनल भी कर देंगे।
2: इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए हैं और लोग इसे बार बार देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहे। इस वीडियो में एक शख्स अपनी गर्दन से करीब 9000 किलो वजन की बस को खींचता नजर आता है, जिसे देखकर लोग उसे ह्यूमन क्रेन कह रहे हैं। ये कारनामा अरूबा के रहने वाले एडमंड मोलिना ने किया है, जिन्होंने करीब 20 मीटर तक इस भारी बस को अपनी गर्दन के सहारे खींचकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उनके इस हैरान कर देने वाले स्टंट ने पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है और अब उनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में गिना जा रहा है।
3: मोदी जी, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर जाते
2: हैं। नन्ही बच्ची का ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसने अपनी मासूमियत से नेटिजंस को लोटपोट कर दिया है।
3: मोदी जी, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर जाते हैं।
2: देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ खास अपीलें की थी, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस गंभीर मुद्दे पर जहां बड़े बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे हैं, वहीं एक मासूम बच्ची ने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया है कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं।
3: हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा, या आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ।
2: इसके बाद वो हंसते हुए जो वजह बताती है, उसने इंटरनेट की पब्लिक को लोटपोट कर दिया है।

0: लो, हम आपके साथ हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
2: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
4: So they were disallowed from speaking their language.
2: In-depth conversations with A-list celebrities.
5: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
2: True crime podcasts you just can't stop listening to.
6: Others escape justice to live and die in infamy. These
2: plus the news and sports content you crave in podcast form.
7: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
2: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: Sage University, transforming your passion into profession.
11: जबरदस्त गर्मी की चपेट में लगभग पूरा भारत। नागपुर में गर्मी ने तोड़ा 10 वर्षों का रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 46.6 डिग्री सेल्सियस। चंडीगढ़ में 47 डिग्री और बांदा 48 डिग्री के साथ बना देश का सबसे गर्म शहर। चिलचिलाती गर्मी में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के विशेष इंतजाम। दिल्ली के चिड़ियाघर में पशुओं के बाड़े में लगाए गए पंखे कूलर, खान पान का भी रखा जा रहा है खास ख्याल। भीषण गर्मी के बीच भगवान को शीतलता प्रदान करने की कोशिश, काशी के मंदिरों में लगाए गए कूलर और एसी, 42 से 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचा वाराणसी का तापमान। मैदानों में भीषण गर्मी के बीच सैलानियों को लुभा रहा कश्मीर का मौसम, बांदीपुरा और जोजिला में हुई बर्फबारी, श्रीनगर में जमकर बरसे बादल। नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब बस्तर के जंगलों को आईडी मुक्त करने का अभियान जारी। अबूझमाड़ के घने जंगलों में चलाया जा रहा ऑपरेशन क्लीन। विधि विधान से खुले द्वितीय केदार भगवान मधमहेश्वर के कपाट, बड़ी संख्या में मौजूद रहे भक्त। मधमहेश्वर धाम में होती है भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा।

सितारों की प्राइवेसी में नो एंट्री। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। चर्चा जिसी को लेकर करेंगे, आप सब लोग इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे, और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सलमान खान ने कितने गुस्से में बहुत सारे ऐसे पोस्ट किए थे, लेकिन उनको गुस्सा क्यों आया आज बात उसी की करेंगे। और इसीलिए हमने अपने इस शो का नाम दिया है सितारों की प्राइवेसी में नो एंट्री। ये पूरा मामला दरअसल सलमान खान से जुड़ा हुआ है और उसके बाद एक बहस छिड़ गई है। बहस ये कि सोशल मीडिया और तकनीक के दौर में कहीं सितारों के निजी स्पेस में दखल तो नहीं हो रहा है। असल में मुद्दा यह है कि दो दिन पहले सलमान खान एक अस्पताल पहुंचे थे और पीछे पीछे पैपराजी यानी तमाम फोटोग्राफर्स भी वहां पर पहुंच गए, चिल्लाते हुए फोटो लेने लगे, लेकिन सलमान इसी से खफा हो गए। फिर यह बहस छिड़ गई कि सितारों की निजता में दखल क्यों दिया जाए। पैपराजी को सलमान खान ने नसीहत क्या दी और बिग बी को भी अपने एक मामले में क्यों करनी पड़ी पोस्ट, क्योंकि उनके साथ भी ऐसे ही वाकया सामने आए। वैसे केवल बिग बी और सलमान खान ही, ऐसे बहुत से मामले हैं जिनका जिक्र आगे हम करेंगे जहां पर पैपराजी किसी की निजी जिंदगी में दखल देते हैं। कितना सही आज इसी को लेकर बात करेंगे, तमाम सवालों पर, तमाम मसलों पर बातचीत होगी। हमारे साथ होंगे फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां और साथ ही साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। तो चलिए बात करते हैं फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स और दूसरे वीवीआईपीज की प्राइवेसी की, क्योंकि लगातार निजता का हनन हो रहा है। अक्सर सलमान खान, अमिताभ बच्चन, आलिया, विराट कोहली समेत कई दूसरे और बड़े हस्तियों के पर्सनल स्पेस में बाहरी दखलअंदाजी देखी जाती है। फिलहाल तो ताजा मामला सलमान खान से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल हुआ ये था कि मंगलवार देर रात सलमान खान अस्पताल पहुंचे, वो एक करीबी को देखने के लिए वहां पर पहुंचे थे और इसी दौरान पैपराजी यानी कि फोटोग्राफर्स भी अस्पताल पहुंच गए। और इतना ही नहीं, आरोप तो यह भी लग रहा है कि पैपराजी ने गाड़ी में भी सलमान का पीछा किया था और फिर अस्पताल परिसर में तस्वीर लेने पर सलमान गुस्सा हो गए। हालांकि यहां पर खबर यह भी आ रही है कि उन्होंने किसी तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर सलमान को काफी गुस्सा आया। तो मंगलवार रात तस्वीर खींचने के लिए पैपराजी चिल्ला रहे थे और इसी बीच सलमान खान ने पैपराजी को नसीहत दे डाली। सलमान ने पैपराजी को चुप रहने के लिए कहा। फिर करीब 20 घंटे बाद सलमान खान बुधवार रात एक पार्टी में पहुंचे। हालांकि ये पार्टी रितेश की फिल्म सक्सेस पार्टी थी। इस दौरान पैपराजी ने अपनी हरकत के लिए सलमान खान से माफी भी मांग ली, लिहाजा सलमान खान ने भी उन्हें तुरंत माफ कर दिया है। लेकिन इस बीच वीवीआईपी की तस्वीरें लेने पर एक बहस जरूर छिड़ गई है। कभी सलमान खान होते हैं, कभी अमिताभ बच्चन होते हैं, कभी विराट कोहली की निजता में दखल की बात सामने आ जाती है, तो ऐसे तमाम सितारे हैं। सितारों की निजता का भी सम्मान होना चाहिए। मोबाइल उठाया, वीडियो बनाया वाले दौर में सभी को यह समझना होगा कि हर जगह पर वीडियो नहीं बनाए जा सकते हैं, हर जगह सितारों का पीछा नहीं हो सकता है। ये सबसे अहम मसला है कि सितारों की अपनी पारिवारिक जिंदगी भी होती है, ऐसे में खुद ही सभी को नैतिक तौर पर भी एक लक्ष्मण रेखा तय करनी होगी। तो निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी एक बुनियादी मानव अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत जिंदगी, विचारों और डेटा को बराबरी बाहरी हस्तक्षेप या फिर दखल से बचाने की आजादी देता है। लेकिन अक्सर स्टार्स की प्राइवेसी पर वजह बेवजह दखल दिया जाता है। सबसे ताजा मामला सलमान खान से जुड़ा हुआ है। 19 तारीख का ये मामला है। सलमान खान किसी करीबी दोस्त को देखने के लिए मुंबई के हिंदुजा अस्पताल पहुंचे थे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैपराजी ने सलमान खान को तब देखा जब उनकी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी और बाद में अस्पताल तक उनका उन्होंने पीछा किया। और जैसे ही सलमान खान अस्पताल पहुंचे या फिर उससे बाहर अस्पताल से बाहर निकले, तो कुछ फोटोग्राफर्स ने उनका ध्यान खींचने के लिए भाई भाई चिल्लाना शुरू कर दिया। सलमान खान ने तब उन्हें अस्पताल के पास चुप रहने के लिए कहा और उनसे पूछा कि अगर आपके परिवार का कोई अस्पताल में भर्ती होता तो क्या वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं।

0: तो अस्पताल से घर पहुंचने के बाद रात करीब 3 बजे उनका गुस्सा एक बार फिर से फूटा। सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर कई सेल्फ पोस्ट किए हैं, साथ ही पेपराजी को एक बार फिर से उन्होंने नसीहत दी है। सलमान खान ने पोस्ट में लिखा, जिस प्रेस के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूं, जिनसे बातचीत की है, उनकी देखभाल की है, ये सुनिश्चित किया है कि वो भी अपनी रोजी रोटी कमा सकें, लेकिन अगर वो मेरे नुकसान से पैसा कमाना चाहते हैं तो चुप रहें, मजा ना लें। सलमान खान ने इशारों इशारों में ये भी कहा कि अगर कोई अपनी निजी जिंदगी या फिर मुश्किल वक्त का मजाक बनाने की कोशिश करेगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। सलमान ने आगे लिखा कि 60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला, ये याद रख लेना, जेल में डालोगे। और उसके बाद उन्होंने हा हा हा लिखा है। बेशक सलमान खान ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कुछ बातें मजाक में भी लिखी होंगी, लेकिन पेपराजी के व्यवहार से आहत सलमान खान के शब्दों में तलखी साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि सलमान खान ने बड़ा दिल दिखाते हुए पेपराजी को माफ कर दिया। दरअसल ये बुधवार शाम की, क्योंकि मंगलवार को ये वाकया हुआ था, बुधवार शाम सलमान खान रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी में पहुंचे थे और सलमान खान ने जैसे ही गाड़ी से उतरकर वो वेन्यू की तरफ एंट्री लेने लगे, वहां पर नजारा पूरी तरह से बदला हुआ था। मीडिया के कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे और सभी पेपराजी एक दिन पहले की अपनी हरकत के लिए एक ही सुर में सलमान खान को सॉरी बोल रहे थे। इस दौरान सलमान ने कैमरों के आगे पोज दिया, साथ ही पेपराजी को नसीहत भी दे डाली कि उन्होंने कहा कि ये सही जगह है, यहाँ फोटो आप क्लिक कर सकते हो। सलमान ने फिर से मजाक में कहा कि जोर से सॉरी बोलो। तो चलिए, ये तो सलमान खान का मामला है। जैसा हमने शुरू में ही कहा था कि तमाम सेलिब्रिटीज पेपराजी के किसी ना किसी व्यवहार से परेशान रहते हैं। बिग बी का एक मामला आपको बता देते हैं। दरअसल आजकल बिग बी एक क्रिप्टिक पोस्ट, उनकी काफी चर्चा में है। उन्होंने खास ह्यूमर वाले अंदाज में कविता शेयर की है जिसका सार ये है कि चील जब होवे शांत तो भैया तोते बोलन शुरू करें, यानी चील जब चुपचाप हो जाती है तो तोते चहचहाना शुरू कर देते हैं। फैंस बिग बी की इस पोस्ट को लेकर खूब चर्चा कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बिग बी ने खुद के अस्पताल में भर्ती होने की अफवाह उड़ाने वालों पर यह तंज कसा है। बिग बी ने पोस्ट के अंत में लिखा है, प्यार, प्रार्थनाएं और भी बहुत कुछ। चलिए, इसी को लेकर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद खान एक्टर हमारे साथ हैं, प्रदीप सरदाना कुछ ही देर में स्टूडियो में हमारे साथ पहुंचेंगे, रामकिशोर पाठशाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेजनी त्रिपाठी हैं, लेकिन सबसे पहले सना फरजीन मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सना, आपके पास आना चाहूंगी। आपने बहुत, आपका एक लंबा करियर है, आपने फिल्म रिपोर्टिंग की है, तमाम एक्टर्स के आपने इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ लिया है, लेकिन ये पेपराजी कल्चर आज की तारीख में क्या कैसे इसको देखा जाए? क्योंकि देखिये, एक कानून है निजता के हनन का, लगातार किसी की प्राइवेसी में जाना और लगातार बार बार उसको ट्रैक करना, ये कितना सही? क्या मुंबई में इसको लेकर कहीं चर्चाएं होती हैं?
1: हाँ जी, बिल्कुल इसको लेकर चर्चाएं होती है, स्पेशली क्योंकि जो आज जैसा हम बात करें ना कि हम सब ने लंबा करियर एक जर्नलिस्ट की तरह जिया है, हमारा काम ही रिपोर्टिंग है, जब आप उसे पेपराजी के साथ भी कनेक्ट करते हो वो भी कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और इस बारे में काफी मीडिया वालों ने भी पहले आपत्ति जनाई है, क्योंकि पेपराजी जो हम शायद एक इंटरनेशनल वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते थे जहां कैमराज पीछे भागते थे सेलिब्रिटीज के, जैसे प्रिंसेस डायना की जो हमने स्टोरी देखी है, जिस तरीके से उनका देहांत हुआ, उस तरीके की होती है पेपराजी। बट यहाँ बॉम्बे में हमारा बहुत ही पीआर ड्रिवन पैप कल्चर भी है कि आपको फोन करके बुलाया जाता है कि आप आए और हमें शूट करें एयरपोर्ट पे, कहीं जिम में या लोकेशंस पे। बट जब एक पेपराजी, जब एक कैमरा ले आप उनके घर के अंदर घुस रहे हैं, उन्हें एक डिफिकल्ट सिचुएशन में कैप्चर कर रहे हैं, या जैसे सलमान खान के इंसिडेंट पे हॉस्पिटल में, और स्पेशली हम जब देखते हैं किसी के फ्यूनरल पे जिस तरीके से कवरेज होता है कि आप जूम करके उनके चेहरे को दिखा रहे हैं, वो रो रहे हैं, ये सारे बहुत ही प्राइवेट मोमेंट्स होता है और ये एक बहुत ड्रॉ करना डिफिकल्ट हो जाता है ये लाइन कि कौन सा एथिकल है और कौन सा नहीं। बट ये शायद कहीं ना कहीं अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम इसे समझे और इसे फॉलो करें कि आप एक एक्टर है, एक पब्लिक फिगर है, बट उनकी भी कहीं ना कहीं प्राइवेसी है। जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, आलिया भट्ट के घर के अंदर एक कैमरा पर्सन ने जूम करके उनकी बालकनी से उनकी फोटो ली थी जब उन्हें पता भी नहीं था कि एक कैमरा वहां पे है। तो ये बहुत ही गलत है क्योंकि इवन दो वो पब्लिक फिगर है, वो एक इंडियन सिटीजन है जिनका एक राइट है, एक प्राइवेसी राइट जिसे हम कहते हैं, तो जब वो नहीं चाहते कि उन्हें कैप्चर किया जाए तो वो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं और स्पेशली फीमेल एक्टर्स की जब हम बात करें, पैपराजी जिस तरीके से उन्हें कैप्चर करता है, उनके बॉडी को सेंसिटाइज करता है, जूम करके उनके बॉडी के पार्ट्स को दिखाता है, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और मैं ये भी बता दूं कि पैपराजी जो ऑफिशियल यहाँ पे कैमरा पर्सन है, उन्होंने भी इसके अगेंस्ट बात की है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कैमरा उठाकर, मोबाइल फोन उठाकर आजकल खुद को पैप कह रहे हैं, बट इसका भी एक कहीं ना कहीं एक सिस्टम बनना चाहिए कि आप अप्रूव्ड हो, जैसे जर्नलिस्ट को आप, जी
2: बिल्कुल। सना, सलमान खान ने उसके बाद जो रिएक्शन दिया है, हालांकि उनका रिएक्शन बिल्कुल जायज है, उन्होंने उसमें एक बात और लिखी कि जिस प्रेस के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूं, जिनसे बातचीत की है, जिनकी देखभाल की है, सुनिश्चित किया है कि उनकी भी रोजी रोटी चलती रहे। एक बार जरा ये डिफरेंस समझा दीजिए, एक प्रेस, एक मीडिया, एक आप तरह आपके जैसे जर्नलिस्ट जो कि एंटरटेनमेंट और फिल्म कवर करते हैं, और एक पेपराजी, कितना दोनों में डिफरेंस है, क्यों मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जाता, और क्या ये सोशल मीडिया लाइक्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है, वायरल का बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि इस तरह की चीजें चलती हैं।
1: जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जो एक प्रेशर हो गया कि मुझे सबसे पहले शायद सलमान खान का एक वीडियो डालना है जहां पे वो दिख रहे हैं कुछ अलग करते हुए, ताकि मैं वायरल हो जाऊं, और ये प्रेशर कहीं ना कहीं पैपराजी और सोशल मीडिया पेजेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। और आप बिल्कुल सही कह रही थी कि एक डिफरेंस है, एक जर्नलिस्ट एक मीडिया कंपनी के साथ ऑथराइज्ड होता है, उनके पास अथॉरिटी है कि वो जाकर क्वेश्चन करे, प्रेस क्लब, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं वो जुड़े होते हैं। बट पैपराजी आज के टाइम पे, जैसे मैं बता रही थी कि कोई भी एक मोबाइल फोन उठाकर आज पैपराजी बन सकता है, एक इंस्टाग्राम पेज बनाकर वो सोशल मीडिया पे ये फोटोज डाल सकता है, और शायद इसीलिए एक सिस्टम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पे कि शायद एक पैपराजी को भी ऑफिशियल एक ऑथराइजेशन मिलना चाहिए, आपको प्रूफ देना चाहिए कि आप किसी कंपनी के साथ जुड़े हैं, और अगर शायद सोशल मीडिया के साथ जुड़े तो सोशल मीडिया की रीच क्या है, क्योंकि इस तरीके से आप आजकल कोई भी जब फोन उठाकर कैप्चर करता है तो वो बहुत ज्यादा गलत है। और सलमान खान ने बिल्कुल सही तरीके से कहा कि उनके दोस्त वहां एडमिट थे, या वो जिस रीजन से भी एक हॉस्पिटल में गए, वहां पे उनकी फिल्म के बारे में पूछना, या जिस तरीके से वो चिल्ला रहे थे, जो कि जया बच्चन ने भी काफी बार मेंशन किया कि पैपराजी जिस तरीके से बिहेव करते हैं, चिल्लाते हैं, ताकि शायद उनका एक रिएक्शन मिल जाए, ताकि वो वीडियो वो शेयर करके वो वायरल हो जाए, वो बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि आपका काम है कि आप कैप्चर करके ऑडियंस को वो वीडियोज दें, ना कि उनसे जानबूझकर उकसाए ताकि वो शायद गुस्सा हो या आपको एक रिएक्शन दे। और वो कहीं ना कहीं हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम आज के टाइम पे ये एक सेंसिटिविटी लाए पैपराजीज के कल्चर में, ताकि आप अपना काम भी करें। और बिल्कुल जैसे सलमान ने कहा कि रोजी रोटी की, ये पैपराजी उसी तरीके से कमाते हैं क्योंकि वो मोस्टली फ्रीलांसर्स होते हैं,
2: बिल्कुल,
1: तो जितनी उनकी वीडियोस वायरल होंगी उतने ज्यादा उन्हें पैसे मिलेंगे।
2: ठीक है सना, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चले शशांत, आपके पास आना चाहूंगी, आप भी एक एक्टर हैं, ये पैपराजी कल्चर से एक एक्टर, एक्ट्रेसेस या फिर तमाम जो वीवीआईपी लोग होते हैं, कितना ये मुश्किल है इनको हैंडल कर पाना?
3: बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। देखिए पापराजी जो है, या हमारे जो न्यूज वाले बच्चे हैं, उनको इतना कुछ, जो पुराने हैं वो बहुत अदब के दायरे में रहते हैं, लेकिन अभी जो नए बच्चे आए हैं वो कहीं भी घुस जाते हैं कैमरा लेके, वो किसी भी जो हरकतें करते हैं। और जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे दोस्त सलमान खान के साथ जो हुआ है, ऑब्वियसली वो किसी को मिलने गए होंगे हॉस्पिटल में, कोई करीबी होगा। अब हॉस्पिटल में आदमी जाता है तो उसका मूड बड़ा अजीब सा रहता है कि कौन है, मतलब क्या, कब ये निकलेगा, या क्या डॉक्टर्स, एक बड़ा अजीब अलग सा माहौल रहता है, बहुत आदमी डिप्रेस रहता है, बहुत वो रहता है। और उसके बीच में जब आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर जो प्रेस वाले जो है पापराजी का हो या मामा राजी जो भी है, ये लोग जो है वहां से चिल्लाते हैं फोटो और फिर उनके वो फिल्म मातृभूमि के बारे में पूछ रहे, ये कोई जगह है? और हॉस्पिटल है भाई, एक अकेला वहां पर वो पेशेंट नहीं है जो सलमान खान का दोस्त है या जान पहचान वाला है, और भी लोग हैं वहां पर
2: जी।
3: तो एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, हमारे पैप्स को इतनी वो होनी चाहिए कि भाई हम अस्पताल में आए या बीमार लोग है, कोई सीरियस है, कोई आईसीयू में है, तो इनकी इतना आवाज इतना न्यूसेंस हमें नहीं क्रिएट करना चाहिए, इतनी तो समझ और अकल इन पैप्स में होनी चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल। मैं लौटती हूँ रामकिशोर भारचा जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, ये कल्चर किस तरीके से समय के साथ या कहें कि सोशल मीडिया बूम जब से आया तब से और ज्यादा बढ़ा है, और दूसरी बात ये है कि एक सेंसिटिविटी जो होती है, हम उम्मीद करते हैं किसी जर्नलिस्ट में या फिर वो कोई भी इंसान जो कि फिल्म कवर कर रहा है या टेलीविजन को कवर कर रहा है या किसी को भी कवर कर रहा है, एक रूल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, क्या ये सब फॉलो किए जाते हैं?
4: देखिए नवजोत, आपको याद होगा कि प्रिंसेस डायना जो थी पेरिस में थी और वो किसी इवेंट में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी और पेपराजी जो है उनका पीछा कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि एक लुक उनका ले सकें, एक तस्वीर उनकी ले सकें, और उसी समय उनका वो एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पलटी मर्सिडीज और उनकी मौत हो गई थी, ये आपको किस्सा याद होगा। उस समय भी ये पेपराजी जो है उनके पीछे में लगे। तो जो पेपराजी कल्चर है बेसिकली तो वो तो वेस्ट कंट्रीज का कल्चर है, हमारे यहाँ पहले ये कल्चर नहीं होता था, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तब से पेपराजी जो है जिसको कि फोटोग्राफर बेसिकली कहा जाता है और वो जैसे इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म हुआ करता था एक टाइम पर, वो उस तरह के लोग होते हैं कि जो एक झलक पाने के लिए सितारे की या कोई ऐसा मोमेंट पकड़ने के लिए जिसे वो बताकर दुनिया के सामने लाकर अपने लिए कुछ कर सकें या अपनी ब्रांडिंग कर सकें, लेकिन उसके जो खतरे हैं और उसके जो पर्सनल लाइफ में घुसने के जो रास्ते हैं उन पर थोड़ी सी रोक जो है वो कम से कम लगनी चाहिए, क्योंकि सलमान का किस्सा अकेला किस्सा नहीं है, वो तो एक अभिनेता है, लेकिन कई अभिनेत्रियों के भी ऐसे किस्से सामने आए हैं जब पपराजियों ने उनकी तस्वीर लेने के बहाने उनकी पर्सनल लाइफ को टच किया है। तो नैतिक तौर पर अगर देखा जाए तो उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस या जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं एक तस्वीर लेने के लिए, उसको पेपराइज्म के नाम पर जो है काफी इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि उससे हमारा आपका और स्टार्स का ही नहीं उस आदमी का भी नुकसान होता है जिसके लिए वो पीछे भाग रहे हैं।
2: बिल्कुल, उनकी उनकी लाइफ भी इतनी ईजी नहीं होती। प्रदीप जी क्या कहेंगे इसको लेकर पेपराजी कल्चर को?
5: नहीं बिल्कुल, ये देखिए जो पेपराजी का एक प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ, मैं तो पिछले करीब 50 साल से फिल्म इंडस्ट्री को बड़े नज़दीक से कवर कर रहा हूँ, तो पहले बड़ा एक आत्मीय रिश्ता होता था फिल्म कलाकारों के साथ हमारा, उनके यहाँ कोई फंक्शन होता था हमको घर पे बुलाते थे, हम उनको अपने यहाँ भी बुलाते थे, हमारे घरों पर भी आते थे, कहीं भी मिलते थे बड़े आत्मीयता के साथ मिलते थे और बातों बातों में भी फिल्मों का जिक्र, कहानी का जिक्र, आपके हालचाल पूछते थे, और उसी में बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स भी होते थे, बहुत अच्छी बातें भी होती थी और बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरी निकल कर आती थी। लेकिन जैसे जैसे मीडिया का दायरा बढ़ता जा रहा है, मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका दायरा बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो उससे जो है पिछले कुछ समय में पेपराजी हमारे यहाँ बहुत तेजी से पनप रहे हैं। खैर उसमें कोई बुराई नहीं है, वो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं और घंटों खड़े रहते हैं एक पोज के लिए, एक सीन के लिए, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि आप कोई अस्पताल में जा रहा है या किसी का निधन हो गया है या कोई ऐसी दुखी घड़ी में है तो आप उसके पीछे पीछे भागे और उसको जबरदस्ती उसके पोज बनाएं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं और मैं इसका बिल्कुल हर समय इसका मना करता हूं, इनकार करता हूं चीज से कि ऐसी चीज कभी नहीं होनी चाहिए। अभी भी जो हादसा हुआ ये भी बड़ा गलत था कि सलमान खान अस्पताल में किसी से मिलने जा रहे हैं, हिंदुजा में अपने बहुत से व्यक्तिगत उनके संबंध होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, वो चाहते भी नहीं इस चीज़ को करें, लेकिन जब कोई ऐसा करता है तो वो बहुत गलत है। और अच्छी बात यह है कि पेपराजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन काश अच्छा होता अगर सलमान खान को, कई बार मीडिया ने वो किया है, सलमान खान कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं के साथ उन्हें बहुत उससे बोला कि आपके कैसे संस्कार हैं, इनके हाथ से माइक छीने या मैं छीनूं, और किक के समय इतना बड़ा विवाद हुआ, उनका मैं परवाह नहीं करता, मेरी फोटो खींचने खींचे नहीं खींचने मत खींचिए, मैं आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करता, आजकल तो सेल्फी का जमाना आ गया, फोटोग्राफर से कौन पूछता है, तो उनके साथ तो पत्रकारिता का, मीडिया का और जो फोटोग्राफर्स है और उनका उनके साथ उनका जो विवाद है बरसों से चला आ रहा, जब वो हिरन केस में गिरफ्तार हुए या बाद में उनकी जमानत होती नहीं, कुछ भी होती नहीं। तो काश अच्छा होता कि अगर खुद सलमान खान भी पहले कभी ऐसे माफी मांगते जिस तरह पेपराजी ने मांगी है, लेकिन ये जो बात है जिसे भी आप देखिए धर्मेंद्र के समय हुआ और कितना उनके
2: आप अमिताभ बच्चन वाले जिक्र ले लीजिए, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अस्पताल में अपने रूटीन चेकअप के लिए जा रहे थे और उसमें किस तरह की तस्वीरें लेने के बाद, हालांकि उनको फिर बकायदा एक नोट
5: जब ये अस्थियां प्रभावित कर ले सनी देओल और उनका परिवार हरिद्वार गया तो वहां पेपराजी फोटो खींचने लगे, तो उन्होंने बिल्कुल उसको गुस्से में पूछा कि तेरे को कितने पैसे चाहिए, तेरे को मैं पैसे देता हूँ, इसको बंद कर। जिस तरह जब उसके बाद उनको घर पर ले आया गया था उनके, उसको जब ज्यादा उनकी स्थिति खराब थी कोमा में जा रहे थे, तब भी वो सब आ गए, तब भी उनका क्या बात है, तुम्हारे घर में अगर पिता हो बाप हो उनके साथ कोई ऐसा करे तो वो क्या फील होगा। तो इसलिए इस चीज का सुधार होना चाहिए,
2: कुछ चीजें और इनकी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। एक बार लेज़ली अब मैं आपके पास आती हूँ, देखिए कुल मिलाकर सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में हम हिट कैसे हो सकते हैं और इसीलिए ये पेपराजी कल्चर जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या इसके पीछे की सोच रहती है? देखिए अगर देखा जाए तो रिस्क में तो जो तस्वीर ले रहा है पेपराजी वो भी रिस्क में है, और जहां तक मर्यादा की बात है वो तो यहां पर बात हो ही रही है कि किसी की निजता का हमें ख्याल रखना चाहिए, अस्पताल जा रहा है तो ध्यान रखे, कोई फ्यूनरल पर जा रहा है तो तस्वीरें कम से कम नहीं खींचनी चाहिए, इन तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन क्या सोच रहती है इसके पीछे?
6: थैंक यू मैम, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट माइन अमिश्का मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो मैटर अभी आया है नजर में, जया बच्चन मैम काफी बार ये मैटर बोल चुकी है, पेपराज़ी को कई बार जया बच्चन मैम ने कहा है कि क्यों आप मुझे ये सब सवाल पूछते हो, ये जगह है, बट वो ट्रोल्ड हुई, तो उनको देखते हुए बहुत सारे सेलिब्रिटीज थोड़े डर के मारे पेपराज़ी को बोलना बंद कर दिए कि आप उल्लंघन कर रहे हो, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि जो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि उनको डर था कि वैसे ट्रोल होंगे जैसे जया बच्चन मैम को ट्रोल करते हैं, बहुत सारे लोग हंसते हैं कि वो ऐसे बोल रही थी, बट अभी जब इतने सीनियर आर्टिस्ट इतना लेजेंडरी एक्टर बोल रहे हैं तो आई थिंक वो ड्रॉ ऑफ द लाइन हो गया, उन्होंने लक्ष्मण रेखा डाल दिया एंड अभी सब वो फॉलो करेंगे, उनको भी पता चल गया कि ऐसे सेंसिटिव जगह लाइक हॉस्पिटल के पास ऐसा नहीं करना चाहिए। बट ये बात सही है कि एक्टर्स एंड पेपराजी, मीडिया एंड लाइक आर्टिस्ट, इन सबका एक जो ब्रीद इन ब्रीद आउट रिलेशनशिप है, वो ईच अदर के बगैर नहीं जी सकते, इसीलिए कभी कभी मीडिया हो या पेपराजी, आजकल के जो डिजिटल जर्नलिस्ट है वो कभी कभी मर्यादा उल्लंघन भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे वीडियो मिल जाए कुछ भी, आइदर अगर आर्टिस्ट गुस्सा भी हो रहा है, हीरो गुस्सा भी हो रहा है, वो भी कैप्चर कर दो, वो वायरल चला
2: जाए होंगे तो क्या नाम ना होगा, वो वाली लाइन चलती है यहाँ
6: जी। अभी क्या हो रहा है कि लाइक्स एंड व्यूज मैटर्स, और कोई अगर कुछ भी पूछ लेता है इज दिस द राइट थिंग, वो उस पे ही यू नो 10 बार जूम इन जूम आउट करेंगे, ये आर्टिस्ट को आया गुस्सा, देखो उनका लाइक खून खोला ऐसे, तो यू नो पीपल एंजॉय, फिर ट्रोलिंग वहां पे नीचे शुरू हो जाती है, और कभी बाद में अगर वो आर्टिस्ट को कभी ट्रोल करना है तो वो लोग वही गुस्से वाला फोटो यूज कर लेते
2: हैं। तो रामकिशोर बादशाह जी, मैं आपसे सवाल सीधा करना चाहूंगी, देखिये बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारी सहयोगी सना भी बता रही थी, यहाँ पेपराजी को लेकर सवाल सलमान खान ने किया, उनको मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था, ये बिल्कुल सही है, अगर आपको कोई बात पसंद नहीं है तो मुझे यहाँ पे किसी भी मंच पर आपसे वो सवाल नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे देखना चाहिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं। सिर्फ ये बताइए कि वो सेलिब्रिटीज जो खुद बुलाते हैं तमाम पेपराजी को, तमाम फोटोग्राफर्स को कि आइए अब हम जिम जा रहे हैं, अब हम फला रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, या हम उस पार्टी में जा रहे हैं, क्या ये कहीं से इन लोगों को ज्यादा शय नहीं मिल जाती कि ठीक है जब वो लोग बुला रहे हैं तो हम कहीं भी किसी की भी तस्वीर ले सकते हैं और किसी भी जगह ले सकते हैं?
4: ये बात तो नवरत्न बिल्कुल सही है कि ये ब्रांडिंग का प्रोसेस है, ये ब्रांडिंग का प्रोसेस भी है, एक तरह से सेल्फ प्रमोशनल जिसको कहा जाता है आज के जमाने में वो भी है। और सलमान के बारे में मैं एक बात कहूं आपको कि एक मैं बीबीसी हिंदी के लिए जब काम करता था तो मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, मैं मुंबई में था। सलमान एक ऐसे अभिनेता है जो अंदर से बहुत इमोशनल और सीधे और सच्चे हैं, कई लोग उनसे कहते हैं कि साहब उन्होंने ऐसा कहा ये किया तो उनको माफी मांगनी चाहिए, अभी प्रदीप जी मुझे मैं देख रहा था वो कह रहे थे कि उन्होंने जो कुछ किया है अगर वो माफी मांग लेते तो शायद प्रपराजी से उनको सीखना चाहिए लाइक दिस। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि जो इस समय सोशल ब्रांडिंग का जो इस समय सिनेरियो चल रहा है उसमें सलमान हो या कोई दूसरे भी लोग हो वो इस काम को करते हैं, बट सलमान की जहां तक बात है, सलमान ने एक बार ये कहा, मैंने उनसे पूछा ये सवाल कि भाई आप इतने औखड़ जवाब क्यों देते हैं, आप बदतमीजी से क्यों लोगों से बात करते हैं, और इसका क्या मतलब, क्या सोच के आप सोचते हैं कि आप स्टार हैं इसलिए कुछ भी कह सकते हैं कर सकते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए राम साहब, सीधा सा मामला है, मैं स्टार हूं ठीक है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ है जिसे लोगों को टच नहीं करना चाहिए, मान लीजिए मुझे एक चोट लगी है और मैं किसी को दिखाता हूं कि साहब देखिए मेरी चोट लगी है, तो वो चोट को देख सकता है, लेकिन वो देखने तक सीमित रहे, अगर वो उसको टच करके दबाएगा और मुझे दर्द होगा तो मैं रिएक्ट करूंगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन सलमान जो है वो बहुत अलग लेवल और बहुत अलग सोच के इंसान भी
2: कह सकते हैं रामकिशोर जी की कुछ सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा नहीं है। शहजाद जी आप बताइए, कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी गलत कहना गलत नहीं होगा कि कुछ सेलिब्रिटीज खुद को फेमस करने के लिए व्यूज वगैरह के लिए भी पेपराजी को जानबूझ के बुलाते हैं।
4: फायदा उठाने वाला ओकेशनली एक सिस्टम है अभी जी जी है, लेकिन सलमान के मामले में ऐसा नहीं था।
2: ठीक है,
3: देखिए जो सेलिब्रिटीज पेपराजी को बुलाते हैं या जो उनके पेरोल जिन्होंने इनको पेरोल पे रखा है वो करते हैं तो ठीक है, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं वो एक अलग बात है, वो अपने आप को मशहूर करना चाह रहे हैं और एक ही रास्ता है पेपराजी को बुला के अपनी फोटोज खींचना ये वो। लेकिन पेपराजी जिस तरीके से उन खास करके जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बच्चियां हैं उनके जिस एंगल से फोटोज लेते हैं जिम के ये वो भी बहुत गलत है, वो भी बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश की सभ्यता का अपमान जो है उसका ख्याल रखना चाहिए और हर लड़की की एक रिस्पेक्ट होती है, वो आपको बुला रही है अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, ठीक है आप पब्लिसिटी कीजिए कि भाई ये अभी रेंज रोवर से उतरी है, अभी एयरपोर्ट जा रही है या अभी जिम जा रही है, लेकिन एंगल्स जो है गलत एंगल से शूट करना ये करना ये शोभा नहीं देता मेरे ख्याल से।
2: प्रदीप जी आपका तो एक बहुत लंबा करियर रहा है फिल्मों से जुड़े हुए हैं, बताइए कल्चर आया कहां से शुरू हुआ ये कल्चर?
5: देखिए जो कल्चर है ये पश्चिमी देशों से शुरू हुआ,
2: हिंदुस्तान में बॉलीवुड में,
5: मैं वही बताता हूँ आपको, पहले हॉलीवुड के अंदर बहुत हुआ ये हुआ, और इसके लिए कितनी बार ऐसा हो चुका है कि बड़ी बड़ी दुर्घटना हो चुकी हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1997 की बात है, जो डायना थी प्रिंस चार्ल्स की जो पत्नी थी वो पेरिस के अंदर जा रही थी और उनकी जो डेथ हुई वो इसी कारण से हुई कि उनके पीछे पूरा काफिला चल पड़ा और उनको जो है जो उस समय फोटोग्राफर्स थे उन्होंने पीछा किया, उनसे बचने के लिए गई और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसके बाद ये हमारे यहाँ शुरू हुआ, जब बहुत बड़ा दायरा बढ़ता गया, फोटोग्राफर बहुत बढ़ते गए, ये देखिए ये मैं आपको बताऊं ज्यादातर लोग खुद इन्वाइट करते हैं उनके पीआर, चाहे वो डायरेक्ट इन्वाइट करें या चुपके से बताएं आपको कि वहां पहुंच जाइए, वो वहां जा रहे हैं, क्योंकि सबको सपना नहीं आ रहा होता कि ये आदमी फलाने जिम में रोज जाएगा। हालांकि बहुत सारी जिम में बहुत से लोग खड़े रहते हैं, एयरपोर्ट पर खड़े रहते हैं, कुछ लोग बताते नहीं वो भी उसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये सिलसिला शुरू होता है उनके पीआर की तरफ से ही है, चाहे वो चुपके से बताया जाए चाहे खुलेआम इन्वाइट किया जाए वहीं से होता है। लेकिन आप ये देखिए अभी कुछ समय पहले की बात है, सैफ अली खान और करीना आए अपने घर जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे उनकी बिल्डिंग के अंदर तक घुसाए वो, तो घुसाए तो सैफ ने ये कहा आ जाओ भैया आओ बेडरूम में भी आ जाओ ना भाई यहीं क्यों खड़े हो, आ जाओ बेडरूम तक भी आ जाइए। तो जब ये स्थिति हो जाती है बहुत बड़ी कोफ्त हो जाती है, और इस तरह के कलाकार जो खास तौर से बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, चाहे उनमें सलमान खान
2: हो। सर गुस्सा तो अब एक नॉर्मल सी बात है ना, आप देखिए अस्पताल में आप किस मूड में हैं, आप अपने मित्र को देखने जा रहे हैं, आपका मूड किस तरह का है, और उस पर फिर पेपराजी आपसे आपकी फिल्म के सवाल कर रहा है तमाम तरह के दूसरे, और वो भी आपको सिग्नल से लगातार फॉलो करता हुआ।
5: नहीं आप फोटोग्राफ ले रहे हैं चलो तब भी कोई बात नहीं, चुपके से ले रहे हैं आप किससे मिलने जा रहा है, जिस आप पता करके डाल दीजिए हिंदुजा हॉस्पिटल में उससे मिलने गए, आप उसे पूरे पूछ दीजिए इधर आइए यहाँ आइए वहाँ आइए, वो तो इतना गलत है कि एक आदमी कोई अपने मित्र से मिलने जा रहा है पहले परेशान है उसकी बीमारी से। सलमान खान को मैंने देखा कई बार बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, बहुत सारे लोगों की
2: अस्पताल जैसी जगहों पर मदद करते हैं, मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अगर हम लोग भी जाते हैं वहाँ लिखा ही होता है कि आप हॉर्न नहीं बजाइए, शोर नहीं कीजिए हॉर्न नहीं बजाइए लिखा होता है। तो यहाँ पर पेपराजी कल्चर, जाहिर सी बात है कि सलमान का गुस्सा बिल्कुल लाजमी था ही इस पर। इसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहे हमारे साथ।
7: Close your eyes, focus, listen to work getting done with Monday.com.

0: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
2: सितारों की प्राइवेसी में नो एंट्री, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं हाल फिलहाल में। सलमान खान से जिस तरीके से पपराजी ने सवाल किया, सलमान खान का गुस्सा फूटा, इसको लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। लेजली आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार रामकिशोर जी, देखिए हमने बहुत बार ये तस्वीरें देखी जब जया बच्चन ने पपराजी को फटकारा है, उसमें होता यह है कि खबर उनकी बन जाती है। और ये आपने सही कहा कि इस तरह की न्यूज के लिए, खबरों के लिए भी कई बार पपराजी वहां पर खड़े होते हैं, वेट करते हैं, फिर वो वायरल हो जाती है और फिर उसके बाद उनको उतने व्यूज मिल जाते हैं। क्या वहीं से सबक नहीं लेना चाहिए? ये बात बहुत बार सामने आई है।
3: पहले तो एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने एक सवाल पूछा था प्रदीप जी से कि पपराजी जो है ये शब्द कहां से आया और ये कल्चर आया कहां से है। मदर ऑफ सिनेमा जो है वो फ्रेंच है, फ्रेंच सिनेमा को मदर ऑफ सिनेमा कहा जाता है। और आप देखिए कि डायना की जो डेथ है वो भी फ्रांस में हुई थी, क्योंकि पपराजी जो कल्चर है वो वहीं से कन्वर्ट होकर हॉलीवुड में पहुंचा और हॉलीवुड से फिर वो बाकी के देशों में आया। लेकिन ये अलग बात है कि बॉलीवुड ने उसको जिस तेजी से एक्सेप्ट किया और जिस तरीके से एक्सप्लोर किया है, उसका कोई भी सानी जो है या कोई भी उदाहरण और नहीं मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पपराजी कल्चर या जो ये फोटोग्राफी करने के बाद अपने आप की खुद की ब्रांडिंग और सितारों की जो ब्रांडिंग करने की लालसा है, उससे जो बेसिक नुकसान हो रहा है वो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोग किसी भी तरीके से जहां चीज को बचाया जाना चाहिए, खासतौर से पर्सनल लाइफ को, व्यक्तिगत जीवन को, उसमें भी वो घुसने लगे हैं। तो ये कल्चर अपने आप में कोई खराब कल्चर नहीं था कि किसी को मोमेंट को पकड़ने के लिए आप कहीं पर जाएं, कोई तस्वीर आप कवर करें और उसको आप छाप दें, कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन किसी के पर्सनल लाइफ में घुस करके आप उस तस्वीर को छाप के उसके ब्रांडिंग करें या फिर अपनी ब्रांडिंग करके एक नाम कमाने की कोशिश करें, ये नैतिक तौर पर भी गलत है और लीगल तौर पर भी ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये जो कल्चर है इसका बहुत सम्मान से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हमें अपने मतलब के
2: सर,
3: लिए
2: इन लोग के लिए कोई रूल्स हैं? जैसे हम आप तमाम जो जर्नलिस्ट हैं, स्पेशली जो जितने भी फिल्मी जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए तो एक मर्यादा है, एथिक्स हैं, रूल्स हैं, जिसको फॉलो करना पड़ता है हम सभी को। क्या पेपराजी के लिए कोई इस तरह के रूल्स हैं? शहजाद जी बताइए।
4: मैं एक बात कहना चाहूंगा, कुछ साल पहले अगर आपको याद हो तो एक साहब थे जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था, शक्ति कपूर साहब का, और भी काफी कलाकार थे जिनका स्टिंग ऑपरेशन किया था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। वो इंडियाज मोस्ट वांटेड शो जो है वो होस्ट कर रहे थे और इस तरीके से उन्होंने एक्टर्स की, स्टार्स की पर्सनल लाइफ पे घुसने की कोशिश की। वो लड़कियों से फोन कराते थे एक्टरों को, फिर उनको होटलों में बुलाते थे और वहां पहले से ही कैमरा जरे। बताइए ये कोई तरीका है? आप अपने चैनल के टीआरपी के लिए इसके लिए किस हद तक आप गिर सकते हैं? आखिर में देखिए उनके साथ जो हुआ, कि उनकी सुनने में आया कि उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया, पता चला वो क्लोजेट गे निकले और बहुत सारी चीजें उनके साथ ही हुई।
2: ठीक है सर, वापस पेपराजी कल्चर पर ही आएंगे। प्रदीप जी, कोई रूल्स, कोई एथिक्स होते हैं इनके लिए?
5: देखिए रूल्स तो बात यह है कि आप कायदे से तो आप किसी का फोटो भी आप खींचते हैं, वो मना करे तो आपको नहीं खींचना चाहिए। हाँ। वो गैर कानूनी है।
2: अच्छा, विदेशों में जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि ये रूल विदेशों में हॉलीवुड से आया या फिर फ्रांस से आया, जैसा अभी रामकिशोर जी भी बता रहे थे, सर वहां पर तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इसको लेकर।
5: नहीं, वहां रूल है लेकिन वहां देखिए चल तो वहीं से रहा है ना। हाँ। सबसे ज्यादा आया तो वहीं से ना, ये कल्चर जो आया वहीं से आया। मैंने बताया आप पुराने दौर में हम देखते थे, कभी ऐसा होता ही नहीं था। इतने हम गिने चुने लोग होते थे, दिलीप साहब बैठे हुए और हम 5-7 लोग आसपास उनके बैठ गए, आराम से बात कर रहे हैं। या कई बार तो ये होता मीडिया को कहते थे आप बैठे सब, हम खड़े हुए हैं, अच्छा ही लगता है कि हम खड़े आपके सामने बैठे। बड़े बड़े सितारे इस तरह का व्यवहार करते थे, इस तरह रेस्पेक्ट देते थे। लेकिन अब क्योंकि खुद मीडिया पीछे भागता है, उनके पीछे टीवी चैनल आने से, रील आने से, सोशल मीडिया आने से, उनको कुछ ऐसा कंटेंट चाहिए, ऐसे फुटेज चाहिए जो लोगों को दिखाकर कुछ टीआरपी ली जाए, कुछ पैसे कमाए जाए, तो उससे कुछ पीछे पीछे भागते हैं उनकी गाड़ी के। वो गाड़ी का दरवाजा बंद करे तब भी जा रहे हैं, आप कभी गिर रहे हैं, कभी ये हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि वो उनको एक अपना कुछ नाम कमाना है या अपनी टीआरपी लेनी है या पैसे कमाने हैं, तो उस समय मर्यादा की खुद मर्यादा अपने पीछे छोड़ देते हैं। अब जया जी को कितनी बार देखा जा चुका है, जया बच्चन को छोटे छोटे मौके पर कोई सेल्फी भी लेना चाहता है मना कर देती है, कोई महिला भी टच करके बोलती है जरा ये तो डांट दे। दिल्ली के अंदर भी कितनी बार हम देख चुके अपनी आंखों के सामने, हम लोगों को खुद कहते हैं आप क्यों जाते हो भाई, जब वो चाहती नहीं आपको क्या

0: जरूरत है उनके साथ फोटोग्राफ्स खींचने की, जबकि उनके अमिताभ जो हैं या अभिषेक हैं या सब लोग हैं वो साथ होते, वो रोकते भी और वो माइंड नहीं करते, वो जानते हैं कि सब कुछ होगा।
1: हर किसी का अपना नेचर होता है,
0: अपना नेचर होता है, ठीक है, उनका अपना नेचर है, आप उनको गलत नहीं ठहरा सकते, उनका नहीं मन चाहता।
1: कुल मिलाकर, बिल्कुल कुल मिलाकर लेज़ली, वो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वाली आपने बात तो सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर एवरीथिंग इज फेयर फॉर फॉलोअर्स व्यूज, ये चल रहा है क्या कल्चर?
2: यस मैम, एक्चुअली स्टार्स के बिना पैपरेज़ी कुछ भी नहीं है, और अभी ऐसा भी है कि अगर स्टार्स मना करते कि आप मुझे कवर मत करो, फिर वो आपके फिल्म का प्रमोशन नहीं करेंगे, आपके इवेंट्स में रिबन कटिंग वगैरह वगैरह नहीं करेंगे कवर, तो इसीलिए नोबडी वांट्स टू टेक चांसेस विद द मीडिया, मीडिया को सब खुश रखना चाहते हैं, इसीलिए कभी कभी मीडिया भी अपना यू नो कहते हैं ना थोड़ा सा उंगली दिया और पूरा हाथ
1: नहीं। लेकिन इसमें ना लेज़ली, इसमें मैं आपको रोकना चाहूंगी, देखिए दो चीजें, अभी सना फरजीन हमारे साथ ही, आपने उनकी पूरी बात सुनी, प्रदीप जी हैं, रामकिशोर जी हैं, इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, एक एक फिल्म कवर करने वाले जर्नलिस्ट की बात अलग है और एक पेपराजी की बात अलग है। जर्नलिस्ट जो है वो अपनी मर्यादा के साथ चलते हैं, अगर हमें एक सलमान का इंटरव्यू लेना है तो हम एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएंगे, हम उनसे समय मांगेंगे, हम उस समय पर पहुंचेंगे, लेकिन पेपराजी के लिए ये सारे रूल नहीं है, वो कभी भी कहीं भी किसी भी समय, दिन हो रात हो, अस्पताल हो, फ्यूनरल वाली जगह हो, कहीं पर भी वो पहुंच जाएंगे।
2: मैम ये भी सही है कि यूट्यूबर्स जो है, ज्यादातर यूट्यूबर्स भी कहते हैं उन्हें, तो जो पेपरेज़ी है बहुत सारे यंगस्टर्स उन्होंने अपना एक चैनल शुरू कर लिया और जहां पे भी स्टार्स का आना जाना है वहां पहुंच जाते हैं, उनको खबर है कि यहां पे ये लॉन्च हो रहा है, यहां पे सेलिब्रिटी आने वाले हैं, उनको पता होता है, पीआर के इन्वाइट्स आ जाते हैं, बट एक्चुअली सबको चाहिए होता है, पेपरेज़ी का भी एक इम्पॉर्टेंस है क्योंकि वोट डाल देते हैं कि ये स्टार वहां जा रहे हैं, क्योंकि जो आपने बोला जो सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, वो तो जाके एयरपोर्ट में नहीं लेंगे कि आर्टिस्ट कहाँ से आए, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, कौन से कपड़े पहने हैं, इनका बैग कितने यू नो क्रोर्स का है, ये कपड़े उनके कितने क्रोर्स के, तो इन सबके लिए उनको वो पेपरेज़ी की ही जरूरत होती है, और ये पेपरेज़ी जितना ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं तो तमाम सब तक पहुंचती है, तो ये रीच भी इंक्रीज होता है एक न्यूज का, तो डिजिटल रीच बहुत मैटर करता है आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह पे, तो इसीलिए बहुत सारे लोग जाने देते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, उनको पता है कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो होते हैं वो तो मेन खास यू नो वन एंड वन इंटरव्यूज लेते हैं, बट जो छोटी मोटी एवरीडे न्यूज होते हैं, अभी जिम से आए, ये सब तो पेपरेज़ी कवर करेंगे, तो इसीलिए पेपरेज़ी से कोई पंगा नहीं लेते, उनको कोई बोलते भी नहीं कि यू आर डूइंग रॉन्ग, क्योंकि नोबडी वॉन्ट्स टू बी कैंसल्ड बाय देम, एंड इसीलिए वो तो थोड़ा सा अपना कहर मचाते रहते हैं, कभी कभी कभी कभी वो पालन करते हैं, जैसे अभी आई थिंक ऐसे आपको अभी न्यूज नहीं आएगा कि दे आर क्रॉसिंग लाइन, क्योंकि अभी वो डर जाएंगे कि इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो
1: हाल फिलहाल के लिए थोड़ा सा शांत रहेगा मामला, लेकिन रामकिशोर जी बहुत इंपॉर्टेंट बात लेज़ली ने कही है यहाँ पर, देखिए ये शहजाद जी एक सेकंड लौटती हूँ, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है सर अपने आप में, बहुत से लोगों की रोजी रोटी इससे चल रही है, अगर आज सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल पर एक एक शख्स अगर यूट्यूब चैनल चला रहा है कमा रहा है तो वो यही से कमा रहा है।
3: अभी दिल्ली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ तो उसमें कई सारे यूट्यूबर्स और इस तरह के लोग आए जो मुझे आके मिले और उन्होंने कहा कि सर मैं इन्फ्लुएंसर हूं, मैं यूट्यूब का, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मैं इतने लोगों को फॉलो करता हूं और मैंने ये किया है, तो ये जो है ये ब्रांडिंग, जो सेल्फ ब्रांडिंग है, इसने एक नया कल्चर खड़ा किया है जो पेपराजी से भी बिल्कुल अलग है। आप देखिए हर आदमी एक्टर है, हर आदमी जर्नलिस्ट है, हर आदमी इन्वेस्टिगेटिव कर रहा है, लेकिन आप देखिए नवजोत की आपने भी अपने समय पर जो है इन्वेस्टिगेशन जो है जर्नलिज्म का फॉलोअप जो है वो किया है, उसके प्रोटोकॉल और टर्म्स को फॉलो किया है, तो एक प्रोटोकॉल तो हर जर्नलिस्ट के लिए होता है कि भाई आप जिसकी भी तस्वीर खींचे हैं, जिसका भी इंटरव्यू करें, उससे आप इजाजत लें, लेकिन ये जो पेपराजी का जो नया कल्चर जिसे हम पेपराजी कह रहे हैं, ये कोई कल्चर नहीं है, ये असल में एक तरह का सेल्फ ब्रांडिंग प्रमोशनल इवेंट है जिसको हर यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर या जो ऐसा आदमी है जिसे कोई नहीं जानता है वो भी बस एक मिनट के लिए एक करके फेमस होना चाहता है और उसका फायदा उठाना चाहता है, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल बन गया है, जिसे आप सही कह रही हैं, लेकिन इस बिजनेस के जो खतरे हैं वो खतरे हैं जो अभी सामने नहीं आ रहे, लेकिन धीरे धीरे उन खतरों का सामना हमें करना पड़ेगा।
1: हाँ, क्या नियम कायदे हैं सर इनके लिए प्रदीप जी?
0: देखिए नियम कायदे तो अब चीजें बनते जा रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह आगे रहे तो सीधा है कि अगर आप शिकायत करें।
1: एक सेकंड सर, रामकिशोर जी बात रखें फिर आप।
3: अगर आपने यूट्यूब पर कोई चैनल आपका बना हुआ है तो आप देखिए कि उस पर आप कोई बात ऐसी कहें या उसको दिखाएं या सुनाएं, कोई गाना या कोई बात, उसको यूट्यूब अपने आप क्लोज कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो सरकार ने भी हमारे यहाँ तरह के नियम कायदे कानून और प्रोटोकॉल बनाया हुए है कि आप ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन लोगों को उन कॉल्स का पता है जो इनको फॉलोअप करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, तो इसका नुकसान होगा, लेकिन अगर लीगल वे में हम थोड़े से अलर्ट होंगे तो ये काम बंद हो सकता है।
0: देखिए बात ये रूल्स तो ठीक है सरकार ने बनाए हैं, लेकिन ये जो जिस तरह पूरा कल्चर एक पूरी तरह हो गया, ये तो आज की बात है, मुझे करीब 8-10 साल पुरानी बात याद आती है, तब इतने ये पेप्स नहीं आए थे। आदित्य चोपड़ा या शायद के ओनर और यश चोपड़ा के बेटे और इतने बड़े फिल्मकार जो DDLG और इतनी फिल्में उनके खाते में, आज संयोग से उनका जन्मदिन भी है 21 मई आदित्य चोपड़ा का। आदित्य चोपड़ा बिल्कुल पर्दानिशी व्यक्ति हैं, वो ना किसी को इंटरव्यू देते हैं ना किसी से बात करते हैं। मेरी भी उनसे बात शायद करीब 25 साल पहले हुई थी DDLJ के कुछ समय बाद, जब 5 साल हो गए थे। वो ना किसी के सामने आते हैं ना उनके को फोटोग्राफ देते हैं। आप देखिए वो एक पिक्चर देख कर थिएटर से निकल रहे थे, किसी ने उनको पहचान लिया और आधी आधी करके पीछे भागना शुरू कर दिया। वो इतने नर्वस हो गए क्योंकि जो बिल्कुल मीडिया से मिलते ही नहीं कभी भी, वो अचानक इतने लोग घेर लें, उनका मोबाइल नीचे गिर गया, वो मोबाइल छोड़कर ही भाग गए, मोबाइल तक उन्होंने नहीं उठाया। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि किस तरह आदमी को परेशान होना पड़ता है। तो जब आप इस तरह का पेश कर आते हैं तो बहुत ही दुखदाई है, ऐसा किसी के साथ भी नहीं आना चाहिए। अब जो इधर नीतू सिंह है वो बहुत इस मामले में बड़ी फ्रेंडली रहती हैं, उनके साथ आप फिल्म स्टूडियो में जाइए, फिल्म सिटी में जाइए, कहीं शूटिंग हो रही है तो बड़े हंस के बात करती हैं, हालांकि उनको भी नाराज आती है। एक बार वो चप्पल उन्होंने हाथ में उठाई हुई थी, चप्पल नहीं पहनी हुई थी, उनको दिक्कत थी तो लोग उसकी बनाने लगे, उनका अरे भैया आप तो शर्म कर लो, मैं चप्पल हाथ में लेके जा रही हूँ, कम से कम इसकी तो रील मत बनाओ।
1: वही बात है ना सर, कोई लाइन नहीं है, देयर इज नो लाइन, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, अगर है भी तो फॉलो नहीं होते। जी शिजा जी,
4: मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई जिसने देश भर में नहीं दुनिया भर में तहलका मचा दिया, जिसका नाम है धुरंधर। धुरंधर के एक एक्टर है अक्षय खन्ना। जब से वो फिल्म रिलीज हुई है मैंने अक्षय खन्ना साहब को ना कहीं पॉडकास्ट पे देखा ना कहीं किधर देखा। सो अल्टीमेटली जो होता है एक्टर्स को ये समझना चाहिए कि आपका काम जो है वो बोलता है, आपकी कितने भी फॉलोअर्स हो, आप कितने मिलियन फॉलोअर्स आप अपने इंस्टा पे कर ले, ये कर ले वो कर ले, लेकिन काम बोलता है। और वो दौर अब दोबारा आ रहा है। अब तक जो हमारे जो चैनल वाले थे या जो भी कास्टिंग एजेंसी थी, प्रोड्यूसर्स थे, जो फॉलोअर्स वो ये देखकर कास्ट कर रहे थे, अब वो धुरंधर के बाद उनकी आंखें खुल गई है कि हमारे हिंदुस्तान की पब्लिक कोई नहीं बल्कि दुनिया की दर जो हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं उनको एक्टर्स देखना है, और वो एक्टर्स देखना है जो अच्छी एक्टिंग करते हैं। इसीलिए मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ अक्षय खन्ना साहब का कि उन्होंने एक भी इंटरव्यू नहीं दी और तब भी उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया।
1: बिल्कुल, मेरे ख्याल से शहजादी ऐसे बहुत सारे एक्टर्स होंगे, क्यों रामकिशोर जी आप बता सकते हैं, बहुत सारे एक्टर्स होंगे जिनको हम हिडन जेम्स कह सकते हैं।
3: बहुत सारे लोग हैं और जो पुराने लीजेंडरी एक्टर्स थे वो सारे इसी में आते थे, लेकिन दिक्कत ये है कि अब जो समय बदला है और सोशल मीडिया ने जिस तरीके से अपनी कैप्चरिंग की है ना हर चीज पर, वो हमारे समय के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस पर थोड़ी सी लगाम तो लगनी चाहिए नवजोत।
1: सर लगता है प्रदीप जी इसको लेकर कोई रूल रेगुलेशन बनेंगे या फिर पेपराजी खुद ही इस बात को समझेंगे?
0: देखिए रूल्स रेगुलेशन बनने से इतना नहीं होगा जितना वो खुद समझेंगे तब होगा, क्योंकि खुद रूल्स रेगुलेशन बहुत चीजों में बने हुए हैं, कानून बहुत चीजों में बने हैं। आप पब्लिक एरिया में स्मोकिंग मत कीजिए लेकिन लोग फिर भी स्मोकिंग करते हैं, आप ड्रिंक करके ड्राइव मत कीजिए फिर भी लोग ड्राइव करते हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं समझेंगे खुद लोगों को समझ नहीं आएगी। आप देखिए आप अपनी इंसल्ट क्यों कराते हैं, अपने एक व्यक्ति की गलती होती है, दो चार की गलती होती है, पूरी की पूरी बिरादरी पूरी पूरी टीम आ जाती है उसके अंदर। आप उसमें किस व्यक्ति ने ये बोला, दो लोगों ने बोला, चार लोगों ने बोला सलमान खान को पहले, लेकिन वो सबके सब आगे सबने माफी मांगी, तो ये देखिए इस तरह की स्थिति नहीं आनी चाहिए और ऐसी स्थिति भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है आप पसंद नहीं करते पेपरा जी को, उनको मना कर दीजिए रोक दीजिए, लेकिन उनके क्या उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, उनकी फटी हुई जीन्स है, ये है वो है, इस तरह का मजाक भी तोड़ाइए। वो भी मेहनत कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मेहनत अपना एक संभाल के साथ करें, जहां लगता है कि नहीं है तो वहां बहुत बड़ा फील्ड है, इतनी बड़ी दुनिया है इसके अंदर कोई कमी नहीं है। अभी शहजाद जी बात कर रहे थे, मैं इनके फादर अजीत साहब का इंटरव्यू करता था, बहुत बार मैंने उनसे इंटरव्यू किया, मुझे याद है दिल्ली में एक बार उनकी तबीयत खराब थी, वो दिखाने आए हॉस्पिटल के अंदर तो NTPC के गेस्ट हाउस में ठहरे थे, तो मैंने उनसे बात किया कि नहीं नहीं आप जरूर आइए और वो बीमार थे, उसके बाद भी उन्होंने इतने अच्छे ढंग से बात की और बहुत ही अदब से बात की, इतने खुश हुए वो बोले आप जब भी हैदराबाद आए, वो हैदराबाद जाते रहते थे, तो आप मेरे यहाँ जरूर आइए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। तो इस तरह के इतने लोग हैं, अमिताभ बच्चन को भी इतने सालों से हम देख रहे हैं, अभिषेक को बचपन से देख रहे हैं, कितने कलाकारों को, उनके सितारों को उनके बिल्कुल बचपन से देख रहे हैं जो उनके घर जाते थे, सोनाक्षी सिन्हा छोटी होती थी शत्रुघ्न सिन्हा के कंधे पे खेल रही होती थी या अभिषेक बच्चन को खुद गोदी में खिलाते थे, तो इतना बड़ा दौर देखा है, तब बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे। लेकिन अगर कभी नाराज हैं या मतलब उनका मूड खराब है या उनकी कोई स्थिति खराब है, कोई मानसिक दबाव है, तो उनको दबाव नहीं देना चाहिए। जैसे आदि हैं, आदित्य चोपड़ा, वो कहते हैं मैं नहीं आना चाहता मीडिया के सामने, मुझे अच्छा ही लगता, अब चाहे उनको एंग्जाइटी है सोशल मीडिया की या कुछ भी है, तो आप उनको दबाव मत दीजिए कि नहीं नहीं बात क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते। ठीक है, उनकी इच्छा है, वो जिस तरह अपने जीवन जी रहे जी रहे। जैसे आपको बताया एक ही परिवार के अंदर कई लोग होते हैं, ऋषि कपूर थे, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था वो, लेकिन जब बात करते थे खुद बुलाते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, लेकिन उनकी बेटी रितिमा की शादी थी, लोगों ने ज्यादा फोटोग्राफ्स खींचने की कोशिश की, उनकी बेटी से बात करने की कोशिश की, सब टोक दिया कि नहीं कोई बात मत कीजिए मेरी बेटी से, आप फोटोग्राफ लीजिए और जाइए जल्दी से। लेकिन नीतू सिंह है वो फ्रेंडली, अब रणबीर की शादी हुई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तेरे को बुलाऊंगी, तेरे को बुलाऊंगी, तेरे को जरूर बुलाऊंगी, तो उन्होंने कई लोगों को बुलाया। मैं तो मुझे अच्छे मुझे आज भी याद आता है, मैं तो नीतू सिंह ऋषि कपूर की शादी देखी खुद अपनी आंखों से, तो उस समय राज कपूर किस तरह मीडिया को वेलकम करते थे जिनको बुलाते थे, हालांकि जो बिना लोग आते थे उनको बुला कर देते थे।
1: नहीं तो वहां उस समय तो केवल जिनको बुलाया जाता था वही आते होंगे ना।
0: नहीं देखिए, अब जैसे वो आरके की होली आपने जरूर सुनी होगी, इतनी मशहूर थी, उसके अंदर कितने लोग बिना बुलाए आ जाते थे, कितने लोग उनके साथ आ जाते थे,
1: लेकिन
0: आरके का रूल था कि नहीं होली पे कोई भी आ रहा है उसको आप स्वागत कीजिए, उसको आने दीजिए, तो ये था। लेकिन कोई आदमी आकर हुड़दंग करता था, बहुत ज्यादा वो करता था, तो उनको नाराजगी होती थी, एक तो बिना बुलाया आ गया, उसके बाद हुड़दंग कर रहा है, इसलिए आरके की होली बंद भी हो गई। जो लोग खाना ले, इस तरह के लोग आगे थे, रणधीर कपूर ने, मैंने पूछा आपने क्यों बंद की, बोले इसलिए बंद की कि हमारे यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोग ऐसे आने लगे कि दारू पी के इतना शोर शराबा करते थे, और यहाँ तक कि जो सामान खाने पीने का होता था वो पैक करा के साथ ले जाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि बड़ा ये हुआ कि अरे भी काफ फिल्म वाले हैं, इस तरह के लोग ये सब कर रहे हैं।
1: मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेज़ली अब आपके पास आती हूँ, आखिरी सवाल आपसे, क्या कुछ लगाम लगेगी इस पर, क्योंकि अब सलमान खान ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि एक स्पेस होती है, एक जगह होती है जहां आप किसी सेलिब्रिटी को कवर करते हैं या फिर वो आपको बुलाए तब आप उससे बातचीत करेंगे, अदरवाइज आप किसी की निजता में दखल नहीं दे सकते हैं।
2: मैम आई थिंक कि ये जो पेपरेजी है आगे जाके सीनियर आर्टिस्ट के साथ थोड़ा देख के हैंडल करेंगे, और ऐसे हॉस्पिटल जैसे जगह में तो सेंसिटिव जगह में दे वोंट बी अनरूली बिहेवियर ऐसे नहीं दिखाएंगे, बट जो यंगस्टर्स है जो नॉर्मल उनको बुलाते हैं और वो कल्चर चल रहा है, मैम ये बात बहुत सही है कि वो ना बस अपना फैंडम नहीं दिखा रहे हैं, क्रेज नहीं है उनको स्टार्स का, उनको पैसे मिलते हैं मैम, लैक्स में पैसे मिलते हैं, अगर लैक्स में व्यूज आते हैं और लोगों का एंगेजमेंट स्ट्रांग होता है, बढ़ता जाता है, लोग नीचे कमेंट्स में ना हंसी मजाक कर रहे हैं स्टार्स का, उन्होंने अगर थोड़ा सा यहाँ वहां का गुस्से में वीडियोस फोटोज अच्छा से एडिट करके डाल दिया, तो उसमें उनको लाखों का इनकम होता है पर मंथ, तो ये एक्चुअली उनका सोर्स ऑफ इनकम है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो नॉर्मल जॉब्स 9 to 5 नहीं कर पा रहे, घर से अभी जॉब्स कर रहे हैं, तो वो प्रिफर करते हैं कि वो पेपराजी की तरह अपना फोन पकड़े, उनका जीरो इन्वेस्टमेंट होता है और उनका लाखों में इनकम होता है, सो दे विल नॉट गिव अप। एंड एक्चुअली वर्ल्ड इज लाइक इंडिया में इतने सारे आर्टिस्ट है, दे हैव लॉट ऑफ पीपल जिनसे वो पैसे कमाते जाएंगे।
1: चलिए वक्त अभी इतना ही, सिक्के के दोनों पहलू हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड सितारों ने सीधा कह दिया कि उनकी प्राइवेसी में नो एंट्री, जिसका सम्मान सभी को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए आपके हमारे साथ।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Discover your new favorites on TuneIn. With over 100,000 music, news, and sports stations to choose from, there's always something to listen to. Even podcasts and audiobooks for you to enjoy. Stay connected for all new recommendations and follow us on social media at TuneIn on Facebook, Instagram, and X. And start listening today. Just ask your device to play TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
3: हमारे देश का कोस्टल एरिया हो, रेतीली धरती हो या फिर पहाड़ हो, ये सारी जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है, जिसे लाइफ में एक बार एक्सप्लोर करना तो बनता ही है। वहीं इस बीच क्योंकि युद्ध की वजह से दुनिया संकट से गुजर रही है, तो ऐसे में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने लोगों से विदेश यात्रा से बचने की अपील की थी, अपने देश में घूमने की उन्होंने अपील की थी, जिसके बाद GNT ने भी अपने दर्शकों से अपील की कि वो अपने आसपास की किसी भी खूबसूरत लोकेशन की तस्वीरें हमें भेजें। तो ऐसा ही एक खूबसूरत वीडियो उत्तराखंड के मनोत्री धाम से पुजारी आशीष उनियाल ने भेजा है, चलिए आपको दिखाते हैं ये जगह।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी संपूर्ण भारत वर्ष से ये आह्वान कर रहे हैं कि आप आए हमारे इस उत्तराखंड की तपोभूमि में। जैसे हमारे पास यहाँ चारों धाम है, यमुनोत्री धाम है, और यमुनोत्री धाम से यहाँ पर जो ये सुंदर बृहगम कालिंदी पर्वत का दृश्य है, हमारे पास यहाँ पर हिरण्यबाहु और यमुना जी का संगम स्थल है।

0: हमारे पास यहाँ पर हरित भरित पहाड़ियां हैं, पर्वत है, जो कि विभिन्न जड़ी बूटियां औषधीय वृक्षों से सुशोभित है। हमारे पास यहाँ पर उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में हरसिल जैसी घाटियां हैं। हरसिल के साथ साथ तीर्थाटन के रूप में माँ गंगा का पवित्र धाम गंगोत्री धाम है। और मैं पुनः आप सबसे आह्वान करूंगा, अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप आए और यहाँ पर पर्यटन के साथ साथ में तीर्थाटन का आनंद लें और यहाँ की तपोभूमि का तपोभूमि के इन सुंदर दृश्यों का भरपूर आनंद उठाएं।
1: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि विदेश दौरों पर जाने से बचें। अपने देश में बहुत सारी ऐसी जगह जहां आप घूम सकते हैं, तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई भी खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो बनाइए एक छोटा सा वीडियो, हमें भेज दीजिए। हमारा नंबर है 7303-409-92। व्हाट्सएप कर दीजिए और हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं तमाम वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
2: इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए हैं और लोग इसे बार बार देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहे। इस वीडियो में एक शख्स अपनी गर्दन से करीब 9000 किलो वजन की बस को खींचता नजर आता है, जिसे देखकर लोग उसे ह्यूमन क्रेन कह रहे हैं। ये कारनामा अरूबा के रहने वाले एडमंड मोलिना ने किया है, जिन्होंने करीब 20 मीटर तक इस भारी बस को अपनी गर्दन के सहारे खींचकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उनके इस हैरान कर देने वाले स्टंट ने पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है और अब उनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में गिना जा रहा है।
3: मोदी जी, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर जाते
2: हैं। नन्ही बच्ची का ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसने अपनी मासूमियत से नेटिजन्स को लोटपोट कर दिया है।
3: मोदी जी, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर जाते हैं।
2: देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ खास अपीलें की थी, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस गंभीर मुद्दे पर जहां बड़े बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे हैं, वहीं एक मासूम बच्ची ने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया है कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं।
3: हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा है, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं।
2: इसके बाद वो हंसते हुए जो वजह बताती है, उसने इंटरनेट की पब्लिक को लोटपोट कर दिया है।
3: मोदी जी, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर ही जाते। हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा है, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: TuneIn has the music.
5: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
7: TuneIn Poolside has the music I love.
5: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii, Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn.
4: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज चाय पर चर्चा का आगाज करेंगे पहाड़ों पर बर्फ और मैदानों में गर्मी के सितम को दिखा रही खबरों के साथ, लेकिन साथ ही साथ उन हैक्स का भी जिक्र करेंगे जिससे गर्मी के मौसम में लोग आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, तो पहाड़ों पर स्नोफॉल के बीच जन्नत का एहसास भी कर रहे हैं।
3: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, बात मॉनसून के आने की भी हम करेंगे, जिसके अब बस आने की देर है, थोड़ी देर है। तो देश में कब हो रही है मॉनसून की एंट्री और कब तक बेतहाशा गर्मी से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर को भी मॉनसून की फुहारें नसीब होगी, सारी जानकारी देंगे।
2: नमस्कार, मैं शगुफ्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात उस एक बूंद की भी होगी जिसकी खुशबू की कीमत हजारों से लाखों में है। जयपुर की एक दुकान जहां लगती है वीआईपी ग्राहकों की लाइन, वहां की आपको लेकर चलेंगे।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। देखिए, हाल ही में आपने देखा बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान का एंग्री यंग मैन अंदाज, लेकिन कल शाम पेपराजी से ऐसा क्या कहा सलमान खान ने कि अब उनका दिलदार अंदाज सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल है। पूरी खबर क्या है ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
6: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन, पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ से हुआ चुनाव। पवित्र यात्रा के लिए जून से अगस्त के बीच 20 जत्थों में रवाना होंगे यात्री। भीषण गर्मी के बीच रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार, सरयू नदी में स्नान से आध्यात्मिक शांति और सुकून का अनुभव। हनुमानगढ़ी कनक भवन के साथ राम की पैड़ी पर उमड़ रही भीड़। जबरदस्त गर्मी के चपेट में लगभग पूरा भारत, नागपुर में गर्मी ने तोड़ा 10 वर्षों का रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 46.6 डिग्री, चंडीगढ़ में 47 डिग्री तो बांदा 48 डिग्री के साथ बना देश का सबसे गर्म शहर। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी दिख रहा है भीषण गर्मी का असर। हिमाचल के ऊना में 44 और शिमला में 30 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा, अगले दो दिनों में बारिश के आसार। चिलचिलाती गर्मी में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के विशेष इंतजाम, दिल्ली के चिड़ियाघर में पशुओं के बाड़े में लगाए गए पंखे, कूलर, खान पान का भी रखा जा रहा खास ख्याल। विधि विधान से खुले द्वितीय केदार, भगवान मध्य महेश्वर के कपाट, बड़ी संख्या में मौजूद रहे भक्त। मध्य महेश्वर धाम में होती है भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, और देखिए जिस तरह से देख रहे होंगे प्रचंड गर्मी, आधा से ज्यादा हिंदुस्तान जो है ना इस वक्त प्रचंड गर्मी के प्रकोप में है। हर कोई परेशान है और अपने अपने तरीके से उपाय कर रहे हैं ताकि वो ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस कर सके। शगुफ्ता, आपसे शुरुआत करते हुए, आप सुबह आती हैं लेकिन मुझे लगता है कि आंख खुलते ही मुझे लगता है 6 बजे के बाद जैसे ही, या फिर कह लीजिए सूरज चढ़ता है, धूप तेज हो जाती है। आप आती हैं, प्रिकॉशन क्या?
7: मेरा प्रिकॉशन ये, मैं ऑनेस्टली बताऊं, कल मैंने घर में ही कोई हेल्थ एक्सपर्ट है उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ऐसी गर्मी जब पड़ती है ना सिर्फ पानी आपका सहारा नहीं बन सकता, बॉडी को बॉडी में जो हाइड्रेट रखने के लिए आपको ORS या तमाम चीजें लेनी पड़ती हैं। सिर्फ पानी या नींबू पानी हेल्प नहीं करेगा, आपको लिक्विड डाइट तो लेनी ही पड़ेगी इफ यू वांट टू यू नो,
3: अगर आप बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं और बिल्कुल हाइड्रेटेड रहना चाहते हैं।
7: और एक और चीज मैं प्लीज ऐड बताना चाहूंगी कि मैं जो करती हूँ सुबह उठते ही करती हूँ, शीतली प्राणायाम, आई एम श्योर कि आपको बहुत लोगों को पता होगा, वो अगर आप करते हैं तो आपकी अंदरूनी गर्मी जो है वो दूर होती है।
3: क्या बात है, बहुत अच्छा।
7: आप भी करती हूँ
3: क्या? इजी है करना, बताइए लोगों को।
7: इजी है,
3: बताइए अगर बता सकती हैं।
7: आपकी जो टंग है उसको आप फोल्ड कीजिए,
3: रोल करके,
7: रोल करिए, रोल करके, और रोल करके आपने सांस लेनी है। दिस इज द शीतली प्राणायाम, ये बहुत हेल्प करता है,
3: अंदर जाती है। हाँ, फिर आप उसको फिर
7: गर्मी जो है उससे बीट करने में बहुत,
3: बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा तरीका है। ऐसे ही अलग अलग लोग तरीके अपने अपने आजमा रहे हैं। नवजोत आप बताइए आपके क्या तरीके होते हैं?
8: लिक्विड ज्यादा लेते हैं, आपने सही कहा कि सिर्फ पानी तक निर्भर नहीं है, आप ORS रेगुलर लीजिए, नारियल पानी आप ले सकते हैं,
7: इलेक्ट्रोल ले लीजिए,
8: ORS वन एंड द सेम थिंग, और जूसेस आप ले सकते हैं अच्छे अच्छे। हाँ, चाय कॉफी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, लेकिन हम यहाँ पर मैं उम्मीद कर रही हूँ ग्रीन, और आज भाई चाय डे है, आज तो चाय बनेगी।
3: बिल्कुल,
7: जैसे अभी आपने बोला ना जूसेस अच्छे हैं, बट मुझे लगता है कि हम ना नेचुरली बड़ा अट्रैक्टेड फील करते हैं टुवर्ड्स फ्रूट जूसेस, दैट वी शुड अवॉइड, क्योंकि शुगर स्पाइक भी होता है। तो जो नेचुरल तरीके है ना, जो हमारी दादियां
3: घर में बना सकते हैं,
7: घर में बना सकते हैं, आम पन्ना बना सकते हैं, बेल का शरबत बना सकते हैं, खैर उसका स्वाद बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है, नींबू पानी पी सकते हैं, इलेक्ट्रोल ORS, और हाइड्रेटेड रहे, तो ये जो घर में बनने वाली चीजें है ना, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बीट द हीट।
3: सत्तू ले सकते हैं,
7: सत्तू तो बहुत
3: अच्छा होता है, उसको लोग नमक के साथ भी हल्का ले सकते हैं, सेंधा नमक, काला नमक उसके साथ ले सकते हैं, मीठा जो लेते हैं हल्का मीठा डालें वो ले सकते हैं। तो कई तरह के ऐसे उपाय हैं जो हमने आपको बताया, तो लोग ऐसे अलग अलग उपाय कर ही रहे हैं ठंडक को, स्नोफॉल को। लेकिन इस बीच अगर आपको महसूस करना है, फिर भी आप कम से कम दिल्ली NCR में या फिर राजस्थान और पंजाब इन सब इलाकों में रह करके आप ठंडक महसूस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तो आपको सीधे ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, कश्मीर आपको जाना होगा, लद्दाख आपको जाना होगा। यहाँ के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी होने से माहौल आपको बता दे बिल्कुल कूल कूल सा हो गया है। आप बताइए शगुप्ता और क्या कुछ है ऐसे जगहों में?
7: आपने कश्मीर की बात की श्वेता, सोनमर्ग हो, लद्दाख का द्रास हो या फिर बांदीपुरा हो, ये तमाम जगहें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कई जगहों पर बर्फबारी इस वक्त जारी है मैदानी इलाकों में, हालांकि चिलचिलाती गर्मी है और लोगों को इंतजार है कि कब यहां पर एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जिसकी बात की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से कि जल्द आने वाला है, थोड़ी सी राहत मैदानी इलाकों में लोगों को मिल सकती है, वो जल्द ही होगा। लेकिन हीट वेव से लोग परेशान है, सैलानी इस बर्फ को एंजॉय करने के लिए हालांकि कश्मीर का रुख कर रहे हैं, वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं देखिए इस ठंड से ठीक उलट बेतहाशा गर्मी इन दिनों मैदानी राज्यों में पड़ रही है, कई जगह तो 45 से 47 डिग्री तक पारा पहुंच रहा है। तो अगर आप पहाड़ों पर फिलहाल जाने की हालत में नहीं है तो गर्मी के इस मौसम में एहतियात बरतना सबसे बड़ी समझदारी होगी।
8: देखिए शगुफ्ता ने अभी एक बात कही कि बहुत जल्दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, इसीलिए GNT को ना उम्मीदों वाला चैनल कहते हैं, हम उम्मीद जगा देते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये फिलहाल तो 9 तपे शुरू होने वाले, 2 जून तक रहेंगे, तो ख्याल रखेगा। तो आज जब देश के ज्यादातर मैदानी हिस्से 40 से 45 डिग्री के टॉर्चर को झेल रहे हैं, पहाड़ों पर मौसम बहुत कूल बना हुआ है, खासकर कश्मीर के पहाड़ों पर, तो अगर आप सैर सपाटा करना चाह रहे हैं, छुट्टियों की शुरुआत हो चुकी है, तो यकीन मानिए कि जन्नत वाकई आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत है। जनवरी वाला फील हो रहा है आपको मई में?
7: बिल्कुल, देखिए मैदानी इलाकों में लगातार धूप बहुत ज्यादा बढ़ी है पिछले कुछ समय में, तापमान में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि मैं सुबह अपनी बेटी को डे केयर छोड़कर आती हूँ तो 9:30-10 बजे का टाइम होता है और इतनी ज्यादा चिलचिलाती धूप होती है कि बाहर निकलने का तो मन नहीं करता मेरा।
9: वो ना आफ्टरनून जैसा फील देने लगा है, सुबह नहीं लगती। मतलब आपको प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे। मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका सुबह उठते ही अगर बाहर जाते हैं धूप में तो सर दर्द शुरू हो जाता है,
3: मतलब वो मॉर्निंग वॉक नहीं रहा है, वो डे वॉक फील होता है बीच धूप।
8: 8 बजे से पहले अगर आप चाहें तो निकल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर फिर भी ठंडक का एहसास लेना है तो चलिए कश्मीर चलते हैं।

जब मैदानों में 47 डिग्री गर्मी की चर्चा आम हो तो द्रास की तस्वीरें खास हो जाती हैं। मई में द्रास को कुदरत ने जिस तरह सदर खोलकर बर्फ का तोहफा दिया है, उसके बाद ये इलाका जन्नत सा नजर आ रहा है। ताज़ा बर्फबारी के बाद मई के दिनों में मौसम यहाँ जनवरी वाला फील दे रहा है। ये बर्फबारी लोगों को भी चौंका रही है, और वो इसलिए क्योंकि आमतौर पर मई के दूसरे पखवारे में यहाँ बर्फ नहीं बरसती।

0: करगिल और आसपास के इलाकों में मई के दिनों में हुई बर्फबारी को लेकर हैरानी की और भी कई वजह हैं। पहली वजह यह है कि श्रीनगर लेह हाईवे, जिसे ताजा स्नोफॉल के बाद मई के महीने में बंद करना पड़ा। दूसरा ये कि जितनी बर्फ कुछ घंटों में बरस गई, वो भी सामान्य नहीं। कुल मिलाकर कश्मीर में पिछले कुछ घंटों में बदले मौसम ने माहौल को पूरी तरह से बदल दिया। ये श्रीनगर है जहां बादल हैं और तापमान 15 से 16 डिग्री के बीच बना हुआ है।
1: पूरे देश में गर्मी से हाहाकार मची हुई है। तापमान जो है नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, झुलसती गर्मी है। और वही आपको एक अलग नजारा दिखाते हैं। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है धरती पे, बिना वजह नहीं। क्यों कहा जाता है ये? इस वजह से क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि जहां पारा जो है आसमान छू रहा है, देश के बाकी हिस्सों में बहुत ज्यादा गर्मी है, कश्मीर जो है प्लेजेंट है। बहुत ठंडा इस वक्त वातावरण है, बादल और हालात ये है कि सोनमर्ग से ऊपर जब आप द्रास की तरफ जाते हैं या फिर जोजिला को क्रॉस करते हैं, तो उस पूरे रास्ते पे जो है कल शाम से बर्फबारी हुई है और उसका इम्पैक्ट जो है एक एसी इम्पैक्ट हुआ है, जहां जो प्लेन्स है वहां पे बहुत ज्यादा अभी तापमान गिरा है। तकरीबन 10 से 12 डिग्री तापमान गिरा है। नॉर्मल टेम्परेचर इस वक्त कश्मीर का 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए, लेकिन अभी 16 से 18 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं जो कि मेरठ से आए हैं और इनसे सीधा पूछेंगे। आप दिल्ली से हैं? आप मेरठ से? अच्छा, आप फैमिली है। ये बताइए कि अभी आप बात करते हैं, गर्मी कितनी है?
2: गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा भी हो
1: नहीं, दिल्ली में
2: तो बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन यहाँ के बहुत अच्छा और सुकून लगा।
0: लेकिन कश्मीर से दूर मैदानी इलाकों की बात करें तो किस्मत कश्मीर जितनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। यहाँ गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, आसमान से आग बरस रही है और गर्मी के बीच खुद को ठंडा रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये काशी है जहाँ इंसान तो इंसान, भगवान को भी गर्मी से बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। राम जानकी मंदिर में चप्पे चप्पे पर गर्मी से बचने के इंतजाम किए गए हैं।
3: वाराणसी में तापमान 45 डिग्री के ऊपर जा चुका है। न केवल सड़कों पर बल्कि काशी के मंदिरों में भी गर्मी से बचाव के तमाम इंतजाम देखे जा सकते हैं। देख सकते हैं कि धूप से बचाव के लिए मंदिर, जो वाराणसी का बड़ा गणेश विश्वविख्यात लोटियां इस इलाके में स्थित मंदिर है, वहाँ ग्रीन पर्दे लगाए गए हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। तो साथ ही साथ पेयजल की भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है ताकि जो श्रद्धालु आएँ उनको शुद्ध और शीतल पेयजल मिल सके। तो वहीं कूलर की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो तापमान है मंदिर का या यहाँ आने वाले तमाम श्रद्धालु हैं उनके लिए कूलर की व्यवस्था होगी, तो यहाँ बैठ कर जो श्रद्धालु हैं वे कुछ वक्त रुक सकेंगे और गर्मी से निजात पा सकेंगे।
0: उत्तर प्रदेश में इस वक्त गर्मी की सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। लोग गर्मी की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। मौसम विभाग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगले 2 दिनों तक मौसम का ये मिजाज यूं ही बना रहेगा। फिलहाल तो यूपी के कई शहरों में सुबह 8 बजे से ही पारा 30 से 35 डिग्री के पार पहुँच जाता है। लिहाजा सेहत दुरुस्त रखने के लिए कूल उपाय खोजे जा रहे हैं।
1: हम इस वक्त आपको लखनऊ के हालात दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। तस्वीरें आप देखें तो यहाँ पर नारियल पानी जो है ना उसकी खपत बढ़ रही है। वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि यहाँ जो विक्रेता है वो यहाँ पर आ रहे हैं और नारियल पानी लेकर कहीं ना कहीं जो बॉडी में जो डिहाइड्रेशन हो जाता है उस पर काम कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर लगातार लोग तरबूज है, जो जिस तरह की आइटम गर्मियों में लोग खाते हैं वो सब ले रहे हैं। आकर कुछ राहत मिलती है इन सबसे? नारियल पानी
4: तो राहत मिलती है भाई साहब, नारियल पानी पीना, वो जूस है, फ्रूट है। इस समय गर्मी बहुत ज्यादा, जितने लिक्विड चीज लेंगे यही जूस है, फ्रूट है,
1: यही सारा बचा है इस धूप में।
4: ये धूप में बाकी बहुत परेशानी है,
1: आज जिसको निकलना उसके लिए
4: यही सही।
1: बड़ी बात है कि बाहर जो लोग निकल रहे हैं ना, अब जैसे ये जूस की दुकान आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मौसमी का जूस है, तरह तरह के जूसेस हैं। डॉक्टर्स भी फिलहाल ये सलाह दे रहे हैं लगातार कि आप जब दिन के समय बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, नौकरी के लिए निकल रहे हैं, तो जूसेस ज्यादा से ज्यादा लें, चाहे फ्रूट जूसेस हो, चाहे वो नारियल पानी हो।
0: राजस्थान की बात करें तो फिलहाल गर्मी का राज यहाँ भी चल रहा है। यहाँ के श्रीगंगानगर में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शहर का पारा 46 डिग्री क्रॉस कर चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले 3 से 4 दिन गर्मी का ऐसा ही आलम रहने वाला है। जयपुर में तो गर्मी ने इस वक्त गदर काटा हुआ है।
5: अलवर हो या फिर पाली हो, बाड़मेर हो, हर जगह सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है। जगह जगह जो चौराहे हैं वहां पर तंबू का इंतजाम किया जा रहा है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उससे सड़कों पर छिड़काव करके तापमान को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 7 दिनों तक इसी तरह से आसमान में आग बरसती रहेगी और नौतपा और तपेगा।
0: मौजूदा गर्मी इसलिए भी चुनौती बनी हुई क्योंकि नौतपा के दिन अभी बाकी हैं। नौतपा ऐसे 9 दिन होते हैं जब सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं। इस वजह से गर्मी का प्रकोप प्रचंड होता है। फिलहाल तो डॉक्टर्स इंडिया के इस समर सीजन में लोगों को सावधानी बरतने की ही सलाह दे रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की अपील की जा रही है। श्रीनगर से मीर फरीद, लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: देखिए वहीं आने वाले वक्त में कैसा रहेगा देश में मौसम का मिजाज। इस चिलचिलाती गर्मी से कब मिलेगी निजात, मानसून के आने के हालात क्या हैं और कब आएगा मौसम ऐसा मौसम जिससे आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं आपको।
7: इस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो प्रभाव करेगा वो, लेकिन उसका असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में ही रहने वाला है। कल तक आज से इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर में कल तक हीट वेव रियलाइज हो रहा था, हिमाचल उत्तराखंड में भी रियलाइज हो रहा था, आज के लिए भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ हीट वेव हो सकता है और इसके बाद वहाँ हीट वेव वेट हो जाएगा क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। लेकिन बाकी हिस्सों में ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत टेम्परेचर 1-2 डिग्री वेरी कर सकता है, लेकिन जो अब नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं कुछ हिस्सों में जहाँ आप बोलेंगे 45 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर्स हैं वो पूरा पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, इन राज्यों में चलते रहेंगे। और अगर आप आज की बात करें तो हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोस्टल आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों के लिए आने वाले 5 से 7 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और प्लेन्स में तो इसका रीज़न यही है कि वहाँ 45 या कहीं पर 47 टेम्परेचर भी रह सकते हैं। कोस्टल एरिया में स्पेसिफिकली कोस्टल आंध्र प्रदेश और कोस्टल आंध्र प्रदेश और साउथ उड़ीसा के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट रहने का इसलिए वहाँ प्रपोजल है, रखा हुआ है कि वहाँ जो ह्यूमिडिटी है वो भी सामान्य से ज़्यादा रह सकती है। इसके अलावा हमारा इस समय ईस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और विदर्भ के कुछ हिस्सों के लिए हमने आने वाले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट दिया है।
6: वैसे गर्मी तो देश के अधिकतर इलाकों में पड़ ही रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बांदा धरती के हिसाब से सबसे गर्म शहरों में शुमार है। आपको बता दें इसकी वजह यह है कि बांदा में पारा 48 डिग्री के पार जा रहा है। आपको बता दें कि गर्मी यहां नया रिकॉर्ड कायम कर सकती है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, बांदा में पारा 48 डिग्री के पार क्यों है, चलिए आपको बताते हैं।

0: उत्तर प्रदेश के बांदा के हालात देखिए। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा है, यहाँ तापमान 48 डिग्री के पार जा रहा है। ये इलाका धरती पर सबसे गर्म जगहों में शुमार हो चुका है। मौसम से अघोषित युद्ध छिड़ा है। पर प्रशासन ने भी कमर कसी हुई है। लोगों को राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है और अपील की जा रही है कि घरों से तभी निकलें जब निकलना बेहद जरूरी हो।
1: हमारा लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पड़ता है, यानी कर्क रेखा के हम लोग पास में पड़ते हैं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश सीधा हमारे पास तक पहुंचता है। एक कारण हुआ। दूसरा कि आसमान साफ है, बादल नहीं है, तो बादल नहीं होने के कारण भी प्रकाश हमारे पास सूर्य की रोशनी सीधे आ जाती है। इसके अलावा कुछ कारण है, जैसे हमारा पठारी क्षेत्र का होना, पत्थरों का होना, मिट्टी में नमी का कम से कम होना, जल के स्रोत नदियों का इसमें सूखा हुआ होना, पेड़ पौधों की कमी।
0: लिहाजा सच तो यही है कि बांदा बेहद गर्म जगह बन चुका है। बांदा में गर्मी बढ़ने के पीछे मुख्य वजह घटती हरियाली, सूखती नदियाँ, अंधाधुंध रेत खनन और जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। बांदा का इलाका पथरीला है। पथरीली जमीन दिन में गर्मी को तेजी से सोख लेती है और रात में भी तापमान पर इसका असर पड़ता है। उत्तर पश्चिम से आने वाली गर्म हवा के कारण भी बांदा में गर्मी ज्यादा पड़ती है। थार रेगिस्तान से आने वाली शुष्क हवाएं गर्मी को और ज्यादा बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से रातें भी गर्म हो रही हैं। साथ ही बारिश में कुछ कमी भी है। यहाँ पर भीषण गर्मी के प्रमुख कारणों में शामिल है, क्योंकि यहाँ पर साल में 3 महीने से भी कम बारिश होती है और बाकी समय सूखा मौसम ही रहता है। बहरहाल यहाँ पर लोगों को गर्मी के प्रकोप से बचाव के लिए खास उपाय करने पड़ रहे हैं।
2: घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। हम घर से निकलते हैं तो बहुत ही गर्म हवा चल रही है, जिससे कभी कभी लू भी लग जाती है। और इसके बचाव के लिए हम अपने साथ पानी की बोतल कैरी करते हैं और जितना हो सकता है लिक्विड कंज्यूम करते हैं, जिससे कि हमें गर्मी से बचाव राहत मिल सके।
3: लिक्विड डाइट पे ज़्यादा है और अपना शरीर पे जो कपड़े हैं बांध के चलते हैं और सारा शरीर ढक के चल रहा है, जगह जगह स्टॉपेज लेते हैं।
4: गर्मी में बचाव के लिए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं कैप भी लगाया हूँ, साथ में अपनी साफ़ी भी लगा के बांध के काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी हीट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।
0: जानकारों की माने तो बांदा में मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। वहीं अभी नौतपा भी शुरू होने वाला है। लिहाजा प्रशासन का कहना है कि इलाके में पीने के पानी और बिजली की सप्लाई सहित तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है।
5: सब लोगों को अवेयर किया है कि आप 11 बजे से 4 बजे तक बाहर बहुत ज़रूरी ना हो तो ना निकलें, और अगर निकलना ही पड़ रहा है तो लाइट क्लोथ्स में निकलें, और बच्चे और जो बूढ़े हैं, वृद्ध जन हैं, उन लोगों को बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, वो बहुत वल्नरेबल हैं। हमारे हॉस्पिटल्स अलर्ट पे हैं, एम्बुलेंसेज अलर्ट पे हैं, कहीं पर भी कोई समस्या होती है तो प्रशासन एकदम सक्रिय है।
0: डॉक्टर्स ने भी लोगों को ऐसे मौसम में एहतियात बरतने की सलाह दी है, ताकि इस गर्मी का बुरा असर सेहत पर ना पड़े।
6: लोगों से अपील की गई है कि लोग जो है 10 बजे से 3 बजे तक धूप में ना निकलें, और जब भी बाहर जाएं तो छाता लेकर के या गमछा लेकर के निकलें और पानी साथ में लेकर निकलें और खाली पेट ना निकलें, और जो भी खाना पीना खाएं तो लिक्विड ज़्यादा लें और ज़्यादा तेली पदार्थ ना लें और बाहर के कटे हुए फल ना खाएं।
0: रिपोर्ट्स के अनुसार बांदा में 10 जून 2019 को तापमान 49.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो एक रिकॉर्ड है। हालांकि इस बार जो स्थिति दिख रही है उसके कारण यहां पर चढ़ते पारे से गर्मी का नया रिकॉर्ड भी बन सकता है। ऐसे में सच ये भी है कि आम लोगों को अपनी सेहत की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: तो देखिए, मैदानी इलाकों में गर्मी के जो हालात है वो तो किसी से छिपे नहीं है। इस पे लगातार हम भी डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए, उगते सूरज के साथ मुश्किल की घड़ियां जो है वो भी शुरू हो जाती हैं। घर के अंदर भी जो एसी होते हैं वो कूलिंग करने में एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं, एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं। ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस तापमान में वो जाएं तो कहां जाएं।
8: बिल्कुल देखिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो गर्मी को पीछे छोड़ बर्फीली वादियों में पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर में कई ऐसे हिल स्टेशंस हैं जहां जून के महीने में बर्फ देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात, अब लोग उन हिल स्टेशंस की तरफ जा रहे हैं जहां भीड़ कम है और कुदरती सुंदरता बहुत ज्यादा है।
9: जब गर्मी सताए तब पहाड़ों की याद आए। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जैसे ही शहरों में गर्मी का मीटर हाई हुआ, लोग पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। हर बार की तरह उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर लोगों की पहली पसंद है। मैदानों में बढ़ रही झुलसाने वाली गर्मी से इन राज्यों के पर्यटन को बढ़ावा भी मिल रहा है।
10: हम लोग जयपुर राजस्थान से आए हैं और वहाँ पे बहुत गर्मी है। अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है। आने वाले टाइम पे वार्निंग भी दी गई है कि 25 मई से 2 जून तक बहुत ज्यादा हीट वेव्स आने वाली है। घर में रहें, सब लोगों को बोला गया है। बट मैं बोलना चाहूंगी, क्यों आपने घर में रहना है? आप कश्मीर आए, आप अपना ट्रिप प्लान करें, फैमिली को लेकर आए, दोस्तों को लेकर आए, यहाँ की ब्यूटी को देखें, स्नो में खेलें, कितना मजा आएगा आपको भी।
9: यूं तो जम्मू कश्मीर 12 महीने पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार रहता है, मगर इस बार कश्मीर के बांदीपुरा की ठंडी और सुकून देने वाली घाटियां सैलानियों को खूब लुभा रही हैं।
11: सूरज सर पे हो और बहुत आग बरस रही हो, ऐसा माहौल है वहां का। और मैं कश्मीर में यहां पर आके मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैं जन्नत में आ गई हूं। बहुत कूल मौसम और बहुत प्यारा खूबसूरत नजारा है यहां पर।
9: बांदीपुरा के इन छोटे और कम फेमस हिल स्टेशंस पर अभी भी बर्फ की चादर बिछी है। जून में बर्फ की चादर देख सैलानी हैरान है, मगर धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की यही सच्चाई भी है।
12: यहाँ हमें इतना सुकून मिल रहा है, इतना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हूँ। तो बस ठंडा मौसम है, हर व्यक्ति को इस वक्त कश्मीर घूमना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे आना चाहिए।
9: यहाँ दूर तक सफेद हो चुके घास के मैदान हैं और ऊंची ऊंची चोटियों से बहती ठंडी हवा पल भर में थकान दूर कर देती है।
10: लोगों का सपना होता है आना, और हमें ये बहुत ज्यादा बड़ा चांस मिला है। और हम जैसे कि सारे देखते हैं कि बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर जाते हैं ऐसी चीजों के मजे लेने के लिए, बट इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं और कश्मीर तो इज द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस।
9: पर्यटकों की संख्या बढ़ने से इन छोटे छोटे हिल स्टेशंस को नई पहचान मिली है, साथ ही घूमने के शौकीनों को नए डेस्टिनेशन भी मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
13: वहीं जो लोग, आपको बता दें, किसी भी कारण से पहाड़ों का ट्रिप नहीं लगा पा रहे हैं, उनको गर्मी में परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब गुजरात के अहमदाबाद शहर को ही ले लीजिए, यहाँ का स्नो पार्क इस चिलचिलाती गर्मी से परेशान लोगों को राहत का एहसास करा रहा है।
7: बिल्कुल, देखिए, इस बेतहाशा गर्मी के मौसम में स्नो पार्क के अंदर का तापमान शून्य से नीचे ही रहता है, वही मौज मस्ती के लिए तो ये स्नो पार्क बच्चों की फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है।
14: बाहर चिलचिलाती धूप और अंदर बर्फीली वादियों का नजारा। बाहर पारा 45 डिग्री को छूने को बेताब है, लेकिन यहाँ शून्य से नीचे का तापमान ठंड का एहसास करा रहा है। ये नजारा है अहमदाबाद के एक स्नो पार्क का। मई के महीने में जब गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो इस स्नो पार्क से बेहतर जगह शायद कोई और हो ही नहीं सकती। गर्मी के इस मौसम में पूरे उत्तर भारत के साथ गुजरात और राजस्थान में भी हीट वेव का असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात और सौराष्ट्र के लिए अलर्ट भी जारी कर रखा है, लेकिन इस मुश्किल मौसम में अहमदाबाद का ये स्नो पार्क लोगों को ठंड से भरी राहत का तोहफा दे रहा है।
15: बहुत सारी हॉलीडेज है, गर्मी है, इसलिए फ्रंट ब्लास्ट में एंजॉय करने के लिए आए हैं हम। जाते हैं और 3 साल से सलिंग आते हैं यहाँ।
16: अभी गर्मी बहुत सारी है, इसीलिए हमने यही प्लेस सिलेक्ट करी।
14: स्नो पार्क के अंदर का तापमान -7 डिग्री रहता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। गर्मी के दिनों में भी यहां आने के लिए खास तैयारियां करनी पड़ती हैं। बड़े हो या छोटे, स्नो पार्क में दाखिल होने से पहले सभी को जैकेट, बूट्स और ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। इस पार्क में सभी के लिए हर साइज की जैकेट्स और ग्लव्स मौजूद हैं। गर्मी के इस मौसम में सर्दी के कपड़े पहनकर लोग इस खूबसूरत पार्क में परिवार के साथ मस्ती करते दिख जाते हैं। यहाँ जमीन पर कई इंच मोटी बर्फ है, बच्चे और बड़े यहाँ पर विंटर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं, जो आमतौर पर कश्मीर और दूसरे हिल स्टेशंस पर दिखते हैं। यहाँ की स्नो स्लाइड्स बच्चों की फेवरेट हैं। स्नो कैसल और स्नोमैन के साथ बच्चे घंटों मस्ती करते हैं। इस मौसम में जो लोग हिल स्टेशंस पर नहीं जा पा रहे, उनके लिए ये स्नो पार्क एक बेहतरीन सौगात है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: अब देखिए मानसून के तय वक्त से पहले आने की खबर ने गर्मी से जूझते हुए लोगों को थोड़ी राहत तो दे दी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मानसून किस तेजी के साथ भारत में एंट्री लेने के लिए तैयार है। तो IMD की माने तो मानसून काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल मानसून की अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में मौजूदगी देखी जा सकती है। IMD के अनुसार मानसून श्रीलंका के तट पर दस्तक दे चुका है और अब मानसून के केरल में 25 मई को आने की पूरी उम्मीद है।
7: वहीं बिहार तक मानसून 15 जून के आसपास पहुंचेगा। तो यूपी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 15 से 22 जून तक मानसून के दस्तक देने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं गुजरात में मानसून का असर 20 से 25 जून के बीच नजर आएगा। तो दिल्ली NCR में 25 से 30 जून के बीच मानसून के आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है।
8: चले फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे अस्पताल में हुए झगड़े के बाद किसने सलमान से माफी मांगी।
17: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन, पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ से हुआ चुनाव। पवित्र यात्रा के लिए जून से अगस्त के बीच में 20 जत्थों में रवाना होंगे यात्री। भीषण गर्मी के बीच में रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार, सरयू नदी में स्नान से आध्यात्मिक शांति और सुकून का अनुभव। हनुमानगढ़ी कनक भवन के साथ राम की पैड़ी पर उमड़ रही भीड़। जबरदस्त गर्मी की चपेट में लगभग पूरा भारत, नागपुर में गर्मी ने तोड़ा 10 सालों का रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 46.6 डिग्री सेल्सियस। चंडीगढ़ में 47 डिग्री तो बांदा में 48 डिग्री के साथ बना है ये देश का सबसे गर्म शहर। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर दिख रहा भीषण गर्मी का असर, हिमाचल के ऊना में 44 तो शिमला में 30 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा, अगले दो दिनों में बारिश के आसार।

दादे के इस बार एंग्री यंग मैन के उलट उनका दिलदार अंदाज नजर आया है। दरअसल एक्टर रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी में सलमान खान पहुंचे तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए वहां पेपराजी को माफ कर दिया है। देखिए

0: बॉलीवुड में चर्चा ये आम है कि सलमान खान यारों के यार हैं, दिलदार हैं। ये दो तस्वीरें सलमान खान के बारे में चर्चित इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं। पहली तस्वीर में सलमान का दिलदार अंदाज नजर आ रहा है तो दूसरी तस्वीर में उनका एंग्री यंग मैन अवतार नजर आ रहा है। ये दोनों ही तस्वीरें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे, ये हम आपको एक एक करके बताएंगे। पहले बात पहली तस्वीर की, जो बुधवार शाम को आई, जिसमें सलमान खान पेपराजी को माफी देते दिखाई दे रहे हैं। बुधवार शाम सलमान खान रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी में पहुंचे थे। सलमान खान ने जैसे ही गाड़ी से उतरकर वेन्यू पर एंट्री ली, वहां का नजारा ही बदल गया। मीडिया के कैमरों के फ्लैश चमक उठे, सभी कैमरामैन और फोटोग्राफर ने उन्हें अपने कैमरों में कैद करना शुरू कर दिया। सलमान खान को देखकर रितेश देशमुख उन्हें रिसीव करने जैसे ही पहुंचे, तभी पेपराजी ने भी उन्हें घेर लिया और सभी पेपराजी एक दिन पहले ही अपनी हरकत के लिए एक सुर में सलमान खान से सॉरी सॉरी बोलने लगे, उनसे माफी मांगने लगे। सलमान ने भी बड़ा दिल दिखाया और कैमरे के सामने पोज देते हुए शांत मन से उनकी माफी स्वीकार कर ली। साथ ही पेपराजी को नसीहत भी दे डाली कि ये सही जगह है, यहाँ फोटो क्लिक कर सकते हैं। सलमान ने फिर मजाक में कहा, जोर से सॉरी बोलो। ये तो हुई बुधवार शाम की बात, लेकिन इस सॉरी की नौबत आई क्यों? ये जानने के लिए आपको मंगलवार रात की तस्वीर दिखाते हैं, जो इस सारे विवाद की जड़ है। मंगलवार को सलमान खान अपने करीबी को देखने के लिए हिंदुजा अस्पताल पहुंचे थे। सलमान खान जैसे ही अस्पताल से बाहर आए, पेपराजी ने भाईजान भाईजान कहकर शोर मचाना शुरू कर दिया। अस्पताल के बाहर पेपराजी की शोर मचाते देख सलमान खान भड़क उठे और सबकी क्लास लगा डाली। सलमान खान का गुस्सा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचने के बाद आधी रात को उन्होंने पेपराजी को सलीके से व्यवहार करने की नसीहत देते हुए इंस्टा पर कई सारे पोस्ट कर डाले। सोशल मीडिया पर मचे इस घमासान के बाद हर किसी को लग रहा था कि पेपराजी और सलमान खान के बीच की जंग बहुत लंबी खिंचेगी। लेकिन राजा शिवाजी के इवेंट में जिस मैच्योरिटी के साथ पेपराजी ने अपनी गलती मानी और सलमान खान ने जिस तरह बड़ा भाई बनकर उन्हें माफ किया, उसने न सिर्फ पूरे विवाद को खत्म कर दिया बल्कि सलमान खान के इस दिलदार अंदाज ने हर किसी का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, कुनिश्रे।
1: वैसे रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेर रही है। शुरुआती हफ्तों में फिल्म की कमाई की रफ्तार इसके हिट होने की तरफ इशारा कर रही है।
2: बिल्कुल, देखिए इस कामयाबी पर रितेश देशमुख ने एक सक्सेस पार्टी रखी। इस पार्टी में रितेश को बधाई देने के लिए बॉलीवुड की तमाम हस्तियां भी पहुंची।
3: राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी में सजी सितारों की महफिल। फिल्म को मिल रही बम्पर कामयाबी के बाद सक्सेस पार्टी का आयोजन। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी को रिलीज हुए अभी 3 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं और ये फिल्म बड़े पर्दे पर कामयाबी की नई इबारत लिखती नजर आ रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर बनी इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। दर्शकों के इस रिस्पांस का फिल्म के कलेक्शन पर भी असर दिखने लगा है। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड तो पहले ही 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, वहीं भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 90 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। यानी बहुत जल्दी ये फिल्म भारत में भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने को तैयार है। करीब 75 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में

0: अपनी लागत से कहीं ज्यादा कमाई कर हिट का तमगा हासिल कर लिया। यही नहीं, ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म का रिकॉर्ड बनाने की ओर तेजी से बढ़ रही है। फिल्म की इसी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए रितेश देशमुख ने एक सक्सेस पार्टी रखी। इस फिल्म में एक्टिंग के साथ रितेश ने राइटर और डायरेक्टर की भी भूमिका अदा की है, यानी रितेश के लिए ये फिल्म बेहद खास है। इस सक्सेस पार्टी में रितेश अपनी हम सफर जिनेलिया का हाथ थामे पहुंचे और येलो कलर की ड्रेस में जिनेलिया बेहद खूबसूरत भी लग रही थी। इस पार्टी में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी सलमान खान ने। सलमान के पहुंचते ही पार्टी में हलचल बढ़ गई। सलमान के आते ही रितेश देशमुख उनके स्वागत के लिए बाहर आ गए। सलमान ने रितेश को बधाई दी और दोनों ने इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर महेश मांजरेकर भी इस पार्टी में शामिल होने के लिए आए। मराठी एक्टर सिद्धार्थ जाधव ने पार्टी में पहुंचकर रितेश देशमुख को कामयाबी की बधाई दी। जेनिफर वेंगेट यहां आशीष चौधरी और उनकी पत्नी समिता के साथ पहुंची थी। पार्टी की खास बात ये भी रही कि इस पार्टी में नए जमाने के एक्टर्स के साथ साथ 90 के दशक के तमाम सुपरस्टार दिखे। बड़े पर्दे पर हिट रही भाग्यश्री के पहुँचने से पार्टी की रौनक मानो और बढ़ गयी। फरदीन खान इस पार्टी में बेहद अनोखे लुक में नजर आए। राजा शिवाजी बहुत जल्द 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी, लेकिन फिल्म को दर्शकों के मिल रहे प्यार से उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म कमाई के नए रिकॉर्ड बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देश में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और प्रधानमंत्री की फ्यूल बचाने की अपील का असर अब ऑटो बाजार में साफ दिखाई देने लगा है। चंडीगढ़ और मोहाली जैसे शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।
2: बिल्कुल, और ईवी का अब सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि इसे वक्त की दरकार भी कहा जाएगा कि आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोगों की जरूरत बनते जा रहे हैं। इसीलिए युवा और नौकरी पेशा लोग अब पेट्रोल डीजल गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक कार और स्कूटी खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
0: चंडीगढ़ और मोहाली के ईवी शोरूम में इन दिनों ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। लोग अब सिर्फ गाड़ी खरीदने नहीं बल्कि बैटरी बैकअप, चार्जिंग खर्च, रेंज और मेंटेनेंस जैसी जानकारी लेने भी आ रहे हैं।
3: Nowadays पेट्रोल प्राइसेस जो वेरी कर रहे हैं ऑल ओवर, तो उसमें ईवी का सबसे अच्छा इम्पैक्ट लग रहा है। फ्यूचर यही है, आने वाले 5 से 10 सालों के बीच में सबसे ज्यादा इसी पे लोग ट्रांसफर होंगे।
0: ये तस्वीरें मोहाली के कार शोरूम की हैं। यहाँ के डीलर के अनुसार अप्रैल के मुकाबले मई में इलेक्ट्रिक कारों की बुकिंग में करीब 44% का इजाफा दर्ज किया गया है। अप्रैल महीने में जहाँ करीब 50 इलेक्ट्रिक कारों की बुकिंग हुई थी, वहीं मई में अब तक 72 कारें बुक हो चुकी हैं।
4: सर, एक ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपील की कि पेट्रोल डीजल फ्यूल जो है ये बचाया जाए, अल्टरनेटिव मेजर्स लिए जाए, कार पूलिंग में आया जाए, और प्लस रेट्स भी बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, ईवी ऑन अ ग्राउंड ईवी के सेल्स में कितना फर्क पड़ रहा है और जो बुकिंग्स आपकी बढ़ी हैं, क्या सिचुएशन है?
5: बेसिकली क्या, मोदी जी से जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया था उससे पहले ही हमारी बुकिंग्स तो बढ़नी शुरू हो गई थी, बट जैसे ही उनका मैसेज आया साथ के साथ ही हमारी जो बुकिंग है डबल होनी शुरू हो गई है। अभी मेरे ख्याल से 15 डेज हुए हैं हमें, तो हम 44% ग्रोथ पे हैं
4: लास्ट महीने के मुकाबले। कितनी बुकिंग थी पिछले?
5: लास्ट मंथ 50 थी, तो अभी तक 72 हो चुकी हैं 15। अभी भी 13 डेज अपने पास पड़े हैं, तो होप सो कि बिजनेस बहुत अच्छा उठेगा ईवी का।
0: सिर्फ चार पहिया वाहन ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बिक्री में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। मोहाली के एक ईवी टू व्हीलर डीलर का दावा है कि अप्रैल के मुकाबले उनकी बिक्री में 50-60% तक का इजाफा हुआ है।
4: कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी लोगों से कि पेट्रोल डीजल बचाएं, कार कूलिंग करें और पेट्रोल जो है उसका जो है बचत की जाए। इसके बाद में हमने देखा कि किस तरह पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी, तो उसमें अलग अलग जो लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेते भी नजर आए, और यहाँ तक कि अब जो ईवी कार्स हैं या ईवी बाइक्स हैं उनकी भी बुकिंग्स और सेल्स जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। हमने देखा किस तरह कार्स की बुकिंग्स में बढ़ोतरी हुई है। ये अब हम एक ईवी बाइक स्टोर में हैं जो ईवी बाइक्स बेचते हैं, और यहाँ पर भी हमने जब बात की तो उनका यही कहना है कि जो हमने इंक्रीज जो है वो देखा है।
0: ऑटो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही और सरकार ईवी सेक्टर को बढ़ावा देती रही तो आने वाले महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड और तेजी से बढ़ सकती है। वाहन पोर्टल के अनुसार अप्रैल 2026 में कुल 2,39,025 इलेक्ट्रॉनिक वाहन बिके। इसमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और पैसेंजर और कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल हैं। पिछले साल के मुकाबले इस सेक्टर की ग्रोथ 41% की है, जबकि अप्रैल 2025 में कुल 1,69,360 वाहन बिके थे।
3: जब से पीएम मोदी जी ने बोला है जी, जब से तो हमारी ये लगा लो जहाँ पे 40 गाड़ियाँ थी वहाँ से अभी 60-70 गाड़ियाँ हो रही है और सेल बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ गया जी। पहले से
4: एक महीने में 40 बिकती थी, अब 60-70
3: हो गई है जी। और कस्टमर जो भी आ रहे हैं, मतलब ये पेट्रोल की ये कमी की वजह से लगा लो या जो रेट बढ़ रहे हैं जी, तो थोड़ा सा उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है जी।
0: एक तरह से कहें तो चंडीगढ़ जैसे शहरों में ईवी अब सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि लोगों की जरूरत बनता जा रहा है।
4: डेफिनेटली इम्पैक्ट है अगर पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो, जिस तरह रेट बढ़े पेट्रोल डीजल के, और प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑस्टेरिटी की अपील की और बोला कि स्विच करें अल्टरनेटिव मोड्स पे, तो ईवी एक मोड था, इलेक्ट्रिक मोड था। जिस तरह कार्स की बुकिंग्स भी बढ़ी हैं, तो यहाँ हम एक ईवी बाइक स्टोर में हैं जिनका कहना है कि हाँ सेल्स बढ़ी हैं, बुकिंग्स बढ़ी हैं और क्वेरीज भी जो है वो भी मैनिफोल्ड हुई हैं। मोहाली से कैमरा पर्सन नमन के साथ असीम बस्सी।
2: तो जैसा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विदेश यात्रा की बजाय अपने ही देश को एक्सप्लोर करने की अपील की थी, तो जीएनटी पर आप सभी से ये अपील हम कर रहे हैं कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजिए ताकि हम आपके उन वीडियोस को जीएनटी पर दिखाएं।
1: बिल्कुल, हमारे दर्शक भी बड़े ही उत्साह के साथ अपनी जगहों के खूबसूरत वीडियो हमें भेज रहे हैं। तो चलिए आज आपको उत्तरकाशी के उन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में व्लॉगर बनी एक दर्शक की जुबानी सुनाते हैं कि क्यों आपको उत्तराखंड के इस बेहद खूबसूरत और धार्मिक शहर को एक्सप्लोर करना चाहिए।

0: स्वागत है आपका गुड न्यूज चैनल में। मैं गीता सेमवाल, मैं बुलाना चाहती हूँ आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। हल्की हल्की आजकल ना शाम के टाइम पे ठंड महसूस हो रही है। वाह, कितने सुंदर नजारे हैं, कितनी सुंदर प्रकृति की यहाँ पे खूबसूरती है। आपको ना बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़, चीड़ का घना जंगल, ये सब चीज देखने को मिलता है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में दो धाम है, श्री यमुनोत्री धाम और श्री गंगोत्री धाम। तो आजकल ना काफी अच्छी यात्रा चल रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी यही कहा है कि आप विदेशों में घूमने न जाके भारत की जो जगह है, पर्यटक स्थल है, जैसे उत्तराखंड में चार धाम है, श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, आप इन जगहों पे आए। इसके अलावा भी उत्तराखंड में न कहीं आपको पर्यटक स्थल देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आजकल यमुनोत्री धाम में और श्री गंगोत्री धाम में, यानी चारों धाम में काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। जब हमारे गांव मुखवर में मोदी जी आए थे तो उस टाइम जो ये यात्रा चल रही है, अब ये ग्रीष्म काल में न होते हुए अब ये यात्रा शीत काल में भी चलती है, यानी 12 महीना यात्रा चलती है। तो माननीय मोदी जी ने घाम तापो पर्यटक इसका नाम दिया है। मुखवा के सामने धराली है, हरसिल है, बगोरी है। और अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं तो यहाँ पे ना ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए कई जगह है, जैसे दयारा बुग्याल है, गौमुख ट्रैक है, सात ताल ट्रैक है, ऐसे कई अन्य ट्रैक है। अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप शीतकाल में यात्रा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उस टाइम तो और ज़्यादा खूबसूरती आपको देखने को मिलती है। क्योंकि हरसिल में जो है धराली, मुखवा में सेब, राजमा और उसके साथ साथ खुमानी हो गया, नाशपाती हो गया, ये भरपूर मात्रा में आपको देखने को भी और खाने को भी मिलती है। और इसी के साथ साथ एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि वेडिंग डेस्टिनेशन है, जैसे कि त्रिजोगी नारायण है और उत्तरकाशी में बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में है, श्री गंगोत्री धाम में गंगा मैया जी के मंदिर में है, और गंगा मैया जी का जो शीतकालीन प्रवास है मुखवा, वहाँ पे आप ना शादी करवा सकते हैं और इन जगहों पे ना शादी होती है। तो आइए ना श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम और गंगा मैया जी के शीतकालीन प्रवास मुखवा उत्तरकाशी में आपका स्वागत है।
1: हमें ना ब्लॉगर्स की तरफ से वीडियोस आने शुरू हो गए हैं। आप अपने इलाके का कोई ऐसा अगर वीडियो हो तो बताइए, आप घूम चुके हैं, आप वो भी दिन बता सकते हैं हमें, एटलीस्ट लोग जा पाएंगे।
2: मेरी और आपकी चॉइसेस तो आसपास ही होंगी, चंडीगढ़ से आगे शिमला पहुंच जाइए, आगे आप चली जाइए टीवी आगे ऊपर कुफरी की तरफ, बहुत अच्छी अच्छी जगह है ना। अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं पहाड़ों को तो
1: पहाड़ पसंद है।
3: पहाड़ की बात होती है तो शगुफ्ता मुझे देखती है,
2: उत्तराखंड है ना,
3: उत्तराखंड है। मायावती आश्रम भी जा सकते हैं उत्तराखंड, और मुझे लगता है कि बिहार की ज्यादा जानकारी
2: बिहार में मैं, हालांकि वहाँ भी कई जगह है, सीतामढ़ी वगैरह काफी अच्छी जगह है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहाँ बन गए हैं, बोध गया है, बहुत खूबसूरत जगह, लोग वहाँ जा सकते हैं। लेकिन हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है तो लोग पहाड़ों का रुख करेंगे।
1: लेकिन 15 जून तक मानसून जो है वो बिहार तक दस्तक दे देगा, इसलिए अगर प्लान कर रहे हैं तो 15 जून की बात कर सकते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री ने जो लोगों से अपील की है कि आप विदेश दौरे पर मत जाइए, भारत में ही रहिए, और ऐसे तमाम वीडियोज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसा वीडियो है, कोई ऐसा वीडियो आपके आसपास कोई ऐसी जगह है, तो जल्दी से अपना फोन या कैमरा उठाइए, एक छोटा सा ब्लॉग बनाइए और हमें भेज दीजिए 7303409922 पर, व्हाट्सएप कर दीजिए और हम आपका वीडियो जेएनटी पर दिखाएंगे।
2: तो आप में आपका शहर बसता है और आप में आपकी माटी की महक बसी है तो बुलाएंगे तो देश भर से लोग भी आएंगे, मेहमान आएंगे, यही अपील प्रधानमंत्री ने भी की है। और इसीलिए जेएनटी की ये मुहिम है, जेएनटी संग अपने शहर में कीजिए देश का स्वागत।
3: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गूगल कैसे बदलने जा रहा है आपके सर्च का तरीका।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
1: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
0: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
3: It's your boy,
2: just
3: Jay-Z.
2: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: देखिए, गूगल ने अपने सालाना कॉन्फ्रेंस में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बड़ा दाव खेलते हुए कई नए और एडवांस फीचर्स लॉन्च कर दिए हैं। सीईओ सुंदर पिचाई ने जेमिनी 3.5 फ्लैश पेश किया, जिसे कंपनी ने अब तक का सबसे तेज और सस्ता एआई मॉडल बता दिया है। देखिए, इसके साथ ही गूगल का यह भी दावा है कि ये जो मॉडल है वो दूसरे एआई मॉडल्स के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेज और आधी कीमत पर काम करेगा। कंपनी के मुताबिक बड़े बिजनेस अगर जेमिनी 3.5 फ्लैश अपनाते हैं तो सालाना $1 अरब से ज्यादा की बचत वो कर सकते हैं।
6: आपको बता दें, इवेंट में गूगल ने जेमिनी स्पार्क नाम का नया एआई एजेंट भी लॉन्च किया है, जो कि जीमेल ड्राइव और दूसरे ऐप से जानकारी लेकर रिपोर्ट तैयार करके और शेड्यूल मैनेज करने जैसे काम खुद कर सकेगा। इसके अलावा डॉक्स लाइव फीचर भी पेश किया गया है, जिसमें यूजर्स सिर्फ बोलकर डॉक्यूमेंट तैयार कर पाएंगे। वहीं जेमिनी ओमनी नाम का नया वीडियो एआई मॉडल टेक्स्ट, फोटो और वीडियो की मदद से आसानी से वीडियो क्रिएट और एडिट कर सकेगा।
7: गूगल सर्च में अब रिजल्ट नहीं बल्कि जवाब मिलेगा। सर्च में एंटी ग्रेविटी एआई एजेंट का सपोर्ट मिलेगा। सवाल पूछने पर जरूरत के हिसाब से विजुअल्स दिखेंगे। बातचीत के अंदाज में गूगल सर्च हो सकेगा। गूगल सर्च का नया फीचर सभी के लिए फ्री है। गूगल जेमिनी ऐप का रंग रूप भी बदल जाएगा। जेमिनी से अब 70 से ज्यादा लैंग्वेजेस में आप बात कर सकते हैं। हरियाणवी में भी आपसे बात करेगा जेमिनी।
6: हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
8: फील द गुड वाइब्स विद रूट्स रेगे। ट्यून इन इज ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी टू योर इयर्स विद द बेस्ट रेगे हिट्स। स्टिर इट अप विद बॉब मार्ले, जिमी क्लिफ, प्रोटेजे, much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चलिए एक तस्वीर जो वायरल हो रही है वो आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया का ये तस्वीर है, देख लीजिए, थाईलैंड की है ये, जहां कुछ लोग भगवान गणेश से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहां भी भगवान गणेश को सफलता, बुद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है।
2: बिल्कुल, देखिए बैंकॉक से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में बने छोटे बड़े मंदिरों में गणपति बप्पा के प्रति गहरी आस्था देखने को मिलती है। ये बेहद दिलचस्प बात है कि भारत की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का प्रभाव थाईलैंड में भी उतना ही जीवंत दिखाई देता है जितना कि भारत में है।

0: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना, कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन। पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज्ड लकीर ड्रॉ से हुआ चुनाव। पवित्र यात्रा के लिए जून से अगस्त के बीच में 20 जत्थों में रवाना होंगे यात्री। भीषण गर्मी के बीच में रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार। सरयू नदी में स्नान से आध्यात्मिक शांति और सुकून का अनुभव। हनुमानगढ़ी कनक भवन के साथ राम की पैड़ी पर उमड़ रही भीड़। जबरदस्त गर्मी की चपेट में लगभग पूरा भारत। नागपुर में गर्मी ने तोड़ा 10 सालों का रिकॉर्ड। पारा पहुंचा 46.6 डिग्री सेल्सियस। चंडीगढ़ में 47 डिग्री तो बांदा में 48 डिग्री के साथ बना देश का ये सबसे गर्म शहर। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी दिख रहा है भीषण गर्मी का असर। हिमाचल की ऊना में 44 तो शिमला में 30 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा। अगले 2 दिनों में बारिश का अनुमान। चिलचिलाती गर्मी में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम। दिल्ली के चिड़ियाघर में पशुओं के बाड़े में लगाए गए पंखे और कूलर। खान पान का भी रखा जा रहा पूरा ख्याल। विधि विधान के साथ खुले द्वितीय केदार। भगवान मध्य महेश्वर के कपाट बड़ी संख्या में मौजूद रहे भक्त। मध्य महेश्वर धाम में होती है भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। यूं तो जीएनटी स्पेशल में हम हर रोज ही आपको गुड न्यूज की बारिश करते हैं, लेकिन आज बात बारिश की गुड न्यूज की करेंगे। वो गुड न्यूज जो मौसम विभाग ने देश को सुना दी है। देश के लिए मानसून की चिट्ठी आई है। जी हां, इस बार मानसून तय वक्त से पहले आ रहा है। हमारे देश में मानसून केरल के रास्ते दाखिल होता है। आमतौर पर मानसून कि केरल में एंट्री 1 जून के आसपास मानी जाती है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस बार मॉनसून 26 मई को केरल पहुंच सकता है, यानी तपती गर्मी से परेशान देश के मौसम को कूल डाउन करने के लिए मॉनसून तेजी के साथ लोड हो रहा है। मॉनसून से पहले प्री मॉनसून बारिश ने देश के दक्षिणी राज्यों में दस्तक दे दी है। साउथ के कई इलाकों में बरस रहे प्री मॉनसून के बादलों ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है, यानी मॉनसून से पहले उसका जोरदार ट्रेलर शुरू हो चुका है। आज 21 मई है, यानी मॉनसून बस अब देश की दहलीज तक पहुंच चुका है। इंतजार है तो उसके उत्तर भारत की मेन लैंड में दाखिल होने का।

0: मई की तपिश में राहत की बौछार होने वाली है। मॉनसून की बारिश से देश की धरती गुलजार होने वाली है। यानी आज जहां सूरज आग उगल रहा है, वहां जल्द झमाझम बादल बरसने वाले हैं। और आज जहां हीट वेव ने बेचैन कर रखा है, कल वहां आसमान से सुकून बरसने वाला है। ये राहत भरी खबर आई है मौसम विभाग की ओर से। मौसम विभाग ने अब की बार देश में मॉनसून के समय से पहले दस्तक देने की गुड न्यूज सुनाई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून 26 मई तक केरल पहुंच सकता है।
1: हमारा 26 का हमने प्रेस रिलीज इशू किया था 26 में, और विद मॉडल एरर जैसे प्लस माइनस 4 डेज होता है। बाकी जो अगर आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, तो जो वो लाइंस है जो वहाँ पे अभी मानसून एडवांस हो चुका है।
0: आमतौर पर 1 जून को मॉनसून के ऑनसेट की स्टैंडर्ड तारीख माना जाता है, और हाल के सालों में मॉनसून जून के पहले हफ्ते या फिर मई के अंत में दस्तक देता रहा है। पिछले 2 दशक में सबसे पहले साल 2009 में ऐसा हुआ था, जब तय तारीख से 8 दिन पहले यानी 23 मई को ही केरल में मॉनसून पहुंच गया था। इसके बाद पिछले साल यानी 2025 में भी मॉनसून तय समय से कुछ पहले आ गया था। पिछले साल यानी 2025 में मॉनसून 24 मई को केरल पहुंच गया था। साल 2024 में 30 मई, साल 2023 में 8 जून को, 2022 में 29 मई, 2021 में 3 जून, साल 2020 में 1 जून, साल 2019 में 8 जून और 2018 में 29 मई को मॉनसून केरल पहुंचा था। अब 2026 में भी मॉनसून देश की धरती पर जल्द मेहरबान हो रहा है। वास्तव में भारत की सीमा में मॉनसून की दस्तक यूं तो 16 मई को ही हो चुकी है, लेकिन ये एंट्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई है, जो कि बंगाल की खाड़ी का एक हिस्सा है। 16 मई को दक्षिण पश्चिम मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर के कई हिस्सों, संपूर्ण निकोबार द्वीप समूह, श्री विजयपुरम सहित अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। अब मॉनसून की एंट्री का इंतजार भारत के मेनलैंड पर है।
1: 16 मई को हमारा फर्स्ट एडवांस हुआ था, जिसमें हमने कुछ हिस्से अरबियन सी के, बियो बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड के कुछ हिस्से जहां तक हमने कवर किए थे। उसके बाद सेकंड हमारा था वो 18 मई को था। 18 मई को हमने इंटायर अंडमान निकोबार कवर किया, बियो बंगाल के कुछ हिस्से कवर हुए, साउथ अरबियन सी के कवर हुए। और उसके बाद हमारा यही अनुमान है आने वाले कुछ दिनों में जब बेओ बंगाल के कुछ और हिस्से कवर कर सकता है।
0: बात अगर देश में मॉनसून की साइकिल की करें, तो आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून 1 जून तक दक्षिण की ओर से केरल में दस्तक देता है। 8 जुलाई तक मॉनसून पूरे देश को कवर कर लेता है। ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू करता है और आधा अक्टूबर बीतते बीतते पूरी तरह से विदा हो जाता है। मौसम के जानकार इस बार मॉनसून के जल्दी आने की कई बड़ी वजहें बता रहे हैं। इसके पीछे मौसम के लोकल सिस्टम के साथ साथ ग्लोबल सिस्टम भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार नमी बने रहना, समुद्र से उठ रही तेज नमी वाली हवाएं मॉनसून को तेजी से उत्तर की ओर आगे बढ़ा रही हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश मॉनसून की बढ़ती सक्रियता का स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा अरब सागर और हिंद महासागर का तापमान सामान्य से अधिक रहने से मॉनसूनी सिस्टम को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। मॉनसून का सामान्य समय से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंचना भी इसका एक बड़ा संकेत है। मॉनसून भले ही जल्दी आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने इस बार मॉनसून सीजन के दौरान 92 से 95% यानी सामान्य से कुछ कम बारिश होने का अनुमान जताया है। ऐसे मॉनसून सीजन में बारिश को लेकर आईएमडी के पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें, तो पता चलता है कि अनुमान के आंकड़े से कुछ फीसदी कम या ज्यादा बारिश होना भी आम रहा है। 2025 में मॉनसून सीजन में 108%, यानी सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई थी, जबकि IMD ने 106% बारिश का अनुमान जताया था। 2024 के मॉनसून सीजन में भी 108% बारिश हुई थी, जबकि IMD ने तब भी 106% बारिश का ही अनुमान जताया था। इसी तरह 2023 में 94% बारिश हुई थी, तब IMD ने 96% बारिश का अनुमान जताया था। इससे पहले साल 2022 में 106% बारिश हुई, जो IMD के अनुमान से कुछ ज्यादा थी। अब इस साल मॉनसून का रिपोर्ट कार्ड क्या रहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मॉनसून के जल्द आने की गुड न्यूज ने गर्मी से तपते देश को खुश होने का मौका जरूर दे दिया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: वैसे तो मॉनसून 16 मई को ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे चुका है। ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के दक्षिणी हिस्सों में सक्रिय हो चुका है। निकोबार द्वीप समूह में पिछले कुछ दिनों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, लेकिन अब बारी देश के मेनलैंड में दस्तक देने की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मॉनसून कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून 26 मई के आसपास केरल तट पर पहुंचेगा, जो सामान्य तारीख 1 जून से लगभग एक हफ्ता पहले है। केरल के बाद मॉनसून जून के पहले सप्ताह में तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में पहुंचेगा। 5 से 7 जून तक दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो जाएगा। 10 जून तक मॉनसून के बादल तेलंगाना और महाराष्ट्र तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में 10 से 12 जून तक मॉनसून की बारिश शुरू होगी। इसके बाद बारी आएगी बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, जहां मॉनसून 15 से 20 जून के बीच सक्रिय हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून के 15 से 22 जून के बीच पहुंचने की संभावना है, जबकि गुजरात में मॉनसून 20 से 25 जून के बीच दस्तक दे सकता है। बात अगर दिल्ली NCR की जाए तो राजधानी क्षेत्र तक आते आते मॉनसून को लगभग एक महीना लग जाएगा। दिल्ली NCR में 25 जून के आसपास मॉनसून की एंट्री हो सकती है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी 25 जून तक मॉनसून की बारिश शुरू होने की संभावना है, जबकि राजस्थान में मॉनसून के सबसे आखिर में यानी 30 जून से 5 जुलाई तक पहुंचने की संभावना है। IMD के अनुमानों के अनुसार मॉनसून जुलाई के दूसरे हफ्ते तक पूरे भारत को कवर कर लेगा। तो मॉनसून के तय वक्त से पहले आने की खबर सुनते ही एक ठंडक सी महसूस होने लगती है। अमूमन मॉनसून जून की शुरुआत या मई के आखिर में 2 से 3 दिनों में केरल में दाखिल होता है, मगर इस बार ये 26 मई या उससे भी 1-2 दिन पहले आ सकता है। दक्षिण भारत में प्री मॉनसून की बारिश हो रही है, जो बता रहा है कि मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे कई और कारण हैं जो ये संकेत दे रहे हैं कि मॉनसून की गति और दिशा बिल्कुल सही है। इसी को देखते हुए कई राज्यों ने मॉनसून के लिए जरूरी तैयारी शुरू कर दी है। मॉनसून की आहट मिलते ही तमिलनाडु के कई इलाकों में NDRF ने मोर्चा संभाल लिया है।

0: हीट वेव और लू के थपेड़ों के बीच उत्तर भारत की अग्नि परीक्षा जारी है। कई शहरों का पारा 47 डिग्री को पार कर चुका है। जब पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में तप रहा है, ठीक उसी वक्त दक्षिण भारत के आकाश में एक अलग ही हलचल शुरू हो चुकी है। समुद्र से उठती नम हवाएं, गरजते बादल बता रहे हैं कि मानसून दस्तक देने वाला है। रविवार तक मानसून के केरल में एंट्री होने की उम्मीद है, वो भी तय वक्त से 5 दिन पहले। इससे पहले ही दक्षिण भारत में प्री मानसून की बारिश हो रही है। मानसून की आहट मिलते ही एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। तमिलनाडु में रानीपेट में एनडीआरएफ की टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। एनडीआरएफ के जवानों को मुश्किल हालात से निपटना और लोगों की जान बचाने का हुनर पता है। इस काम में इनकी मदद खोजी कुत्ते करते हैं जो कि पूरी तरह से ट्रेंड है। मानसून के बादल जब बरसते हैं तो कई कई दिनों तक थमते नहीं, ऐसे में कई बार हालात चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं। तब काम आती है इन जवानों की तैयारी। ये जवान अपने साथ कटर, लाइफ सेविंग जैकेट और बोट समेत हर वो जरूरी चीज लेकर गए हैं जिनकी इन्हें जरूरत पड़ सकती है। समय से पहले आ रहा मानसून उम्मीद की नई किरण भी लेके आ रहा है। सही तैयारी के साथ ये बारिश वरदान बनेगी, जल संकट कम होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बादल भी आएंगे और बारिश भी लाएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। खुशबू बता रही है ये सूखी जमीन की, इस दश्त में ही सब्ज इलाके भी आएंगे। मंजूर हाशमी की लिखी ये बात सच होती दिखेगी, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है। लेकिन बारिश की मेहरबानी जब तक नहीं हो रही, गर्मी के सितम से बचने का रास्ता निकाल डालना भी जरूरी है। मई की विदाई और मानसून की दस्तक के बीच में मैदानी इलाकों में जहां गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो वहीं पहाड़ों पर मौसम ने करवट लेकर नजारों को और भी खूबसूरत बना दिया है। कश्मीर और लेह समेत कई पहाड़ी इलाकों में हाल ही में हुई बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार बना दिया। मानसून के इंतजार के बीच गर्मी में सर्दी का एहसास करने के लिए मैदानों के मुसाफिर इन बर्फीले पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
2: आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। मानसून के लिए फिलहाल यही कहा जा सकता है। बहरहाल गर्मी का हाहाकार है और बारिश का इंतजार है। लेकिन बारिश जब तक नहीं आ रही, इस कमबख्त गर्मी से राहत का उपाय ढूंढना भी जरूरी है। और मानसून का इंतजार करते लोगों के लिए इन दिनों उसी राहत और सुकून का जरिया बन रहे हैं पहाड़ और उन पर बरसती बर्फ। मैदान में तो मई आग बरसा रही है, पर वादियों में बर्फ बिछी है। 40 डिग्री वाले टॉर्चर से जो निकल कर आए हैं, उनके लिए ये नज़ारा वाकई जन्नत से कम नहीं। हर बार की तरह उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर लोगों की पहली पसंद है। मैदानों में पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी से इन राज्यों के पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान, दिल्ली, यूपी और दूसरे इलाकों से लोग कश्मीर के बांदीपुरा चले आए हैं, जहां बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और नज़ारे लोगों को राहत का एहसास करवा रही हैं।
3: हम लोग जयपुर राजस्थान से आए हैं और वहां पे बहुत गर्मी है। अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है। आने वाले टाइम पे वार्निंग भी दी गई है कि 25 मई से 2 जून तक बहुत ज्यादा हीट वेव्स आने वाली है। घर में रहें, सब लोगों को बोला गया है। बट मैं बोलना चाहूंगी, क्यों आपने घर में रहना है? आप कश्मीर आए, आप अपना ट्रिप प्लान करें, फैमिली को लेकर आए, दोस्तों को लेकर आए, यहाँ की ब्यूटी को देखें, स्नो में खेलें, कितना मजा आएगा आपको भी।
2: ये तो जम्मू कश्मीर 12 महीने पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार रहता है, मगर इस बार कश्मीर के बांदीपोरा की ठंडी और सुकून देने वाली घाटियाँ सैलानियों को इस तपती गर्मी में खूब लुभा रही हैं।
4: सूरज सर पे हो और बहुत आग बरस रही हो, ऐसा माहौल है वहाँ का। और मैं कश्मीर में यहाँ पर आके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। बहुत कूल मौसम और बहुत प्यारा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर।
2: बांदीपुरा का राजदान पास इन दिनों खास आकर्षण बना हुआ है। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस क्षेत्र में मई के महीने में भी बर्फ जमी है। यही वजह है कि दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे मैदानी शहरों से आने वाले पर्यटक यहां पहुंचकर राहत महसूस कर रहे हैं।
5: यहाँ हमें इतना सुकून मिल रहा है, इतना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हूँ। तो बस ठंडा मौसम है, हर व्यक्ति को इस वक्त कश्मीर घूमना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे आना चाहिए।
2: कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फ है तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। ये तस्वीर चमोली की है जहाँ इस वक्त चार धाम यात्रा चल रही है और मौसम का मिजाज देखिए, झमाझम बरसात देखिए, जैसे पूरा का पूरा इलाका पानी से सराबोर है। बारिश की बूंदों के साथ ओले भी गिरे और पारा लुढ़क गया। बारिश के इंतजार के बीच तपती मई में आंखों को सुकून देने वाली तस्वीरें हैं ये, लेकिन मुश्किल ये है कि सबको पहाड़ की ये बारिश और बर्फ नसीब कहाँ है। लेकिन चिंता की बात नहीं, जो गर्मी में सर्दी का एहसास करने पहाड़ों पर न जा सके, इंतजाम उनके लिए भी है, जैसे अहमदाबाद वालों ने किया। ये नजारा है अहमदाबाद के एक स्नो पार्क का। मई के महीने में जब गर्मी अपने तेवर दिखा रही है तो इस स्नो पार्क से बेहतर जगह शायद कोई दूसरी नहीं हो सकती। गर्मी के इस मौसम में पूरे उत्तर भारत के साथ गुजरात और राजस्थान में भी हीट वेव का जबरदस्त असर दिख रहा है, लेकिन इस मुश्किल मौसम में अहमदाबाद का ये स्नो पार्क लोगों को ठंडक का तोहफा दे रहा है।
6: बहुत सारी हॉलीडेज है, गर्मी है, इसलिए फ्रंट ब्लास्ट में एंजॉय करने के लिए आए हैं हम, जाते हैं और 3 साल से सलिंग आते हैं यहाँ।
7: अभी गर्मी बहुत सारी है इसीलिए हमने यही प्लेस सिलेक्ट करी।
2: स्नो पार्क के अंदर का तापमान -7 डिग्री रहता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। गर्मी के दिनों में यहाँ आने के लिए खास तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। बड़े हो या छोटे, स्नो पार्क में दाखिल होने से पहले सभी को जैकेट, बूट्स और ग्लव्स पहनना पड़ता है। इस पार्क में सभी के लिए हर साइज के जैकेट्स और ग्लव्स मिल जाते हैं। यहाँ की स्नो स्लाइड बच्चों की फेवरेट है। स्नो कासल और स्नोमैन के साथ बच्चे घंटों मस्ती करते हैं। इस मौसम में जो लोग हिल स्टेशन पर नहीं जा पा रहे, उनके लिए ये स्नो पार्क वाकई एक बेहतरीन सौगात है। वैसे बादल भी जल्द ही राहत की सौगात बरसाने वाले हैं, चिलचिलाती गर्मी से निजात दिलाने वाले हैं। लेकिन जब तक बादल नहीं बरसते, गर्मी से राहत दिलाने के लिए पहाड़, स्नो पार्क और वाटर पार्क से काम चलाना भी एक अच्छा ऑप्शन है। श्रीनगर से अशरफ वानी और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देश के कई इलाके इस वक्त गर्मी की सबसे मुश्किल अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। मौसम विभाग ने स्पष्ट शब्दों में यह बता दिया है कि अगले 2-3 दिनों में मौसम का ये मिजाज यूं ही बना रहेगा। लेकिन गर्मी है तो क्या गम है, क्योंकि गर्मी जितनी जोरदार है, गर्मी के विरुद्ध युद्ध की तैयारी भी उतनी ही दमदार। हॉट वेदर में कूल सॉल्यूशंस निकालने में हम भारतीयों का तो जवाब ही नहीं है। गर्मी से बचाव के कूल कूल उपायों की ये दो तस्वीरें देख लीजिए इस वक्त आपके सामने है। एक तस्वीर है काशी की। काशी के मंदिरों में गर्मी की तपिश से भगवान को बचाने के लिए कूलर और एसी तक लग गए हैं। इतना ही नहीं, मूर्तियों को सूती वस्त्र गर्मी से बचाव के लिए पहनाए गए हैं और तो और भोग प्रसाद और फल में भी ठंडी सामग्री चढ़ाई जा रही है। काशी का राम जानकी मंदिर हो या फिर बड़ा गणेश भगवान के लिए मंदिर के गर्भगृह में एसी की व्यवस्था की गई है। भगवान के लिए गर्मी में खास इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं ख्याल बेजुबानों का भी रखा जा रहा है। दिल्ली के जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के बाड़ों में स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं जो फव्वारों की तरह ठंडी फुहारें छोड़ता है। इसके अलावा जानवरों के लिए ठंडा और साफ पानी का इंतजाम किया गया है। तालाबों की मरम्मत कर रोजाना ताजा पानी भरा जा रहा है ताकि जानवर उसमें नहा सकें और गर्मी से राहत पा सकें। गर्मी को देखते हुए जानवरों के खान पान में बदलाव किया गया है। हमारे देश का कोस्टल एरिया हो, रेतीली धरती या फिर पहाड़, ये सारी जगहें प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई हैं, जिसे लाइफ में एक बार एक्सप्लोर करना तो बनता है। वहीं इसी बीच क्योंकि युद्ध की वजह से दुनिया संकट से गुजर रही है, ऐसे में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विदेश यात्रा से बचने और अपने ही देश में घूमने की अपील की, जिसके बाद GNT ने भी अपने दर्शकों से अपील की है कि वो अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजें। एक ऐसा ही खूबसूरत वीडियो उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के पुजारी आशीष उनियाल ने भेजा है, तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या है यमुनोत्री धाम और उसके आसपास।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी संपूर्ण भारत वर्ष से ये आह्वान कर रहे हैं कि आप आए हमारे इस उत्तराखंड की तपोभूमि में। जैसे हमारे पास यहाँ चारों धाम है, यमुनोत्री धाम है, और यमुनोत्री धाम से यहाँ पर जो ये सुंदर बृहगम कालिंदी पर्वत का दृश्य है, हमारे पास यहाँ पर हिरण्यबाहु और यमुना जी का संगम स्थल है।

0: हमारे पास यहाँ पर हरित भरित पहाड़ियां हैं, पर्वत है, जो कि विभिन्न जड़ी बूटियां औषधीय वृक्षों से सुशोभित है। हमारे पास यहाँ पर उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में हरसिल जैसी घाटियां हैं। हरसिल के साथ साथ तीर्थाटन के रूप में माँ गंगा का पवित्र धाम गंगोत्री धाम है। और मैं पुनः आप सबसे आह्वान करूंगा, अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप आए और यहाँ पर पर्यटन के साथ साथ में तीर्थाटन का आनंद लें और यहाँ की तपोभूमि का तपोभूमि के इन सुंदर दृश्यों का भरपूर आनंद उठाएं।
1: वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है तो कैमरा उठाइए और बनाइए व्लॉग और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे। और चलिए इसी के साथ GNT स्पेशल की आज के हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: क्या बृहस्पति महिलाओं के विवाह कराने से संबंध रखता है? क्या बृहस्पति महिलाओं के वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है? बृहस्पति का महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन, पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ से हुआ चुनाव। पवित्र यात्रा के लिए जून से अगस्त के बीच में 20 जत्थों में रवाना होंगे यात्री। भीषण गर्मी के बीच में रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार, सरयू नदी में स्नान से आध्यात्मिक शांति और सुकून का अनुभव। हनुमानगढ़ी कनक भवन के साथ राम की पैड़ी पर उमड़ रही थी। जबरदस्त गर्मी की चपेट में लगभग पूरा भारत, नागपुर में गर्मी ने तोड़ा 10 सालों का रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 46.6 डिग्री सेल्सियस। चंडीगढ़ में 47 डिग्री तो बांदा में 48 डिग्री के साथ ये बना देश का सबसे गर्म शहर। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी दिखाई दे रहा भीषण गर्मी का असर, हिमाचल के ऊना में 44 तो शिमला में 30 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा, अगले दो दिनों में बारिश के आसार। विधि विधान के साथ खुले द्वितीय केदार, भगवान मध्य महेश्वर के कपाट, बड़ी संख्या में मौजूद रहे भक्त। मध्य महेश्वर धाम में होती है भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा। AI तकनीक से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रेलवे मंत्री की अपील, यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहे मुसाफिर, हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें संदिग्ध की जानकारी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: महादेव के भक्तों के लिए आई गुड न्यूज, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 श्रद्धालुओं का चयन हुआ। पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ से हुआ श्रद्धालुओं का चुनाव, जून से शुरू होकर अगस्त तक चलेगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चुने गए श्रद्धालुओं को 20 जत्थों में किया जाएगा रवाना, हर बैच में शामिल होंगे 50 यात्री। पहले की तुलना में मानसरोवर यात्रा श्रद्धालुओं के लिए होगी ज्यादा सुविधाजनक, लिपुलेख और नाथुला यात्रा मार्ग पूरी तरह से मोटरेबल। श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट कैलाश मानसरोवर यात्रा पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं, देख सकते हैं स्टेटस। विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। उत्तराखंड के द्वितीय केदार धाम पर आस्था का जन सैलाब, धूमधाम से खुले बाबा मध्य महेश्वर बाबा के कपाट। मध्य महेश्वर धाम पहुंची बाबा मध्य महेश्वर की उत्सव डोली, महादेव के जय घोष के साथ गूंजा पूरा धाम। महादेव के दर्शनों के लिए लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें, न्याय का देवता मानते हैं लोग। अगले 6 महीने तक यही होंगे बाबा मध्य महेश्वर के नियमित दर्शन और पूजन। सर्दियों में बर्फबारी के कारण मुख्य मंदिर के कपाट बंद होने पर खिमट लाई जाती है भगवान की उत्सव डोली। पंच केदार में दूसरे केदार के रूप में पूजा जाता है मध्य महेश्वर को। मंदिर में भगवान शिव के नाभि के आकार के स्वयंभू शिवलिंग की होती है पूजा। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा में इस बार भी आस्था उत्साह और श्रद्धा का अद्भुत संगम, देश भर से भगवान केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे लाखों श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में आस्था का महासैलाब, 1 महीने से भी कम वक्त में 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। केदारनाथ में टूटा भक्तों की संख्या का रिकॉर्ड, 1 दिन में 29,500 श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन, करीब 7.25 लाख पहुंचा कुल आंकड़ा। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 10,000 से ज्यादा यात्रियों का हुआ सफल रेस्क्यू, SDRF NDRF की संयुक्त टीमों ने चुनौतीपूर्ण हालातों में किया सफल रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर अचानक हुए भूस्खलन से बाधित हो गया था केदारनाथ यात्रा मार्ग, जिससे बीच रास्ते में फंस गए थे श्रद्धालु। चमोली में हेमकुंड साहिब में यात्रा की तैयारी पूरी, 23 मई को खुलेंगे बाबा के कपाट। भारतीय सेना के जवानों और सेवादारों ने बर्फ को काटकर रास्ता किया साफ। गुरुद्वारे के आसपास से भी हटाई गई बर्फ। हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा से रवाना हुआ पहला जत्था भव्य रूप से रवाना किया गया जत्था।

दुर्गा मंदिर में 29 मई को ध्वजारोहण समारोह 3500 से ज्यादा महिलाएं बनेंगी अतिथि। मां जगदम्बा मंदिर के शिखर पर पहली बार महिला संत करेंगी ध्वजारोहण। राम मंदिर आंदोलन में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को याद किया जाएगा। शाम 6 बजे से मां दुर्गा मंदिर का ध्वजारोहण होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी समेत तमाम संगठन के पदाधिकारी होंगे शामिल। इस कार्यक्रम के बाद सभी अतिथियों को रामलला और राम परिवार के दर्शन करवाए जाएंगे। 5 बजे से अतिथियों को मिलेगा प्रवेश। शेषावतार मंदिर पर भी 23 जून को होगा ध्वजारोहण। जोरों पर चल रही हैं तैयारियां। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती। पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी देवी देवताओं की पूजा की। बाबा महाकाल का चंदन, रजत मुकुट और त्रिपुंड अर्पित कर राजा स्वरूप में किया गया भव्य श्रृंगार। ड्राई फ्रूट, फल, मिठाई का लगाया गया भोग। भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा। विधि विधान के साथ की पूजा। एमपी के धार के भूतशाला में श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ की पूजा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने 24 मई तक जारी किया गंभीर हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली समेत एनसीआर की रातों में भी बढ़ेगी गर्मी। दिन में 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है टेम्परेचर। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट। पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में लोगों से सावधानी बरतने की अपील। लखनऊ में तपती गर्मी के बीच में अलर्ट मोड भी प्रशासन ने जारी किया है। अस्पताल में बनाए गए हैं खास कोल्ड रूम्स। यूपी के बांदा में 5वें दिन 48 डिग्री रहा टेम्परेचर। मौसम विभाग की लोगों से सावधान रहने की अपील। बांदा में बढ़ती गर्मी के बीच में अलर्ट मोड में प्रशासन। बीते दिनों में देश का सबसे गर्म शहर बना बांदा। रामनगरी अयोध्या में गर्मी के बीच में दिखा शानदार नजारा। राम की पैड़ी पर उमड़ा जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया सरयू में स्नान। बढ़ती गर्मी पर आस्था दिखाई दी भारी। जयपुर में हीटवेव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में हीटवेव का अलर्ट। करीब 43 डिग्री तक पहुंचा टेम्परेचर। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के विशेष इंतजाम किए गए। बेजुबानों के बाड़े में लगाए गए कूलर और पंखे। चिड़ियाघरों में गर्मी को देखते हुए खानपान का भी रखा जा रहा पूरा ख्याल। पीने के पानी की व्यवस्था। नागपुर में गर्मी ने तोड़ा 10 सालों का रिकॉर्ड। पारा पहुंचा 47 डिग्री। अमरावती में 46.4 डिग्री। चंद्रपुर में 46.2 डिग्री। गढ़चिरौली में 45.6 डिग्री। स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी को देखते हुए ज्यादा पानी पीने की अपील की। बिना वजह घर से बाहर ना निकलने की भी अपील। जम्मू कश्मीर में बेमौसम गर्मी में जमकर बर्फबारी हुई। तापमान में आई गिरावट। बर्फबारी से श्रीनगर लद्दाख सड़क अस्थायी रूप से यातायात के लिए बंद किया गया। लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील की गई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में अगले 3 दिनों तक बारिश और तूफान की संभावना है। बांदीपुरा में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन। कई सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ।

यूपी के लाखों कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, डीए में 2% की बढ़ोतरी की गई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम, डायल 112 फेज 2 सेवा की शुरुआत।

0: दुर्ग पुलिस के बेड़े में 39 नई डायल 112 गाड़ियां शामिल AI तकनीक से लैस। प्रयागराज के 34 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा। परीक्षा में कुल 13,752 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। सोने और चांदी की कीमत में फिर से बढ़ोतरी। 600 रुपए बढ़कर 1,65,500 रुपए पर पहुंचा गोल्ड। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ कोयम्बटूर। गर्मी से बचने के लिए हजारों पक्षी कोयम्बटूर झील पहुंचे। जालंधर की 8 साल की हरनाज ने बनाया इंडिया रिकॉर्ड। लटक कर 25 सेकंड में 50 हुला हूप कर रचा इतिहास। चार साल से कर रही है ये प्रैक्टिस। हुला हूप करने वाली पहली भारतीय बच्ची बनी हरनाज। राजस्थान के बांसवाड़ा के चुराडा गांव में पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा। स्थानीय लोगों से की मुलाकात। इस गांव में सीएम भजन लाल का दिखा अनोखा अंदाज। स्थानीय लोगों के साथ नीचे बैठकर खाया खाना। पोलैंड में खास शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वर्ल्ड डाइविंग चेस चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने पानी के अंदर खेला शतरंज। वर्ल्ड डाइविंग चेस चैंपियनशिप में लिथुआनिया के ग्रैंड मास्टर फाउलियस ने रचा इतिहास। लगातार 4 मुकाबले जीतकर खिताब अपने नाम किया। डाइविंग चेस में पोलैंड की अन्ना ने जीता महिला विश्व खिताब। 2 दिनों तक चले मुकाबले में बेहतरीन रणनीति और फिटनेस का प्रदर्शन किया। पानी के अंदर सांस रोककर खेला जाता है ये डाइविंग चेस। दुनिया भर से पहुंचे 62 खिलाड़ी। डाइविंग चेस में भारतीय ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा ने जीता कांस्य पदक। अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। चीन की शेंझेन रोबोट वैली बनी AI और रोबोटिक्स का नया हब। रोबोट वैली में 200 से ज्यादा रोबोटिक्स कंपनियां मौजूद। रोबोटिक आर्म्स ऑटो पार्ट्स को बेहद सटीक तरीके से कर रहे हैं असेंबल। ह्यूमनॉइड रोबोट लोगों को चाय और पॉपकॉर्न सर्व करता नजर आया। वांगझू का पाझू इलाका बना AI इनोवेशन का केंद्र। ड्रोन AI एजेंट कई स्मार्ट तकनीक का बड़े पैमाने पर हो रहा निर्माण। चीन के वुहान में घरों में एंट्री को तैयार ह्यूमन रोबोट। घरेलू कामकाज के लिए भी तैयार। कपड़े तय करने से लेकर खाना बनाने में सक्षम ये रोबोट बुजुर्गों से बातचीत करने के लिहाज से किया गया डिजाइन। अमेरिका में जंगल की आग के बीच में फंसे नाविक को कोस्ट गार्ड ने बचाया। हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। कंबोडिया में खास अंदाज में की गई बारिश की कामना। पारंपरिक उत्सव में शामिल हुए लोग। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन के एक गांव में जुटे सैकड़ों ग्रामीण पारंपरिक खमेर ढोल की धुन पर किया नृत्य। ग्रामीणों ने बारिश के साथ साथ की शांति और समृद्धि की प्रार्थना। चेहरों पर रंग लगाए नजर आए ग्रामीण। देवताओं की वेशभूषा में निकले युवा, बारिश के स्वागत में सैकड़ों साल पुरानी ये परंपरा नजर आई। माउंट एवरेस्ट पर बना नया रिकॉर्ड, 274 पर्वतारोहियों ने फतेह की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। एक ही दिन में एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पर्वतारोहियों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या, एवरेस्ट पर दिखी पर्वतारोहियों की लंबी कतार। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए नेपाल रूट पर बढ़ी भीड़, चीन की ओर से नहीं जारी परमिट। पेरिस में कला वास्तुकला का अनोखा संगम, ब्रिज को कलाकार ने एक विशाल कला संरचना में बदला। शॉन नदी के ऊपर बने ऐतिहासिक पुल पर दिखा पहाड़ जैसा नजारा, इंस्टॉलेशन कपड़े और प्रेशराइज्ड एयर से किया गया तैयार। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में ओशन प्रेडेटर्स की थीम पर प्रदर्शनी खींच रही लोगों का ध्यान। जुरासिक ओशंस मॉन्स्टर्स ऑफ द डीप रखा गया प्रदर्शनी का नाम, इसमें 200 मिलियन साल पहले समुद्रों के मरीन रेप्टाइल्स पर दी जा रही जानकारी। प्रदर्शनी में दिखाए जा रहे डायनासोर समेत जुरासिक काल की मछलियां, शार्क और एमोनाइट के साथ साथ आज के जमाने के जानवरों के अवशेष। स्पेशल इफेक्ट्स और इंटरएक्टिव सेशन के जरिए दी जा रही जुरासिक काल की जानकारी, बड़ी संख्या में लोग आ रहे। जनवरी 2027 तक चलेगी जुरासिक ओशंस मॉन्स्टर्स ऑफ द डीप प्रदर्शनी, बच्चों में आकर्षण का केंद्र। मशहूर हॉलीवुड फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग को समर्पित 50 पेंस का सिक्का जारी किया गया। बिक्री के लिए उपलब्ध है ये खास सिक्का, करीब 2000 रुपए रखी गई शुरुआती कीमत। फिल्म मेकर पीटर जैक्सन की एकेडमी अवार्ड विजेता फिल्म के वन रिंग पर आधारित है सिक्के का डिजाइन, लेखक जे आर टॉल्किन द्वारा रची गई फैंटेसी स्टोरी पर बेस्ड। छह फिल्मों की फ्रेंचाइजी है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, किताबों में भी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट पर आधारित है। 2001 में आई थी इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म, 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज के लिए एक नई फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द हंट फॉर गोलम की है योजना। भूल भुलैया 2 के पूरे हुए 4 साल, निर्देशक अनीस बज्मी ने जताया आभार, शेयर किया पोस्ट। हॉरर थ्रिलर फिल्म खेती की फर्स्ट लुक सामने आई है, जैकी श्रॉफ और शरद केलकर निभा रहे मुख्य किरदार। मशहूर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की वेब सीरीज पीटर एंड पेड्रो का टीजर जारी, 3 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। अपने पिता की वेब सीरीज से एक्टिंग डेब्यू कर रहे वीर हिरानी वेब सीरीज में अरशद वारसी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। ओटीटी पर फिर से दिखेगा मिश्रा परिवार का मजेदार ड्रामा, 5 जून को सोनी लिव पर रिलीज होगी गुल्लक सीजन 5।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
3: It's your boy,
2: just
3: Jay-Z.
2: Search classic hip-hop, or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: चलिए बात करेंगे बॉलीवुड के भाईजान की, मतलब सलमान खान की, जो इन दिनों किसी न किसी वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सलमान के साथ देखिए, दरअसल कल शाम एक और वाकया हुआ, उनको फिर से चर्चा में इस वाकये ने ला दिया है, लेकिन इस बार एंग्री यंग मैन के उलट उनका दिलदार अंदाज नजर आया। दरअसल एक्टर रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी रखी गई, सलमान खान यहां पहुंचे तो उन्होंने बड़े ही दिल दिखाते हुए वहां पैपराजी को माफ भी कर दिया। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं।

0: बॉलीवुड में चर्चा ये आम है कि सलमान खान यारों के यार हैं, दिलदार हैं। ये दो तस्वीरें सलमान खान के बारे में चर्चित इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं। पहली तस्वीर में सलमान का दिलदार अंदाज नजर आ रहा है तो दूसरी तस्वीर में उनका एंग्री यंग मैन अवतार नजर आ रहा है। ये दोनों ही तस्वीरें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे, ये हम आपको एक एक करके बताएंगे। पहले बात पहली तस्वीर की, जो बुधवार शाम को आई, जिसमें सलमान खान पेपराजी को माफी देते दिखाई दे रहे हैं। बुधवार शाम सलमान खान रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी में पहुंचे थे। सलमान खान ने जैसे ही गाड़ी से उतरकर वेन्यू पर एंट्री ली, वहां का नजारा ही बदल गया। मीडिया के कैमरों के फ्लैश चमक उठे, सभी कैमरामैन और फोटोग्राफर ने उन्हें अपने कैमरों में कैद करना शुरू कर दिया। सलमान खान को देखकर रितेश देशमुख उन्हें रिसीव करने जैसे ही पहुंचे, तभी पेपराजी ने भी उन्हें घेर लिया और सभी पेपराजी एक दिन पहले ही अपनी हरकत के लिए एक सुर में सलमान खान से सॉरी सॉरी बोलने लगे, उनसे माफी मांगने लगे। सलमान ने भी बड़ा दिल दिखाया और कैमरे के सामने पोज देते हुए शांत मन से उनकी माफी स्वीकार कर ली। साथ ही पेपराजी को नसीहत भी दे डाली कि ये सही जगह है, यहाँ फोटो क्लिक कर सकते हैं। सलमान ने फिर मजाक में कहा, जोर से सॉरी बोलो। ये तो हुई बुधवार शाम की बात, लेकिन इस सॉरी की नौबत आई क्यों? ये जानने के लिए आपको मंगलवार रात की तस्वीर दिखाते हैं, जो इस सारे विवाद की जड़ है। मंगलवार को सलमान खान अपने करीबी को देखने के लिए हिंदुजा अस्पताल पहुंचे थे। सलमान खान जैसे ही अस्पताल से बाहर आए, पेपराजी ने भाईजान भाईजान कहकर शोर मचाना शुरू कर दिया। अस्पताल के बाहर पेपराजी की शोर मचाते देख सलमान खान भड़क उठे और सबकी क्लास लगा डाली। सलमान खान का गुस्सा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचने के बाद आधी रात को उन्होंने पेपराजी को सलीके से व्यवहार करने की नसीहत देते हुए इंस्टा पर कई सारे पोस्ट कर डाले। सोशल मीडिया पर मचे इस घमासान के बाद हर किसी को लग रहा था कि पेपराजी और सलमान खान के बीच की जंग बहुत लंबी खिंचेगी। लेकिन राजा शिवाजी के इवेंट में जिस मैच्योरिटी के साथ पेपराजी ने अपनी गलती मानी और सलमान खान ने जिस तरह बड़ा भाई बनकर उन्हें माफ किया, उसने न सिर्फ पूरे विवाद को खत्म कर दिया बल्कि सलमान खान के इस दिलदार अंदाज ने हर किसी का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, कुनिश्रे।
1: हमारे देश का कोस्टल एरिया हो, रेतीली धरती हो या फिर पहाड़ हो, ये सारी जगहें प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई हैं, जिसे लाइफ में एक बार एक्सप्लोर करना तो बनता है। वहीं इसी बीच क्योंकि युद्ध की वजह से दुनिया संकट से गुजर रही है, ऐसे में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विदेश यात्रा से बचने और अपने ही देश में घूमने की अपील की थी, जिसके बाद GNT ने भी अपने दर्शकों से अपील की है कि वो अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजें। एक ऐसा ही खूबसूरत वीडियो उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के पुजारी आशीष उनियाल ने हमें भेजा है, तो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या है यमुनोत्री धाम और उसके आसपास।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी संपूर्ण भारत वर्ष से ये आह्वान कर रहे हैं कि आप आए हमारे इस उत्तराखंड की तपोभूमि में। जैसे हमारे पास यहाँ चारों धाम है, यमुनोत्री धाम है, और यमुनोत्री धाम से यहाँ पर जो ये सुंदर विहंगम कालिंदी पर्वत का दृश्य है, हमारे पास यहाँ पर हिरण्यबाहु और यमुना जी का संगम स्थल है।

0: हमारे पास यहाँ पर हरित भरित पहाड़ियां हैं, पर्वत है, जो कि विभिन्न जड़ी बूटियां औषधीय वृक्षों से सुशोभित है। हमारे पास यहाँ पर उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में हरसिल जैसी घाटियां हैं। हरसिल के साथ साथ तीर्थाटन के रूप में माँ गंगा का पवित्र धाम गंगोत्री धाम है। और मैं पुनः आप सबसे आह्वान करूंगा, अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप आए और यहाँ पर पर्यटन के साथ साथ में तीर्थाटन का आनंद लें और यहाँ की तपोभूमि का तपोभूमि के इन सुंदर दृश्यों का भरपूर आनंद उठाएं।
1: वैश्विक संकट के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि लोग विदेशी दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें फिरें। तो आप भी संकल्प भागीदार बन सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है तो कैमरा उठाइए और बनाइए व्लॉग और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: क्या बृहस्पति महिलाओं के विवाह कराने से संबंध रखता है? क्या बृहस्पति महिलाओं के वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है? बृहस्पति का महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help you save. Valid through 5/27 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
5: Visit your nearby Lowe's on East 17th Avenue in Hutchinson.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Your Saturday nights will never be the same.
8: The biggest hits back to back in the mix.
9: Get ready for the biggest mix show on the planet.
10: The Tailgate Block Party.
11: The Tailgate Block Party.
9: 6 hours nonstop. Nonstop.
10: The best DJs from around the world.
11: The Tailgate Block Party.
9: Saturday night.
11: 8 p.m. Eastern.
10: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
9: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
14: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
15: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन, पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज लकी ड्रॉ से हुआ चुनाव। पवित्र यात्रा के लिए जून से अगस्त के बीच 20 जत्थों में रवाना होंगे यात्री। भीषण गर्मी के बीच रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार, सरयू नदी में स्नान से आध्यात्मिक शांति और सुकून का अनुभव। हनुमानगढ़ी कनक भवन के साथ राम की पैड़ी पर उमड़ रही थी। जबरदस्त गर्मी के चपेट में लगभग पूरा भारत, नागपुर में गर्मी ने तोड़ा 10 वर्षों का रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 46.6 डिग्री, चंडीगढ़ में 47 डिग्री तो बांदा 48 डिग्री के साथ बना देश का सबसे गर्म शहर।
9: को पावर्ड बाय लंबा बैकअप।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
15: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। देवभूमि शिव भक्ति के रंग में सराबोर है और अब तो पंच केदार में शामिल केदारनाथ और रुद्रनाथ के बाद द्वितीय केदार मदमहेश्वर मंदिर के कपाट भी खुल गए हैं। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। विधि विधान से खुले मध्य महेश्वर धाम के द्वार। आपको बता दें आज से शिव भक्त मध्य महेश्वर दर्शन कर सकते हैं क्योंकि आज पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद मध्य महेश्वर धाम के कपाट खुल गए हैं। दरअसल मध्य महेश्वर धाम की यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभूति का भी अनूठा संगम है। मध्य महेश्वर में भगवान शिव की नाभि स्वरूप की पूजा होती है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच इसकी दिव्यता श्रद्धालुओं को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव कराती है। देवभूमि में यात्रा का महाकुंभ चल रहा है। मध्य महेश्वर के बाद अब 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुलने जा रहे हैं। पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो गया है। ये जत्था कल शाम घांगरिया पहुंचेगा और परसों यानी कि 23 मई को तड़के सुबह घांगरिया से निकलेगा। सुबह 10 बजे हेमकुंड साहिब पहुंचकर गुरुद्वारे के कपाट खोले जाएंगे। सबसे पहले सचखंड से गुरु ग्रंथ साहिब को पंच प्यारों की अगुवाई में लाकर दरबार साहिब में विराजमान किया जाएगा। इसी के साथ हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी।
16: पंच केदारों में से द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध भगवान मदमहेश्वर के कपाट आज विधि विधान से खुल चुके हैं। कपाट खुलने के अवसर पर हजारों की संख्या में भक्त भी मदमहेश्वर धाम पहुंचे और उन्होंने भगवान मदमहेश्वर के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। आज प्रातःकालीन गौंडार गांव से भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली मदमहेश्वर धाम के लिए रवाना हुई। लगभग 11 बजे डोली धाम पहुंची, जिसके बाद विधि विधान से भगवान मदमहेश्वर के कपाट मंदिर समिति के पुजारियों की ओर से खोले गए हैं। कपाट खुलने से पूर्व भगवान मदमहेश्वर की डोली ने मंदिर की परिक्रमा की और जो अपने तांबे के बर्तन हैं उनका निरीक्षण किया। कपाट खुलने के बाद भगवान मदमहेश्वर के स्वयंभू लिंग को दी गई समाधि को हटाया गया, जिसके बाद विशेष पूजा अर्चना की गई और फिर भक्तों ने बाबा मदमहेश्वर के दर्शन किए।
15: देवभूमि उत्तराखंड निन्दनों पवित्र और पावन चारधाम यात्रा के रंग में रंगी हुई है। सड़कों पर भारी भीड़ है लेकिन श्रद्धालुओं में आस्था अपार है। भले उन्हें दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है और वो है चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। आपको बता दें कि देवभूमि में इन दिनों हर तरफ भक्ति और आस्था का माहौल है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। सबसे ज्यादा उत्साह बाबा केदारनाथ धाम में देखने के लिए मिल रही है, जहां पर महज 30 दिन में करीब 8 लाख भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं।

0: देवभूमि में इन दिनों आस्था, भक्ति और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। चार धाम यात्रा के बीच बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। क्या आम, क्या खास, क्या नेता, क्या अभिनेता, हर कोई बाबा के दरबार में दर्शन पूजन के लिए रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा भी देवभूमि पहुंचे। उन्होंने बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और यात्रा व्यवस्थाओं और सुरक्षा प्रबंधन की प्रशंसा की।
1: पुरुषोत्तम मास में हमारे चार धाम की यात्रा करना परम कल्याण का कारण होता है और ये मेरे परम सौभाग्य का विषय है विजय भगवान की कृपा से कि केदारनाथ जी के आज दर्शन हुए, श्री बद्रीनाथ जी के आज दर्शन हुए और जैसा कि हमने यहाँ पर व्यवस्था देखी और मैं ये देख कर बड़ा आनंदित हूँ कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन किसी को भी किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई।
0: आशुतोष राणा ने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बावजूद प्रशासन कुशलतापूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा का संचालन कर रहा है जो सराहनीय है
1: और भक्त और भगवान के बीच में पुलिस व्यवस्था जो है ये CISF जो है वो बीच में नहीं आ रहे हैं बल्कि वो भक्त और भगवान के बीच के जितने भी अवरोध होते हैं उसे बहुत शांति और कुशलता के साथ बहुत प्रेम पूर्वक निपटा रहे हैं। तो ये बड़े आनंद का विषय है। तो इसके लिए मैं इस पूरे प्रशासन का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा स्नेह और ऐसा समर्थन, क्योंकि हजारों किलोमीटर की दूरी से लोग यहाँ पर आते हैं कर अपने भगवान के दर्शन करने के लिए, ये बड़ा परम आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दरअसल चारधाम यात्रा के दौरान लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या के बीच प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाओं को संभालने में जुटा है। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर ट्रैफिक और सुरक्षा तक हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है क्योंकि भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम चाहे कैसा भी हो, भक्तों का उत्साह देखने लायक है।
2: द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी बाबा केदारनाथ के दरबार में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक 7 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि मौसम भी लगातार खराब हो रहा है और यात्री भी जगह जगह फंस रहे हैं, लेकिन प्रशासन की रेस्क्यू टीमें पैदल मार्च से धाम से यात्रियों को सुरक्षित कर रही हैं।
0: चार धाम के अलावा देवभूमि में पंच केदार की यात्रा भी जारी है जिसके तहत श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा भोलेनाथ के पवित्र धामों के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दुर्गम पहाड़ी रास्तों को पार कर मंदिरों तक पहुंच रहे हैं। पंच केदार यात्रा में शामिल रुद्रनाथ की यात्रा के लिए भी श्रद्धालुओं की अपार आस्था है। कठिन ट्रैकिंग मार्ग होने के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत वादियों के बीच श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पूरी घाटी हर हर महादेव के जयकारों के साथ गूंज रही है। श्रद्धालु बाबा रुद्रनाथ के दर्शनों के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में सुबह से लेकर देर शाम तक भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।
3: भगवान भोलेनाथ के चतुर्थ केदार रुद्रनाथ की यात्रा इस समय शुरू हो गई है। 18 मई को कपाट खुले थे और अब यहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लगभग 22 किलोमीटर जो पैदल ट्रैकिंग रूट होता है इस पे भोले के भक्त लगातार ट्रैकिंग करके बाबा रुद्रनाथ के धाम में पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे रात्रि और दोपहर में होने वाली आरती के भी दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालु इस समय उत्तराखंड के चप्पे चप्पे में पंच केदारों सहित हर तरफ इस समय भीड़ दिखाई दे रही है।
0: स्थानीय लोगों और प्रशासन के मुताबिक इस बार चार धाम समेत पंच केदार यात्रा में पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है जिससे स्थानीय पर्यटन और रोजगार को भी रफ्तार मिलेगी। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, तेज धूप, उमस और पसीने से भरी गर्मियों में हर कोई खुद को फ्रेश, कूल और खुशबूदार बनाए रखना चाहता है और यही वजह है कि अब लोगों की पसंद सिर्फ डिओड्रेंट तक सीमित नहीं है बल्कि अब वो इत्र और परफ्यूम की ओर देख रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की जो अगली गुड न्यूज है, यानी कि तीसरी गुड न्यूज, वो है खुशबू की दुनिया में परफ्यूम बन रहा पहली पसंद। आपको बता दें, पहले जहां डीओ का ट्रेंड सबसे ज्यादा देखने को मिलता था, वहीं अब लोग लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम और इत्रों की ओर तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। दरअसल आज के समय में खुशबू सिर्फ एक महक तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये लोगों की पर्सनैलिटी, स्टाइल और इम्प्रेशन का भी हिस्सा बन चुकी है।

0: जयपुर में अब खुशबू का ट्रेंड बदल रहा है। अब लोग खुद को कूल रखने के लिए सिर्फ डिओड्रेंट तक सीमित नहीं रख रहे, बल्कि अब वो इत्र और परफ्यूम की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में तेज धूप, गर्मी और उमस में खुद को कूल और फ्रेश रखना चाहते हैं तो खुशबू से महक रही जयपुर की इस दुकान में चले आइए।
1: गर्मियों में आपको पसीने की स्मेल या किसी भी तरीके के बैड ओडर से बचाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं कोई ना कोई परफ्यूम का, डियो का और या फिर कोई भी अलग अलग तरीके की फ्रेग्रेंसेस का। अब ऐसे में क्या है, ये ट्रेंड बदलता जा रहा है, चूंकि डियो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, उड़ जाते हैं, तो ऐसे में जो लोग हैं वो अभी स्विच कर रहे हैं ज़्यादातर परफ्यूम्स या फिर इत्र इस्तेमाल करने पे। और ऐसे में मैं आपको जयपुर की एक ऐसी दुकान दिखा रही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ ये फ्रेग्रेंसेस बनाती है, कस्टमाइज करती है और अलग अलग प्रोडक्ट्स इन फ्रेग्रेंसेस के बेचती है।
0: जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में मौजूद करीब 75 साल पुरानी ये दुकान खुशबू के दीवानों की पहली पसंद बन चुकी है। यहाँ 1000 से ज्यादा खास किस्म के अलग अलग इत्र और परफ्यूम के कलेक्शंस मौजूद हैं। इनमें 100 से ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी फ्रेग्रेंस भी शामिल हैं, जिनकी डिमांड जयपुर ही नहीं बल्कि दुबई, लंदन, अमेरिका और पेरिस जैसे शहरों तक रहती है।
2: जैसे लोग बाग पहले डीओ और परफ्यूम ज्यादा यूज करते थे, अब उनके कंपैरिजन में वो कस्टमर अब स्विच होके अतर्स, परफ्यूम, एसेंशियल ऑयल्स, जो एक तो ऑर्गेनिक होते हैं और इफ्रा सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, ना तो कोई उनसे इरिटेशन ना कोई बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं, तो लोग बाग इसकी तरफ भी जा रहे हैं। दूसरी चीज इनमें एक तो लास्टिंग, जो जैसे अगर सुबह लगा लिया तो शाम तक अगर खुशबू मेंटेन्ड है तो एक तो वो परफ्यूम्स की तरह काम करते हैं और दूसरी कॉस्ट इफेक्टिव्स भी होते हैं। और आजकल सब वैरायटी के जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती है सब रेंज आजकल सब अवेलेबल है।
0: इस दुकान में ग्राहकों की मांग पर उनके सामने कस्टमाइज्ड परफ्यूम तैयार किया जाता है। कोई फ्लोरल नोट्स पसंद करता है, कोई ऊद और मस्क जैसी रिच खुशबू, तो कोई एक्वेटिक और कूल फ्रेग्रेंस चाहता है। ये इत्र खुशबूदार होने के साथ साथ लंबे समय तक शरीर पर बने रहते हैं। गर्मियों में कूलिंग और रिफ्रेशिंग नोट्स वाले परफ्यूम सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं।
3: तो वैरायटी, बहुत सारे वैरायटीज हैं, हमें जनरली साउथ में इतनी वैरायटीज देखने को नहीं मिलती है। सो वेरी गुड वैरायटीज ऑफ परफ्यूम्स एंड वेरी ऑल द ब्रांडेड परफ्यूम्स के वो भी इनके पास हैं, अवेलेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस एंड दे हैव वेरी गुड प्रेजेंटेशन ऑफ दीज बॉटल्स एंड एवरीथिंग।
0: यहाँ मिलने वाले कई इत्र इतने खास होते हैं कि उनकी एक एक बूंद हजारों रुपए तक की होती है। खस का इत्र करीब 3 लाख रुपए प्रति लीटर तक बिकता है, जबकि गुलाब का इत्र 8 से 10 लाख रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाता है, जबकि रूह कैटेगरी के कुछ खास इत्र 15 से 20 लाख रुपए प्रति लीटर तक बिकते हैं, जिन्हें खास तौर पर VIP ग्राहक पसंद करते हैं।
2: आजकल जो नई जनरेशन है उनको ड्यूप्स बहुत पसंद आ रहे हैं, मतलब कॉस्टली जो परफ्यूम्स अवेलेबल रहते हैं उनके अफोर्डेबल प्राइस में सेम, ऑलमोस्ट सेम रेप्लिका अवेलेबल रहते हैं और लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं वो। जैसे अपन किसी का नाम लें, जैसे अपने पास गुलाब है, रू गुलाब है, रू खस है, अब ये तो बहुत प्रीमियम अतर्स हो गए, तो इनकी तो कीमत लाखों रुपए में होती है। जैसे अब इनकी तो लाखों रुपए से स्टार्ट होकर 25-20-25 लाख रुपए तक भी रू गुलाब है। आज रू गुलाब जो नेचुरल है एकदम एक्सट्रैक्ट, वो 20-22 लाख रुपए किलो तक का अवेलेबल।
0: सदियों पुरानी खुशबू की परंपरा को आज भी संभाले हुए जयपुर की ये दुकान इत्र की एक ऐसी विरासत है जिसकी महक देश से लेकर दुनिया तक फैली हुई है।
1: अलग अलग ऑप्शंस हैं जो आपको फ्रेग्रेंसेस के साथ में मिलेंगे और अगर आप जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में आएंगे तो एक महकती हुई लेन मिलेगी जहां पे आप DR अरोमा देखेंगे और यहां पहुंचेंगे तो ये पूरा कलेक्शन इस जगह पे होगा। कैमरामैन निखिल के साथ रिदम जैन, गुड स्टडी, जयपुर।
4: और मुजफ्फरपुर की मशहूर लीची जो शाही लीची कहलाती है, सिर्फ अपने स्वाद और खुशबू के लिए ही नहीं जानी जाती बल्कि ये हजारों ग्रामीण परिवारों, खास करके महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बन रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। शाही लीची से महिलाओं के जीवन में खुल रही मिठास। आपको बता दें लीची का सीजन शुरू हो गया है और इसमें मुजफ्फरपुर की हजारों महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। सीजन शुरू होते ही जिले के गाँव में तुड़ाई, छटाई, पैकिंग और बिक्री का काम तेज हो जाता है, जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं को गांव में ही रोजगार मिल जाता है। सीजन के दौरान महिलाएं रोजाना 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की कमाई कर लेती है। इस कमाई से महिलाओं की आत्मनिर्भरता में इजाफा होता है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। खास बात यह है कि इस काम में सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्य और बच्चे भी जुड़ जाते हैं। इससे कई परिवारों को न केवल इस सीजन में अच्छी कमाई हो जाती है बल्कि उन्हें साल भर के कर्ज से भी राहत मिलती है। गांव में रोजगार की कमी के बीच यही मौसम उनकी आमदनी बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया बनता है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची जहां देश विदेश में अपनी मिठास के लिए मशहूर है, वहीं अब ये ग्रामीण महिलाओं और उनके परिवारों की जिंदगी में भी आर्थिक मिठास घोल रही है। ब्रियन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी ने मुंबई के समुद्र और तटों को साफ करने के लिए अनमैन्ड इलेक्ट्रिक बोट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। आधुनिक तकनीक से तैयार इस मानव रहित बोट से प्रतिदिन लगभग 80 से 90 किलो कचरा निकाला जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है मुंबई में रोबोट कर रहे समंदर की सफाई। आपको बता दें कि मानव रहित रोबोटिक बोट ने मुंबई के समंदर की सफाई का बीड़ा उठाया है। इस बोट के जरिए समंदर में तैरने वाली गंदगी को बोट में इकट्ठा किया जाता है और उसे बाहर निकाल लिया जाता है।

0: समुद्र किनारे बसी है माया नगरी मुंबई, एक ऐसा शहर जिसमें समुद्र की लहरों की ही तरह देश भर से लोग सपने लिए आते हैं और बस जाते हैं। लेकिन अब इस शहर की शान ये समंदर गंदा होने लगा है और अब इसकी सफाई का बीड़ा उठाया है बृहन मुंबई नगर निगम यानी BMC ने, और इसके लिए तैनात की है आधुनिक मानव रहित बोट्स। BMC का दावा है कि मुंबई के समुद्र में रोजाना लगभग 80 से 90 किलोग्राम तैरता हुआ कचरा इकट्ठा होता है, लेकिन अब इसे साफ करने का बीड़ा इन मानव रहित बोट्स पर है। ये बोट्स गेटवे ऑफ इंडिया और बधवार पार्क में तैनात की हैं, जो समुद्र में तैरते कचरे को हटाने का काम करेंगी। इस नाव की रेंज लगभग 500 मीटर है। ये नाव बैटरी से चलती है और इसमें सोलर पैनल भी लगे हैं। इसे रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। इनमें कन्वेयर बेल्ट सिस्टम लगा है। इसी सिस्टम के जरिए ये बोट पानी से कचरा खींच कर इकट्ठा करती है। समुद्र में जा रहे कचरे को हटाकर ये नाव न सिर्फ पर्यटकों के लिए जगह की सुंदरता बढ़ाने का काम कर रही है, बल्कि समुद्र में प्लास्टिक की मौजूदगी में कमी लाने में भी मददगार है।
1: मैक्सिमम प्लास्टिक बॉटल उसमें बहुत सारा मिनरल वाटर है, जूस से, उसके बाद में कांच के बॉटल से बहुत सारी बॉटल जमा होती है। और ये क्या होता है सर, ये हम लोग कलेक्ट करते हैं, अदरवाइज ये ना डेड एंड में जाएगा समुद्र के, और वहाँ पे उसका बैड इफेक्ट जो एनिमल्स है उसकी वो चीज़ें पे हो सकता है। इसीलिए वो हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में हम ये बैग में जमा करके गाड़ी में डाल के इसको सेग्रीगेशन के लिए भेजते हैं।
0: BMC देश की पहली ऐसी नागरिक संस्था है जो समुद्र तट और उसके आसपास के इलाकों की सफाई बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ये बोट्स मुंबई भर में सफाई बनाए रखने और ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए लागू किए जा रहे कई उपायों का एक अहम हिस्सा है।
2: एक तरह से इनोवेशन किया गया है समुद्र में साफ सफाई हो सके उसमें किसी तरह का ह्यूमन आप कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसीलिए ये अनमैन्ड बोट्स बैटरी ऑपरेटेड जो है वो चलाई जा रही है। जो भी वेस्ट जनरेट होता है, काफी वेस्ट जनरेट होता है क्योंकि टूरिस्ट एरिया, टूरिस्ट मूवमेंट जो है वो हजारों की तादाद में रहती है गेटवे ऑफ इंडिया पर, और उसके लिए ये पूरा सिस्टम जो है वो BMC तरफ से डिप्लॉय किया है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ पुष्पा शेख, आज तक।
3: और देश में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने की अपील का असर अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में साफ दिखाई देने लगा है। अब लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है ऊर्जा संकट के बीच ईवी की बढ़ रही बिक्री। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। युवा और नौकरी पेशा लोग अब पेट्रोल डीजल गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
4: चंडीगढ़ और मोहाली के ईवी शोरूम में इन दिनों ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। लोग अब सिर्फ गाड़ी खरीदने नहीं बल्कि बैटरी बैकअप, चार्जिंग खर्च, रेंज और मेंटेनेंस जैसी जानकारी लेने भी आ रहे हैं।
5: Nowadays पेट्रोल प्राइसेस जो वेयर कर रहे हैं ऑल ओवर, तो उसमें ईवी का सबसे अच्छा इम्पैक्ट लग रहा है। फ्यूचर यही है, आने वाले 5 से 10 सालों के बीच में सबसे ज्यादा इसी पे लोग ट्रांसफर होंगे।
4: ये तस्वीरें मोहाली के कार शोरूम की हैं। यहाँ के डीलर के अनुसार अप्रैल के मुकाबले मई में इलेक्ट्रिक कारों की बुकिंग में करीब 44% का इजाफा दर्ज किया गया है। अप्रैल महीने में जहाँ करीब 50 इलेक्ट्रिक कारों की बुकिंग हुई थी, वहीं मई में अब तक 72 कारें बुक हो चुकी हैं। सिर्फ चार पहिया वाहन ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बिक्री में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। मोहाली के एक ईवी टू व्हीलर डीलर का दावा है कि अप्रैल के मुकाबले उनकी बिक्री में 50-60% तक का इजाफा हुआ है।
6: कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी लोगों से कि पेट्रोल डीजल बचाएं, कार कूलिंग करें और पेट्रोल जो है उसका जो है बचत की जाए। इसके बाद में हमने देखा कि किस तरह पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी, तो उसमें अलग अलग जो लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेते भी नजर आए, और यहाँ तक कि अब जो ईवी कार्स हैं या ईवी बाइक्स हैं उनकी भी बुकिंग्स और सेल्स जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। हमने देखा किस तरह कार्स की बुकिंग्स में बढ़ोतरी हुई है। ये अब हम एक ईवी बाइक स्टोर में हैं जो ईवी बाइक्स बेचते हैं, और यहाँ पर भी हमने जब बात की तो उनका यही कहना है कि जो हमने इंक्रीज जो है वो देखा है।
4: ऑटो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही और सरकार ईवी सेक्टर को बढ़ावा देती रही तो आने वाले महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड और तेजी से बढ़ सकती है। एक तरह से कहें तो चंडीगढ़ जैसे शहरों में ईवी अब सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि लोगों की जरूरत बनता जा रहा है।
6: डेफिनेटली इम्पैक्ट है, अगर पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो जिस तरह रेट बढ़े पेट्रोल डीजल के, और प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑस्टेरिटी की अपील की और बोला कि स्विच करें ऑल्टरनेटिव मोड्स पे, तो ईवी एक मोड था, इलेक्ट्रिक मोड था। जिस तरह कार्स की बुकिंग्स भी बढ़ी हैं, तो यहाँ हम एक ईवी बाइक स्टोर में हैं, जिनका कहना है कि हाँ सेल्स बढ़ी हैं, बुकिंग्स बढ़ी हैं और क्वेरीज भी जो है वो भी मैनिफोल्ड हुई हैं। मोहाली से कैमरा पर्सन नमन के साथ असीम बस्सी।
3: भीषण गर्मी से इंसान के साथ साथ भगवान भी परेशान हैं। यहाँ के मंदिरों में भीषण गर्मी की तपिश से भगवान को बचाने के लिए कूलर और एसी लगाए गए हैं। यहाँ भक्तों को भी गर्मी से बचाने के लिए शेड बनाए गए हैं। ऐसे में आज की हमारी सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है, गर्मी से राहत के लिए मंदिरों में लगे एसी। आपको बता दें वाराणसी में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऐसे में न केवल वाराणसी की सड़कों और चौक चौराहों पर बल्कि मंदिरों में भी गर्मी सतम ढा रही है। यही वजह है कि काशी के प्राचीन मंदिरों में इन दिनों एसी और कूलर लगाए गए हैं।

0: जलती छुपती गर्मी से इंसान बेहाल है। तापमान लगातार आसमान छू रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। लेकिन इस भीषण गर्मी के बीच धर्मनगरी काशी में आस्था की एक अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ बढ़ते तापमान के बीच भगवान का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। काशी के मंदिरों में भगवान को गर्मी न लगे, इसके लिए गर्मी से बचने के तमाम इंतजाम यहाँ किए जा रहे हैं।
1: वाराणसी में तापमान 45 डिग्री के ऊपर जा चुका है। न केवल सड़कों पर बल्कि काशी के मंदिरों में भी गर्मी से बचाव के तमाम इंतजाम देखे जा सकते हैं। देख सकते हैं कि धूप से बचाव के लिए मंदिर, जो वाराणसी का बड़ा गणेश विश्वविख्यात लोहटियाँ इस इलाके में स्थित मंदिर है, वहाँ ग्रीन पर्दे लगाए गए हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। तो साथ ही साथ पेयजल की भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है ताकि जो श्रद्धालु आएं उनको शुद्ध और शीतल पेयजल मिल सके।
0: काशी के राम जानकी मंदिर में तो पूरे राम दरबार के सामने सुबह से लेकर शाम तक कूलर चलाया जा रहा है, एसी चल रहे हैं। गर्मी के हिसाब से वस्त्र पहनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके।
2: हाँ, आपकी बात तो गर्मी काफी बेतहाशा है और काफी टेम्परेचर भी काफी गर्मी पड़ रहा है इस समय जो है। और हम लोग गर्मी के दिन में भगवान गणपति को जो है जो हल्का कपड़ा बनाते हैं, सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं, और जो भोग आरती जो है वो अपने समय पर ही होता है।
0: पुजारी, महंत और भक्तों का मानना है कि जिस तरह इंसानों को मौसम का एहसास होता है, उसी तरह भगवान को भी गर्मी और ठंड महसूस होती है। इसी भावना और श्रद्धा के साथ भगवान के लिए ये विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।
3: इस समय गर्मी बहुत अधिक हो रही है, 45 डिग्री तक करीब तब तापमान जा रहा है, तो हम लोग को बहुत परेशानी भी हो रही है। लेकिन पुजारी जी भगवान का पूरा ध्यान रख रहे हैं, जैसे हम लोग घर में एसी और कूलर का प्रयोग करते हैं, भगवान जी का पूरा ध्यान रखते रखते भगवान जी को इतना ठंडा कर देख के हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: मंदिर में मई से अगस्त तक भगवान को सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग में दही और मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं ताकि ठंडक बनी रहे। साथ ही भक्तों के लिए भी पूरे इंतजाम है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए भी यहाँ कूलर, वाटर कूलर और ग्रीन पर्दों की व्यवस्था की है, जिससे दर्शन करने आने वाले भक्तों को भी गर्मी से राहत मिल सके।
4: गर्मी में ज़्यादा गर्मी तो पड़ रही है, हमारे यहाँ मंदिर में गर्भगृह में एसी की व्यवस्था की गई है और बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं, और परिक्रमा स्थल पर जो है पर्दे लगाए गए हैं, वाटर कूलर भी लगाया गया है जिससे लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध हो सके। और यह भावना है कि जब हमको गर्मी लग रही है तो भगवान को भी गर्मी लगेगी।
0: मंदिरों में भगवान को गर्मी से राहत दिलाने और उन्हें ठंडक पहुंचाने के लिए शीतल भोग की व्यवस्था है, जिससे इंसान की तरह भगवान को भी इस झुलसती गर्मी से राहत मिल सके। तपती गर्मी के बीच वाराणसी से सामने आई ये तस्वीर सिर्फ एक व्यवस्था नहीं बल्कि आस्था और विश्वास है। भक्त केवल पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि संवेदना, सेवा और समर्पण का भाव है, जहाँ भगवान को भी उसी स्नेह से रखा जाता है जैसे घर के सबसे प्रिय सदस्य को रखा जाता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए व्लॉग और हमें 7303409922 इस पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे GNT पर दिखाएंगे। इसी के साथ 7 बजे 7 Good News में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
7: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
8: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing.
9: Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
10: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
11: So they were disallowed from speaking their language.
10: In-depth conversations with A-list celebrities.
12: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
10: True crime podcasts you just can't stop listening to.
13: Others escape justice to live and die in infamy. These
10: individuals. Plus the news and sports content you crave in podcast form.
14: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
10: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
5: गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को
9: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
10: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in.
3: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन. पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ से हुआ चुनाव. पवित्र यात्रा के लिए जून से अगस्त के बीच 20 जत्थों में रवाना होंगे यात्री. भीषण गर्मी के बीच रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार. सरयू नदी में स्नान से आध्यात्मिक शांति और सुकून का अनुभव. हनुमानगढ़ी कनक भवन के साथ राम की पैड़ी पर उमड़ रही भीड़. जबरदस्त गर्मी की चपेट में लगभग पूरा भारत. नागपुर में गर्मी ने तोड़ा 10 सालों का रिकॉर्ड. पारा पहुंचा 46.6 डिग्री. चंडीगढ़ में 47 डिग्री तो बांदा में 48 डिग्री के साथ बना देश का सबसे गर्म शहर.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली.
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा. सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं. कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है. लोग बिना जांचे परखे सोचे समझे सोशल मीडिया पर ये खबरें अक्सर शेयर कर देते हैं, क्योंकि आजकल खबरें केवल अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है. हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है. लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है. कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है.

0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ये कह रहे हैं कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगने को लेकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। इस घोषणा के बाद कोलकाता में 15 मई यानी शुक्रवार को नमाज के बाद हंगामा मच गया। एक धर्म विशेष समुदाय के लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इसी संदर्भ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ में मौजूद लोग नारे लगाते दिख रहे हैं। वीडियो में लिखा है, कोलकाता में सड़क पर नमाज को लेकर बवाल, नई सरकार के आदेश के खिलाफ एक धर्म विशेष के लोगों का धमकी भरा प्रदर्शन। एक व्यक्ति ने वीडियो को एक्स पर शेयर किया और पंज कसते हुए लिखा कि सड़क किसी की थोड़ी है, जो जब चाहे जहाँ चाहे वही मुर्गा बन जाए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी सड़क पर लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। ये लोग कुछ नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां पर सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगने को लेकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने गौर से सुना तो ये बांग्ला लगा। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने फिर से वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और अगर ये वीडियो सड़क पर नमाज रोकने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का था तो इस दौरान हमें यहां पर बंगाल पुलिस के जवान क्यों नजर नहीं आए? इतने बड़े विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस के जवानों को तैनात क्यों नहीं किया गया, ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। साथ ही वीडियो में द लाइट पार्क नाम के एक होटल का बोर्ड भी नजर आ रहा है, लेकिन सर्च के दौरान पूरे पश्चिम बंगाल में इस नाम का कोई भी होटल हमें नजर नहीं आया। मतलब ये कि वायरल वीडियो कहीं और का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में वायरल दावे की पुष्टि करते कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।

0: बैट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें फेसबुक पर उसी लोकेशन का दूसरा वीडियो मिला। कई बांग्लादेशी यूजर्स ने इस वीडियो को 14 मई को शेयर किया था। इन पोस्ट के मुताबिक वीडियो आवामी लीग के नेता इंजीनियर मुशर्रफ हुसैन के जनाजे में बांग्लादेश के चिट्टागोंग में उमड़ी भीड़ का है। एक बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट में 14 मई को छपी रिपोर्ट के मुताबिक चिट्टागोंग में इंजीनियर मुशर्रफ हुसैन की अंतिम विदाई में हजारों समर्थक शामिल हुए थे। फेसबुक पर मिले वीडियो में द लाइट पार्क नाम का होटल साफ दिख रहा है। इस क्रू की मदद से हमने वायरल वीडियो में दिख रही जगह को गूगल मैप्स पर सर्च किया तो ये हमें बांग्लादेश के चिट्टागोंग में मिल गई। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि बांग्लादेश के चिट्टागोंग का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ रितेश दत्ता, टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि मामूली सी कहा सुनी के बाद एक लड़के ने एक लड़की को बेरहमी से पीट दिया जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि लिफ्ट में लड़का

0: मैडम से गलती से टकरा गया था, फिर लगातार बेइज्जती करके थप्पड़ मार दिया लड़के ने, फिर उसके बाद लड़की पर हमला कर दिया। लेकिन जब हमने इस वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए हमारी रिपोर्ट।
1: सोशल मीडिया पर यह हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वायरल हो रहा वीडियो किसी सीसीटीवी फुटेज का है। वीडियो में नजर आता है कि लिफ्ट से बाहर निकलते समय एक लड़का एक लड़की से टकरा जाता है। लड़का टकराने की वजह बताता है। इस पर लड़की कहती है कि देख कर आना चाहिए था। लड़का सॉरी भी बोलता है और इतने में लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट के बंद होते ही लड़की उस लड़के को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद लड़के का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो लड़की पर गुस्सा करता है, थप्पड़ क्यों मारा इसकी वजह पूछता है, लेकिन लड़की लड़के से लगातार बहस करती रहती है। इसके बाद लड़का अपना आपा खो देता है और वो लड़की को बुरी तरह से पीटता है। कई न्यूज आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को लेकर कई खबरें चलाई। एक्सपर्ट वीडियो को शेयर करते हुए एक शख्स ने लिखा कि लिफ्ट में लड़का मैडम से गलती से टच हो गया, फिर लगातार बेइज्जती करके थप्पड़ मार दिया। लड़का फिर ज्यादा पिटाई किया, लेकिन सीसीटीवी नहीं होता तो मैडम विक्टिम कार्ड खेलती। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर यूजर इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में नजर आ रहा है कि लिफ्ट से बाहर निकलते समय एक लड़की और एक लड़का आपस में टकरा जाते हैं और इसके बाद लड़की बहस करते हुए युवक को थप्पड़ मार देती है। युवती से पीटने के बाद युवक उसे पहले तो थप्पड़ मारता है और इसके बाद जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीटता है। इतना ही नहीं, वो लड़की के सर पर एक भारी चीज भी मारता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हमने इसकी पड़ताल शुरू की तो दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। मसलन इन दोनों के बीच बहस होती है तो फिर शोर सुनकर आसपास से कोई वहां पर क्यों नहीं पहुंचता। इतना ही नहीं, लड़का जब लड़की के थप्पड़ मारने के बाद पलटवार करता है तो लड़की को जमकर पीटता है। तो इस दौरान लड़की चीखी होगी, शोर मचाया होगा, लेकिन इसके बावजूद वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा। ऐसा भला कैसे हो सकता है? लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
1: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर मिला। वीडियो के कैप्शन में एक्टिंग और रेसलिंग जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है। इस अकाउंट पर यह वीडियो दो बार शेयर किया गया था। वीडियो में नजर आ रहे लड़के का नाम विपिन चौहान है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो के मुताबिक वो एक रेसलर है। उनके अकाउंट पर मौजूद कई दूसरे वीडियोज में CWE अकेडमी का बैनर नजर आता है। CWE मशहूर रेसलर खली की कुश्ती अकेडमी है जो कि पंजाब में स्थित है। उनके अकाउंट पर इस तरह की मारपीट और भी वीडियो मौजूद है जिनमें वही लड़की है जो वायरल वीडियो में भी नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए फैक्ट चेक टीम ने विपिन चौहान से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रही लड़की उनकी पत्नी रुचिका शाह है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने इस तरह के स्क्रिप्टेड वीडियो बनाने शुरू किए हैं। इन वीडियोस पर उन्हें काफी व्यूज और लाइक्स मिले और जिसके बाद उन्होंने इस तरह के और भी वीडियो बनाने का फैसला किया। वो और उनकी पत्नी प्रोफेशनल कुश्ती खिलाड़ी हैं और किसी को बिना चोट पहुंचाए वो ऐसे वीडियोस बना सकते हैं। इस वीडियो को शूट करने के दौरान भी किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। उन्होंने कहा कि कभी कभी शूटिंग के दौरान हल्की फुल्की चोट लग जाती है, लेकिन वो ज्यादा गंभीर नहीं होती। विपिन ने यह भी बताया कि उन्होंने अब CWE अकेडमी छोड़ दी है।
2: साफ है कि लड़की के साथ मारपीट करता शख्स उसी का पति है। ये वीडियो भी असल घटना का नहीं है। वीडियो में नजर आ रहे दोनों लोग कुश्ती खिलाड़ी हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
6: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it, and eat it for breakfast, wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League, and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी गर्मी, तपते मौसम में रामबाण उपाय, जिंदगी के इम्तिहान में पास होना है। समंदर में कचरा निगलने वाली नाव, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम पेश करने वाले कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।

0: जो पार्टी दे रहा है हम सबको।
1: इन दिनों सोशल मीडिया पर चकाचौंध और शोबाजी वाली रील्स की बाढ़ आई हुई है, लेकिन इसी बीच झारखंड से सामने आए एक वीडियो ने इंटरनेट की लाखों जनता का दिल जीत लिया है। ये कहानी सूरज नाम के एक बच्चे की है, जिसने साबित कर दिया कि खुश रहने के लिए किसी महंगे कैफे या आलिशान पार्टी की जरूरत नहीं होती, बस कुछ सच्चे दोस्त और 100 रुपए का बजट ही काफी है। वीडियो में सूरज अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से चूल्हे के पास बैठकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता दिख रहा है।
0: हेलो गाइस, आज सूरज का बर्थडे है, तो सूरज 100 रुपया का मैगी लाया है और उसका साथ सेंटा फेंटा भी और बहुत बच्चा भी है, आज वो पार्टी दे रहा है हम सबको।
1: वीडियो की शुरुआत सूरज के दोस्त के एक डायलॉग से होती है, जो कैमरे के सामने आकर बड़े गर्व से कहता है, आज सूरज की तरफ से बर्थडे पार्टी है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस छोटी सी पार्टी के लिए सूरज ने अपनी गुल्लक से पाई पाई जोड़कर पैसे बचाए थे। वीडियो में दिख रहा है कि सूरज खुद चूल्हे पर मैगी बना रहा है और उसके दोस्त आसपास बैठकर अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बच्चों के चेहरों पर बिखरी मुस्कान और खुशी किसी भी महंगे रेस्टोरेंट के जश्न से कहीं ज्यादा बड़ी और खूबसूरत लग रही है।
0: हेलो गाइस, आज सूरज का बर्थडे है, तो सूरज 100 रुपया का मैगी लाया है और उसका साथ सेंटा फेंटा भी और बहुत बच्चा भी है, आज वो पार्टी दे रहा है हम सबको, आज उसका बर्थडे है।
1: आप भी बचपन में कई बार डॉक्टर के पास गए होंगे, अगर तबीयत ज्यादा खराब रही होगी तो डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाया होगा। अब इंजेक्शन देखकर आपको डर भी लगा होगा। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो बड़े हो चुके हैं मगर आज भी इंजेक्शन से डरते हैं। वही वीडियो में दिख रही ये बच्ची इंजेक्शन से बिल्कुल भी नहीं डर रही। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बच्ची को दर्द होता ही नहीं, उसे इंजेक्शन से डर भी नहीं लगता, और बच्ची के इसी एक्सप्रेशन के कारण वीडियो वायरल हो रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर क्रिकेट से जुड़ा ये बेहद दिलचस्प वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने लोगों को हैरान भी किया और प्रभावित भी। आमतौर पर क्रिकेट खेलने के लिए बड़े मैदान की जरूरत होती है, जहां बल्लेबाज शॉट लगा सकें और फील्डर आसानी से गेंद पकड़ सकें। लेकिन वायरल वीडियो में जो नजारा देखने को मिला वो पूरी तरह अलग है। यहां लोगों ने पहाड़ों के बीच ऐसी जगह पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, जहां मुश्किल से एक पिच के बराबर जगह मौजूद है। वीडियो में साफ नजर आता है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच पतली सी जगह पर क्रिकेट की पिच बनाई गई है। आसपास इतना कम स्थान है कि सामान्य तरीके से फील्डिंग करना लगभग नामुमकिन लगता है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों ने इस चुनौती का भी शानदार हल निकाल दिया। जहां जहां पहाड़ों के नीचे थोड़ी सी भी जगह मिली, वहां खिलाड़ी फील्डिंग करने के लिए खड़े हो गए। किसी ने पत्थरों के बीच अपनी जगह बनाई तो कोई ढलान पर खड़ा दिखाई दिया। वीडियो में बल्लेबाज आराम से शॉट खेलते दिखाई देते हैं, जबकि गेंदबाज भी पूरे जोश के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। वही फील्डर पहाड़ी रास्तों और चट्टानों के बीच भी तेजी से दौड़ते नजर आते हैं। ये दृश्य बताता है कि खेल के प्रति लोगों का प्यार किसी भी परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। अगर मन में जुनून हो तो इंसान कहीं भी अपने पसंदीदा खेल का आनंद ले सकता है।
2: कैसा होता अगर धुरंधर फिल्म का ये गाना भोजपुरी में होता?
1: इंटरनेट पर इन दिनों ये वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी सिंगर के फैन हो जाएंगे। फिल्म धुरंधर का सुपरहिट रोमांटिक सॉन्ग गहरा हुआ का भोजपुरी वर्जन ऐसा तहलका मचा रहा है कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए हैं।

0: Welcome to our house in Siwa.
1: सोशल मीडिया पर दो बहनों ने इजिप्ट लीबिया के बॉर्डर पर बने अपने छोटे से घर की झलक लोगों को दिखाई। झोपड़ी नुमा ये घर बाहर से नमक और मिट्टी से बनी थी। इसे देख लोगों ने उम्मीद की थी कि बहनें गरीब हैं और मुश्किलों में अपना गुजारा कर रही हैं। लेकिन जब घर को अंदर से दिखाया गया तो सब दंग रह गए। घर के अंदर आधुनिक और लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक मिली। कमरे में सॉफ्ट लाइटिंग, कंफर्टेबल सोफा, बड़े बड़े बेड, फुली इक्विप्ड किचन, वाईफाई, एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं और खूबसूरत डेकोरेशन सब कुछ मौजूद था। बहनों ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल से घर बनाया है जिसमें मिट्टी और नमक का इस्तेमाल किया गया है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। यूं तो अब तक आपको पुल पार करने का एक ही तरीका पता होगा और वो ये है कि पुल के ऊपर से गुजरना। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद इस पर आपका विचार बदल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मानना पड़ेगा कि किसी भी पुल को पार करने के लिए कई और तरीके भी हो सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पुल को पार करने के लिए ब्रिज के ऊपर से जाने की जगह उसके नीचे से उछल कूद करते हुए गुजर रहा है। शख्स पुल के नीचे लगे खम्भों और पोल को पकड़कर झूलते हुए ब्रिज को पार कर रहा है। वीडियो में शख्स जितनी आसानी से पुल को पार करता दिख रहा है उतना आसान ये काम बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस शख्स की फिटनेस वाकई कमाल की है। आप देख सकते हैं कि शख्स उस पुल को न सिर्फ पार करते हुए जाता है बल्कि वो उसी पुल पर ठीक वैसे ही लटकते हुए वापस आता है। पुल के नीचे मौजूद लोग उस शख्स का हौसला बढ़ाते और उसका वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते नजर आ रहे हैं।
2: तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंदी बाबा आए हमारे।
1: इन दिनों इंटरनेट पर ये वीडियो तहलका मचा रहा है जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। मामला एक डोसा वाले भैया और उनके सबसे अनोखे कस्टमर सांड से जुड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यस्त सड़क के किनारे एक डोसे की दुकान है जहाँ तवे के ठीक पास एक सांड बड़े ही धैर्य के साथ खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसे दुकान का पूरा मेन्यू जबानी याद आया और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। आमतौर पर दुकानदार जानवरों को भगा देते हैं, लेकिन इस डोसा वाले ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। आप देखेंगे कि दुकानदार ने बड़े ही प्यार से तवे पर मक्खन मारकर एक बढ़िया कुरकुरा डोसा तैयार किया और सीधे अपने इस चार पैरों वाले स्पेशल गेस्ट को परोस दिया।
2: फाइनली इनका डोसा खिलाने का बारी आ चुका है।
1: सांड ने भी बड़े चाव से डोसा खाया और अपनी पूंछ हिलाकर वेंडर का शुक्रिया अदा किया। दुकानदार की माने तो ये सांड रोजाना सही समय पर यहाँ आ जाता है। कुछ लोग तो सिर्फ इस अनोखे नजारे को देखने के लिए यहाँ रुकते हैं, जिसकी वजह से दुकान अब एक छोटा मोटा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। जंगल सफारी के इस वीडियो को देखकर यूजर्स हैरान हैं। वीडियो में जंगल नजर आ रहा है। जीप में बैठी लड़की ने जंगल सफारी के दौरान वीडियो बनाया और तभी नजर आता है कि एक हाथी उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। हाथी जब काफी करीब आ जाता है तो लड़की डर जाती है और जीप चालक को गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगती है। कुछ सेकंड के लिए हाथी रुक जाता है मगर फिर उनके पीछे आने लगता है। जीप में मौजूद आदमी भी गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगता है। वीडियो देखकर लगता है कि हाथी इन पर हमला कर सकता है और इसी कारण ये लोग भी डर गए।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे,
8: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंह हवा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। मानसून के इंतजार में बैठे लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी गर्मी, तपते मौसम में रामबाण उपायों से मिलेगी मात। नंबर की चिंता छोड़ो, जीना सीखो, दूर करो बच्चों के दिल से पढ़ाई का तनाव। और मुंबई में जल्द होगा कचरा मुक्त समंदर, पहली बार बीएमसी ने उतारी कचरा नाव। शुरुआत हेडलाइंस के साथ,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
8: राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायु अस्त्र एक का सफल परीक्षण, 10 किलो वॉरहेड के साथ 100 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना, सेना की स्ट्राइक और निगरानी क्षमता में होगा इजाफा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन, पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ से हुआ चुनाव। पवित्र यात्रा के लिए जून से अगस्त के बीच 20 जत्थों में रवाना होंगे यात्री। भीषण गर्मी के बीच रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार, सरयू नदी में स्नान से आध्यात्मिक शांति और सुकून का अनुभव। हनुमानगढ़ी कनक भवन के साथ राम की पैड़ी पर उमड़ रही है भीड़। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी दिख रहा भीषण गर्मी का असर, हिमाचल के ऊना में 44 तो शिमला में 30 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा, अगले दो दिनों में बारिश के आसार। विधि विधान से खुले द्वितीय केदार भगवान मध्यमहेश्वर के कपाट, बड़ी संख्या में मौजूद रहे भक्त। मध्यमहेश्वर धाम में होती है भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा। एआई तकनीक से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रेल मंत्री की अपील, यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहे मुसाफिर, हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें संदिग्ध की जानकारी। और अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले मौसम की कर लेते हैं, जिसका मजाज इन दिनों काफी गर्म है, यानी कि इन दिनों देश के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हालात तब हैं जब अभी नौतपे की शुरुआत नहीं हुई है और इस भीषण गर्मी से बचने के लिए हर कोई कोई ना कोई उपाय कर रहा है। सरकार और प्रशासन भी अपने स्तर पर लोगों की मदद करने में जुटे हैं, यहां तक कि इस भीषण गर्मी से जानवरों और भगवान को भी बचाने के लिए उपाय करने पड़ रहे हैं।

0: मई के इस महीने में देश के कई राज्य भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। सिर पर आग उगलता सूरज और सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल हालात को बयां करने के लिए काफी है। हर कोई इस चुभती जलती गर्मी से बेहाल है। नौबत यह है कि हर दिन बढ़ता तापमान लोगों का दिन में ही नहीं रात में भी पसीना छुड़ा रहा है। गर्मी के कारण यह हाल तब है जब अभी नौतपा यानी गर्मी के सबसे मुश्किल 9 दिनों की शुरुआत नहीं हुई है। दिन ब दिन बढ़ती गर्मी से बचने के लिए खुद से लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन जैसे हालात इन दिनों बने हैं उसे देखते हुए सरकार और प्रशासन को भी कदम उठाने पड़ रहे हैं। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जहां करीब 44 डिग्री की गर्मी से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने जगह जगह मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट तैनात की है। इस यूनिट के जरिए राहगीरों को ठंडा पानी, ORS, टोपी और गमछा उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट जो है वो दिल्ली के तमाम 13 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो तैनात किए गए हैं, ताकि लोग गर्मी से अगर हो सके तो उनको किस तरीके से बचाया जाए उसके लिए तैयारियां जो है वो की गई थी। उसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर आपको तमाम लोग जो है वो लाइन में खड़े नजर आएंगे, जिनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था, उनके साथ साथ ORS की जो घोल है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा गमछा और एक कैप की सुविधा भी जो है वो यहाँ पर दी जा रही है, ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी से जो है वो बचाव मिल सके।
2: हर 13 जिले में ये मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट व्हीकल है। हम ओल्ड दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आज हमारा लोकेशन है ISBT कश्मीरी गेट। ऐसे ही हम डेली लोकेशन चेंज करते रहते हैं। कल का हमारा है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, परसों का है रेडफोर्ट चांदनी चौक मेन मार्केट, एंड उसके बाद जामा मस्जिद, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो हमने पूरा एक महीने का एक शेड्यूल बनाया हुआ है, जिसके तहत हम ये पूरा अरेंजमेंट्स लेकर के अपने व्हीकल्स में ये सारी सुविधाएं रखते हैं।
1: कितने लोगों को आप ये कैप और ये पानी की व्यवस्था कर पाते हैं? क्या पानी प्रॉपर है कि इतना ही पानी रहता है आप?
2: सर जैसा देख रहे हैं दो कंटेनर में, सर हमारा वो ORS का घोल है, दो कंटेनर्स में ORS का घोल है, एक में ठंडा पानी, मतलब तीनों ही ठंडे हैं। और क्योंकि कई लोग ORS की डिमांड करते हैं, तो हम उनको ORS यहीं पे ही सैसे से बना करके तब हम उनको पिलाते हैं, और वो बच्चे अगर साथ हैं तो अपनी बोतल में भी भर के ले जाते हैं।
3: मिलता है पानी, पानी बढ़िया सच्ची, गमछा टोपी वोपी सब मिलता, सब बांटते हैं।
0: दिल्ली की तरह ही उत्तर भारत के दूसरे शहरों में भी हीट स्ट्रोक से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान के पाली और अलवर में तो शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। देश के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में भी लोगों को गर्मी से बचाने के लिए इंतजाम किए गए, खासकर विदर्भ के जिलों में। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। वहीं महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में लोग गर्मी से बचने के लिए स्नो पार्क जाना पसंद कर रहे हैं। अहमदाबाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां लोग बच्चों संग मौज मस्ती करते दिखाई दिए।
4: अभी गर्मी बहुत सारी है, इसीलिए हमने यही प्लेस सिलेक्ट करी।
5: गर्मी है इसलिए फ्रंट ब्लास्ट में एंजॉय करने के लिए आए हैं हम, जाते हैं और 3 साल से सलिंग आते हैं यहाँ।
0: इंसानों की तरह ही भगवान की प्रतिमाओं को भी इन दिनों भीषण गर्मी से बचाने के उपाय मंदिरों में किए जा रहे हैं। चाहे वाराणसी के मंदिर हो या गया के मंदिर या फिर कोई और मंदिर, मंदिरों में AC और कूलर 2400 घंटे चल रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ मंदिरों में तो श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी और कूलर तक का इंतजाम किया गया है।
6: वाराणसी में तापमान 45 डिग्री के ऊपर जा चुका है। न केवल सड़कों पर बल्कि काशी के मंदिरों में भी गर्मी से बचाव के तमाम इंतजाम देखे जा सकते हैं। देख सकते हैं कि धूप से बचाव के लिए मंदिर, जो वाराणसी का बड़ा गणेश विश्वविख्यात लोहटियाँ इस इलाके में स्थित मंदिर है, वहाँ ग्रीन पर्दे लगाए गए हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, तो साथ ही साथ पेयजल की भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, ताकि जो श्रद्धालु आए उनको शुद्ध और शीतल पेयजल मिल सके। तो वहीं कूलर की भी व्यवस्था की गई है, ताकि जो तापमान है मंदिर का या यहाँ आने वाले तमाम श्रद्धालु हैं उनके लिए कूलर की व्यवस्था होगी, तो यहाँ बैठकर जो श्रद्धालु हैं वे कुछ वक्त रुक सकेंगे और गर्मी से निजात पा सकेंगे।
7: इस समय तो गर्मी काफ़ी पड़ रही है, 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर इस समय चल रहा है। उमस और गर्मी दोनों है, जिसकी वजह से आदमी परेशान है। और गर्मी से बचाव के लिए भगवान के लिए भी कूलर, एसी, ठंडे वस्त्र, ये सब की व्यवस्था बनाई गई है। जैसे भगवान के लिए एसी कूलर तो लगा ही है, और सूती वस्त्र भगवान को धारण कराया जाता है, ठंडे जल से स्नान कराया जाता है ताकि भगवान को राहत मिले।
0: इंसान और भगवान के बाद बात जानवरों की करें तो ज्यादातर चिड़िया घरों और जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर, पंखे, पानी का छिड़काव, वाटर स्प्रिंकलर और ग्रीन नेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ खाने में भी जानवरों को मौसमी फल दिए जा रहे हैं। चाहे दिल्ली का चिड़ियाघर हो या फिर नर्मदा जिले का सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क हो, वहाँ गर्मी से बचाव के ऐसे ही इंतजाम दिखाई दिए।
8: हम लोगों ने काफी सारे मेजर्स लिए हैं जिससे कि इन लोगों के वेलफेयर में और कोई दिक्कत ना हो। खासकर पानी का अवेलेबिलिटी 24 घंटे किया गया है, सारे बाड़ों में 24 घंटे पानी हमारे पास उपलब्ध है जिससे कि जानवरों को कोई दिक्कत ना हो। ऊपर से स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं जिससे कि वातावरण में नमी पैदा हो और उनको उतनी गर्मी ना लगे। साथ में ही शेड्स, छप्पड़ डाले गए हैं जिससे कि वो पीक समर में या दिन के टाइम जिस समय काफ़ी गर्मी रहती है वो उस छप्पर के नीचे जाके रेस्ट कर सकते हैं। साथ में ही कुछ ऐसे हमारे प्रजाति हैं जैसे चिंपैंजी, उसके बाड़े में एसी लगाया गया है जिससे कि उनको कोई तकलीफ ना हो। ओरांग उटांग में कूलर लगाए गए हैं। काफ़ी सारे बर्ड्स के एग्जिबिट्स में भी कूलर्स का प्रावधान किया गया है और मिस्टिंग भी लगातार हो रहा है। इसके साथ साथ उनके खान पान का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं।
0: मौसम विभाग का साफ कहना है कि अभी गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है, ऐसे में थोड़ी सी सावधानी ही गर्मी से बचाव का बेहतर तरीका है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आशुतोष कुमार, अकोला से धनंजय साबले, वाराणसी से रोशन जायसवाल और नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, गुड न्यूज टुडे।
9: अगली खबर बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों से जुड़ी है। कंपटीशन ने इस दौर में हर छात्र बोर्ड एग्जाम में बेहतर करना चाहता है ताकि आगे चलकर वो अपनी पसंदीदा फील्ड में बेहतर करियर बना सके, लेकिन कई बार बोर्ड एग्जाम से पहले और बाद में परीक्षा की तैयारी और नतीजों को लेकर छात्र ही नहीं बल्कि उनके परिजन भी खासे तनाव में रहते हैं और इन हालात में कई बार बच्चों और घर वालों के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में सीबीएसई ने इस स्थिति से निपटने के लिए फ्री में साइकोसोशल काउंसलिंग सेवा शुरू की है, जिसकी काउंसलर डॉक्टर नेहा शर्मा कैसे बच्चों और उनके परिवार वालों की सहायता करती हैं, देखिए इस रिपोर्ट में।
10: सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आ चुके हैं। कई छात्र उम्मीद के मुताबिक नतीजे आने के बाद बेहद खुश हैं और वो आगे की तैयारी में जुट गए हैं, मगर कई छात्र ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट बेहतर नहीं आया है। इसके पीछे कई तरह के कारण, जैसे सही से परीक्षा की तैयारी न करना, घर वालों के दबाव में बच्चों की पसंद के मुताबिक स्ट्रीम का चयन न होना या फिर बोर्ड एग्जाम को लेकर बच्चों का अधिक तनाव लेना, ये कारण आम तौर पर देखने को मिलते हैं जिसका असर बच्चों के रिजल्ट पर दिखता है। ऐसे में सीबीएसई ने स्थिति से निपटने के लिए फ्री में साइको सोशल काउंसलिंग सेवा शुरू की है। इस सेवा का मकसद परीक्षा से पहले और रिजल्ट के बाद छात्रों और उनके घर वालों की मदद करना है। डॉक्टर नेहा शर्मा सीबीएसई की साइको सोशल काउंसलिंग सेवा की काउंसलर हैं, जो बताती हैं कि हर रोज उनके पास कई कॉल आ रही हैं, जिनमें छात्र और उनके घर वाले ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं।
11: अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आपने कभी घर पर इस बारे में बात किया कि आप साइंस नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं?
12: मैम, मैं कर नहीं पाया, जब फादर ने इंसिस्ट किया तो मैं बोल नहीं पाया क्योंकि मैं कॉमर्स करना चाहता हूँ, पर मेरा फेवरेट कॉमर्स ही था मैम।
11: अच्छा, तो अब आप एक काम कीजिएगा, आप जरा अपने पेरेंट्स से एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि आप क्योंकि आपके दो सब्जेक्ट्स में रिपीट थ्योरी हैं और अगर आप कह रहे हैं कि फेल हैं आप, तो आप आगे एक प्राइवेट कैंडिडेट के जैसे भी अपीयर करके एग्जाम दे सकते हैं अगले साल साइंस के साथ, नहीं तो आप अपनी स्ट्रीम चेंज करके ट्वेल्थ में दोबारा से कॉमर्स सब्जेक्ट्स लेके दोबारा से आप ट्वेल्थ कर सकते हैं। पर उससे पहले आप एक बार अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि आपका मन किन सब्जेक्ट्स में लगता है, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके पढ़ने पसंद हैं, और क्या पढ़कर क्या सब्जेक्ट्स जो हैं आपको अच्छे से समझ में आते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ बात सिर्फ साइंस या कॉमर्स पढ़ने की नहीं है, यहाँ बात ये भी है कि आप जो भी कुछ पढ़े आपको उसमें अपना फ्यूचर बनाना है। तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वही चीज हमारे को अपने लिए चुननी चाहिए जिसको करके हम जिंदगी भर खुश रहें। तो अगर आप कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर और उस फील्ड में उस पर्टिकुलर करियर पाथवे में आगे जाकर अगर आप खुश रह सकते हैं, तो एक बार आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए और आई एम श्योर वो आपकी बात को समझेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। पर बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। क्या आप मुझे अपने पेरेंट्स से भी बात करवा सकते हैं? मैं उनसे भी बात करती हूँ, कर सकती हूँ।
12: बिल्कुल मैम, मैं श्योर मैं कराऊंगा, पेरेंट्स से भी बात करूंगा मैम।
11: हाँ, आप मेरे को पेरेंट्स से बात करवाइएगा, आप दोबारा इसी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं।
10: गुड न्यूज टुडे से बातचीत में डॉक्टर नेहा शर्मा ने बताया कि कई बार उनके सामने ऐसे भी केस आए हैं जब बच्चे ने प्री बोर्ड में अच्छा किया लेकिन बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो घर वालों ने बच्चों की आलोचना शुरू कर दी जिसका असर बच्चे की मानसिक स्थिति पर पड़ा। ऐसे में डॉक्टर नेहा शर्मा ने कैसे बच्चे की मदद की, उन्हीं की जुबानी सुनिए।
11: ये बच्चा ट्वेल्थ का था और
13: रिजल्ट के बाद
11: की ये कॉल थी और बच्चे ने बहुत दुखी मन से बताया कि मैम मेरे प्री बोर्ड में मार्क्स बहुत अच्छे आए, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की पर जो मेरे रिजल्ट बोर्ड में मेरा एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया है और मुझे मालूम है कि मैं पेपर बहुत अच्छा करके आई हूँ। उसका कहना है कि मेरे 15-16 नंबर आए थियरी में, अब उसका कहना है कि 21 नंबर का तो मैं MCQ ही सही करके आई हूँ, तो 15-16 नंबर आने की तो बात ही नहीं बनती। और मेरे पेरेंट्स को जब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने पेपर अच्छे से किया था, पूरी तरह से पूरा पेपर कंप्लीट करके आई थी, तो वो उल्टा मुझे ही डांट रहे हैं कि नहीं तुम्हारा दिमाग तो पूरा टाइम मोबाइल में रहता था, तुम्हारा दिमाग तो पूरा टाइम दोस्तों के साथ बातें करने में रहता था। बल्कि बच्चा इस बात से भी परेशान है कि मेरे खुद के पेरेंट्स जिन्होंने मुझे दिन रात मेहनत करते हुए देखा वो मेरे साथ नहीं खड़े हो रहे हैं।
13: क्या गाइड किया मतलब आपने उसे?
11: हाँ बिल्कुल, पहले हम बात करेंगे कि जहाँ पर रिजल्ट की बात है, क्योंकि बच्चा हमारे को कॉल कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि CBSE क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसके बारे में उसे जानकारी मिले। तो सबसे पहले जहाँ पर आपके मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, CBSE रिजल्ट आने के तुरंत बाद पोस्ट एग्जाम फैसिलिटीज ओपन करता है जिसमें सबसे पहले आप अपने जो भी आपका पेपर है उसकी फोटोकॉपी मांग कर सकते हैं। उस फोटोकॉपी को आप जो मार्किंग स्कीम CBSE की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है और जो क्वेश्चन पेपर आपका आया वो भी वहां पर है, तो उससे मैच करके आप ये देख सकते हैं कि भाई आपका कहाँ पेपर ठीक था और कहाँ पर चीजें वैसी नहीं थी जैसा मार्किंग स्कीम के हिसाब से होना चाहिए। तो आप अपने पेपर की एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें आप अपने टीचर्स की भी मदद ले सकते हैं और उसके बेसिस पर आप CBSE को कह सकते हैं कि भाई मेरा ये पेपर ठीक था, आपकी तरफ से शायद कुछ आगे पीछे हो गया है, मेरे ये मार्क्स बनते हैं। CBSE आपको तुरंत उस चीज़ के मार्क्स देगा। और अभी रिसेंटली CBSE ने एक और नियम लगाया है कि अगर CBSE की गलती निकलती है तो जितना भी पैसा बच्चे को उस आंसर कॉपी को मंगवा लेने में और वो सारी जांच की प्रक्रिया में खर्च हो रहा है, जो उसे CBSE को देना पड़ रहा है, CBSE वो सारा पैसा बच्चे को वापस भी कर देगा।
10: बोर्ड एग्जाम के दौरान बच्चों के घर वालों की भूमिका भी काफी अहम हो जाती है, खासकर तब जब बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या फिर किसी सब्जेक्ट विशेष को लेकर बच्चा खासा परेशान है, तो ऐसे में बच्चे के माता पिता को क्या करना चाहिए? डॉक्टर नेहा शर्मा ने गुड न्यूज टुडे से बातचीत में ये भी बताया,
11: सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर पेरेंट्स की ही पड़ती है क्योंकि पेरेंट्स जो है
5: पेरेंट्स अपने से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों का सोचते हैं, उनकी परेशानी ये है कि चलो मेरे बच्चे के नंबर कम आए उसका उन्हें शायद उतना दुख नहीं होता, मेरे ताऊ जी के चाचा जी के बेटे की बेटे का नंबर ज़्यादा आ गए मेरे बच्चे से उससे ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। तो ये जो कंपैरिजन वाली बात आ जाती है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के अंदर एक ये भी होता है कि वो अपनी आशाएं अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों के ऊपर डालना चाहते हैं, तो जब वहाँ पर एक ब्रेक मिलता है उन्हें, वहाँ पर एक उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती, तो वो उस चीज़ में कहीं ना कहीं वो बौखला जाते हैं, और उस बौखलाहट में उनको खुद से ये समझ में नहीं आता कि इस वक्त जब बच्चे के लिए इतना सेंसिटिव टाइम है तो वो उस बच्चे की मदद करने की जगह अपना स्ट्रेस अपना जो प्रेशर है वो बच्चे को ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, जबकि इस वक्त एक परिवार के जैसे उन्हें साथ बैठना चाहिए, जो सपोर्ट CBSE प्रोवाइड कर रही है वो करना चाहिए। और चलिए मान लीजिए बच्चे का पेपर खराब हो गया, रिजल्ट खराब हो गया, तो ये पूरी जिंदगी की तो परेशानी नहीं है ना, ये जिंदगी की किताब का एक पन्ना भर है, पलट दीजिए नया पन्ना आ जाएगा, नई इबारत लिख लीजिए, एक बार फिर से अपीयर कर लीजिए उस एग्जाम में, CBSE आपको इम्प्रूवमेंट के मौके देता है।
10: आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चों के माता पिता दोस्त या रिश्तेदारों का दबाव, दूसरे बच्चे से तुलना या फिर अपनी अपेक्षा बच्चों पर थोपते हैं, इससे भी बच्चे पर असर पड़ता है। लिहाजा डॉक्टर नेहा शर्मा बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के माता पिता को इस बात से परहेज करने की सलाह देती हैं।
5: बच्चे ने कहा कि मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा मन इस सब्जेक्ट में लगता ही नहीं है, तो यहाँ पर फिर बच्चे को ही समझाया गया कि बेटा अब तुम 12th के पॉइंट पर हो, तुम्हारी 18 साल के आसपास उम्र होगी, तो अब तुम्हें अपने लाइफ के लिए कुछ स्टैंड लेने ज़रूरी हैं, तुम्हें एक बार अपने पेरेंट्स से बात करनी ही पड़ेगी कि तुम्हारा मन तुम्हारी जो दिमाग है वो किस डायरेक्शन में है, क्या तुम करना चाहते हो, क्या तुम बनना चाहते हो, क्योंकि अब ये सवाल तुम्हारी जिंदगी का है।
13: तो इस केस में आप लोग पेरेंट्स से बात नहीं करते?
5: हाँ, हम पेरेंट्स से भी बात करते हैं।
13: प्रॉब्लम तो पेरेंट्स में ही थी।
5: हाँ, पेरेंट्स से भी बात करते हैं, कई बार पेरेंट्स खुलकर बात करते हैं, कई बार पेरेंट्स हमारी ही डांट लगा जाते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको लगता है कि वो अपने बच्चे का भला हमसे बेहतर समझते हैं, तो ऐसे में हम डांट सुनने के बाद फिर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और आमतौर पर वो समझ भी जाते हैं।
13: किताबें उठाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने शायद कभी कोई एग्जाम पास ही नहीं किया लेकिन जिंदगी में बहुत अच्छा किया। हम ये नहीं कह रहे कि आपने बच्चों को पढ़ाएं ना, एग्जाम ना दिलवाएं, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेशराइज ना करें, लेकिन इतना कह रहे हैं कि आप एक एग्ज़ाम को एक छोटे से एग्ज़ाम की तरह लें, और अगर आपके बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो ये उसके लिए भी मुश्किल वक्त है, उसके साथ मजबूती से खड़े रहें। पेरेंट्स वैसे भी बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं, तो ये वक्त है जब आप अपनी दोस्ती को अच्छे से निभाएं। के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
9: और अब बात समंदर में कचरा निगलने वाली नाव की, जो कि सौर ऊर्जा से चलती है। मुंबई के समंदर में कचरा हटाने के लिए रिमोट कंट्रोल दो नौकाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया और कफ परेड के बदमार पार्क में तैनात मानव रहित ये बोट पानी की सतह से रोजाना लगभग 80 से 90 किलो तक तैरता हुआ कचरा इकट्ठा कर रही है। पूरे देश में पहली बार BMC की तरफ से उतारी गई इस कचरा नाव का मकसद समंदर को कचरा मुक्त बनाना है। मॉनसून के समय कई बार ऐसा देखा गया है कि हाई टाइड समुद्र के किनारे हजारों टन प्लास्टिक कचरा छोड़ जाता है, जिससे सबसे ज्यादा प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के टूटे सामान शामिल होते हैं, जो कि समुद्री तटों की खूबसूरती को खराब कर देते हैं। पर्यावरण को होने वाले इस नुकसान को रोकने के लिए BMC तकनीक के सहारे ये प्रयास कर रही है।
14: समंदर किनारे सपनों का शहर मुंबई, अरब सागर के किनारे बसा मुंबई सिर्फ एक महानगर नहीं है बल्कि ख्वाबों का शहर है, जिसके समुद्री तटों को साफ करने के लिए BMC नई रणनीति और मजबूत इरादों के साथ तैयार है। मुंबई अपनी चकाचौंध, खूबसूरत जुहू बीच, गिरगांव चौपाटी और ऊंची लहरों के लिए मशहूर है। हर साल हजारों लाखों लोग माया नगरी का रुख करते हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी तो है ही, बॉलीवुड और दूसरे कई ऐसे काम धंधे भी हैं जिसके लिए लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। इसी वजह से शहर की आबादी तेजी से बढ़ भी रही है। तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण की वजह से मुंबई में कचरा प्रबंधन आज एक गंभीर चुनौती है। जमीन से होता हुआ ये कचरा समंदर तक पहुंच जाता है, फिर भारी बारिश और हाई टाइड के दौरान ये कचरा गेटवे ऑफ इंडिया, कप परेड जैसे समुद्री किनारों पर जमा हो जाता है। समंदर की खूबसूरती पर दाग लगाने वाले कचरे में प्लास्टिक भी शामिल होता है, जिसको रोकने के लिए बीएमसी ने समंदर में बिना चालक वाली नौकाओं को उतार दिया है।
15: इस वक्त हम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया इलाके में हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं टूरिस्ट बोट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीएमसी के सामने एक चैलेंज है कि जो समुद्री तट है मुंबई का, उसके आसपास जो कचरा है उसे कैसे निकाला जाए। इसीलिए आप सामने जो देख रहे हैं एलिसियम, ये अनमैन्ड बोट है, इलेक्ट्रिक उस पर चलने वाली पावर पे, और ये आप कह सकते हैं ऐसी दो बोट, एक गेटवे ऑफ इंडिया पर और एक कफ परेड में बदवार पार्क पर लाई गई है बीएमसी की तरफ से। जो कन्वेयर बेल्ट ब्लू कलर का है, ये जो कचरा है वो पिकअप कर समुद्र से अंदर बोट में डालता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप कह सकते हैं कि बीएमसी ने इसीलिए शुरू किया है क्योंकि जो समुद्र के आसपास कचरा दिखता है उसे साफ किया जा सके।
14: विशेष तरीके से तैयार इस नाव में दो बैटरी लगी है जो सोलर पावर यानी सौर ऊर्जा से चार्ज होती है। 1 किलोमीटर के दायरे में रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होने वाली ये बोट कन्वेयर बेल्ट की मदद से समुद्र में फैले कचरे को इकट्ठा करती है।
16: एकदम इजी सिस्टम है, इसमें दो चीजें हैं, थ्रस्टर और कन्वेयर। स्टार्ट करने के लिए पहले इसको अपने को बैटरी लगाना पड़ता है, दो बैटरी है उसको। दोनों बैटरी लगाने के बाद, कनेक्ट करने के बाद वहां पे एक स्विच है, उसको ऑन करना है। बेसिकली हमारा एक टेस्टिंग रहता है डेली रूटीन का, उसमें हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद ये सब चीजें अटैच होने के बाद में थ्रस्टर चेक करते हैं। थ्रस्टर लगाने के बाद में हम लोग बोट स्टार्ट कर लेते हैं। फिर इसका राउंड अप कैसे कि आप जहाँ पे आपका गार्बेज है यहाँ पे ये बाय रिमोट ये बोट ऑपरेट किया जाता है।
15: ओके,
16: इसी के लिए उसका पर्टिकुलर रेंज दिया है 1 किलोमीटर का। तो ये रेंज से हम लोग बोट गार्बेज की तरफ ले जाते हैं, और ये जो कन्वेयर है वो कन्वेयर का जो फ्रंट बेस है वहाँ पे एग्जैक्टली कचरा कन्वेयर पे आके वो हॉपर में जमा हो जाता है।
14: बीएमसी की ओर से तैनात ये नावें बिना चालक के पानी की सतह से रोजाना लगभग 80 से 90 किलोग्राम तक तैरता हुआ कचरा निकालती हैं। इस दौरान ये पानी को प्रदूषित भी नहीं करती हैं।
16: बेसिकली अभी ये कैसे ये कॉन्सेप्ट अनमैन बोट का क्यों है कि यहाँ पे तीन चीजें प्रायोरिटी पे है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी, सेकेंड डिग्निटी है, और दूसरी बात में जीरो इमर्शन। जीरो इमर्शन यानी ये इलेक्ट्रिकल बोट है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको बोट को खाली चार्ज करना है, उसके बाद आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो सेकंड स्टेप है जहाँ पे जो कन्वेयर है, वो कन्वेयर में आपको जो गार्बेज है साइड गार्बेज पूरा कलेक्ट होता है। और सेकंड थिंग क्या होता है कि कोई कॉर्नर पे जो जगह रहेगी वहाँ पे ये इजिली जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस कन्वेयर
15: जी।
16: हाँ, सेकंड थिंग फिर ये सब इसमें जमा हो जाता है, सब गार्बेज पूरा इसमें जमा हो जाता है। और इसका जो रेंज है वो जो रेंज है 1 किलोमीटर का है, और इसका जो हॉपर का कैपेसिटी है 800 से 1000 किलो तक है। और ये मिनिमम आप गेटवे का अगर कचरा देखेंगे, जो गार्बेज देखेंगे, तो उसका 200 से 400 तक उसका लिमिट है। बदवार पार्क का है वो आपका 150 से 250 तक जाता है।
14: समंदर किनारे कचरे में सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है, जिनमें प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बॉटल्स और प्लास्टिक के टूटे सामान शामिल होते हैं। दरअसल लोग प्लास्टिक की बॉटल खरीद कर पानी पीते हैं और उसे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। प्लास्टिक पैक्ड चीजें खरीद कर खाते हैं और फिर खाली प्लास्टिक पैकेट को फेंक देते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, नदियों से लेकर समंदर तक, लोगों का यूज किया गया कचरा प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसको रोकने का काम बीएमसी कर रही है।
15: तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से इनोवेशन किया गया है समुद्र में साफ सफाई हो सके, उसमें किसी तरह का ह्यूमन आप कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसीलिए ये अनमैन्ड बोट्स बैटरी ऑपरेटेड जो है वो चलाई जा रही है। जो भी वेस्ट जनरेट होता है, काफ़ी वेस्ट जनरेट होता है क्योंकि टूरिस्ट एरिया, टूरिस्ट मूवमेंट जो है वो हज़ारों की तादाद में रहती है गेटवे ऑफ इंडिया पर, और उसके लिए ये पूरा सिस्टम जो है वो बीएमसी की तरफ से डिप्लॉय किया है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख।
9: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है,
18: कम से कम लोगों,
19: क्या बृहस्पति महिलाओं के विवाह कराने से संबंध रखता है? क्या बृहस्पति महिलाओं के वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है? बृहस्पति का महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
20: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
21: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
22: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
23: कल बढ़ रही है,
24: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
25: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
26: और दुर्भाग्य कहता है
27: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
25: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
28: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
18: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
24: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
26: और दुर्भाग्य कहता है
27: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
25: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे,
18: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति ग्रह महिलाओं के जीवन से, उनके विवाह से और उनके वैवाहिक जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है। बृहस्पति का महिलाओं के जीवन और विवाह से क्या संबंध है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की,

किसी का भी विवाह हो, महिला का हो या पुरुष का हो, विवाह के मामले में बृहस्पति की स्थिति देखना बहुत आवश्यक होता है और महिलाओं के विवाह की और वैवाहिक जीवन की सारी जिम्मेदारी बृहस्पति से तय होती है। तो वैसे तो बृहस्पति पुरुष के विवाह पर भी असर डालता है, लेकिन महिलाओं के विवाह के लिए और महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंता दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, करियर में कुछ बदलाव होगा, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि किसी बालिका के, किसी महिला के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित करता है। देखिए, अगर बृहस्पति अच्छा नहीं है तो बिना बृहस्पति के पहले नंबर पर तो महिलाओं का विवाह होगा ही नहीं और आगे चलेगा भी नहीं। बृहस्पति कमजोर है तो विवाह होने में बहुत सारा और बहुत ज्यादा विलंब होता है, और अगर बृहस्पति खराब है तो विवाह में विलंब तो होता ही है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। अगर किसी महिला का बृहस्पति ज्यादा खराब है तो विवाह होना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बृहस्पति दूषित है राहु से या केतु से तो ये महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है। बृहस्पति जरा भी ठीक है किसी महिला की कुंडली में तो वो विवाह को और वैवाहिक जीवन को ठीक बनाए रखता है। किसी भी महिला का बृहस्पति अगर जरा सा भी बेहतर हो तो विवाह समय पर हो जाता है और वैवाहिक जीवन

कुल मिला जुलाकर ठीक बना रहता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो ये बात आपने समझ ली कि महिलाओं के विवाह होने में और विवाह के चलने में सबसे बड़ी भूमिका होती है बृहस्पति की। तो अगर आप महिला हैं और आप चाहती हैं कि आपका विवाह जल्दी हो जाए तो क्या उपाय करें, बृहस्पति को कैसे बेहतर करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके जल अर्पित करिए। सुबह और शाम 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करिए, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप करें और बृहस्पति से लाभ लेने के लिए अपना आहार सात्विक रखें, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। सप्ताह में एक बार किसी धर्म स्थान पर जा करके, किसी मंदिर में जा करके प्रार्थना उपासना जरूर करें, बृहस्पति अनुकूल होंगे और आपका विवाह शीघ्र होगा। अगर आप महिला हैं और आप चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहे तो वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए महिलाएं क्या उपाय करेंगी? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए और ज्यादा चाहें तो और ज्यादा जप भी कर सकती हैं। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगुली में इंडेक्स फिंगर में धारण करिए
और नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते रहिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। लेकिन इस बात को जरूर याद रखिए कि अगर आप बृहस्पति को अनुकूल करना चाहती हैं तो आहार को सात्विक रखिए, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, आंखों की समस्या का ध्यान दें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, खान पान में सावधानी रखें, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने आपको बताया कि महिलाओं के विवाह से और उनके वैवाहिक जीवन से बृहस्पति का क्या संबंध है। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अपने घर में जंगल या जंगली जानवरों के चित्र ना लगाएं। अगर आप अपने घर में जंगल या जंगली जानवरों के चित्र लगाते हैं तो इससे घर में अशांति और जीवन में संघर्ष पैदा होता है। अब जान लेते हैं सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए और घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
4: टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: और जैसा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से विदेश यात्रा के बजाय अपने देश को एक्सप्लोर करने की अपील की थी, तो जीएनटी भी आप सभी से अपील कर रहा है कि आप भी अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें या वीडियोस हमें भेजो ताकि हम आपके उन वीडियोस को दिखाएं। हमारे दर्शक भी बड़े ही उत्साह के साथ अपनी जगहों के खूबसूरत वीडियोस भेज रहे हैं। तो चलिए आज आपको उत्तरकाशी के उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में व्लॉगर बनी एक दर्शक की जबानी सुनाते हैं कि क्यों आपको उत्तराखंड के इस बेहद खूबसूरत और धार्मिक शहर को एक्सप्लोर करना चाहिए।

0: स्वागत है आपका गुड न्यूज चैनल में। मैं गीता सेमवाल, मैं बुलाना चाहती हूँ आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। हल्की हल्की आजकल ना शाम के टाइम पे ठंड महसूस हो रही है। वाह, कितने सुंदर नजारे हैं, कितनी सुंदर प्रकृति की यहाँ पे खूबसूरती है। आपको ना बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़, चीड़ का घना जंगल, ये सब चीज देखने को मिलता है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में दो धाम है, श्री यमुनोत्री धाम और श्री गंगोत्री धाम। तो आजकल ना काफी अच्छी यात्रा चल रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी यही कहा है कि आप विदेशों में घूमने न जाके भारत की जो जगह है, पर्यटक स्थल है, जैसे उत्तराखंड में चार धाम है, श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, आप इन जगहों पे आए। इसके अलावा भी उत्तराखंड में न कहीं आपको पर्यटक स्थल देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आजकल यमुनोत्री धाम में और श्री गंगोत्री धाम में, यानी चारों धाम में काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। जब हमारे गांव मुखवा में मोदी जी आए थे तो उस टाइम जो ये यात्रा चल रही है, अब ये ग्रीष्म काल में न होते हुए अब ये यात्रा शीत काल में भी चलती है, यानी 12 महीना यात्रा चलती है। तो माननीय मोदी जी ने घाम तापो पर्यटक इसका नाम दिया है। मुखवा के सामने धराली है, हरसिल है, बगोरी है। और अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं तो यहाँ पे ना ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए कई जगह है, जैसे दयारा बुग्याल है, गौमुख ट्रैक है, सात आठ ट्रैक है, ऐसे कई अन्य ट्रैक है। अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप शीतकाल में यात्रा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उस टाइम तो और ज़्यादा खूबसूरती आपको देखने को मिलती है। क्योंकि हरसिल में जो है धराली, मुखवा में सेब, राजमा और उसके साथ साथ खुमानी हो गया, नाशपाती हो गया, ये भरपूर मात्रा में आपको देखने को भी और खाने को भी मिलती है। और इसी के साथ साथ एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि वेडिंग डेस्टिनेशन है, जैसे कि त्रिजोगी नारायण है और उत्तरकाशी में बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में है, श्री गंगोत्री धाम में गंगा मैया जी के मंदिर में है, और गंगा मैया जी का जो शीतकालीन प्रवास है मुखवा, वहाँ पे आप ना शादी करवा सकते हैं और इन जगहों पे ना शादी होती है। तो आइए ना श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम और गंगा मैया जी के शीतकालीन प्रवास मुखवा उत्तरकाशी में आपका स्वागत है।
1: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें, अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई भी खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा, बनाइए ब्लॉग और हमें इस नंबर पर भेज दीजिए। नंबर है 7303409922। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस वीडियो को जीएनटी दिखाएगा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट
4: आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायु अस्त्र वन का सफल परीक्षण, 10 किलो वॉरहेड के साथ 100 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना। सेना की स्ट्राइक और निगरानी क्षमता में होगा इजाफा। डिफेंस और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की लंबी छलांग, प्रोजेक्ट सबल के तहत नोएडा की हेवी लिफ्ट ड्रोन कंपनी को मिला 30 करोड़ का फंड, सैन्य ऑपरेशन के साथ आपदा राहत में मिलेगी मदद। अमेरिका में हो रहे बैटल इन द बे एक्सरसाइज में पहली बार भारतीय सेना ने की शिरकत, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और ऊंचे दुर्गम इलाकों में युद्धाभ्यास, मजबूत सुरक्षा सहयोग के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन, पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज लकी ड्रॉ से हुआ चुनाव, पवित्र यात्रा के लिए जून से अगस्त के बीच 20 जत्थों में रवाना होंगे यात्री। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी दिख रहा है भीषण गर्मी का असर, हिमाचल के ऊना में 44 तो शिमला में 30 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा, अगले दो दिनों में बारिश के आसार। एआई तकनीक से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रेल मंत्री की अपील, यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहे मुसाफिर, हेल्पलाइन नंबर 139 पर दिए संदिग्ध की जानकारी। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना भी जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा देवभूमि में द्वितीय केदार मध्य महेश्वर के कपाट खुलने की भी है।
6: उत्तराखंड में पंच केदार में से द्वितीय केदार मध्य महेश्वर धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ परंपरा के अनुसार खुल गए। भगवान मध्य महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली की सीमान गांव में सुबह आरती उतारे जाने के बाद वो मध्य महेश्वर धाम के लिए रवाना हुई। सुबह 11 बजे के आसपास डोली धाम पहुंची और वहां मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद भगवान मध्य महेश्वर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ भक्तों के जयकारों के बीच में खोल दिए गए। विशेष पूजा अर्चना के बाद भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। मध्य महेश्वर धाम में भगवान शिव के मध्य भाग यानी नाभि की पूजा होती है। केदार घाटी के लोग भगवान मध्य महेश्वर को न्याय के देवता के रूप में पूजते हैं। उत्तराखंड में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से यहां श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। पंच केदारों में से एक रुद्रनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुले और उसके बाद से लगातार यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। यहां पहुंचकर भक्त भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। रुद्रनाथ धाम पहुंचने का रास्ता अत्यंत कठिन है, घने जंगलों, ऊंची चोटियों और मैदानों से गुजरकर यहां पहुंचना पड़ता है, लेकिन श्रद्धालुओं में यहां की यात्रा को लेकर उत्साह इतना है कि वो बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। रुद्रनाथ धाम में भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर प्रकृति की गोद में बसा है, यहां की दिव्यता और शांति दोनों श्रद्धालुओं को बहुत पसंद आती है। रामनगरी अयोध्या में भव्य आयोजनों की कड़ी में एक विशेष आयोजन भी जुड़ने जा रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्थित मां जगदम्बा मंदिर के शिखर पर 29 मई की शाम 5 बजे भव्य ध्वजारोहण होगा। विशेष बात यह है कि पहली बार यहां महिला संतों और मातृशक्ति के हाथों से कार्य संपन्न होगा। इसमें 3500 से ज्यादा मातृशक्तियां शामिल होंगी। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी की महिला कमांडो, मंदिर परिसर में कार्यरत महिला कर्मचारी, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति इकाई और अलग अलग धार्मिक सामाजिक संगठनों की महिलाएं इस दिव्य आयोजन की साक्षी बनेंगी। इसके लिए मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। इस अवसर को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं की व्यवस्थित व्यवस्था भी की जा रही है। श्रद्धालुओं की अपार आस्था की एक तस्वीर राजस्थान के मेवाड़ स्थित श्री सांवलिया सेठ मंदिर में देखने को मिली। सांवलिया जी निवासी बाल मुकुंद तिवारी के परिवार ने ठाकुर जी को 197 ग्राम वजनी चांदी से बना हार यानी दिल भेंट किया। ये भेंट केवल चांदी को लेकर महत्वपूर्ण नहीं बल्कि आस्था विश्वास और भगवान के प्रति अटूट आस्था का भावनात्मक प्रतीक बन गई। दरअसल करीब 2 वर्ष पूर्व बाल मुकुंद तिवारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। हार्ट अटैक आने के बाद परिजन उन्हें उपचार के लिए पहले उदयपुर और फिर गुजरात के अहमदाबाद लेकर पहुंचे, जहां उनका हार्ट बाईपास ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान परिवार ने भगवान श्री सांवलिया सेठ से मन्नत मांगी थी कि सर्जरी सफल रहने पर ठाकुर जी को चांदी का हार्ट अर्पित करेंगे। मन्नत पूरी होने के बाद परिजन और रिश्तेदार बैंड बाजों के साथ घर से चांदी का हार्ट लेकर मंदिर के लिए रवाना हुए। पूरे रास्ते सांवलिया सेठ के जयकारे लगाते और भजनों पर झूमते हुए सब मंदिर पहुंचे। फिर वहां इस विशेष भेंट को सौंप दिया गया। एक से बढ़कर एक खूबसूरत फूलों के गलियारे, सुंदर सुंदर फूलों का दीदार कर मंत्रमुग्ध होते लोग। ये तस्वीरें तमिलनाडु के कोडाई कनाल की हैं, जहां ब्रायंट पार्क में 63वें फ्लावर शो और समर फेस्टिवल का आयोजन हुआ। ऑर्किड, डेलिया, गुलाब, गुलदाउदी जैसे सुंदर फूल ही नहीं बल्कि यहां फूलों से बनी तरह तरह की आकृतियां लोगों को खूब आकर्षित करती हैं। फूलों से बने मंदिर, तोरण द्वार और पुल के साथ ही कई दिव्य आकृतियां यहां आने वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। यहां मई के महीने में इस फ्लावर शो और समर फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसमें पारंपरिक लोक नृत्य, संगीत कार्यक्रम, बागवानी प्रतियोगिताओं के साथ कोदाई झील पर बोट रेस समेत दूसरी पर्यटन गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं।
4: और अब बात करते हैं मौसम की। इन दिनों मौसम का मिजाज कहीं नरम तो कहीं बेहद गर्म है। देश का ज्यादातर मैदानी हिस्सा 40 से 45 डिग्री का टॉर्चर झेल रहा है, तो वहीं कश्मीर के ऊपरी इलाकों में मौसम कूल है, जबकि मैदानी इलाकों में गर्मी से लोग हाल बेहाल है। जबकि अभी नौतपा की शुरुआत भी नहीं हुई है, लिहाजा इस भीषण गर्मी से बचने के लिए हर कोई उपाय कर रहा है। यहां तक कि इस भीषण गर्मी से भगवान और जानवरों को भी बचाने के लिए उपाय करना पड़ रहा है।

0: देश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है और कुछ जगहों पर तापमान 48 डिग्री पहुंच गया है। वहीं कश्मीर और लद्दाख के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है। पिछले 12 घंटों के दौरान जो जिला बांदीपुरा और द्रास जैसे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। मई की चिलचिलाती गर्मी में मैदानी इलाकों में जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं ऊंचे पहाड़ों पर प्रकृति ने सबको चौंका दिया है। जोजिला पास के पास मीना मार्ग और सोनमर्ग इलाके में ताजा बर्फबारी हुई है। जब मैदानों में 47 डिग्री वाले पारे से पसीना टपक रहा हो, तो कश्मीर के जोजिला की ये तस्वीर ठंडक का एहसास कराती है। मई में जोजिला को कुदरत ने सफेद सोने का तोहफा दिया है। उसके बाद ये इलाका जन्नत सा नजर आ रहा है। ताजा बर्फबारी के बाद मई के दिनों में मौसम यहाँ जनवरी वाला फील दे रहा है। बांदीपुरा जिले के ऊंचे इलाकों, विशेष रूप से गुरेज घाटी और तुलैल सेक्टर में ताजा बर्फबारी हुई है। घाटी की इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने के लिए देश के कोने कोने से सैलानी पहुंच रहे हैं। पर्यटक यहाँ की कड़ाके की ठंड, बर्फ से ढके रास्तों और खूबसूरत नजारों के बीच तस्वीरें खींचते नजर आ रहे हैं। कई पर्यटकों ने इसे मैदानी इलाकों की जानलेवा गर्मी से बेहतरीन और सुकून देने वाली राहत बताया है।
1: हम लोग जयपुर राजस्थान से आए हैं और वहाँ पे बहुत गर्मी है। अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है। आने वाले टाइम पे वार्निंग भी दी गई है कि 25 मई से 2 जून तक बहुत ज्यादा हीट वेव्स आने वाली है। घर में रहें, सब लोगों को बोला गया है। बट मैं बोलना चाहूंगी, क्यों आपने घर में रहना है? आप कश्मीर आए, आप अपना ट्रिप प्लान करें, फैमिली को लेकर आए, दोस्तों को लेकर आए, यहाँ की ब्यूटी को देखें, स्नो में खेलें, कितना मजा आएगा आपको भी।
2: वहाँ पर हीट वेव 240 प्लस है और वहाँ बहुत ही गर्मी है। मतलब इंसान नोतापा बोलते हैं उसको इंग्लिश हिंदी में। तो वहाँ पर इस टाइम पे 25 से लेके 2 जून तक नोतापा चलेगा, यानी बहुत ही ज़्यादा गर्मी।
3: वहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, जैसे सूरज सर पे हो और बहुत आग बरस रही हो, ऐसा माहौल है वहाँ का। और मैं कश्मीर में यहाँ पर आके मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। बहुत कूल मौसम और बहुत प्यारा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर।
0: द्रास में हुई ताजा बर्फबारी ने तो दिसंबर और जनवरी को भी मात दे दिया है। यहाँ भारी बर्फबारी की वजह से पेड़ पौधे जम गए। यहाँ की भारी बर्फबारी की वजह से धरती और आसमान आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ऊंचे इलाकों में बर्फ भाप बनकर उड़ती दिखाई दे रही है। करगिल और आसपास के इलाकों में मई में हुई बर्फबारी को लेकर हैरानी जताई जा रही है। श्रीनगर लेह हाईवे, जिसे ताजा स्नोफॉल के बाद बंद करना पड़ा है, ये बर्फ कुछ ही घंटों में बरस गई है, वो भी सामान्य नहीं। कुल मिलाकर कश्मीर में पिछले कुछ घंटों में बदले मौसम ने माहौल बदल दिया है। वहीं श्रीनगर का तापमान 15 से 16 डिग्री के बीच बना हुआ है।
4: पूरे देश में गर्मी से हाहाकार मची हुई है। तापमान जो है नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, झुलसती गर्मी है। और वहीं आपको एक अलग नजारा दिखाते हैं। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है धरती पे, बिना वजह नहीं। क्यों कहा जाता है? ये इस वजह से क्योंकि अभी, जैसे मैंने कहा कि जहां पारा जो है आसमान छू रहा है देश के बाकी हिस्सों में, बहुत ज्यादा गर्मी है। कश्मीर जो है प्लेजेंट है, बहुत ठंडा इस वक्त वातावरण है। बादल और हालात ये हैं कि सोनमर्ग से ऊपर जब आप द्रास की तरफ जाते हैं या फिर जोजिला को क्रॉस करते हैं, तो उस पूरे रास्ते पे जो है कल शाम से बर्फबारी हुई है और उसका इम्पैक्ट जो है एक एसी इम्पैक्ट हुआ है, जहां जो प्लेन्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा अभी तापमान गिरा है। तकरीबन 10 से 12 डिग्री तापमान गिरा है। नॉर्मल टेम्परेचर इस वक्त कश्मीर का 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए, लेकिन अभी 16 से 18 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं जो कि मेरठ से आए हैं और इनसे सीधा पूछेंगे। आप दिल्ली से हैं? आप मेरठ से हैं? अच्छा, आप फैमिली है। ये बताइए कि अभी आप बात करते हैं, गर्मी कितनी है?
5: गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा व्यू है।
4: नहीं, दिल्ली में,
5: दिल्ली में तो बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन यहाँ के बहुत अच्छा और सुकून लगा।
0: इन तस्वीरों को देखकर आप धोखा खा सकते हैं। फील तो पहाड़ों वाला है, लेकिन असल में ये मैदानी इलाका है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के फन ब्लास्ट की है। यहाँ गेमिंग और मनोरंजन का फुल पैकेज है। तपती गर्मी में ठंड का एहसास करने के लिए लोग परिवार सहित यहाँ पहुँच रहे हैं। पूरे सेंटर को पहाड़ों जैसे बर्फ वाला बनाया गया है, जिसमें बच्चों से लेकर युवा जमकर लुत्फ उठा रहे हैं।
6: अभी गर्मी बहुत सारी है, इसीलिए हमने यही प्लेस सिलेक्ट करी, फन ब्लास्ट।
7: बहुत सारी हॉलीडेज है, गर्मी है, इसलिए फन ब्लास्ट में एंजॉय करने के लिए आए हैं हम। जाते हैं और 3 साल से सलिंग आते हैं यहाँ।
0: जहाँ कश्मीर में मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल है, वहीं जम्मू में पारे का तेवर तल्ख है। हालात ये है कि यहाँ का तापमान 42 डिग्री को पार कर गया है, लिहाजा लोग दिन में घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं इस बीच चिड़ियाघर में रहने वाले जीव जंतु और जानवरों को गर्मी से बचाने को लेकर खान पान से लेकर उनके रहने तक में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। जानवरों के बाड़े में पंखे, कूलर और पानी के इंतजाम किए गए हैं, ताकि जानवरों को गर्मी में दिक्कत ना हो। वहीं कश्मीर से दूर मैदानी इलाकों में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आसमान से आग बरस रही है और गर्मी के बीच खुद को ठंडा रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी है, जहां भगवान को गर्मी से बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। राम जानकी मंदिर में गर्मी से बचने के इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक मौसम का ये मिजाज यूं ही बना रहेगा। फिलहाल तो

0: ऐसे में हेमकुंड साहिब में मौसम बहुत ही सुहावना है। हालांकि ठंड यहां पे जरूर है, लेकिन अब मौसम ठीक हो चुका है। ऐसे में अब यात्रा तैयारियां पूरी हो चुकी है।
1: हेमकुंड पर्वत है जहां, सपत स्निंग शोभित है तहां। इसके बाद 23 मई को सुबह 10 बजे हेमकुंड साहिब पहुंचकर गुरुद्वारे के कपाट खोले जाएंगे और सबसे पहले सचखंड से गुरु ग्रंथ साहिब को पंच प्यारों की अगुवाई में लाकर दरबार साहिब में विराजमान किया जाएगा। इसी के साथ हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी अपार बख्शिश हुई है। कल 2026 की यात्रा का शुभारंभ ऋषिकेश गुरुद्वारा से हुआ है और 22 तारीख को सुबह गोविंद घाट से पांच प्यारों की अगुवाई में जथा गोविंद धाम के लिए रवाना होगा और इस यात्रा में लगभग 3,000 से 3,500 तक यात्री पहुंचने की उम्मीद है। बहुत सारे यात्री गोविंदगढ़ पहुंच चुके हैं और बाकी आ भी रहे हैं। आशा करते हैं कि इस साल जैसे सभी गुरुद्वारों में रेनोवेशन का भव्य काम हुआ है, वेदर भी साफ है, वो यात्रियों के लिए यात्रा सुगम होगी, ऐसी कामना गुरु के चरणों में।
1: धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि ये स्थान सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी की तपोभूमि है। दसम ग्रंथ में भी इस पवित्र स्थान का जिक्र मिलता है। यही कारण है कि हर साल हजारों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर यहाँ मत्था टेकने पहुँचते हैं। हेमकुंड साहिब पहुँचकर श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति और दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
4: कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 135 अंकों की गिरावट के साथ 75,183 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएससी निफ्टी 4 अंक लुढ़क कर 23,654 पर बंद हुआ। गुरुवार को एक बार फिर गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 600 रुपए बढ़कर 1,65,500 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी रिकवरी देखी गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,000 रुपए बढ़कर 2,71,000 रुपए पहुँच गयी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक संकट सुधरने के संकेत के बाद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में सुधार देखने को मिला। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 49 पैसे मजबूत होकर 96.37 पर बंद हुआ।
3: न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण, 10 किलो वॉरहेड के साथ 100 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना, सेना की स्ट्राइक और निगरानी क्षमता में होगा इजाफा। डिफेंस और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की लंबी छलांग, प्रोजेक्ट सबल के तहत नोएडा की हेवी लिफ्ट ड्रोन कंपनी को मिला 30 करोड़ का फंड, सैन्य ऑपरेशन के साथ आपदा राहत में मिलेगी मदद। अमेरिका में हो रहे बैटल इन द बे एक्सरसाइज में पहली बार भारतीय सेना ने की शिरकत, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और ऊंचे दुर्गम इलाकों में युद्धाभ्यास, मजबूत सुरक्षा सहयोग के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर। न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
6: इस वीडियो वीडियो को देखने के बाद आपको ये मानना पड़ेगा कि किसी भी पुल को पार करने के लिए कई और तरीके भी हो सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पुल को पार करने के लिए ब्रिज के ऊपर से जाने के बजाय उसके नीचे से उछल कूद करते हुए गुजर रहा है। शख्स पुल के नीचे लगे खम्भों और पोल को पकड़कर

झूलते हुए ब्रिज को पार कर रहा है। वीडियो में शख्स जितनी आसानी से पुल को पार करता दिख रहा है, उतना आसान ये काम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस शख्स की फिटनेस वाकई कमाल की है। शख्स पुल को न सिर्फ पार करते हुए जाता है, बल्कि वो उसी पुल पर ठीक वैसे ही लटकते हुए वापस भी आता है। जंगल सफारी के इस वीडियो को देखकर यूजर्स हैरान है। वीडियो में एक जंगल नजर आ रहा है। जीप में बैठी लड़की ने जंगल सफारी के दौरान वीडियो बनाया और तभी नजर आता है कि एक हाथी उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। हाथी जब काफी करीब आता है तो लड़की डर जाती है और जीप चालक को गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगती है। कुछ सेकंड के लिए हाथी रुक जाता है, मगर फिर उनके पीछे आने लगता है। जीप में मौजूद आदमी भी गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगता है।

0: वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मामला एक डोसा दुकानदार और उनके सबसे अनोखे कस्टमर से जुड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यस्त सड़क के किनारे एक डोसे की दुकान है, जहां तवे से ठीक पास एक सांड बड़े ही धैर्य के साथ खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसे दुकान का पूरा मेन्यू जबानी याद है और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। आमतौर पर दुकानदार जानवरों को भगा देते हैं, लेकिन इस डोसे वाले ने तो जो किया उसने सभी का दिल जीत लिया है। आप देखेंगे कि दुकानदार ने बड़े ही प्यार से तवे पर मक्खन मारकर एक बढ़िया कुरकुरा डोसा तैयार किया और सीधे अपने इस चार पैरों वाले स्पेशल गेस्ट को परोस दिया। सांड ने भी बड़े चाव से डोसा खाया और अपनी पूंछ हिलाकर वेंडर का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर दो बहनों ने इजिप्ट लीबिया के बॉर्डर पर बने अपने छोटे से घर की एक झलक लोगों को दिखाई है। झोपड़ी जैसा ये घर देख लोगों को लगा कि बहनें करीब हैं और मुश्किल में अपने दिन गुजार रही हैं। लेकिन जब घर को अंदर से देखा गया तो सब दंग रह गए। घर के अंदर आधुनिक और लग्जरी लाइफ स्टाइल की झलक देखने को मिली। कमरे में सॉफ्ट लाइटिंग, कम्फर्टेबल सोफा, बड़े बड़े बेड, फुली इक्विप्ड किचन, वाईफाई, एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं और खूबसूरत डेकोरेशन सब कुछ यहां मौजूद थी। बहनों ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल से घर तैयार किया है, जिसमें मिट्टी और नमक का इस्तेमाल किया गया है।
1: इस पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर की जा रही एक नई व्यवस्था की। इस व्यवस्था के तहत अब डिग्री कोर्स में पढ़ाई करने वाले छात्र यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेज में अब विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और राज्य विश्वविद्यालयों की चांसलर आनंदीबेन पटेल ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए। राज्यपाल के इस फैसले का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में अनुशासन, समानता और एक रूपता को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। उनके इस कदम से राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थी एक जैसे कॉलेज यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। अभी तक यूनिफॉर्म का नियम कुछ महिला कॉलेजों और सेल्फ फाइनेंस कोर्स तक सीमित था, लेकिन अब इसे पूरे राज्य में विस्तार देने की तैयारी है। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों को अब स्कूल छोड़ने के बाद यूनिफॉर्म पहनने से छूट नहीं मिलेगी। अब तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य करने वाला कोई नियम नहीं था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म लागू की जाएगी। इस फैसले को लेकर हमने लखनऊ में डिग्री कॉलेज के छात्रों से बात की और उनकी राय जानी।
2: वैसे तो ये विश्वविद्यालयों की मतलब छात्रों की अपनी सोच के खिलाफ की चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग छात्र हैं और हम लोग की अपनी विचारधाराएं हैं, या ड्रेस कोड अप्लाई करना तो हमारी बातों को चीजों को दबाना है, इसको हम मानते नहीं है ना, इसको एक्सेप्टेंस देते हैं कि किसी प्रकार भी किसी भी विश्वविद्यालय में लगा जाए, क्योंकि हम लोग एक स्कूल से निकलकर अपने विश्वविद्यालय में जाते हैं जो कि हम लोग काफी बड़े हो चुके हैं। अभी भी एक विश्वविद्यालयों में भी पढ़कर हम लोग केवल स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म ये सब पहनेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। ये हमारी आजादी को लेकर है, हम इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी पहन सकते हैं, ये किसी का दबाव बनाना हमारे लिए उचित नहीं है।
3: ड्रेस कोड होना इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि मतलब जरूरी नहीं कि सबके पास हो तो सब लोग डेली चेंज करके पहने। हाँ, ड्रेस कोड से ये कि सब एक जैसे दिखते हैं, कोई किसी से मतलब ये नहीं होता कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, सब एक जैसे दिखते हैं। बट उसके अलावा अगर देखा जाए तो पहले फैसिलिटीज पे ध्यान देना चाहिए कि कॉलेज की फैसिलिटीज सही है या नहीं, बच्चों के लिए पीने का पानी है, क्लासरूम की टेबल्स हो गई, डेस्क हो गई, ये सारी चीजें सही है कि नहीं, फैन वगैरह चल रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली, पहले उन पे ध्यान देना चाहिए। ड्रेस कोड भी एक अच्छी चीज है, बाद में हम उस पर भी ध्यान दे सकते हैं, बट फर्स्टली हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो कि फैसिलिटीज हैं कॉलेज की। अगर यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं बच्चे तो उनको अच्छी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग ही वो आना चाहेंगे। और ड्रेस वाला भी ठीक है क्योंकि सब लोग एक जैसे दिखेंगे, यूनिटी होगी।
4: ड्रेस कोड वैसे कॉलेजेस जो होते हैं, कई सारे कॉलेज में ड्रेस कोड होता ही है। ये नेशनल पीजी कॉलेज है यहाँ लखनऊ में, और सिया कॉलेज और ये केकेसी सब कॉलेजेस में पहले से ड्रेस कोड है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी अगर ऐसी यूनिवर्सिटी बनती है तो ये मतलब जहाँ पे ड्रेस कोड लागू होता है पहली यूनिवर्सिटी होगी, क्योंकि दूसरी जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, AMU हुई या BHU हुई, DU, JNU, जामिया, कहीं पर भी ड्रेस कोड लागू नहीं है। तो ऐसे मतलब आम छात्रों के लिए एक ये विश्वविद्यालय परिसर की बात करें तो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से छात्र रहते हैं। छात्रों को मर्जी का पहनने का अधिकार, मर्जी का खाने का अधिकार होना ही चाहिए, ये लोकतंत्र में सामान्य सी बात है। अब चूंकि अगर यूनिवर्सिटी में भी बच्चों पर ऐसे थोपा जाएगा कि आप यही ड्रेस पहन के आएंगे तो ये एक तरीके से मतलब उनके मौलिक अधिकारों का उनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर देने जैसा भी होगा। लेकिन अगर ऐसा किया जा रहा है, अगर प्रशासन को इसमें कुछ अच्छा दिख रहा है, कुछ सकारात्मक सोच के ला रहे हैं, तो अब जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा।
5: ये डिसीजन अपने आप में मैं मनमाना देखता हूँ, क्योंकि जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और जो स्कूल्स में पढ़ते हैं जिनके ऊपर ड्रेस कोड लगता है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क इस बात का है कि वो लोग, हम लोग वोटर हैं, देश में सरकार चुनते हैं और उन लोग का इसकी आधिकारिकता नहीं है। तो जो देश में सरकार चुन सकता है उसको कम से कम मैं माननीय राज्यपाल महोदया से ये गुजारिश करूंगा कि कम से कम उसको ये मत सिखाइए कि उसको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से जब वो राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें चुन सकता है तो अपने लिए ड्रेस भी चुन सकता है। दूसरा बात स्पष्ट है कि ये हमारे पहनावे के अधिकार पे सीधा हमला है। आपको ये नहीं करना चाहिए था। कारण ये है कि हम क्या पहन के आते हैं क्या नहीं पहन के आते हैं, बहुत बार आप देखते होंगे सुनते होंगे कि ड्रेस कोड कई बार अपनी भावनाएं व्यक्त करने का एक तरीका होता है। हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है हम स्वयं तय करते हैं, ये कोई और क्यों तय करेगा।
1: बॉबी देओल की मुख्य भूमिका वाली फिल्म बंदर का ट्रेलर रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चले फिल्मी मोड पर।
6: बॉबी देओल स्टारर फिल्म बंदर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ये ट्रेलर एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो ट्विस्ट, बोल्ड डायलॉग्स, कमाल की परफॉर्मेंस और हल्के फुल्के ह्यूमर से भरी हुई है। फिल्म बंदर के साथ बॉबी देओल और डायरेक्टर अनुराग कश्यप पहली बार साथ काम कर रहे हैं। इस फिल्म में बॉबी देओल के अलावा सानिया मल्होत्रा, राजवी शेट्टी, सपना पब्बी, सबा आजाद, रिद्धि सेन, जितेंद्र जोशी, इंद्रजीत और नागेश भोसले जैसे कलाकार भी हैं। ये फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
7: She's a stalker, sir. मुझे बार बार मैसेज करती रहती थी वो।
8: स्वागत है तुम्हारा सार्वजनिक गुनेगारी केंद्र में।
9: मुझे अब तक इतना ही समझ में आया है कि हम खुद ही अपनी सर्कस के बंदर हैं।
6: काजल अग्रवाल, श्रेयस तलपड़े स्टारर फिल्म द इंडिया स्टोरी का मेकर्स ने नया पोस्टर जारी किया। ये दिलचस्प पोस्टर एक बोल्ड और दमदार विषय की ओर इशारा कर रहा है। ये फिल्म 24 जुलाई को हिंदी, तमिल और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मेकर्स की ओर से इसका टीजर जल्द ही रिलीज किए जाने की बात कही गई है। इस फिल्म का निर्देशन चेतन डीके ने किया है, जबकि कहानी, लेखन और निर्माण की जिम्मेदारी सागर बी शिंदे ने संभाली है। द इंडिया स्टोरी स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस, रासायनिक दुरुपयोग, खासकर खेती में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक तत्व और उसका स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर असर पर आधारित है। मनोज मांझू के जन्मदिन पर मेकर्स ने उनकी पैन इंडिया फिल्म डेविड रेड्डी का टीजर रिलीज किया। टीजर में दिखाए गए दृश्य और पृष्ठभूमि संगीत दर्शकों को एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से डेविड रेड्डी नाम के चरित्र के किए जाने वाले सशस्त्र संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। ब्रिटिश काल की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म डेविड रेड्डी का निर्देशन हनुमा रेड्डी ने किया, जिसमें मनोज मंचू के साथ मारिया रिया बुशापका मुख्य भूमिका में है। इसके अलावा राम्या कृष्णन, समुथिर कानी, अभय देओल और कंचना भी फिल्म में नजर आए। ये फिल्म इसी साल दशहरा में तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी।
1: और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात उन गाड़ियों की जो कि वीआईपी से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी को सुरक्षित रखती है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां उनकी सुरक्षा के लिए होती हैं। सैन्य अभियानों में भी बख्तरबंद गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये गाड़ियां कहां और कैसे बनती है उसे दिखाने के लिए हम आपको आज लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर,

0: ये वो गाड़ियां हैं जो वीवीआईपी, वीआईपी, मंत्री, बिजनेसमैन से लेकर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। शील्ड आर्मरिंग देश की उन प्रमुख आर्म्ड यानी बख्तरबंद गाड़ियों की निर्माता कंपनी है जो विशेष रूप से कारों को बुलेट प्रूफ बनाने और सुरक्षित वीआईपी गाड़ी, कैश वैन और रक्षा वाहन डिजाइन करने के लिए जानी जाती है। मुंबई से करीब 260 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अहिल्यानगर में स्थित इस फैक्ट्री में आप उन गाड़ियों को गुड न्यूज टुडे पर बनते हुए देख सकते हैं। ये इस कंपनी की तैयार की गई 6 पामा आर्मर्ड व्हीकल है जो खास तौर से स्टेट पुलिस के लिए बनाई गई है। ये बख्तरबंद गाड़ी पुलिस को सुरक्षा का नया कवच प्रदान करेगी जो 2010-11 में बनी बख्तरबंद गाड़ी से ज्यादा एडवांस्ड, अपग्रेडेड और बेहतर सुविधा से लैस है।
1: शील्ड आर्मरिंग लिखा हुआ है शायद आपकी कंपनी का नाम।
2: हाँ जी, ये हमारी कंपनी है शील्ड आर्मरिंग जो अहिल्यानगर इसको कहते महाराष्ट्र में है। तो ये 100% जिसे हम बोलते हैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, मेड फॉर वर्ल्ड।
1: थोड़ा सा बताएं ना अंदर चल करके किस तरीके से क्या बना है, क्या खासियत है, क्योंकि पहली बार ये चीजें कैमरे पर आ रही हैं।
2: जी, तो ये सबसे पहली बात, ये पूरा जो व्हीकल है वो 360 डिग्री प्रोटेक्शन है। जब हम 360 डिग्री प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि इसे कोई भी एंगल से पेनिट्रेशन की चांसेस नहीं है। कहीं से भी अगर बुलेट आ रही है, कहीं से भी इसको गलत फायरिंग हो रही है तो ये प्रोटेक्ट करती है। इसके चारों साइड्स हैं, इसका रूफ है, इसका बॉटम है, ये सारा कम्प्लीटली आर्मर्ड होता है। इसके आप जितने भी ये ग्लासेस देख रहे हैं ये बहुत ही हैवी ग्लासेस होते हैं जो AK-47, SLR जैसे जो वेपन्स होते हैं उसको वो इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है।
0: 26/11 के मुंबई हमले के बाद इस कंपनी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनाने का काम शुरू किया था। यहां फॉर्च्यूनर से लेकर रेंज रोवर, लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, हमर, BMW जैसी करोड़ों रुपए की गाड़ियों को अपग्रेड किया जाता है और क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से बुलेट प्रूफ शील्ड लगाकर गाड़ियों को हर तरह के हमले से सुरक्षित बनाया जाता है।
1: ये लैंड क्रूजर कार है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हो चुकी है। अंदर में बैठा हुआ हूँ, उसी तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है जैसे नॉर्मल कार के होते हैं। बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ कार है। कैसे, क्या, कहाँ पर, क्या खासियत, कैसे पता चलेगा, क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा बताएं।
3: अभी आप जब यहाँ पर देखेंगे इसकी जो प्रोटेक्शन है वो हमने 360 डिग्री दी है। ये ऊपर के साइड पे भी पूरी प्रोटेक्टेड है, साइड पे भी है, दरवाजों में भी है। ये जैसे आप ग्लास देखेंगे तो ये 40mm का ग्लास है, काफ़ी थिक ग्लास है। तो इससे क्या AK-47, SLR ये सब चीज़ें अपना प्रोटेक्ट हो जाती है। और इसका आप, इसकी ब्यूटी ये है कि ये आपको आइडेंटिफाई करनी नहीं चाहिए कि ये आर्मर्ड व्हीकल है कि नॉर्मल व्हीकल है।
0: इन गाड़ियों में टायर से लेकर बॉडी तक हर चीज का खास ख्याल रखा जाता है ताकि अंदर बैठने वालों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सके।
2: क्या है कि पूरी व्हीकल को जब बन गई है तो उसके ऊपर हमने ये फायर करवाया हुआ है, तो ये उसी का एक सैंपल डोर है। तो जहां पर आप देख सकते हैं कि ग्लासेस के साथ ये व्हीकल के डोर पे भी फायर किया गया है और आप देख सकते हैं कि इस तरफ से बुलेट अंदर पेनिट्रेट होती है, वेदर इट इज ग्लास और स्टील, बट अंदर के साइड वो कम्प्लीटली वो प्रोटेक्ट करती है।
1: अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये कांच की, और क्या कहते हैं कांच का, और कैसे इसे बनाया जाता है?
2: तो ये इसके अंदर 5 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है। ये एक सैंडविच ग्लास होता है जिसमें ग्लास होता है, उसमें 5 अलग अलग तरह के मटेरियल्स लग के उसे वो 100% प्रोटेक्ट करने के लिए 40mm थिक होता है जो स्टैंडर्ड मटेरियल है, थिकनेस है उसके हिसाब से। और इसके अंदर नीचे यहाँ पर कम्प्लीटली जैसे हमने ये आर्मर्ड स्टील देखी वो आर्मर्ड स्टील लगा हुआ है।
0: गाड़ियों को इस तरह बनाया गया है कि इस पर ताबड़तोड़ वार होने की स्थिति में भी अंदर किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंच पाए।
1: फॉर्च्यूनर कार है और इस कार का जो आगे का कांच है वो 40mm है और जिस तरीके से बुलेट प्रूफ कार बन जाती है, टूटता नहीं उसका कांच, वो तस्वीरें आपको लाइव एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। भाई साहब जो है 10 किलो का, कितना वजन है इसका?
4: 10 किलो।
1: 10 किलो का है। कितनी बार में मारेंगे टूट जाएगा?
4: नहीं टूटेगा।
1: पक्का? मार के दिखाइए। ये देखिए 10 किलो का हथौड़ा अब सीधे 40mm के कांच पर। बस ये देखिए, तो अब ये 10 किलो के हथौड़े ने लगभग 4-5 बार इस कांच पर वार किया है, मारा है। आगे से तो ये चीजें टूट गई है, लेकिन ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भीतर कार के अंदर जो शख्सियत बैठा है क्या उसे कुछ हुआ है। ये देखिए कांच पूरी तरह से आगे से टूटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं। बड़े प्यार से हम हाथ लगा पा रहे हैं, भाई साहब जरा लगाइए और भी यहाँ पे, ये देखिए। तो इस तरह से 40mm का कांच इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की बुलेट प्रूफ कार में, और सुरक्षा इस तरह से की जाती है।
0: शील्ड आर्मरिंग कंपनी भारत और ग्लोबल मार्केट में बदलते खतरों के माहौल के हिसाब से एंड टू एंड प्रोटेक्शन सॉल्यूशन देती है। गाड़ियों को बुलेट प्रूफ बनाकर गुजरात भेजा जाता है, जहां सरकारी लैब में जांच होती है और उसके बाद ही डिलीवरी होती है। अहिल्यानगर से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां कैसे बनती हैं? इनमें किन बातों का खास ख्याल रखा जाता है? ये सब डिटेल में जानने के लिए कल यानी कि 22 मई के शाम 6 बजे GNT पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
6: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
14: रिकी पॉन्टिंग ने कहा, चैंपियन खिलाड़ियों को कभी कम नहीं आके। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और आईपीएल में पंजाब किंग्स के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने का समर्थन किया है। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को लेकर कहा है कि चैंपियन खिलाड़ियों को आप कभी मना नहीं कर सकते, आप उन्हें कभी भी कम नहीं आंक सकते। आईपीएल में विराट के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए पॉन्टिंग ने कहा कि जीतने का वो जज्बा और चाहत अब भी उनमें बरकरार है। वहीं रोहित को लेकर पॉन्टिंग ने कहा कि वो इस आईपीएल में जिस फिटनेस के साथ उतरे हैं, वैसी फिटनेस उन्होंने शायद पिछले 10 से 12 साल में कभी नहीं देखी। साथ ही ये भी कहा कि उन खिलाड़ियों में आगे बढ़ने और खुद को जितना हो सके उतना बेहतरीन खिलाड़ी बनाने का जुनून अब भी मौजूद है। आईपीएल 2026 का 66वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर सीएसके ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सीएसके के लिए प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए ये मैच करो या मरो जैसा है, यानी उसे हर हाल में जीत चाहिए, जबकि जीटी पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। आईपीएल के सीजन में प्लेऑफ का रोमांच और बढ़ गया है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को मिली जीत ने प्लेऑफ की उसकी उम्मीदें बनी हुई है। 13 मैचों में 13 पॉइंट्स के साथ केकेआर टेबल में छठे स्थान पर पहुंच गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब चौथे स्थान के लिए राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला है। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचे और अपने ही देश में घूमें, तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है, तो उठाइए अपना कैमरा और बनाइए व्लॉग और हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे GNT पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
16: It's your boy,
15: just
16: Jay-Z.
15: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
17: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
18: How they looked after game one.
19: I mean, they were frustrated.
17: The Daily.
20: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
17: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
5: इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
21: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
22: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
23: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
24: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है,
23: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
25: गुड न्यूज टुडे।
23: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायु अस्त्र एक का सफल परीक्षण, 10 किलो वॉरहेड के साथ 100 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना, सेना की स्ट्राइक और निगरानी क्षमता में होगा इजाफा। डिफेंस और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की लंबी छलांग, प्रोजेक्ट सबिल के तहत नोएडा की हैवी लिफ्ट ड्रोन कंपनी को मिला 30 करोड़ का फंड, सैन्य ऑपरेशन के साथ आपदा राहत में मिलेगी मदद। अमेरिका में हो रहे बैटल इन द बे एक्सरसाइज में पहली बार भारतीय सेना ने शिरकत की, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और ऊंचे दुर्गम इलाकों में युद्धाभ्यास, मजबूत सुरक्षा सहयोग के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन, पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ से हुआ चुनाव, पवित्र यात्रा के लिए जून से अगस्त के बीच 20 जत्थों में रवाना होंगे यात्री। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी दिख रहा भीषण गर्मी का असर, हिमाचल के ऊना में 44 तो शिमला में 30 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा, अगले दो दिनों में बारिश के आसार। AI तकनीक से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रेल मंत्री की अपील, यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहे मुसाफिर, हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें संदिग्ध की जानकारी।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं गर्मी के रौद्र रूप की। किसी को अंदाजा नहीं था कि मई में गर्मी अचानक से ऐसी बढ़ेगी कि पारा सीधा 45 डिग्री तक जा पहुंचेगा, पर ऐसा हुआ है और अभी फिलहाल ये हाल राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक और जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक सभी इलाके तपती गर्मी से परेशान हैं। आज आपको देश के अलग अलग इलाकों में गर्मी का हाल दिखाएंगे। चर्चा होगी बांदा की 48 डिग्री सेल्सियस की वजह से, जिसका नाम इन दिनों खूब चर्चा में है। दिल्ली में ऐसी गर्मी के खिलाफ मोबाइल हीट रिलीफ वैन वाली मोर्चाबंदी की गई है, लेकिन ये रणनीति कितनी कारगर है इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको देंगे। और आखिर में बात काशी और गया के मंदिरों के, जहां भगवान के लिए एसी और कूलर लगा दिए गए हैं। आपको अयोध्या और कटरा की भी तस्वीरें दिखाएंगे, जहां भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। शुरुआत करते हैं मैदानी इलाकों में पड़ रही बेहिसाब गर्मी से। आसमान से आग बरसना एक मुहावरा है, लेकिन इन दिनों सही मायनों में ऐसा हो रहा है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार बंगाल तक सूरज की तपती किरणों ने लोगों को बेहाल कर दिया है। हालांकि मॉनसून इस साल जल्दी दस्तक दे रहा है, लेकिन फिर भी मैदानी इलाकों में बादलों की एंट्री में वक्त लगेगा और तब तक इस गर्मी से निजात पाने का कोई उपाय नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों और भी ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। देखिए हमारी रिपोर्ट।
2: राजस्थान में आसमान से आग बरस रही है। पूरे राजस्थान में 14 से 15 शहरों का तापमान 45 डिग्री के आसपास रह रहा है। श्रीगंगानगर में तो तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है।
3: बांदा हमने जैसा आपको बताया 48 क्रॉस कर चुका है। लखनऊ इस वक्त 45 से थोड़ा सा नीचे नजर आ रहा है।
4: पंजाब के अंदर तापमान 47 डिग्री तक जा पहुंचा है, तो वहीं हरियाणा का हिसार हो, सिरसा हो, तापमान 47 डिग्री के पार जाता दिखाई दे रहा है। वहीं चंडीगढ़ के अंदर भी 44.4 डिग्री टेम्परेचर इस समय है।
5: दिल्ली एनसीआर में भी तापमान 45 डिग्री अब पार हो चुकी है। लगातार गर्मी इस तरीके से बढ़ गई है कि चिलचिलाती लू में लोगों का घर से बाहर निकलना अब मुश्किल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दिन का समय और तापमान जो है वो इस वक्त 46 डिग्री के आसपास जो बने हुए।
6: जम्मू संभाग इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। खासतौर पर अगर हम जम्मू शहर की बात करें तो यहाँ पर पारा जो है 40 डिग्री को पार कर चुका है, जिसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
7: शहर शहर एक जैसा कहर, सुलगती हवा, दहकता आसमां, बेचैन परेशान जानवर परिंदा इंसान। सड़कों पर सन्नाटा है और जो मजबूरी में घर से बाहर हैं, उनका सहारा गज भर सूती कपड़ा है या छाता है। सड़क किनारे जहां दरख्त की छांव मिल जाए, मुसाफिरों के लिए सबसे अच्छा ठिकाना है। ये सूरत उत्तर भारत के तमाम इलाकों की है, जम्मू से लेकर विदर्भ तक, जयपुर से लेकर लखनऊ और पटना तक। सभी गर्मी का थर्ड डिग्री टॉर्चर झेल रहे हैं, मौसम को लानत भेज रहे हैं। लेकिन बांदा का तो हाल न पूछिए। यूपी के इस छोटे से शहर ने सोचा ना होगा कि दुनिया भर में इसकी यूं चर्चा होगी। बुंदेलखंड के इस इलाके की हता ये है कि कर्क रेखा के करीब है, इसलिए यहाँ सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। और नतीजा ये कि पिछले कुछ दिनों से ये जिला भट्टी की तरह तप रहा है। बुधवार को पारा 48.2 तक पहुंच गया। बीते एक महीने में बांदा 3 बार दुनिया और एशिया का सबसे गर्म शहर बनकर उभरा है और 48 पार करते ही भारत का सबसे गर्म शहर बन गया।
8: सब लोगों को अवेयर किया है कि आप 11 बजे से 4 बजे तक बाहर बहुत ज़रूरी ना हो तो ना निकलें, और अगर निकलना ही पड़ रहा है तो लाइट क्लोथ्स में निकलें, और बच्चे और जो बूढ़े हैं वृद्धजन हैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, वो बहुत वल्नरेबल हैं। हमारे हॉस्पिटल्स अलर्ट पे हैं, एम्बुलेंसेज अलर्ट पे हैं, कहीं पर भी कोई समस्या होती है तो प्रशासन एकदम सक्रिय है।
7: वैसे बांदा में 10 जून 2019 को तापमान 49.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब माना जा रहा है कि इस साल मई में ये रिकॉर्ड टूट सकता है। प्रचंड गर्मी का कहर झेल रहे लोगों के पास सिवाय बचाव करने के और कोई चारा नहीं।
9: बांदा में गर्मी बहुत ही ज्यादा भीषण पड़ रही है और घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। हम घर से निकलते हैं तो बहुत ही गर्म हवा चल रही है जिससे कभी कभी लू भी लग जाती है, और इसके बचाव के लिए हम अपने साथ पानी की बोतल कैरी करते हैं और जितना हो सकता है लिक्विड कंज्यूम करते हैं जिससे कि हमें गर्मी से बचाव राहत मिल सके।
10: सर हम लोग देखिए लिक्विड डाइट पे ज़्यादा हैं और अपना शरीर पे जो कपड़े हैं बांध के चलते हैं और सारा शरीर ढक के चल रहा है, जगह जगह स्टॉपेज लेते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं।
11: गर्मी में बचाव के लिए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं कैप भी लगाया हूँ, साथ में अपनी साफ़ी भी लगा के बांध के काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी हीट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो जगह जगह पे रुक के हम लोग थोड़े थोड़े देर में डिहाइड्रेशन के लिए कुछ ना कुछ पानी पीते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं या कुछ बेल का शरबत पीते हैं, कुछ ना कुछ लेते रहते हैं।
7: बांदा अगर हाफ सेंचुरी की तैयारी में है तो यूपी के दूसरे शहर भी पीछे नहीं। लखनऊ के दिन भी दहके हुए हैं और रातें भी मेहरबान नहीं।
3: यूपी में अब दिन के साथ साथ रात में भी पारे का टॉर्चर है। रात में तो वार्म नाइट अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिन में अगर 45 के पार कई जिलों का तापमान पहुंचा तो रात में 28 से 30 डिग्री, ये नॉर्मल तो फिलहाल नहीं है। बांदा हमने जैसा आपको बताया 48 क्रॉस कर चुका है, लखनऊ इस वक्त 45 से थोड़ा सा नीचे नजर आ रहा है। हम इस वक्त आपको लखनऊ के हालात दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। तस्वीर आप देखें तो यहाँ पर नारियल पानी जो है ना उसकी खपत बढ़ गई है। वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि यहाँ जो विक्रेता है वो यहाँ पर आ रहे हैं और नारियल पानी लेकर कहीं ना कहीं जो बॉडी में जो डिहाइड्रेशन हो जाता है उस पर काम कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर लगातार लोग तरबूज है जो जिस तरह की आइटम्स गर्मियों में लोग खाते हैं वो सब ले रहे हैं आकर।
7: यूपी और एमपी की जो तस्वीर है वही राजस्थान की है। तीखी धूप से पश्चिमी राजस्थान की रेत बेहिसाब गर्म है। श्रीगंगानगर में गर्मी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। शहर का पारा 46 डिग्री क्रॉस कर चुका है। जयपुर में भी प्रशासन के पास एक ही विकल्प है कि स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया जाए। सैलानियों से गुलजार रहने वाले इस शहर में फिलहाल तो सन्नाटा है। जो धूप का सामना कर भी रहे हैं सावधानी बरत रहे हैं।
2: राजस्थान में आसमान से आग बरस रही है। पूरे राजस्थान में 14 से 15 शहरों का तापमान 45 डिग्री के आसपास रह रहा है। श्रीगंगानगर में तो तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर लोग गर्मी का इंतजाम करके चलते हैं, गमछा और चश्मा लगाए हुए, बहुत तो साफा पहन के भी चलते हैं। जगह जगह अलवर हो या फिर पाली हो, बाड़मेर हो, हर जगह सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है। जगह जगह जो चौराहे हैं वहां पर तंबू का इंतजाम किया जा रहा है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उससे सड़कों पर छिड़काव करके तापमान को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 7 दिनों तक इसी तरह से आसमान में आग बरसती रहेगी और नौतपा और तपेगा। जो पुलिस वाले हैं ड्यूटी कर रहे हैं, देखिए किस तरह से वो भी अपने गर्मी से बचाव के लिए यहां पर तैयारी करके रखते हैं। राजस्थान में प्रचंड गर्मी का दौर बदस्तूर जारी है। ज्यादातर शहरों में जो तापमान है वो 45 डिग्री के आसपास है। जयपुर की बात करें तो यहां पर 43 से लेकर 44 डिग्री तापमान रह रहा है।
7: मई में बेहिसाब गर्मी नई बात नहीं, लेकिन चंद दिनों में ही गर्मी ने जिस तरह टॉप गियर लगाया है उसने दिमाग का पुर्जा पुर्जा हिला दिया है और इससे जल्द राहत भी नहीं मिलने वाली। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 दिन के लिए बेहिसाब गर्मी की चेतावनी है और दिल्ली में एक हफ्ते तक तापमान लगातार बढ़ने वाला है और वहां भी ऑरेंज अलर्ट जारी है।
3: दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। घर से बाहर निकलते हुए तेज हवाएं, लू जो है वो लोगों का जीना दूभर कर रखा है। दिल्ली में अगर तापमान की अगर बात की जाए तो आज तापमान 40 डिग्री से ज्यादा जो है वो दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों तक ये जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। ये तस्वीरें राजघाट की अगर आप देखेंगे तो अमूमन राजघाट पर लोग जो है वो घूमने के लिए आते हैं, विदेशी सैलानी आते हैं, लेकिन राजघाट पर अगर आप देखेंगे तो सन्नाटा इस वक्त जो है वो पसरा हुआ नजर आएगा। एक भी शख्स जो यहाँ पर दिल्ली के लिए घूमने के लिए आते हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। अमूमन इस तरीके की स्थिति जो है वो राजघाट पर नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, लोग सड़कों पर जो है वो काफी हद तक कम नजर आ रहे हैं, ट्रैफिक भी जो है वो काफी हद तक कम नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक दिल्ली NCR उत्तर भारत में इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल बना रहेगा। लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी से जो है वो राहत मिलती हुई फिलहाल जो है वो अभी नजर नहीं आ रही है।
7: मई में मौजूदा गर्मी इसलिए भी चुनौती बन गई है क्योंकि नौतपा के दिन अभी बाकी हैं। नौतपा जब सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ेंगी तब गर्मी का प्रकोप और भी प्रचंड होगा, यानी मानसून आने तक और बादलों के बरसने तक कमोबेश गर्मी से जूझना ही होगा। वैसे तो पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा और उसकी वजह से बारिश भी होगी, लेकिन मैदानी क्षेत्रों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली।
12: उत्तर भारत के कई राज्यों में इस वक्त भीषण गर्मी अपने चरम पर है, लगातार तापमान बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को इस वक्त जो है गर्मी हद से ज्यादा महसूस होने लगी है। बात अगर दिल्ली NCR की जाए तो दिल्ली NCR में भी तापमान 45 डिग्री अब पार हो चुकी है। लगातार गर्मी इस तरीके से बढ़ गई है कि चिलचिलाती लूप में लोगों का घर से बाहर निकलना अब मुश्किल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दिन का समय और तापमान जो है वो इस वक्त 40 डिग्री के आसपास जो बने हुए हैं, लेकिन आज एक पश्चिमी विक्षोभ जो है पहाड़ी राज्यों पर सक्रिय होगा जिसका असर जो है केवल जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ही नजर आएगा और वहां के लिए एक ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा दिया गया है। हालांकि तापमान वहां पर भी लगातार बढ़े हुए थे, हॉट एंड ह्यूमिड की जो कंडीशन थी वहां पर भी देखी जा रही थी, लेकिन आज उनको राहत जो है उन राज्यों में मिलने वाली है लोगों को, क्योंकि वहां पर बारिश जो है वो देखी जा सकती है, इसलिए तापमान थोड़े से सामान्य से कम बनते हुए जो है नजर आएंगे। लेकिन बाकी अगर राज्यों की बात करी जाए तो तापमान लगातार बढ़ने वाले है। आने वाले एक हफ्ते की मैं बात कर रही हूँ, 3 ऐसे राज्य है, ईस्ट उत्तर प्रदेश की बात हो, महाराष्ट्र की विदर्भा की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो, इन राज्यों में वार्निंग दी गई है। वहां पर 3 के लिए वार्निंग है, वहां पे तापमान जो है हद से ज्यादा आगे जा सकते हैं और वहां पे लोगों को खासी दिक्कत जो है वो महसूस हो सकती है।
7: गर्मी से निजात पाने के लिए बादलों का भरोसा है, बादल आएंगे, घिरेंगे और बरसेंगे, इसके लिए मैदानी इलाकों को इंतजार करना होगा। हाँ, ये अपने हाथ जरूर है कि हीट वेव से बचा जाए, जहाँ तक मुमकिन है दोपहर के वक्त घर में रहा जाए, खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाए और खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखा जाए। जयपुर से शरद कुमार, दिल्ली से मनीषा लड्डा और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: में पारा 45 से 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे तापमान के बीच लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को सड़कों पर उतार दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि यूनिट्स भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर लोगों को तुरंत राहत देंगी। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा ने राजधानी के अलग अलग हिस्सों में जाकर इन दावों की जमीनी हकीकत को जानना चाहा। देखिए रिपोर्ट।
3: सरकार की तरफ से कूलिंग जोन बनाने की बात की गई थी और इस तरीके के मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स जो है वो दिल्ली के तमाम 13 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो तैनात किए गए हैं ताकि लोग गर्मी से अगर हो सके तो उनको किस तरीके से बचाया जाए, उसके लिए तैयारियां जो है वो की गई थी। उसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर आपको तमाम लोग जो है वो लाइन में खड़े नजर आएंगे, जिनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था, उनके साथ साथ ORS की जो घोल है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा गमछा और एक कैप की सुविधा भी जो है वो यहाँ पर दी जा रही है ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी से जो है वो बचाव मिल सके।
13: हर 13 जिले में ये मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट व्हीकल है। हम ओल्ड दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आज हमारा लोकेशन है ISBT कश्मीरी गेट। ऐसे ही हम डेली लोकेशन चेंज करते रहते हैं। कल का हमारा है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, परसों का है रेडफोर्ट चांदनी चौक मेन मार्केट एंड उसके बाद जामा मस्जिद, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो हमने पूरा एक महीने का एक शेड्यूल बनाया हुआ है जिसके तहत हम ये पूरा अरेंजमेंट्स लेकर के अपने व्हीकल्स में ये सारी सुविधाएं रखते हैं।
14: कितने लोगों को आप ये कैप और ये पानी की व्यवस्था कर पाते हैं? क्या पानी प्रॉपर है कि इतना ही पानी रहता है आप?
13: सर जैसा देख रहे हैं दो कंटेनर में, सर हमारा वो ORS का घोल है, दो कंटेनर्स में ORS का घोल है, एक में ठंडा पानी, मतलब तीनों ही ठंडे हैं। और क्योंकि कई लोग ORS की डिमांड करते हैं तो हम उनको ORS यहीं पे ही सैसे से बना करके तब हम उनको पिलाते हैं, और वो बच्चे अगर साथ हैं तो अपनी बोतल में भी भर के ले जाते हैं।
15: पानी बढ़िया है, सब चीज, गमछा टोपी वोपी सब मिलता, सब बांटते हैं।
1: दिन में दिन बढ़ती गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन की ओर से भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही भक्तों को अपने आराध्य की भी फिक्र है। वाराणसी के मंदिरों में भीषण गर्मी से भगवान को बचाने के लिए कूलर और एसी लगा दिए गए हैं। अयोध्या और वैष्णो देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट।

0: पर संकट हो तो दीनदयाल उसे दूर करते हैं, और जब बेहिसाब गर्मी हो तो भक्त अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे क्यों हटे। जैसे खुद के लिए पंखे, कूलर, एसी का इंतजाम किया है, भगवान के लिए भी ठंडी हवा की फिक्र हुई। 45 डिग्री से ज्यादा तापमान से भगवान को कष्ट ना हो, इसलिए मंदिर में कूलर और एसी लगाया गया है। तस्वीरें काशी की है।
1: वाराणसी में तापमान 45 डिग्री के ऊपर जा चुका है। न केवल सड़कों पर बल्कि काशी के मंदिरों में भी गर्मी से बचाव के तमाम इंतजाम देखे जा सकते हैं। देख सकते हैं कि धूप से बचाव के लिए मंदिर, जो वाराणसी का बड़ा गणेश विश्वविख्यात लोटियां इस इलाके में स्थित मंदिर है, वहां ग्रीन पर्दे लगाए गए हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है।
0: राम जानकी मंदिर में राम दरबार की मूर्त के आगे एक कूलर लगातार चल रहा है। मूर्तियों को सूती वस्त्र पहनाए गए हैं और भोग में ठंडी सामग्री चढ़ाई जा रही है।
2: हाँ, आपकी बात तो गर्मी काफी बेतहाशा है और काफी टेम्परेचर भी काफी गर्मी पड़ रहा है इस समय जो है, और हम लोग गर्मी के दिन में भगवान गणपति को जो है जो हल्का कपड़ा बनाते हैं, सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं, और जो भोग आरती जो हो है वो अपने समय पर ही होता है।
0: पास में ही प्राचीन बड़ा गणेश मंदिर है, जहां गणेश जी की ठीक बगल में एसी दिन रात चल रहा है। गर्भगृह में एसी है तो परिक्रमा स्थल पर ग्रीन पर्दे लगाए गए हैं। भक्तों के लिए वाटर कूलर लगाया गया है। सिर्फ पंखे से तो काम नहीं चलने वाला। जैसी भावना वैसी भक्ति, इसलिए यथाशक्ति भगवान और उनके धाम को गर्मी से बचाने की पुरजोर कोशिश है। वाराणसी की तरह गया के रामशिला मंदिर में स्फटिक से बने शिवलिंग के सामने एसी लगा दिया गया है। 45 डिग्री तापमान में कोई और चारा भी तो नहीं। मूंगे से बनी भगवान गणेश की मूर्ति के आगे दिन रात कूलर चल रहा है।
3: गर्मी के मौसम में 45-47 के टेम्परेचर हो जाने के बाद हमारे गणपति महाराज के शरीर से हल्का पसीना टाइप का पानी निकलता है, जिसके चलते कूलर और पूरे एसी लगाया गया है, और यह आस्था का विषय है। इस वजह से पूरे मंदिर में ठंडा रखा गया है कि जैसे मनुष्य को ठंडा लगता है, आस्था रूप में भगवान के लिए भी जो है एसी और कूलर का व्यवस्था किया गया है।
0: भावना यही है कि जैसे इंसानों को गर्मी सता रही है, उसी तरह भगवान को भी परेशानी होगी। इंसान ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, हाँ, पर अपने आराध्य के लिए एसी और कूलर तो लगा ही सकता है। दिलचस्प बात तो ये है कि ऐसी भीषण गर्मी में भी श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी बहाने राम की पैड़ी पर ठंडे पानी में राहत तलाश रहे हैं।
4: गर्मी का मौसम है और राम की पैड़ी का अलग नजारा है। लोग सरयू का स्नान भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, और साथ में गर्मी का लुत्फ भी उठाते नजर आ रहे हैं। तो ये नजारा है राम की पैड़ी का और अयोध्या धाम का। तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, दर्शन के साथ साथ पूजन भी कर रहे हैं, और गर्मी जो पड़ रही है उसका आनंद भी ले रहे हैं। इन सरयू के बहाव में नहाते हुए, स्नान करते हुए जो इनका पल है वो अलौकिक है, क्योंकि यहाँ से लोगों को जो है धर्म की एक धार्मिक नदी है, और माँ सरयू का स्नान करना भी काफी अच्छा माना जाता है।
0: वैसे श्रद्धालुओं की राहत के लिए राम पथ सहित प्रमुख मार्गों पर जगह जगह टेंट पंडाल लगाए जा रहे हैं। पानी समेत बैठने की व्यवस्था और गर्मी से राहत के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की है। ऐसी ही तस्वीर वैष्णो देवी की भी है, जहां भीषण

0: हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: बृहस्पति की अलग अलग स्थितियों का वैवाहिक जीवन पर कैसे पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
8: राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायु अस्त्र एक का सफल परीक्षण, 10 किलो वॉरहेड के साथ 100 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना, सेना की स्ट्राइक और निगरानी क्षमता में होगा इजाफा। डिफेंस और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की लंबी छलांग, प्रोजेक्ट सबल के तहत नोएडा की हेवी लिफ्ट ड्रोन कंपनी को मिला 30 करोड़ का फंड, सैन्य ऑपरेशन के साथ आपदा राहत में मिलेगी मदद। अमेरिका में हो रहे बैटल इन द बे एक्सरसाइज में पहली बार भारतीय सेना कर रही शिरकत, आतंकवाद रोधी ऑपरेशंस और ऊंचे दुर्गम इलाकों में युद्धाभ्यास, मजबूत सुरक्षा सहयोग के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन, पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज लकी ड्रॉ से हुआ चुनाव, पवित्र यात्रा के लिए जून से अगस्त के बीच 20 जत्थों में रवाना होंगे यात्री। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी दिख रहा भीषण गर्मी का असर, हिमाचल के ऊना में 44, शिमला में 30 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा, अगले दो दिन बारिश के आसार। AI तकनीक से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रेल मंत्री की अपील, यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहे मुसाफिर, हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें संदिग्ध की जानकारी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: रक्षा क्षेत्र में भारत की एक और उपलब्धि, राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायु अस्त्र एक का सफल परीक्षण, 10 किलो वॉरहेड के साथ वायु अस्त्र एक का शक्ति प्रदर्शन, 100 किलोमीटर दूरी तक सटीक निशाना साधकर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया, आधुनिक तकनीक से लैस है वायु अस्त्र एक, सीमावर्ती सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती। रक्षा और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक और छलांग, देश में ही बनेंगे भारी भरकम वजन उठाने वाले ड्रोन्स। प्रोजेक्ट सबल 200 के लिए नोएडा की हेवी लिफ्ट ड्रोन कंपनी को मिला 30 करोड़ का फंड, सबल ड्रोन सेना और आपदा राहत में होगा मददगार। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम का रुख कर रहे श्रद्धालु, अब तक 7.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ धाम में लगा आस्था का मेला, अब तक करीब 5 लाख भक्त कर चुके हैं दर्शन। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम, बुजुर्ग भक्तों को मंदिर ले जा रहे एसडीआरएफ के जवान। गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, भक्ति भाव से कर रहे हैं दर्शन पूजन। महादेव के भक्तों के लिए गुड न्यूज, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 श्रद्धालुओं का चयन। पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ से हुआ श्रद्धालुओं का चुनाव, जून से शुरू होकर अगस्त तक चलेगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चुने गए श्रद्धालुओं को 20 जत्थों में किया जाएगा रवाना, हर बैच में शामिल होंगे 50 श्रद्धालु। अब पहले की तुलना में मानसरोवर यात्रा श्रद्धालुओं के लिए होगी ज्यादा सुविधाजनक। लिपुलेख और नाथुला यात्रा मार्ग पूरी तरह से मोटरेबल। श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट कैलाश मानसरोवर यात्रा पोर्टल पर लॉगिन करके देख सकते हैं स्टेटस। विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए। चमोली में श्री हेमकुंड साहिब में यात्रा की पूरी तैयारी, 23 मई को खुलेंगे बाबा के कपाट। भारतीय सेना के जवानों और सेवादारों ने बर्फ को काटकर रास्ता साफ किया, गुरुद्वारा साहिब के आसपास हटाई गई बर्फ। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा से रवाना हुआ पहला जत्था, भव्य रूप से रवाना किया गया जत्था। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू ने जत्थे को दिखाई हरी झंडी, 23 मई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। कल शाम घांघरिया पहुंचेगा पहला जत्था, 23 मई को तड़के सुबह घांघरिया से निकलेगा जत्था। सुबह 10 बजे श्री हेमकुंड साहिब के खुलेंगे कपाट। अयोध्या के दुर्गा मंदिर में 29 मई को ध्वजारोहण समारोह, 35 से अधिक महिलाएं बनेंगी अतिथि। मां जगदम्बा मंदिर के शिखर पर पहली बार महिला संत करेंगे ध्वजारोहण, राम मंदिर आंदोलन में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को किया जाएगा याद। शाम 6 बजे से मां दुर्गा का होगा ध्वजारोहण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति सहित अन्य महिला संगठनों की बड़ी पदाधिकारी होंगी शामिल। ध्वजारोहण के बाद सभी अतिथियों को रामलला और राम परिवार का कराया जाएगा दर्शन, 5 बजे से अतिथियों को मिलेगा प्रवेश। शेष अवतार मंदिर पर भी 23 जून को होगा ध्वजारोहण, जोरों पर चल रही हैं तैयारियां। दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से सावधानी बरतने की अपील, मौसम विभाग ने 24 मई तक जारी किया गंभीर हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली समेत एनसीआर की रातों में बढ़ेगी गर्मी, दिन में 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है तापमान। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में लोगों से सावधानी बरतने की अपील। लखनऊ में तपती गर्मी के बीच अलर्ट मोड पर प्रशासन, अस्पताल में बनाए गए खास कोल्ड रूम। यूपी के बांदा में 5वें दिन 48 डिग्री तक पहुंचा तापमान, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बांदा में बढ़ती गर्मी के बीच अलर्ट मोड पर प्रशासन, बीते दिनों में देश का सबसे गर्म शहर बना है बांदा। रामनगरी अयोध्या में गर्मी के बीच दिखा शानदार नजारा, राम की पैड़ी पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया सरयू स्नान, बढ़ती गर्मी पर आस्था भारी नजर आई। जयपुर में हीट वेव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में हीटवेव का अलर्ट, करीब 43 डिग्री पहुंचा तापमान। जैसलमेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, 45 के पार तापमान। जैसलमेर में लू से सावधानी बरत रहे लोग, चेहरों पर गमछा लपेट कर चल रहे राहगीर। बेंगलुरु में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से मौसम सुहावना। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर दिख रहा है भीषण गर्मी का असर, हिमाचल के ऊना में 44, शिमला में 30 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा। हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिनों में बारिश के आसार, फिलहाल तपती गर्मी से सैलानियों को हो रही परेशानी। यूपी के लाखों कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, डीएम 2% की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम, डायल 112 फेज 2 सेवा की शुरुआत। दुर्ग पुलिस के बेड़े में 39 नई डायल 112 गाड़ियां, एआई तकनीक से लैस सभी वाहन। प्रयागराज के 34 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा, परीक्षा में कुल 13,752 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। सोने और चांदी की कीमत में फिर बढ़ोतरी, 600 रुपए बढ़कर 1,65,500 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। 1 किलो चांदी की कीमत 5,000 रुपए बढ़कर 2,71,000 रुपए पहुंची। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ कोयम्बटूर, गर्मी से बचने के लिए हजारों पक्षी कोयम्बटूर झील पहुंचे। जालंधर की 8 साल की हरनाज में बना इंडिया रिकॉर्ड, लटक कर 25 सेकंड में 50 हुला उप्स करके रचा इतिहास। 4 साल से कर रही अभ्यास, हुला उप्स करने वाली पहली भारतीय बच्ची बनी हरनाज। राजस्थान के बांसवाड़ा के चुराडा गांव पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात की। चुराडा गांव में सीएम भजनलाल का दिखा अनोखा अंदाज, स्थानीय लोगों के साथ नीचे बैठकर खाना खाया। दयानंद सागर विश्वविद्यालय में एआई इकोसिस्टम को मिल रही मजबूती, कैंपस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा मॉडल पर दिया जा रहा जोर।
9: Massive tech and generative AI.
8: एआई लैब प्रैक्टिकल लर्निंग के जरिए छात्रों को भविष्य के लिए किया जा रहा तैयार, दयानंद सागर विश्वविद्यालय में साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स की भी ट्रेनिंग। अमेरिका में हो रहे बैटल इन द बे एक्सरसाइज में पहली बार भारतीय सेना शामिल हो रही है, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और ऊंचे दुर्गम इलाकों में युद्धाभ्यास, मजबूत सुरक्षा सहयोग के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर। तकनीक से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रेल मंत्री की अपील, यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहे मुसाफिर, हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें संदिग्ध की जानकारी। बिहार के पाक में अब लगेंगे पैनिक बटन, राज्य में बेटियों की सुरक्षा के लिए मौके पर पहुंचेगी पुलिस की डायल 112 गाड़ी। पोलैंड में खास शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन, वर्ल्ड डाइविंग चेस चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने पानी के अंदर खेला शतरंज। वर्ल्ड डाइविंग चेस चैंपियनशिप में लुथियाना के ग्रैंड मास्टर पॉलियस ने रचा इतिहास, लगातार 4 मुकाबले जीतकर खिताब अपने नाम किया। डाइविंग चेस में पोलैंड की अन्ना ने जीता महिला विश्व खिताब, 2 दिन तक चले मुकाबलों में बेहतरीन रणनीति और फिटनेस का प्रदर्शन किया। पानी के अंदर सांस रोककर खेला जाता है डाइविंग चेस, दुनिया भर से पहुंचे 62 खिलाड़ी। डाइविंग चेस में भारतीय ग्रैंड मास्टर हर्षित राजो ने जीता कांस्य पदक, अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। चीन की शेंजेंग रोबोट वैली बनी एआई और रोबोटिक का नया हब, रोबोट वैली में 200 से ज्यादा रोबोटिक्स कंपनियां मौजूद। रोबोटिक आम ऑटो पार्ट्स को बेहद सटीक तरीके से कर रहे हैं असेंबल, ह्यूमनॉइड रोबोट्स लोगों को चाय और पॉपकॉर्न सर्व करते नजर आए। ग्वांगजू का पाझोऊ इलाका बना एआई इनोवेशन का केंद्र। ड्रोन एआई एजेंट और कई स्मार्ट तकनीकों का बड़े पैमाने पर हो रहा है निर्माण। चीन के वुहान में घरों में एंट्री को तैयार ह्यूमनॉइड रोबोट्स, घरेलू कामकाज के लिए तैयार किया गया खास रोबोट। कपड़े तय करने से लेकर खाना बनाने तक में सक्षम है रोबोट, बुजुर्गों से बातचीत करने के लिहाज से किया गया डिजाइन। अमेरिका में जंगल की आग के बीच फंसे नाविक को कोस्ट गार्ड ने बचाया, हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। कंबोडिया में खास अंदाज में की गई बारिश की कामना, पारंपरिक उत्सव में शामिल हुए लोग। कंबोडिया की राजधानी फ्नोम पेन के एक गांव में जुटे सैकड़ों ग्रामीण पारंपरिक खमेर ढोल की धुन पर किया नृत्य। ग्रामीणों ने बारिश के साथ साथ की शांति और समृद्धि की प्रार्थना, चेहरों पर रंग लगाए नजर आए ग्रामीण। देवताओं की वेशभूषा में निकले युवा, बारिश के स्वागत में सैकड़ों साल पुरानी परंपरा का आयोजन। माउंट एवरेस्ट पर बना नया रिकॉर्ड, 274 पर्वतारोहियों ने फतह की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। एक ही दिन में एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पर्वतारोहियों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या, एवरेस्ट पर दिखी पर्वतारोहियों की लंबी कतार। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए नेपाल रूट पर बड़ी भीड़, चीन की ओर से नहीं जारी परमिट। पेरिस में कला और वास्तुकला का अनोखा संगम, रिज को कलाकारों ने एक विशाल कला संरचना में तब्दील किया। सीन नदी के ऊपर बने ऐतिहासिक पुल पर दिखा पहाड़ जैसा नजारा। इंस्टॉलेशन कपड़े और प्रेशराइज्ड एयर से किया गया तैयार। स्पेन के बार्सिलोना में 10 जून को होगा जीसस क्राइस्ट टावर का उद्घाटन, पोप लियो करेंगे जीसस टावर का शुभारंभ। बार्सिलोना के आसमान में रोशनी से सजेगा ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह, स्पेशल लाइट एंड विजुअल शो का होगा आयोजन। जीसस टावर बना सागरादा फेमिलिया का सबसे ऊंचा हिस्सा, बार्सिलोना में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह चरम पर। हाइब्रिड राइस के जनक युआन लॉन्गपिंग को भावभीनी श्रद्धांजलि, पत्नी ने पुण्यतिथि से पहले पुष्प अर्पित कर याद किया। शांगशा में स्थित स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग। लॉन्गपिंग ने विकसित की थी दुनिया की पहली हाई यील्ड हाइब्रिड धान किस्म। कोंचोगे ने थांका कला में जोड़ा आधुनिक स्केचिंग का तड़का, चीन के लहासा में सिखाया जा रहा पुरानी कला को नए अंदाज में। पारंपरिक थांका पेंटिंग में चीनी पेंटिंग तकनीक का नया प्रयोग, स्केचिंग तकनीक से थांका की आकृतियां दिखने लगती हैं और ज्यादा जीवंत। तिब्बती चिकित्सा और इतिहास भी थांका कला के खास विषय बने। थांका कला में पारंपरिक और आधुनिकता का अनोखा संगम। बोलन चिड़ाघर में दुर्लभ पिग्मी हिप्पो ने पहली बार किया वाटर बाथ, गर्म मौसम में छोटे हिप्पो ने पानी में मस्ती की। ताने लाते हुए पानी का आनंद लेता हुआ नजर आया नन्ना हिप्पो। बेबी हिप्पो का वजन है 10 किलो। सिंगापुर के नेता ली सेन लुंग ने शंघाई में ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ किया मजेदार इंटरेक्शन, रोबोट इनोवेशन सेंटर में गूंजी हंसी। ली सेन लुंग ने एआई लुक ब्लाइंड असिस्टेंट रोबोट को खुद आजमाया, वॉइस कमांड देकर रोबोट से अपने लिए बनवाई चाय। यूनिटरी रोबोटिक्स के रोबोटिक डॉग्स ने खींचा ध्यान, हेल्थ केयर, बुजुर्गों की देखभाल और लॉजिस्टिक में रोबोट्स का दिखा दम। बियांका एल्ड्रो बनी एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की ऑस्ट्रेलियाई 18 वर्षीय पर्वतारोही। बियांका का काठमांडू एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बियांका ने 8849 मीटर ऊंचे एवरेस्ट पर कम उम्र में जीत का परचम लहराया। बियांका के माता पिता भी कर चुके हैं एवरेस्ट फतह।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

का कमजोर बृहस्पति किस तरह की समस्याएं वैवाहिक जीवन में देता है? कुंडली का खराब बृहस्पति वैवाहिक जीवन पर किस तरह का असर डालता है? और कुंडली का शुभ बृहस्पति वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है?

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: कुंडली का कमजोर बृहस्पति किस तरह की समस्याएं वैवाहिक जीवन में देता है? कुंडली का खराब बृहस्पति वैवाहिक जीवन पर किस तरह का असर डालता है? और कुंडली का शुभ बृहस्पति वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बृहस्पति की अलग अलग स्थितियों का वैवाहिक जीवन पर कैसे पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: राजस्थान की पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायुअस्त्र 1 का सफल परीक्षण, 10 किलो वॉरहेड के साथ 100 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना, सेना की स्ट्राइक और निगरानी क्षमता का होगा परीक्षण। डिफेंस और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की लंबी छलांग, प्रोजेक्ट सबल के तहत नोएडा की हैवीलिफ्ट ड्रोन कंपनी को मिला 30 करोड़ का फंड, सैन्य ऑपरेशन के साथ आपदा राहत में मिलेगी मदद। अमेरिका में हो रहे बैटल इन द बे एक्सरसाइज में पहली बार भारतीय सेना ने शिरकत की, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और ऊंचे दुर्गम इलाकों में युद्धाभ्यास, मजबूत सुरक्षा सहयोग के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर।

0: आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति के बारे में। सबसे शुभ ग्रह से माना जाता है, लेकिन क्या बृहस्पति के कारण आपके विवाह में, आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, बाधा आ रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो कैसे हम इसमें परिवर्तन करके आपके जीवन में शुभता ला सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: जिन महिलाओं के विवाह होने में या वैवाहिक जीवन में समस्या हो, उन्हें नियम पूर्वक नियमों के साथ बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। अगर महिला नियमों के हिसाब से, तरीके से और श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत रखेगी तो जो बृहस्पति के कारण वैवाहिक जीवन की समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, बृहस्पति ग्रह के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रहों में से एक माना जाता है, गुरु इसे कहा जाता है। ऐसे में किसी के विवाह में इसे कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्या इसकी भूमिका है? और अगर किसी के वैवाहिक जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं तो बृहस्पति ग्रह को कैसे ठीक किया जा सकता है?
1: देखिए, ज्योतिष में हर ग्रह के दो पक्ष हैं। आप ये नहीं कह सकते कि शुद्ध रूप से अच्छा ही रहेगा और ये भी नहीं कह सकते कि ये शुद्ध रूप से बुरा ही होगा। बुरे ग्रहों के भी कुछ परिणाम अच्छे होते हैं और अच्छे ग्रहों के भी कुछ परिणाम बुरे होते हैं। तो बृहस्पति जो है, इसकी भूमिका विवाह में क्या है? अगर हम महिला के जीवन की बात करें तो महिलाओं के जीवन का जो केंद्रीय प्लेनेट है वो बृहस्पति है। बृहस्पति किसी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और बिना बृहस्पति के किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता। बृहस्पति किसी पुरुष के जीवन में उसके जीवन साथी के बारे में बताता है और बृहस्पति किसी पुरुष के वैवाहिक जीवन को संतुलित बनाता है, पुरुष के अंदर धैर्य पैदा करता है, वैवाहिक जीवन को गंभीरता से निभाने की ताकत देता है। लेकिन अगर बृहस्पति विवाह में बाधा दे तो विवाह का होना भी कठिन होता है और अगर हो भी गया तो निभ नहीं पाएगा, निभना भी कठिन होता है। बृहस्पति की कुछ स्थितियां व्यक्ति के विवाह के लिए काफी समस्याएं पैदा करती हैं। बृहस्पति अलग अलग स्थितियों में आपके विवाह पर अलग अलग तरीके से असर डालता है। अगर बृहस्पति खराब है तो बृहस्पति अलग तरह की समस्या देता है और अगर बृहस्पति कमजोर है तो ये जीवन में अलग तरह की समस्या प्रदान करता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि बृहस्पति खराब है तो यही करेगा, बृहस्पति कमजोर है तो भी वही करेगा। खराब होगा बृहस्पति, परिणाम बिल्कुल अलग होंगे, और अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो उसके प्रभाव और परिणाम भी अलग रहेंगे।
0: तो बातचीत का यह सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, मानसिक चिंता आपकी दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, करियर में कुछ बदलाव होगा, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी भाग्य उतना ही साथ देगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो अगर किसी की कुंडली में गुरु कमजोर हो, बृहस्पति कमजोर हो, तो विवाह इससे किस तरीके से प्रभावित होता है, आइए पंडित जी से इसके बारे में समझते हैं।
1: तो अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में कमजोर है तो ये विवाह पर कैसा असर डालेगा। बृहस्पति अगर नीच राशि में है, अस्त हो गया है, सही स्थान पर नहीं है, मित्र के घर में नहीं है, तो ये बृहस्पति कमजोर है। अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो ये विवाह में विलंब करवा देगा, लेकिन चूंकि कमजोर है इसलिए विलंब के बावजूद ये शादी करवा देता है। विवाह हो जाने के बाद कमजोर बृहस्पति वैवाहिक सुख लेने नहीं देता, और अगर बृहस्पति कमजोर है तो इसके कारण विवाह के बाद संतान होने में भी विलंब होता है। विवाह भी विलंब से होगा, संतान भी विलंब से होगी, और आप चैन से अपने वैवाहिक जीवन का सुख नहीं पाएंगे अगर बृहस्पति आपका कमजोर है तो। क्या उपाय करना चाहिए अगर बृहस्पति कमजोर है और विवाह पर निगेटिव असर डाल रहा है? ज्यादा से ज्यादा सात्विक रहिए, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिए। दोनों समय भले ही 5 मिनट पूजा उपासना जरूर करिएगा और किसी ज्योतिषी से, विद्वान से सलाह लेकर एक पीला पुखराज पहनिएगा। साथ ही साथ नियमित रूप से बृहस्पति ग्रह का जो गुरु मंत्र है, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ये बृहस्पति ग्रह का गुरु मंत्र है, इसका निरंतर जप करने से बृहस्पति की कमजोरी दूर हो जाएगी।
0: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है।
1: कर्क राशि, मानसिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा।
0: तो चलिए अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न हमें नमिता जी ने लिखा है और नमिता जी हमें महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। 25 जून 1986 का जन्म है, जन्म का समय है रात में 9:12, जन्म स्थान है मुंबई महाराष्ट्र। नमिता जी कह रही हैं कि मेरा एक विवाह होकर के ब्रेक हो चुका है, एक विवाह मेरा टूट चुका है, आगे मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। नमिता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह अवश्य होगा। साल 2027 में आपके सेकेंड मैरिज के योग दिखाई दे रहे हैं और जो आपका दूसरा विवाह होगा वो कुल मिला जुला के सफल दिखाई दे रहा है। आपकी कुंडली में राहु और शनि की जो पोजीशन है वो आपके लिए समस्या का कारण बन रही है, तो एक फिरोजा बनवा के पहनिए। लगभग 8-10 रत्ती का फिरोजा चांदी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार की शाम को फिरोजा धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं इसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
1: जी, अगला प्रश्न शशिकला गुप्ता ने हमें लिखा है, आगरा से लिखती हैं, शशिकला की जन्म तारीख है 4 फरवरी 1978, जन्म का समय दोपहर के लगभग 3 बजे, जन्म स्थान है शिकोहाबाद और मेल लिखती हैं आगरा से। शशिकला जी कह रही हैं कि मेरी हड्डियों में समस्या बहुत है और डॉक्टर कह रहे हैं सर्जरी कराने के लिए, क्या मैं सर्जरी अभी करा सकती हूँ? क्या मेरे लिए सर्जरी कराने का उचित समय चल रहा है? शशिकला जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल सर्जरी के लिए जा सकती हैं। केवल इतना ध्यान रखिएगा कि शनिवार को सर्जरी मत करवाइएगा। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर बृहस्पति खराब हो कुंडली में, इसकी स्थिति ठीक ना हो, तो विवाह पर इसका किस तरीके से असर पड़ता है?
1: देखिए, बृहस्पति अगर कमजोर होगा तो आपके वैवाहिक जीवन पर अलग तरह से असर पड़ेगा, और अगर बृहस्पति आपका खराब होगा तो वो वैवाहिक जीवन पर अलग असर डालेगा। बृहस्पति अगर कुंडली में राहु, शनि या केतु के प्रभाव में हो तो बृहस्पति खराब हो जाता है। बृहस्पति अगर खराब है तो महिलाओं का विवाह नहीं होगा। कोई भी बालिका है जिसका बृहस्पति खराब है तो उसका विवाह नहीं होगा, और अगर हो गया तो विवाह का सुख नहीं मिलेगा, विवाह नहीं चलेगा, टूटेगा। अगर किसी पुरुष का बृहस्पति खराब है तो उसको खराब व्यवहार वाली और दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी मिलती है। पत्नी का स्वभाव और पत्नी की आदतें बहुत ही ज्यादा खराब होती हैं अगर किसी पुरुष का बृहस्पति खराब है। और जिन पुरुषों का बृहस्पति खराब है, ऐसे पुरुष अपनी पत्नी के कारण जीवन में काफी कष्ट भोगते हैं। शादी टूटती नहीं है, लेकिन पत्नी की वजह से जीवन में कष्ट और तकलीफ उठानी पड़ती है। तो अगर आपका बृहस्पति खराब है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सुबह शाम 27 बार या कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। मांस मदिरा आदि का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बृहस्पति खराब है और आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे, बृहस्पति और भी खराब होगा और आपको बुरी तरह से, भयानक तरीके से नुकसान पहुंचा देगा। बृहस्पति अगर खराब है तो सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करना चाहिए, और बृहस्पति खराब है तो रोज नहाइए, पवित्रता से रहिए, दाढ़ी और बाल अपने बहुत ज्यादा बड़े मत रखिएगा।
0: तो ये बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: तुला राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन आंखों में समस्या होने पर लापरवाही आज मत करिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो अगर बृहस्पति कमजोर या खराब हो तो इसका क्या असर पड़ता है, इसके बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अगर बृहस्पति कुंडली में उत्तम हो, अच्छा हो, तब विवाह पर इसका क्या असर पड़ता है, इसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं।
1: अब मान लिया कि आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, अनुकूल है, उत्तम है, तो विवाह पर क्या असर डालेगा। बृहस्पति अगर उच्च राशि में हो, स्वगृही हो, मूल त्रिकोण में हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ हो, पाप प्रभाव ना हो तो अच्छा होता है। सामान्यतः अपने मित्र के घर में बृहस्पति उत्तम बना रहता है। अगर किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति उत्तम है तो महिला संपूर्ण रूप से अच्छी हो जाती है। पढ़ाई लिखाई, विवाह, शिक्षा, पैसा, हर मामले में सफल होती है। उसका विवाह, वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष ये उत्तम बना रहता है। अगर किसी पुरुष का बृहस्पति अच्छा है तो उसको अच्छी और सुगढ़, यानी जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो काम अच्छा करे, घर को, परिवार को, सबको मिला करके चले, जीवन में आनंद से रहे, ऐसी पत्नी मिलती है। और जिन पुरुषों का बृहस्पति अच्छा होता है उनके जीवन में अच्छी पत्नी आती है, और ऐसी पत्नी के आने से उसके जीवन में उन्नति हो जाती है। अगर बृहस्पति अच्छा है कुंडली में, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, तो वो अच्छा बना रहे उसके लिए ईश्वर की शरण में रहिए, नियमित रूप से भगवान की पूजा करिए, पवित्र आहार ग्रहण करिए, नियमित रूप से ध्यान करिए या बृहस्पति के मंत्र का जप करिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा।
0: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मकर राशि मानसिक चिंता परेशान कर सकती है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।

0: रहे हैं, करियर में लाभ होगा, खान पान में सावधानी रखें, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, इस समय आपका स्थान परिवर्तन फायदेमंद हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल आप किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न चेतन आनंद जी ने हमें लिखा है, और चेतन आनंद जी हमें मेल लिखते हैं पटना से। इनकी जन्म की तारीख है 9 सितंबर 1994, जन्म का समय शाम के 6 बजे, जन्म स्थान है सहरसा बिहार, और मेल लिखते हैं पटना से। चेतन जी कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति में दिक्कतें बहुत आ रही हैं और मैं अपना खेत भी बेचना चाहता हूं, लेकिन वो काम भी मेरा नहीं हो पा रहा है, तो जिंदगी में कोई भी काम रास्ते पे नहीं चल रहा है, क्या उपाय मुझे करना चाहिए। चेतन जी, आपकी कुंडली कहती है कि आपकी प्रॉपर्टी इसी साल बिकेगी, जून जुलाई अगस्त के समय में। प्रॉपर्टी बेच करके

0: लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ दुख तकलीफ है जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी को आप नोट कर सकते हैं और इस पर अपने सवाल लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो आप पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का चौथा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी आज का अंतिम प्रश्न सविता जी ने हमें लिखा है और सविता जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 19 फरवरी 1996, जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री अपनी मर्जी से विवाह करना चाहती है लेकिन हम लोगों को ये रिश्ता पसंद नहीं है, रिश्ते का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या ये अपने मन से ही शादी करेगी या हमारी बात सुन लेगी और मान जाएगी। सविता जी आपको बता दें कि जो लड़के का डिटेल आपने भेजा है उसके हिसाब से वास्तव में ये शादी करना उचित नहीं है। दूसरी बात ये है कि लड़के के कुंडली के विवरण के हिसाब से ये जो प्रेम संबंध है या आपकी बेटी उससे विवाह करना चाहती हैं, ये मामला ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, अपने आप ही समाप्त तो हो जाएगा। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, इस साल के अंत तक ये मामला समाप्त तो होगा। अगले साल आपकी पुत्री का विवाह होगा माता पिता की सहमति से, माता पिता की मर्जी से विवाह होने की संभावना ज्यादा है। क्या उपाय करना चाहिए? आप लोग अपनी बेटी के लिए रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या विष्णु सहस्त्र नाम मोबाइल पर लगा करके सुन लीजिए और हर बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में किसी भी संख्या में केले का दान करिए। अगर ये दो उपाय आप लंबे समय तक करें, सफलता जल्दी मिलेगी और पुत्री का विवाह आगे बेहतर हो सकेगा।
0: तो पंडित जी आज के कार्यक्रम में आपने हमें बताया कि अगर बृहस्पति खराब हो या कमजोर हो तो विवाह में परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर बृहस्पति किसी का स्ट्रांग है कुंडली में, वो कहे मेरा बृहस्पति तो बहुत अच्छा है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां आना संभव है?
1: जी देखिए, वैसे तो बृहस्पति वैवाहिक जीवन में धैर्य पैदा करता है, एडजस्ट करने की क्वालिटी देता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। महिलाओं को ज्यादा धैर्य रखना होता है, महिलाओं को परिवार को बांध के चलना होता है, इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पुरुष की कुंडली में बृहस्पति ये बताता है कि उसकी पत्नी का स्वभाव कैसा है, पत्नी रहेगी कैसे, परिवार में एडजस्ट करेगी नहीं करेगी, ये पुरुष का बृहस्पति बता देता है। लेकिन ओवरऑल विवाह के लिए बृहस्पति के अलावा एक और आचार्य को भी देखा जाता है जिन्हें कहते हैं शुक्र, आचार्य शुक्र, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि कुल मिला के ओवरऑल वैवाहिक जीवन जो है वो शुक्र के हाथ में है। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है दो कंडीशन में, एक तो ये कि बृहस्पति आपका बड़ा अच्छा है, बड़ा पावरफुल है, बहुत शानदार जगह बैठा है, शुक्र अच्छा नहीं है तो विवाह होने में दिक्कत होगी या विवाह चलने में दिक्कत होगी। और एक स्थिति है कि अगर बृहस्पति कुंडली के सातवें स्थान में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए और खास तौर से अकेला बैठ जाए, किसी ग्रह के साथ बैठने से चूंकि गुण का ट्रांसफर होने लगता है तो उतना नहीं कह सकते, लेकिन अगर सप्तम भाव में आइसोलेटेड अकेला बृहस्पति बैठा है, धनु में बैठा है, मिथुन में बैठा है, कन्या में है, मीन में है, कोई भी राशि है सप्तम में और वहां गुरु अकेला बैठा हुआ है, पक्की तौर पे जानिए विवाह नहीं चलने देगा, विवाह पहले नंबर पे तो होने नहीं देगा। और अगर हो गया विवाह तो वैवाहिक सुख जीवन में नहीं मिलेगा। किसी महिला की कुंडली में सप्तम में अगर कर्क राशि है, वहां बृहस्पति बैठा है, तो लोग

0: कहेंगे बड़ा अच्छा है भाई, सप्तम में कर्क का बृहस्पति है, उच्च का बृहस्पति है, बड़ा बढ़िया होगा। लेकिन पूछ कर देखिएगा महिला से, या तो वैवाहिक जीवन उसका बहुत ही खराब होगा, या तो उसका वैवाहिक जीवन लंबा नहीं चल पाया होगा।
1: तो जिनका जन्मदिन है आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: आने वाले वर्ष में आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, स्वास्थ्य की समस्याएं ठीक होंगी, करियर धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। इस साल आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल सूर्य देव की उपासना करिएगा, उनको जल चढ़ाइएगा, उनके नाम से मंत्र पढ़िएगा, आपके लिए वर्ष बेहतर होगा।
1: और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि देखिए, हम अलग अलग मंत्र जपने के लिए अलग अलग माला का प्रयोग करते हैं, लेकिन कौन सी एक माला हम खरीद कर अपने घर में रख लें, कौन सी ऐसी माला है जिससे किसी भी मंत्र का जप किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो हर मंत्र के लिए अलग अलग माला का प्रयोग होता है। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती के लिए स्फटिक की माला, भगवान कृष्ण भगवान राम के लिए तुलसी की माला, देवी के लिए लाल चंदन की माला। लेकिन विशेष माला अगर आपके पास नहीं है तो आप जान लीजिए, रुद्राक्ष की माला से आप हर मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर कोई माला नहीं है आपके पास लेकिन रुद्राक्ष की माला आप रखते हैं जप करने वाली, तो निश्चित रूप से आप उस माला से मंत्र जप करते रहिएगा, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं शुभ पहर कौन सा है।
0: शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता पार्वती को पीले फूल अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं या करती हैं तो शीघ्र विवाह के वरदान आपको प्राप्त होंगे। लेकिन अर्पित करेंगे माता पार्वती को ही, अगर अर्पित करके प्रार्थना करेंगे या करेंगी तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किन ग्रहों का दान करना चाहिए और किन ग्रहों का दान कभी नहीं करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है धनु। सामान्यतः इन्हें जब भी मौका मिले इनको शुक्र ग्रह का दान करना चाहिए, अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों को बृहस्पति का और सूर्य ग्रह का दान नहीं करना चाहिए।
1: तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आपका छोटा सा बेटा है, छोटी सी बेटी है, उसको बार बार चोट लग जाती है, क्या करेंगे? जहां तक संभव हो बच्चे को लाल वस्त्र धारण मत करवाइए जिस बच्चे को या बच्ची को बार बार चोट लगती हो। बच्चे के गले में एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डालकर मंगलवार को गले में पहना दीजिए। और बच्चे की माता रोज सुबह बच्चे के लिए 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगी तो बहुत बेहतर होगा।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो गुड लक रेडियो में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अब जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

आपके साथ शो गुप्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। यूं तो जीएनटी स्पेशल में हम हर रोज ही आपको गुड न्यूज की बारिश करते हैं, लेकिन आज बात बारिश की गुड न्यूज की करेंगे। वो गुड न्यूज जो मौसम विभाग ने देश को सुना दी है। देश के लिए मानसून की चिट्ठी आई है। जी हाँ, इस बार मानसून तय वक्त से पहले आ रहा है। हमारे देश में मानसून केरल के रास्ते दाखिल होता है। आमतौर पर मानसून की केरल में एंट्री 1 जून के आसपास मानी जाती है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस बार मानसून 26 मई को केरल पहुंच सकता है, यानी तपती गर्मी से परेशान देश के मौसम को कूल डाउन करने के लिए मानसून तेजी के साथ लोड हो रहा है। मानसून से पहले प्री मानसून बारिश ने देश के दक्षिणी राज्यों में दस्तक दे दी है। साउथ के कई इलाकों में बरस रहे प्री मानसून के बादलों ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है, यानी मानसून से पहले उसका जोरदार ट्रेलर शुरू हो चुका है। आज 21 मई है, यानी मानसून बस अब देश की दहलीज तक पहुंच चुका है। इंतजार है तो उसके उत्तर भारत की मेन लैंड में दाखिल होने का।

0: मई की तपिश में राहत की बौछार होने वाली है। मॉनसून की बारिश से देश की धरती गुलजार होने वाली है। यानी आज जहां सूरज आग उगल रहा है, वहां जल्द झमाझम बादल बरसने वाले हैं। और आज जहां हीट वेव ने बेचैन कर रखा है, कल वहां आसमान से सुकून बरसने वाला है। ये राहत भरी खबर आई है मौसम विभाग की ओर से। मौसम विभाग ने अब की बार देश में मॉनसून के समय से पहले दस्तक देने की गुड न्यूज सुनाई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून 26 मई तक केरल पहुंच सकता है।
1: हमारा 26 का हमने प्रेस रिलीज इशू किया था 26 में, और विद मॉडल एरर जैसे प्लस माइनस 4 डेज होता है। बाकी जो अगर आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, तो जो वो लाइंस है जो हाँ पे अभी मानसून एडवांस हो चुका है।
0: आमतौर पर 1 जून को मॉनसून के ऑनसेट की स्टैंडर्ड तारीख माना जाता है, और हाल के सालों में मॉनसून जून के पहले हफ्ते या फिर मई के अंत में दस्तक देता रहा है। पिछले 2 दशक में सबसे पहले साल 2009 में ऐसा हुआ था, जब तय तारीख से 8 दिन पहले यानी 23 मई को ही केरल में मॉनसून पहुंच गया था। इसके बाद पिछले साल यानी 2025 में भी मॉनसून तय समय से कुछ पहले आ गया था। पिछले साल यानी 2025 में मॉनसून 24 मई को केरल पहुंच गया था। साल 2024 में 30 मई, साल 2023 में 8 जून को, 2022 में 29 मई, 2021 में 3 जून, साल 2020 में 1 जून, साल 2019 में 8 जून और 2018 में 29 मई को मॉनसून केरल पहुंचा था। अब 2026 में भी मॉनसून देश की धरती पर जल्द मेहरबान हो रहा है। वास्तव में भारत की सीमा में मॉनसून की दस्तक यूं तो 16 मई को ही हो चुकी है, लेकिन ये एंट्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई है, जो कि बंगाल की खाड़ी का एक हिस्सा है। 16 मई को दक्षिण पश्चिम मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर के कई हिस्सों, संपूर्ण निकोबार द्वीप समूह, श्री विजयपुरम सहित अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। अब मॉनसून की एंट्री का इंतजार भारत के मेन लैंड पर है।
1: 16 मई को हमारा फर्स्ट एडवांस हुआ था, जिसमें हमने कुछ हिस्से अरबियन सी के, बियो बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड के कुछ हिस्से जहां तक हमने कवर किए थे। उसके बाद सेकंड हमारा था वो 18 मई को था। 18 मई को हमने इंटायर अंडमान निकोबार कवर किया, बियो बंगाल के कुछ हिस्से कवर हुए, साउथ अरबियन सी के कवर हुए। और उसके बाद हमारा यही अनुमान है आने वाले कुछ दिनों में जब बेओ बंगाल के कुछ और हिस्से कवर कर सकता है।
0: बात अगर देश में मॉनसून की साइकिल की करें, तो आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून 1 जून तक दक्षिण की ओर से केरल में दस्तक देता है। 8 जुलाई तक मॉनसून पूरे देश को कवर कर लेता है। ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू करता है और आधा अक्टूबर बीतते बीतते पूरी तरह से विदा हो जाता है। मौसम के जानकार इस बार मॉनसून के जल्दी आने की कई बड़ी वजहें बता रहे हैं। इसके पीछे मौसम की लोकल सिस्टम के साथ साथ ग्लोबल सिस्टम भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार नमी बने रहना, समुद्र से उठ रही तेज नमी वाली हवाएं मॉनसून को तेजी से उत्तर की ओर आगे बढ़ा रही हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश मॉनसून की बढ़ती सक्रियता का स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा अरब सागर और हिंद महासागर का तापमान सामान्य से अधिक रहने से मॉनसूनी सिस्टम को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। मॉनसून का सामान्य समय से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंचना भी इसका एक बड़ा संकेत है। मॉनसून भले ही जल्दी आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने इस बार मॉनसून सीजन के दौरान 92 से 95% यानी सामान्य से कुछ कम बारिश होने का अनुमान जताया है। ऐसे मॉनसून सीजन में बारिश को लेकर आईएमडी के पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें, तो पता चलता है कि अनुमान के आंकड़े से कुछ फीसदी कम या ज्यादा बारिश होना भी आम रहा है। 2025 में मॉनसून सीजन में 108%, यानी सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई थी, जबकि IMD ने 106% बारिश का अनुमान जताया था। 2024 के मॉनसून सीजन में भी 108% बारिश हुई थी, जबकि IMD ने तब भी 106% बारिश का ही अनुमान जताया था। इसी तरह 2023 में 94% बारिश हुई थी, तब IMD ने 96% बारिश का अनुमान जताया था। इससे पहले साल 2022 में 106% बारिश हुई, जो IMD के अनुमान से कुछ ज्यादा थी। अब इस साल मॉनसून का रिपोर्ट कार्ड क्या रहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मॉनसून के जल्द आने की गुड न्यूज ने गर्मी से तपते देश को खुश होने का मौका जरूर दे दिया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: वैसे तो मॉनसून 16 मई को ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे चुका है। ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के दक्षिणी हिस्सों में सक्रिय हो चुका है। निकोबार द्वीप समूह में पिछले कुछ दिनों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, लेकिन अब बारी देश के मेनलैंड में दस्तक देने की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मॉनसून कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून 26 मई के आसपास केरल तट पर पहुंचेगा, जो सामान्य तारीख 1 जून से लगभग एक हफ्ता पहले है। केरल के बाद मॉनसून जून के पहले सप्ताह में तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में पहुंचेगा। 5 से 7 जून तक दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो जाएगा। 10 जून तक मॉनसून के बादल तेलंगाना और महाराष्ट्र तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में 10 से 12 जून तक मॉनसून की बारिश शुरू होगी। इसके बाद बारी आएगी बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, जहां मॉनसून 15 से 20 जून के बीच सक्रिय हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून के 15 से 22 जून के बीच पहुंचने की संभावना है, जबकि गुजरात में मॉनसून 20 से 25 जून के बीच दस्तक दे सकता है। बात अगर दिल्ली NCR की जाए तो राजधानी क्षेत्र तक आते आते मॉनसून को लगभग एक महीना लग जाएगा। दिल्ली NCR में 25 जून के आसपास मॉनसून की एंट्री हो सकती है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी 25 जून तक मॉनसून की बारिश शुरू होने की संभावना है, जबकि राजस्थान में मॉनसून के सबसे आखिर में यानी 30 जून से 5 जुलाई तक पहुंचने की संभावना है। IMD के अनुमानों के अनुसार मॉनसून जुलाई के दूसरे हफ्ते तक पूरे भारत को कवर कर लेगा। तो मॉनसून के तय वक्त से पहले आने की खबर सुनते ही एक ठंडक सी महसूस होने लगती है। अमूमन मॉनसून जून की शुरुआत या मई के आखिर में 2 से 3 दिनों में केरल में दाखिल होता है, मगर इस बार यह 26 मई या उससे भी 1-2 दिन पहले आ सकता है। दक्षिण भारत में प्री मॉनसून की बारिश हो रही है, जो बता रहा है कि मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे कई और कारण हैं जो ये संकेत दे रहे हैं कि मॉनसून की गति और दिशा बिल्कुल सही है। इसी को देखते हुए कई राज्यों ने मॉनसून के लिए जरूरी तैयारी शुरू कर दी है। मॉनसून की आहट मिलते ही तमिलनाडु के कई इलाकों में NDRF ने मोर्चा संभाल लिया है।

0: हीट वेव और लू के थपेड़ों के बीच उत्तर भारत की अग्नि परीक्षा जारी है। कई शहरों का पारा 47 डिग्री को पार कर चुका है। जब पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में तप रहा है, ठीक उसी वक्त दक्षिण भारत के आकाश में एक अलग ही हलचल शुरू हो चुकी है। समुद्र से उठती नम हवाएं, गरजते बादल बता रहे हैं कि मॉनसून दस्तक देने वाला है। रविवार तक मॉनसून के केरल में एंट्री होने की उम्मीद है, वो भी तय वक्त से 5 दिन पहले। इससे पहले ही दक्षिण भारत में प्री मॉनसून की बारिश हो रही है। मॉनसून की आहट मिलते ही एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। तमिलनाडु में रानीपेट में एनडीआरएफ की टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। एनडीआरएफ के जवानों को मुश्किल हालात से निपटना और लोगों की जान बचाने का हुनर पता है। इस काम में इनकी मदद खोजी कुत्ते करते हैं जो कि पूरी तरह से ट्रेंड है। मॉनसून के बादल जब बरसते हैं तो कई कई दिनों तक थमते नहीं, ऐसे में कई बार हालात चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं। तब काम आती है इन जवानों की तैयारी। ये जवान अपने साथ कटर, लाइफ सेविंग जैकेट और बोट समेत हर वो जरूरी चीज लेकर गए हैं जिनकी इन्हें जरूरत पड़ सकती है। समय से पहले आ रहा मॉनसून उम्मीद की नई किरण भी लेके आ रहा है। सही तैयारी के साथ ये बारिश वरदान बनेगी, जल संकट कम होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बादल भी आएंगे और बारिश भी लाएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। खुशबू बता रही है ये सूखी जमीन की, इस दश्त में ही सब्ज इलाके भी आएंगे। मंजूर हाशमी की लिखी ये बात सच होती दिखेगी, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है। लेकिन बारिश की मेहरबानी जब तक नहीं हो रही, गर्मी के सितम से बचने का रास्ता निकाल डालना भी जरूरी है। मई की विदाई और मानसून की दस्तक के बीच में मैदानी इलाकों में जहां गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो वहीं पहाड़ों पर मौसम ने करवट लेकर नजारों को और भी खूबसूरत बना दिया है। कश्मीर और लेह समेत कई पहाड़ी इलाकों में हाल ही में हुई बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार बना दिया। मॉनसून के इंतजार के बीच गर्मी में सर्दी का एहसास करने के लिए मैदानों के मुसाफिर इन बर्फीले पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
2: आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। मॉनसून के लिए फिलहाल यही कहा जा सकता है। बहरहाल गर्मी का हाहाकार है और बारिश का इंतजार, लेकिन बारिश जब तक नहीं आ रही, इस कमबख्त गर्मी से राहत का उपाय ढूंढना भी जरूरी है। और मॉनसून का इंतजार करते लोगों के लिए इन दिनों उसी राहत और सुकून का जरिया बन रहे हैं पहाड़ और उन पर बरसती बर्फ। मैदान में तो मई आग बरसा रही है, पर वादियों में बर्फ बिछी है। 40 डिग्री वाले टॉर्चर से जो निकल कर आए हैं, उनके लिए ये नज़ारा वाकई जन्नत से कम नहीं। हर बार की तरह उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर लोगों की पहली पसंद है। मैदानों में पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी से इन राज्यों के पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान, दिल्ली, यूपी और दूसरे इलाकों से लोग कश्मीर के बांदीपुरा चले आए हैं, जहां बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और नज़ारे लोगों को राहत का एहसास करवा रहे हैं।
3: हम लोग जयपुर राजस्थान से आए हैं और वहां पे बहुत गर्मी है। अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है। आने वाले टाइम पे वार्निंग भी दी गई है कि 25 मई से 2 जून तक बहुत ज्यादा हीट वेव्स आने वाली है। घर में रहें, सब लोगों को बोला गया है। बट मैं बोलना चाहूंगी, क्यों आपने घर में रहना है? आप कश्मीर आए, आप अपना ट्रिप प्लान करें, फैमिली को लेकर आए, दोस्तों को लेकर आए, यहाँ की ब्यूटी को देखें, स्नो में खेलें, कितना मजा आएगा आपको भी।
2: ये तो जम्मू कश्मीर 12 महीने पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार रहता है, मगर इस बार कश्मीर के बांदीपोरा की ठंडी और सुकून देने वाली घाटियाँ सैलानियों को इस तपती गर्मी में खूब लुभा रही हैं।
4: सूरज सर पे हो और बहुत आग बरस रही हो, ऐसा माहौल है वहाँ का। और मैं कश्मीर में यहाँ पर आके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। बहुत कूल मौसम और बहुत प्यारा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर।
2: बांदीपुरा का राजदान पास इन दिनों खास आकर्षण बना हुआ है। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस क्षेत्र में मई के महीने में भी बर्फ जमी है। यही वजह है कि दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे मैदानी शहरों से आने वाले पर्यटक यहां पहुंचकर राहत महसूस कर रहे हैं।
5: यहाँ हमें इतना सुकून मिल रहा है, इतना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हूँ। तो बस ठंडा मौसम है, हर व्यक्ति को इस वक्त कश्मीर घूमना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे आना चाहिए।
2: कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फ है तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। तस्वीर चमोली की है जहां इस वक्त चार धाम यात्रा चल रही है और मौसम का मिजाज देखिए, झमाझम बरसात देखिए, जैसे पूरा का पूरा इलाका पानी से सराबोर है। बारिश की बूंदों के साथ ओले भी गिरे और पारा लुढ़क गया। बारिश के इंतजार के बीच तपती मई में आंखों को सुकून देने वाली तस्वीरें हैं ये, लेकिन मुश्किल ये है कि सबको पहाड़ की ये बारिश और बर्फ नसीब कहाँ है। लेकिन चिंता की बात नहीं, जो गर्मी में सर्दी का एहसास करने पहाड़ों पर न जा सके, इंतजाम उनके लिए भी है, जैसे अहमदाबाद वालों ने किया। ये नज़ारा है अहमदाबाद के एक स्नो पार्क का। मई के महीने में जब गर्मी अपने तेवर दिखा रही है तो इस स्नो पार्क से बेहतर जगह शायद कोई दूसरी नहीं हो सकती। गर्मी के इस मौसम में पूरे उत्तर भारत के साथ गुजरात और राजस्थान में भी हीट वेव का जबरदस्त असर दिख रहा है, लेकिन इस मुश्किल मौसम में अहमदाबाद का ये स्नो पार्क लोगों को ठंडक का तोहफा दे रहा है।
6: बहुत सारी हॉलीडेज है, गर्मी है, इसलिए फ्रंट ब्लास्ट में एंजॉय करने के लिए आए हैं हम, जाते हैं और 3 साल से सलिंग आते हैं यहाँ।
7: अभी गर्मी बहुत सारी है इसीलिए हमने यही प्लेस सिलेक्ट करी।
2: स्नो पार्क के अंदर का तापमान -7 डिग्री रहता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। गर्मी के दिनों में यहाँ आने के लिए खास तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। बड़े हो या छोटे, स्नो पार्क में दाखिल होने से पहले सभी को जैकेट, बूट्स और ग्लव्स पहनना पड़ता है। इस पार्क में सभी के लिए हर साइज के जैकेट्स और ग्लव्स मिल जाते हैं। यहाँ की स्नो स्लाइड्स बच्चों की फेवरेट है। स्नो कासल और स्नो मैन के साथ बच्चे घंटों मस्ती करते हैं। इस मौसम में जो लोग हिल स्टेशन पर नहीं जा पा रहे, उनके लिए ये स्नो पार्क वाकई एक बेहतरीन सौगात है। वैसे बादल भी जल्द ही राहत की सौगात बरसाने वाले हैं, चिलचिलाती गर्मी से निजात दिलाने वाले हैं। लेकिन जब तक बादल नहीं बरसते, गर्मी से राहत दिलाने के लिए पहाड़, स्नो पार्क और वाटर पार्क से काम चलाना भी एक अच्छा ऑप्शन है। श्रीनगर से अशरफ वानी और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देश के कई इलाके इस वक्त गर्मी की सबसे मुश्किल अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। मौसम विभाग ने स्पष्ट शब्दों में यह बता दिया है कि अगले 2-3 दिनों में मौसम का ये मिजाज यूं ही बना रहेगा। लेकिन गर्मी है तो क्या गम है, क्योंकि गर्मी जितनी जोरदार है, गर्मी के विरुद्ध युद्ध की तैयारी भी उतनी ही दमदार। हॉट वेदर में कूल सॉल्यूशंस निकालने में हम भारतीयों का तो जवाब ही नहीं है। गर्मी से बचाव के कूल कूल उपायों की ये 2 तस्वीरें देख लीजिए इस वक्त आपके सामने है। एक तस्वीर है काशी की। काशी के मंदिरों में भीषण गर्मी की तपिश से भगवान को बचाने के लिए कूलर और एसी तक लग गए हैं। इतना ही नहीं, मूर्तियों को सूती वस्त्र गर्मी से बचाव के लिए पहनाए गए हैं और तो और भोग प्रसाद और फल में भी ठंडी सामग्री चढ़ाई जा रही है। काशी का राम जानकी मंदिर हो या फिर बड़ा गणेश भगवान के लिए मंदिर के गर्भगृह में एसी की व्यवस्था की गई है। भगवान के लिए गर्मी में खास इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं ख्याल बेजुबानों का भी रखा जा रहा है। दिल्ली के जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के बाड़ों में स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं जो फव्वारों की तरह ठंडी फुहारें छोड़ता है। इसके अलावा जानवरों के लिए ठंडा और साफ पानी का इंतजाम किया गया है। तालाबों की मरम्मत कर रोजाना ताजा पानी भरा जा रहा है ताकि जानवर उसमें नहा सकें और गर्मी से राहत पा सकें। गर्मी को देखते हुए जानवरों के खान पान में बदलाव किया गया है। और चलिए इसी के साथ जी एंड स्पेशल की आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ चैनल।

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
3: प्रभात, समंदर में कचरा निगलने वाली नाव की जो कि सौर ऊर्जा से चलती है, मुंबई के समंदर से कचरा हटाने के लिए रिमोट कंट्रोल दो नौकाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया और का परेड के भदवार पार्क में तैनात मानव रहित ये बोट पानी की सतह से रोजाना लगभग 80 से 90 किलो तक तैरता हुआ कचरा उठा रही है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बीएमसी ने तकनीक का सहारा लिया है।
4: समंदर किनारे सपनों का शहर मुंबई, अरब सागर के किनारे बसा मुंबई सिर्फ एक महानगर नहीं है बल्कि ख्वाबों का शहर है, जिसके समुद्री तटों को साफ करने के लिए बीएमसी नई रणनीति और मजबूत इरादों के साथ तैयार है। मुंबई अपनी चकाचौंध, खूबसूरत जुहू बीच, गिरगांव चौपाटी और ऊंची लहरों के लिए मशहूर है। हर साल हजारों लाखों लोग माया नगरी का रुख करते हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी तो है ही, बॉलीवुड और दूसरे कई ऐसे काम धंधे भी हैं जिसके लिए लोग यहां खींचे चले आते हैं। इसी वजह से शहर की आबादी तेजी से बढ़ भी रही है। तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण की वजह से मुंबई में कचरा प्रबंधन आज एक गंभीर चुनौती है। जमीन से होता हुआ ये कचरा समंदर तक पहुंच जाता है, फिर भारी बारिश और हाई टाइड के दौरान ये कचरा गेटवे ऑफ इंडिया, कप परेड जैसे समुद्री किनारों पर जमा हो जाता है। समंदर की खूबसूरती पर दाग लगाने वाले कचरे में प्लास्टिक भी शामिल होता है, जिसको रोकने के लिए बीएमसी ने समंदर में बिना चालक वाली नौकाओं को उतार दिया है।
5: इस वक्त हम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया इलाके में हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं टूरिस्ट बोट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीएमसी के सामने एक चैलेंज है कि जो समुद्री तट है मुंबई का, उसके आसपास जो कचरा है उसे कैसे निकाला जाए। इसीलिए आप सामने जो देख रहे हैं एलिसियम, ये अनमैन्ड बोट है, इलेक्ट्रिक उस पर चलने वाली पावर पे, और ये आप कह सकते हैं ऐसी दो बोट, एक गेटवे ऑफ इंडिया पर और एक कफ परेड में भदवार पार्क पर लाई गई है बीएमसी की तरफ से। जो कन्वेयर बेल्ट ब्लू कलर का है, ये जो कचरा है वो पिकअप कर समुद्र से अंदर बोट में डालता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप कह सकते हैं कि बीएमसी ने इसीलिए शुरू किया है क्योंकि जो समुद्र के आसपास कचरा दिखता है उसे साफ किया जा सके।
4: विशेष तरीके से तैयार इस नाव में दो बैटरी लगी है जो सोलर पावर यानी सौर ऊर्जा से चार्ज होती है। 1 किलोमीटर के दायरे में रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होने वाली ये बोट कन्वेयर बेल्ट की मदद से समुद्र में फैले कचरे को इकट्ठा करती है।
6: एकदम इजी सिस्टम है, इसमें दो चीजें है, थ्रस्टर और कन्वेयर। स्टार्ट करने के लिए पहले इसको अपने को बैटरी लगाना पड़ता है, दो बैटरी है उसको। दोनों बैटरी लगाने के बाद, कनेक्ट करने के बाद वहां पे एक स्विच है, उसको ऑन करना है। बेसिकली हमारा एक टेस्टिंग रहता है डेली रूटीन का, उसमें हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद ये सब चीजें अटैच होने के बाद में थ्रस्टर चेक करते हैं, थ्रस्टर लगाने के बाद में हम लोग बोट स्टार्ट कर लेते हैं। फिर इसका राउंड अप कैसे कि आप जहाँ पे आपका गार्बेज है यहाँ पे ये बाय रिमोट ये बोट ऑपरेट किया जाता है।
5: ओके,
6: इसी के लिए उसका पर्टिकुलर रेंज दिया है 1 किलोमीटर का। तो ये रेंज से हम लोग बोट गार्बेज की तरफ ले जाते हैं, और ये जो कन्वेयर है वो कन्वेयर का जो फ्रंट बेस है वहाँ पे एग्जैक्टली कचरा कन्वेयर पे आके वो हॉपर में जमा हो जाता है।
4: बीएमसी की ओर से तैनात ये नावें बिना चालक के पानी की सतह से रोजाना लगभग 80 से 90 किलोग्राम तक तैरता हुआ कचरा निकालती हैं। इस दौरान ये पानी को प्रदूषित भी नहीं करती हैं।
6: बेसिकली अभी ये कैसे ये कॉन्सेप्ट अनमैन बोट का क्यों है कि यहाँ पे तीन चीजें प्रायोरिटी पे है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी, सेकेंड डिग्निटी है, और दूसरी बात में जीरो इमर्शन। जीरो इमर्शन यानी ये इलेक्ट्रिकल बोट है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको बोट को खाली चार्ज करना है, उसके बाद आप ऑपरेट कर सकते हो। ये जो सेकंड स्टेप है जहाँ पे जो कन्वेयर है, वो कन्वेयर में आपको जो गार्बेज है साइड गार्बेज पूरा कलेक्ट होता है, और सेकंड थिंग क्या होता है कि कोई कॉर्नर पे जो जगह रहेगी वहाँ पे ये इजीली जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस कन्वेयर
1: जी।
6: हाँ सेकंड थिंग फिर ये सब इसमें जमा हो जाता है, सब गार्बेज पूरा इसमें जमा हो जाता है। और इसका जो रेंज है वो जो रेंज है 1 किलोमीटर का है, और इसका जो हॉपर का कैपेसिटी है 800 से 1000 किलो तक है। और ये मिनिमम आप गेटवे का अगर कचरा देखेंगे जो गार्बेज देखेंगे तो उसका 200 से 400 तक उसका लिमिट है, बदवार पक्का है वो आपका 150 से 250 तक जाता है।
4: समंदर किनारे कचरे में सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है, जिनमें प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बॉटल्स और प्लास्टिक के टूटे सामान शामिल होते हैं। दरअसल लोग प्लास्टिक की बॉटल खरीद कर पानी पीते हैं और उसे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, प्लास्टिक पैक्ड चीजें खरीद कर खाते हैं और फिर खाली प्लास्टिक पैकेट को फेंक देते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, नदियों से लेकर समंदर तक लोगों का यूज किया गया कचरा प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसको रोकने का काम बीएमसी कर रही है।
5: तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से इनोवेशन किया गया है समुद्र में साफ सफाई हो सके उसमें किसी तरह का ह्यूमन आप कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसीलिए ये अनमैन्ड बोट्स बैटरी ऑपरेटेड जो है वो चलाई जा रही है। जो भी वेस्ट जनरेट होता है, काफ़ी वेस्ट जनरेट होता है क्योंकि टूरिस्ट एरिया, टूरिस्ट मूवमेंट जो है वो हज़ारों की तादाद में रहती है गेटवे ऑफ इंडिया पर, और उसके लिए ये पूरा सिस्टम जो है वो बीएमसी की तरफ से डिप्लॉय किया है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Hop on board and settle in for an easy going cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
8: कुंडली का कमजोर बृहस्पति किस तरह की समस्याएं वैवाहिक जीवन में देता है? कुंडली का खराब बृहस्पति वैवाहिक जीवन पर किस तरह का असर डालता है, और कुंडली का शुभ बृहस्पति वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बृहस्पति की अलग अलग स्थितियों का वैवाहिक जीवन पर कैसे पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में

0: बैटल इन द बे एक्सरसाइज में पहली बार भारतीय सेना ने की शिरकत. आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और ऊंचे दुर्गम इलाकों में युद्धाभ्यास. मजबूत सुरक्षा सहयोग के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर. कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन. पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज लकी ड्रॉ से हुआ चुनाव. पवित्र यात्रा के लिए जून से अगस्त के बीच 20 जत्थों में रवाना होंगे यात्री. मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी दिख रहा है भीषण गर्मी का असर. हिमाचल के ऊना में 44 तो शिमला में 30 डिग्री के ऊपर पारा. अगले दो दिन में बारिश के आसार. AI तकनीक से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती. अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रेल मंत्री की अपील. यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहे मुसाफिर. हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें संदिग्ध की जानकारी.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला.
0: सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं आधी अधूरी सच्चाइयां झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं. कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है. लोग बिना जांचे परखे सोचे समझे सोशल मीडिया पर ये खबरें अक्सर शेयर कर देते हैं क्योंकि आजकल खबरें केवल अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है. हर किसी के हाथ में एक कैमरा है. हर घटना हर तस्वीर हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है. लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है. कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है. कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल सच लगे. नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे इन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी. ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं. जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में. तो आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं उसमें फैक्ट चेक में सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है जहां सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगने को लेकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. क्या है वायरल दावे की सच्चाई आगे आपको बताएंगे. हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि मामूली सी कहा सुनी के बाद एक लड़के ने लड़की को बेरहमी से पीट दिया. इसकी सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे. शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है.
0: मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ये कह रहे हैं कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है जहां सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगने को लेकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया. पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट.
2: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है. इस घोषणा के बाद कोलकाता में 15 मई यानी शुक्रवार को नमाज के बाद हंगामा मच गया. एक धर्म विशेष समुदाय के लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हो गई. इसी संदर्भ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ में मौजूद लोग नारे लगाते दिख रहे हैं. वीडियो में लिखा है कोलकाता में सड़क पर नमाज को लेकर बवाल. नई सरकार के आदेश के खिलाफ एक धर्म विशेष के लोगों का धमकी भरा प्रदर्शन. एक व्यक्ति ने वीडियो को एक्स पर शेयर किया और तंज कसते हुए लिखा कि सड़क किसी की थोड़ी है जो जब चाहे जहाँ चाहे वही मुर्गा बन जाए. सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है.
0: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी सड़क पर लोगों का हुजूम देखा जा सकता है. ये लोग कुछ नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है जहां पर सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगने को लेकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है. ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की. फैक्ट चेक टीम

0: ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने गौर से सुना तो ये बांग्ला लगा। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने फिर से वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और अगर ये वीडियो सड़क पर नमाज रोकने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का था तो इस दौरान हमें यहाँ पर बंगाल पुलिस के जवान क्यों नजर नहीं आए? इतने बड़े विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस के जवानों को तैनात क्यों नहीं किया गया, ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। साथ ही वीडियो में द लाइट पार्क नाम के एक होटल का बोर्ड भी नजर आ रहा है, लेकिन सर्च के दौरान पूरे पश्चिम बंगाल में इस नाम का कोई भी होटल हमें नजर नहीं आया। मतलब ये कि वायरल वीडियो कहीं और का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में वायरल दावे की पुष्टि करती कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है? हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही? अब देखिए सच और झूठ क्या है।
1: फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें फेसबुक पर उसी लोकेशन का दूसरा वीडियो मिला। कई बांग्लादेशी यूजर्स ने इस वीडियो को 14 मई को शेयर किया था। इन पोस्ट के मुताबिक वीडियो आवामी लीग के नेता इंजीनियर मुशर्रफ हुसैन के जनाजे में बांग्लादेश के चिट्टागोंग में उमड़ी भीड़ का है। एक बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट में 14 मई को छपी रिपोर्ट के मुताबिक चिट्टागोंग में इंजीनियर मुशर्रफ हुसैन की अंतिम विदाई में हजारों समर्थक शामिल हुए थे। फेसबुक पर मिले वीडियो में द लाइट पार्क नाम का होटल साफ दिख रहा है। इस क्रू की मदद से हमने वायरल वीडियो में दिख रही जगह को गूगल मैप्स पर सर्च किया तो ये हमें बांग्लादेश के चिट्टागोंग में मिल गई। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि बांग्लादेश के चिट्टागोंग का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ रितेश दत्ता, टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि मामूली सी कहा सुनी के बाद एक लड़के ने एक लड़की को बेरहमी से पीट दिया जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि लिफ्ट में लड़का मैडम से गलती से टकरा गया था, फिर लगातार बेइज्जती करके थप्पड़ मार दिया लड़के ने, फिर उसके बाद लड़की पर हमला कर दिया। लेकिन जब हमने इस वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए हमारी रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पर ये हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वायरल हो रहा वीडियो किसी सीसीटीवी फुटेज का है। वीडियो में नजर आता है कि लिफ्ट से बाहर निकलते समय एक लड़का एक लड़की से टकरा जाता है। लड़का टकराने की वजह बताता है। इस पर लड़की कहती है कि देख कर आना चाहिए था। लड़का सॉरी भी बोलता है और इतने में लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट के बंद होते ही लड़की उस लड़के को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद लड़के का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो लड़की पर गुस्सा करता है, थप्पड़ क्यों मारा इसकी वजह पूछता है, लेकिन लड़की लड़के से लगातार बहस करती रहती है। इसके बाद लड़का अपना आपा खो देता है और वो लड़की को बुरी तरह से पीटता है। कई न्यूज आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को लेकर कई खबरें चलाई। एक्सपर्ट वीडियो को शेयर करते हुए एक शख्स ने लिखा कि लिफ्ट में लड़का मैडम से गलती से टच हो गया, फिर लगातार बेइज्जती करके थप्पड़ मार दिया। लड़का फिर ज्यादा पिटाई किया, लेकिन सीसीटीवी नहीं होता तो मैडम विक्टिम कार्ड खेलती। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर यूजर इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में नजर आ रहा है कि लिफ्ट से बाहर निकलते समय एक लड़की और एक लड़का आपस में टकरा जाते हैं और इसके बाद लड़की बहस करते हुए युवक को थप्पड़ मार देती है। युवती से पीटने के बाद युवक उसे पहले तो थप्पड़ मारता है और उसके बाद जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीटता है। इतना ही नहीं, वो लड़की के सर पर एक भारी चीज भी मारता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हमने इसकी पड़ताल शुरू की तो दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। मसलन इन दोनों के बीच बहस होती है तो फिर शोर सुनकर आसपास से कोई वहां पर क्यों नहीं पहुंचता। इतना नहीं, लड़का जब लड़की के थप्पड़ मारने के बाद पलटवार करता है तो लड़की को जमकर पीटता है। तो इस दौरान लड़की चीखी होगी, शोर मचाया होगा, लेकिन इसके बावजूद वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा। ऐसा भला कैसे हो सकता है? लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर मिला। वीडियो के कैप्शन में एक्टिंग और रेसलिंग जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है। इस अकाउंट पर यह वीडियो दो बार शेयर किया गया था। वीडियो में नजर आ रहे लड़के का नाम विपिन चौहान है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो के मुताबिक वो एक रेसलर है। उनके अकाउंट पर मौजूद कई दूसरी वीडियोस में CWE एकेडमी का बैनर नजर आता है। CWE मशहूर रेसलर खली की कुश्ती एकेडमी है जो कि पंजाब में स्थित है। उनके अकाउंट पर इस तरह की मारपीट और भी वीडियो मौजूद है जिनमें वही लड़की है जो वायरल वीडियो में भी नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए फैक्ट चेक टीम ने विपिन चौहान से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रही लड़की उनकी पत्नी रुचिका शाह है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने इस तरह के स्क्रिप्टेड वीडियो बनाने शुरू किए हैं। इन वीडियोस पर उन्हें काफी व्यूज और लाइक्स मिले और जिसके बाद उन्होंने इस तरह के और भी वीडियो बनाने का फैसला किया। वो और उनकी पत्नी प्रोफेशनल कुश्ती खिलाड़ी हैं और किसी को बिना चोट पहुंचाए वो ऐसे वीडियोस बना सकते हैं। इस वीडियो को शूट करने के दौरान भी किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। उन्होंने कहा कि कभी कभी शूटिंग के दौरान हल्की फुल्की चोट लग जाती है लेकिन वो ज्यादा गंभीर नहीं होती। विपिन ने यह भी बताया कि उन्होंने अब CWE एकेडमी छोड़ दी है। साफ है कि लड़की के साथ मारपीट करता शख्स उसी का पति है। ये वीडियो भी असल घटना का नहीं है। वीडियो में नजर आ रहे दोनों लोग कुश्ती खिलाड़ी हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में। दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
0: चक के आखिरी सफर का जहां हम पेश करने वाले कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।

0: आज वो पार्टी दे रहा है हम सबको।
1: इन दिनों सोशल मीडिया पर चगा चौंद और शोबाजी वाली रील्स की बाढ़ आई हुई है, लेकिन इसी बीच झारखंड से सामने आए एक वीडियो ने इंटरनेट की लाखों जनता का दिल जीत लिया है। ये कहानी सूरज नाम के एक बच्चे की है, जिसने साबित कर दिया कि खुश रहने के लिए किसी महंगे कैफे या आलिशान पार्टी की जरूरत नहीं होती, बस कुछ सच्चे दोस्त और 100 रुपए का बजट ही काफी है। वीडियो में सूरज अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से चूल्हे के पास बैठकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता दिख रहा है।
0: हेलो गाइस, आज सूरज का बर्थडे है, तो सूरज 100 रुपया का मैगी लाया है और उसका साथ सेंटा फेंटा भी और बहुत बच्चा भी है, आज वो पार्टी दे रहा है हम सबको।
1: वीडियो की शुरुआत सूरज के दोस्त के एक डायलॉग से होती है, जो कैमरे के सामने आकर बड़े गर्व से कहता है, आज सूरज की तरफ से बर्थडे पार्टी है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस छोटी सी पार्टी के लिए सूरज ने अपने गुल्लक से पाई पाई जोड़कर पैसे बचाए थे। वीडियो में दिख रहा है कि सूरज खुद चूल्हे पर मैगी बना रहा है और उसके दोस्त आसपास बैठकर अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बच्चों के चेहरों पर बिखरी मुस्कान और खुशी किसी भी महंगे रेस्टोरेंट के जश्न से कहीं ज्यादा बड़ी और खूबसूरत लग रही है।
0: हेलो गाइस, आज सूरज का बर्थडे है, तो सूरज 100 रुपया का मैगी लाया है और उसका साथ सेंटा फेंटा भी और बहुत बच्चा भी है, आज वो पार्टी दे रहा है हम सबको, आज उसका बर्थडे है।
1: आप भी बचपन में कई बार डॉक्टर के पास गए होंगे, अगर तबीयत ज्यादा खराब रही होगी तो डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाया होगा। अब इंजेक्शन देखकर आपको डर भी लगा होगा। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो बड़े हो चुके हैं मगर आज भी इंजेक्शन से डरते हैं। वही वीडियो में दिख रही ये बच्ची इंजेक्शन से बिल्कुल भी नहीं डर रही। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बच्ची को दर्द होता ही नहीं, उसे इंजेक्शन से डर भी नहीं लगता, और बच्ची के इसी एक्सप्रेशन के कारण वीडियो वायरल हो रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर क्रिकेट से जुड़ा ये बेहद दिलचस्प वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने लोगों को हैरान भी किया और प्रभावित भी। आमतौर पर क्रिकेट खेलने के लिए बड़े मैदान की जरूरत होती है, जहां बल्लेबाज शॉट लगा सके और फील्डर आसानी से गेंद पकड़ सके, लेकिन वायरल वीडियो में जो नजारा देखने को मिला वो पूरी तरह अलग है। यहां लोगों ने पहाड़ों के बीच ऐसी जगह पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, जहां मुश्किल से एक पिच के बराबर जगह मौजूद है। वीडियो में साफ नजर आता है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच पतली सी जगह पर क्रिकेट की पिच बनाई गई है। आसपास इतना कम स्थान है कि सामान्य तरीके से फील्डिंग करना लगभग नामुमकिन लगता है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों ने इस चुनौती का भी शानदार हल निकाल दिया। जहां जहां पहाड़ों के नीचे थोड़ी सी भी जगह मिली, वहां खिलाड़ी फील्डिंग करने के लिए खड़े हो गए। किसी ने पत्थरों के बीच अपनी जगह बनाई तो कोई ढलान पर खड़ा दिखाई दिया। वीडियो में बल्लेबाज आराम से शॉट खेलते दिखाई देते हैं, जबकि गेंदबाज भी पूरे जोश के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। वही फील्डर पहाड़ी रास्तों और चट्टानों के बीच भी तेजी से दौड़ते नजर आते हैं। ये दृश्य बताता है कि खेल के प्रति लोगों का प्यार किसी भी परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। अगर मन में जुनून हो तो इंसान कहीं भी अपने पसंदीदा खेल का आनंद ले सकता है।
2: कैसा होता अगर धुरंधर फिल्म का ये गाना भोजपुरी में होता?
1: इंटरनेट पर इन दिनों ये वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी सिंगर के फैन हो जाएंगे। फिल्म धुरंधर का सुपरहिट रोमांटिक सॉन्ग गहरा हुआ का भोजपुरी वर्जन ऐसा तहलका मचा रहा है कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए हैं।

0: Welcome to our house in Siwa.
1: सोशल मीडिया पर दो बहनों ने इजिप्ट लीबिया के बॉर्डर पर बने अपने छोटे से घर की झलक लोगों को दिखाई। झोपड़ी नुमा ये घर बाहर से नमक और मिट्टी से बनी थी। इसे देख लोगों ने उम्मीद की थी कि बहनें गरीब हैं और मुश्किलों में अपना गुजारा कर रही हैं। लेकिन जब घर को अंदर से दिखाया गया तो सब दंग रह गए। घर के अंदर आधुनिक और लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक मिली। कमरे में सॉफ्ट लाइटिंग, कंफर्टेबल सोफा, बड़े बड़े बेड, फुली इक्विप्ड किचन, वाईफाई, एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं और खूबसूरत डेकोरेशन सब कुछ मौजूद था। बहनों ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल से घर बनाया है जिसमें मिट्टी और नमक का इस्तेमाल किया गया है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। यूं तो अब तक आपको पुल पार करने का एक ही तरीका पता होगा और वो ये है कि पुल के ऊपर से गुजरना। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद इस पर आपका विचार बदल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मानना पड़ेगा कि किसी भी पुल को पार करने के लिए कई और तरीके भी हो सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पुल को पार करने के लिए ब्रिज के ऊपर से जाने की जगह उसके नीचे से उछल कूद करते हुए गुजर रहा है। शख्स पुल के नीचे लगे खम्भों और पोल को पकड़कर झूलते हुए ब्रिज को पार कर रहा है। वीडियो में शख्स जितनी आसानी से पुल को पार करता दिख रहा है उतना आसान ये काम बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस शख्स की फिटनेस वाकई कमाल की है। आप देख सकते हैं कि शख्स उस पुल को ना सिर्फ पार करते हुए जाता है बल्कि वो उसी पुल पर ठीक वैसे ही लटकते हुए वापस आता है। पुल के नीचे मौजूद लोग उस शख्स का हौसला बढ़ाते और उसका वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते नजर आ रहे हैं। इन दिनों इंटरनेट पर ये वीडियो तहलका मचा रहा है जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। मामला एक डोसा वाले भैया और उनके सबसे अनोखे कस्टमर सांड से जुड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यस्त सड़क के किनारे एक डोसे की दुकान है जहां तवे के ठीक पास एक सांड बड़े ही धैर्य के साथ खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसे दुकान का पूरा मेन्यू जबानी याद आया और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। आम तौर पर दुकानदार जानवरों को भगा देते हैं, लेकिन इस डोसा वाले ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। आप देखेंगे कि दुकानदार ने बड़े ही प्यार से तवे पर मक्खन मारकर एक बढ़िया कुरकुरा डोसा तैयार किया और सीधे अपने इस चार पैरों वाले स्पेशल गेस्ट को परोस दिया।
2: फाइनली इनका डोसा खिलाने का बारी आ चुका है।
1: सांड ने भी बड़े चाव से डोसा खाया और अपनी पूंछ हिलाकर वेंडर का शुक्रिया अदा किया। दुकानदार की माने तो ये सांड रोजाना सही समय पर यहाँ आ जाता है। कुछ लोग तो सिर्फ इस अनोखे नजारे को देखने के लिए यहाँ रुकते हैं, जिसकी वजह से दुकान अब एक छोटा मोटा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। जंगल सफारी के इस वीडियो को देखकर यूजर्स हैरान हैं। वीडियो में जंगल नजर आ रहा है। जीप में बैठी लड़की ने जंगल सफारी के दौरान वीडियो बनाया और तभी नजर आता है कि एक हाथी उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। हाथी जब काफी करीब आ जाता है तो लड़की डर जाती है और जीप चालक को गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगती है। कुछ सेकंड के लिए हाथी रुक जाता है मगर फिर उनके पीछे आने लगता है। जीप में मौजूद आदमी भी गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगता है। वीडियो देखकर लगता है कि हाथी इन पर हमला कर सकता है और इसी कारण ये लोग भी डर गए।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: और जैसा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से विदेश यात्रा के बजाय अपने देश को एक्सप्लोर करने की अपील की थी, तो जीएनटी भी आप सभी से अपील कर रहा है कि आप भी अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें या वीडियोस हमें भेजो ताकि हम आपके उन वीडियोस को दिखाएं। हमारे दर्शक भी बड़े ही उत्साह के साथ अपनी जगहों के खूबसूरत वीडियोस भेज रहे हैं। तो चलिए आज आपको उत्तरकाशी के उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में व्लॉगर बनी एक दर्शक की जबानी सुनाते हैं कि क्यों आपको उत्तराखंड के इस बेहद खूबसूरत और धार्मिक शहर को एक्सप्लोर करना चाहिए।

0: स्वागत है आपका गुड न्यूज चैनल में। मैं गीता सेमवाल, मैं बुलाना चाहती हूँ आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। हल्की हल्की आजकल ना शाम के टाइम पे ठंड महसूस हो रही है। वाह, कितने सुंदर नजारे हैं, कितनी सुंदर प्रकृति की यहाँ पे खूबसूरती है। आपको ना बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़, चीड़ का घना जंगल, ये सब चीज देखने को मिलता है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में दो धाम है, श्री यमुनोत्री धाम और श्री गंगोत्री धाम। तो आजकल ना काफी अच्छी यात्रा चल रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी यही कहा है कि आप विदेशों में घूमने न जाके भारत की जो जगह है, पर्यटक स्थल है, जैसे उत्तराखंड में चार धाम है, श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, आप इन जगहों पे आए। इसके अलावा भी उत्तराखंड में न कहीं आपको पर्यटक स्थल देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आजकल यमुनोत्री धाम में और श्री गंगोत्री धाम में, यानी चारों धाम में काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। जब हमारे गांव मुखवा में मोदी जी आए थे तो उस टाइम जो ये यात्रा चल रही है, अब ये ग्रीष्म काल में न होते हुए अब ये यात्रा शीत काल में भी चलती है, यानी 12 महीना यात्रा चलती है। तो माननीय मोदी जी ने घाम तापो पर्यटक इसका नाम दिया है। मुखवा के सामने धराली है, हरसिल है, बगोरी है। और अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं तो यहाँ पे ना ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए कई जगह है, जैसे दयारा बुग्याल है, गौमुख ट्रैक है, सात आठ ट्रैक है, ऐसे कई अन्य ट्रैक है। अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप शीतकाल में यात्रा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उस टाइम तो और ज़्यादा खूबसूरती आपको देखने को मिलती है। क्योंकि हरसिल में जो है धराली, मुखवा में सेब, राजमा और उसके साथ साथ खुमानी हो गया, नाशपाती हो गया, ये भरपूर मात्रा में आपको देखने को भी और खाने को भी मिलती है। और इसी के साथ साथ एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि वेडिंग डेस्टिनेशन है, जैसे कि त्रिजोगी नारायण है और उत्तरकाशी में बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में है, श्री गंगोत्री धाम में गंगा मैया जी के मंदिर में है, और गंगा मैया जी का जो शीतकालीन प्रवास है मुखवा, वहाँ पे आप ना शादी करवा सकते हैं और इन जगहों पे ना शादी होती है। तो आइए ना श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम और गंगा मैया जी के शीतकालीन प्रवास मुखवा उत्तरकाशी में आपका स्वागत है।
1: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें, अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई भी खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा, बनाइए ब्लॉग और हमें इस नंबर पर भेज दीजिए। नंबर है 7303409922। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस वीडियो को जीएनटी दिखाएगा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
2: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायुअस्त्र 1 का सफल परीक्षण, 10 किलो वॉरहेड के साथ 100 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना, सेना की स्ट्राइक और निगरानी क्षमता में होगा इजाफा। डिफेंस और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की लंबी छलांग, प्रोजेक्ट सबल के तहत नोएडा की हैवी लिफ्ट ड्रोन कंपनी को मिला 30 करोड़ का फंड, सैन्य ऑपरेशन के साथ आपदा राहत में मिलेगी मदद। अमेरिका में हो रहे बैटल इन द बे एक्सरसाइज में पहली बार भारतीय सेना ने की शिरकत. आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और ऊंचे दुर्गम इलाकों में युद्धाभ्यास. मजबूत सुरक्षा सहयोग के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर. कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन. पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज लकी ड्रॉ से हुआ चुनाव. पवित्र यात्रा के लिए जून से अगस्त के बीच 20 जत्थों में रवाना होंगे यात्री. मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी दिख रहा है भीषण गर्मी का असर. हिमाचल के ऊना में 44 तो शिमला में 30 डिग्री के ऊपर पारा. अगले दो दिन में बारिश के आसार. एआई तकनीक से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती. अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रेल मंत्री की अपील. यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहे मुसाफिर. हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें संदिग्ध की जानकारी.

आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। यूं तो जीएनटी स्पेशल में हम हर रोज ही आपको गुड न्यूज की बारिश करते हैं, लेकिन आज बात बारिश की गुड न्यूज की करेंगे। वो गुड न्यूज जो मौसम विभाग ने देश को सुना दी है। देश के लिए मानसून की चिट्ठी आई है। जी हां, इस बार मानसून तय वक्त से पहले आ रहा है। हमारे देश में मानसून केरल के रास्ते दाखिल होता है। आमतौर पर मानसून कि केरल में एंट्री 1 जून के आसपास मानी जाती है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस बार मानसून 26 मई को केरल पहुंच सकता है, यानी तपती गर्मी से परेशान देश के मौसम को कूल डाउन करने के लिए मानसून तेजी के साथ लोड हो रहा है। मानसून से पहले प्री मानसून बारिश ने देश के दक्षिणी राज्यों में दस्तक दे दी है। साउथ के कई इलाकों में बरस रहे प्री मानसून के बादलों ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है, यानी मानसून से पहले उसका जोरदार ट्रेलर शुरू हो चुका है। आज 21 मई है, यानी मानसून बस अब देश की दहलीज तक पहुंच चुका है। इंतजार है तो उसके उत्तर भारत की मेन लैंड में दाखिल होने का।

0: मई की तपिश में राहत की बौछार होने वाली है। मॉनसून की बारिश से देश की धरती गुलजार होने वाली है। यानी आज जहां सूरज आग उगल रहा है, वहां जल्द झमाझम बादल बरसने वाले हैं। और आज जहां हीट वेव ने बेचैन कर रखा है, कल वहां आसमान से सुकून बरसने वाला है। ये राहत भरी खबर आई है मौसम विभाग की ओर से। मौसम विभाग ने अब की बार देश में मॉनसून के समय से पहले दस्तक देने की गुड न्यूज सुनाई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून 26 मई तक केरल पहुंच सकता है।
1: हमारा 26 का हमने प्रेस रिलीज इशू किया था 26 में, और विथ मॉडल एरर जैसे प्लस माइनस 4 डेज होता है। बाकी जो अगर आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, तो जो वो लाइन्स है जहां पे अभी मानसून एडवांस हो चुका है।
0: आमतौर पर 1 जून को मॉनसून के ऑनसेट की स्टैंडर्ड तारीख माना जाता है, और हाल के सालों में मॉनसून जून के पहले हफ्ते या फिर मई के अंत में दस्तक देता रहा है। पिछले 2 दशक में सबसे पहले साल 2009 में ऐसा हुआ था, जब तय तारीख से 8 दिन पहले यानी 23 मई को ही केरल में मॉनसून पहुंच गया था। इसके बाद पिछले साल यानी 2025 में भी मॉनसून तय समय से कुछ पहले आ गया था। पिछले साल यानी 2025 में मॉनसून 24 मई को केरल पहुंच गया था। साल 2024 में 30 मई, साल 2023 में 8 जून को, 2022 में 29 मई, 2021 में 3 जून, साल 2020 में 1 जून, साल 2019 में 8 जून और 2018 में 29 मई को मॉनसून केरल पहुंचा था। अब 2026 में भी मॉनसून देश की धरती पर जल्द मेहरबान हो रहा है। वास्तव में भारत की सीमा में मॉनसून की दस्तक यूं तो 16 मई को ही हो चुकी है, लेकिन ये एंट्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई है, जो कि बंगाल की खाड़ी का एक हिस्सा है। 16 मई को दक्षिण पश्चिम मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर के कई हिस्सों, संपूर्ण निकोबार द्वीप समूह, श्री विजयपुरम सहित अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। अब मॉनसून की एंट्री का इंतजार भारत के मेनलैंड पर है।
1: 16 मई को हमारा फर्स्ट एडवांस हुआ था, जिसमें हमने कुछ हिस्से अरबियन सी के, बियो बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड के कुछ हिस्से जहां तक हमने कवर किए थे। उसके बाद सेकंड हमारा था वो 18 मई को था। 18 मई को हमने इंटायर अंडमान निकोबार कवर किया, बियो बंगाल के कुछ हिस्से कवर हुए, साउथ अरबियन सी के कवर हुए। और उसके बाद हमारा यही अनुमान है आने वाले कुछ दिनों में जो बे ऑफ बंगाल के कुछ और हिस्से कवर कर सकता है।
0: बात अगर देश में मॉनसून की साइकिल की करें, तो आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून 1 जून तक दक्षिण की ओर से केरल में दस्तक देता है। 8 जुलाई तक मॉनसून पूरे देश को कवर कर लेता है। ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू करता है और आधा अक्टूबर बीतते बीतते पूरी तरह से विदा हो जाता है। मौसम के जानकार इस बार मॉनसून के जल्दी आने की कई बड़ी वजहें बता रहे हैं। इसके पीछे मौसम की लोकल सिस्टम के साथ साथ ग्लोबल सिस्टम भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार नमी बने रहना, समुद्र से उठ रही तेज नमी वाली हवाएं मॉनसून को तेजी से उत्तर की ओर आगे बढ़ा रही हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश मॉनसून की बढ़ती सक्रियता का स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा अरब सागर और हिंद महासागर का तापमान सामान्य से अधिक रहने से मॉनसूनी सिस्टम को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। मॉनसून का सामान्य समय से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंचना भी इसका एक बड़ा संकेत है। मॉनसून भले ही जल्दी आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने इस बार मॉनसून सीजन के दौरान 92 से 95% यानी सामान्य से कुछ कम बारिश होने का अनुमान जताया है। ऐसे मॉनसून सीजन में बारिश को लेकर आईएमडी के पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें, तो पता चलता है कि अनुमान के आंकड़े से कुछ फीसदी कम या ज्यादा बारिश होना भी आम रहा है। 2025 में मॉनसून सीजन में 108% यानी सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई थी, जबकि IMD ने 106% बारिश का अनुमान जताया था। 2024 के मॉनसून सीजन में भी 108% बारिश हुई थी, जबकि IMD ने तब भी 106% बारिश का ही अनुमान जताया था। इसी तरह 2023 में 94% बारिश हुई थी, तब IMD ने 96% बारिश का अनुमान जताया था। इससे पहले साल 2022 में 106% बारिश हुई, जो IMD के अनुमान से कुछ ज्यादा थी। अब इस साल मॉनसून का रिपोर्ट कार्ड क्या रहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मॉनसून के जल्द आने की गुड न्यूज ने गर्मी से तपते देश को खुश होने का मौका जरूर दे दिया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: वैसे तो मॉनसून 16 मई को ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे चुका है। ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के दक्षिणी हिस्सों में सक्रिय हो चुका है। निकोबार द्वीप समूह में पिछले कुछ दिनों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, लेकिन अब बारी देश के मेनलैंड में दस्तक देने की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मॉनसून कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून 26 मई के आसपास केरल तट पर पहुंचेगा, जो सामान्य तारीख 1 जून से लगभग एक हफ्ता पहले है। केरल के बाद मॉनसून जून के पहले सप्ताह में तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में पहुंचेगा। 5 से 7 जून तक दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो जाएगा। 10 जून तक मॉनसून के बादल तेलंगाना और महाराष्ट्र तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में 10 से 12 जून तक मॉनसून की बारिश शुरू होगी। इसके बाद बारी आएगी बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, जहां मॉनसून 15 से 20 जून के बीच सक्रिय हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून के 15 से 22 जून के बीच पहुंचने की संभावना है, जबकि गुजरात में मॉनसून 20 से 25 जून के बीच दस्तक दे सकता है। बात अगर दिल्ली NCR की जाए तो राजधानी क्षेत्र तक आते आते मॉनसून को लगभग एक महीना लग जाएगा। दिल्ली NCR में 25 जून के आसपास मॉनसून की एंट्री हो सकती है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी 25 जून तक मॉनसून की बारिश शुरू होने की संभावना है, जबकि राजस्थान में मॉनसून के सबसे आखिर में यानी 30 जून से 5 जुलाई तक पहुंचने की संभावना है। IMD के अनुमानों के अनुसार मॉनसून जुलाई के दूसरे हफ्ते तक पूरे भारत को कवर कर लेगा। तो मॉनसून के तय वक्त से पहले आने की खबर सुनते ही एक ठंडक सी महसूस होने लगती है। अमूमन मॉनसून जून की शुरुआत या मई के आखिर में 2 से 3 दिनों में केरल में दाखिल होता है, मगर इस बार ये 26 मई या उससे भी 1-2 दिन पहले आ सकता है। दक्षिण भारत में प्री मॉनसून की बारिश हो रही है, जो बता रहा है कि मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे कई और कारण हैं जो ये संकेत दे रहे हैं कि मॉनसून की गति और दिशा बिल्कुल सही है। इसी को देखते हुए कई राज्यों ने मॉनसून के लिए जरूरी तैयारी शुरू कर दी है। मॉनसून की आहट मिलते ही तमिलनाडु के कई इलाकों में NDRF ने मोर्चा संभाल लिया है।

0: हीट वेव और लू के थपेड़ों के बीच उत्तर भारत की अग्नि परीक्षा जारी है। कई शहरों का पारा 47 डिग्री को पार कर चुका है। जब पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में तप रहा है, ठीक उसी वक्त दक्षिण भारत के आकाश में एक अलग ही हलचल शुरू हो चुकी है। समुद्र से उठती नम हवाएं, गरजते बादल बता रहे हैं कि मानसून दस्तक देने वाला है। रविवार तक मानसून के केरल में एंट्री होने की उम्मीद है, वो भी तय वक्त से 5 दिन पहले। इससे पहले ही दक्षिण भारत में प्री मानसून की बारिश हो रही है। मानसून की आहट मिलते ही एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। तमिलनाडु में रानीपेट में एनडीआरएफ की टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। एनडीआरएफ के जवानों को मुश्किल हालात से निपटना और लोगों की जान बचाने का हुनर पता है। इस काम में इनकी मदद खोजी कुत्ते करते हैं जो कि पूरी तरह से ट्रेंड है। मानसून के बादल जब बरसते हैं तो कई कई दिनों तक थमते नहीं, ऐसे में कई बार हालात चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं। तब काम आती है इन जवानों की तैयारी। ये जवान अपने साथ कटर, लाइफ सेविंग जैकेट और बोट समेत हर वो जरूरी चीज लेकर गए हैं जिनकी इन्हें जरूरत पड़ सकती है। समय से पहले आ रहा मानसून उम्मीद की नई किरण भी लेके आ रहा है। सही तैयारी के साथ ये बारिश वरदान बनेगी, जल संकट कम होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बादल भी आएंगे और बारिश भी लाएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। खुशबू बता रही है ये सूखी जमीन की, इस दश्त में ही सब्ज इलाके भी आएंगे। मंजूर हाशमी की लिखी ये बात सच होती दिखेगी, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है। लेकिन बारिश की मेहरबानी जब तक नहीं हो रही, गर्मी के सितम से बचने का रास्ता निकाल डालना भी जरूरी है। मई की विदाई और मानसून की दस्तक के बीच में मैदानी इलाकों में जहां गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो वहीं पहाड़ों पर मौसम ने करवट लेकर नजारों को और भी खूबसूरत बना दिया है। कश्मीर और लेह समेत कई पहाड़ी इलाकों में हाल ही में हुई बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार बना दिया। मानसून के इंतजार के बीच गर्मी में सर्दी का एहसास करने के लिए मैदानों के मुसाफिर इन बर्फीले पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
2: आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। मानसून के लिए फिलहाल यही कहा जा सकता है। बहरहाल गर्मी का हाहाकार है और बारिश का इंतजार है। लेकिन बारिश जब तक नहीं आ रही, इस कमबख्त गर्मी से राहत का उपाय ढूंढना भी जरूरी है। और मानसून का इंतजार करते लोगों के लिए इन दिनों उसी राहत और सुकून का जरिया बन रहे हैं पहाड़ और उन पर बरसती बर्फ। मैदान में तो मई आग बरसा रही है, पर वादियों में बर्फ बिछी है। 40 डिग्री वाले टॉर्चर से जो निकल कर आए हैं, उनके लिए ये नज़ारा वाकई जन्नत से कम नहीं। हर बार की तरह उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर लोगों की पहली पसंद है। मैदानों में पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी से इन राज्यों के पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान, दिल्ली, यूपी और दूसरे इलाकों से लोग कश्मीर के बांदीपुरा चले आए हैं, जहां बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और नज़ारे लोगों को राहत का एहसास करवा रहे हैं।
3: हम लोग जयपुर राजस्थान से आए हैं और वहां पे बहुत गर्मी है। अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है। आने वाले टाइम पे वार्निंग भी दी गई है कि 25 मई से 2 जून तक बहुत ज्यादा हीट वेव्स आने वाली है। घर में रहें, सब लोगों को बोला गया है। बट मैं बोलना चाहूंगी, क्यों आपने घर में रहना है? आप कश्मीर आए, आप अपना ट्रिप प्लान करें, फैमिली को लेकर आए, दोस्तों को लेकर आए, यहाँ की ब्यूटी को देखें, स्नो में खेलें, कितना मजा आएगा आपको भी।
2: ये तो जम्मू कश्मीर 12 महीने पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार रहता है, मगर इस बार कश्मीर के बांदीपोरा की ठंडी और सुकून देने वाली घाटियाँ सैलानियों को इस तपती गर्मी में खूब लुभा रही हैं।
4: सूरज सर पे हो और बहुत आग बरस रही हो, ऐसा माहौल है वहाँ का। और मैं कश्मीर में यहाँ पर आके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। बहुत कूल मौसम और बहुत प्यारा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर।
2: बांदीपुरा का राजदान पास इन दिनों खास आकर्षण बना हुआ है। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस क्षेत्र में मई के महीने में भी बर्फ जमी है। यही वजह है कि दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे मैदानी शहरों से आने वाले पर्यटक यहां पहुंचकर राहत महसूस कर रहे हैं।
5: यहाँ हमें इतना सुकून मिल रहा है, इतना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हूँ। तो बस ठंडा मौसम है, हर व्यक्ति को इस वक्त कश्मीर घूमना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे आना चाहिए।
2: कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फ है तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। तस्वीर चमोली की है जहाँ इस वक्त चार धाम यात्रा चल रही है और मौसम का मिजाज देखिए, झमाझम बरसात देखिए, जैसे पूरा का पूरा इलाका पानी से सराबोर है। बारिश की बूंदों के साथ ओले भी गिरे और पारा लुढ़क गया। बारिश के इंतजार के बीच तपती मई में आंखों को सुकून देने वाली तस्वीरें हैं ये, लेकिन मुश्किल ये है कि सबको पहाड़ की ये बारिश और बर्फ नसीब कहाँ है। लेकिन चिंता की बात नहीं, जो गर्मी में सर्दी का एहसास करने पहाड़ों पर न जा सके, इंतजाम उनके लिए भी है, जैसे अहमदाबाद वालों ने किया। ये नजारा है अहमदाबाद के एक स्नो पार्क का। मई के महीने में जब गर्मी अपने तेवर दिखा रही है तो इस स्नो पार्क से बेहतर जगह शायद कोई दूसरी नहीं हो सकती। गर्मी के इस मौसम में पूरे उत्तर भारत के साथ गुजरात और राजस्थान में भी हीट वेव का जबरदस्त असर दिख रहा है, लेकिन इस मुश्किल मौसम में अहमदाबाद का ये स्नो पार्क लोगों को ठंडक का तोहफा दे रहा है।
6: बहुत सारी हॉलीडेज है, गर्मी है, इसलिए फ्रंट ब्लास्ट में एंजॉय करने के लिए आए हैं हम। जाते हैं और 3 साल से सलिंग आते हैं यहाँ।
7: अभी गर्मी बहुत सारी है इसीलिए हमने यही प्लेस सिलेक्ट करी।
2: स्नो पार्क के अंदर का तापमान -7 डिग्री रहता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। गर्मी के दिनों में यहाँ आने के लिए खास तैयारियाँ करनी पड़ती है। बड़े हो या छोटे, स्नो पार्क में दाखिल होने से पहले सभी को जैकेट, बूट्स और ग्लव्स पहनना पड़ता है। इस पार्क में सभी के लिए हर साइज के जैकेट्स और ग्लव्स मिल जाते हैं। यहाँ की स्नो स्लाइड्स बच्चों की फेवरेट है। स्नो कासल और स्नोमैन के साथ बच्चे घंटों मस्ती करते हैं। इस मौसम में जो लोग हिल स्टेशन पर नहीं जा पा रहे, उनके लिए ये स्नो पार्क वाकई एक बेहतरीन सौगात है। वैसे बादल भी जल्द ही राहत की सौगात बरसाने वाले हैं, चिलचिलाती गर्मी से निजात दिलाने वाले हैं। लेकिन जब तक बादल नहीं बरसते, गर्मी से राहत दिलाने के लिए पहाड़, स्नो पार्क और वाटर पार्क से काम चलाना भी एक अच्छा ऑप्शन है। श्रीनगर से अशरफ वानी और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देश के कई इलाके इस वक्त गर्मी की सबसे मुश्किल अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। मौसम विभाग ने स्पष्ट शब्दों में यह बता दिया है कि अगले 2-3 दिनों में मौसम का ये मिजाज यूं ही बना रहेगा। लेकिन गर्मी है तो क्या गम है, क्योंकि गर्मी जितनी जोरदार है, गर्मी के विरुद्ध युद्ध की तैयारी भी उतनी ही दमदार। हॉट वेदर में कूल सॉल्यूशंस निकालने में हम भारतीयों का तो जवाब ही नहीं है। गर्मी से बचाव के कूल कूल उपायों की ये दो तस्वीरें देख लीजिए इस वक्त आपके सामने है। एक तस्वीर है काशी की। काशी के मंदिरों में गर्मी की तपिश से भगवान को बचाने के लिए कूलर और एसी तक लग गए हैं। इतना ही नहीं, मूर्तियों को सूती वस्त्र गर्मी से बचाव के लिए पहनाए गए हैं और तो और भोग प्रसाद और फल में भी ठंडी सामग्री चढ़ाई जा रही है। काशी का राम जानकी मंदिर हो या फिर बड़ा गणेश भगवान के लिए मंदिर के गर्भगृह में एसी की व्यवस्था की गई है। भगवान के लिए गर्मी में खास इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं ख्याल बेजुबानों का भी रखा जा रहा है। दिल्ली के जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के बाड़ों में स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं जो फव्वारों की तरह ठंडी फुहारें छोड़ता है। इसके अलावा जानवरों के लिए ठंडा और साफ पानी का इंतजाम किया गया है। तालाबों की मरम्मत कर रोजाना ताजा पानी भरा जा रहा है ताकि जानवर उसमें नहा सकें और गर्मी से राहत पा सकें। गर्मी को देखते हुए जानवरों के खान पान में बदलाव किया गया है। और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ चैनल।

0: कुंडली का कमजोर बृहस्पति किस तरह की समस्याएं वैवाहिक जीवन में देता है? कुंडली का खराब बृहस्पति वैवाहिक जीवन पर किस तरह का असर डालता है? और कुंडली का शुभ बृहस्पति वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बृहस्पति की अलग अलग स्थितियों का वैवाहिक जीवन पर कैसे पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on Tune In.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
3: और अब आज समंदर में कचरा निगलने वाली नाव की, जो कि सौर ऊर्जा से चलती है। मुंबई के समंदर से कचरा हटाने के लिए रिमोट कंट्रोल दो नौकाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया और का परेड के भदवार पार्क में तैनात मानव रहित ये बोट पानी की सतह से रोजाना लगभग 80 से 90 किलो तक तैरता हुआ कचरा उठा रही है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बीएमसी ने तकनीक का सहारा लिया है।
4: समंदर किनारे सपनों का शहर मुंबई, अरब सागर के किनारे बसा मुंबई सिर्फ एक महानगर नहीं है बल्कि ख्वाबों का शहर है, जिसके समुद्री तटों को साफ करने के लिए बीएमसी नई रणनीति और मजबूत इरादों के साथ तैयार है। मुंबई अपनी चकाचौंध, खूबसूरत जुहू बीच, गिरगांव चौपाटी और ऊंची लहरों के लिए मशहूर है। हर साल हजारों लाखों लोग माया नगरी का रुख करते हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी तो है ही, बॉलीवुड और दूसरे कई ऐसे काम धंधे भी हैं जिसके लिए लोग यहां खींचे चले आते हैं। इसी वजह से शहर की आबादी तेजी से बढ़ भी रही है। तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण की वजह से मुंबई में कचरा प्रबंधन आज एक गंभीर चुनौती है। जमीन से होता हुआ ये कचरा समंदर तक पहुंच जाता है, फिर भारी बारिश और हाई टाइड के दौरान ये कचरा गेटवे ऑफ इंडिया, कप परेड जैसे समुद्री किनारों पर जमा हो जाता है। समंदर की खूबसूरती पर दाग लगाने वाले कचरे में प्लास्टिक भी शामिल होता है, जिसको रोकने के लिए बीएमसी ने समंदर में बिना चालक वाली नौकाओं को उतार दिया है।
5: इस वक्त हम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया इलाके में हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं टूरिस्ट बोट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीएमसी के सामने एक चैलेंज है कि जो समुद्री तट है मुंबई का, उसके आसपास जो कचरा है उसे कैसे निकाला जाए। इसीलिए आप सामने जो देख रहे हैं एलिसियम, ये अनमैन्ड बोट है, इलेक्ट्रिक उस पर चलने वाली पावर पे, और ये आप कह सकते हैं ऐसी दो बोट, एक गेटवे ऑफ इंडिया पर और एक कफ परेड में भदवार पार्क पर लाई गई है बीएमसी की तरफ से। जो कन्वेयर बेल्ट ब्लू कलर का है, ये जो कचरा है वो पिकअप कर समुद्र से अंदर बोट में डालता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप कह सकते हैं कि बीएमसी ने इसीलिए शुरू किया है क्योंकि जो समुद्र के आसपास कचरा दिखता है उसे साफ किया जा सके।
4: विशेष तरीके से तैयार इस नाव में दो बैटरी लगी है जो सोलर पावर यानी सौर ऊर्जा से चार्ज होती है। 1 किलोमीटर के दायरे में रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होने वाली ये बोट कन्वेयर बेल्ट की मदद से समुद्र में फैले कचरे को इकट्ठा करती है।
6: एकदम इजी सिस्टम है, इसमें दो चीजें हैं, थ्रस्टर और कन्वेयर। स्टार्ट करने के लिए पहले इसको अपने को बैटरी लगाना पड़ता है, दो बैटरी है उसको। दोनों बैटरी लगाने के बाद, कनेक्ट करने के बाद वहां पे एक स्विच है, उसको ऑन करना है। बेसिकली हमारा एक टेस्टिंग रहता है डेली रूटीन का, उसमें हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद ये सब चीजें अटैच होने के बाद में थ्रस्टर चेक करते हैं, थ्रस्टर लगाने के बाद में हम लोग बोट स्टार्ट कर लेते हैं। फिर इसका राउंड अप कैसे कि आप जहाँ पे आपका गार्बेज है यहाँ पे ये बाय रिमोट ये बोट ऑपरेट किया जाता है।
5: ओके,
6: इसी के लिए उसका पर्टिकुलर रेंज दिया है 1 किलोमीटर का। तो ये रेंज से हम लोग बोट गार्बेज की तरफ ले जाते हैं, और ये जो कन्वेयर है वो कन्वेयर का जो फ्रंट बेस है वहाँ पे एग्जैक्टली कचरा कन्वेयर पे आके वो हॉपर में जमा हो जाता है।
4: बीएमसी की ओर से तैनात ये नावे बिना चालक के पानी की सतह से रोजाना लगभग 80 से 90 किलोग्राम तक तैरता हुआ कचरा निकालती हैं। इस दौरान ये पानी को प्रदूषित भी नहीं करती हैं।
6: बेसिकली अभी ये कैसे ये कॉन्सेप्ट अनमैन बोट का क्यों है कि यहाँ पे तीन चीजें प्रायोरिटी पे है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी, सेकेंड डिग्निटी है, और दूसरी बात में जीरो इमर्शन। जीरो इमर्शन यानी ये इलेक्ट्रिकल बोट है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको बोट को खाली चार्ज करना है, उसके बाद आप ऑपरेट कर सकते हो। ये जो सेकंड स्टेप है जहाँ पे जो कन्वेयर है, वो कन्वेयर में आपको जो गार्बेज है साइड गार्बेज पूरा कलेक्ट होता है, और सेकंड थिंग क्या होता है कि कोई कॉर्नर पे जो जगह रहेगी वहाँ पे ये इजिली जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस कन्वेयर
5: जी।
6: हाँ, सेकंड थिंग फिर ये सब इसमें जमा हो जाता है, सब गार्बेज पूरा इसमें जमा हो जाता है, और इसका जो रेंज है वो जो रेंज है 1 किलोमीटर का है, और इसका जो हॉपर का कैपेसिटी है 800 से 1000 किलो तक है, और ये मिनिमम आप गेटवे का अगर कचरा देखेंगे जो गार्बेज देखेंगे तो उसका 200 से 400 तक उसका लिमिट है, बदवार पक्का है वो आपका 150 से 250 तक जाता है।
4: समंदर किनारे कचरे में सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है, जिनमें प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बॉटल्स और प्लास्टिक के टूटे सामान शामिल होते हैं। दरअसल लोग प्लास्टिक की बॉटल खरीद कर पानी पीते हैं और उसे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, प्लास्टिक पैक्ड चीजें खरीद कर खाते हैं और फिर खाली प्लास्टिक पैकेट को फेंक देते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, नदियों से लेकर समंदर तक, लोगों का यूज किया गया कचरा प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसको रोकने का काम बीएमसी कर रही है।
5: तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से इनोवेशन किया गया है समुद्र में साफ सफाई हो सके, उसमें किसी तरह का ह्यूमन आप कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसीलिए ये अनमैन्ड बोट्स बैटरी ऑपरेटेड जो है वो चलाई जा रही है। जो भी वेस्ट जनरेट होता है, काफ़ी वेस्ट जनरेट होता है क्योंकि टूरिस्ट एरिया, टूरिस्ट मूवमेंट जो है वो हज़ारों की तादाद में रहती है गेटवे ऑफ इंडिया पर, और उसके लिए ये पूरा सिस्टम जो है वो बीएमसी की तरफ से डिप्लॉय किया है। कैमरा पर्सन साहिब सर पाटिल के साथ उसके पास एक
2: गुड न्यूज चुड़ी, इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: कुंडली का कमजोर बृहस्पति किस तरह की समस्याएं वैवाहिक जीवन में देता है? कुंडली का खराब बृहस्पति वैवाहिक जीवन पर किस तरह का असर डालता है, और कुंडली का शुभ बृहस्पति वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बृहस्पति की अलग अलग स्थितियों का वैवाहिक जीवन पर कैसे पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज चुड़ी, इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायुअस्त्र 1 का सफल परीक्षण, 10 किलो वॉरहेड के साथ 100 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना, सेना की स्ट्राइक और निगरानी क्षमता में होगा इजाफा। डिफेंस और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की लंबी छलांग, प्रोजेक्ट सबल के तहत नोएडा की हैवी लिफ्ट ड्रोन कंपनी को मिला 30 करोड़ का फंड, सैन्य ऑपरेशन के साथ आपदा राहत में मिलेगी मदद। अमेरिका में हो रहे बैटल इन द बे एक्सरसाइज में पहली बार भारतीय सेना ने की शिरकत, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और ऊंचे दुर्गम इलाकों में युद्धाभ्यास, मजबूत सुरक्षा सहयोग के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन, पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ से हुआ चुनाव, पवित्र यात्रा के लिए जून से अगस्त के बीच 20 जत्थों में रवाना होंगे यात्री। मैदानी इलाकों के साथ ही

0: मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी दिख रहा है भीषण गर्मी का असर। हिमाचल के ऊना में 44 तो शिमला में 30 डिग्री के ऊपर पारा। अगले दो दिन में बारिश के आसार। एआई तकनीक से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रेल मंत्री की अपील। यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहें मुसाफिर। हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें संदिग्ध की जानकारी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे सोचे समझे सोशल मीडिया पर ये खबरें अक्सर शेयर कर देते हैं, क्योंकि आजकल खबरें केवल अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल सच लगे। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे इन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं उसमें फैक्ट चेक में सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगने को लेकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि मामूली सी कहा सुनी के बाद एक लड़के ने लड़की को बेरहमी से पीट दिया। इसकी सच्चाई क्या है, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: ये पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ये कह रहे हैं कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगने को लेकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। इस घोषणा के बाद कोलकाता में 15 मई यानी शुक्रवार को नमाज के बाद हंगामा मच गया। एक धर्म विशेष समुदाय के लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इसी संदर्भ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ में मौजूद लोग नारे लगाते दिख रहे हैं। वीडियो में लिखा है, कोलकाता में सड़क पर नमाज को लेकर बवाल, नई सरकार के आदेश के खिलाफ एक धर्म विशेष के लोगों का धमकी भरा प्रदर्शन। एक व्यक्ति ने वीडियो को एक्स पर शेयर किया और तंज कसते हुए लिखा कि सड़क किसी की थोड़ी है, जो जब चाहे जहाँ चाहे वही मुर्गा बन जाए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी सड़क पर लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। ये लोग कुछ नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां पर सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगने को लेकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने गौर से सुना तो ये बांग्ला लगा। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने फिर से वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और अगर ये वीडियो सड़क पर नमाज रोकने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का था तो इस दौरान हमें यहां पर बंगाल पुलिस के जवान क्यों नजर नहीं आए? इतने बड़े विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस के जवानों को तैनात क्यों नहीं किया गया?

0: ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। साथ ही वीडियो में द लाइट पार्क नाम के एक होटल का बोर्ड भी नजर आ रहा है, लेकिन सर्च के दौरान पूरे पश्चिम बंगाल में इस नाम का कोई भी होटल हमें नजर नहीं आया। मतलब ये कि वायरल वीडियो कहीं और का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में वायरल दावे की पुष्टि करती कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
1: बैट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें फेसबुक पर उसी लोकेशन का दूसरा वीडियो मिला। कई बांग्लादेशी यूजर्स ने इस वीडियो को 14 मई को शेयर किया था। इन पोस्ट के मुताबिक वीडियो आवामी लीग के नेता इंजीनियर मुशर्रफ हुसैन के जनाजे में बांग्लादेश के चिट्टागोम में उमड़ी भीड़ का है। एक बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट में 14 मई को छपी रिपोर्ट के मुताबिक चिट्टागोंग में इंजीनियर मुशर्रफ हुसैन की अंतिम विदाई में हजारों समर्थक शामिल हुए थे। फेसबुक पर मिले वीडियो में द लाइट पार्क नाम का होटल साफ दिख रहा है। इस क्रू की मदद से हमने वायरल वीडियो में दिख रही जगह को गूगल मैप्स पर सर्च किया तो ये हमें बांग्लादेश के चिट्टागोंग में मिल गई। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि बांग्लादेश के चिट्टागोंग का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ रिदेश दत्ता, टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि मामूली सी कहासुनी के बाद एक लड़के ने एक लड़की को बेरहमी से पीट दिया जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि लिफ्ट में लड़का मैडम से गलती से टकरा गया था, फिर लगातार बेइज्जती करके थप्पड़ मार दिया लड़के ने, फिर उसके बाद लड़की पर हमला कर दिया। लेकिन जब हमने इस वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए हमारी रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पर ये हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वायरल हो रहा वीडियो किसी सीसीटीवी फुटेज का है। वीडियो में नजर आता है कि लिफ्ट से बाहर निकलते समय एक लड़का एक लड़की से टकरा जाता है। लड़का टकराने की वजह बताता है। इस पर लड़की कहती है कि देख कर आना चाहिए था। लड़का सॉरी भी बोलता है और इतने में लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट के बंद होते ही लड़की उस लड़के को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद लड़के का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो लड़की पर गुस्सा करता है, थप्पड़ क्यों मारा इसकी वजह पूछता है, लेकिन लड़की लड़के से लगातार बहस करती रहती है। इसके बाद लड़का अपना आपा खो देता है और वो लड़की को बुरी तरह से पीटता है। कई न्यूज आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को लेकर कई खबरें चलाई। एक्सपर्ट वीडियो को शेयर करते हुए एक शख्स ने लिखा कि लिफ्ट में लड़का मैडम से गलती से टच हो गया, फिर लगातार बेइज्जती करके थप्पड़ मार दिया। लड़का फिर ज्यादा पिटाई किया, लेकिन सीसीटीवी नहीं होता तो मैडम विक्टिम कार्ड खेलती। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर यूजर इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में नजर आ रहा है कि लिफ्ट से बाहर निकलते समय एक लड़की और एक लड़का आपस में टकरा जाते हैं और इसके बाद लड़की बहस करते हुए युवक को थप्पड़ मार देती है। युवती से पीटने के बाद युवक उसे पहले तो थप्पड़ मारता है और इसके बाद जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीटता है। इतना ही नहीं, वो लड़की के सर पर एक भारी चीज भी मारता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हमने इसकी पड़ताल शुरू की तो दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। मसलन इन दोनों के बीच बहस होती है तो फिर शोर सुनकर आसपास से कोई वहां पर क्यों नहीं पहुंचता। इतना ही नहीं, लड़का जब लड़की के थप्पड़ मारने के बाद पलटवार करता है तो लड़की को जमकर पीटता है। तो इस दौरान लड़की चीखी होगी, शोर मचाया होगा, लेकिन इसके बावजूद वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा। ऐसा भला कैसे हो सकता है? लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली? हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा? अब देखिए सच और झूठ क्या है।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर मिला। वीडियो के कैप्शन में एक्टिंग और रेसलिंग जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है। इस अकाउंट पर यह वीडियो दो बार शेयर किया गया था। वीडियो में नजर आ रहे लड़के का नाम विपिन चौहान है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो के मुताबिक वो एक रेसलर है। उनके अकाउंट पर मौजूद कई दूसरी वीडियोस में CWE एकेडमी का बैनर नजर आता है। CWE मशहूर रेसलर खली की कुश्ती एकेडमी है जो कि पंजाब में स्थित है। उनके अकाउंट पर इस तरह की मारपीट और भी वीडियो मौजूद है जिनमें वही लड़की है जो वायरल वीडियो में भी नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए फैक्ट चेक टीम ने विपिन चौहान से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रही लड़की उनकी पत्नी रुचिका शाह है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने इस तरह के स्क्रिप्टेड वीडियो बनाने शुरू किए हैं। इन वीडियोस पर उन्हें काफी व्यूज और लाइक्स मिले और जिसके बाद उन्होंने इस तरह के और भी वीडियो बनाने का फैसला किया। वो और उनकी पत्नी प्रोफेशनल कुश्ती खिलाड़ी हैं और किसी को बिना चोट पहुंचाए वो ऐसे वीडियोस बना सकते हैं। इस वीडियो को शूट करने के दौरान भी किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। उन्होंने कहा कि कभी कभी शूटिंग के दौरान हल्की फुल्की चोट लग जाती है लेकिन वो ज्यादा गंभीर नहीं होती। विपिन ने यह भी बताया कि उन्होंने अब CWE एकेडमी छोड़ दी है। साफ है कि लड़की के साथ मारपीट करता शख्स उसी का पति है। ये वीडियो भी असल घटना का नहीं है। वीडियो में नजर आ रहे दोनों लोग कुश्ती खिलाड़ी हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में। दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का जहां हम पेश करने वाले कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।

0: पार्टी दे रहा है हम सबको।
1: इन दिनों सोशल मीडिया पर चकाचौंध और शोबाजी वाली रील्स की बाढ़ आई हुई है, लेकिन इसी बीच झारखंड से सामने आए एक वीडियो ने इंटरनेट की लाखों जनता का दिल जीत लिया है। ये कहानी सूरज नाम के एक बच्चे की है, जिसने साबित कर दिया कि खुश रहने के लिए किसी महंगे कैफे या आलिशान पार्टी की जरूरत नहीं होती, बस कुछ सच्चे दोस्त और 100 रुपए का बजट ही काफी है। वीडियो में सूरज अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से चूल्हे के पास बैठकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता दिख रहा है।

0: आज वो पार्टी दे रहा है हम सबको।
1: वीडियो की शुरुआत सूरज के दोस्त के एक डायलॉग से होती है, जो कैमरे के सामने आकर बड़े गर्व से कहता है, आज सूरज की तरफ से बर्थडे पार्टी है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस छोटी सी पार्टी के लिए सूरज ने अपनी गुल्लक से पाई पाई जोड़कर पैसे बचाए थे। वीडियो में दिख रहा है कि सूरज खुद चूल्हे पर मैगी बना रहा है और उसके दोस्त आसपास बैठकर अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बच्चों के चेहरों पर बिखरी मुस्कान और खुशी किसी भी महंगे रेस्टोरेंट के जश्न से कहीं ज्यादा बड़ी और खूबसूरत लग रही है।
0: आज सूरज का बर्थडे है तो सूरज 100 रुपया का मैगी लाया है और उसका साथ सेंटा फेंटा भी और बहुत बच्चा भी है। आज वो पार्टी दे रहा है हम सबको, आज उसका बर्थडे है।
1: आप भी बचपन में कई बार डॉक्टर के पास गए होंगे, अगर तबीयत ज्यादा खराब रही होगी तो डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाया होगा। अब इंजेक्शन देखकर आपको डर भी लगा होगा। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो बड़े हो चुके हैं मगर आज भी इंजेक्शन से डरते हैं। वही वीडियो में दिख रही ये बच्ची इंजेक्शन से बिल्कुल भी नहीं डर रही। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बच्ची को दर्द होता ही नहीं, उसे इंजेक्शन से डर भी नहीं लगता। और बच्ची के इसी एक्सप्रेशन के कारण वीडियो वायरल हो रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर क्रिकेट से जुड़ा ये बेहद दिलचस्प वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने लोगों को हैरान भी किया और प्रभावित भी। आमतौर पर क्रिकेट खेलने के लिए बड़े मैदान की जरूरत होती है, जहां बल्लेबाज शॉट लगा सकें और फील्डर आसानी से गेंद पकड़ सकें। लेकिन वायरल वीडियो में जो नजारा देखने को मिला वो पूरी तरह अलग है। यहां लोगों ने पहाड़ों के बीच ऐसी जगह पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, जहां मुश्किल से एक पिच के बराबर जगह मौजूद है। वीडियो में साफ नजर आता है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच पतली सी जगह पर क्रिकेट की पिच बनाई गई है। आसपास इतना कम स्थान है कि सामान्य तरीके से फील्डिंग करना लगभग नामुमकिन लगता है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों ने इस चुनौती का भी शानदार हल निकाल दिया। जहाँ जहाँ पहाड़ों के नीचे थोड़ी सी भी जगह मिली, वहाँ खिलाड़ी फील्डिंग करने के लिए खड़े हो गए। किसी ने पत्थरों के बीच अपनी जगह बनाई तो कोई ढलान पर खड़ा दिखाई दिया। वीडियो में बल्लेबाज आराम से शॉट खेलते दिखाई देते हैं, जबकि गेंदबाज भी पूरे जोश के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। वही फील्डर पहाड़ी रास्तों और चट्टानों के बीच भी तेजी से दौड़ते नजर आते हैं। ये दृश्य बताता है कि खेल के प्रति लोगों का प्यार किसी भी परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। अगर मन में जुनून हो तो इंसान कहीं भी अपने पसंदीदा खेल का आनंद ले सकता है।
2: कैसा होता अगर धुरंधर फिल्म का ये गाना भोजपुरी में होता।
1: इंटरनेट पर इन दिनों ये वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी सिंगर के फैन हो जाएंगे। फिल्म धुरंधर का सुपरहिट रोमांटिक सॉन्ग गहरा हुआ का भोजपुरी वर्जन ऐसा तहलका मचा रहा है कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए हैं।

0: सोशल मीडिया पर दो बहनों ने इजिप्ट लीबिया के बॉर्डर पर बने अपने छोटे से घर की झलक लोगों को दिखाई। झोपड़ी नुमा ये घर बाहर से नमक और मिट्टी से बनी थी। इसे देख लोगों ने उम्मीद की थी कि बहनें गरीब हैं और मुश्किलों में अपना गुजारा कर रही हैं। लेकिन जब घर को अंदर से दिखाया गया तो सब दंग रह गए। घर के अंदर आधुनिक और लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक मिली। कमरे में सॉफ्ट लाइटिंग, कंफर्टेबल सोफा, बड़े बड़े बेड, फुली इक्विप्ड किचन, वाईफाई, एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं और खूबसूरत डेकोरेशन, सब कुछ मौजूद था। बहनों ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल से घर बनाया है जिसमें मिट्टी और नमक का इस्तेमाल किया गया है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। यूं तो अब तक आपको पुल पार करने का एक ही तरीका पता होगा और वो ये है कि पुल के ऊपर से गुजरना। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद इस पर आपका विचार बदल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मानना पड़ेगा कि किसी भी पुल को पार करने के लिए कई और तरीके भी हो सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पुल को पार करने के लिए ब्रिज के ऊपर से जाने की जगह उसके नीचे से उछल कूद करते हुए गुजर रहा है। शख्स पुल के नीचे लगे खम्भों और पोल को पकड़कर झूलते हुए ब्रिज को पार कर रहा है। वीडियो में शख्स जितनी आसानी से पुल को पार करता दिख रहा है उतना आसान ये काम बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस शख्स की फिटनेस वाकई कमाल की है। आप देख सकते हैं कि शख्स उस पुल को न सिर्फ पार करते हुए जाता है बल्कि वो उसी पुल पर ठीक वैसे ही लटकते हुए वापस आता है। पुल के नीचे मौजूद लोग उस शख्स का हौसला बढ़ाते और उसका वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते नजर आ रहे हैं।
1: तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे संजीव बाबा है हमारे।
0: इन दिनों इंटरनेट पर ये वीडियो तहलका मचा रहा है जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। मामला एक डोसा वाले भैया और उनके सबसे अनोखे कस्टमर सांड से जुड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यस्त सड़क के किनारे एक डोसे की दुकान है जहाँ तवे के ठीक पास एक सांड बड़े ही धैर्य के साथ खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसे दुकान का पूरा मेन्यू जबानी याद आया और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। आम तौर पर दुकानदार जानवरों को भगा देते हैं, लेकिन इस डोसा वाले ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। आप देखेंगे कि दुकानदार ने बड़े ही प्यार से तवे पर मक्खन मारकर एक बढ़िया कुरकुरा डोसा तैयार किया और सीधे अपने इस चार पैरों वाले स्पेशल गेस्ट को परोस दिया।
1: फाइनली डोसा खिलाने का बारी आ चुका है।
0: सांड ने भी बड़े चाव से डोसा खाया और अपनी पूंछ हिलाकर वेंडर का शुक्रिया अदा किया। दुकानदार की माने तो ये सांड रोजाना सही समय पर यहाँ आ जाता है। कुछ लोग तो सिर्फ इस अनोखे नजारे को देखने के लिए यहाँ रुकते हैं, जिसकी वजह से दुकान अब एक छोटा मोटा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। जंगल सफारी के इस वीडियो को देखकर यूजर्स हैरान हैं। वीडियो में एक जंगल नजर आ रहा है। जीप में बैठी लड़की ने जंगल सफारी के दौरान वीडियो बनाया और तभी नजर आता है कि एक हाथी उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। हाथी जब काफी करीब आ जाता है तो लड़की डर जाती है और जीप चालक को गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगती है। कुछ सेकंड के लिए हाथी रुक जाता है मगर फिर उनके पीछे आने लगता है। जीप में मौजूद आदमी भी गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगता है। वीडियो देखकर लगता है कि हाथी इन पर हमला कर सकता है और इसी कारण ये लोग भी डर गए।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: जैसा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से विदेश यात्रा के बजाय अपने देश को एक्सप्लोर करने की अपील की थी, तो जीएनटी भी आप सभी से अपील कर रहा है कि आप भी अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें या वीडियोज हमें भेजो ताकि हम आपके उन वीडियोज को दिखाएं। हमारे दर्शक भी बड़े ही उत्साह के साथ अपनी जगहों के खूबसूरत वीडियोज भेज रहे हैं, तो चलिए आज आपको उत्तरकाशी के उन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में व्लॉगर बनी एक दर्शक की जबानी सुनाते हैं कि क्यों आपको उत्तराखंड के इस बेहद खूबसूरत और धार्मिक शहर को एक्सप्लोर करना चाहिए।

0: स्वागत है आपका गुड न्यूज चैनल में। मैं गीता सेमवाल, मैं बुलाना चाहती हूँ आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। हल्की हल्की आजकल ना शाम के टाइम पे ठंड महसूस हो रही है। वाह, कितने सुंदर नजारे हैं, कितनी सुंदर प्रकृति की यहाँ पे खूबसूरती है। आपको ना बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़, चीड़ का घना जंगल, ये सब चीज देखने को मिलता है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में दो धाम है, श्री यमुनोत्री धाम और श्री गंगोत्री धाम। तो आजकल ना काफी अच्छी यात्रा चल रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी यही कहा है कि आप विदेशों में घूमने न जाके भारत की जो जगह है, पर्यटक स्थल है, जैसे उत्तराखंड में चार धाम है, श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, आप इन जगहों पे आए। इसके अलावा भी उत्तराखंड में न कहीं आपको पर्यटक स्थल देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आजकल यमुनोत्री धाम में और श्री गंगोत्री धाम में, यानी चारों धाम में काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। जब हमारे गांव मुखवर में मोदी जी आए थे तो उस टाइम जो ये यात्रा चल रही है, अब ये ग्रीष्म काल में न होते हुए अब ये यात्रा शीत काल में भी चलती है, यानी 12 महीना यात्रा चलती है। तो माननीय मोदी जी ने घाम तापो पर्यटक इसका नाम दिया है। मुखवा के सामने धराली है, हरसिल है, बगोरी है। और अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं तो यहाँ पे ना ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए कई जगह है, जैसे दयारा बुग्याल है, गौमुख ट्रैक है, सात ताल ट्रैक है, ऐसे कई अन्य ट्रैक है। अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप शीतकाल में यात्रा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उस टाइम तो और ज़्यादा खूबसूरती आपको देखने को मिलती है, क्योंकि हरसिल में जो है धराली, मुखवा में सेब, राजमा और उसके साथ साथ खुमानी हो गया, नाशपाती हो गया, ये भरपूर मात्रा में आपको देखने को भी और खाने को भी मिलती है। और इसी के साथ साथ एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि वेडिंग डेस्टिनेशन है, जैसे कि त्रिजोगी नारायण है और उत्तरकाशी में बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में है, श्री गंगोत्री धाम में गंगा मैया जी के मंदिर में है, और गंगा मैया जी का जो शीतकालीन प्रवास है मुखवा, वहाँ पे आप ना शादी करवा सकते हैं और इन जगहों पे ना शादी होती है। तो आइए ना श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम और गंगा मैया जी के शीतकालीन प्रवास मुखवा उत्तरकाशी में आपका स्वागत है।
1: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें, अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई भी खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा, बनाइए ब्लॉग और हमें इस नंबर पर भेज दीजिए। नंबर है 7303409922। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस वीडियो को जीएनटी दिखाएगा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायुअस्त्र 1 का सफल परीक्षण, 10 किलो वॉरहेड के साथ 100 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना, सेना की स्ट्राइक और निगरानी क्षमता में होगा इजाफा। डिफेंस और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की लंबी छलांग, प्रोजेक्ट सबल के तहत नोएडा की हैवी लिफ्ट ड्रोन कंपनी को मिला 30 करोड़ का फंड, सैन्य ऑपरेशन के साथ आपदा राहत में मिलेगी मदद। अमेरिका में हो रहे बैटल इन द बे एक्सरसाइज में पहली बार भारतीय सेना ने की शिरकत, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और ऊंचे दुर्गम इलाकों में युद्धाभ्यास, मजबूत सुरक्षा सहयोग के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर। भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन, बस के बीच 20 जत्थों में रवाना होंगे यात्री।
3: मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी दिख रहा है भीषण गर्मी का असर। हिमाचल के ऊना में 44 तो शिमला में 30 डिग्री के ऊपर पारा। अगले दो दिन में बारिश के आसार। एआई तकनीक से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रेल मंत्री की अपील। यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहे मुसाफिर। हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें संदिग्ध की जानकारी।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। यूं तो जीएनटी स्पेशल में हम हर रोज ही आपको गुड न्यूज की बारिश करते हैं, लेकिन आज बात बारिश की गुड न्यूज की करेंगे। वो गुड न्यूज जो मौसम विभाग ने देश को सुना दी है। देश के लिए मानसून की चिट्ठी आई है। जी हां, इस बार मानसून तय वक्त से पहले आ रहा है। हमारे देश में मानसून केरल के रास्ते दाखिल होता है। आमतौर पर मानसून कि केरल में एंट्री 1 जून के आसपास मानी जाती है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस बार मानसून 26 मई को केरल पहुंच सकता है। यानी तपती गर्मी से परेशान देश के मौसम को कूल डाउन करने के लिए मानसून तेजी के साथ लोड हो रहा है। मानसून से पहले प्री मानसून बारिश ने देश के दक्षिणी राज्यों में दस्तक दे दी है। साउथ के कई इलाकों में बरस रहे प्री मानसून के बादलों ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। यानी मानसून से पहले उसका जोरदार ट्रेलर शुरू हो चुका है। आज 21 मई है, यानी मानसून बस अब देश की दहलीज तक पहुंच चुका है। इंतजार है तो उसके उत्तर भारत की मेन लैंड में दाखिल होने का।

0: मई की तपिश में राहत की बौछार होने वाली है। मॉनसून की बारिश से देश की धरती गुलजार होने वाली है। यानी आज जहां सूरज आग उगल रहा है, वहां जल्द झमाझम बादल बरसने वाले हैं। और आज जहां हीट वेव ने बेचैन कर रखा है, कल वहां आसमान से सुकून बरसने वाला है। ये राहत भरी खबर आई है मौसम विभाग की ओर से। मौसम विभाग ने अब की बार देश में मॉनसून के समय से पहले दस्तक देने की गुड न्यूज सुनाई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून 26 मई तक केरल पहुंच सकता है।
1: हमारा 26 का हमने प्रेस रिलीज इशू किया था 26 में, और विद मॉडल एरर जैसे प्लस माइनस 4 डेज होता है। बाकी जो अगर आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, तो जो वो लाइन्स है जो हाँ पे अभी मानसून एडवांस हो चुका है।
0: आमतौर पर 1 जून को मॉनसून के ऑनसेट की स्टैंडर्ड तारीख माना जाता है, और हाल के सालों में मॉनसून जून के पहले हफ्ते या फिर मई के अंत में दस्तक देता रहा है। पिछले 2 दशक में सबसे पहले साल 2009 में ऐसा हुआ था, जब तय तारीख से 8 दिन पहले यानी 23 मई को ही केरल में मॉनसून पहुंच गया था। इसके बाद पिछले साल यानी 2025 में भी मॉनसून तय समय से कुछ पहले आ गया था। पिछले साल यानी 2025 में मॉनसून 24 मई को केरल पहुंच गया था। साल 2024 में 30 मई, साल 2023 में 8 जून को, 2022 में 29 मई, 2021 में 3 जून, साल 2020 में 1 जून, साल 2019 में 8 जून और 2018 में 29 मई को मॉनसून केरल पहुंचा था। अब 2026 में भी मॉनसून देश की धरती पर जल्द मेहरबान हो रहा है। वास्तव में भारत की सीमा में मॉनसून की दस्तक यूं तो 16 मई को ही हो चुकी है, लेकिन ये एंट्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई है, जो कि बंगाल की खाड़ी का एक हिस्सा है। 16 मई को दक्षिण पश्चिम मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर के कई हिस्सों, संपूर्ण निकोबार द्वीप समूह, श्री विजयपुरम सहित अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। अब मॉनसून की एंट्री का इंतजार भारत के मेनलैंड पर है।
1: 16 मई को हमारा फर्स्ट एडवांस हुआ था, जिसमें हमने कुछ हिस्से अरबियन सी के, बियो बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड के कुछ हिस्से जहाँ तक हमने कवर किए थे। उसके बाद सेकंड हमारा था वो 18 मई को था। 18 मई को हमने इंटायर अंडमान निकोबार कवर किया, बियो बंगाल पे कुछ हिस्से कवर हुए, साउथ अरबियन सी के कवर हुए। और उसके बाद हमारा यही अनुमान है आने वाले कुछ दिनों में जब बेओ बंगाल के कुछ और हिस्से कवर कर सकता है।
0: बात अगर देश में मॉनसून की साइकिल की करें, तो आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून 1 जून तक दक्षिण की ओर से केरल में दस्तक देता है। 8 जुलाई तक मॉनसून पूरे देश को कवर कर लेता है। ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू करता है और आधा अक्टूबर बीतते बीतते पूरी तरह से विदा हो जाता है। मौसम के जानकार इस बार मॉनसून के जल्दी आने की कई बड़ी वजहें बता रहे हैं। इसके पीछे मौसम की लोकल सिस्टम के साथ साथ ग्लोबल सिस्टम भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार नमी बने रहना, समुद्र से उठ रही तेज नमी वाली हवाएं मॉनसून को तेजी से उत्तर की ओर आगे बढ़ा रही हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश मॉनसून की बढ़ती सक्रियता का स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा अरब सागर और हिंद महासागर का तापमान सामान्य से अधिक रहने से मॉनसूनी सिस्टम को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। मॉनसून का सामान्य समय से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंचना भी इसका एक बड़ा संकेत है। मॉनसून भले ही जल्दी आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने इस बार मॉनसून सीजन के दौरान 92 से 95% यानी सामान्य से कुछ कम बारिश होने का अनुमान जताया है। ऐसे मॉनसून सीजन में बारिश को लेकर आईएमडी के पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें, तो पता चलता है कि अनुमान के आंकड़े से कुछ फीसदी कम या ज्यादा बारिश होना भी आम रहा है। 2025 में मॉनसून सीजन में 108% यानी सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई थी, जबकि IMD ने 106% बारिश का अनुमान जताया था। 2024 के मॉनसून सीजन में भी 108% बारिश हुई थी, जबकि IMD ने तब भी 106% बारिश का ही अनुमान जताया था। इसी तरह 2023 में 94% बारिश हुई थी, तब IMD ने 96% बारिश का अनुमान जताया था। इससे पहले साल 2022 में 106% बारिश हुई, जो IMD के अनुमान से कुछ ज्यादा थी। अब इस साल मॉनसून का रिपोर्ट कार्ड क्या रहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मॉनसून के जल्द आने की गुड न्यूज ने गर्मी से तपते देश को खुश होने का मौका जरूर दे दिया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: वैसे तो मॉनसून 16 मई को ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे चुका है। ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के दक्षिणी हिस्सों में सक्रिय हो चुका है। निकोबार द्वीप समूह में पिछले कुछ दिनों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, लेकिन अब बारी देश के मेनलैंड में दस्तक देने की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मॉनसून कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून 26 मई के आसपास केरल तट पर पहुंचेगा, जो सामान्य तारीख 1 जून से लगभग एक हफ्ता पहले है। केरल के बाद मॉनसून जून के पहले सप्ताह में तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में पहुंचेगा। 5 से 7 जून तक दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो जाएगा। 10 जून तक मॉनसून के बादल तेलंगाना और महाराष्ट्र तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में 10 से 12 जून तक मॉनसून की बारिश शुरू होगी। इसके बाद बारी आएगी बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, जहां मॉनसून 15 से 20 जून के बीच सक्रिय हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून के 15 से 22 जून के बीच पहुंचने की संभावना है, जबकि गुजरात में मॉनसून 20 से 25 जून के बीच दस्तक दे सकता है। बात अगर दिल्ली NCR की जाए तो राजधानी क्षेत्र तक आते आते मॉनसून को लगभग एक महीना लग जाएगा। दिल्ली NCR में 25 जून के आसपास मॉनसून की एंट्री हो सकती है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी 25 जून तक मॉनसून की बारिश शुरू होने की संभावना है, जबकि राजस्थान में मॉनसून के सबसे आखिर में यानी 30 जून से 5 जुलाई तक पहुंचने की संभावना है। IMD के अनुमानों के अनुसार मॉनसून जुलाई के दूसरे हफ्ते तक पूरे भारत को कवर कर लेगा। तो मॉनसून के तय वक्त से पहले आने की खबर सुनते ही एक ठंडक सी महसूस होने लगती है। अमूमन मॉनसून जून की शुरुआत या मई के आखिर में 2 से 3 दिनों में केरल में दाखिल होता है, मगर इस बार ये 26 मई या उससे भी 1-2 दिन पहले आ सकता है। दक्षिण भारत में प्री मॉनसून की बारिश हो रही है, जो बता रहा है कि मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे कई और कारण हैं जो ये संकेत दे रहे हैं कि मॉनसून की गति और दिशा बिल्कुल सही है। इसी को देखते हुए कई राज्यों ने मॉनसून के लिए जरूरी तैयारी शुरू कर दी है। मॉनसून की आहट मिलते ही तमिलनाडु के कई इलाकों में NDRF ने मोर्चा संभाल लिया है।

0: हीट वेव और लू के थपेड़ों के बीच उत्तर भारत की अग्नि परीक्षा जारी है। कई शहरों का पारा 47 डिग्री को पार कर चुका है। जब पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में तप रहा है, ठीक उसी वक्त दक्षिण भारत के आकाश में एक अलग ही हलचल शुरू हो चुकी है। समुद्र से उठती नम हवाएं, गरजते बादल बता रहे हैं कि मानसून दस्तक देने वाला है। रविवार तक मानसून के केरल में एंट्री होने की उम्मीद है, वो भी तय वक्त से 5 दिन पहले। इससे पहले ही दक्षिण भारत में प्री मानसून की बारिश हो रही है। मानसून की आहट मिलते ही एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। तमिलनाडु में रानीपेट में एनडीआरएफ की टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। एनडीआरएफ के जवानों को मुश्किल हालात से निपटना और लोगों की जान बचाने का हुनर पता है। इस काम में इनकी मदद खोजी कुत्ते करते हैं जो कि पूरी तरह से ट्रेंड है। मानसून के बादल जब बरसते हैं तो कई कई दिनों तक थमते नहीं, ऐसे में कई बार हालात चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं। तब काम आती है इन जवानों की तैयारी। ये जवान अपने साथ कटर, लाइफ सेविंग जैकेट और बोट समेत हर वो जरूरी चीज लेकर गए हैं जिनकी इन्हें जरूरत पड़ सकती है। समय से पहले आ रहा मानसून उम्मीद की नई किरण भी लेके आ रहा है। सही तैयारी के साथ ये बारिश वरदान बनेगी, जल संकट कम होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बादल भी आएंगे और बारिश भी लाएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। खुशबू बता रही है ये सूखी जमीन की, इस दश्त में ही सब्ज इलाके भी आएंगे। मंजूर हाशमी की लिखी ये बात सच होती दिखेगी, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है। लेकिन बारिश की मेहरबानी जब तक नहीं हो रही, गर्मी के सितम से बचने का रास्ता निकाल डालना भी जरूरी है। मई की विदाई और मानसून की दस्तक के बीच में मैदानी इलाकों में जहां गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो वहीं पहाड़ों पर मौसम ने करवट लेकर नजारों को और भी खूबसूरत बना दिया है। कश्मीर और लेह समेत कई पहाड़ी इलाकों में हाल ही में हुई बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार बना दिया। मानसून के इंतजार के बीच गर्मी में सर्दी का एहसास करने के लिए मैदानों के मुसाफिर इन बर्फीले पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
2: आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। मानसून के लिए फिलहाल यही कहा जा सकता है। बहरहाल गर्मी का हाहाकार है और बारिश का इंतजार है। लेकिन बारिश जब तक नहीं आ रही, इस कमबख्त गर्मी से राहत का उपाय ढूंढना भी जरूरी है। और मानसून का इंतजार करते लोगों के लिए इन दिनों उसी राहत और सुकून का जरिया बन रहे हैं पहाड़ और उन पर बरसती बर्फ। मैदान में तो मई आग बरसा रही है, पर वादियों में बर्फ बिछी है। 40 डिग्री वाले टॉर्चर से जो निकल कर आए हैं, उनके लिए ये नज़ारा वाकई जन्नत से कम नहीं। हर बार की तरह उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर लोगों की पहली पसंद है। मैदानों में पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी से इन राज्यों के पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान, दिल्ली, यूपी और दूसरे इलाकों से लोग कश्मीर के बांदीपुरा चले आए हैं, जहां बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और नज़ारे लोगों को राहत का एहसास करवा रहे हैं।
3: हम लोग जयपुर राजस्थान से आए हैं और वहां पे बहुत गर्मी है। अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है। आने वाले टाइम पे वार्निंग भी दी गई है कि 25 मई से 2 जून तक बहुत ज्यादा हीट वेव्स आने वाली है। घर में रहें, सब लोगों को बोला गया है। पर मैं बोलना चाहूंगी, क्यों आपने घर में रहना है? आप कश्मीर आए, आप अपना ट्रिप प्लान करें, फैमिली को लेकर आए, दोस्तों को लेकर आए, यहाँ की ब्यूटी को देखें, स्नो में खेलें, कितना मजा आएगा आपको भी।
2: यूं तो जम्मू कश्मीर 12 महीने पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार रहता है, मगर इस बार कश्मीर के बांदीपोरा की ठंडी और सुकून देने वाली घाटियाँ सैलानियों को इस तपती गर्मी में खूब लुभा रही हैं।
4: सूरज सर पे हो और बहुत आग बरस रही हो, ऐसा माहौल है वहाँ का। और मैं कश्मीर में यहाँ पर आके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। बहुत कूल मौसम और बहुत प्यारा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर।
2: बांदीपुरा का राजदान पास इन दिनों खास आकर्षण बना हुआ है। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस क्षेत्र में मई के महीने में भी बर्फ जमी है। यही वजह है कि दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे मैदानी शहरों से आने वाले पर्यटक यहां पहुंचकर राहत महसूस कर रहे हैं।
5: यहाँ हमें इतना सुकून मिल रहा है, इतना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हूँ। तो बस ठंडा मौसम है, हर व्यक्ति को इस वक्त कश्मीर घूमना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे आना चाहिए।
2: कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फ है तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। तस्वीर चमोली की है जहां इस वक्त चार धाम यात्रा चल रही है और मौसम का मिजाज देखिए, झमाझम बरसात देखिए, जैसे पूरा का पूरा इलाका पानी से सराबोर है। बारिश की बूंदों के साथ ओले भी गिरे और पारा लुढ़क गया। बारिश के इंतजार के बीच तपती मई में आंखों को सुकून देने वाली तस्वीरें हैं ये, लेकिन मुश्किल ये है कि सबको पहाड़ की ये बारिश और बर्फ नसीब कहाँ है। लेकिन चिंता की बात नहीं, जो गर्मी में सर्दी का एहसास करने पहाड़ों पर न जा सके, इंतजाम उनके लिए भी है, जैसे अहमदाबाद वालों ने किया। ये नजारा है अहमदाबाद के एक स्नो पार्क का। मई के महीने में जब गर्मी अपने तेवर दिखा रही है तो इस स्नो पार्क से बेहतर जगह शायद कोई दूसरी नहीं हो सकती। गर्मी के इस मौसम में पूरे उत्तर भारत के साथ गुजरात और राजस्थान में भी हीट वेव का जबरदस्त असर दिख रहा है, लेकिन इस मुश्किल मौसम में अहमदाबाद का ये स्नो पार्क लोगों को ठंडक का तोहफा दे रहा है।
6: बहुत सारी हॉलीडेज है, गर्मी है, इसलिए फ्रंट ब्लास्ट में एंजॉय करने के लिए आए हैं हम, जाते आते हैं और 3 साल से सलिंग आते हैं यहाँ।
7: अभी गर्मी बहुत सारी है इसीलिए हमने यही प्लेस सिलेक्ट करी।
2: स्नो पार्क के अंदर का तापमान -7 डिग्री रहता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। गर्मी के दिनों में यहाँ आने के लिए खास तैयारियाँ करनी पड़ती है। बड़े हो या छोटे, स्नो पार्क में दाखिल होने से पहले सभी को जैकेट, बूट्स और ग्लव्स पहनना पड़ता है। इस पार्क में सभी के लिए हर साइज के जैकेट्स और ग्लव्स मिल जाते हैं। यहाँ की स्नो स्लाइड्स बच्चों की फेवरेट है। स्नो कासल और स्नोमैन के साथ बच्चे घंटों मस्ती करते हैं। इस मौसम में जो लोग हिल स्टेशन पर नहीं जा पा रहे, उनके लिए ये स्नो पार्क वाकई एक बेहतरीन सौगात है। वैसे बादल भी जल्द ही राहत की सौगात बरसाने वाले हैं, चिलचिलाती गर्मी से निजात दिलाने वाले हैं, लेकिन जब तक बादल नहीं बरसते, गर्मी से राहत दिलाने के लिए पहाड़, स्नो पार्क और वाटर पार्क से काम चलाना भी एक अच्छा ऑप्शन है। श्रीनगर से अशरफ वानी और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देश के कई इलाके इस वक्त गर्मी की सबसे मुश्किल अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। मौसम विभाग ने स्पष्ट शब्दों में यह बता दिया है कि अगले 2-3 दिनों में मौसम का ये मिजाज यूं ही बना रहेगा, लेकिन गर्मी है तो क्या गम है, क्योंकि गर्मी जितनी जोरदार है, गर्मी के विरुद्ध युद्ध की तैयारी भी उतनी ही दमदार। हॉट वेदर में कूल सॉल्यूशंस निकालने में हम भारतीयों का तो जवाब ही नहीं है। गर्मी से बचाव के कूल कूल उपायों की ये 2 तस्वीरें देख लीजिए इस वक्त आपके सामने है। एक तस्वीर है काशी की। काशी के मंदिरों में भीषण गर्मी की तपिश से भगवान को बचाने के लिए कूलर और एसी तक लग गए हैं। इतना ही नहीं, मूर्तियों को सूती वस्त्र गर्मी से बचाव के लिए पहनाए गए हैं, और तो और भोग प्रसाद और फल में भी ठंडी सामग्री चढ़ाई जा रही है। काशी का राम जानकी मंदिर हो या फिर बड़ा गणेश भगवान के लिए मंदिर के गर्भगृह में एसी की व्यवस्था की गई है। भगवान के लिए गर्मी में खास इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं ख्याल बेजुबानों का भी रखा जा रहा है। दिल्ली के जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के बाड़ों में स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं जो फव्वारों की तरह ठंडी फुहारें छोड़ता है। इसके अलावा जानवरों के लिए ठंडा और साफ पानी का इंतजाम किया गया है। तालाबों की मरम्मत कर रोजाना ताजा पानी भरा जा रहा है ताकि जानवर उसमें नहा सकें और गर्मी से राहत पा सकें। गर्मी को देखते हुए जानवरों के खान पान में बदलाव किया गया है। और चलिए इसी के साथ जी एंड स्पेशल की आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ चैनल।

0: कुंडली का कमजोर बृहस्पति किस तरह की समस्याएं वैवाहिक जीवन में देता है? कुंडली का खराब बृहस्पति वैवाहिक जीवन पर किस तरह का असर डालता है? और कुंडली का शुभ बृहस्पति वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बृहस्पति की अलग अलग स्थितियों का वैवाहिक जीवन पर कैसे पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज़ चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
2: और अब आज समंदर में कचरा निगलने वाली नाव की जो कि सौर ऊर्जा से चलती है। मुंबई के समंदर से कचरा हटाने के लिए रिमोट कंट्रोल दो नौकाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया और का परेड के भदवार पार्क में तैनात मानव रहित ये बोट पानी की सतह से रोजाना लगभग 80 से 90 किलो तक तैरता हुआ कचरा उठा रही है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बीएमसी ने तकनीक का सहारा लिया है।
3: समंदर किनारे सपनों का शहर मुंबई, अरब सागर के किनारे बसा मुंबई सिर्फ एक महानगर नहीं है बल्कि ख्वाबों का शहर है, जिसके समुद्री तटों को साफ करने के लिए बीएमसी नई रणनीति और मजबूत इरादों के साथ तैयार है। मुंबई अपनी चकाचौंध, खूबसूरत जुहू बीच, गिरगांव चौपाटी और ऊंची लहरों के लिए मशहूर है। हर साल हजारों लाखों लोग माया नगरी का रुख करते हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी तो है ही, बॉलीवुड और दूसरे कई ऐसे काम धंधे भी हैं जिसके लिए लोग यहां खींचे चले आते हैं। इसी वजह से शहर की आबादी तेजी से बढ़ भी रही है। तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण की वजह से मुंबई में कचरा प्रबंधन आज एक गंभीर चुनौती है। जमीन से होता हुआ ये कचरा समंदर तक पहुंच जाता है, फिर भारी बारिश और हाईटाइड के दौरान ये कचरा गेटवे ऑफ इंडिया, कप परेड जैसे समुद्री किनारों पर जमा हो जाता है। समंदर की खूबसूरती पर दाग लगाने वाले कचरे में प्लास्टिक भी शामिल होता है, जिसको रोकने के लिए बीएमसी ने समंदर में बिना चालक वाली नौकाओं को उतार दिया है।
4: इस वक्त हम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया इलाके में हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं टूरिस्ट बोट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीएमसी के सामने एक चैलेंज है कि जो समुद्री तट है मुंबई का, उसके आसपास जो कचरा है उसे कैसे निकाला जाए। इसीलिए आप सामने जो देख रहे हैं एलिसियम, ये अनमैन्ड बोट है, इलेक्ट्रिक उस पर चलने वाली पावर पे, और ये आप कह सकते हैं ऐसी दो बोट, एक गेटवे ऑफ इंडिया पर और एक कफ परेड में भदवार पार्क पर लाई गई है बीएमसी की तरफ से। जो कन्वेयर बेल्ट ब्लू कलर का है, ये जो कचरा है वो पिकअप कर समुद्र से अंदर बोट में डालता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप कह सकते हैं कि बीएमसी ने इसीलिए शुरू किया है क्योंकि जो समुद्र के आसपास कचरा दिखता है उसे साफ किया जा सके।
3: विशेष तरीके से तैयार इस नाव में दो बैटरी लगी है जो सोलर पावर यानी सौर ऊर्जा से चार्ज होती है। एक किलोमीटर के दायरे में रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होने वाली ये बोट कन्वेयर बेल्ट की मदद से समुद्र में फैले कचरे को इकट्ठा करती है।
5: एकदम इजी सिस्टम है, इसमें दो चीजें है, थ्रस्टर और कन्वेयर। स्टार्ट करने के लिए पहले इसको अपने को बैटरी लगाना पड़ता है, दो बैटरी है उसको। दोनों बैटरी लगाने के बाद, कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे एक स्विच है, उसको ऑन करना है। बेसिकली हमारा एक टेस्टिंग रहता है डेली रूटीन का, उसमें हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद ये सब चीजें अटैच होने के बाद में थ्रस्टर चेक करते हैं, थ्रस्टर लगाने के बाद में हम लोग बोट स्टार्ट कर लेते हैं। फिर इसका राउंड अप कैसे कि आप जहाँ पे आपका गार्बेज है यहाँ पे ये बाय रिमोट ये बोट ऑपरेट किया जाता है।
4: ओके,
5: इसी के लिए उसका पर्टिकुलर रेंज दिया है 1 किलोमीटर का। तो ये रेंज से हम लोग बोट गार्बेज की तरफ ले जाते हैं और ये जो कन्वेयर है वो कन्वेयर का जो फ्रंट बेस है वहाँ पे एग्जैक्टली कचरा कन्वेयर पे आके वो हॉपर में जमा हो जाता है।
3: बीएमसी की ओर से तैनात ये नावें बिना चालक के पानी की सतह से रोजाना लगभग 80 से 90 किलोग्राम तक तैरता हुआ कचरा निकालती हैं। इस दौरान ये पानी को प्रदूषित भी नहीं करती हैं।
5: बेसिकली अभी ये कैसे ये कॉन्सेप्ट अनमैन्ड बोट का क्यों है कि यहाँ पे तीन चीज़ें प्रायोरिटी पे है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी, सेकंड डिग्निटी है, और दूसरी बात में जीरो इमर्शन। जीरो इमर्शन यानी ये इलेक्ट्रिकल बोट है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको बोट को खाली चार्ज करना है, उसके बाद आप ऑपरेट कर सकते हो। ये जो सेकंड स्टेप है जहाँ पे जो कन्वेयर है, वो कन्वेयर में आपको जो गार्बेज है साइड गार्बेज पूरा कलेक्ट होता है। और सेकंड थिंग क्या होता है कि कोई कॉर्नर पे जो जगह रहेगी वहाँ पे ये इजीली जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस कन्वेयर
4: जी।
5: हाँ, सेकंड थिंग फिर ये सब इसमें जमा हो जाता है, सब गार्बेज पूरा इसमें जमा हो जाता है। और इसका जो रेंज है वो जो रेंज है 1 किलोमीटर का है, और इसका जो हॉपर का कैपेसिटी है 800 से 1000 किलो तक है। और ये मिनिमम आप गेटवे का अगर कचरा देखेंगे, जो गार्बेज देखेंगे, उसका 200 से 400 तक उसका लिमिट है। बदवार पक्का है वो आपका 150 से 250 तक जाता है।
3: समंदर किनारे कचरे में सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है, जिनमें प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बॉटल्स और प्लास्टिक के टूटे सामान शामिल होते हैं। दरअसल लोग प्लास्टिक की बॉटल खरीद कर पानी पीते हैं और उसे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, प्लास्टिक पैक्ड चीजें खरीद कर खाते हैं और फिर खाली प्लास्टिक पैकेट को फेंक देते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, नदियों से लेकर समंदर तक, लोगों का यूज किया गया कचरा प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसको रोकने का काम बीएमसी कर रही है।
4: तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से इनोवेशन किया गया है समुद्र में साफ सफाई हो सके, उसमें किसी तरह का ह्यूमन आप कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसीलिए ये अनमैन्ड बोट्स बैटरी ऑपरेटेड जो है वो चलाई जा रही है। जो भी वेस्ट जनरेट होता है, काफ़ी वेस्ट जनरेट होता है, क्योंकि टूरिस्ट एरिया, टूरिस्ट मूवमेंट जो है वो हज़ारों की तादाद में रहती है गेटवे ऑफ इंडिया पर, और उसके ये पूरा सिस्टम जो है वो बीएमसी की तरफ से डिप्लॉय किया है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
7: Thank God I get to wake
6: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brashiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
0: कुंडली का कमजोर बृहस्पति किस तरह की समस्याएं वैवाहिक जीवन में देता है? कुंडली का खराब बृहस्पति वैवाहिक जीवन पर किस तरह का असर डालता है, और कुंडली का शुभ बृहस्पति वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बृहस्पति की अलग अलग स्थितियों का वैवाहिक जीवन पर कैसे पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायुअस्त्र एक का सफल परीक्षण, 10 किलो वॉरहेड के साथ 100 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना, सेना की स्ट्राइक और निगरानी क्षमता में होगा इजाफा। डिफेंस और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की लंबी छलांग, प्रोजेक्ट सबल के तहत नोएडा की हैवी लिफ्ट ड्रोन कंपनी को मिला 30 करोड़ का फंड, सैन्य ऑपरेशन के साथ आपदा राहत में मिलेगी मदद। अमेरिका में हो रहे बैटल इन द बे एक्सरसाइज में पहली बार भारतीय सेना ने की शिरकत, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और ऊंचे दुर्गम इलाकों में युद्धाभ्यास, मजबूत सुरक्षा सहयोग के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन, पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ से हुआ चुनाव, पवित्र

0: रियायत तकनीक से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रेल मंत्री की अपील, यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहे मुसाफिर। हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें संदिग्ध की जानकारी।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे सोचे समझे सोशल मीडिया पर ये खबरें अक्सर शेयर कर देते हैं, क्योंकि आजकल खबरें केवल अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल सच लगे। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे इन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं, उसमें फैक्ट चेक में सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगने को लेकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि मामूली सी कहा सुनी के बाद एक लड़के ने लड़की को बेरहमी से पीट दिया। इसकी सच्चाई क्या है, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ये कह रहे हैं कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगने को लेकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। इस घोषणा के बाद कोलकाता में 15 मई यानी शुक्रवार को नमाज के बाद हंगामा मच गया। एक धर्म विशेष समुदाय के लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इसी संदर्भ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ में मौजूद लोग नारे लगाते दिख रहे हैं। वीडियो में लिखा है, कोलकाता में सड़क पर नमाज को लेकर बवाल, नई सरकार के आदेश के खिलाफ एक धर्म विशेष के लोगों का धमकी भरा प्रदर्शन। एक व्यक्ति ने वीडियो को एक्स पर शेयर किया और तंज कसते हुए लिखा कि सड़क किसी की थोड़ी है, जो जब चाहे जहाँ चाहे वही मुर्गा बन जाए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो में किसी सड़क पर लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। ये लोग कुछ नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां पर सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगने को लेकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने गौर से सुना तो ये बांग्ला लगा। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने फिर से वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, और अगर ये वीडियो सड़क पर नमाज रोकने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का था तो इस दौरान हमें यहां पर बंगाल पुलिस के जवान क्यों नजर नहीं आए? इतने बड़े विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस के जवानों को तैनात क्यों नहीं किया गया, ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। साथ ही वीडियो में द लाइट पार्क नाम के एक होटल का बोर्ड भी नजर आ रहा है, लेकिन सर्च के दौरान पूरे पश्चिम बंगाल में इस नाम का कोई भी होटल हमें नजर नहीं आया। मतलब ये कि

वीडियो कहीं और का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में वायरल दावे की पुष्टि करती कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।

0: पेट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें फेसबुक पर उसी लोकेशन का दूसरा वीडियो मिला। कई बांग्लादेशी यूजर्स ने इस वीडियो को 14 मई को शेयर किया था। इन पोस्ट के मुताबिक वीडियो आवामी लीग के नेता इंजीनियर मुशर्रफ हुसैन के जनाजे में बांग्लादेश के चिट्टागोंग में उमड़ी भीड़ का है। एक बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट में 14 मई को छपी रिपोर्ट के मुताबिक चिट्टागोंग में इंजीनियर मुशर्रफ हुसैन की अंतिम विदाई में हजारों समर्थक शामिल हुए थे। फेसबुक पर मिले वीडियो में द लाइट पार्क नाम का होटल साफ दिख रहा है। इस क्लू की मदद से हमने वायरल वीडियो में दिख रही जगह को गूगल मैप्स पर सर्च किया तो ये हमें बांग्लादेश के चिट्टागोंग में मिल गई। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि बांग्लादेश के चिट्टागोंग का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ रितेश दत्ता, टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि मामूली सी कहा सुनी के बाद एक लड़के ने एक लड़की को बेरहमी से पीट दिया जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि लिफ्ट में लड़का मैडम से गलती से टकरा गया था, फिर लगातार बेइज्जती करके थप्पड़ मार दिया लड़के ने, फिर उसके बाद लड़की पर हमला कर दिया। लेकिन जब हमने इस वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए हमारी रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पर ये हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वायरल हो रहा वीडियो किसी सीसीटीवी फुटेज का है। वीडियो में नजर आता है कि लिफ्ट से बाहर निकलते समय एक लड़का एक लड़की से टकरा जाता है। लड़का टकराने की वजह बताता है। इस पर लड़की कहती है कि देख कर आना चाहिए था। लड़का सॉरी भी बोलता है और इतने में लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट के बंद होते ही लड़की उस लड़के को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद लड़के का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो लड़की पर गुस्सा करता है, थप्पड़ क्यों मारा इसकी वजह पूछता है, लेकिन लड़की लड़के से लगातार बहस करती रहती है। इसके बाद लड़का अपना आपा खो देता है और वो लड़की को बुरी तरह से पीटता है। कई न्यूज आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को लेकर कई खबरें चलाई। एक्सपर्ट वीडियो को शेयर करते हुए एक शख्स ने लिखा कि लिफ्ट में लड़का मैडम से गलती से टच हो गया, फिर लगातार बेइज्जती करके थप्पड़ मार दिया। लड़का फिर ज्यादा पिटाई किया, लेकिन सीसीटीवी नहीं होता तो मैडम विक्टिम कार्ड खेलती। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर यूजर इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में नजर आ रहा है कि लिफ्ट से बाहर निकलते समय एक लड़की और एक लड़का आपस में टकरा जाते हैं और इसके बाद लड़की बहस करते हुए युवक को थप्पड़ मार देती है। युवती से पीटने के बाद युवक उसे पहले तो थप्पड़ मारता है और इसके बाद जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीटता है। इतना ही नहीं, वो लड़की के सर पर एक भारी चीज भी मारता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हमने इसकी पड़ताल शुरू की तो दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। मसलन इन दोनों के बीच बहस होती है तो फिर शोर सुनकर आसपास से कोई वहां पर क्यों नहीं पहुंचता। इतना नहीं, लड़का जब लड़की के थप्पड़ मारने के बाद पलटवार करता है तो लड़की को जमकर पीटता है, तो इस दौरान लड़की चीखी होगी, शोर मचाया होगा, लेकिन इसके बावजूद वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा। ऐसा भला कैसे हो सकता है? लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर मिला। वीडियो के कैप्शन में एक्टिंग और रेसलिंग जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है। इस अकाउंट पर यह वीडियो दो बार शेयर किया गया था। वीडियो में नजर आ रहे लड़के का नाम विपिन चौहान है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो के मुताबिक वो एक रेसलर है। उनके अकाउंट पर मौजूद कई दूसरी वीडियोस में CWE एकेडमी का बैनर नजर आता है। CWE मशहूर रेसलर खली की कुश्ती एकेडमी है जो कि पंजाब में स्थित है। उनके अकाउंट पर इस तरह की मारपीट और भी वीडियो मौजूद है जिनमें वही लड़की है जो वायरल वीडियो में भी नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए फैक्ट चेक टीम ने विपिन चौहान से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रही लड़की उनकी पत्नी रुचिका शाह है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने इस तरह के स्क्रिप्टेड वीडियो बनाने शुरू किए हैं। इन वीडियोस पर उन्हें काफी व्यूज और लाइक्स मिले और जिसके बाद उन्होंने इस तरह के और भी वीडियो बनाने का फैसला किया। वो और उनकी पत्नी प्रोफेशनल कुश्ती खिलाड़ी हैं और किसी को बिना चोट पहुंचाए वो ऐसे वीडियोस बना सकते हैं। इस वीडियो को शूट करने के दौरान भी किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। उन्होंने कहा कि कभी कभी शूटिंग के दौरान हल्की फुल्की चोट लग जाती है लेकिन वो ज्यादा गंभीर नहीं होती। विपिन ने यह भी बताया कि उन्होंने अब CWE एकेडमी छोड़ दी है। साफ है कि लड़की के साथ मारपीट करता शख्स उसी का पति है। ये वीडियो भी असल घटना का नहीं है। वीडियो में नजर आ रहे दोनों लोग कुश्ती खिलाड़ी हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में। दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
5: It's my music and it's my station.
4: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम पेश करने वाले कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।

0: बहुत बच्चा भी है, आज वो पार्टी दे रहा है हम सबको।
1: इन दिनों सोशल मीडिया पर चकाचौंध और शोबाजी वाली रील्स की बाढ़ आई हुई है, लेकिन इसी बीच झारखंड से सामने आए एक वीडियो ने इंटरनेट की लाखों जनता का दिल जीत लिया है। ये कहानी सूरज नाम के एक बच्चे की है, जिसने साबित कर दिया कि खुश रहने के लिए किसी महंगे कैफे या आलिशान पार्टी की जरूरत नहीं होती, बस कुछ सच्चे दोस्त और 100 रुपए का बजट ही काफी है। वीडियो में सूरज अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से चूल्हे के पास बैठकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता दिख रहा है।
0: हेलो गाइस, आज सूरज का बर्थडे है, तो सूरज 100 रुपया का मैगी लाया है और उसका साथ सेंटा फेंटा भी, और बहुत बच्चा भी है, आज वो पार्टी दे रहा है हम सबको।
1: वीडियो की शुरुआत सूरज के दोस्त के एक डायलॉग से होती है, जो कैमरे के सामने आकर बड़े गर्व से कहता है, आज सूरज की तरफ से बर्थडे पार्टी है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस छोटी सी पार्टी के लिए सूरज ने अपने गुल्लक से पाई पाई जोड़कर पैसे बचाए थे। वीडियो में दिख रहा है कि सूरज खुद चूल्हे पर मैगी बना रहा है और उसके दोस्त आसपास बैठकर अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बच्चों के चेहरों पर बिखरी मुस्कान और खुशी किसी भी महंगे रेस्टोरेंट के जश्न से कहीं ज्यादा बड़ी और खूबसूरत लग रही है।
0: हेलो गाइस, आज सूरज का बर्थडे है, तो सूरज 100 रुपया का मैगी लाया है और उसका साथ सेंटा फेंटा भी, और बहुत बच्चा भी है, आज वो पार्टी दे रहा है हम सबको, आज उसका बर्थडे है।
1: आप भी बचपन में कई बार डॉक्टर के पास गए होंगे, अगर तबीयत ज्यादा खराब रही होगी तो डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाया होगा। अब इंजेक्शन देखकर आपको डर भी लगा होगा। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो बड़े हो चुके हैं मगर आज भी इंजेक्शन से डरते हैं। वही वीडियो में दिख रही ये बच्ची इंजेक्शन से बिल्कुल भी नहीं डर रही। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बच्ची को दर्द होता ही नहीं, उसे इंजेक्शन से डर भी नहीं लगता, और बच्ची के इसी एक्सप्रेशन के कारण वीडियो वायरल हो रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर क्रिकेट से जुड़ा ये बेहद दिलचस्प वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने लोगों को हैरान भी किया और प्रभावित भी। आमतौर पर क्रिकेट खेलने के लिए बड़े मैदान की जरूरत होती है, जहां बल्लेबाज शॉट लगा सकें और फील्डर आसानी से गेंद पकड़ सकें। लेकिन वायरल वीडियो में जो नजारा देखने को मिला वो पूरी तरह अलग है। यहां लोगों ने पहाड़ों के बीच ऐसी जगह पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, जहां मुश्किल से एक पिच के बराबर जगह मौजूद है। वीडियो में साफ नजर आता है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच पतली सी जगह पर क्रिकेट की पिच बनाई गई है। आसपास इतना कम स्थान है कि सामान्य तरीके से फील्डिंग करना लगभग नामुमकिन लगता है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों ने इस चुनौती का भी शानदार हल निकाल दिया। जहां जहां पहाड़ों के नीचे थोड़ी सी भी जगह मिली, वहां खिलाड़ी फील्डिंग करने के लिए खड़े हो गए। किसी ने पत्थरों के बीच अपनी जगह बनाई तो कोई ढलान पर खड़ा दिखाई दिया। वीडियो में बल्लेबाज आराम से शॉट खेलते दिखाई देते हैं, जबकि गेंदबाज भी पूरे जोश के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। वही फील्डर पहाड़ी रास्तों और चट्टानों के बीच भी तेजी से दौड़ते नजर आते हैं। ये दृश्य बताता है कि खेल के प्रति लोगों का प्यार किसी भी परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। अगर मन में जुनून हो तो इंसान कहीं भी अपने पसंदीदा खेल का आनंद ले सकता है।
2: कैसा होता अगर धुरंधर फिल्म का ये गाना भोजपुरी में होता?
1: इंटरनेट पर इन दिनों ये वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी सिंगर के फैन हो जाएंगे। फिल्म धुरंधर का सुपरहिट रोमांटिक सॉन्ग गहरा हुआ का भोजपुरी वर्जन ऐसा तहलका मचा रहा है कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए हैं।

0: सोशल मीडिया पर दो बहनों ने इजिप्ट लीबिया के बॉर्डर पर बने अपने छोटे से घर की झलक लोगों को दिखाई। झोपड़ी नुमा ये घर बाहर से नमक और मिट्टी से बनी थी। इसे देख लोगों ने उम्मीद की थी कि बहनें गरीब हैं और मुश्किलों में अपना गुजारा कर रही हैं। लेकिन जब घर को अंदर से दिखाया गया तो सब दंग रह गए। घर के अंदर आधुनिक और लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक मिली। कमरे में सॉफ्ट लाइटिंग, कंफर्टेबल सोफा, बड़े बड़े बेड, फुली इक्विप्ड किचन, वाईफाई, एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं और खूबसूरत डेकोरेशन, सब कुछ मौजूद था। बहनों ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल से घर बनाया है जिसमें मिट्टी और नमक का इस्तेमाल किया गया है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। यूं तो अब तक आपको पुल पार करने का एक ही तरीका पता होगा और वो ये है कि पुल के ऊपर से गुजरना। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद इस पर आपका विचार बदल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मानना पड़ेगा कि किसी भी पुल को पार करने के लिए कई और तरीके भी हो सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पुल को पार करने के लिए ब्रिज के ऊपर से जाने की जगह उसके नीचे से उछल कूद करते हुए गुजर रहा है। शख्स पुल के नीचे लगे खम्भों और पोल को पकड़कर झूलते हुए ब्रिज को पार कर रहा है। वीडियो में शख्स जितनी आसानी से पुल को पार करता दिख रहा है उतना आसान ये काम बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस शख्स की फिटनेस वाकई कमाल की है। आप देख सकते हैं कि शख्स उस पुल को न सिर्फ पार करते हुए जाता है बल्कि वो उसी पुल पर ठीक वैसे ही लटकते हुए वापस आता है। पुल के नीचे मौजूद लोग उस शख्स का हौसला बढ़ाते और उसका वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते नजर आ रहे हैं।
1: तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे संजीव बाबा है हमारे।
0: इन दिनों इंटरनेट पर ये वीडियो तहलका मचा रहा है जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। मामला एक डोसा वाले भैया और उनके सबसे अनोखे कस्टमर सांड से जुड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यस्त सड़क के किनारे एक डोसे की दुकान है जहाँ तवे के ठीक पास एक सांड बड़े ही धैर्य के साथ खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसे दुकान का पूरा मेन्यू जबानी याद आया और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। आम तौर पर दुकानदार जानवरों को भगा देते हैं, लेकिन इस डोसा वाले ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। आप देखेंगे कि दुकानदार ने बड़े ही प्यार से तवे पर मक्खन मारकर एक बढ़िया कुरकुरा डोसा तैयार किया और सीधे अपने इस चार पैरों वाले स्पेशल गेस्ट को परोस दिया।
1: फाइनली इनका डोसा खिलाने का बारी आ चुका है।
0: सांड ने भी बड़े चाव से डोसा खाया और अपनी पूंछ हिलाकर वेंडर का शुक्रिया अदा किया। दुकानदार की माने तो ये सांड रोजाना सही समय पर यहाँ आ जाता है। कुछ लोग तो सिर्फ इस अनोखे नजारे को देखने के लिए यहाँ रुकते हैं, जिसकी वजह से दुकान अब एक छोटा मोटा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। जंगल सफारी के इस वीडियो को देखकर यूजर्स हैरान हैं। वीडियो में एक जंगल नजर आ रहा है। जीप में बैठी लड़की ने जंगल सफारी के दौरान वीडियो बनाया और तभी नजर आता है कि एक हाथी उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। हाथी जब काफी करीब आ जाता है तो लड़की डर जाती है और जीप चालक को गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगती है। कुछ सेकंड के लिए हाथी रुक जाता है मगर फिर उनके पीछे आने लगता है। जीप में मौजूद आदमी भी गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगता है। वीडियो देखकर लगता है कि हाथी इन पर हमला कर सकता है और इसी कारण ये लोग भी डर गए।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
4: और जैसा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से विदेश यात्रा के बजाय अपने देश को एक्सप्लोर करने की अपील की थी, तो जीएनटी भी आप सभी से अपील कर रहा है कि आप भी अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें या वीडियोस हमें भेजो ताकि हम आपके उन वीडियोस को दिखाएं। हमारे दर्शक भी बड़े ही उत्साह के साथ अपनी जगहों के खूबसूरत वीडियोस भेज रहे हैं। तो चलिए आज आपको उत्तरकाशी के उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में व्लॉगर बनी एक दर्शक की जबानी सुनाते हैं कि क्यों आपको उत्तराखंड के इस बेहद खूबसूरत और धार्मिक शहर को एक्सप्लोर करना चाहिए।

0: स्वागत है आपका गुड न्यूज चैनल में। मैं गीता सेमवाल, मैं बुलाना चाहती हूँ आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। हल्की हल्की आजकल ना शाम के टाइम पे ठंड महसूस हो रही है। वाह, कितने सुंदर नजारे हैं, कितनी सुंदर प्रकृति की यहाँ पे खूबसूरती है। आपको ना बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़, चीड़ का घना जंगल, ये सब चीज देखने को मिलता है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में दो धाम है, श्री यमुनोत्री धाम और श्री गंगोत्री धाम। तो आजकल ना काफी अच्छी यात्रा चल रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी यही कहा है कि आप विदेशों में घूमने न जाके भारत की जो जगह है, पर्यटक स्थल है, जैसे उत्तराखंड में चार धाम है, श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, आप इन जगहों पे आए। इसके अलावा भी उत्तराखंड में न कहीं आपको पर्यटक स्थल देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आजकल यमुनोत्री धाम में और श्री गंगोत्री धाम में, यानी चारों धाम में काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। जब हमारे गांव मुखवा में मोदी जी आए थे तो उस टाइम जो ये यात्रा चल रही है, अब ये ग्रीष्म काल में न होते हुए अब ये यात्रा शीत काल में भी चलती है, यानी 12 महीना यात्रा चलती है। तो माननीय मोदी जी ने घाम तापो पर्यटक इसका नाम दिया है। मुखवा के सामने धराली है, हरसिल है, बगोरी है। और अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं तो यहाँ पे ना ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए कई जगह है, जैसे दयारा बुग्याल है, गौमुख ट्रैक है, सातार ट्रैक है, ऐसे कई अन्य ट्रैक है। अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप शीतकाल में यात्रा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उस टाइम तो और ज़्यादा खूबसूरती आपको देखने को मिलती है। क्योंकि हरसिल में जो है धराली, मुखवा में सेब, राजमा और उसके साथ साथ खुमानी हो गया, नाशपाती हो गया, ये भरपूर मात्रा में आपको देखने को भी और खाने को भी मिलती है। और इसी के साथ साथ एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि वेडिंग डेस्टिनेशन है, जैसे कि त्रिजोगी नारायण है और उत्तरकाशी में बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में है, श्री गंगोत्री धाम में गंगा मैया जी के मंदिर में है, और गंगा मैया जी का जो शीतकालीन प्रवास है मुखवा, वहाँ पे आप ना शादी करवा सकते हैं और इन जगहों पे ना शादी होती है। तो आइए ना श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम और गंगा मैया जी के शीतकालीन प्रवास मुखवा उत्तरकाशी में आपका स्वागत है।
1: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें, अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई भी खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा, बनाइए ब्लॉग और हमें इस नंबर पर भेज दीजिए। नंबर है 7303409922। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस वीडियो को जीएनटी दिखाएगा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायुअस्त्र 1 का सफल परीक्षण। 10 किलो वॉरहेड के साथ 100 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना, सेना की स्ट्राइक और निगरानी क्षमता में होगा इजाफा। डिफेंस और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की लंबी छलांग। प्रोजेक्ट सबल के तहत नोएडा की हैवी लिफ्ट ड्रोन कंपनी को मिला 30 करोड़ का फंड। सैन्य ऑपरेशन के साथ आपदा राहत में मिलेगी मदद। अमेरिका में हो रहे बैटल इन द बे एक्सरसाइज में पहली बार भारतीय सेना ने की शिरकत। आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और ऊंचे दुर्गम इलाकों में युद्धाभ्यास। मजबूत सुरक्षा सहयोग के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन। पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ से हुआ चुनाव। पवित्र यात्रा के लिए जून से अगस्त के बीच 20 जत्थों में रवाना होंगे यात्री। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी दिख रहा है भीषण गर्मी का असर। हिमाचल के ऊना में 44 तो शिमला में 30 डिग्री के ऊपर पारा। अगले दो दिन में बारिश के आसार। एआई तकनीक से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रेल मंत्री की अपील। यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहे मुसाफिर। हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें संदिग्ध की जानकारी।

आशु गुप्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। यूं तो जीएनटी स्पेशल में हम हर रोज ही आपको गुड न्यूज की बारिश करते हैं, लेकिन आज बात बारिश की गुड न्यूज की करेंगे। वो गुड न्यूज जो मौसम विभाग ने देश को सुना दी है। देश के लिए मानसून की चिट्ठी आई है। जी हाँ, इस बार मानसून तय वक्त से पहले आ रहा है। हमारे देश में मानसून केरल के रास्ते दाखिल होता है। आमतौर पर मानसून कि केरल में एंट्री 1 जून के आसपास मानी जाती है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस बार मॉनसून 26 मई को केरल पहुंच सकता है, यानी तपती गर्मी से परेशान देश के मौसम को कूल डाउन करने के लिए मॉनसून तेजी के साथ लोड हो रहा है। मॉनसून से पहले प्री मॉनसून बारिश ने देश के दक्षिणी राज्यों में दस्तक दे दी है। साउथ के कई इलाकों में बरस रहे प्री मॉनसून के बादलों ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है, यानी मॉनसून से पहले उसका जोरदार ट्रेलर शुरू हो चुका है। आज 21 मई है, यानी मॉनसून बस अब देश की दहलीज तक पहुंच चुका है। इंतजार है तो उसके उत्तर भारत की मेन लैंड में दाखिल होने का।

0: मई की तपिश में राहत की बौछार होने वाली है। मॉनसून की बारिश से देश की धरती गुलजार होने वाली है। यानी आज जहां सूरज आग उगल रहा है, वहां जल्द झमाझम बादल बरसने वाले हैं। और आज जहां हीट वेव ने बेचैन कर रखा है, कल वहां आसमान से सुकून बरसने वाला है। ये राहत भरी खबर आई है मौसम विभाग की ओर से। मौसम विभाग ने अब की बार देश में मॉनसून के समय से पहले दस्तक देने की गुड न्यूज सुनाई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून 26 मई तक केरल पहुंच सकता है।
1: हमारा 26 का हमने प्रेस रिलीज इशू किया था 26 में, और विद मॉडल एरर जैसे प्लस माइनस 4 डेज होता है। बाकी जो अगर आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, तो जो वो लाइन है जो यहाँ पे अभी मानसून एडवांस हो चुका है।
0: आमतौर पर 1 जून को मॉनसून के ऑनसेट की स्टैंडर्ड तारीख माना जाता है, और हाल के सालों में मॉनसून जून के पहले हफ्ते या फिर मई के अंत में दस्तक देता रहा है। पिछले 2 दशक में सबसे पहले साल 2009 में ऐसा हुआ था, जब तय तारीख से 8 दिन पहले यानी 23 मई को ही केरल में मॉनसून पहुंच गया था। इसके बाद पिछले साल यानी 2025 में भी मॉनसून तय समय से कुछ पहले आ गया था। पिछले साल यानी 2025 में मॉनसून 24 मई को केरल पहुंच गया था। साल 2024 में 30 मई, साल 2023 में 8 जून को, 2022 में 29 मई, 2021 में 3 जून, साल 2020 में 1 जून, साल 2019 में 8 जून और 2018 में 29 मई को मॉनसून केरल पहुंचा था। अब 2026 में भी मॉनसून देश की धरती पर जल्द मेहरबान हो रहा है। वास्तव में भारत की सीमा में मॉनसून की दस्तक यूं तो 16 मई को ही हो चुकी है, लेकिन ये एंट्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई है, जो कि बंगाल की खाड़ी का एक हिस्सा है। 16 मई को दक्षिण पश्चिम मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर के कई हिस्सों, संपूर्ण निकोबार द्वीप समूह, श्री विजयपुरम सहित अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। अब मॉनसून की एंट्री का इंतजार भारत के मेनलैंड पर है।
1: 16 मई को हमारा फर्स्ट एडवांस हुआ था, जिसमें हमने कुछ हिस्से अरबियन सी के, बियो बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड के कुछ हिस्से जहां तक हमने कवर किए थे। उसके बाद सेकंड हमारा था वो 18 मई को था। 18 मई को हमने इंटायर अंडमान निकोबार कवर किया, बियो बंगाल के कुछ हिस्से कवर हुए, साउथ अरबियन सी के कवर हुए। और उसके बाद हमारा यही अनुमान है आने वाले कुछ दिनों में जब बे ऑफ बंगाल के कुछ और हिस्से कवर कर सकता है।
0: बात अगर देश में मॉनसून की साइकिल की करें, तो आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून 1 जून तक दक्षिण की ओर से केरल में दस्तक देता है। 8 जुलाई तक मॉनसून पूरे देश को कवर कर लेता है। ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू करता है और आधा अक्टूबर बीतते बीतते पूरी तरह से विदा हो जाता है। मौसम के जानकार इस बार मॉनसून के जल्दी आने की कई बड़ी वजह बता रहे हैं। इसके पीछे मौसम की लोकल सिस्टम के साथ साथ ग्लोबल सिस्टम भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार नमी बने रहना, समुद्र से उठ रही तेज नमी वाली हवाएं मॉनसून को तेजी से उत्तर की ओर आगे बढ़ा रही हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश मॉनसून की बढ़ती सक्रियता का स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा अरब सागर और हिंद महासागर का तापमान सामान्य से अधिक रहने से मॉनसूनी सिस्टम को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। मॉनसून का सामान्य समय से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंचना भी इसका एक बड़ा संकेत है। मॉनसून भले ही जल्दी आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने इस बार मॉनसून सीजन के दौरान 92 से 95% यानी सामान्य से कुछ कम बारिश होने का अनुमान जताया है। ऐसे मॉनसून सीजन में बारिश को लेकर आईएमडी के पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें, तो पता चलता है कि अनुमान के आंकड़े से कुछ फीसदी कम या ज्यादा बारिश होना भी आम रहा है। 2025 में मॉनसून सीजन में 108%, यानी सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई थी, जबकि IMD ने 106% बारिश का अनुमान जताया था। 2024 के मॉनसून सीजन में भी 108% बारिश हुई थी, जबकि IMD ने तब भी 106% बारिश का ही अनुमान जताया था। इसी तरह 2023 में 94% बारिश हुई थी, तब IMD ने 96% बारिश का अनुमान जताया था। इससे पहले साल 2022 में 106% बारिश हुई, जो IMD के अनुमान से कुछ ज्यादा थी। अब इस साल मॉनसून का रिपोर्ट कार्ड क्या रहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मॉनसून के जल्द आने की गुड न्यूज ने गर्मी से तपते देश को खुश होने का मौका जरूर दे दिया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: वैसे तो मॉनसून 16 मई को ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे चुका है। ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के दक्षिणी हिस्सों में सक्रिय हो चुका है। निकोबार द्वीप समूह में पिछले कुछ दिनों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, लेकिन अब बारी देश के मेनलैंड में दस्तक देने की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मॉनसून कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून 26 मई के आसपास केरल तट पर पहुंचेगा, जो सामान्य तारीख 1 जून से लगभग एक हफ्ता पहले है। केरल के बाद मॉनसून जून के पहले सप्ताह में तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में पहुंचेगा। 5 से 7 जून तक दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो जाएगा। 10 जून तक मॉनसून के बादल तेलंगाना और महाराष्ट्र तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में 10 से 12 जून तक मॉनसून की बारिश शुरू होगी। इसके बाद बारी आएगी बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, जहां मॉनसून 15 से 20 जून के बीच सक्रिय हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून के 15 से 22 जून के बीच पहुंचने की संभावना है, जबकि गुजरात में मॉनसून 20 से 25 जून के बीच दस्तक दे सकता है। बात अगर दिल्ली NCR की जाए तो राजधानी क्षेत्र तक आते आते मॉनसून को लगभग एक महीना लग जाएगा। दिल्ली NCR में 25 जून के आसपास मॉनसून की एंट्री हो सकती है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी 25 जून तक मॉनसून की बारिश शुरू होने की संभावना है, जबकि राजस्थान में मॉनसून के सबसे आखिर में यानी 30 जून से 5 जुलाई तक पहुंचने की संभावना है। IMD के अनुमानों के अनुसार मॉनसून जुलाई के दूसरे हफ्ते तक पूरे भारत को कवर कर लेगा। तो मॉनसून के तय वक्त से पहले आने की खबर सुनते ही एक ठंडक सी महसूस होने लगती है। अमूमन मॉनसून जून की शुरुआत या मई के आखिर में 2 से 3 दिनों में केरल में दाखिल होता है, मगर इस बार ये 26 मई या उससे भी 1-2 दिन पहले आ सकता है। दक्षिण भारत में प्री मॉनसून की बारिश हो रही है, जो बता रहा है कि मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे कई और कारण हैं जो ये संकेत दे रहे हैं कि मॉनसून की गति और दिशा बिल्कुल सही है। इसी को देखते हुए कई राज्यों ने मॉनसून के लिए जरूरी तैयारी शुरू कर दी है। मॉनसून की आहट मिलते ही तमिलनाडु के कई इलाकों में NDRF ने मोर्चा संभाल लिया है।

0: हीट वेव और लू के थपेड़ों के बीच उत्तर भारत की अग्नि परीक्षा जारी है। कई शहरों का पारा 47 डिग्री को पार कर चुका है। जब पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में तप रहा है, ठीक उसी वक्त दक्षिण भारत के आकाश में एक अलग ही हलचल शुरू हो चुकी है। समुद्र से उठती नम हवाएं, गरजते बादल बता रहे हैं कि मानसून दस्तक देने वाला है। रविवार तक मानसून के केरल में एंट्री होने की उम्मीद है, वो भी तय वक्त से 5 दिन पहले। इससे पहले ही दक्षिण भारत में प्री मानसून की बारिश हो रही है। मानसून की आहट मिलते ही एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। तमिलनाडु में रानीपेट में एनडीआरएफ की टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। एनडीआरएफ के जवानों को मुश्किल हालात से निपटना और लोगों की जान बचाने का हुनर पता है। इस काम में इनकी मदद खोजी कुत्ते करते हैं जो कि पूरी तरह से ट्रेंड है। मानसून के बादल जब बरसते हैं तो कई कई दिनों तक थमते नहीं, ऐसे में कई बार हालात चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं। तब काम आती है इन जवानों की तैयारी। ये जवान अपने साथ कटर, लाइफ सेविंग जैकेट और बोट समेत हर वो जरूरी चीज लेकर गए हैं जिनकी इन्हें जरूरत पड़ सकती है। समय से पहले आ रहा मानसून उम्मीद की नई किरण भी लेके आ रहा है। सही तैयारी के साथ ये बारिश वरदान बनेगी, जल संकट कम होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बादल भी आएंगे और बारिश भी लाएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। खुशबू बता रही है ये सूखी जमीन की, इस दश्त में ही सब्ज इलाके भी आएंगे। मंजूर हाशमी की लिखी ये बात सच होती दिखेगी, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है। लेकिन बारिश की मेहरबानी जब तक नहीं हो रही, गर्मी के सितम से बचने का रास्ता निकाल डालना भी जरूरी है। मई की विदाई और मानसून की दस्तक के बीच में मैदानी इलाकों में जहां गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो वहीं पहाड़ों पर मौसम ने करवट लेकर नजारों को और भी खूबसूरत बना दिया है। कश्मीर और लेह समेत कई पहाड़ी इलाकों में हाल ही में हुई बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार बना दिया। मानसून के इंतजार के बीच गर्मी में सर्दी का एहसास करने के लिए मैदानों के मुसाफिर इन बर्फीले पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
2: आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। मानसून के लिए फिलहाल यही कहा जा सकता है। बहरहाल गर्मी का हाहाकार है और बारिश का इंतजार है। लेकिन बारिश जब तक नहीं आ रही, इस कमबख्त गर्मी से राहत का उपाय ढूंढना भी जरूरी है। और मानसून का इंतजार करते लोगों के लिए इन दिनों उसी राहत और सुकून का जरिया बन रहे हैं पहाड़ और उन पर बरसती बर्फ। मैदान में तो मई आग बरसा रही है, पर वादियों में बर्फ बिछी है। 40 डिग्री वाले टॉर्चर से जो निकल कर आए हैं, उनके लिए ये नज़ारा वाकई जन्नत से कम नहीं। हर बार की तरह उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर लोगों की पहली पसंद है। मैदानों में पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी से इन राज्यों के पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान, दिल्ली, यूपी और दूसरे इलाकों से लोग कश्मीर के बांदीपुरा चले आए हैं, जहां बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और नज़ारे लोगों को राहत का एहसास करवा रहे हैं।
3: हम लोग जयपुर राजस्थान से आए हैं और वहां पे बहुत गर्मी है। अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है। आने वाले टाइम पे वार्निंग भी दी गई है कि 25 मई से 2 जून तक बहुत ज्यादा हीट वेव्स आने वाली है। घर में रहें, सब लोगों को बोला गया है। बट मैं बोलना चाहूंगी, क्यों आपने घर में रहना है? आप कश्मीर आए, आप अपना ट्रिप प्लान करें, फैमिली को लेकर आए, दोस्तों को लेकर आए, यहाँ की ब्यूटी को देखें, स्नो में खेलें, कितना मजा आएगा आपको भी।
2: ये तो जम्मू कश्मीर 12 महीने पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार रहता है, मगर इस बार कश्मीर के बांदीपोरा की ठंडी और सुकून देने वाली घाटियाँ सैलानियों को इस तपती गर्मी में खूब लुभा रही हैं।
4: सूरज सर पे हो और बहुत आग बरस रही हो, ऐसा माहौल है वहाँ का। और मैं कश्मीर में यहाँ पर आके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। बहुत कूल मौसम और बहुत प्यारा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर।
2: बांदीपुरा का राजदान पास इन दिनों खास आकर्षण बना हुआ है। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस क्षेत्र में मई के महीने में भी बर्फ जमी है। यही वजह है कि दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे मैदानी शहरों से आने वाले पर्यटक यहां पहुंचकर राहत महसूस कर रहे हैं।
5: यहाँ हमें इतना सुकून मिल रहा है, इतना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हूँ। तो बस ठंडा मौसम है, हर व्यक्ति को इस वक्त कश्मीर घूमना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे आना चाहिए।
2: कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फ है तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। तस्वीर चमोली की है जहां इस वक्त चार धाम यात्रा चल रही है और मौसम का मिजाज देखिए, झमाझम बरसात देखिए, जैसे पूरा का पूरा इलाका पानी से सराबोर है। बारिश की बूंदों के साथ ओले भी गिरे और पारा लुढ़क गया। बारिश के इंतजार के बीच तपती मई में आंखों को सुकून देने वाली तस्वीरें हैं ये, लेकिन मुश्किल ये है कि सबको पहाड़ की ये बारिश और बर्फ नसीब कहाँ है। लेकिन चिंता की बात नहीं, जो गर्मी में सर्दी का एहसास करने पहाड़ों पर न जा सके, इंतजाम उनके लिए भी है, जैसे अहमदाबाद वालों ने किया। ये नजारा है अहमदाबाद के एक स्नो पार्क का। मई के महीने में जब गर्मी अपने तेवर दिखा रही है तो इस स्नो पार्क से बेहतर जगह शायद कोई दूसरी नहीं हो सकती। गर्मी के इस मौसम में पूरे उत्तर भारत के साथ गुजरात और राजस्थान में भी हीट वेव का जबरदस्त असर दिख रहा है, लेकिन इस मुश्किल मौसम में अहमदाबाद का ये स्नो पार्क लोगों को ठंडक का तोहफा दे रहा है।
6: बहुत सारी हॉलीडेज है, गर्मी है, इसलिए फ्रंट ब्लास्ट में एंजॉय करने के लिए आए हैं हम। जाते हैं और 3 साल से सलिंग आते हैं यहाँ।
7: अभी गर्मी बहुत सारी है इसीलिए हमने यही प्लेस सिलेक्ट करी।
2: स्नो पार्क के अंदर का तापमान -7 डिग्री रहता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। गर्मी के दिनों में यहाँ आने के लिए खास तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। बड़े हो या छोटे, स्नो पार्क में दाखिल होने से पहले सभी को जैकेट, बूट्स और ग्लव्स पहनना पड़ता है। इस पार्क में सभी के लिए हर साइज के जैकेट्स और ग्लव्स मिल जाते हैं। यहाँ की स्नो स्लाइड बच्चों की फेवरेट है। स्नो कासल और स्नोमैन के साथ बच्चे घंटों मस्ती करते हैं। इस मौसम में जो लोग हिल स्टेशन पर नहीं जा पा रहे, उनके लिए ये स्नो पार्क वाकई एक बेहतरीन सौगात है। वैसे बादल भी जल्द ही राहत की सौगात बरसाने वाले हैं, चिलचिलाती गर्मी से निजात दिलाने वाले हैं। लेकिन जब तक बादल नहीं बरसते, गर्मी से राहत दिलाने के लिए पहाड़, स्नो पार्क और वाटर पार्क से काम चलाना भी एक अच्छा ऑप्शन है। श्रीनगर से अशरफ वानी और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देश के कई इलाके इस वक्त गर्मी की सबसे मुश्किल अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। मौसम विभाग ने स्पष्ट शब्दों में यह बता दिया है कि अगले 2-3 दिनों में मौसम का ये मिजाज यूं ही बना रहेगा। लेकिन गर्मी है तो क्या गम है, क्योंकि गर्मी जितनी जोरदार है, गर्मी के विरुद्ध युद्ध की तैयारी भी उतनी ही दमदार। हॉट वेदर में कूल सॉल्यूशंस निकालने में हम भारतीयों का तो जवाब ही नहीं है। गर्मी से बचाव के कूल कूल उपायों की ये दो तस्वीरें देख लीजिए इस वक्त आपके सामने है। एक तस्वीर है काशी की। काशी के मंदिरों में इस भीषण गर्मी की तपिश से भगवान को बचाने के लिए कूलर और एसी तक लग गए हैं। इतना ही नहीं, मूर्तियों को सूती वस्त्र गर्मी से बचाव के लिए पहनाए गए हैं और तो और भोग प्रसाद और फल में भी ठंडी सामग्री चढ़ाई जा रही है। काशी का राम जानकी मंदिर हो या फिर बड़ा गणेश भगवान के लिए मंदिर के गर्भगृह में एसी की व्यवस्था की गई है। भगवान के लिए गर्मी में खास इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं ख्याल बेजुबानों का भी रखा जा रहा है। दिल्ली के जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के बाड़ों में स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं जो फव्वारों की तरह ठंडी फुहारें छोड़ता है। इसके अलावा जानवरों के लिए ठंडा और साफ पानी का इंतजाम किया गया है। तालाबों की मरम्मत कर रोजाना ताजा पानी भरा जा रहा है ताकि जानवर उसमें नहा सकें और गर्मी से राहत पा सकें। गर्मी को देखते हुए जानवरों के खान पान में बदलाव किया गया है। और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ चैनल।

0: का कमजोर बृहस्पति किस तरह की समस्याएं वैवाहिक जीवन में देता है? कुंडली का खराब बृहस्पति वैवाहिक जीवन पर किस तरह का असर डालता है? और कुंडली का शुभ बृहस्पति वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बृहस्पति की अलग अलग स्थितियों का वैवाहिक जीवन पर कैसे पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: समंदर में कचरा निगलने वाली नाव की जो कि सौर ऊर्जा से चलती है, मुंबई के समंदर से कचरा हटाने के लिए रिमोट कंट्रोल दो नौकाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया और का परेड के भदवार पार्क में तैनात मानव रहित ये बोट पानी की सतह से रोजाना लगभग 80 से 90 किलो तक तैरता हुआ कचरा उठा रही है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बीएमसी ने तकनीक का सहारा लिया है।
4: समंदर किनारे सपनों का शहर मुंबई, अरब सागर के किनारे बसा मुंबई सिर्फ एक महानगर नहीं है बल्कि ख्वाबों का शहर है, जिसके समुद्री तटों को साफ करने के लिए बीएमसी नई रणनीति और मजबूत इरादों के साथ तैयार है। मुंबई अपनी चकाचौंध, खूबसूरत जुहू बीच, गिरगांव चौपाटी और ऊंची लहरों के लिए मशहूर है। हर साल हजारों लाखों लोग माया नगरी का रुख करते हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी तो है ही, बॉलीवुड और दूसरे कई ऐसे काम धंधे भी हैं जिसके लिए लोग यहां खींचे चले आते हैं। इसी वजह से शहर की आबादी तेजी से बढ़ भी रही है। तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण की वजह से मुंबई में कचरा प्रबंधन आज एक गंभीर चुनौती है। जमीन से होता हुआ ये कचरा समंदर तक पहुंच जाता है, फिर भारी बारिश और हाई टाइड के दौरान ये कचरा गेटवे ऑफ इंडिया, कप परेड जैसे समुद्री किनारों पर जमा हो जाता है। समंदर की खूबसूरती पर दाग लगाने वाले कचरे में प्लास्टिक भी शामिल होता है, जिसको रोकने के लिए बीएमसी ने समंदर में बिना चालक वाली नौकाओं को उतार दिया है।
5: इस वक्त हम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया इलाके में हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं टूरिस्ट बोट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीएमसी के सामने एक चैलेंज है कि जो समुद्री तट है मुंबई का, उसके आसपास जो कचरा है उसे कैसे निकाला जाए। इसीलिए आप सामने जो देख रहे हैं एलिसियम, ये अनमैन्ड बोट है, इलेक्ट्रिक उस पर चलने वाली पावर पे, और ये आप कह सकते हैं ऐसी दो बोट, एक गेटवे ऑफ इंडिया पर और एक कफ परेड में भदवार पार्क पर लाई गई है बीएमसी की तरफ से। जो कन्वेयर बेल्ट ब्लू कलर का है, ये जो कचरा है वो पिकअप कर समुद्र से अंदर बोट में डालता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप कह सकते हैं कि बीएमसी ने इसीलिए शुरू किया है क्योंकि जो समुद्र के आसपास कचरा दिखता है उसे साफ किया जा सके।
4: विशेष तरीके से तैयार इस नाव में दो बैटरी लगी है जो सोलर पावर यानी सौर ऊर्जा से चार्ज होती है। 1 किलोमीटर के दायरे में रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होने वाली ये बोट कन्वेयर बेल्ट की मदद से समुद्र में फैले कचरे को इकट्ठा करती है।
6: एकदम इजी सिस्टम है, इसमें दो चीजें है, थ्रस्टर और कन्वेयर। स्टार्ट करने के लिए पहले इसको अपने को बैटरी लगाना पड़ता है, दो बैटरी है उसको। दोनों बैटरी लगाने के बाद, कनेक्ट करने के बाद वहां पे एक स्विच है, उसको ऑन करना है। बेसिकली हमारा एक टेस्टिंग रहता है डेली रूटीन का, उसमें हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद ये सब चीजें अटैच होने के बाद में थ्रस्टर चेक करते हैं, थ्रस्टर लगाने के बाद में हम लोग बोट स्टार्ट कर लेते हैं। फिर इसका राउंड अप कैसे कि आप जहाँ पे आपका गार्बेज है यहाँ पे ये बाय रिमोट ये बोट ऑपरेट किया जाता है।
5: ओके,
6: इसी के लिए उसका पर्टिकुलर रेंज दिया है 1 किलोमीटर का। तो ये रेंज से हम लोग बोट गार्बेज की तरफ ले जाते हैं, और ये जो कन्वेयर है वो कन्वेयर का जो फ्रंट बेस है वहाँ पे एग्जैक्टली कचरा कन्वेयर पे आके वो हॉपर में जमा हो जाता है।
4: बीएमसी की ओर से तैनात ये नावें बिना चालक के पानी की सतह से रोजाना लगभग 80 से 90 किलोग्राम तक तैरता हुआ कचरा निकालती हैं। इस दौरान ये पानी को प्रदूषित भी नहीं करती हैं।
6: बेसिकली अभी ये कैसे ये कॉन्सेप्ट अनमैन बोट का क्यों है कि यहाँ पे तीन चीज़ें प्रायोरिटी पे है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी, सेकंड डिग्निटी है, और दूसरी बात में जीरो इमर्शन। जीरो इमर्शन यानी ये इलेक्ट्रिकल बोट है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको बोट को खाली चार्ज करना है, उसके बाद आप ऑपरेट कर सकते हो। ये जो सेकंड स्टेप है जहाँ पे जो कन्वेयर है, वो कन्वेयर में आपको जो गार्बेज है साइड गार्बेज पूरा कलेक्ट होता है। और सेकंड थिंग क्या होता है कि कोई कॉर्नर पे जो जगह रहेगी वहाँ पे ये इजीली जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस कन्वेयर
7: जी।
6: हाँ, सेकंड थिंग फिर ये सब इसमें जमा हो जाता है, सब गार्बेज पूरा इसमें जमा हो जाता है। और इसका जो रेंज है वो जो रेंज है 1 किलोमीटर का है, और इसका जो हॉपर का कैपेसिटी है 800 से 1000 किलो तक है। और ये मिनिमम आप गेटवे का अगर कचरा देखेंगे, जो गार्बेज देखेंगे, तो उसका 200 से 400 तक उसका लिमिट है। बदवार पक्का है, वो आपका 150 से 250 तक जाता है।
4: समंदर किनारे कचरे में सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है, जिनमें प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बॉटल्स और प्लास्टिक के टूटे सामान शामिल होते हैं। दरअसल लोग प्लास्टिक की बॉटल खरीद कर पानी पीते हैं और उसे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। प्लास्टिक पैक्ड चीजें खरीद कर खाते हैं और फिर खाली प्लास्टिक पैकेट को फेंक देते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, नदियों से लेकर समंदर तक, लोगों का यूज किया गया कचरा प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसको रोकने का काम बीएमसी कर रही है।
5: तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से इनोवेशन किया गया है समुद्र में साफ सफाई हो सके, उसमें किसी तरह का ह्यूमन आप कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसीलिए ये अनमैन्ड बोट्स बैटरी ऑपरेटेड जो है वो चलाई जा रही है। जो भी वेस्ट जनरेट होता है, काफ़ी वेस्ट जनरेट होता है क्योंकि टूरिस्ट एरिया, टूरिस्ट मूवमेंट जो है वो हज़ारों की तादाद में रहती है गेटवे ऑफ इंडिया पर, और उसलिए ये पूरा सिस्टम जो है वो बीएमसी की तरफ से डिप्लॉय किया है। कैमरा पर्सन साहिब सर पाटिल के साथ मुस्तफा शेख।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
0: कुंडली का कमजोर बृहस्पति किस तरह की समस्याएं वैवाहिक जीवन में देता है? कुंडली का खराब बृहस्पति वैवाहिक जीवन पर किस तरह का असर डालता है? और कुंडली का शुभ बृहस्पति वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बृहस्पति की अलग अलग स्थितियों का वैवाहिक जीवन पर कैसे पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायुअस्त्र 1 का सफल परीक्षण, 10 किलो वॉरहेड के साथ 100 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना, सेना की स्ट्राइक और निगरानी क्षमता में होगा इजाफा। डिफेंस और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की लंबी छलांग, प्रोजेक्ट सबल के तहत नोएडा की हैवी लिफ्ट ड्रोन कंपनी को मिला 30 करोड़ का फंड, सैन्य ऑपरेशन के साथ आपदा राहत में मिलेगी मदद। अमेरिका में हो रहे बैटल इन द बे एक्सरसाइज में पहली बार भारतीय सेना ने की शिरकत, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और ऊंचे दुर्गम इलाकों में युद्धाभ्यास, मजबूत सुरक्षा सहयोग के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन, पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज लकी ड्रॉ से हुआ चुनाव। पवित्र यात्रा के लिए जून से अगस्त के बीच 20 जत्थों में रवाना होंगे यात्री। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी दिख रहा है भीषण गर्मी का असर। हिमाचल के ऊना में 44 तो शिमला में 30 डिग्री के ऊपर पारा, अगले दो दिन में बारिश के आसार। एआई तकनीक से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रेल मंत्री की अपील। यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहे मुसाफिर, हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें संदिग्ध की जानकारी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: अक्सर शेयर कर देते हैं, क्योंकि आजकल खबरें केवल अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल सच लगे। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे इन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं, उसमें फैक्ट चेक में सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगने को लेकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि मामूली सी कहा सुनी के बाद एक लड़के ने लड़की को बेरहमी से पीट दिया। इसकी सच्चाई क्या है, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ये कह रहे हैं कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगने को लेकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। इस घोषणा के बाद कोलकाता में 15 मई यानी शुक्रवार को नमाज के बाद हंगामा मच गया। एक धर्म विशेष समुदाय के लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इसी संदर्भ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ में मौजूद लोग नारे लगाते दिख रहे हैं। वीडियो में लिखा है, कोलकाता में सड़क पर नमाज को लेकर बवाल, नई सरकार के आदेश के खिलाफ एक धर्म विशेष के लोगों का धमकी भरा प्रदर्शन। एक व्यक्ति ने वीडियो को एक्स पर शेयर किया और तंज कसते हुए लिखा कि सड़क किसी की थोड़ी है, जो जब चाहे जहाँ चाहे वही मुर्गा बन जाए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो में किसी सड़क पर लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। ये लोग कुछ नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां पर सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगने को लेकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने गौर से सुना तो ये बांग्ला लगा। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने फिर से वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, और अगर ये वीडियो सड़क पर नमाज रोकने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का था तो इस दौरान हमें यहां पर बंगाल पुलिस के जवान क्यों नजर नहीं आए? इतने बड़े विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस के जवानों को तैनात क्यों नहीं किया गया, ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। साथ ही वीडियो में द लाइट पार्क नाम के एक होटल का बोर्ड भी नजर आ रहा है, लेकिन सर्च के दौरान पूरे पश्चिम बंगाल में इस नाम का कोई भी होटल हमें नजर नहीं आया। मतलब ये कि वायरल वीडियो कहीं और का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में वायरल दावे की पुष्टि करती कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
2: फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें फेसबुक पर उसी लोकेशन का दूसरा वीडियो मिला। कई बांग्लादेशी यूजर्स ने इस

0: वीडियो को 14 मई को शेयर किया था। इन पोस्ट के मुताबिक वीडियो आवामी लीग के नेता इंजीनियर मुशर्रफ हुसैन के जनाजे में बांग्लादेश के चिट्टागोंग में उमड़ी भीड़ का है। एक बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट में 14 मई को छपी रिपोर्ट के मुताबिक चिट्टागोंग में इंजीनियर मुशर्रफ हुसैन की अंतिम विदाई में हजारों समर्थक शामिल हुए थे। फेसबुक पर मिले वीडियो में द लाइट पार्क नाम का होटल साफ दिख रहा है। इस क्रू की मदद से हमने वायरल वीडियो में दिख रही जगह को गूगल मैप्स पर सर्च किया तो ये हमें बांग्लादेश के चिट्टागोंग में मिल गई। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि बांग्लादेश के चिट्टागोंग का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ रितेश दत्ता, टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि मामूली सी कहासुनी के बाद एक लड़के ने एक लड़की को बेरहमी से पीट दिया जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि लिफ्ट में लड़का मैडम से गलती से टकरा गया था, फिर लगातार बेइज्जती करके थप्पड़ मार दिया लड़के ने, फिर उसके बाद लड़की पर हमला कर दिया। लेकिन जब हमने इस वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए हमारी रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पर ये हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वायरल हो रहा वीडियो किसी सीसीटीवी फुटेज का है। वीडियो में नजर आता है कि लिफ्ट से बाहर निकलते समय एक लड़का एक लड़की से टकरा जाता है। लड़का टकराने की वजह बताता है। इस पर लड़की कहती है कि देख कर आना चाहिए था। लड़का सॉरी भी बोलता है और इतने में लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट के बंद होते ही लड़की उस लड़के को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद लड़के का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो लड़की पर गुस्सा करता है, थप्पड़ क्यों मारा इसकी वजह पूछता है, लेकिन लड़की लड़के से लगातार बहस करती रहती है। इसके बाद लड़का अपना आपा खो देता है और वो लड़की को बुरी तरह से पीटता है। कई न्यूज आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को लेकर कई खबरें चलाई। एक्सपर्ट वीडियो को शेयर करते हुए एक शख्स ने लिखा कि लिफ्ट में लड़का मैडम से गलती से टच हो गया, फिर लगातार बेइज्जती करके थप्पड़ मार दिया। लड़का फिर ज्यादा पिटाई किया, लेकिन सीसीटीवी नहीं होता तो मैडम विक्टिम कार्ड खेलती। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर यूजर इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में नजर आ रहा है कि लिफ्ट से बाहर निकलते समय एक लड़की और एक लड़का आपस में टकरा जाते हैं और इसके बाद लड़की बहस करते हुए युवक को थप्पड़ मार देती है। युवती से पीटने के बाद युवक उसे पहले तो थप्पड़ मारता है और इसके बाद जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीटता है। इतना ही नहीं, वो लड़की के सर पर एक भारी चीज भी मारता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हमने इसकी पड़ताल शुरू की तो दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। मसलन इन दोनों के बीच बहस होती है तो फिर शोर सुनकर आसपास से कोई वहां पर क्यों नहीं पहुंचता। इतना नहीं, लड़का जब लड़की के थप्पड़ मारने के बाद पलटवार करता है तो लड़की को जमकर पीटता है, तो इस दौरान लड़की चीखी होगी, शोर मचाया होगा, लेकिन इसके बावजूद वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा। ऐसा भला कैसे हो सकता है? लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर मिला। वीडियो के कैप्शन में एक्टिंग और रेसलिंग जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है। इस अकाउंट पर यह वीडियो दो बार शेयर किया गया था। वीडियो में नजर आ रहे लड़के का नाम विपिन चौहान है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो के मुताबिक वो एक रेसलर है। उनके अकाउंट पर मौजूद कई दूसरी वीडियोस में CWE एकेडमी का बैनर नजर आता है। CWE मशहूर रेसलर खली की कुश्ती एकेडमी है जो कि पंजाब में स्थित है। उनके अकाउंट पर इस तरह की मारपीट और भी वीडियो मौजूद है जिनमें वही लड़की है जो वायरल वीडियो में भी नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए फैक्ट चेक टीम ने विपिन चौहान से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रही लड़की उनकी पत्नी रुचिका शाह है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने इस तरह के स्क्रिप्टेड वीडियो बनाने शुरू किए हैं। इन वीडियोस पर उन्हें काफी व्यूज और लाइक्स मिले और जिसके बाद उन्होंने इस तरह के और भी वीडियो बनाने का फैसला किया। वो और उनकी पत्नी प्रोफेशनल कुश्ती खिलाड़ी हैं और किसी को बिना चोट पहुंचाए वो ऐसे वीडियोस बना सकते हैं। इस वीडियो को शूट करने के दौरान भी किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। उन्होंने कहा कि कभी कभी शूटिंग के दौरान हल्की फुल्की चोट लग जाती है लेकिन वो ज्यादा गंभीर नहीं होती। विपिन ने यह भी बताया कि उन्होंने अब CWE एकेडमी छोड़ दी है। साफ है कि लड़की के साथ मारपीट करता शख्स उसी का पति है। ये वीडियो भी असल घटना का नहीं है। वीडियो में नजर आ रहे दोनों लोग कुश्ती खिलाड़ी हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम पेश करने वाले कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।

0: जो पार्टी दे रहा है हम सबको।
1: इन दिनों सोशल मीडिया पर चकाचौंध और शोबाजी वाली रील्स की बाढ़ आई हुई है, लेकिन इसी बीच झारखंड से सामने आए एक वीडियो ने इंटरनेट की लाखों जनता का दिल जीत लिया है। ये कहानी सूरज नाम के एक बच्चे की है, जिसने साबित कर दिया कि खुश रहने के लिए किसी महंगे कैफे या आलिशान पार्टी की जरूरत नहीं होती, बस कुछ सच्चे दोस्त और 100 रुपए का बजट ही काफी है। वीडियो में सूरज अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से चूल्हे के पास बैठकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता दिख रहा है।
0: हेलो गाइस, आज सूरज का बर्थडे है, तो सूरज 100 रुपया का मैगी लाया है और उसका साथ सेंटा फेंटा भी और बहुत बच्चा भी है, आज वो पार्टी दे रहा है हम सबको।
1: वीडियो की शुरुआत सूरज के दोस्त के एक डायलॉग से होती है, जो कैमरे के सामने आकर बड़े गर्व से कहता है, आज सूरज की तरफ से बर्थडे पार्टी है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस छोटी सी पार्टी के लिए सूरज ने अपनी गुल्लक से पाई पाई जोड़कर पैसे बचाए थे। वीडियो में दिख रहा है कि सूरज खुद चूल्हे पर मैगी बना रहा है और उसके दोस्त आसपास बैठकर अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बच्चों के चेहरों पर बिखरी मुस्कान और खुशी किसी भी महंगे रेस्टोरेंट के जश्न से कहीं ज्यादा बड़ी और खूबसूरत लग रही है।
0: हेलो गाइस, आज सूरज का बर्थडे है, तो सूरज 100 रुपया का मैगी लाया है और उसका साथ सेंटा फेंटा भी और बहुत बच्चा भी है, आज वो पार्टी दे रहा है हम सबको, आज उसका बर्थडे है।
1: आप भी बचपन में कई बार डॉक्टर के पास गए होंगे, अगर तबीयत ज्यादा खराब रही होगी तो डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाया होगा। अब इंजेक्शन देखकर आपको डर भी लगा होगा। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो बड़े हो चुके हैं मगर आज भी इंजेक्शन से डरते हैं। वही वीडियो में दिख रही ये बच्ची इंजेक्शन से बिल्कुल भी नहीं डर रही। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बच्ची को दर्द होता ही नहीं, उसे इंजेक्शन से डर भी नहीं लगता। और बच्ची के इसी एक्सप्रेशन के कारण वीडियो वायरल हो रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर क्रिकेट से जुड़ा ये बेहद दिलचस्प वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने लोगों को हैरान भी किया और प्रभावित भी। आमतौर पर क्रिकेट खेलने के लिए बड़े मैदान की जरूरत होती है, जहां बल्लेबाज शॉट लगा सकें और फील्डर आसानी से गेंद पकड़ सकें। लेकिन वायरल वीडियो में जो नजारा देखने को मिला वो पूरी तरह अलग है। यहां लोगों ने पहाड़ों के बीच ऐसी जगह पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, जहां मुश्किल से एक पिच के बराबर जगह मौजूद है। वीडियो में साफ नजर आता है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच पतली सी जगह पर क्रिकेट की पिच बनाई गई है। आसपास इतना कम स्थान है कि सामान्य तरीके से फील्डिंग करना लगभग नामुमकिन लगता है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों ने इस चुनौती का भी शानदार हल निकाल दिया। जहां जहां पहाड़ों के नीचे थोड़ी सी भी जगह मिली, वहां खिलाड़ी फील्डिंग करने के लिए खड़े हो गए। किसी ने पत्थरों के बीच अपनी जगह बनाई तो कोई ढलान पर खड़ा दिखाई दिया। वीडियो में बल्लेबाज आराम से शॉट खेलते दिखाई देते हैं, जबकि गेंदबाज भी पूरे जोश के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। वही फील्डर पहाड़ी रास्तों और चट्टानों के बीच भी तेजी से दौड़ते नजर आते हैं। ये दृश्य बताता है कि खेल के प्रति लोगों का प्यार किसी भी परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। अगर मन में जुनून हो तो इंसान कहीं भी अपने पसंदीदा खेल का आनंद ले सकता है।
2: कैसा होता अगर धुरंधर फिल्म का ये गाना भोजपुरी में होता?
1: इंटरनेट पर इन दिनों ये वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी सिंगर के फैन हो जाएंगे। फिल्म धुरंधर का सुपरहिट रोमांटिक सॉन्ग गहरा हुआ का भोजपुरी वर्जन ऐसा तहलका मचा रहा है कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए हैं।

0: come to our house and see us.
1: सोशल मीडिया पर दो बहनों ने इजिप्ट लीबिया के बॉर्डर पर बने अपने छोटे से घर की झलक लोगों को दिखाई। झोपड़ी नुमा ये घर बाहर से नमक और मिट्टी से बनी थी। इसे देख लोगों ने उम्मीद की थी कि बहनें गरीब हैं और मुश्किलों में अपना गुजारा कर रही हैं। लेकिन जब घर को अंदर से दिखाया गया तो सब दंग रह गए। घर के अंदर आधुनिक और लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक मिली। कमरे में सॉफ्ट लाइटिंग, कंफर्टेबल सोफा, बड़े बड़े बेड, फुली इक्विप्ड किचन, वाईफाई, एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं और खूबसूरत डेकोरेशन सब कुछ मौजूद था। बहनों ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल से घर बनाया है जिसमें मिट्टी और नमक का इस्तेमाल किया गया है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। यूं तो अब तक आपको पुल पार करने का एक ही तरीका पता होगा और वो ये है कि पुल के ऊपर से गुजरना। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद इस पर आपका विचार बदल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मानना पड़ेगा कि किसी भी पुल को पार करने के लिए कई और तरीके भी हो सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पुल को पार करने के लिए ब्रिज के ऊपर से जाने की जगह उसके नीचे से उछल कूद करते हुए गुजर रहा है। शख्स पुल के नीचे लगे खम्भों और पोल को पकड़कर झूलते हुए ब्रिज को पार कर रहा है। वीडियो में शख्स जितनी आसानी से पुल को पार करता दिख रहा है उतना आसान ये काम बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस शख्स की फिटनेस वाकई कमाल की है। आप देख सकते हैं कि शख्स उस पुल को न सिर्फ पार करते हुए जाता है बल्कि वो उसी पुल पर ठीक वैसे ही लटकते हुए वापस आता है। पुल के नीचे मौजूद लोग उस शख्स का हौसला बढ़ाते और
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: और जैसा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से विदेश यात्रा के बजाय अपने देश को एक्सप्लोर करने की अपील की थी, तो जीएनटी भी आप सभी से अपील कर रहा है कि आप भी अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें या वीडियोस हमें भेजो ताकि हम आपके उन वीडियोस को दिखाएं। हमारे दर्शक भी बड़े ही उत्साह के साथ अपनी जगहों के खूबसूरत वीडियोस भेज रहे हैं। तो चलिए आज आपको उत्तरकाशी के उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में व्लॉगर बनी एक दर्शक की जबानी सुनाते हैं कि क्यों आपको उत्तराखंड के इस बेहद खूबसूरत और धार्मिक शहर को एक्सप्लोर करना चाहिए।

0: स्वागत है आपका गुड न्यूज चैनल में। मैं गीता सेमवाल, मैं बुलाना चाहती हूँ आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। हल्की हल्की आजकल ना शाम के टाइम पे ठंड महसूस हो रही है। वाह, कितने सुंदर नजारे हैं, कितनी सुंदर प्रकृति की यहाँ पे खूबसूरती है। आपको ना बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़, चीड़ का घना जंगल, ये सब चीज देखने को मिलता है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में दो धाम है, श्री यमुनोत्री धाम और श्री गंगोत्री धाम। तो आजकल ना काफी अच्छी यात्रा चल रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी यही कहा है कि आप विदेशों में घूमने न जाके भारत की जो जगह है, पर्यटक स्थल है, जैसे उत्तराखंड में चार धाम है, श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, आप इन जगहों पे आए। इसके अलावा भी उत्तराखंड में न कहीं आपको पर्यटक स्थल देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आजकल यमुनोत्री धाम में और श्री गंगोत्री धाम में, यानी चारों धाम में काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। जब हमारे गांव मुखवर में मोदी जी आए थे तो उस टाइम जो ये यात्रा चल रही है, अब ये ग्रीष्म काल में न होते हुए अब ये यात्रा शीत काल में भी चलती है, यानी 12 महीना यात्रा चलती है। तो माननीय मोदी जी ने घाम तापो पर्यटक इसका नाम दिया है। मुखवा के सामने धराली है, हरसिल है, बगोरी है। और अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं तो यहाँ पे ना ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए कई जगह है, जैसे दयारा बुग्याल है, गौमुख ट्रैक है, सातआठ ट्रैक है, ऐसे कई अन्य ट्रैक है। अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप शीतकाल में यात्रा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उस टाइम तो और ज़्यादा खूबसूरती आपको देखने को मिलती है, क्योंकि हरसिल में जो है धराली मुखवा में सेब, राजमा और उसके साथ साथ खुमानी हो गया, नाशपाती हो गया, ये भरपूर मात्रा में आपको देखने को भी और खाने को भी मिलती है। और इसी के साथ साथ एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि वेडिंग डेस्टिनेशन है, जैसे कि त्रिजोगी नारायण है और उत्तरकाशी में बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में है, श्री गंगोत्री धाम में गंगा मैया जी के मंदिर में है, और गंगा मैया जी का जो शीतकालीन प्रवास है मुखवा, वहाँ पे आप ना शादी करवा सकते हैं और इन जगहों पे ना शादी होती है। तो आइए ना श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम और गंगा मैया जी के शीतकालीन प्रवास मुखवा उत्तरकाशी में आपका स्वागत है।
1: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें, अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई भी खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा, बनाइए ब्लॉग और हमें इस नंबर पर भेज दीजिए। नंबर है 7303409922। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस वीडियो को जीएनटी दिखाएगा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायुअस्त्र 1 का सफल परीक्षण, 10 किलो वॉरहेड के साथ 100 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना, सेना की स्ट्राइक और निगरानी क्षमता में होगा इजाफा। डिफेंस और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की लंबी छलांग, प्रोजेक्ट सबल के तहत नोएडा की हैवी लिफ्ट ड्रोन कंपनी को मिला 30 करोड़ का फंड, सैन्य ऑपरेशन के साथ आपदा राहत में मिलेगी मदद। अमेरिका में हो रहे बैटल इन द बे एक्सरसाइज में पहली बार भारतीय सेना ने की शिरकत, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और ऊंचे दुर्गम इलाकों में युद्धाभ्यास, मजबूत सुरक्षा सहयोग के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन, पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज लकी ड्रॉ से हुआ चुनाव, पवित्र यात्रा के लिए जून से अगस्त के बीच 20 जत्थों में रवाना होंगे यात्री। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी दिख रहा है भीषण गर्मी का असर। हिमाचल के ऊना में 44 तो शिमला में 30 डिग्री के ऊपर पारा। अगले दो दिन में बारिश के आसार। AI तकनीक से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रेल मंत्री की अपील। यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहे मुसाफिर। हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें संदिग्ध की जानकारी।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। यूं तो जीएनटी स्पेशल में हम हर रोज ही आपको गुड न्यूज की बारिश करते हैं, लेकिन आज बात बारिश की गुड न्यूज की करेंगे। वो गुड न्यूज जो मौसम विभाग ने देश को सुना दी है। देश के लिए मानसून की चिट्ठी आई है। जी हाँ, इस बार मानसून तय वक्त से पहले आ रहा है। हमारे देश में मानसून केरल के रास्ते दाखिल होता है। आमतौर पर मानसून कि केरल में एंट्री 1 जून के आसपास मानी जाती है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस बार मॉनसून 26 मई को केरल पहुंच सकता है। यानी तपती गर्मी से परेशान देश के मौसम को कूल डाउन करने के लिए मॉनसून तेजी के साथ लोड हो रहा है। मॉनसून से पहले प्री मॉनसून बारिश ने देश के दक्षिणी राज्यों में दस्तक दे दी है। साउथ के कई इलाकों में बरस रहे प्री मॉनसून के बादलों ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। यानी मॉनसून से पहले उसका जोरदार ट्रेलर शुरू हो चुका है। आज 21 मई है, यानी मॉनसून बस अब देश की दहलीज तक पहुंच चुका है। इंतजार है तो उसके उत्तर भारत की मेन लैंड में दाखिल होने का।

0: मई की तपिश में राहत की बौछार होने वाली है। मॉनसून की बारिश से देश की धरती गुलजार होने वाली है। यानी आज जहां सूरज आग उगल रहा है, वहां जल्द झमाझम बादल बरसने वाले हैं। और आज जहां हीट वेव ने बेचैन कर रखा है, कल वहां आसमान से सुकून बरसने वाला है। ये राहत भरी खबर आई है मौसम विभाग की ओर से। मौसम विभाग ने अब की बार देश में मॉनसून के समय से पहले दस्तक देने की गुड न्यूज सुनाई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून 26 मई तक केरल पहुंच सकता है।
1: हमारा 26 का हमने प्रेस रिलीज इशू किया था 26 में, और विथ मॉडल एरर जैसे प्लस माइनस 4 डेज होता है। बाकी जो अगर आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, तो जो वो लाइन्स है जो यहाँ पे अभी मानसून एडवांस हो चुका है।
0: आमतौर पर 1 जून को मॉनसून के ऑनसेट की स्टैंडर्ड तारीख माना जाता है, और हाल के सालों में मॉनसून जून के पहले हफ्ते या फिर मई के अंत में दस्तक देता रहा है। पिछले 2 दशक में सबसे पहले साल 2009 में ऐसा हुआ था, जब तय तारीख से 8 दिन पहले यानी 23 मई को ही केरल में मॉनसून पहुंच गया था। इसके बाद पिछले साल यानी 2025 में भी मॉनसून तय समय से कुछ पहले आ गया था। पिछले साल यानी 2025 में मॉनसून 24 मई को केरल पहुंच गया था। साल 2024 में 30 मई, साल 2023 में 8 जून को, 2022 में 29 मई, 2021 में 3 जून, साल 2020 में 1 जून, साल 2019 में 8 जून और 2018 में 29 मई को मॉनसून केरल पहुंचा था। अब 2026 में भी मॉनसून देश की धरती पर जल्द मेहरबान हो रहा है। वास्तव में भारत की सीमा में मॉनसून की दस्तक यूं तो 16 मई को ही हो चुकी है, लेकिन ये एंट्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई है, जो कि बंगाल की खाड़ी का एक हिस्सा है। 16 मई को दक्षिण पश्चिम मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर के कई हिस्सों, संपूर्ण निकोबार द्वीप समूह, श्री विजयपुरम सहित अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। अब मॉनसून की एंट्री का इंतजार भारत के मेनलैंड पर है।
1: 16 मई को हमारा फर्स्ट एडवांस हुआ था, जिसमें हमने कुछ हिस्से अरबियन सी के बियो बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड के कुछ हिस्से जहां तक हमने कवर किए थे। उसके बाद सेकंड हमारा था वो 18 मई को था। 18 मई को हमने इंटायर अंडमान निकोबार कवर किया, बियो बंगाल के कुछ हिस्से कवर हुए, साउथ अरबियन सी के कवर हुए। और उसके बाद हमारा यही अनुमान है आने वाले कुछ दिनों में ये बे ऑफ बंगाल के कुछ और हिस्से कवर कर सकता है।
0: बात अगर देश में मॉनसून की साइकिल की करें, तो आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून 1 जून तक दक्षिण की ओर से केरल में दस्तक देता है। 8 जुलाई तक मॉनसून पूरे देश को कवर कर लेता है। ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू करता है और आधा अक्टूबर बीतते बीतते पूरी तरह से विदा हो जाता है। मौसम के जानकार इस बार मॉनसून के जल्दी आने की कई बड़ी वजह बता रहे हैं। इसके पीछे मौसम की लोकल सिस्टम के साथ साथ ग्लोबल सिस्टम भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार नमी बने रहना, समुद्र से उठ रही तेज नमी वाली हवाएं मॉनसून को तेजी से उत्तर की ओर आगे बढ़ा रही हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश मॉनसून की बढ़ती सक्रियता का स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा अरब सागर और हिंद महासागर का तापमान सामान्य से अधिक रहने से मॉनसूनी सिस्टम को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। मॉनसून का सामान्य समय से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंचना भी इसका एक बड़ा संकेत है। मॉनसून भले ही जल्दी आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने इस बार मॉनसून सीजन के दौरान 92 से 95% यानी सामान्य से कुछ कम बारिश होने का अनुमान जताया है। वैसे मॉनसून सीजन में बारिश को लेकर आईएमडी के पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें, तो पता चलता है कि अनुमान के आंकड़े से कुछ फीसदी कम या ज्यादा बारिश होना भी आम रहा है। 2025 में मॉनसून सीजन में 108% यानी सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई थी, जबकि IMD ने 106% बारिश का अनुमान जताया था। 2024 के मॉनसून सीजन में भी 108% बारिश हुई थी, जबकि IMD ने तब भी 106% बारिश का ही अनुमान जताया था। इसी तरह 2023 में 94% बारिश हुई थी, तब IMD ने 96% बारिश का अनुमान जताया था। इससे पहले साल 2022 में 106% बारिश हुई, जो IMD के अनुमान से कुछ ज्यादा थी। अब इस साल मॉनसून का रिपोर्ट कार्ड क्या रहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मॉनसून के जल्द आने की गुड न्यूज ने गर्मी से तपते देश को खुश होने का मौका जरूर दे दिया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: वैसे तो मॉनसून 16 मई को ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे चुका है। ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के दक्षिणी हिस्सों में सक्रिय हो चुका है। निकोबार द्वीप समूह में पिछले कुछ दिनों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, लेकिन अब बारी देश के मेनलैंड में दस्तक देने की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मॉनसून कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून 26 मई के आसपास केरल तट पर पहुंचेगा, जो सामान्य तारीख 1 जून से लगभग एक हफ्ता पहले है। केरल के बाद मॉनसून जून के पहले सप्ताह में तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में पहुंचेगा। 5 से 7 जून तक दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो जाएगा। 10 जून तक मॉनसून के बादल तेलंगाना और महाराष्ट्र तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में 10 से 12 जून तक मॉनसून की बारिश शुरू होगी। इसके बाद बारी आएगी बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, जहां मॉनसून 15 से 20 जून के बीच सक्रिय हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून के 15 से 22 जून के बीच पहुंचने की संभावना है, जबकि गुजरात में मॉनसून 20 से 25 जून के बीच दस्तक दे सकता है। बात अगर दिल्ली NCR की जाए तो राजधानी क्षेत्र तक आते आते मॉनसून को लगभग एक महीना लग जाएगा। दिल्ली NCR में 25 जून के आसपास मॉनसून की एंट्री हो सकती है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी 25 जून तक मॉनसून की बारिश शुरू होने की संभावना है, जबकि राजस्थान में मॉनसून के सबसे आखिर में यानी 30 जून से 5 जुलाई तक पहुंचने की संभावना है। IMD के अनुमानों के अनुसार मॉनसून जुलाई के दूसरे हफ्ते तक पूरे भारत को कवर कर लेगा। तो मानसून के तय वक्त से पहले आने की खबर सुनते ही एक ठंडक सी महसूस होने लगती है। अमूमन मानसून जून की शुरुआत या मई के आखिर में 2 से 3 दिनों में केरल में दाखिल होता है, मगर इस बार ये 26 मई या उससे भी 1-2 दिन पहले आ सकता है। दक्षिण भारत में प्री मानसून की बारिश हो रही है, जो बता रहा है कि मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे कई और कारण हैं जो ये संकेत दे रहे हैं कि मानसून की गति और दिशा बिल्कुल सही है। इसी को देखते हुए कई राज्यों ने मानसून के लिए जरूरी तैयारी शुरू कर दी है। मानसून की आहट मिलते ही तमिलनाडु के कई इलाकों में NDRF ने मोर्चा संभाल लिया है।

0: हीट वेव और लू के थपेड़ों के बीच उत्तर भारत की अग्नि परीक्षा जारी है। कई शहरों का पारा 47 डिग्री को पार कर चुका है। जब पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में तप रहा है, ठीक उसी वक्त दक्षिण भारत के आकाश में एक अलग ही हलचल शुरू हो चुकी है। समुद्र से उठती नम हवाएं, गरजते बादल बता रहे हैं कि मॉनसून दस्तक देने वाला है। रविवार तक मॉनसून के केरल में एंट्री होने की उम्मीद है, वो भी तय वक्त से 5 दिन पहले। इससे पहले ही दक्षिण भारत में प्री मॉनसून की बारिश हो रही है। मॉनसून की आहट मिलते ही एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। तमिलनाडु में रानीपेट में एनडीआरएफ की टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। एनडीआरएफ के जवानों को मुश्किल हालात से निपटना और लोगों की जान बचाने का हुनर पता है। इस काम में इनकी मदद खोजी कुत्ते करते हैं जो कि पूरी तरह से ट्रेंड है। मॉनसून के बादल जब बरसते हैं तो कई कई दिनों तक थमते नहीं, ऐसे में कई बार हालात चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं। तब काम आती है इन जवानों की तैयारी। ये जवान अपने साथ कटर, लाइफ सेविंग जैकेट और बोट समेत हर वो जरूरी चीज लेकर गए हैं जिनकी इन्हें जरूरत पड़ सकती है। समय से पहले आ रहा मॉनसून उम्मीद की नई किरण भी लेके आ रहा है। सही तैयारी के साथ ये बारिश वरदान बनेगी, जल संकट कम होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बादल भी आएंगे और बारिश भी लाएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। खुशबू बता रही है ये सूखी जमीन की, इस दश्त में ही सब्ज इलाके भी आएंगे। मंजूर हाशमी की लिखी ये बात सच होती दिखेगी, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है। लेकिन बारिश की मेहरबानी जब तक नहीं हो रही, गर्मी के सितम से बचने का रास्ता निकाल डालना भी जरूरी है। मई की विदाई और मानसून की दस्तक के बीच में मैदानी इलाकों में जहां गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो वहीं पहाड़ों पर मौसम ने करवट लेकर नजारों को और भी खूबसूरत बना दिया है। कश्मीर और लेह समेत कई पहाड़ी इलाकों में हाल ही में हुई बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार बना दिया। मॉनसून के इंतजार के बीच गर्मी में सर्दी का एहसास करने के लिए मैदानों के मुसाफिर इन बर्फीले पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
2: आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। मॉनसून के लिए फिलहाल यही कहा जा सकता है। बहरहाल गर्मी का हाहाकार है और बारिश का इंतजार है। लेकिन बारिश जब तक नहीं आ रही, इस कमबख्त गर्मी से राहत का उपाय ढूंढना भी जरूरी है। और मॉनसून का इंतजार करते लोगों के लिए इन दिनों उसी राहत और सुकून का जरिया बन रहे हैं पहाड़ और उन पर बरसती बर्फ। मैदान में तो मई आग बरसा रही है, पर वादियों में बर्फ बिछी है। 40 डिग्री वाले टॉर्चर से जो निकल कर आए हैं, उनके लिए ये नज़ारा वाकई जन्नत से कम नहीं। हर बार की तरह उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर लोगों की पहली पसंद है। मैदानों में पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी से इन राज्यों के पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान, दिल्ली, यूपी और दूसरे इलाकों से लोग कश्मीर के बांदीपुरा चले आए हैं, जहां बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और नज़ारे लोगों को राहत का एहसास करवा रहे हैं।
3: हम लोग जयपुर राजस्थान से आए हैं और वहां पे बहुत गर्मी है। अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है। आने वाले टाइम पे वार्निंग भी दी गई है कि 25 मई से 2 जून तक बहुत ज्यादा हीट वेव्स आने वाली है। घर में रहें सब लोगों को बोला गया है। पर मैं बोलना चाहूंगी, क्यों आपने घर में रहना है? आप कश्मीर आए, आप अपना ट्रिप प्लान करें, फैमिली को लेकर आए, दोस्तों को लेकर आए, यहाँ की ब्यूटी को देखें, स्नो में खेलें, कितना मजा आएगा आपको भी।
2: यूं तो जम्मू कश्मीर 12 महीने पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार रहता है, मगर इस बार कश्मीर के बांदीपोरा की ठंडी और सुकून देने वाली घाटियाँ सैलानियों को इस तपती गर्मी में खूब लुभा रही हैं।
4: सूरज सर पे हो और बहुत आग बरस रही हो, ऐसा माहौल है वहाँ का। और मैं कश्मीर में यहाँ पर आके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। बहुत कूल मौसम और बहुत प्यारा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर।
2: बांदीपुरा का राजदान पास इन दिनों खास आकर्षण बना हुआ है। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस क्षेत्र में मई के महीने में भी बर्फ जमी है। यही वजह है कि दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे मैदानी शहरों से आने वाले पर्यटक यहां पहुंचकर राहत महसूस कर रहे हैं।
5: कि हाँ हमें इतना सुकून मिल रहा है, इतना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हूँ। तो बस ठंडा मौसम है, हर व्यक्ति को इस वक्त कश्मीर घूमना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे आना चाहिए।
2: कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फ है तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। ये तस्वीर चमोली की है जहाँ इस वक्त चार धाम यात्रा चल रही है और मौसम का मिजाज देखिए, झमाझम बरसात देखिए, जैसे पूरा का पूरा इलाका पानी से सराबोर है। बारिश की बूंदों के साथ ओले भी गिरे और पारा लुढ़क गया। बारिश के इंतजार के बीच तपती मई में आंखों को सुकून देने वाली तस्वीरें हैं ये, लेकिन मुश्किल ये है कि सबको पहाड़ की ये बारिश और बर्फ नसीब कहाँ है। लेकिन चिंता की बात नहीं, जो गर्मी में सर्दी का एहसास करने पहाड़ों पर न जा सके, इंतजाम उनके लिए भी है, जैसे अहमदाबाद वालों ने किया। ये नजारा है अहमदाबाद के एक स्नो पार्क का। मई के महीने में जब गर्मी अपने तेवर दिखा रही है तो इस स्नो पार्क से बेहतर जगह शायद कोई दूसरी नहीं हो सकती। गर्मी के इस मौसम में पूरे उत्तर भारत के साथ गुजरात और राजस्थान में भी हीट वेव का जबरदस्त असर दिख रहा है, लेकिन इस मुश्किल मौसम में अहमदाबाद का ये स्नो पार्क लोगों को ठंडक का तोहफा दे रहा है।
6: बहुत सारी हॉलीडेज है, गर्मी है, इसलिए फ्रंट ब्लास्ट में एंजॉय करने के लिए आए हैं हम, जाते हैं और 3 साल से सलिंग आते हैं यहाँ।
7: अभी गर्मी बहुत सारी है इसीलिए हमने यही प्लेस सिलेक्ट करी।
2: स्नो पार्क के अंदर का तापमान -7 डिग्री रहता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। गर्मी के दिनों में यहाँ आने के लिए खास तैयारियाँ करनी पड़ती है। बड़े हो या छोटे, स्नो पार्क में दाखिल होने से पहले सभी को जैकेट, बूट्स और ग्लव्स पहनना पड़ता है। इस पार्क में सभी के लिए हर साइज के जैकेट्स और ग्लव्स मिल जाते हैं। यहाँ की स्नो स्लाइड्स बच्चों की फेवरेट है। स्नो कासल और स्नोमैन के साथ बच्चे घंटों मस्ती करते हैं। इस मौसम में जो लोग हिल स्टेशंस पर नहीं जा पा रहे, उनके लिए ये स्नो पार्क वाकई एक बेहतरीन सौगात है। वैसे बादल भी जल्द ही राहत की सौगात बरसाने वाले हैं, चिलचिलाती गर्मी से निजात दिलाने वाले हैं। लेकिन जब तक बादल नहीं बरसते, गर्मी से राहत दिलाने के लिए पहाड़, स्नो पार्क और वाटर पार्क से काम चलाना भी एक अच्छा ऑप्शन है। श्रीनगर से अशरफ वानी और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देश के कई इलाके इस वक्त गर्मी की सबसे मुश्किल अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। मौसम विभाग ने स्पष्ट शब्दों में यह बता दिया है कि अगले 2-3 दिनों में मौसम का ये मिजाज यूं ही बना रहेगा। लेकिन गर्मी है तो क्या गम है, क्योंकि गर्मी जितनी जोरदार है, गर्मी के विरुद्ध युद्ध की तैयारी भी उतनी ही दमदार। हॉट वेदर में कूल सॉल्यूशंस निकालने में हम भारतीयों का तो जवाब ही नहीं है। गर्मी से बचाव के कूल कूल उपायों की ये दो तस्वीरें देख लीजिए इस वक्त आपके सामने है। एक तस्वीर है काशी की। काशी के मंदिरों में भीषण गर्मी की तपिश से भगवान को बचाने के लिए कूलर और एसी तक लग गए हैं। इतना ही नहीं, मूर्तियों को सूती वस्त्र गर्मी से बचाव के लिए पहनाए गए हैं और तो और भोग प्रसाद और फल में भी ठंडी सामग्री चढ़ाई जा रही है। काशी का राम जानकी मंदिर हो या फिर बड़ा गणेश भगवान के लिए मंदिर के गर्भगृह में एसी की व्यवस्था की गई है। भगवान के लिए गर्मी में खास इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं ख्याल बेजुबानों का भी रखा जा रहा है। दिल्ली के जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के बाड़ों में स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं जो फव्वारों की तरह ठंडी फुहारें छोड़ता है। इसके अलावा जानवरों के लिए ठंडा और साफ पानी का इंतजाम किया गया है। तालाबों की मरम्मत कर रोजाना ताजा पानी भरा जा रहा है ताकि जानवर उसमें नहा सकें और गर्मी से राहत पा सकें। गर्मी को देखते हुए जानवरों के खान पान में बदलाव किया गया है। और चलिए इसी के साथ जी एंड स्पेशल की आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कुंडली का कमजोर बृहस्पति किस तरह की समस्याएं वैवाहिक जीवन में देता है? कुंडली का खराब बृहस्पति वैवाहिक जीवन पर किस तरह का असर डालता है? और कुंडली का शुभ बृहस्पति वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बृहस्पति की अलग अलग स्थितियों का वैवाहिक जीवन पर कैसे पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: समंदर में कचरा निगलने वाली नाव की जो कि सौर ऊर्जा से चलती है, मुंबई के समंदर से कचरा हटाने के लिए रिमोट कंट्रोल दो नौकाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया और का परेड के भदवार पार्क में तैनात मानव रहित ये बोट पानी की सतह से रोजाना लगभग 80 से 90 किलो तक तैरता हुआ कचरा उठा रही है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बीएमसी ने तकनीक का सहारा लिया है।
4: समंदर किनारे सपनों का शहर मुंबई, अरब सागर के किनारे बसा मुंबई सिर्फ एक महानगर नहीं है बल्कि ख्वाबों का शहर है, जिसके समुद्री तटों को साफ करने के लिए बीएमसी नई रणनीति और मजबूत इरादों के साथ तैयार है। मुंबई अपनी चकाचौंध, खूबसूरत जुहू बीच, गिरगांव चौपाटी और ऊंची लहरों के लिए मशहूर है। हर साल हजारों लाखों लोग माया नगरी का रुख करते हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी तो है ही, बॉलीवुड और दूसरे कई ऐसे काम धंधे भी हैं जिसके लिए लोग यहां खींचे चले आते हैं। इसी वजह से शहर की आबादी तेजी से बढ़ भी रही है। तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण की वजह से मुंबई में कचरा प्रबंधन आज एक गंभीर चुनौती है। जमीन से होता हुआ ये कचरा समंदर तक पहुंच जाता है, फिर भारी बारिश और हाईटाइड के दौरान ये कचरा गेटवे ऑफ इंडिया, कप परेड जैसे समुद्री किनारों पर जमा हो जाता है। समंदर की खूबसूरती पर दाग लगाने वाले कचरे में प्लास्टिक भी शामिल होता है, जिसको रोकने के लिए बीएमसी ने समंदर में बिना चालक वाली नौकाओं को उतार दिया है।
5: इस वक्त हम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया इलाके में हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं टूरिस्ट बोट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीएमसी के सामने एक चैलेंज है कि जो समुद्री तट है मुंबई का, उसके आसपास जो कचरा है उसे कैसे निकाला जाए। इसीलिए आप सामने जो देख रहे हैं एलिसियम, ये अनमैन्ड बोट है, इलेक्ट्रिक उस पर चलने वाली पावर पे, और ये आप कह सकते हैं ऐसी दो बोट, एक गेटवे ऑफ इंडिया पर और एक कफ परेड में भदवार पार्क पर लाई गई है बीएमसी की तरफ से। जो कन्वेयर बेल्ट ब्लू कलर का है, ये जो कचरा है वो पिकअप कर समुद्र से अंदर बोट में डालता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप कह सकते हैं कि बीएमसी ने इसीलिए शुरू किया है क्योंकि जो समुद्र के आसपास कचरा दिखता है उसे साफ किया जा सके।
4: विशेष तरीके से तैयार इस नाव में दो बैटरी लगी है जो सोलर पावर यानी सौर ऊर्जा से चार्ज होती है। 1 किलोमीटर के दायरे में रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होने वाली ये बोट कन्वेयर बेल्ट की मदद से समुद्र में फैले कचरे को इकट्ठा करती है।
6: एकदम इजी सिस्टम है, इसमें दो चीजें है, थ्रस्टर और कन्वेयर। स्टार्ट करने के लिए पहले इसको अपने को बैटरी लगाना पड़ता है, दो बैटरी है उसको। दोनों बैटरी लगाने के बाद, कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे एक स्विच है, उसको ऑन करना है। बेसिकली हमारा एक टेस्टिंग रहता है डेली रूटीन का, उसमें हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद ये सब चीजें अटैच होने के बाद में थ्रस्टर चेक करते हैं, थ्रस्टर लगाने के बाद में हम लोग बोट स्टार्ट कर लेते हैं। फिर इसका राउंड अप कैसे कि आप जहाँ पे आपका गार्बेज है यहाँ पे ये बाय रिमोट ये बोट ऑपरेट किया जाता है।
5: ओके,
6: इसी के लिए उसका पर्टिकुलर रेंज दिया है 1 किलोमीटर का। तो ये रेंज से हम लोग बोट गार्बेज की तरफ ले जाते हैं और ये जो कन्वेयर है वो कन्वेयर का जो फ्रंट बेस है वहाँ पे एग्जैक्टली कचरा कन्वेयर पे आके वो हॉपर में जमा हो जाता है।
4: बीएमसी की ओर से तैनात ये नावे बिना चालक के पानी की सतह से रोजाना लगभग 80 से 90 किलोग्राम तक तैरता हुआ कचरा निकालती हैं। इस दौरान ये पानी को प्रदूषित भी नहीं करती हैं।
6: बेसिकली अभी ये कैसे ये कॉन्सेप्ट अनमैन्ड बोट का क्यों है कि यहाँ पे तीन चीजें प्रायोरिटी पे है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी, सेकेंड डिग्निटी है, और दूसरी बात में जीरो इमर्शन। जीरो इमर्शन यानी ये इलेक्ट्रिकल बोट है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको बोट को खाली चार्ज करना है, उसके बाद आप ऑपरेट कर सकते हो। ये जो सेकंड स्टेप है जहाँ पे जो कन्वेयर है, वो कन्वेयर में आपको जो गार्बेज है साइड गार्बेज पूरा कलेक्ट होता है। और सेकंड थिंग क्या होता है कि कोई कॉर्नर पे जो जगह रहेगी वहाँ पे ये इजिली जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस कन्वेयर
5: जी।
6: हाँ, सेकंड थिंग फिर ये सब इसमें जमा हो जाता है, सब गार्बेज पूरा इसमें जमा हो जाता है। और इसका जो रेंज है वो जो रेंज है 1 किलोमीटर का है, और इसका जो हॉपर का कैपेसिटी है 800 से 1000 किलो तक है। और ये मिनिमम आप गेटवे का अगर कचरा देखेंगे, जो गार्बेज देखेंगे, उसका 200 से 400 तक उसका लिमिट है। बदवार पक्का है वो आपका 150 से 250 तक जाता है।
4: समंदर किनारे कचरे में सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है, जिनमें प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बॉटल्स और प्लास्टिक के टूटे सामान शामिल होते हैं। दरअसल लोग प्लास्टिक की बॉटल खरीद कर पानी पीते हैं और उसे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। प्लास्टिक पैक्ड चीजें खरीद कर खाते हैं और फिर खाली प्लास्टिक पैकेट को फेंक देते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, नदियों से लेकर समंदर तक, लोगों का यूज किया गया कचरा प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसको रोकने का काम बीएमसी कर रही है।
5: तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से इनोवेशन किया गया है, समुद्र में साफ सफाई हो सके उसमें किसी तरह का ह्यूमन आप कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसीलिए ये अनमैन्ड बोट्स बैटरी ऑपरेटेड जो है वो चलाई जा रही है। जो भी वेस्ट जनरेट होता है, काफ़ी वेस्ट जनरेट होता है, क्योंकि टूरिस्ट एरिया, टूरिस्ट मूवमेंट जो है वो हज़ारों की तादाद में रहती है गेटवे ऑफ इंडिया पर, और उसके ये पूरा सिस्टम जो है वो बीएमसी की तरफ से डिप्लॉय किया है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
0: कुंडली का कमजोर बृहस्पति किस तरह की समस्याएं वैवाहिक जीवन में देता है? कुंडली का खराब बृहस्पति वैवाहिक जीवन पर किस तरह का असर डालता है, और कुंडली का शुभ बृहस्पति वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बृहस्पति की अलग अलग स्थितियों का वैवाहिक जीवन पर कैसे पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायुअस्त्र एक का सफल परीक्षण, 10 किलो वॉरहेड के साथ 100 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना, सेना की स्ट्राइक और निगरानी क्षमता में होगा इजाफा। डिफेंस और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की लंबी छलांग, प्रोजेक्ट सबल के तहत नोएडा की हैवी लिफ्ट ड्रोन कंपनी को मिला 30 करोड़ का फंड, सैन्य ऑपरेशन के साथ आपदा राहत में मिलेगी मदद। अमेरिका में हो रहे बैटल इन द बे एक्सरसाइज में पहली बार भारतीय सेना ने की शिरकत, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और ऊंचे दुर्गम इलाकों में युद्धाभ्यास, मजबूत सुरक्षा सहयोग के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का हुआ चयन, पारदर्शी तरीके से कंप्यूटराइज लकी ड्रॉ से हुआ चुनाव, पवित्र यात्रा के लिए जून से अगस्त के बीच 20 जत्थों में रवाना होंगे यात्री। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी दिख रहा है भीषण गर्मी का असर, हिमाचल के ऊना में 44 तो शिमला में 30 डिग्री के ऊपर पारा, अगले दो दिन में बारिश के आसार। AI तकनीक से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रेल मंत्री की अपील। यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहे मुसाफिर। हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें संदिग्ध की जानकारी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे सोचे समझे सोशल मीडिया पर ये खबरें अक्सर शेयर कर देते हैं, क्योंकि आजकल खबरें केवल अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल सच लगे। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे इन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं उसमें फैक्ट चेक में सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगने को लेकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि मामूली सी कहा सुनी के बाद एक लड़के ने लड़की को बेरहमी से पीट दिया। इसकी सच्चाई क्या है, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
3: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ये कह रहे हैं कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगने को लेकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
8: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। इस घोषणा के बाद कोलकाता में 15 मई यानी शुक्रवार को नमाज के बाद हंगामा मच गया। एक धर्म विशेष समुदाय के लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हो गई।